0: News Today.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे,

0: कौन से ग्रह व्यक्ति को क्रोधी बना देते हैं, कौन से ग्रहों की वजह से व्यक्ति क्रोध में नुकसान कर बैठता है, क्या है क्रोध आने के ज्योतिषीय कारण और क्या है क्रोध कम करने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT University गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
3: सावन के तीसरे मंगलवार को आज रखा जा रहा है मंगला गौरी व्रत, अखंड सौभाग्य के साथ सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना।

की पैनी नजर, यात्रा मार्ग पर कई जगह हो रही है संघ जांच। आज से उत्तर प्रदेश जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 का हो रहा है आगाज। दिल्ली में जापानी प्रतिनिधि मंडल से मिलेगी सीएम योगी आदित्यनाथ। औद्योगिक विकास और निवेश पर होगा मंथन। यूपी पुलिस के एंथम खाकी का सितारा को किया बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन का सलाम। बोले कुछ सितारे आसमान में चमकते हैं, कुछ खाकी पहनकर जमीन पर। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय युवा शटलर आयुष शेट्टी ने किया बड़ा उलटफेर। दुनिया के नंबर वन चीनी खिलाड़ी शी यूकी को सीधे सेंटो में दी मात। पुरुष सिंगल्स के दूसरे दौर में मिली एंट्री। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। और चलिए अब देख लेते हैं अच्छी बात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ।

0: समुद्र के किनारे जब कोई मछुआरा मछली पकड़ने जाता है तो दाना ले जाता, कभी कभी तालाबों के किनारे भी तो ले जाता, समुद्र में कई बार नहीं ले जाता पर कई बार ले जाता। तो जाल ले जाकर के जब मछुआरा जाता है, जाल फेंकता है, दाना फेंकता है, तो जब दाना फेंकता है तो कुछ दाने बीच में फेंकता है, कुछ दाने उसके पैरों के पास गिर जाते। ध्यान से सुनना, कुछ दाने पैर के पास गिर जाते हैं, कुछ दाने बीच में गिर जाते हैं। बड़ी बड़ी मछलियां आकर उन दानों को खाने लगती, मछुआरा जाल फेंकता, जाल में बड़ी बड़ी मछलियां, बड़े बड़े मछले पकड़ जाते, लेकिन कुछ छोटी छोटी मछलियां बीच में दाना ना खाने की बजाय जो मछुआरा पकड़ने वाला होता है उसके पैर के पास, चरण के पास जो दाने गिर जाते हैं छोटे छोटे, उसी दाने को खाने के लिए छोटी छोटी मछलियां पैर के किनारे आ जाती हैं। अद्भुत और आश्चर्य की बात यह होती है कि जो मछलियां बीच का दाना खाने जाती वो सब पकड़ी जाती, और जो मछलियां मछुआरे के पैर के पास आती हैं वो बच जाती है। ऐसे ही जीवन है, संसार ये सागर है, पूरा पूरा संसार ही एक सागर है। इस संसार सागर में हम सब मछलियां हैं और संकट विपत्ति ही मछुआरा है, परमात्मा ही मछुआरा है और परमात्मा का जाल ही माया का जाल है। और जब इस माया के जाल से बचने का कोई जीव प्रयत्न करे तो यदि वो माया के जाल में फंसना चाहता तो भोग भोगे, लेकिन यदि वही जीव दाना भी खाना चाहता और जाल में नहीं फंसना चाहता तो सर्वोत्तम उपाय है वो मछुआरे के पैरों के पास आ जाए, तो वो भोग भी भोग लेगा, दाना भी खा लेगा और जाल में भी नहीं फंसेगा, वो परमात्मा के चरण। यदि भगवान के चरणों के सन्निकट जीवात्मा पहुंच जाएगी, परमात्मा के सन्निकट चरणों के पास ये जीवात्मा पहुंच जाएगी, तो मेरे पागलों, परमात्मा के चरणों के सन्निकट पहुंचते ही दाना भी मिलेगा। और कभी मलूक दास जी तो कहते हैं, अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम, दास मलूका कहे गए सबके दाता
1: राम।
0: राम सबको भगवान देते हैं। तो यदि हम भगवानों के, भगवान के चरणों के आश्रित हो जाएंगे, अपने परमात्मा के चरणों के आश्रित हो जाएंगे, तो संसार सागर में भी बने रहेंगे और भगवान के भी बने रहेंगे। दूसरी बात, जादूगर जादू दिखाता, दूसरा उदाहरण सुनना। जादूगर जादू दिखाता, जब खेल दिखाता गांव में, तो उसके साथ में एक लड़का जरूर होता है, उसको जमूरा कहते हैं। क्या कहते हैं? जमूरा। क्या बोलते हैं? जैसे हमारा चेला रहता ना, झोली माला लिए रहता, कभी ये लिए रहता, कभी बोली, ऐसे ही जादूगर का भी एक चेला रहता, उसको जमूरा कहते। आप देखकर आश्चर्यचकित होंगे कि हम लोग उसके खेल के, खेल को देखकर, जादूगर की तकनीकों को देखकर के बड़ी जोर जोर से ताली बजाते, वो कभी पंछी निकाल देता, कभी सांप निकाल देता, कभी कबूतर निकाल देता, और हम लोग ताली बजाते और आश्चर्यचकित से भर जाते, लेकिन जमूरा कभी भी ताली नहीं बजाता। क्यों? क्योंकि उसे खेल पता होता कि सांप कहां से निकला है, कबूतर कहां फिट किया था, कहां पे डबल कबूतर लगाए थे, क्योंकि बटोरता भी वही है और सेट भी वही करता, इसलिए जमूरा कभी भी प्रभावित नहीं होता। ऐसे ही ये जीव है, तुम संसार में तब तक संसार से प्रभावित रहोगे जब तक परमात्मा के खेल को समझ नहीं पाओगे, और जिस दिन भगवान के चरणों में आ जाओगे पूरा खेल तुम्हें पता लग जाएगा, फिर कुछ भी आश्चर्य नहीं लगेगा, सब साधारण आपको लगेगा, आप हंसते रहोगे, चलता रहता है, तो तमाशा है, होते ही रहता है। ऐसे ही जो परमात्मा के आश्रित हो जाते उन्हें सब खेल लगता है। तो सागर से ये बात सीखी जा सकती, सागर की गहराई इतनी अभूतपूर्व है, इतना गहरा है, बार बार कट है? हेलो, तो सागर से ये सीखा जा सकता, अत्यंत गहरा जल से भरा हुआ सागर, अब ठीक है।
1: अब सही लगा नहीं।
0: सागर से यह सीखा जा सकता, सागर से एक बात और हम बोलेंगे, दो बातें होगी, तीसरी बात और सुन। हम लोग सागर के तट पर बैठे,
1: कुछ लोग अभी शाम हो गई है पर कुछ लोग
0: तो बीच में होंगे नावाओ लेकर के, और कुछ लोग बिल्कुल बाहर हैं, जैसे वहां बैठे हैं पीछे बाहर खड़े। ये दोनों ही लोग आनंद में नहीं, जो सागर के मध्य में है वो आनंद में नहीं है, उन्हें झंझट है डूबना जाए, हवा किस तरफ चल रही है, जल्दी किनारे पहुंच जाए, रात ना हो जाए, कोई मछली ना आ जाए, भेल ना आ जाए, चार झंझट उनके चल रहे दिमाग में। जो ज्यादा दूर है उन्हें ये आनंद ही नहीं मिल रहा। सबसे ज्यादा फायदे में हम लोग, बीच वाले को भी देख रहे मजे ले रहे और किनारे वालों को भी देख रहे मजे ले रहे। इसको कहते हैं तटस्थ होना। क्या होना, बोलो बोलो बोलो। जिंदगी में भी ऐसे ही बने रहो, जिंदगी के खेल के बीच में रहोगे तो आनंद नहीं आएगा, भोगों के बीच में रहोगे तो आनंद नहीं आएगा, और पूरे परमात्मा के हो जाओगे तो जिंदगी का आनंद नहीं आएगा। इसलिए बीच के बीच बने रहो, तट पर बैठे रहो, जैसे आज तट पर बैठे हुए ऐसी तट पर बैठे रहो, परमात्मा के चरणों के पास बैठे रहो और जीवन के साथ बने रहो, तो जीवन का भी आनंद आएगा और परमात्मा की भक्ति का भी। जैसे अभी आप 3 दिन बढ़िया कुछ नहीं कर रहे, सुबह से फूसा फांसी कर रहे, बढ़िया दिन में जो है खूब बढ़िया एल्कन वाटर पी रहे, चाय ले रहे, आहा बढ़िया जो है पनीर खा रहे, 5 स्टार का आनंद ले रहे। अब साल भर खूब कमाओ और फिर कमाओ फिर इकट्ठा करो, फिर अगली बार बताएंगे कहां चलना है। बढ़िया है वो यात्रा की यात्रा और आध्यात्मिक यात्रा। अब बोले कहां, बोले बाली। बढ़िया है, हमें लगता है यही तटस्थता है, यही तटस्थता है। तटस्थता का मतलब ये भी नहीं है, भक्ति का मतलब ये भी नहीं कि बिल्कुल बैरागी बन जाओ। बिल्कुल बैरागी बन गए तो घर से गए, घर बाली से गए, परिवार से गए, कोई काम के ना बचे, बिल्कुल बैरागी हो गए। और यदि बिल्कुल संसारी हो गए तो परमात्मा से गए, हमसे गए, हमारे काम के नहीं। अब क्या किया जाए, दोनों के काम के बचे रहो, घरवाली पति के भी काम के बने रहो, बच्चों के भी काम के बने रहो और परमात्मा के भी काम के बने रहो। तो यही है कि जब काम करो तो काम अपना मान करके मत करो, परमात्मा का मान करके करो, और बीच बीच में जब आराम करो तो आराम केवल सोने का मतलब ना किया जाए। अब तो 2-3 दिन का ऐसे ही समय निकाल कर आराम बुला करके आराम किया जाए। आराम का मतलब ये नहीं है कि बंद किया दरवाजा, हम तो आराम कर रहे हैं। आराम के भी अर्थ है, आराम का अर्थ है आ राम, यही तो आराम, बुला राम, राम जी को बुलाओ, आ राम, यही तो है आराम। और आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है तो एक काम कर, आ राम की शरण में राम राम कर। तो तटस्थ होने का मतलब यही है, तट पर आज हम लोग इसीलिए बैठे हैं कि सागर का भी आनंद लो, संसार का भी आनंद लो। किसका, सागर का भी आनंद लो, और सागर हो गया परमात्मा और संसार हो गया ये परमात्मा का खेल, और हम लोग हैं बीच में मध्य में। तो मध्य की स्थिति भगवान कृष्ण गीता में भी कहते हैं, सुखम चा दुखम चा, सम अवस्था में जियोगे तो बढ़िया आनंदित रहोगे, दुखी ज्यादा नहीं रहोगे, दुख सुख लगे रहेंगे, दोनों आते जाते रहेंगे, पर अवस्था यदि आपके मन की सम हो जाएगी, तट पर आप बैठ जाओगे तो समुद्र में तैरने वाले को भी देख पाओगे और संसार में डूबने वाले को भी देख पाओगे। और अंत में एक बात कहें, बोलो कह दो कहो, तट वाले को तो ज्यादा फायदा है, चाहे जिस तरफ लुढ़क जाओ, आप तट पे हो तो संसार की तरफ जाना है उधर मुंह कर लो, परमात्मा की तरफ जाना है तो सीधे चले जाओ। दोनों को ही आनंद है, कहीं भागने की आवश्यकता नहीं, बीच बीच वाले का बहुत बहुत बढ़िया है। तो परमात्मा की तरफ जाना भैया, सीधे जाओ। और एक बात और बोले कह दो, बोलो। वो तैरते तैरते डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था, और वो डूबते डूबते भी पार हो गए जिन पर तुम मेहरबान था। जब परमात्मा के हवाले हो जाओगे, भगवान के हवाले हो जाओगे, तो फिर आपको डूबने की चिंता करने की आवश्यकता, लेकिन बस बीच बीच में ऐसे ही तटस्थ बने रहो, ऐसे ही तट पर बैठते रहो। तट पर और घट पर दोनों का ध्यान रखना चाहिए जीवन में, तट का और घट का। घट जानते हो? घटा नहीं ना, ना, ना है? घाट नहीं, एक और घट होता है कलश, हाँ वो भी घट होता है। हृदय, इसको भी घट कहते हैं। क्या कहते हैं? घट। तो घट पर बने रहो, तट पर बने रहो, और तट पर बने रहोगे तो संसार का भी आनंद ले पाओगे और परमात्मा की भक्ति का भी आनंद ले पाओ। एक अंतिम बात और, इसके बाद में प्रणाम संकीर्तन और भजन भाव पे जिसको जो आ गए। अभी बहुत बढ़िया माइक था, सब गड़बड़ा गए हमें लगता है। अच्छा, हवा के कारण। हाँ अब आ गया भैया, आ गया। हम यहाँ थे गड़बड़, उसकी गलती नहीं है, उधर कोई गलती नहीं है, सही नहीं रहा। हाँ वो तुमने गलत लगवा दिया था, है नहीं? तो सबके अपने अपने कान होते हैं, अपने अपने हिसाब से। हो सकता बाली वालों के लेफ्ट कान हाई पे, हमारा भाई राइट वाला हो सकता, ड्राइविंग के ऊपर है। अब अमेरिका में तो लेफ्ट ड्राइविंग है। अपने अपने हिसाब से, वो उन्होंने सही कहा होगा, लिया उन्होंने इसी के हिसाब। हम जनजात उल्टे हैं। हमें सूट नहीं कर। तो एक अंतिम बात और हम कहना चाह रहे हैं, वो बहुत ध्यान पूर्वक सुनो। अंगद जी ने लंका में पैर जमाया, और पैर जमाया और शर्त रख दी कि जो भी हमारे पैर को उठाएगा तो हम आज ही माता जानकी जी को हार गए, राम जी युद्ध करने नहीं आएंगे, हम जानकी माता को ले नहीं जाएंगे, तुम्हारी हो जाएंगे। ये रावण को कहा। रावण ने शर्त मान ली कि यदि इतनी छोटी शर्त है, युद्ध होगा नहीं, लोग भी नहीं मरेंगे, झंझट भी कम होगा, पैर ही तो उठाना है, उठा लिया जाए। तो रावण ने अपनी सेना को कहा, जितने बलवान है लग जाओ सब, एक एक योद्धा आए, अंगद जी के पैर को ना उठा पाए। अंत तो गत्वा रावण आया तो बेइज्जती हो गई, एक पैर नहीं उठा पा रहे तो बेइज्जती तो हो ही गई, कि जब एक पैर नहीं उठ रहा तो सेना क्या हलुआ उठेगी, फिर तो हार ही गए, गलत न्यूज हो जाएगी, वो गड़बड़ा जाएगा, युद्ध पहले ही हार जाएंगे। तो रावण ने सोचा ये बेइज्जती वाली बात है, तो खुद को उठना चाहिए। तो रावण उठा, और जैसे ही रावण झुका, अंगद जी ने पैर उठा लिया। रावण बोला क्या हुआ? शर्त रखो, रखो शर्त लगी है। अंगद जी बोले हम महात्मा है। रावण बोले तो? अंगद जी बोले महात्मा झुकाना तो सिखाता है, पर अपने चरणों में नहीं, झुकना ही है तो परमात्मा के चरणों में झुको। ये बात तो हो गई, रावण को समझ आ गई। अब अंगद जी वापस आए, अब जो घटना हुई वह जरा वो सुनो। अंगद जी के साथ वाले जितने बानर थे, दधिमो के हरि निसट सट जाम बंत बल रास, सब मिले। अंगद जी से बोले हमने सुना तुमने शर्त लगाई। अंगद जी बोले सही सुना, लगाई। तो अंगद जी से बंदर बोले कि एक बात बताओ, किससे पूछ के लगाई? अंगद जी बोले हमने किसी से नहीं पूछा, खुद से ही लगाई, हमने खुद शर्त लगाई, खुद के पांव की लगाई, पूछना क्या है। तो बोले पांव की खुद की तो लगाई, पर हमने सुना दाव पर जानकी माता को रख दिया। अंगद जी बोले हाँ ये बात सही है, हमने माता जानकी जी को दाव पर रख दिया। तो जामवंत जी बोले किससे पूछ के? राम जी ने कहा। बोले नहीं उनने नहीं कहा। तो बोले वाह, मान लो हार जाते, फिर पैर उठा देता कोई, फिर क्या? अंगद जी बोले ये मान लो किंतु परंतु तुम जानो, हम तो भक्त हैं, हमारे यहां कोई किंतु परंतु नहीं है, हमारा तो भरोसा है कि हम हारते ही नहीं, वो हारे नहीं। तो जामवंत जी बोले मान लो 1%। अंगद जी बोले फिर मान लो, हम काहे माने, हम तो भक्त हैं, हमें तो भरोसा है कि 1% भी हमें नहीं हारना। तो दधिमुख के हरी बिल्कुल लड़ते हुए नजदीक आके बोले कि मानो हार जाते फिर। अंगद जी बोले रुको, अब जब से मान लो कर रहे हैं, जब से प्राण खा रहे हो हमारे, मान लो। एक बात बताओ, शर्त किसकी लगी? जानकी माता की। जानकी माता किसकी पत्नी? राम जी की। तो यदि मान लो हम हार जाते तो किसकी पत्नी हारती? राम जी की। बेइज्जती किसकी होती? हम काहे को मान ले। जब जानकी माता को दाव पे लगाया, बेइज्जती राम जी की होनी थी, तो भाई ये पूरी चिंता परमात्मा की थी, हमारी थोड़ी चिंता थी, हम तो उनके भक्त हैं, उनके सहारे हैं, अब जीतना उनके काम में, हराना उनके काम में, यदि जीते तो वो जीते, उनका भक्त जीता, और हारते तो उनकी घरवाली हारती, हम थोड़ी हारते। ये भरोसा ही भक्त को परमात्मा से मिलाता है, ये भरोसा ही भक्त की जीत दिलाता है। इस तट पर बैठकर हम इतना ही आपसे कहेंगे, आपको भरोसा भी इतना ही रखना है, जैसे सागर हमेशा लहराता रहता, लहरें आती रहती जाती रहती, लेकिन एक अद्भुत बात है, कोई देखे या ना देखे लहरें आती जाती रहती हैं। ऐसा नहीं कि दिन में लहरें चले रात को बंद हो जाएं। हम लोगों की बल्कि भक्ति ऐसा ही है कि जब कोई देखने लगे या समय समय मंगलवार आ जाए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और जब मंगल हो गया शनिवार, ठीक है भैया अब 3 दिन कर तो लिया ऊर्जा संचय, अब चलो अब हो गया। लेकिन सागर का ऐसा गुण नहीं, वो 24 घंटे अपनी मस्ती में लहरें आ रही जा रही, कोई देखे ना देखे, कोई किनारे हो ना हो, पानी बरसे ना बरसे, वो सागर की लहरें अनवरत चल रही। अब ऐसा नहीं है कि बागेश्वर बाबा प्रवचन कर रहे तो थोड़ा सुन ले, नहीं नहीं नहीं, वो अपना काम कर रही है, देखो तो बाहर चल ही नहीं, बराबर समुद्र के किनारे। ऐसे ही जीवन में भक्ति होनी चाहिए कि बाहर कुछ भी चलता रहे, अंदर भगवान की भक्ति चलती रहनी चाहिए, परमात्मा का भजन चलता ही रहना चाहिए, यही लहरों से सीखना चाहिए। भगवान राम जी लंका जा रहे थे, तो लंका जाने के पहले 3 दिन तक स्तुति की भगवान ने, बिना नमानत जलत जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए ना प्रीत। 3 दिन तक समुद्र ने बात नहीं मानी, तो भगवान ने कहा कि बात नहीं मानी है तो एक काम किया जाए, तीर को उठाया जाए और चलाया जाए। तो लक्ष्मण जी ने पीछे से मुस्कुरा के कहा कि यही करना था तो पहले करते, हम तो पहले ही कह रहे थे कि अब समुद्र से क्या प्रार्थना करो, पहले ही तीर चलाओ। भगवान ने एक बड़ा अद्भुत संकेत दिया यहां, भगवान ने कहा कि दंड का प्रयोग तब करना चाहिए जब सभी जगह से हार जाओ, पहले तो विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए हमारे धर्म शास्त्रों में 4 नीति है, साम दाम फिर दंड अंत में भेद, पहले भी नंबर प्रार्थना, जितनी प्रार्थना की जा सके उतना दो। प्रार्थना से जब कोई ना माने तो लालच देकर के, और परमात्मा की यहां भी यही है, भक्ति के मार्ग में जब कोई ऐसे नहीं आता है तो दुख होता है, दुख होता है उसको दुख मिलता है तो दुख निपटाने के चक्कर में भक्ति करता है। तो भगवान कहते हैं ठीक है हम तुम्हारे दुख निपटा देंगे, पहले भक्ति करो। क्या करें? हनुमान चालीसा पढ़ो। हनुमान चालीसा पढ़ने लगते, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हे हनुमान जी महाराज। और संत कहते भाई एक काम करो, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना

यदि कोई सुख में सुमरण करे तो दुख काय को होगा। लेकिन हम लोगों पे जब विपत्ति आती तब भगवान को पुकारते, हे भगवान हम पर दया करो, हे परमात्मा हम पर कृपा करो, हे प्रभु हम पर कृपा करो। आप लोगों में से ज्यादा लोग, हमें भरोसा है, सुख की तलाश में बैठे। क्या ये बात सही है? अरे बोलो तो, ऐसे बैठे जैसे तुम विदेशी हो हम देसी। सुख की तलाश में हो कि नहीं हो? कौन कौन सुख पाना चाहता, हाथ उठाओ। सब जो हाथ खड़े नहीं कर रहे वो नहीं चाहते। अच्छा पाना चाहते, ठीक है, हाथ नीचे करो।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: सावन के तीसरे मंगलवार को आज रखा जा रहा है मंगला गौरी व्रत। अखंड सौभाग्य के साथ सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना। बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर पुंछ में सुरक्षा के सख्त इंतजाम, आने जाने वालों पर सुरक्षा एजेंसी की पैनी नजर, यात्रा मार्ग पर कई जगह हो रही है सघन जांच। आज से यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 का हो रहा है आगाज, दिल्ली में जापानी प्रतिनिधिमंडल से मिलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, औद्योगिक विकास और निवेश पर होगा मंथन। यूपी पुलिस के अंतम खाकी का सितारा को बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन का सलाम, बोले कुछ सितारे आसमान में चमकते हैं, कुछ खाकी पहनकर जमीन पर। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय युवा शटलर आयुष शेट्टी ने किया बड़ा उलट फेर, दुनिया के नंबर वन चीनी खिलाड़ी शी युकी को सीधे सेंटों में दी मात, पुरुष सिंगल्स के दूसरे दौर में मिली एंट्री।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
2: आज है सावन का तीसरा मंगलवार, मां मंगला गौरी की आराधना और व्रत का दिन। सुहागिन महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्य, सुखी दाम्पत्य और परिवार की समृद्धि का सबसे मंगलकारी पर्व माना जाता है आज का दिन। मान्यताओं के मुताबिक आज के दिन मां मंगला गौरी की पूजा करने वाली महिलाओं पर बरसती है विशेष कृपा, मां मंगला गौरी देती है अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद। मां मंगला गौरी देवी पार्वती का अत्यंत मंगलकारी और करुणामयी स्वरूप है, मान्यता है कि उनकी कृपा से दाम्पत्य जीवन में आने वाले संकट होते हैं दूर। मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए हजारों वर्षों तक की थी कठोर तपस्या, कठिन व्रत और अटूट भक्ति के बल पर महादेव को किया प्रसन्न। अयोध्या के अरुण कुमार सोनी विशाल कावड़ में बाबा भोलेनाथ

मन्नत पूरी होने पर बाबा को धन्यवाद देने पहुंच रहा है परिवार। सुल्तानगंज से देवघर तक कच्ची कावड़िया पथ पर देशभर से श्रद्धालु बाबा धाम की ओर बढ़ रहे हैं। हर तरफ भक्ति और बोलबम के जयकारे गूंज रहे हैं। जालना में निकली भव्य कावड़ यात्रा, सैकड़ों शिव भक्त हुए शामिल, आस्था भक्ति में सराबोर दिखे श्रद्धालु। गोदावरी का जल लेकर पंचमुखी महादेव मंदिर पहुंचे भक्त, पंचमुखी महादेव का हुआ जलाभिषेक, बम बम भोले की गूंज चारों तरफ। जयपुर के गलता धाम में अनोखा नजारा, हेलीकॉप्टर से भक्तों पर पुष्प वर्षा, श्रद्धालुओं ने लगाए जयकारे। फूलों की बारिश से गूंजा गलता धाम, आसमान से बरसे फूल, श्रद्धालुओं के लिए ये पल बना यादगार। जौनपुर में भी कावड़ियों पर पुष्प वर्षा, करशुलनाथ महादेव मंदिर में खास नजारा देखने को मिला, हर तरफ गूंजे भोलेनाथ के जयकारे। मूड़ा अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था पहुंचा पुंछ, 2041 तीर्थयात्री शामिल। हर हर महादेव के जयकारों से गूंजा शहर, आज अमरनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे श्रद्धालु। बेस कैंप पहुंचने पर भक्तों का भव्य स्वागत, बूढ़ा अमरनाथ के श्रद्धालु में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। पुंछ में श्रद्धालुओं ने मां भारती की प्रतिमा को किया नमन, बूढ़ा तीर्थयात्रियों में देखी खुशहाली। अमरनाथ मंदिर में बाबा चट्टानी के दर्शन को उत्साही श्रद्धालु, दर्शन का बेसब्री से कर रहे इंतजार। पुंछ में बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही के लिए सुरक्षा एजेंसी पूरी तरह से अलर्ट। यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए कई जगह सुरक्षा घेरा बनाया गया, सुरक्षा एजेंसीज हराने जाने वाले पर रख रही है खास नजर। यात्रियों की सुरक्षा के लिए कई स्तरों पर निगरानी, यात्रा के रास्तों पर सुरक्षा के साथ ट्रैफिक और निगरानी की भी पुख्ता तैयारी। जूनियर विश्व चैंपियनशिप में ऐतिहासिक जीत के लिए अनाहत सिंह को किया गया सम्मानित, HCL और स्क्वाश रैकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किया सम्मान। जूनियर विश्व चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी हैं अनाहत, अपनी इस उपलब्धि से लाखों युवाओं की प्रेरणा बनी अनाहत सिंह। अमृतसर के शिवाला बाग भैया में उमड़ी भक्तों की भीड़, दर्शन के लिए सुबह से लगी लंबी लंबी कतारें। भक्तों ने किए भोलेनाथ के दिव्य दर्शन, दूर दूर से पहुंचे यहां भक्त, मंदिर में हर हर महादेव की गूंज। सावन के सोमवार, नागपंचमी, संक्रांति तीनों पर एक साथ पड़े पूजा और जलाभिषेक कर भक्तों ने आशीर्वाद लिया। धौलपुर में अनोखी पहल, 11,000 पौधों की अनोखी कावड़ यात्रा, हरियाली का दिया गया संदेश। 5100 छात्र छात्राओं ने लिया हिस्सा, ग्रामीणों ने भी बढ़ चढ़ कर लिया भाग, बैंड बाजे के साथ निकाली गई ये कावड़। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की आज जापानी प्रतिनिधिमंडल के साथ दिल्ली में अहम बैठक, यूपी में जापानी निवेश बढ़ाने पर होगी बात। उत्तर प्रदेश में जापानी निवेश की संभावनाओं और नए औद्योगिक अवसरों पर होगा विशेष फोकस, सीएम योगी आदित्यनाथ जापानी कंपनियों के पदाधिकारियों से भी करेंगे मुलाकात। अमिताभ बच्चन ने यूपी पुलिस के एंथम खाकी का सितारा को किया सलाम, बोले कुछ सितारे आसमान में चमकते हैं, कुछ खाकी पहनकर जमीन पर। यूपी पुलिस का पहला आधिकारिक एंथम खाकी का सितारा हो गया है रिलीज, वीडियो में महाकुंभ से लेकर महिला सुरक्षा और आपदा राहत तक पुलिस की ड्यूटी दिखाई गई। खाकी का सितारा को तैयार करने में एक साल से ज्यादा का लगा है वक्त, शंकर महादेवन के संगीत और अमिताभ बच्चन की आवाज ने पुलिस की सेवा और हिम्मत को खास अंदाज दिया। पठानकोट बनेगा एडवेंचर डेस्टिनेशन, पैरासेलिंग का हुआ शुभारंभ, पर्यटकों में दिख रहा है जबरदस्त उत्साह। रावी झील में वाटर स्पोर्ट्स, पैरासेलिंग का मिलेगा रोमांच, पर्यटकों को मिलेगा नया अनुभव।

0: नीले पानी और हरे पहाड़ों के बीच पैरासेलिंग, मिनी गोवा जैसा दिख रहा है शानदार नजारा। वाटर स्पोर्ट्स से पर्यटन को मिलेगा इससे बढ़ावा, पर्यटन के साथ बढ़ेंगे रोजगार, स्थानीय लोगों और कारोबारियों को होगा इससे फायदा। शाहपुर कंडी बैराज झील पर खास तैयारियां की गई, झील को टूरिज्म हब बनाने की कोशिश, पैरासेलिंग के दौरान रखी जाएगी निगरानी। हरियाणा के चरखी दादरी की 76 वर्षीय रामकिशन शर्मा का कमाल, 401 मेडल जीतकर रचा इतिहास, इंडिया और एशिया बुक में करवाया नाम दर्ज। मेडल मशीन के नाम से मशहूर है रामकिशन, 65 साल में शुरू की थी दौड़, 7 से 9 साल में एथलेटिक्स में बड़ा मुकाम। मेडल के साथ 336 सर्टिफिकेट्स भी मिले, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीते 10 गोल्ड, राष्ट्रीय स्तर पर भी शानदार प्रदर्शन, रिकॉर्ड बुक में दर्ज हुई उपलब्धि। छत्तीसगढ़ के जशपुर में सीएम विष्णुदेव साय का किसान अवतार, खेतों में सीएम ने खुद चलाया हल, धान की रुपाई भी की। भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल में बड़ा सम्मान, काठमांडू में नेपाली सेना की मानद रैंक दी गई। अलवर के 1,47,000 किसानों को बड़ी सौगात, किसानों के खाते में पहुंचे 14,72,00,000, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की छठी किस्त जारी। गर्ल टेस्ट में टीम इंडिया का दबदबा, तीसरे दिन श्रीलंका 284 पर ढेर, भारत को 178 रन की मजबूत बढ़त। टीम इंडिया के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा का नया कीर्तिमान, टेस्ट में 4,000 रन और 350 विकेट पूरे, कपिल के बाद बने दूसरे भारतीय। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में चमके देश के युवा बैडमिंटन स्टार आयुष शेट्टी, पहले राउंड में वर्ल्ड नंबर 1 चीन के शी यूची को हराया। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में पीवी सिंधु का जीत से शानदार आगाज, 29 मिनट में सोफिया नोबल को हराकर दूसरे राउंड में बनाई जगह। वाराणसी में लगातार बढ़ रहा गंगा का जलस्तर, सभी घाटों में भरा पानी, जलस्तर बढ़ने से गंगा आरती पीछे शिफ्ट। 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है पानी, तटवर्ती इलाकों में बढ़ी चिंता, दुकानदारों की भी बड़ी परेशानी। गंगा में नाव संचालन पर पूरी तरह से रोक, पर्यटकों को नहीं मिल रहा नौका विहार, नाविकों की रोजी रोटी प्रभावित। ओडिशा सीएम मोहन चरण मांझी जाजपुर पहुंचे, बोट पर रेस्क्यू टीम के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। मुख्यमंत्री मांझी ने बाढ़ पीड़ितों से भी की मुलाकात, हालात की समीक्षा कर हर संभव मदद का दिया भरोसा। मुंबई के कई इलाकों में झमाझम बारिश, सड़कों पर जलभराव, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से बारिश की तस्वीर आई सामने। देहरादून में भारी बारिश से जगह जगह वाटर लॉगिंग, आम जनजीवन हुआ प्रभावित, लोगों को हुई परेशानी। चमोली के पीपल कोटी टनल में 2 लापता लोगों की तलाश जारी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का चल रहा है संयुक्त सर्च ऑपरेशन। मेरठ में अंडरपास में जलभराव से छात्राएं परेशान, वीडियो बनाकर डीएम से लगाई गई गुहार, डीएम ने पानी निकलवाया और रेलवे स्थायी समाधान के लिए कहा। कुल्लू में पार्वती नदी में फंसे दिल्ली के 4 पर्यटकों का सफल रेस्क्यू, रस्सी के सहारे सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में अनोखा नजारा, सुपर हीरो बनकर निकले सैकड़ों बाइकर्स, बच्चों के लिए खिलौने लेकर पहुंचे। बीमार बच्चों के चेहरे पर आई मुस्कान, बाइकर्स ने बच्चों को बांटे खिलौने, बच्चों ने अपने हीरो को गले लगाया। बाइकर्स का खास चिल्ड्रंस डे मिशन, सड़कों पर बाइक रैली का शानदार नजारा, डिज्नी किरदारों में भी नजर आए बाइकर्स। अस्पताल में बच्चों ने सुपर हीरो संग खिंचवाई तस्वीरें, बच्चों के चेहरों पर दिखी मुस्कान, बना खुशी का माहौल। कावा क्लब की पहल को 20 साल पूरे 2006 से जारी है नेक पहल, हर साल बच्चों के लिए जुड़ते हैं बाइकर्स।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: कौन से ग्रह व्यक्ति को क्रोधी बना देते हैं? कौन से ग्रहों की वजह से व्यक्ति क्रोध में नुकसान कर बैठता है? क्या है क्रोध आने के ज्योतिषीय कारण और क्या है क्रोध कम करने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
6: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन के महीने का हर दिन अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन सावन के सोमवार, शनिवार और मंगलवार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आज आपको बताएंगे सावन के मंगलवार की महिमा क्या है और सावन में मंगला गौरी माता की पूजा का विधान क्या है। अब जान लेते हैं दिनांक 18 अगस्त 2026 दिन मंगलवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। बुध और बृहस्पति विद्यमान हैं कर्क राशि में, सूर्य और केतु सिंह राशि में, शुक्र कन्या राशि में, चंद्रमा तुला राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और मंगल फिलहाल विद्यमान हैं मिथुन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं सावन के मंगलवार की और माता मंगला गौरी की। माता मंगला गौरी की पूजा का महत्व क्या है, पहले ये समझते हैं। देखिए, सावन के महीने में भगवान शिव के अलावा माता गौरी की विशेष कृपा भी आपको मिल सकती है। इसके लिए सावन के मंगलवार को माता गौरी की उपासना की जाती है। इस पूजा से चूंकि जीवन में हर प्रकार का मंगल होता है, इसीलिए इसको मंगला गौरी कहा जाता है। सावन के मंगलवार को माता गौरी की उपासना से शीघ्र विवाह का वरदान मिलता है और वैवाहिक जीवन की हर समस्या दूर हो जाती है। अगर मंगल दोष आपके जीवन में समस्या दे रहा हो तो सावन के मंगलवार पर माता मंगला गौरी की पूजा करनी चाहिए, मंगल दोष का दुष्प्रभाव नष्ट हो जाएगा। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब आते हैं उपायों पर। जिन कन्याओं का विवाह तमाम प्रयासों के बावजूद नहीं हो पा रहा है, ऐसी महिलाएं सावन के मंगलवार पर माता मंगला गौरी की पूजा कैसे करेंगी? सावन के मंगलवार को प्रातः काल या शाम के समय में माता गौरी की पूजा करिएगा। उनके सामने घी का एक बड़ा सा चौमुखी दीपक जलाइए और इसके बाद मां को 16 फूल चढ़ाएं या 16 तरीके के फूल चढ़ाएं, उसमें लाल रंग का फूल जरूर चढ़ाएं। माता को लाल रंग की चुनरी और लौंग समर्पित करें और इसके बाद 3 माला या 11 माला माता के मंत्र का जप करेंगी। मंत्र होगा ओम ह्रीं गौर्ये नमः, ओम ह्रीं गौर्ये नमः। इस मंत्र का जप करेंगी और जप करने के बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करेंगी। सावन में किसी भी मंगलवार को अगर आप ऐसा कर लेती हैं तो आपका विवाह शीघ्र होगा। अगर विवाह हो चुका है और पति पत्नी के बीच तालमेल खराब है, तमाम प्रयास के बावजूद तालमेल अच्छा नहीं रह पाता हो तो क्या करेंगे? शाम के समय में सावन के मंगलवार पर माता गौरी की पूजा करेंगे। माता गौरी के सामने घी के 3 दीपक जलाएंगे और इसके बाद माता के चरणों में सिंदूर अर्पित करें। मां को इत्र समर्पित करिए और इसके बाद 16 इलायची चढ़ाइएगा और इसके बाद जो माँ का नवारण मंत्र है उसका 11 माला जप करिएगा। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का 11 माला जप करिए और प्रार्थना करिए कि आपका वैवाहिक जीवन बेहतर रहे। इलायची को अपने पास रख लें और प्रसाद की तरह इलायची को खाते रहिएगा। अगर ये उपाय सावन के किसी भी मंगलवार को कोई विवाहिता महिला करती है तो उसका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। कार्यक्रम में चर्चा हमारी जारी है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब ये जानते हैं कि अगर वैवाहिक जीवन में समस्याएं काफी बढ़ चुकी हों, शादी टूटने की नौबत आ गई हो और रिश्ता दोबारा जुड़ नहीं पा रहा हो तो क्या करेंगे?

0: करिएगा भगवान शंकर और माता गौरी की संयुक्त पूजा करिएगा, भगवान शिव और माता पार्वती को वस्त्र अर्पित करें, अगर पीला वस्त्र हो तो बहुत उत्तम होगा, माता गौरी को सुहाग की सामग्री सिंदूर चूड़ी बिंदी आभूषण मेहंदी काजल शीशा आलता ये सब अर्पित करिए और इसके बाद ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का 11 माला जप करिएगा और जप करने के बाद ये प्रार्थना करिए कि वैवाहिक जीवन सुधर जाए, वैवाहिक जीवन टूटने से बच जाए। तो आज हमने बात की सावन के मंगलवार की और माता मंगला गौरी की। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर आपके घर में धन की बचत नहीं हो पा रही हो तो पूजा स्थान पर या पूजा स्थान वाले कमरे में या पूजा स्थान के पास धन रखना आरंभ कर दें, आपको लाभ होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 18 अगस्त 2026 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। सुबह के समय भगवान शिव को लाल फूल अर्पित करिएगा, घर से निकलते समय वो फूल अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
4: सावन के तीसरे मंगलवार को आज रखा जा रहा है मंगला गौरी व्रत। अखंड सौभाग्य के साथ सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना। बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर पुंछ में सुरक्षा के सख्त इंतजाम, आने जाने वालों पर सुरक्षा एजेंसी की पैनी नजर, यात्रा मार्ग पर कई जगह हो रही है सघन जांच। आज से यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 का हो रहा है आगाज, दिल्ली में जापानी प्रतिनिधि मंडल से मिलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, औद्योगिक विकास और निवेश पर होगा मंथन। यूपी पुलिस के एंथम खाकी का सितारा को बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन का सलाम, बोले कुछ सितारे आसमान में चमकते हैं कुछ खाकी पहनकर जमीन पर। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय युवा शटलर आयुष शेट्टी ने किया बड़ा उलटफेर, दुनिया के नंबर वन चीनी खिलाड़ी शी युकी को सीधे सेंटो में दी मात, पुरुष सिंगल्स के दूसरे दौर में मिली एंट्री।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
4: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत स्वागत है आपका
0: जी। नमस्कार।
4: तो चलिए आज के शो में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं क्रोध की समस्या की। आखिर क्रोध क्यों आता है और अगर ज्यादा क्रोध आता है तो इससे दूर रहने के उपाय क्या कुछ हैं, इसके बारे में जानेंगे आज पंडित जी से। लेकिन सबसे पहले वक्त हो चला है ये जानने का कि आज का गुडलक मंत्र क्या है।

0: चाहते हैं तो रोज सवेरे शिवलिंग पर दूर्वा यानी दूब घास और जल अर्पित करिएगा। अगर नित्य प्रातः ऐसा करें तो आपको बुरी आदत से छुटकारा जल्दी मिलेगा।
1: तो चलिए अब जान लेते हैं 18 अगस्त 2026 यानी मंगलवार का पंचांग क्या है।
0: दिनांक 18 अगस्त 2026 दिन मंगलवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, शाम के 5:50 तक, नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय शाम के 3 से 4:30 तक, उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
1: तो चलिए अब जान लेते हैं कि ज्योतिष में क्रोध आने के कारण क्या क्या होते हैं और किन ग्रहों से क्रोध की स्थिति देखी जा सकती है।
0: हम आज बात कर रहे हैं स्वभाव की एक समस्या के बारे में जिसे कहते हैं क्रोध, गुस्सा। ज्योतिष में क्रोध के कारण क्या हैं और किन ग्रहों से जान सकते हैं गुस्से के बारे में, क्रोध के बारे में। देखिए, चंद्रमा मन का स्वामी है और चंद्रमा की स्थिति देख करके मन को आप जान सकते हैं। चंद्रमा अगर कुंडली में कमजोर है तो मन और वाणी पर नियंत्रण नहीं रहता, और अगर चंद्रमा को साथ मिल जाए अग्नि तत्व के ग्रह का, जैसे मंगल का या सूर्य का, तो व्यक्ति सामान्यतः क्रोधी होता है। मंगल अगर कुंडली में नीच राशि में बैठा हो या अग्नि तत्व की राशि मेष, सिंह या धनु में बैठा हो तो व्यक्ति बहुत क्रोधी होता है। जिन लोगों का जन्म दोपहर का होता है सामान्यतः उनकी कुंडली में अग्नि तत्व की मात्रा ज्यादा होती है, ऐसे लोगों को भी काफी क्रोध आता है ऐसा देखा गया है। मेष, वृषभ, मिथुन, सिंह, धनु और कुंभ राशि वालों को आम तौर पर ज्यादा क्रोध आता है ऐसा देखा गया है।
1: और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का दैनिक राशिफल क्या है।
0: मेष राशि, छोटी यात्रा के योग आपके बन रहे हैं, धन का लाभ हो सकता है, परिवार में मंगल कार्य होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75। 70% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, चिंताएं समाप्त होंगी, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, पारिवारिक समस्या हल होगी, खान पान में सावधानी बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब आगे बढ़ते हैं शो में और पंडित जी से जान लेते हैं कि हाथ की रेखाओं के द्वारा कैसे क्रोध के बारे में जान सकते हैं।
0: देखिए, कुंडली के ग्रहों के अलावा आपकी हथेलियों को देखकर, आपके हाथ की रेखाओं को देखकर भी क्रोध के बारे में जान सकते हैं। कैसे जानेंगे? अगर हथेलियों का रंग काला हो या साफ ना हो तो व्यक्ति क्रोधी होता है। मंगल के पर्वत पर अगर क्रॉस हो या जाल हो तो भी व्यक्ति क्रोधी होता है। हाथ के बीचों बीच में या नीचे की तरफ अगर तिल हो तो भी ऐसे लोग क्रोधी होते हैं। अंगूठा अगर आपका छोटा हो या थोड़ा मोटापन लिए हुए हो तो ऐसे लोगों को बहुत जल्दी क्रोध आता है। ऐसे लोगों का अपने क्रोध पर काबू नहीं रहता।
1: और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि ऐसा कब होता है जब क्रोध की स्थिति बहुत ज्यादा विस्फोटक या खतरनाक हो जाती है।
0: देखिए, अलग अलग तरह का क्रोध होता है। कुछ क्रोध ऐसा होता है कि आदमी को आता है और आदमी उसको कंट्रोल कर लेता है। कभी कभी ऐसा होता है कि क्रोध की स्थिति बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है, बहुत ज्यादा विस्फोटक हो जाती है। कब होता है ऐसा? मंगल अगर बुध की राशि में बैठा हो तो ऐसे लोगों का अपने मन पर और अपनी बुद्धि पर कंट्रोल नहीं रहता। मंगल अगर बुध की राशि में हो तो क्रोध हिंसा का रूप ले लेता है। मंगल के ऊपर अगर शनि या सूर्य का प्रभाव हो तो व्यक्ति क्रोध में मार पीट और लड़ाई करता है। मंगल अगर मजबूत हो और चंद्रमा अगर कमजोर हो तो व्यक्ति क्रोध में अपना नुकसान कर लेता है। साढ़े साती जब चल रही होती है तो ऐसा देखा गया है कि क्रोध की वजह से व्यक्ति हिंसक हो जाता है और जब राहु का प्रभाव ज्यादा होता है तो व्यक्ति क्रोध में अपराध कर डालता है। मंगल और बुध का संबंध चंद्रमा का खराब होना और कुंडली में अग्नि तत्व की मात्रा ज्यादा होना ये क्रोध को भड़का देते हैं और आदमी क्रोध में आ करके बहुत बड़ी गलतियां अपराध या हिंसा कर बैठता है।
1: और अब वक्त हो चला है कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में जानने का।
0: कर्क राशि, क्रोध और वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, निर्णयों में जल्दबाजी ना करें, वैवाहिक जीवन में धैर्य बनाए रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा।

0: शिक्षा में सफलता मिलेगी, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, परिवार में शांति बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है आज का आपका सबसे पहला सवाल लेने का। पंडित जी, पहला सवाल आप किसका लेने वाले हैं?
0: जी, आज का पहला प्रश्न आस्था ने लिखा है, देहरादून से लिखती हैं। 9 अक्टूबर 1998 का जन्म है, 8:12 प्रातः, देहरादून, उत्तराखंड। ये कह रही हैं कि मैंने फिजिक्स की पढ़ाई की है, कब तक नौकरी लगेगी मेरी, किस क्षेत्र में लगेगी और विवाह कब तक होगा। आस्था, आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की और वृषभ राशि की, महादशा राहु की और अंतरदशा बुध की चल रही है। देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप एजुकेशन सेक्टर में जाएं, शिक्षा क्षेत्र में जाएं, तो उसमें बहुत अच्छा करियर बना सकती हैं और शिक्षा क्षेत्र में बहुत अच्छी नौकरी आपको साल 2027 में मिलेगी। विवाह होने का समय साल 2028 का आरंभिक समय है, उस समय आपके विवाह की संभावनाएं कुंडली में बन रही हैं। आप एक ओपल बनवा करके पहनिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आज का दूसरा सवाल ले लेते हैं। पंडित जी, दूसरा सवाल किसका रहेगा?
0: जी, अगला प्रश्न श्रीमती किरण श्रीवास्तव ने गोरखपुर से लिखा है। 8 अप्रैल 1970 का जन्म है, दोपहर के लगभग 12 बजे, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। ये पूछ रही हैं कि मैं मकान बनवाना चाहती हूं तो क्या जमीन लेकर मकान बनवाना ठीक होगा या बना बनाया फ्लैट खरीदना ज्यादा बेहतर होगा। किरण जी, आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की और राशि बनती है मेष, महादशा बृहस्पति की और अंतर दशा शुक्र की चल रही है। जमीन खरीद कर मकान बनवाने की संभावना आपकी कुंडली में ज्यादा है। साल 2027 में आप अपनी जमीन खरीद करके मकान बनवा पाएंगी और वो आपके लिए लाभदायक रहेगा। अपने बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर जीवन के लिए एक मोती बनवा के पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती की मोती, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करें, रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें तो आपको लाभ होगा।
1: और चलिए अब जान लेते हैं क्रोध की समस्या के बारे में। अगर क्रोध को कम करना है तो कौन से खान पान में किस तरह का सुधार करना चाहिए?
0: देखिए, आप अपने खान पान में अगर सुधार करें तो आपकी मानसिक स्थिति पर इसका बेहतर असर पड़ेगा और आपका क्रोध कम होगा। तो क्रोध कम करने के लिए खान पान में कैसा सुधार करें? प्याज लहसुन का प्रयोग अपने भोजन में कम से कम करें और अगर क्रोध ज्यादा आता हो तो कच्चा प्याज और कच्चा लहसुन बिल्कुल ना खाएं। दोपहर के भोजन में दही का प्रयोग जरूर करिएगा। रस वाले फल खाना आपके लिए बेहतर होगा और महीने में दो एकादशी पड़ती है, दोनों एकादशी का उपवास जरूर रखिए। अगर अपने खान पान में या जीवनचर्या में परिवर्तन करेंगे तो क्रोध को कंट्रोल कर पाना आसान होगा।
1: क्रोध कम करने या फिर क्रोध से बचने के लिए घर में किस तरह का सुधार करें, आप पंडित जी से ये भी जान लेते हैं।
0: देखिए, आप अपने घर में भी छोटे मोटे बदलाव कर सकते हैं जिससे आप क्रोध से बचें और आपका क्रोध कम हो जाए। किचन को हमेशा अपने साफ सुथरा रखिए, रसोई को हमेशा साफ रखें। घर में ऐसी व्यवस्था करें कि सूर्य का प्रकाश आए, थोड़ा बहुत ही आए लेकिन जरूर आए। घर में दोनों समय चंदन की सुगंध वाली अगरबत्ती या धूप बत्ती जलाइएगा। जो व्यक्ति क्रोधी है उसे आग्नेय कोण के कमरे में दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट के कमरे में नहीं रहना चाहिए। आप अपने घर में कुछ बदलाव करें, घर में पवित्रता बनाए रखें तो निश्चित रूप से आपका मन शांत होगा और आपका क्रोध कम होगा।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले जातकों का दैनिक राशिफल जान लेने का।
0: तुला राशि, तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

रखें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, मित्र के साथ अपने संबंध का ध्यान रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।

0: अब होगा, करियर की समस्याएं हल होंगी, करियर में सफलता मिलेगी। अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम में पंडित जी से ये जान लेंगे कि क्रोध को अगर कम करना है तो इसके लिए क्या कुछ उपाय।
0: आप अपने क्रोध को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने क्रोध पर नियंत्रण करना चाहते हैं तो क्या उपाय और करें? सूर्योदय के पहले उठने का प्रयास करिए और उगते हुए सूर्य को प्रातः काल जल चढ़ाइए। स्नान करते समय जल में गुलाब जल मिलाइए और उस जल से स्नान करिए। अगर आप शनि प्रधान हैं तो सलाह लेकर एक ओपल पहनिए, और अगर बृहस्पति प्रधान हैं तो सलाह लेकर एक मोती धारण करें। चांदी की एक चेन पूर्णिमा तिथि पर या शुक्ल पक्ष के सोमवार में अपने गले में धारण करें, आपको लाभ होगा।
1: और चलिए आगे बढ़ने से पहले मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का दैनिक राशिफल क्या है वो जान लेते हैं।
0: मकर राशि, करियर की समस्या आपकी हल होगी, मानसिक चिंता आपकी समाप्त होगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना।

0: काम पूरे होंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा, काम बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, रिश्तों की समस्या हो सकती है, करियर में कोई रिस्क कोई जोखिम ना लें, वाहन सावधानी से चलाएं, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है आज का आपका तीसरा सवाल लेने का, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर एक मेल आईडी दी गई है जिस पर आप मेल कर सकते हैं और पंडित जी तक अपना कोई भी सवाल पहुंचा सकते हैं, पंडित जी उसका जवाब जरूर देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पंडित जी, तीसरा सवाल आज का किसका रहेगा?
0: जी, अगला प्रश्न युवराज जी ने लुधियाना से लिखा है। 20 अक्टूबर 1974 का जन्म है, 4 बजे प्रातः, लुधियाना, पंजाब। ये कह रहे हैं कि भविष्य में मेरे करियर की स्थिति कैसी रहेगी और मेरी कुंडली में अशुभता क्या है, गड़बड़ी क्या है। युवराज, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और वृश्चिक राशि की, महादशा मंगल की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। देखिए, सिंह लग्न की कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है मंगल। मंगल की पोजीशन आपकी कुंडली में ठीक है, लेकिन चंद्रमा, सूर्य और शुक्र ये तीनों अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं, जिस वजह से नौकरी में उच्चाधिकारियों के साथ दिक्कत होगी और थोड़ी बहुत समस्या वैवाहिक जीवन में भी रह सकती है। आप एक मूंगा बनवा के पहनिए, 12-14 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में,

0: प्रश्न एक महिला ने नासिक महाराष्ट्र से लिखा है। 23 अप्रैल 2001 का जन्म है। 10:45 प्रातः नासिक महाराष्ट्र। ये कह रही हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूं, गवर्नमेंट जॉब मुझे कब तक मिलेगी और मेरा स्वास्थ्य अभी बेहतर नहीं रहता है तो मेरा स्वास्थ्य कब तक बेहतर होगा। देखिए आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और मेष राशि की, महादशा सूर्य की और अंतरदशा चंद्रमा की चल रही है। आपकी कुंडली में अमावस दोष है जिसकी वजह से मानसिक और शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं है, मन की समस्याएं कुंडली में ज्यादा दिखाई दे रही हैं। आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी करें, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें तो साल 2028 में आपको सफलता मिलेगी, ये संभावना आपकी कुंडली में बनती है। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 7-8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें, रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हुए पंडित जी से जान लेते हैं कि लोगों की ये मान्यता है, लोग ये मानते हैं कि क्रोध अगर ज्यादा आए तो मोती पहन लेना चाहिए, इससे जुड़ी सच्चाई क्या है?
0: जी देखिए, मोती जो है वो चंद्रमा का रत्न है, आपके मन को कंट्रोल करता है, तो कुछ मामलों में मोती पहनने से क्रोध के मामले में सुधार हो सकता है, लेकिन कुछ मामलों में ऐसा हो सकता है, हर मामले में नहीं। तो आप ये बिल्कुल मत समझिए कि हर मामले में जो क्रोधी आदमी है उसको मोती पहना देंगे तो उसको फायदा हो जाएगा। जिनकी कुंडलियों में चंद्रमा के कमजोर होने की वजह से क्रोध आता है, ऐसे लोगों को मोती पहनाने से लाभ हो सकता है। हर क्रोधी आदमी को मोती पहनाने से लाभ नहीं होगा।
1: और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन 18 अगस्त को है। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी बर्थडे, बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आपका आने वाला साल कैसा रहेगा।

0: 18 अगस्त को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में परिवर्तन और धन लाभ के योग बन रहे हैं, अविवाहितों का विवाह हो सकता है। इस साल पैसे के निवेश में, धन के इन्वेस्टमेंट में सावधानी रखिएगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर अगर हनुमान जी की उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है पंडित जी से आज की जिज्ञासा के बारे में जान लेने का।
0: आज की जिज्ञासा है कि सोमवार का व्रत रखने से किन किन मामलों में लाभ होता है। देखिए, अगर आप सोमवार का व्रत रखते हैं तो विवाह

0: विवाह और स्वास्थ्य के मामले में लाभ होता है। इस दिन दिन भर उपवास रख कर रात में शिव जी की पूजा करनी चाहिए और अगर आप चाहें तो सोमवार के उपवास के साथ इस दिन सफेद वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं।
1: और चलिए अब जान लेते हैं कि 18 अगस्त 2026 यानी कि मंगलवार का शुभ पहर क्या है।
0: दिनांक 18 अगस्त 2026 दिन मंगलवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान जी के सामने सुंदर कांड का पाठ करिएगा। आपके काम में और जीवन में जो रुकावटें आ रही हैं वो रुकावटें दूर हो जाएंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 18 अगस्त मंगलवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: और कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में आगे बढ़ते हुए अब पंडित जी से जान लेंगे आज की गुडलक राशि क्या है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग भगवान शिव की पूजा किस प्रकार करेंगे। आज की गुडलक राशि है धनु। आपको शिवलिंग पर नियमित रूप से लाल फूल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन का संघर्ष कम होगा।
1: और चलिए अब कार्यक्रम में जान लेते हैं कि आज के महा उपाय क्या कुछ हैं।
0: जी, आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आप लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं और कोई विशेष परीक्षा दे रहे हैं जिसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है तो क्या करेंगे। रोज सवेरे सूर्य भगवान को सादा जल प्लेन वाटर अर्पित करिएगा। सुबह और शाम कम से कम 27 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा और हर शनिवार की शाम को सुंदर कांड का पाठ करिएगा। साथ में मेहनत से अपनी तैयारी जारी रखिएगा, आपको परीक्षा में सफलता अवश्य मिलेगी।
1: तो पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों तक तमाम जानकारियों को पहुंचाने के लिए,
0: धन्यवाद।
1: और इसी के साथ गुड लक टुडे में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों को जानने के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: गाड़ी चलाते वक्त खराब सड़क पर गुस्सा तो हम सभी को आता है, कहीं गड्ढा बचाने के चक्कर में गाड़ी डगमगाती है तो कहीं ये गड्ढे हादसे की वजह बन जाते हैं, लेकिन गुस्सा करने के बाद हम अक्सर यही सोचकर चुप रह जाते हैं कि आखिर क्या किया जाए और क्या हो सकता है। लेकिन बेंगलुरु के एक इंजीनियर ने इसी सोच को बदलने की कोशिश की है और उन्होंने ऐसा सिस्टम तैयार किया है जो सड़क के गड्ढों को खुद पहचान सकता है और जिम्मेदार या लापरवाह तक आपको पहुंचा सकता है, यानी दर्ज कराने से लेकर जिम्मेदार व्यक्ति तक गड्ढों की जानकारी पहुंचने का काम काफी आसान हो गया है।

0: सड़कों पर ये गड्ढे अखिल भारतीय समस्या बन चुके हैं। ये गड्ढे न केवल आपका सफर बर्बाद करते हैं बल्कि गाड़ियों को खासा नुकसान भी पहुंचाते हैं। और फिर शुरू होती है शिकायतों की कभी न खत्म होने वाली कथा, जिसका कोई और छोर नहीं है। लेकिन बेंगलुरु के एक इंजीनियर ने समस्या का एक गजब का AI सॉल्यूशन खोज निकाला है। बेंगलुरु के इंजीनियर गौरव सेन ने ऐसा AI सिस्टम तैयार किया है जिसके जरिए न केवल गड्ढों की पहचान संभव है बल्कि गड्ढों के मरम्मत के जिम्मेदारों तक पहुंचना भी आसान हो गया है। दरअसल ये सिस्टम सड़क पर चलते हुए गड्ढों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करता है। कार में लगे डैश कैम, GPS और एक्सेलेरोमीटर से सड़क की जानकारी जुटाई जाती है, जिसके बाद AI विजन मॉडल तस्वीरों और वीडियो को स्कैन करके अलग अलग आकार के गड्ढों की पहचान करता है। खास बात यह कि सिस्टम उन गड्ढों को भी पहचान सकता है जिन्हें दूर से देखना मुश्किल हो, क्योंकि कई बार सड़क का गड्ढा स्पीड ब्रेकर जैसा दिखाई देता है। गौरव सेन ने कोडेक्स की मदद से ये ऐप तैयार किया है जो इस पूरे डेटा को रिकॉर्ड करके OpenAI तक भेजता है। लेकिन कहानी सिर्फ गड्ढे की पहचान तक सीमित नहीं है। सबसे बड़ा सवाल होता है, गड्ढा मिला है तो इसे ठीक कौन करेगा? इसके लिए ऐप को करीब 2900 सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स से जोड़ा गया। सिस्टम सड़क के किसी खास हिस्से की पहचान करके ये पता लगा सकता है कि उस सड़क का ठेका किस कंपनी या ठेकेदार के पास है। यानी अगर कोई सड़क वारंटी पीरियड में है तो ठेकेदार को बिना सरकार पर अतिरिक्त खर्च डाले सड़क की मरम्मत करनी पड़ सकती है। और ये पूरा रिकॉर्ड महज 4 सेकंड में तैयार हो सकता है, जिसमें गड्ढे की तस्वीर, उसकी सटीक लोकेशन, टेंडर नंबर और सड़क से जुड़े अधिकारी की जानकारी शामिल होती है। गौरव ने इस सिस्टम का टेस्ट ऑफिस जाते वक्त किया। एक सफर में AI ने उनकी राह में मौजूद 12 गड्ढों को पहचान लिया। गौरव सेन का ये प्रयोग अब बेंगलुरु से निकलकर सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। लोग गौरव के इस AI मॉडल की जमकर तारीफ कर रहे हैं। कुछ यूजर उसे ऐसा ऐप बता रहे हैं जो समस्या के साथ आपको सही समाधान तक ले जाता है। सड़क के गड्ढों के लिए AI से खोजा गया ये सॉल्यूशन बड़े काम का हो सकता है, क्योंकि देश में हर साल सड़क दुर्घटना में कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इनकी बड़ी वजह सड़क के गड्ढे भी होते हैं। हाल ही में लोकसभा में सड़क परिवहन मंत्रालय से सड़क हादसों को लेकर सवाल पूछे गए थे। सड़क और परिवहन मंत्रालय ने जो जवाब दिया है वो वाकई चिंताजनक है। केंद्र सरकार ने पिछले 5 सालों के आंकड़ों के आधार पर बताया कि हर साल सड़क दुर्घटना में कितने लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही ये जानकारी भी दी कि किस उम्र के लोग सड़क पर बने गड्ढों के कारण सबसे ज्यादा हादसों का शिकार हो रहे हैं। इन आंकड़ों में जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये कि सड़क दुर्घटना में सबसे ज्यादा जान गंवाने वाले 25 से 35 साल के लोग होते हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 सालों में गड्ढों से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में 53% की बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में जहां 3,564 लोगों की मौत सड़कों पर बने गड्ढे की वजह से हुई, वहीं साल 2021 में 3,625 लोगों की मौत का जिम्मेदार सड़क के गड्ढे बने। वहीं साल 2022 में 4,446 लोगों की मौत सड़क पर बने गड्ढे की वजह से हुई। इनमें से 54% से ज्यादा मौतें अकेले उत्तर प्रदेश में हुई, जो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य बनकर उभरा है। मंत्रालय को सौंपी गई राज्य पुलिस रिपोर्ट से लिए गए डेटा से पता चला कि आंध्र प्रदेश, बिहार और गोवा जैसे कुछ राज्यों ने 5 साल के समय में गड्ढों से जुड़ी कोई दुर्घटना या मौत की सूचना नहीं दी। ये आंकड़ा ये भी दिखाता है कि साल दर साल सड़क पर बने गड्ढों की वजह से लोगों की मौत हो रही है, लेकिन उन आंकड़ों में कमी नहीं आ रही। उल्टा हर गुजरते साल के साथ ही आंकड़ा बढ़ ही रहा है, जो मौजूदा सरकारों, प्रशासन और स्थानीय विभागों के लापरवाह रवैया को भी दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: आपने अक्सर ChatGPT से सवाल पूछे होंगे, जवाब तलाशे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने खोई हुई चप्पलें भी ChatGPT से ढूंढवाई हैं? सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन भारत में ऐसा ही एक दिलचस्प मामला सामने आया है। एक शख्स मंदिर गया था, पूजा की और बाहर आया तो उसकी चप्पलें गायब थी। सामने चप्पल जूतों का ऐसा ढेर था कि अपनी चप्पल पहचानना भी किसी मिशन से कम नहीं था, लेकिन जनाब ने हार नहीं मानी, सीधे ChatGPT की मदद ले ली।
2: अगर आप मंदिर जाएं और आपके फुटवेयर न मिले तो आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बार AI ट्राई जरूर करिएगा, क्योंकि अब वहां से आपको अपने फुटवेयर ढूंढने में मदद जरूर मिलेगी। दरअसल शुभांग बोरकर वो शख्स है जिन्होंने AI की मदद से ऐसा कर भी दिखाया है। ये AI वाली ट्रिक शुभांग के खोए फुटवेयर ढूंढने में खूब मददगार साबित हुई है। शुभांग ने मिनटों में AI की मदद से अपने जूते ढूंढ निकाले। गोवा बेस्ड शुभांग बोरकर पेशे से साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल है उन्होंने दरअसल उज्जैन महाकाल मंदिर के बाहर से ये वीडियो शूट किया, जिसमें जहां नजर डालिए जूते चप्पल ही दिख रहे हैं। जाहिर है इन फुटवेयर में से अपने वाला पहचानना शुभांग के लिए इतना आसान टास्क नहीं था। वो एक एक करके फुटवेयर देखते तब जाकर उनको अपना फुटवेयर मिलता। लेकिन देखिए चैट जीपीटी का कमाल, जिसकी मदद से शुभांग ने फुटवेयर्स की भीड़ में अपने वाला क्लॉग्स ढूंढ ही निकाला। शुभांग ने इंस्टाग्राम पर अपने वीडियो का नाम यूज्ड चैट जीपीटी टू फाइंड माय लॉस्ट क्लॉग्स रखा। इसके लिए सबसे पहले मंदिर के बाहर जहां जूते चप्पल रखे थे वहां से रैक और फुटवेयर एरिया की तस्वीरें ली। इसके बाद शुभांग ने अपने फुटवेयर क्लॉग्स की तस्वीर चैट जीपीटी पर अपलोड की। शुभांग ने AI से वो तस्वीर देखकर उनकी जोड़ी पहचानने में मदद करने और फिर फुटवेयर के बीच उनके क्लॉग्स को ढूंढने के लिए कहा। हालांकि एक तस्वीर से बात साफ नहीं हुई तो शुभांग ने फुटवेयर एरिया के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। वो एक के बाद एक तस्वीरें चैट जीपीटी को भेजते रहे, जिनमें सैकड़ों जूते चप्पल दिखाई दे रहे थे। चैट जीपीटी ने तस्वीरों को देखकर उनमें मौजूद जोड़ियों को शुभांग की भेजी हुई क्लॉग्स की तस्वीर से मिलाने की कोशिश की। धीरे धीरे अपनी खोई हुई चप्पल ढूंढने का ये मामला एक छोटे से रियल वर्ल्ड AI एक्सपेरिमेंट जैसा बन गया। कई तस्वीरें देखने और उनका विश्लेषण करने के बाद चैट जीपीटी ने एक ऐसी जोड़ी की तरफ इशारा किया जो शुभांग के क्लॉक से मिलती जुलती दिखाई दी। फिलहाल तो सोशल मीडिया पर फुटवेयर खोजने की शुभांग की ये AI ट्रिक लोगों को पसंद भी आ रही है। यानी जिस क्लॉक्स को शुभांग खुद सैकड़ों जूते चप्पलों के बीच तलाश रहे थे, उसे उनके साथी बने AI ने ढूंढ निकाला। यानी इस काम में चैट जीपीटी का इस्तेमाल किसी बड़ी रिसर्च या तकनीकी काम में नहीं, बल्कि एक बेहद सामान्य सी परेशानी को सुलझाने में किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: और चलिए अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसका इंतजार सिर्फ बॉलीवुड को ही नहीं बल्कि करोड़ों दर्शकों को भी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं नमित मल्होत्रा की रामायण की। दो पार्ट में बन रही इस फिल्म का बजट 4,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताया जा रहा है। यानी फिल्म का पैमाना जितना बड़ा है उतनी ही बड़ी है इसकी प्लानिंग। अब मेकर्स ने रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है और यहीं से शुरू होती है एक बड़ी कहानी, क्योंकि रामायण 6 नवम्बर को इंटरनेशनल मार्केट में रिलीज होगी जबकि भारत में दिवाली पर यह दस्तक देगी।
3: तुम्हारा नया

0: भारतीय सिनेमा के सबसे ग्रैंड प्रोजेक्ट में से एक रामायण, जिसने रिलीज से अरसे पहले ही सुर्खियां बटोरना शुरू कर दिया है। देश से लेकर विदेश तक, आम जन से लेकर खास तक, समाज के हर तबके, हर वर्ग तक रामायण पहुंच पाए, इसके लिए मेकर्स एक खास प्लानिंग के तहत काम कर रहे हैं।
1: जब जब सृष्टि पर संकट आया है, भगवान विष्णु ने अवतार लेकर उसकी रक्षा की।
0: मेकर्स की प्लानिंग का एक ही अहम हिस्सा है फिल्म की रिलीज डेट। रामायण पार्ट 1 दीपावली पर रिलीज होनी है, ये तय है, लेकिन किस तारीख को रिलीज होगी ये अब तक पुख्ता तौर पर तय नहीं था। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में रामायण की रिलीज डेट 30 अक्टूबर बताई जा रही थी, लेकिन कन्फर्म कुछ भी नहीं था।
2: विश्व कल्याण के लिए यदि मेरा अंत भी हो जाए तो भी मुझे स्वीकार।
0: अब रामायण के मेकर्स ने काफी सोच समझ कर रामायण की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है।
2: निर्णय मैं ले चुका हूं, एक पुत्र होने के नाते अपने पिता के वचन का पालन करना मेरा कर्तव्य है।
3: तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास।
0: 6 नवंबर यानी दिवाली से 2 दिन पहले रामायण पार्ट 1 वर्ल्ड वाइड रिलीज की जाएगी। इससे मेकर्स को 2 हफ्ते का दमदार रिलीज पैसेज मिलने जा रहा है। इसे जानने के लिए इस तारीख की क्रोनोलॉजी समझनी होगी।
3: एक है और भाग्य में जो भी लिखा है मुझे स्वीकार है।
0: 6 नवंबर को शुक्रवार है और इसी दिन धनतेरस भी है। 7 नवंबर को शनिवार है यानी वीकेंड, छुट्टी का दिन होने से इसे भरपूर दर्शक भी मिलेंगे। 8 नवंबर को रविवार है और दीपावली भी है, जिसका फायदा फिल्म को फैमिली ऑडियंस के तौर पर मिल सकता है। 9 नवंबर को सोमवार है। 10 नवंबर को गोवर्धन पूजा होगी, कई दफ्तरों में उस दिन छुट्टी होती है। और 11 नवंबर यानी बुधवार को भाई दूज का त्योहार है। 13 नवंबर यानी शुक्रवार से दूसरे हफ्ते से वीकेंड शुरू हो जाएगा। मतलब ये कि रामायण को न सिर्फ बम्पर ओपनिंग मिल पाएगी बल्कि 2 दमदार वीकेंड भी, यानी फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर राज करने के लिए अच्छा खासा वक्त मिलने जा रहा है।
3: सूटनखा, वो मोहित हो गई है आप पे।
4: राम से प्रतिशोध लिया जाएगा सूटनखा।
0: हालांकि ओवरसीज में रामायण की राह इतनी आसान नहीं रहने वाली। 5 नवंबर हॉलीवुड फिल्म गॉडजिला माइनस जीरो रिलीज होगी, मतलब 6 नवंबर को इसका सामना रामायण से होगा। गॉडजिला एक पॉपुलर फ्रेंचाइज है, इसलिए रामायण को क्लैश झेलना पड़ सकता है। लेकिन भारत में रामायण को एक छत्र राज मिल सकेगा, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: और चलिए अब नजर डाल लेते हैं उन वायरल वीडियोस पर जिन्हें सोशल मीडिया पर बेहद पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ आपको गुदगुदाएंगे तो कुछ आपको इमोशनल कर जाएंगे।
6: एक बॉल है जिसे सब तक पहुंचनी है, लेकिन एक एक कर जिसके हाथ में गेंद आएगी उसे अपने सामने वाले को पास करना है, लेकिन उछाल कर नहीं, जाकर उसके हाथों में सौंपना है, वो भी खास तरीके से। बच्चे जिस तरह से मेंढक की तरह कूद कूद कर अपना टास्क पूरा कर रहे हैं वो देखना दिलचस्प है। दांत तो
7: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हमें अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे,
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
5: सावन के तीसरे मंगलवार को आज रखा जा रहा है मंगला गौरी व्रत, अखंड सौभाग्य के साथ सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना।

0: Vanessa Gandia. यूपी पुलिस के एंथम खाकी का सितारा को बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन का सलाम, बोले कुछ सितारे आसमान में चमकते हैं, कुछ खाकी पहनकर जमीन पर। भारी बारिश के चलते यूपी के भदोही में आज 12वीं तक के सभी स्कूल बंद, दिल्ली यूपी बिहार समेत 19 राज्यों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
0: उम्मीदों भरे पहर की खुशो भरी शुरुआत, सुप्रभात, मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत, नई सुबह नई आशा, गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पूजा। बिना रुके बिना थमे अगले घंटे गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की उन 5 खबरों पर जिनमें इंडिया के लिए शुभ समाचार।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
0: शुभ समाचार की शुरुआत, सावन में शिव शक्ति दर्शन के साथ होगी। महादेव के इस प्रिय महीने में देश भर के शिव मंदिरों में आस्था के अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। सावन महीने का तीसरा मंगलवार है, ऐसे में आज महिलाएं पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मंगला गौरी व्रत रख रही हैं। तो सावन के ये रंग भी आगे आपको दिखाएंगे।
2: बात बूढ़ा अमरनाथ यात्रा की भी होगी, जिसमें काफी उत्साह नजर आ रहा है। इस यात्रा का पहला जत्था जम्मू से पुंछ पहुंच चुका है और इस जत्थे में शामिल भक्त प्राचीन बाबा बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में बाबा चट्टानी के दर्शन का सौभाग्य मिलने को लेकर बहुत ही ज्यादा उत्साहित दिख रहे हैं। तो ये उत्साह भी आगे आपको दिखाएंगे।
0: तो साथ ही बात राखी की भी होगी। राखी के त्योहार में अभी एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त है, लेकिन बाजारों में राखी की रौनक अभी से दिखने लगी है। इस बार राखी की ढेरों वैरायटी बाजार में मौजूद है। तिरंगे वाली राखियों से लेकर कृष्णा खाटू श्याम राखी भी खूब ज्यादा पसंद की जा रही है। इसके अलावा बच्चों के लिए कार्टून वाली राखियां भी मौजूद है, तो ये राखियों के रंग भी आगे होंगे आपके सामने।
2: वहीं बिग बी ने पुलिस को सलाम किया है। दरअसल आखिर ऐसा क्या हुआ, पूरी कहानी आगे आपको विस्तार से बताएंगे।
0: इसके अलावा आपको बैडमिंटन कोर्ट भी लिए चलेंगे। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में युवा शटलर आयुष शेट्टी ने बड़ा उलटफेर किया। उन्होंने दुनिया के नंबर वन चीनी खिलाड़ी शी युकी को सीधे सेंटों में मात दे दी है। वहीं टूर्नामेंट में पीवी सिंधु ने भी जीत से शुरुआत की। कैसे दिखाया उन्होंने दम, आगे आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है सुबह 9 बजे की नौ गुड न्यूज का।
2: जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में स्थित प्राचीन बाबा बूढ़ा अमरनाथ मंदिर की वार्षिक यात्रा का पहला जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच पुंछ आधार शिविर पहुंच गया है। बेस कैंप पहुंचने पर भक्तों का भव्य स्वागत किया गया। वहीं हर हर महादेव के जयकारों से पूरा शहर गूंज उठा। आज दूसरे दिन श्रद्धालु अमरनाथ मंदिर में दर्शन कर रहे हैं।
0: जयपुर में गालाविश्व की तपोस्थली गलता तीर्थ धाम में श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराई गई। आसमान से बरसते फूलों के बीच श्रद्धालुओं ने जयकारे लगाए तो गलता धाम भक्तिमय माहौल में डूब गया।
2: राजस्थान के धौलपुर में 11,000 पौधों की कांवड़ यात्रा निकाली गई। इसका मकसद पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देना था। गायत्री परिवार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए बैंड बाजे के साथ निकाली गई इस अनूठी कांवड़ यात्रा में 5100 छात्र छात्राओं के साथ ग्रामीणों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने हरियाली बचाने का संकल्प भी लिया।
0: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का एक वीडियो खूब चर्चा में है। इसमें वो लोगों के साथ खेतों में हल चलाते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि हाल ही में जशपुर में अपने गांव बगिया पहुंचे थे, वहीं उन्होंने दूसरे किसानों के साथ खेतों में हल चलाया।
2: छत्तीसगढ़ के दुर्ग में अब ऑटो और ई रिक्शा से सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दुर्ग पुलिस ने नई पहल शुरू की है। इसके तहत सड़कों पर चलने वाले ऑटो और ई रिक्शा में QR कोड लगाए जाएंगे। इसके लिए ऑटो रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू किया गया है। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद प्रत्येक ऑटो और ई रिक्शा को एक QR कोड उपलब्ध कराया जाएगा। इस QR कोड के जरिए वाहन और उसके चालक से संबंधित आवश्यक जानकारी पुलिस के पास सुरक्षित होगी।
0: अब पंजाब के लोगों को पैरासेलिंग और वाटर स्पोर्ट्स के लिए गोवा जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पंजाब के प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में पहचान बन चुके पठानकोट के रावी दरिया पर बने डैम की चमरोड़ झील में अब ये सारी सुविधाएं मिलने जा रही हैं। मिनी गोवा के नाम से मशहूर यहां के चमरोड़ में सैलानियों के लिए पैरासेलिंग की सुविधा शुरू की गई है।
2: वहीं उत्तराखंड के ऋषिकेश में उफनती बीन नदी के बीच फंसे दो लोगों को SDRF के जवानों ने सुरक्षित बचा लिया। लगातार बारिश के बीच ये साहसिक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसका वीडियो सामने आने के बाद जवानों की बहादुरी की हर तरफ तारीफ हो रही है।
0: बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में पीवी सिंधु ने भी जीत से शुरुआत की। सिंधु ने विमेन सिंगल्स के पहले राउंड में आयरलैंड की सोफिया नोबल को 29 मिनट में 21-7, 21-11 से हराया। दूसरे राउंड में सिंधु का मैच कनाडा की वेन यू झांग से होगा।
2: प्रेम कीटाणु का टीजर जारी हो गया है। अपूर्व सिंह कार्की के निर्देशन में बनी ये फिल्म कॉलेज रैगिंग दोस्तों के साथ यारी दोस्ती और इश्क मोहब्बत की मजेदार कहानी से भरपूर नजर आती है। फिल्म में उनके अलावा अपार शक्ति खुराना और साथ ही आफिया और राकेश बेदी अहम रोल में नजर आएंगे। प्रेम कीटाणु 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक देगी।

0: शुभ समाचार की शुरुआत करेंगे शिव शक्ति के पर्व सावन से। आज के सावन महीने में तीसरा मंगला गौरी व्रत है, यानी शिव शक्ति की साधना और आस्था का पर्व। देशभर के शिवालय में भक्ति का रंग चढ़ा है। सोमनाथ में बाबा के धाम को भव्य तरीके से सजाया गया है तो भगवान को भोग भी अर्पित किया गया। वहीं उत्तर भारत के बिहार और झारखंड में कांवड़ यात्रा का अलग ही रंग नजर आ रहा है। कहीं कांवड़ को अनोखी थीम से सजाया गया है तो कहीं कांवड़ के जरिए प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। यानी सावन में आस्था के साथ रचनात्मकता और सामाजिक संदेश भी कांवड़ यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं।
1: सौराष्ट्र सोमनाथम सावन में सोमनाथ मंदिर भव्य और दिव्य आभा से जगमगा रहा है। बाबा सोमनाथ के शिवलिंग का विधि विधान से पूजन हुआ, आरती हुई, विशेष श्रृंगार किया गया। सावन के इस पावन अवसर पर महादेव को तरह तरह के पकवानों का भोग अर्पित किया गया है। मंदिर में हर तरफ भक्ति और आस्था का अद्भुत रंग नजर आया है कि मानो सावन की हर बूंद हर हर महादेव के जयघोष के साथ भक्तों को भोलेनाथ की भक्ति में रंग रही हो। एक दिन पहले सावन के तीसरे सोमवार पर करीब 1,75,000 शिव भक्तों ने सोमनाथ के दर्शन भी किए।

रोशनी और फूलों से सजा सोमनाथ मंदिर मानव भक्ति के रंग में पूरी तरह से रंग गया हो। मंदिर की भव्य सजावट इसकी दिव्यता को और ज्यादा बढ़ा रही है। हर तरफ आस्था, हर तरफ शिवमय वातावरण। सावन में बाबा सोमनाथ के दरबार की मनमोहक छटा श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींच रही है।

0: तो भगवान शिव के प्रिय सावन महीने का आज तीसरा मंगलवार है, यानी आज महिलाएं पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ मंगला गौरी व्रत रखती हैं। ज्योतिष के मुताबिक मंगला गौरी व्रत विशेष रूप से अखंड सौभाग्य, दाम्पत्य जीवन में सुख और शांति के साथ सुयोग्य वर और उसकी प्राप्ति के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। तो सावन में इस व्रत की महिमा और विधान पर देखिए खास रिपोर्ट।
1: सावन के पवित्र महीने में मंगलवार का दिन बेहद खास माना जाता है। सावन में जिस तरह सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है, उसी तरह मंगलवार को माता गौरी यानी कि माँ पार्वती की आराधना की जाती है। आज सावन का तीसरा मंगलवार गौरी व्रत रखा जा रहा है। मान्यता है कि इस खास मौके पर माता गौरी और भगवान शिव की आराधना से वैवाहिक जीवन में सुख शांति और खुशहाली आती है। इसके अलावा विवाह योग युवतियों के अच्छे जीवन साथी की मनोकामना पूरी होती है। पवित्र सावन महीने में मंगला गौरी व्रत को रखने वाली महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। मान्यता है कि अगर संतान प्राप्ति की इच्छा से ये व्रत किया जाए तो जल्द ही संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। इस व्रत को कुंवारी लड़कियों के लिए भी बहुत फलदायी माना गया है। मंगलवार के दिन विधि विधान से माता की आराधना से अच्छे जीवन साथी का आशीर्वाद मिलता है। मंगला गौरी व्रत कुंडली में मौजूद मांगलिक सहित अन्य दोषों से मुक्ति दिलाता है। विवाह में होने वाली देरी के अलावा इस व्रत से वैवाहिक जीवन में आने वाली समस्याएं भी दूर होती हैं। सावन का तीसरा मंगला गौरी विशेष योग बना रहा है। 16 श्रृंगार कर जो भी सुहागिन इस व्रत को रखती है और श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करती है, उन्हें विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत के दौरान सात्विक आहार लेने का विधान है। व्रती अपने फलहार में कुछ खास चीजों का सेवन कर सकती हैं। मंगला गौरी व्रत में कुट्टू या सिंघाड़े की पूरी और पराठे बनाए जा सकते हैं। व्रत में आलू, लौकी और कद्दू का सेवन भी कर सकते हैं। फलहार बनाने के लिए सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। साबूदाने की खिचड़ी या फिर खीर का भी सेवन किया जा सकता है। व्रत के दिन सेब, केला, पपीता समेत दूसरे मौसमी फलों का सेवन कर सकते हैं। मंगला गौरी व्रत के दौरान सुबह और शाम दिन के दोनों पहर में पूजा विधान है। साथ ही जो महिलाएं सुहाग सामग्री दान करती हैं, उन पर माता की विशेष कृपा होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: सावन का महीना कावड़ यात्रा के रंगों से गुलजार रहता है। इस महीने में अलग अलग तरह के कावड़ देखने को मिलते हैं, लेकिन राजस्थान के धौलपुर जिले में एकदम अलग और अनूठी कावड़ यात्रा निकाली गई। देखिए, और हरियाली को बढ़ावा देने के मकसद से बसई नवाब कस्बे में पौधों के साथ कावड़ यात्रा निकाली गई और इसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। इस विशेष कावड़ यात्रा में 11 ग्राम पंचायतों के ग्रामीण समेत 5100 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। सभी ने पौधे की कावड़ बनाकर उसे अपने कंधे पर रखकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है और हरियाली बनाए रखने का संकल्प भी लिया। इस कावड़ यात्रा के 11,000 पौधों को स्कूली बच्चे और ग्रामीणों के बीच बांटा गया। इस मौके पर सभी ने पौधों की परवरिश करने की शपथ भी ली। इस कावड़ यात्रा के माध्यम से गायत्री परिवार ने एक व्यक्ति एक पौधा लगाने के साथ ही पर्यावरण को स्वच्छ और हरा भरा बनाने में योगदान करने का संदेश दिया।

सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति, हरियाली और उत्सवों का पवित्र और प्रिय महीना माना जाता है। इस महीने में विशेषकर कावड़ यात्रा की भव्य छटा देखने को मिलती है। इस बार भी बिहार के मुंगेर में कावड़ मार्ग पर कई भव्य रंग देखने को मिल रहे हैं।

0: सावन के महीने में कावड़ पथ की रौनक देखते ही बनती है। बिहार के मुंगेर में हर दिन असरगंज कच्ची कावड़िया पथ पर आस्था और उत्साह का संगम दिखता है। बम बम भोले और हर हर महादेव का जय घोष करते हुए बड़ी संख्या में शिव भक्त अनोखी छटा बिखेरते हुए बैद्यनाथ धाम की ओर बढ़ते दिखते हैं। ये दृश्य हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब इस तस्वीर को ही देखिए, इसमें भक्त अपने आराध्य को कंधे पर विराजमान कर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। भोलेनाथ अपने भक्तों के भाव देखते हैं, उनके प्रति अपने अगाध आस्था को प्रदर्शित करने के लिए भक्त बाबा को चश्मा मुकुट सबसे पूरी तरह सजाकर दिव्य रूप में अपने साथ ले जा रहे हैं। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से आया कांवड़ियों का ये दल सुल्तानगंज से जल भरने के बाद झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर जल अर्पित करने बढ़ता चला जा रहा है।
1: हम लोग अयोध्या से चलकर यहाँ सुल्तानगंज आए और बाबा भोलेनाथ के दरबार में जा रहे हैं। बाबा का ये जो रूप है बहुत ही निराला हम लोगों को लगा, इसीलिए बाबा को इस गेटअप में हम लोगों ने तैयार किया है। चश्मा लगा के हम लोग ले चल रहे हैं, खुद चश्मा लगाते हैं और बाबा को भी चश्मा लगा के लेके चल रहे हैं।
0: आस्था की इसी यात्रा में कोई कंधे पे कांवड़ उठा रहा है तो कोई अपने बच्चों को बंगी में लेकर बाबा के दरबार की ओर बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल निवासी शिव भक्त अपने 7 महीने के बेटे को बांगी में बैठाकर बाबा की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, तो प्रयागराज निवासी शिव भक्त अपनी 2.5 साल की बिटिया को गमछे से बनी बांगी में लेकर जा रहे हैं। सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर लगभग 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके भक्त देवघर पहुंचते हैं और भगवान भोले शंकर को जल अर्पित करते हैं। इस दौरान कांवड़ मार्ग में शिव भक्तों के लिए की गई व्यवस्थाएं उनकी राह आसान कर देती है।
2: बहुत अच्छा है, लाइट है और निःशुल्क जल सेवा भी है, शौचालय है, सुलभ शौचालय, मेडिसिन वगैरह भी मिल रही है, और क्या ही चाहिए, ये तो काफी है।
0: बैद्यनाथ धाम की महिमा अपरंपार मानी जाती है। यहाँ सावन के पूरे महीने कांवड़ियों की भीड़ रहती है, विशेषकर सोमवार को बाबा पर जल अर्पित करने के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ता है।
3: जो हमारे ज्योतिर्लिंग में द्वादश ज्योतिर्लिंग में एक हमारे ऐसे ये 5वां है और यहाँ पे शिव और शक्ति के ऊपर साथ में विराजमान है शिव। एक ऐसा शिव है जहाँ पे सिंदूर भी चढ़ता है, चूंकि शक्ति होने के कारण ये परंपरा बनी हुई है। और यहाँ पे एक चीज खास ये है, और जगह में सब आप त्रिशूल देखेंगे लेकिन यहाँ बाबा वैजनाथ के ऊपर पंचूर देखेंगे, इनका एक अलग ही महत्व रहा है। और हम लोग अपने जीवन में उसको बहुत हमें देखने को मिला है कि इनकी कृपा सब पर बनी रहती है और आगे भी बनी रहे हर हर महादेव।
0: बैद्यनाथ धाम में सावन ही नहीं बल्कि भादों के महीने में भी कांवड़ियों और शिव भक्तों का तांता लगा रहता है। सावन जहां मुख्य कांवड़ मेला मास माना जाता है, वहीं भादो मास में भी श्रद्धालु और डाक कांवड़िए बाबा का जलाभिषेक करने के लिए पहुंचते हैं। मुंगेर से गोविंद कुमार और देवघर से शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: और जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आस्था की दिव्य यात्रा जारी है। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था जम्मू से पुंछ पहुंच चुका है। इस जत्थे में शामिल भक्त प्राचीन बाबा बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में बाबा चट्टानी के दर्शन का सौभाग्य मिलने को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित दिख रहे हैं।
0: आस्था की यात्रा की ये दिव्य रंग है। जम्मू से चलकर जब बूढ़ा अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था पुंछ पहुंचा तो भक्तों का जोश देखते ही बन रहा था। भक्ति भाव से झूमते हुए वो अपनी खुशी जता रहे थे। सोमवार 17 अगस्त की सुबह उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जब यात्रा को हरी झंडी दिखाई, उसके बाद जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से जब पहला जत्था पुंछ के लिए रवाना हुआ तो उस वक्त भी शिव भक्त अपने पूरे रंग में नजर आए। हर हर महादेव का जय घोष करते हुए जब जत्था रवाना हुआ तो बस में भी वो झूमते गाते दिखे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच से गुजरते हुए जम्मू से रवाना हुआ बूढ़ा अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था पुंछ पहुंचा। बूढ़ा अमरनाथ प्राचीन मंदिर से पहले कॉलेज ग्राउंड में पहुंचने पर जत्थे में शामिल यात्रियों का जिला प्रशासन के साथ ही यहाँ के लोगों ने भव्य स्वागत किया। पुंछ का ये कॉलेज ग्राउंड बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए मेन बेस कैंप है, जहां यात्रियों के ठहरने, खाने से लेकर सभी तक की सुविधाओं के साथ ही सुरक्षा की भी कड़ी व्यवस्था की गई है। पहले जत्थे में शामिल 2041 यात्री यहां पहुंचकर बाबा चट्टानी के दर्शन करने को लेकर बहुत ही उत्साहित दिखे।
2: बूढ़ा अमरनाथ के यात्रा के बारे में सुना था, हमारे दादा दादी ने हमें प्रायोजित किया कि तुम यहां पे जाके आओ, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो हमने ट्राई किया एंड मैं मन से ये कहना चाहती हूँ कि मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है।
0: बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुँच रहे हैं। 12 दिनों की इस यात्रा में अलग अलग जत्थों में यात्री रवाना किए जाएंगे। पहले जत्थे के पुंछ पहुंचने के दौरान यात्रा मार्ग में जगह जगह चाक चौबंद सुरक्षा नजर आई। पुंछ पहुंचने के बाद श्रद्धालु प्राचीन बूढ़ा अमरनाथ मंदिर के पास पहले पुल सत्य नदी में पवित्र डुबकी लगाते हैं। इसके बाद मंदिर पहुंचकर दर्शन करते हैं। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा सांप्रदायिक सौहार्द का अनूठा प्रतीक है। इस मुस्लिम बहुल इलाके में स्थित प्राचीन मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था में मुस्लिम समुदाय के लोगों की भूमिका अहम रहती है। सावन पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन यहाँ मेला लगता है और उसी के साथ इस वर्ष 28 अगस्त को 12 दिवसीय ये बूढ़ा अमरनाथ यात्रा संपन्न हो जाएगी। जम्मू से राय कपूर और पुंछ से मंजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: राखी के त्योहार में अभी एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त है, लेकिन बाजारों में राखी की रौनक अभी से देखने लगी है। दरअसल इस बार राखी की ढेरों वैरायटी बाजार में नजर आ रही हैं। तिरंगे वाली राखियों से लेकर कृष्णा, खाटू श्याम भी खूब पसंद की जा रही हैं। बच्चों के लिए कार्टून वाली राखियां मौजूद है। देखिए बाजारों में राखी की रौनक पर ये रिपोर्ट।
0: कहीं राखी पर बाबा खाटू श्याम की तस्वीर तो कहीं फूलों से सजी राखियाँ। भाई बहन के रिश्तों में प्यार भरने के लिए कार्टून कैरेक्टर भी तैयार है। रक्षाबंधन अब कुछ ही दिन दूर है और खूबसूरत राखियों से सज गए हैं बाजार। इस बार खाटू श्याम और तिरंगा वाली राखियों की बाजार में खासी डिमांड है। राखियों के डिजाइन में इस बार कुछ अनोखे प्रयोग भी किए गए हैं। बच्चों के पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर भी इस बार राखियों पर दिख रहे हैं। छोटे बच्चों के लिए लोग ऐसी राखियां ही खरीद रहे हैं।
5: इस बार भैया बच्चों के पैटर्न्स बहुत ज्यादा अच्छे आए हैं। नए नए डिजाइन, बच्चों की वैरायटी में बहुत ज्यादा पैटर्न, कॉम्बो की वैरायटीज बहुत ज्यादा आई है इस बार।
6: बच्चों में भी पोकेमॉन वगैरह,
5: बच्चों के अंदर पोकेमॉन, डोरेमोन, कृष्णा जी, लगभग सब वैरायटी है। लबूबू डॉल का ज्यादा क्रेज चल रहा है, जैसे उस टाइप की राखियां बहुत आई है इस बार।
6: खाटू श्याम
5: की बहुत सारे पैटर्न्स आए, बहुत सारे आर्टिकल्स आए उनके।
0: इस साल रक्षाबंधन 28 अगस्त को मनाया जाएगा। त्योहार में अभी एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त है, लेकिन बाजारों में रक्षाबंधन की रौनक अभी से दिखने लगी है। जिन बहनों के भाई दूसरे शहर या देश में रहते हैं, उन्हें डाक से राखी भेजने के लिए बहनें अभी से राखी खरीद रही हैं।
7: इस बार बहुत अच्छा है, जैसे कि इन्होंने 15 अगस्त के हिसाब से भी बहुत अच्छा कलेक्शन लग रहा है। बैंक्स वगैरह और कृष्ण जी वगैरह, भगवान से रिलेटेड बहुत सारी राखियां।
0: हर राखी अपने आप में खास होती है, लेकिन अहमदाबाद की इन राखियों में देश प्रेम और समाज सेवा का संदेश छिपा है। कुछ राखियों में तिरंगे की छटा दिख रही है तो कुछ में स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ी अहम जानकारियां हैं। कहीं इमरजेंसी सपोर्ट नंबर का जिक्र है तो कहीं मन की बात में प्रधानमंत्री के नशा मुक्त से जुड़े संदेश को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। खास बात ये है कि ये राखियां सामाजिक समरसता का भी पैगाम दे रही हैं।
8: 50 साल सी मैं ये दुकान के अंदर भागीदार हूँ। पहले मेरा राधेश्याम गुप्ता जी पार्टनर थे, अभी उनका लड़का सुनील गुप्ता मेरा पार्टनर है और उनके साथ मिलके राम रहीम की जोड़ी का एक पैगाम दुनिया को पहुँचाते हैं कि अभी मैं मुस्लिम होते हुए भी हिंदू बहनों के लिए राखियाँ बनाता हूँ। जिसे इस बार मैंने तिरंगा की राखी के अंदर भी राखियां बनाई कि हर घर घर तिरंगा लहराएगा, इसी तरह ये तिरंगा के अंदर सारे जहां से अच्छा हिंदू सीखा हमारा। उसके बाद मन की बात में जो प्रधान मोदी जी ने कहा है कि 100 सप्ताह मेरा ये व्यसन मुक्ति अभियान चलेगा, तो उनके दिमाग में मेरी जो बात थी वो बैठ गई और मैंने उनके लिए लाखों की तादाद में राखियां व्यसन मुक्ति की बनाई है।
0: सावन माह की पूर्णिमा पर मनाया जाने वाला रक्षाबंधन पर्व भाई बहन के रिश्तों को प्रेम के एक अटूट बंधन से जोड़ता है। इस त्योहार को खास बनाने के लिए बहनें अपने भाइयों की पसंद का ख्याल रखते हुए खास राखियां बाजार से खरीद कर लाती हैं। इस बार बाजार में पारंपरिक राखियों के साथ इको फ्रेंडली और अनोखे डिजाइन वाली राखियां इस त्योहार की खूबसूरती को और बढ़ा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।

0: उधमपुर में स्कूली छात्राओं ने सीआरपीएफ जवानों को राखी बांधकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया। ये छात्राएं जम्मू कश्मीर हाईवे की सुरक्षा में तैनात जवानों के पास पहुंची और राखियां बांधकर मिठाइयां भी खिलाई। इन छात्राओं ने जवानों के लिए अपने हाथों से राखियां बनाई थी। राखी बांधने के साथ ही छात्राओं ने जवानों को देश की हिफाजत के लिए शुक्रिया भी कहा। बहनों से राखियां बंधवाकर जवानों के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। अपना फर्ज निभाने के लिए अपने परिवार से दूर इन जवानों के लिए भी ये लम्हा यादगार बन गया।
1: वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में काशी के सभी 84 गंगा घाटों की सीढ़ियां जलमग्न हो चुकी हैं। हालात ये है कि घाट पर अब लोगों के लिए जगह बेहद सीमित रह गई है, जिसके चलते विश्व प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती का स्थान एक बार फिर से बदल गया। सोमवार शाम पांचवी बार आरती अपने निर्धारित स्थान की बजाय गंगा सेवा निधि के कार्यालय की छत पर की गई। 7 अर्चकों ने विधि विधान और परंपरा के मुताबिक मां गंगा की आरती की।

0: देहरादून में बाढ़ के बीच फंसे छह छात्रों के लिए एसटीआरएफ के जवान देवदूत बनकर पहुंचे। सभी छह छात्रों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। असल में विश्वविद्यालय के ये छह छात्र ट्रैकिंग के लिए स्वर्णा नदी क्षेत्र में गए थे। वापस लौटते वक्त अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते स्वर्णा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा। नदी का पानी बढ़ने के कारण सभी छह छात्र जंगल में ही फंस गए। हालात बिगड़ते देख इसकी सूचना एसडीआरएफ को दी गई। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंची, जहां एसडीआरएफ के जवानों ने करीब 6 किलोमीटर तक पैदल ट्रैकिंग की और बड़ी मशक्कत के बाद सभी छह छात्रों तक पहुंचने में कामयाब रहे। तो देखिए किस तरह से बाढ़ में फंसे छह छात्रों का सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया। एसडीआरएफ 6 किलोमीटर तक पैदल चले और उसके बाद सभी छह छात्रों को सफलतापूर्वक पहुंचा दिया गया। तो देखिए एसडीआरएफ ने 6 किलोमीटर पैदल यात्रा कर छह छात्रों की किस तरह से जान बचाई। ये पूरा वाक्या है उत्तराखंड के देहरादून का।
1: तो वहीं उत्तराखंड के ऋषिकेश में कुछ ऐसा ही हुआ है। वहां उफनती बीन नदी के बीच एसडीआरएफ के जवानों ने दो लोगों को बचाया। हुआ ये कि रात को नदी में एक गाड़ी पलट गई जिसमें कुछ लोग फंसे हुए थे। खबर मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। कुछ देर की कोशिश के बाद एसडीआरएफ जवानों ने गाड़ी में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। दोनों घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया है। फिर तस्वीरें बीन नदी में फंसे हुए दो युवाओं की और दोनों को सुरक्षित वहां बचा लिया गया है। एसडीआरएफ ने दो लोगों की जान बचाई है।
0: और बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए
2: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: क्या सावन के मंगलवार भी बहुत ज्यादा पवित्र होते हैं? सावन के मंगलवार का क्या माता गौरी के साथ कोई संबंध है? क्या है सावन के मंगलवार का पूजा विधान और सावन के मंगलवार को मिलेंगे कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: सावन के तीसरे मंगलवार को आज रखा जा रहा है मंगला गौरी व्रत। अखंड सौभाग्य के साथ सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना। बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर पुंज में सुरक्षा के सख्त इंतजाम। माने जाने वालों पर सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर। यात्रा मार्ग पर कई जगह हो रही है सघन चेकिंग। यूपी पुलिस के एंथम खाकी का सितारा को बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन का सलाम। बोले कुछ सितारे आसमान में चमकते हैं, कुछ खाकी पहनकर जमीन पर। भारी बारिश के चलते यूपी के भदोही में आज 12वीं तक के सभी स्कूल बंद। दिल्ली, यूपी, बिहार समेत 19 राज्यों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय युवा शटलर आयुष शेट्टी ने किया बड़ा उलटफेर। दुनिया के नंबर वन चीनी खिलाड़ी शी युकी को सीधे सेंटों में दी मात। पुरुष सिंगल्स के दूसरे दौर में मिली एंट्री।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का शुभ समाचार में। दरअसल सिनेमा प्रेमियों की बात कर लेते हैं, क्योंकि उनके लिए गुड न्यूज है। नितेश तिवारी की मच अवेटेड फिल्म रामायण दिवाली पर रिलीज होना तय है। खबर यह है कि रामायण 6 नवंबर को वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी, वहीं इंडियन ऑडियंस को 8 नवंबर तक इंतजार करना होगा। फिलहाल त्रेता की महागाथा पर आधारित इस फिल्म का ट्रेलर काफी पसंद किया जा रहा है। इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 2 इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। पिछले 4 दिनों में फिल्म का नेट इंडिया कलेक्शन 87 करोड़ 62 लाख रुपए और इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 105 करोड़ 3 लाख रुपए हो गया है। सेक्नी की रिपोर्ट के मुताबिक आवारापन 2 ने पहले दिन 22 करोड़ रुपए की शानदार कमाई के साथ खाता खोला। फिल्म ने दूसरे दिन 33 करोड़ 75 लाख रुपए की जबरदस्त कमाई की और तीसरे दिन 26 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर दिया। तो बॉक्स ऑफिस पर इस शानदार प्रदर्शन के साथ इस फिल्म ने 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। और अब बात उस फिल्म की जिसका इंतजार सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि करोड़ों दर्शकों को है। हम बात कर रहे हैं नमित मल्होत्रा की रामायण की। 2 पार्ट में बन रही इस फिल्म का बजट 4,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बताया जा रहा है। यानी फिल्म का पैमाना जितना बड़ा है उतनी ही बड़ी है इसकी प्लानिंग। अब मेकर्स ने रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है और यहीं से शुरू होती है एक बड़ी कहानी, क्योंकि रामायण 6 नवंबर को इंटरनेशनल मार्केट में रिलीज होगी जबकि भारत में दिवाली पर यह दस्तक देगी।
3: तुम्हारा नया राजा

0: भारतीय सिनेमा के सबसे ग्रैंड प्रोजेक्ट में से एक रामायण, जिसने रिलीज से अरसे पहले ही सुर्खियां बटोरना शुरू कर दिया है। देश से लेकर विदेश तक, आम जन से लेकर खास तक, समाज के हर तबके, हर वर्ग तक रामायण पहुंच पाए, इसके लिए मेकर्स एक खास प्लानिंग के तहत काम कर रहे हैं।
1: जब जब सृष्टि पर संकट आया, भगवान विष्णु ने अवतार लेकर उसकी रक्षा की।
0: मेकर्स की प्लानिंग का एक ही अहम हिस्सा है फिल्म के रिलीज डेट। रामायण पार्ट 1 दीपावली पर रिलीज होनी है, ये तय है, लेकिन किस तारीख को रिलीज होगी ये अब तक पुख्ता तौर पर तय नहीं था। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में रामायण की रिलीज डेट 30 अक्टूबर बताई जा रही थी, लेकिन कन्फर्म कुछ भी नहीं था।
2: विश्व कल्याण के लिए यदि मेरा अंत भी हो जाए तो भी मुझे स्वीकार।
0: अब रामायण के मेकर्स ने काफी सोच समझकर रामायण की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है।
2: निर्णय मैं ले चुका हूं, एक पुत्र होने के नाते अपने पिता के वचन का पालन करना मेरा कर्तव्य है।

0: तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास।
1: 6 नवंबर यानी दिवाली से 2 दिन पहले रामायण पार्ट 1 वर्ल्ड वाइड रिलीज की जाएगी। इससे मेकर्स को 2 हफ्ते का दमदार रिलीज पैसेज मिलने जा रहा है। इसे जानने के लिए इस तारीख की क्रोनोलॉजी समझनी होगी।
0: एक है और भाग्य में जो भी लिखा है मुझे स्वीकार है।
1: 6 नवंबर को शुक्रवार है और इसी दिन धनतेरस भी है। 7 नवंबर को शनिवार है यानी वीकेंड, छुट्टी का दिन होने से इसे भरपूर दर्शक भी मिलेंगे। 8 नवंबर को रविवार है और दीपावली भी है, जिसका फायदा फिल्म को फैमिली ऑडियंस के तौर पर मिल सकता है। 9 नवंबर को सोमवार है। 10 नवंबर को गोवर्धन पूजा होगी, कई दफ्तरों में उस दिन छुट्टी होती है। और 11 नवंबर यानी बुधवार को भाई दूज का त्योहार है। 13 नवंबर यानी शुक्रवार से दूसरे हफ्ते से वीकेंड शुरू हो जाएगा। मतलब ये कि रामायण को न सिर्फ बम्पर ओपनिंग मिल पाएगी बल्कि 2 दमदार वीकेंड भी, यानी फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर राज करने के लिए अच्छा खासा वक्त मिलने जा रहा है।
0: सूट न खा, वो मोहित हो गई है आप पे।
2: राम से प्रतिशोध लिया जाएगा सूर्पणखा।
1: हालांकि ओवरसीज में रामायण की राह इतनी आसान नहीं रहने वाली। 5 नवंबर हॉलीवुड फिल्म गॉडजिला माइनस जीरो रिलीज होगी, मतलब 6 नवंबर को इसका सामना रामायण से होगा। गॉडजिला एक पॉपुलर फ्रेंचाइज है, इसलिए रामायण को क्लैश झेलना पड़ सकता है। लेकिन भारत में रामायण को एक छत्र राज मिल सकेगा, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: मणिपुर की बेटी अरिहा पागम्बाम ने एशियन एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया है। फिलीपींस के तगायती सिटी में आयोजित चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन अरिहा ने न सिर्फ पोडियम पर सबके सामने दिखाया बल्कि सबसे ऊपर भी जगह बनाई, बल्कि इस इवेंट में भारत के लिए पहला गोल्ड भी हासिल किया। उनकी इस कामयाबी के पीछे है वर्षों की मेहनत, रोजाना घंटों की ट्रेनिंग और पिछली नाकामी से सीख लेकर वापसी करने का जज्बा, जिसके दम पर अरिहा ने मणिपुर से निकलकर एशिया के सबसे बड़े मंचों में से एक पर तिरंगा फहराया है। उनकी इस कामयाबी पर देखिए खास रिपोर्ट।

0: रफ्तार, लय, संतुलन। और हर मोमेंट में गजब का आत्मविश्वास। ये सिर्फ जिमनास्टिक के स्टेप्स नहीं है, बल्कि सालों की मेहनत और तपस्या का नतीजा है। मणिपुर की अरिहा पांगम्मा ने फिलीपींस की तगायते सिटी में इतिहास रच दिया है। 10वीं एशियन एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में सीनियर महिला वर्ग में अरिहा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है।
1: My work, I would say, it's because of my parents, my coach, my family, and everyone who have supported and guided me. So at that moment, I felt I could see everyone, I would say.

0: अरिया की ये जीत इसलिए खास है क्योंकि एशियन चैंपियनशिप में सीनियर महिला व्यक्तिगत वर्ग में भारत ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता है। यानी अरिया सिर्फ चैंपियन नहीं बनी बल्कि उन्होंने भारतीय एरोबिक जिम्नास्ट के इतिहास में अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज करा लिया। इस गोल्ड की चमक के पीछे छिपी है एक खिलाड़ी की कड़ी मेहनत, लगन और कभी ना हार मानने वाला जुनून। अरिया ने चैंपियनशिप की तैयारी के लिए करीब 6 घंटे रोजाना ट्रेनिंग की। घंटों तक शरीर को फिट रखना, एक ही मोमेंट को बार बार दोहराना, अपनी तकनीक में सुधार करना और हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाने की कोशिश। एरोबिक जिम्नास्ट में जहां एक छोटी सी गलती भी पूरे प्रदर्शन पर भारी पड़ सकती है, वह अरिया ने अपने अभ्यास और अनुशासन को अपने सबसे बड़ी ताकत बनाया। माता पिता के चेहरे की मुस्कान, घर की दीवार पर सजे मेडल्स और बधाई देने वालों के ये गुलदस्ते अरिया के शानदार प्रदर्शन की गवाही देते हैं।
1: एशियन चैंपियनशिप के लिए मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि सेटिस्फेक्शन उसी में है कोचेस का कि ट्रेनिंग में जो उन्होंने किया, चाहे मेडल ले ना ले, ट्रेनिंग में जो उन्होंने किया वो पूरा अगर कंपटीशन में कर पाए तो उससे बड़ी बात कोच के लिए होता नहीं है मेरे ख्याल से। तो मैं भी कोच हूं तो मैं बहुत खुश हूं और उसी परफॉर्मेंस के साथ अरिहा ने हिस्ट्री भी वो कर दिया, क्रिएट कर दिया, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए।
0: मणिपुर की जमीन से निकलकर एशिया के मंच पर भारत का नाम रोशन करने वाली अरिया की कहानी उन तमाम युवा खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणा है जो बड़े सपने देखते हैं। उनकी कामयाबी ये बताती है कि खेल में सफलता सिर्फ प्रतिभा से नहीं मिलती, इसके लिए चाहिए अनुशासन, लगातार मेहनत और असफलता के बाद दोबारा खड़े होने का हौसला। फिलीपींस के तगायते सिटी में अरिया ने जो कर दिखाया वो सिर्फ एक गोल्ड मेडल भर नहीं है, अरिया की कामयाब एरोबिक जिम्नास्टिक के इतिहास में एक नया अध्याय है। पिछली चैंपियनशिप की निराशा से लेकर इस बार की एशियाई चैंपियन बनने तक अरिया ने साबित किया है कि लगातार मेहनत और लगन से सपनों को हकीकत में बदला जा सकता है। इस ऐतिहासिक जीत के साथ भारतीय जिम्नास्टिक ने एशियाई मंच पर अपनी मौजूदगी और मजबूत कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: हरियाणा के चरखी दादरी के रहने वाले 76 साल के एथलीट रामकिशन शर्मा ने अब तक 401 पदक जीतकर मेडल मशीन का खिताब हासिल किया है। दरअसल रामकिशन ने महज 7 सालों में यह असाधारण उपलब्धि हासिल कर साबित किया है कि जुनून और मेहनत के आगे उम्र कोई बाधा नहीं है। 65 साल की उम्र में मास्टर्स एथलेटिक्स में कदम रखने वाले रामकिशन शर्मा ने ट्रैक पर एक के बाद एक कामयाबी हासिल की और देश दुनिया में मेडल मशीन के तौर पर पहचान हासिल की है। रामकिशन शर्मा की इस शानदार कामयाबी को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने आधिकारिक रूप से प्रमाणित किया है। रिकॉर्ड टीम के सत्यापन में उनके नाम 401 मेडल और 336 प्रमाण पत्र दर्ज किए गए हैं।
3: 65 साल की उम्र के बाद मास्टर एथलेटिक गेम्स में खेलना शुरू किया था और लगातार मैं 2026 तक खेलता रहा हूँ। इसमें 3 साल में मेडलों आज तक भी अपने नाम रिकॉर्ड है ऑल ओवर इंडिया और 9 साल में 3 आज तक भी अपने नाम है, जो 2 साल कोरोना के काट के 7 साल ही बनते हैं। और मुझे मेडल मशीन के नाम से जाना जाता है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो 300+ मेडल हैं तो उन्होंने हमारे घर आकर के एशिया बुक वालों ने भी इंडिया बुक वालों ने भी वो पुष्टि की थी, तो उन्होंने 401 मेडल की सर्टिफिकेट मुझे दी है।
2: और चलिए अब बात बैडमिंटन की कर लेते हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में युवा शटलर आयुष शेट्टी ने बड़ा उलटफेर किया। उन्होंने दुनिया के नंबर 1 चीनी खिलाड़ी शी युकी को सीधे सेटों में मात दे दी। 21 साल के आयुष ने 21-14, 13-21 और 21-19 से जीत दर्ज की। इसी के साथ दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी शी युकी पहले ही राउंड में वर्ल्ड चैंपियनशिप से बाहर हो गए।
4: वहीं इसी टूर्नामेंट में पीवी सिंधु ने भी जीत से शुरुआत की। सिंधु ने विमेन सिंगल्स के पहले राउंड में आयरलैंड की सोफिया नोबल को 29 मिनट में 21-7, 21-11 से हराया। अब दूसरे राउंड में सिंधु का मैच कनाडा की वेन यू झांग से होगा।
2: काशी, जहां लोग धर्म और आस्था को समझने के लिए खिंचे चले आते हैं, लेकिन यहां कुछ विदेशी मेहमान अपने दमखम को परखने भी पहुंचते हैं। जी हां, काशी के अखाड़ों में कुश्ती के साथ गदा और डंबल का ऐसा रंग जमता है कि देखने वाले देखते रह जाते हैं। इस बार स्पेन और नीदरलैंड से आए पहलवानों ने जब देसी अखाड़े में जोर आजमाइश शुरू की तो वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए। आखिर इन विदेशी मेहमानों को काशी के अखाड़ों ने इतना कैसे अपना बना लिया। स्पेन के सेंटियागो, जिन्हें लोग प्यार से सेंटी या शांति भी बोलते हैं, और नीदरलैंड के हब इस हर साल काशी का रुख करते हैं।
5: काशी न केवल धर्म और आध्यात्म की नगरी है बल्कि खेल का बहुत बड़ा मैदान और केंद्र भी है। खेल का ऐसा नज़ारा नागपंचमी के पर्व पर दिखाई पड़ता है जिसमें न केवल काशीवासी यहाँ के अखाड़ों में जोर आजमाइश करते हैं, अपने शक्ति का परीक्षण करते, अपने बल का परीक्षण करते, बल्कि सात समंदर पार से आए हुए जो विदेशी मेहमान हैं वे भी यहाँ पर अपनी शक्ति का परीक्षण करते हैं, जोर आजमाइश करते हैं। देख सकते हैं अखाड़े के ठीक बाहर डंबल, जोड़ी, गदा और तमाम तरह से ये अपने शक्ति का परीक्षण कर रहे हैं। सेंटियागो जो स्पेन से आए हुए हैं, पिछले दो बार से लगातार काशी आ रहे हैं, तो नीदरलैंड से हमारे साथ एक और मेहमान आए हुए हैं, इनसे बात करते हैं। और यहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काशी की जो कुश्ती की कला है, दंगल की कला, उसको पहुँचाने वाले भी हमारे साथ मौजूद हैं। वेयर यू आर एंड फ्रॉम हाउ लॉन्ग टाइम यू हैव बीन हियर?
6: वेल, आई एम कमिंग फ्रॉम स्पेन एंड द फर्स्ट टाइम दैट आई केम हियर वाज इन 2023 एंड आफ्टर दैट आई एम कमिंग इन ईयर बाय ईयर एवरी ईयर। यस,
5: अ लॉन्ग टाइम यू हैव बीन इन हियर कमिंग वाराणसी।
6: द फर्स्ट टाइम वाज 2017 2017. I remember coming here and asking in the tuk-tuk, saying, can you find me some akara? Can you find me some place that I can find training? And he said, there's lots of places here in Varanasi. And from that moment, I fell in love with the city.
7: सबसे पहले तो बात ये है कि जो विदेशी मेहमान आ रहे हैं वो सभी जोड़ी गदा मुग्दर नाल इन सब चीजों को कर भी रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। साथ ही साथ अब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म की वजह से तमाम जो इंडियन हैं, चाहे वो साउथ हो, चाहे ईस्ट हो, चाहे वेस्ट हो, हर तरफ के लोग अब मुद्गर व्यायाम, गदा व्यायाम, ये सारी चीज़ें करने लगे हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि अब ये सैलानी भी आकर के इस तरह के वर्कआउट करते हैं।
5: तो जहां एक और मॉडर्न कल्चर, वेस्टर्न कल्चर पूरे देश में हावी होता चला जा रहा है जिम के रूप में, तो वहीं जो विदेशी मेहमान हैं सात समंदर पार से आकर खासकर इस नागपंचमी के पर्व पर अपनी शक्ति की आजमाइश करते हैं और तमाम जो खेल हैं अखाड़ों में उसको खेलकर प्रतिस्पर्धा में भी भाग लेते हैं। रोशन जायसवाल, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे।
2: पठानकोट में डैम की झील में शुरू हुआ वाटर स्पोर्ट्स अब सैलानियों का पसंदीदा एडवेंचर स्पोर्ट्स बनने लगा है। स्पीड बोट और पैरासेलिंग की शुरुआत होने से यहां सैलानियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। प्रशासन की कोशिशें हैं कि पठानकोट की इस झील को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जाए।
0: पहाड़ों के बीच एक खूबसूरत झील और कुदरत के बेमिसाल सौंदर्य के साथ एडवेंचर स्पोर्ट्स का मौका। पठानकोट में रावी नदी पर बने डैम की झील अब पैरासेलिंग और वाटर स्पोर्ट्स के लिए मशहूर हो रही है। रणजीत सागर डैम की झील के किनारे चमरोड़ और शहारपुर कंडी बैराज झील को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टूरिज्म हब बनाने की तैयारी कर ली गई है। डैम प्रशासन ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए झील में स्पीड बोट्स और पैरासेलिंग की शुरुआत की है। इन वाटर स्पोर्ट्स का आनंद लेने के लिए दूर दूर से सैलानी यहां आ रहे हैं।
8: YouTube में देखा था काफी इसका, मैं पहली बार आया हूं यहां पर, मुझे बहुत अच्छा लगा है यहां पर आकर। वो तो ठीक है, सबको अच्छा है, फूड है,
9: बच्चों को लेके डाइट पे गए, आप कैसा लगा?
8: अच्छा लगा, बच्चों को बहुत अच्छा लगा है सारा। हम पहली बार ही आए वहाँ फैमिली लेकर।
10: घूमने के लिए अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, हॉर्स राइडिंग भी अच्छा है आपका, ऊंट का भी, कैमल का भी अच्छा है।
0: वाटर स्पोर्ट्स की शुरुआत होने के बाद झील पर आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। स्पीड बोट के बाद अब पैरासेलिंग की शुरुआत होने से इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन में लोगों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ी है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए डैम प्रशासन ने पर्यटकों की हिफाजत का भी पूरा इंतजाम कर रखा है। पैरासेलिंग और वाटर स्पोर्ट्स का आनंद लेने के लिए पहले लोगों को गोवा जैसी जगहों का रुख करना पड़ता था, लेकिन अब डैम की झील में शुरू हुए इस वाटर स्पोर्ट्स ने पठानकोट को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर एक नई पहचान दिला दी है। पठानकोट से पवन सिंह, गुड न्यूज टुडे।
2: पंजाब की धरती को गुरु की धरती कहा जाता है। यही वजह है कि पंजाब में ऐसे कई धार्मिक स्थल हैं जहां लोगों की आस्था श्रद्धा जुड़ी हुई है। दरअसल पंजाब में कई ऐसे प्राचीन श्री गुरुद्वारा साहिब भी हैं जहां पर लोग अपनी मन्नत मांगने के लिए आते हैं।
11: के बाहर सजी दुकानों की रौनक और इन दुकानों पर उमड़ी श्रद्धालु की भीड़। कोई मत्था टेक कर लौट रहा है तो कोई अपनी मनोकामना पूरी होने की खुशी में चढ़ावे की तैयारी कर रहा है। इन दुकानों पर खिलौनों की कई वैरायटीज हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नजर खींचते हैं खिलौने वाले हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज।
12: हाँ जी, मन्नत पूरी हो गई है। अगले अगले नेक्स्ट ईयर शायद जाइए न्यूजीलैंड का नेक्स्ट ईयर। हाँ जी, मन्नत है बाहर फॉरन।
11: असल में विदेश जाने की मन्नत लेकर यहाँ आने वाले श्रद्धालु अपनी मन्नत पूरी होने पर हवाई जहाज चढ़ाते हैं, और यही वजह है कि ये गुरुद्वारा साहिब श्रद्धालुओं के बीच हवाई जहाज वाला गुरुद्वारा के नाम से मशहूर है। जलंधर शहर से करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित गुरुद्वारा श्री तलहन साहिब, मान्यता यह है कि पासपोर्ट या वीजा बनाने में कोई भी अड़चन आ रही हो तो खिलौने वाला हवाई जहाज चढ़ाकर अरदास करने से विदेश जाने की राह में आ रही तमाम बाधाएं दूर हो जाती हैं।
13: बहुत टाइम हो गया इतना मत्था टेकन आंदे, मतलब 4-5-6 साल हो चले हैं, एक संडे आना आपका मत्था टेकन।
11: खास बात यह है कि इन खिलौनों को आसपास के बच्चों में ही बांट दिया जाता है।
14: यात्रा सफल होती है, लोगों वीजा लगते हैं, बाहर जाके लोग सेटल भी होते हैं।
11: किसी के लिए विदेश जाने की उम्मीद है तो किसी के लिए मन्नत पूरी होने की खुशी। जब यही मन्नत के खिलौने बच्चों के हाथों में पहुंचते हैं तो फिर इस आस्था में खुशियों के रंग घुल जाते हैं। जलंधर से देवेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो गया अब इंस्टा स्टोरी का, उस कलाकार की इंस्टा रील आपको दिखाते हैं जो अभिनय की दुनिया में तो कमाल कर ही रहे हैं, साथ ही सोशल मीडिया पर अपने फैंस को भी हंसा रहे हैं। देखिए विद्या बालन की फनी इंस्टा स्टोरी।
15: ദുനിയാമെ കോഴി നഹി, ദുനിയാവിൽ കോഴിയില്ല, കോഴി ബാത്ത് നഹി, കോഴി കുളിക്കാറില്ല. വോ മുജസേ പൂച്ച, അവൻ എന്റെ പൂച്ചയെ ചോദിച്ചു. വോ ബാർബാർ പൂച്ച, അവൻ ബാറിലും പോയി പൂച്ചയെ ചോദിച്ചു. കി തുമ്പി മേരേ സാത്താവോ, നീ തുമ്പിയെ പിടിക്കാൻ പോരുമോ. കേരളാസെ ആനേ വാലാഹേ, കേരളത്തിൽ ആനവാൽ കിട്ടും.
16: धीरे धीरे स्लोली स्लोली गा, ओके स्लोली स्लोली स्लोली स्लोली स्लोली स्लोली।
2: इसी के साथ इन तमाम खबरों के बाद शुभ समाचार में आज के लिए बस इतना ही।
4: बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
17: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
18: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
19: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
18: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
20: और दुर्भाग्य कहता है
18: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
19: अविश्वास में विश्वास बसता है,
18: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
20: गुड न्यूज टुडे।
18: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
17: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
20: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
18: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
19: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
18: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
21: और दुर्भाग्य कहता है
18: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
19: अविश्वास में विश्वास बसता है,
18: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
20: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: सावन के तीसरे मंगलवार को आज रखा जा रहा है मंगला गौरी व्रत। अखंड सौभाग्य के साथ सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना। बाबा मूड़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर पुंछ में सुरक्षा के सख्त इंतजाम, आने जाने वालों पर सुरक्षा एजेंसी की पैनी नजर। यात्रा मार्ग पर कई जगह हो रही है सघन जांच। यूपी पुलिस के एंथम खाकी का सितारा को बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन का सलाम, बोले कुछ सितारे आसमान में चमकते हैं, कुछ खाकी पहनकर जमीन पर। भारी बारिश के चलते यूपी के भदोही में आज 12वीं तक के सभी स्कूल बंद। दिल्ली, यूपी, बिहार समेत 19 राज्यों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय युवा शटलर आयुष शेट्टी ने किया बड़ा उलटफेर। दुनिया के नंबर वन चीनी खिलाड़ी भी युकी को सीधे सेटों में दी मात। पुरुष सिंगल्स के दूसरे दौर में मिली एंट्री।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन के महीने का हर दिन अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन सावन के सोमवार, शनिवार और मंगलवार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आज आपको बताएंगे सावन के मंगलवार की महिमा क्या है और सावन में मंगला गौरी माता की पूजा का विधान क्या है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 18 अगस्त 2026 दिन मंगलवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, शाम के 5:50 तक। नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय शाम के 3:04 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 18 अगस्त 2026 दिन मंगलवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। बुध और बृहस्पति विद्यमान हैं कर्क राशि में, सूर्य और केतु सिंह राशि में, शुक्र कन्या राशि में, चंद्रमा तुला राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और मंगल फिलहाल विद्यमान है मिथुन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं सावन के मंगलवार की और माता मंगला गौरी की। माता मंगला गौरी की पूजा का महत्व क्या है, पहले ये समझते हैं। देखिए, सावन के महीने में भगवान शिव के अलावा माता गौरी की विशेष कृपा भी आपको मिल सकती है। इसके लिए सावन के मंगलवार को माता गौरी की उपासना की जाती है। इस पूजा से चूंकि जीवन में हर प्रकार का मंगल होता है, इसीलिए इसको मंगला गौरी कहा जाता है। सावन के मंगलवार को माता गौरी की उपासना से शीघ्र विवाह का वरदान मिलता है और वैवाहिक जीवन की हर समस्या दूर हो जाती है। अगर मंगल दोष आपके जीवन में समस्या दे रहा हो तो सावन के मंगलवार पर माता मंगला गौरी की पूजा करनी चाहिए, मंगल दोष का दुष्प्रभाव नष्ट हो जाएगा।
चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, छोटी यात्रा के योग हैं, धन का लाभ हो सकता है, परिवार में मंगल कार्य होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, चिंताएं समाप्त होंगी, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, पारिवारिक समस्या हल होगी, खान पान में सावधानी रखें,

कर्क राशि, क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखें, निर्णयों में जल्दबाजी ना करें, वैवाहिक जीवन में धैर्य बनाए रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब आते हैं उपायों पर। जिन कन्याओं का विवाह तमाम प्रयासों के बावजूद नहीं हो पा रहा है, ऐसी महिलाएं सावन के मंगलवार पर माता मंगला गौरी की पूजा कैसे करेंगी? सावन के मंगलवार को प्रातः काल या शाम के समय में माता गौरी की पूजा करिएगा। उनके सामने घी का एक बड़ा सा चौमुखी दीपक जलाइए और इसके बाद मां को 16 फूल चढ़ाएं या 16 तरीके के फूल चढ़ाएं, उसमें लाल रंग का फूल जरूर चढ़ाएं। माता को लाल रंग की चुनरी और लौंग समर्पित करें और इसके बाद 3 माला या 11 माला माता के मंत्र का जप करेंगी। मंत्र होगा, ओम ह्रीं गौर्ये नमः, ओम ह्रीं गौर्ये नमः, इस मंत्र का जप करेंगी। और जप करने के बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करेंगी। सावन में किसी भी मंगलवार को अगर आप ऐसा कर लेती हैं तो आपका विवाह शीघ्र होगा। अगर विवाह हो चुका है और पति पत्नी के बीच तालमेल खराब है, तमाम प्रयास के बावजूद तालमेल अच्छा नहीं रह पाता हो, तो क्या करेंगे? शाम के समय में सावन के मंगलवार पर माता गौरी की पूजा करेंगे। माता गौरी के सामने घी के 3 दीपक जलाएंगे और इसके बाद माता के चरणों में सिंदूर अर्पित करें। मां को इत्र समर्पित करिए और इसके बाद 16 इलायची चढ़ाइएगा और इसके बाद जो मां का नवारण मंत्र है उसका 11 माला जप करिएगा। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का 11 माला जप करिए और प्रार्थना करिए कि आपका वैवाहिक जीवन बेहतर रहे। इलायची को अपने पास रख लें और प्रसाद की तरह इलायची को खाते रहिएगा। अगर ये उपाय सावन के किसी भी मंगलवार को कोई विवाहिता महिला करती है तो उसका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। कार्यक्रम में चर्चा हमारी जारी है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि,
रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, शिक्षा में सफलता मिलेगी, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग हैं, करियर में सफलता मिलेगी, परिवार में शांति बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग हैं, धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, मित्र के साथ संबंध का ध्यान रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि अगर वैवाहिक जीवन में समस्याएं काफी बढ़ चुकी हों, शादी टूटने की नौबत आ गई हो और रिश्ता दोबारा जुड़ नहीं पा रहा हो तो क्या करेंगे?

करिएगा भगवान शंकर और माता गौरी की संयुक्त पूजा करिएगा, भगवान शिव और माता पार्वती को वस्त्र अर्पित करें, अगर पीला वस्त्र हो तो बहुत उत्तम होगा, माता गौरी को सुहाग की सामग्री सिंदूर चूड़ी बिंदी आभूषण मेहंदी काजल शीशा आलता ये सब अर्पित करिए और इसके बाद ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का 11 माला जप करिएगा और जप करने के बाद ये प्रार्थना करिए कि वैवाहिक जीवन सुधर जाए, वैवाहिक जीवन टूटने से बच जाए। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु मकर कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, धन का लाभ होगा, करियर की समस्याएं हल होंगी, करियर में सफलता मिलेगी, धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, करियर की समस्या हल होगी, मानसिक चिंता समाप्त होगी, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा, हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा, काम की अधिकता रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, रिश्तों की समस्या हो सकती है, करियर में जोखिम ना लें, वाहन सावधानी से चलाएं, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तो आज हमने बात की सावन के मंगलवार की और माता मंगला गौरी की। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर आपके घर में धन की बचत नहीं हो पा रही हो तो पूजा स्थान पर या पूजा स्थान वाले कमरे में या पूजा स्थान के पास धन रखना आरंभ कर दें, आपको लाभ होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 18 अगस्त 2026 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। सुबह के समय भगवान शिव को लाल फूल अर्पित करिएगा, घर से निकलते समय वो फूल अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो,
इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।

0: समुद्र के किनारे जब कोई मछुआरा मछली पकड़ने जाता है तो दाना ले जाता, कभी कभी तालाबों के किनारे भी तो ले जाता, समुद्र में कई बार नहीं ले जाता पर कई बार ले जाता। तो जाल ले जाकर के जब मछुआरा जाता है, जाल फेंकता है, दाना फेंकता है, तो जब दाना फेंकता है तो कुछ दाने बीच में फेंकता हो, कुछ दाने उसके पैरों के पास गिर जाते। ध्यान से सुनना, कुछ दाने पैर के पास गिर जाते हैं, कुछ दाने बीच में गिर जाते हैं। बड़ी बड़ी मछलियां आकर उन दानों को खाने लगती, मछुआरा जाल फेंकता, जाल में बड़ी बड़ी मछलियां, बड़े बड़े मछले पकड़ जाते, लेकिन कुछ छोटी छोटी मछलियां बीच में दाना ना खाने की बजाय जो मछुआरा पकड़ने वाला होता है उसके पैर के पास, चरण के पास जो दाने गिर जाते हैं छोटे छोटे, उसी दाने को खाने के लिए छोटी छोटी मछलियां पैर के किनारे आ जाती हैं। अद्भुत और आश्चर्य की बात यह होती है कि जो मछलियां बीच का दाना खाने जाती वो सब पकड़ी जाती, और जो मछलियां मछुआरे के पैर के पास आती हैं वो बच जाती है। ऐसे ही जीवन है, संसार ये सागर है, पूरा पूरा संसार ही एक सागर है। इस संसार सागर में हम सब मछलियां हैं और संकट विपत्ति ही मछुआरा है, परमात्मा ही मछुआरा है और परमात्मा का जाल ही माया का जाल है। और जब इस माया के जाल से बचने का कोई जीव प्रयत्न करे तो यदि वो माया के जाल में फंसना चाहता तो भोग भोगे, लेकिन यदि वही जीव दाना भी खाना चाहता और जाल में नहीं फंसना चाहता तो सर्वोत्तम उपाय है वो मछुआरे के पैरों के पास आ जाए, तो वो भोग भी भोग लेगा, दाना भी खा लेगा और जाल में भी नहीं फंसेगा, वो परमात्मा के चरण। यदि भगवान के चरणों के सन्निकट जीवात्मा पहुंच जाएगी, परमात्मा के सन्निकट चरणों के पास ये जीवात्मा पहुंच जाएगी तो मेरे पागलो, परमात्मा के चरणों के सन्निकट पहुंचते ही दाना भी मिलेगा। और कभी मलूक दास जी तो कहते हैं, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता
1: राम।
0: राम सबको भगवान देते हैं, तो यदि हम भगवान के चरणों के आश्रित हो जाएंगे, अपने परमात्मा के चरणों के आश्रित हो जाएंगे तो संसार सागर में भी बने रहेंगे और भगवान के भी बने रहेंगे। दूसरी बात, जादूगर जादू दिखाता, दूसरा उदाहरण सुनना। जादूगर जादू दिखाता, जब खेल दिखाता गांव में तो उसके साथ में एक लड़का जरूर होता है, उसको जमूरा कहते हैं। क्या कहते हैं? जमूरा। क्या बोलते हैं? जैसे हमारा चेला रहता ना, झोली माला लिए रहता, कभी ये लिए रहता, कभी बोली, ऐसे ही जादूगर का भी एक चेला रहता, उसको जमूरा कहते। आप देखकर आश्चर्यचकित होंगे कि हम लोग उसके खेल के खेल को देखकर, जादूगर की तकनीकों को देख करके बड़ी जोर जोर से ताली बजाते, वो कभी पंछी निकाल देता, कभी सांप निकाल देता, कभी कबूतर निकाल देता और हम लोग ताली बजाते और आश्चर्यचकित से भर जाते, लेकिन जमूरा कभी भी ताली नहीं बजाता। क्यों? क्योंकि उसे खेल पता होता कि सांप कहां से निकला है, कबूतर कहां फिट किया था, कहां पे डबल कबूतर लगाए थे, क्योंकि बटोरता भी वही है और सेट भी वही करता, इसलिए जमूरा कभी भी प्रभावित नहीं होता। ऐसे ही ये जीव है, तुम संसार में तब तक संसार से प्रभावित रहोगे जब तक परमात्मा के खेल को समझ नहीं पाओगे, और जिस दिन भगवान के चरणों में आ जाओगे पूरा खेल तुम्हें पता लग जाएगा, फिर कुछ भी आश्चर्य नहीं लगेगा, सब साधारण आपको लगेगा, आप हंसते रहोगे, चलता रहता है, ये तो तमाशा है, होते ही रहता है। ऐसे ही जो परमात्मा के आश्रित हो जाते उन्हें सब खेल लगता है। तो सागर से ये बात सीखी जा सकती, सागर की गहराई इतनी अभूतपूर्व है, इतना गहरा है, बार बार कट है? हेलो, तो सागर से ये सीखा जा सकता, अत्यंत गहरा जल से भरा हुआ सागर, अब ठीक है,
1: अब सही लगा नहीं।
0: सागर से ये सीखा जा सकता। सागर से एक बात और हम बोलेंगे, दो बातें होगी, तीसरी बात और सुनो। हम लोग सागर के तट पर बैठे, कुछ लोग अभी शाम हो गई है पर कुछ लोग तो बीच में होंगे नावाओं लेकर के, और कुछ लोग बिल्कुल बाहर हैं, जैसे वहां बैठे हैं पीछे बाहर खड़े। ये दोनों ही लोग आनंद में नहीं। जो सागर के मध्य में है वो आनंद में नहीं है, उन्हें झंझट है डूब ना जाए, हवा किस तरफ चल रही है, जल्दी किनारे पहुंच जाए, रात ना हो जाए, कोई मछली ना आ जाए, भेल ना आ जाए, चार झंझट उनके चल रहे दिमाग में। जो ज्यादा दूर है उन्हें ये आनंद ही नहीं मिल रहा। सबसे ज्यादा फायदे में हम लोग, बीच वाले को भी देख रहे मजे ले रहे और किनारे वालों को भी देख रहे मजे ले रहे। इसको कहते हैं तटस्थ होना। क्या होना, बोलो बोलो बोलो। जिंदगी में भी ऐसे ही बनेगा, जिंदगी के खेल के बीच में रहोगे तो आनंद न आएगा, भोगों के बीच में रहोगे तो आनंद न आएगा, और पूरे परमात्मा के हो जाओगे तो जिंदगी का आनंद न आएगा। इसलिए बीच के बीच बने रहो, तट पर बैठे रहो, जैसे आज तट पर बैठे हुए ऐसे तट पर बैठे रहो, परमात्मा के चरणों के पास बैठे रहो और जीवन के साथ बने रहो, तो जीवन का भी आनंद आएगा और परमात्मा की भक्ति का भी। जैसे अभी आप 3 दिन बढ़िया कुछ नहीं कर रहे, सुबह से फूसा फांसी कर रहे, बढ़िया दिन में जो है खूब बढ़िया एल्कन वाटर पी रहे, चाय ले रहे, आहा बढ़िया जो है पनीर खा रहे, 5 स्टार का आनंद ले रहे। अब साल भर खूब कमाओ और फिर कमाओ फिर इकट्ठा करो, फिर अगली बार बताएंगे कहां चलना। लो बढ़िया है वो यात्रा की यात्रा और आध्यात्मिक यात्रा। और बोले कहां, बोले बाली। बढ़िया है, हमें लगता है यही तटस्थता है, यही तटस्थता है। तटस्थता का मतलब ये भी नहीं है, भक्ति का मतलब ये भी नहीं कि बिल्कुल बैरागी बन जाओ। बिल्कुल बैरागी बन गए तो घर से गए, घरवाली से गए, परिवार से गए, कोई काम के ना बच्चे, बिल्कुल बैरागी हो गए। और यदि बिल्कुल संसारी हो गए तो परमात्मा से गए, हमसे गए, हमारे काम के नहीं। अब क्या किया जाए, दोनों के काम के बचे रहो, घरवाली पति के भी काम के बने रहो, बच्चों के भी काम के बने रहो और परमात्मा के भी काम के बने रहो। तो यही है कि जब काम करो तो काम अपना मान करके मत करो, परमात्मा का मान करके करो, और बीच बीच में जब आराम करो तो आराम केवल सोने का मतलब ना किया जाए, अब तो 2-3 दिन का ऐसे ही समय निकालकर आराम बुला करके आराम किया जाए। आराम का मतलब ये नहीं है कि बंद किया दरवाजा, हम तो आराम कर रहे हैं। आराम के भी अर्थ है, आराम का अर्थ है आ राम, यही तो आराम, बुला राम, राम जी को बुलाओ, आ राम, यही तो है आराम। और आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है तो एक काम कर, आ राम की शरण में राम राम कर। तो तटस्थ होने का मतलब यही है। तट पर आज हम लोग इसीलिए बैठे हैं कि सागर का भी आनंद लो, संसार का भी आनंद लो। किसका, सागर का भी आनंद लो, और सागर हो गया परमात्मा और संसार हो गया ये परमात्मा का खेल, और हम लोग हैं बीच में मध्य में। तो मध्य की स्थिति भगवान कृष्ण गीता में भी कहते हैं, सुखम चा दुखम चा, सम अवस्था में जियोगे तो बड़ी आनंदित रहोगे, दुखी ज्यादा नहीं रहोगे, दुख सुख लगे रहेंगे, दोनों आते जाते रहेंगे, पर अवस्था यदि आपके मन की सम हो जाएगी, तट पर आप बैठ जाओगे तो समुद्र में तैरने वाले को भी देख पाओगे और संसार में डूबने वाले को भी देख पाओगे। और अंत में एक बात कहें, बोलो कह दो कहो, तट वाले को तो ज्यादा फायदा है, चाहे जिस तरफ लुढ़क जाओ, आप तट पे हो तो संसार की तरफ जाना है उधर मुंह कर लो, परमात्मा की तरफ जाना है तो सीधे चले जाओ।
1: तो दोनों को ही आनंद है, कहीं भागने की आवश्यकता नहीं, बीच बीच वाले का बहुत बहुत बढ़िया है। तो परमात्मा की तरफ जाना भैया, सीधे जाओ। और एक बात और बोले कह दो, बोलो। वो तैरते तैरते डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था, और वो डूबते डूबते भी पार हो गए जिन पर तू मेहरबान था। जब परमात्मा के हवाले हो जाओगे, भगवान के हवाले हो जाओगे, तो फिर आपको डूबने की चिंता करने की आवश्यकता, लेकिन बस बीच बीच में ऐसे ही तटस्थ बने रहो, ऐसे ही तट पर बैठते रहो। तट पर और घट पर दोनों का ध्यान रखना चाहिए जीवन में, तट का और घट का। घट जानते हो? घटा नहीं ना, ना, ना है? घाट नहीं, एक और घट होता है कलश, हाँ वो भी घट होता है।

तट पर बने रहो, और तट पर बने रहोगे तो संसार का भी आनंद ले पाओगे और परमात्मा की भक्ति का भी आनंद ले पाओ। एक अंतिम बात और, इसके बाद में प्रणाम संकीर्तन और भजन भाव पे जिसको जो आ गए। अभी बहुत बढ़िया माइक था, अब सब गड़बड़ा गए हमें लगता है। अच्छा, हवा के कारण। हाँ, अब आ गया भैया, आ गया। हम यहाँ थे गड़बड़, उसकी गलती नहीं है, उधर कोई गलती नहीं है, सही नहीं रहा। हाँ, वो तुमने गलत लगवा दिया था, है नहीं? तो सबके अपने अपने कान होते हैं, अपने अपने हिसाब से। हो सकता बाली वालों के लेफ्ट कान भाई है, हमारा भाई राइट वाला हो सकता। ड्राइविंग के ऊपर है, अब अमेरिका में तो लेफ्ट ड्राइविंग है। तो अपने अपने हिसाब से, वो उन्होंने सही कहा होगा, लिया उन्होंने इसी के हिसाब। हम जनजात उल्टे हैं। तो हमें सूट नहीं कर। तो एक अंतिम बात और हम कहना चाह रहे हैं, वो बहुत ध्यान पूर्वक सुनो। अंगद जी ने लंका में पैर जमाया, और पैर जमाया और शर्त रख दी कि जो भी हमारे पैर को उठाएगा तो हमारा जी माता जानकी जी को हार गए, राम जी युद्ध करने नहीं आएंगे, हम जानकी माता को ले नहीं जाएंगे, तुम्हारी हो जाएंगे। ये रावण को कहा। रावण ने शर्त मान ली कि यदि इतनी छोटी शर्त, युद्ध होगा नहीं, लोग भी नहीं मरेंगे, झंझट भी कम होगा, पैर ही तो उठाना है, उठा लिया जाए। तो रावण ने अपनी सेना को कहा, जितने बलवान है लग जाओ सब, एक एक योद्धा आए, अंगद जी के पैर को ना उठा पाए। अंत तो गत्वा रावण आया तो बेइज्जती हो गई, एक पैर नहीं उठा पा रहे तो बेइज्जती तो हो ही गई, कि जब एक पैर नहीं उठ रहा तो सेना क्या हलुआ उठेगी, तो फिर तो हार ही गए, गलत न्यूज हो जाएगी, वो गड़बड़ा जाएगा, युद्ध पहले ही हार जाएंगे। तो रावण ने सोचा ये बेइज्जती वाली बात है, तो खुद को उठना चाहिए। तो रावण उठा, और जैसे ही रावण झुका, अंगद जी ने पैर उठा लिया। रावण बोला क्या हुआ, शर्त रखो, रखो शर्त लगी है। अंगद जी बोले हम महात्मा है। रावण बोले तो? अंगद जी बोले महात्मा झुकाना तो सिखाता है, पर अपने चरणों में नहीं, झुकना ही है तो परमात्मा के चरणों में झुको। ये बात तो हो गई, रावण को समझ आ गई। अब अंगद जी वापस आए, अब जो घटना हुई वह जरा वो सुनो। अंगद जी के साथ वाले जितने बानर थे, दधीमो के केहरी निसट सट जाम बंत बल रास, सब मिले। अंगद जी से बोले हमने सुना तुमने शर्त लगाई। अंगद जी बोले सही सुना, लगाई। तो अंगद जी से बंदर बोले कि एक बात बताओ, किससे पूछ के लगाई? अंगद जी बोले हमने किसी से नहीं पूछा, खुद से ही लगाई, हमने खुद शर्त लगाई, खुद के पांव की लगाई, अब पूछना क्या है। तो बोले पांव की खुद की तो लगाई, पर हमने सुना दाव पर जानकी माता को रख दिया। अंगद जी बोले हाँ ये बात सही है कि हमने माता जानकी जी को दाव पर रख दिया। तो जामवंत जी बोले किससे पूछ के? राम जी ने कहा? बोले नहीं, उनने नहीं कहा। तो बोले वाह, मान लो हार जाते, फिर पैर उठा देता कोई, फिर क्या? अंगद जी बोले ये मान लो किंतु परंतु तुम जानो, हम तो भक्त हैं, हमारे यहां कोई किंतु परंतु नहीं है, हमारा तो भरोसा है कि हम हारते ही नहीं, वो हारे नहीं। तो जामवंत जी बोले मान लो 1%। अंगद जी बोले फिर मान लो, हम काहे माने, हम तो भक्त हैं, हमें तो भरोसा है कि 1% भी हमें नहीं हारना। तो दधिमुख के हरी बिल्कुल लड़ते हुए नजदीक आके बोले कि मानो हार जाते फिर? अंगद जी बोले रुको, अब जब से मान लो कर रहे हो, जब से प्राण खा रहे हो हमारे, मान लो, एक बात बताओ, शर्त किसकी लगी? जानकी माता की। जानकी माता किसकी पत्नी? राम जी की। तो यदि मान लो हम हार जाते तो किसकी पत्नी हारती? राम जी की। बेइज्जती किसकी होती? हम काहे को मान ले, जब जानकी माता को दाव पे लगाया, बेइज्जती राम जी की होनी थी। तो भाई ये पूरी चिंता परमात्मा की थी, हमारी थोड़ी चिंता थी, हम तो उनके भक्त हैं, उनके सहारे हैं, अब जीतना उनके काम में, हराना उनके काम में, यदि जीते तो वो जीते, उनका भक्त जीता, और हारते तो उनकी घरवाली हारती।

हम थोड़ी हारते। ये भरोसा ही भक्त को परमात्मा से मिलाता है, ये भरोसा ही भक्त की जीत दिलाता है। इस तट पर बैठकर हम इतना ही आपसे कहेंगे, आपको भरोसा भी इतना ही रखना है। जैसे सागर हमेशा लहराता रहता, लहरें आती रहती जाती रहती, लेकिन एक अद्भुत बात है, कोई देखे या ना देखे लहरें आती जाती रहती हैं। ऐसा नहीं कि दिन में लहरें चले रात को बंद हो जाएं। हम लोगों की बल्कि भक्ति ऐसा ही है कि जब कोई देखने लगे या समय समय मंगलवार आ जाए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और जब मंगल हो गया शनिवार, ठीक है भैया अब 3 दिन कर तो लिया ऊर्जा संचय, अब चलो अब हो गया। लेकिन सागर का ऐसा गुण नहीं, वो 24 घंटे अपनी मस्ती में लहरें आ रही जा रही, कोई देखे ना देखे, कोई किनारे हो ना हो, पानी बरसे ना बरसे, वो सागर की लहरें अनवरत चल रही। अब ऐसा नहीं है कि बागेश्वर बाबा प्रवचन कर रहे तो थोड़ा सुन ले, नहीं नहीं नहीं, वो अपना काम कर रही है, देखो तो बाहर चल ही नहीं पाए बराबर समुद्र के किनारे। ऐसे ही जीवन में भक्ति होनी चाहिए कि बाहर कुछ भी चलता रहे, अंदर भगवान की भक्ति चलती रहनी चाहिए, परमात्मा का भजन चलता ही रहना चाहिए, यही लहरों से सीखना चाहिए। भगवान राम जी लंका जा रहे थे तो लंका जाने के पहले 3 दिन तक स्तुति की भगवान ने, विनय नमानत जलत जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए ना प्रीत। 3 दिन तक समुद्र ने बात नहीं मानी तो भगवान ने कहा कि बात नहीं मानी है तो एक काम किया जाए, तीर को उठाया जाए और चलाया जाए। तो लक्ष्मण जी ने पीछे से मुस्कुरा के कहा कि यही करना था तो पहले करते, हम तो पहले ही कह रहे थे कि अब समुद्र से क्या प्रार्थना करो, पहले ही तीर चलाओ। भगवान ने एक बड़ा अद्भुत संकेत दिया यहां, भगवान ने कहा कि दंड का प्रयोग तब करना चाहिए जब सभी जगह से हार जाओ, पहले तो विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए हमारे धर्म शास्त्रों में 4 नीति है, साम दाम फिर दंड अंत में भेद, पहले विनम्र प्रार्थना, जितनी प्रार्थना की जा सके उतना दो। प्रार्थना से जब कोई ना माने तो लालच देकर, और परमात्मा की यहां भी यही है, भक्ति के मार्ग में जब कोई ऐसे नहीं आता है तो दुख होता है, दुख होता है उसको दुख मिलता है तो दुख निपटाने के चक्कर में भक्ति करता है। तो भगवान कहते हैं ठीक है हम तुम्हारे दुख निपटा देंगे, पहले भक्ति करो। क्या करें, हनुमान चालीसा पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ने लगते, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हे हनुमान जी महाराज। और संत कहते हैं भाई एक काम करो, दुख में सुमिरन सब करें सुख में करे ना, और जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे को। यदि कोई सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होगा, लेकिन हम लोगों पे जब विपत्ति आती तब भगवान को पुकारते, हे भगवान हम पर दया करो, हे परमात्मा हम पर कृपा करो, हे प्रभु हम पर कृपा करो। आप लोगों में से ज्यादा लोग हमें भरोसा है सुख की तलाश में बैठे, क्या ये बात सही है? अरे बोलो तो, ऐसे बैठे जैसे तुम विदेशी हो हम देसी हैं। सुख की तलाश में हो कि नहीं हो, कौन कौन सुख पाना चाहता, हाथ उठाओ सब। जो हाथ खड़े नहीं कर रहे वो नहीं चाहते, अच्छा पाना चाहते, ठीक है हाथ नीचे करो,

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
6: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
7: मैं पिछले 1 साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
8: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
9: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
6: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
10: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
11: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है, डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
6: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
12: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
6: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
13: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए। इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
6: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
14: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
15: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
14: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना क्या मैं डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूं हॉस्पिटल में।
6: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
16: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अगना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
6: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
10: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है, मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
6: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है। यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
17: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था, होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
10: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं। अब आप देखो मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
18: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
19: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
6: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
20: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। टू ईयर्स बैक व्हेन वी शिफ्टेड टू इंडिया, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, वी स्टार्टेड यूजिंग इट। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
6: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
21: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है, और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
6: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
13: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेम्परेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेम्परेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
22: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में, डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
8: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था, पर जब से ये फौजी 360 किया है ना शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
6: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
23: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है, इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
24: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी, पर जब से ये फौजी 360 लिया है कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ। अब दर्द में पूरे तरीके से राहत है।
0: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
6: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
7: एक साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है। और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो, आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
6: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है, और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
8: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
23: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
6: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
12: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
6: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते।
5: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT University गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
7: सावन के तीसरे मंगलवार को आज रखा जा रहा मंगला गौरी व्रत अखंड सौभाग्य के साथ सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना। बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर पुंज में सुरक्षा के सख्त इंतजाम, आने जाने वालों पर सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर, यात्रा मार्ग पर कई जगह हो रही सघन जांच। यूपी पुलिस के एंथम खाकी का सितारा को बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन का सलाम, बोले कुछ सितारे आसमान में चमकते हैं, कुछ खाकी पहनकर जमीन पर। भारी बारिश के चलते यूपी के भदोई में आज 12वीं तक के सभी स्कूल बंद, दिल्ली यूपी बिहार समेत 19 राज्यों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय युवा शटलर आयुष शेट्टी ने किया बड़ा उलट फेर, दुनिया के नंबर वन चीनी खिलाड़ी शी युकी को सीधे सेटों में दी मात, पुरुष सिंगल्स के दूसरे दौर में मिली एंट्री।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
7: आज है सावन का तीसरा मंगलवार, माँ मंगला गौरी की आराधना और व्रत का दिन। सुहागिन महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्य, सुखी दाम्पत्य और परिवार की समृद्धि का सबसे मंगलकारी पर्व माना जाता है आज का दिन। मान्यताओं के मुताबिक आज के दिन माँ मंगला गौरी की पूजा करने वाली महिलाओं पर बरसती है विशेष कृपा, माँ मंगला गौरी देती है अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद। माँ मंगला गौरी देवी पार्वती का अत्यंत मंगलकारी और करुणामयी स्वरूप, मान्यता है कि उनकी कृपा से दाम्पत्य जीवन में आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए हजारों वर्षों तक की थी कठोर तपस्या, कठिन व्रत और अटूट भक्ति के बल पर महादेव को किया था प्रसन्न। अयोध्या के अरुण कुमार सोनी विशाल कावड़ में बाबा भोलेनाथ की प्रतिमा लेकर जा रहे हैं देवघर। चश्मा, मुकुट और पगड़ी में सजे भोलेनाथ बने आकर्षण का मुख्य केंद्र। अररिया की 29 साल की रानी यादव पहली बार परिवार के साथ कर रही हैं बाबा धाम की यात्रा। कावड़ियों को दी जा रही है सुविधाओं से खुश दिखी यात्रा रानी। प्रयागराज की रीनू भारती अपने 2.5 साल की बेटी को बहंगी में बिठाकर जा रही हैं बाबा बैद्यनाथ के दरबार। मन्नत पूरी होने पर बाबा के दरबार में लगाएंगी हाजिरी। हावड़ा के सोमनाथ अपने 7 महीने के बेटे प्रिंस को बहंगी में बिठाकर ले जा रहे हैं बाबा धाम। मन्नत पूरी होने पर बाबा को धन्यवाद देने पहुंच रहा है परिवार। सुल्तानगंज से देवघर तक कच्ची कावड़िया पथ पर देश भर से श्रद्धालु बाबा धाम की ओर बढ़ रहे हैं। हर तरफ भक्ति और बोलभम के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। जालना में निकली भव्य कावड़ यात्रा, सैकड़ों शिव भक्त इसमें शामिल। आस्था भक्ति में सराबोर दिखे श्रद्धालु। गोदावरी का जल लेकर पंचमुखी महादेव मंदिर पहुंचे भक्त। पंचमुखी महादेव का हुआ जलाभिषेक। बम बम भोले की गूंज। जयपुर के गलता धाम में अनोखा नजारा, हेलीकॉप्टर से भक्तों पर हुई पुष्प वर्षा, श्रद्धालुओं ने लगाए जयकारे। फूलों की बारिश से गूंजा गलता धाम, आसमान से बरसे फूल, श्रद्धालुओं के लिए पल बना यादगार। जौनपुर में कावड़ियों पर हुई पुष्प वर्षा, करशूलनाथ महादेव मंदिर में खास नजारा, हर तरफ गूंजे भोलेनाथ के जयकारे। बूढ़ा अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था जम्मू से चलकर पहुंचा पुंज। आस्था की यात्रा में भक्तों का जोश है। पुंज में बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही के लिए कई जगह सुरक्षा घेरा। आने जाने पर वालों पर कड़ी नजर। यात्रियों की सुरक्षा के लिए कई स्तरों पर हो रही है निगरानी। यात्रा के रास्तों पर सुरक्षा के साथ ट्रैफिक और निगरानी की भी पुख्ता तैयारी। बूढ़ा अमरनाथ प्राचीन मंदिर से पहले कॉलेज ग्राउंड में पहुंचने पर जत्थे में शामिल यात्रियों का किया गया भव्य स्वागत। पहले जत्थे में 2041 यात्री शामिल। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना किया था पहला जत्था। बाबा चट्टानी के दर्शन करने को लेकर उत्साहित है भक्त। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला स्थित प्रसिद्ध श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर पहुंचे क्रिकेटर तिलक वर्मा। भगवान वेंकटेश्वर के किए दर्शन, सुप्रभात सेवा में हिस्सा। केरल से एक पहिए पर साइकिल यात्रा पर निकला युवक। युवाओं में नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाना है इसका मकसद। एक पहिए पर साइकिल चलाते हुए 11,000 किलोमीटर की यात्रा पर निकला है ये शख्स। रास्ते में हर इंसान इस अनोखी साइकिल यात्रा को देखकर है हैरान। मेघालय के सीएम संगमा ने पाइन होम इको सस्टेनेबल प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना है इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य। मेघालय के मावलंगवीर गांव में करीब 6 करोड़ की लागत से बना है ये प्रोजेक्ट। इससे पर्यटन, स्थानीय कारीगरों और पर्यावरण अनुकूल वास्तुकला को मिलेगा बढ़ावा। सेना के बाद अग्निवीरों को नौकरी, बिजनेस और करियर में मिलेगी नई राह। देश का पहला नेशनल सिविल रिहैबिलिटेशन फोरम अग्निमंथन ऐप लॉन्च। 4 साल की सैन्य सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को नागरिक जीवन में बेहतर रोजगार, स्किल डेवलपमेंट और करियर के अवसर उपलब्ध कराना है इस ऐप का उद्देश्य। देश के ज्यादा से ज्यादा अग्निवीरों तक अग्निमंथन की पहुंच मुहैया कराने की योजना। सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों और मेंटोरशिप और गाइडेंस देगी ऐप। सेना ने जम्मू कश्मीर के रामबन में पूर्व सैनिक सम्मेलन और वीर नारी सम्मान समारोह का किया आयोजन। इस कार्यक्रम में 150 से अधिक पूर्व सैनिक और कई वीरांगनाओं ने लिया हिस्सा। कार्यक्रम में देश के लिए बलिदान देने वाले सैनिकों की पत्नियों को किया गया सम्मानित। पूर्व सैनिकों की पेंशन, स्वास्थ्य और अन्य शिकायतों के समाधान के लिए लगाया गया विशेष स्टॉल। यूपी पुलिस का पहला आधिकारिक एंथम खाकी का सितारा हुआ रिलीज। अमिताभ बच्चन की आवाज और शंकर महादेवन के संगीत से सजा है यह एंथम। अमिताभ बच्चन ने शेयर किया यूपी पुलिस का पहला आधिकारिक एंथम खाकी का सितारा। लिखा, कुछ सितारे आसमान में चमकते हैं, कुछ खाकी पहनकर जमीन पर। पुलिस के साहस, सेवा, महिला सुरक्षा, आपदा राहत और जनसेवा की दिखाई गई है झलक। 6.5 मिनट में पुलिस की पूरी कहानी। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, सुनी लोगों की समस्याएं, दिया जल्द समाधान का आश्वासन। यूपी सरकारी नौकरियों की भर्ती को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। भर्ती प्रक्रिया को वार्षिक कैलेंडर के तहत किया जाएगा समयबद्ध। सीएम योगी का आज से दो दिवसीय दिल्ली दौरा, कल दिल्ली में सीएम योगी इंडिया जापान बिजनेस कॉन्क्लेव में होंगे शामिल। सीएम योगी जापानी प्रतिनिधि मंडल से करेंगे मुलाकात, जापानी कंपनियों को यूपी में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे सीएम योगी। सीएम योगी आदित्यनाथ का युवाओं को संदेश, बोले युवाओं को निगल रहा ड्रग और स्मार्टफोन का नशा, दोनों से दूर रहने की अपील। कोटा से तो चार्टर्ड अकाउंटेंट दोस्तों की अनोखी सक्सेस स्टोरी आई सामने, हेल्दी स्नैक स्टार्टअप शुरू करने के लिए छोड़ी मुंबई की नौकरी, आज लंदन दुबई तक फैला बिजनेस। साल 2024 में एनीवे के नाम से शुरू किया हेल्दी स्नैक स्टार्टअप, आज 800 से अधिक दुकानों तक पहुंच चुके हैं कंपनी के प्रोडक्ट्स। देहरादून में बाढ़ में फंसे 6 छात्रों के लिए एसडीआरएफ के जवान बने देवदूत, सभी छात्रों का रेस्क्यू चलाकर बचाए गए उनकी जान। विश्वविद्यालय के 6 छात्र ट्रैकिंग के लिए गए थे स्वर्णा नदी, अचानक बढ़ गया नदी का जलस्तर। बंगाल के आसनसोल में भारी बारिश से अंडरपास में भरा पानी, वाहनों की आवाजाही पर लगी रोक। भारी बारिश से कई इलाकों में भी भरा पानी, लोगों की बड़ी परेशानी। भदोही में भारी बारिश जारी, 12वीं तक के सभी स्कूलों में छुट्टी का ऐलान। बाराबंकी में उफान पर सरयू नदी, इलाके में बाढ़ का अलर्ट, निचले इलाकों में बढ़ाई गई सतर्कता। पौड़ी में लगातार बारिश के चलते बड़ा नदियों का जलस्तर, पौड़ी देवप्रयाग मोटर मार्ग पर पहाड़ी से भारी मलबा आने के कारण यातायात पूरी तरीके से ठप। शिमला में भारी बारिश के बाद तापमान में आई गिरावट, पहाड़ों पर छाई धुंध की मोटी परत। प्रयागराज में भारी बारिश से हालात हुए गंभीर, बारिश के चलते 1 से 12 तक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित। ऋषिकेश में भारी बारिश के बीच उफनती 3 नदी में पलटी कार, तेज बहाव के बीच 2 लोग फंसे। जूनियर विश्व चैंपियनशिप में ऐतिहासिक जीत के लिए अनाहत सिंह को किया गया सम्मानित, एचसीएल और स्क्वैश रैकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किया उन्हें सम्मानित। जूनियर विश्व चैंपियनशिप बनने वाली पहली भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत, अपनी इस उपलब्धि से लाखों युवाओं की प्रेरणा बनी अनाहत सिंह। फिल्म प्रेम कीटाणु का टीजर हुआ आउट, फिल्म में वीर पहाड़िया, अपार शक्ति खुराना, आफिया और राकेश बेदी का है अहम रोल। इमरान हाशमी की अपकमिंग फिल्म गन मास्टर G9 की रिलीज डेट आई सामने, फिल्म 27 नवंबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में देगी दस्तक। रणवीर सिंह की फिल्म प्रलय की शूटिंग की हुई शुरुआत, इस फिल्म में रणवीर सिंह के साथ लोका फेम एक्ट्रेस कल्याणी प्रियदर्शन आएंगे नजर। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में अनोखा नजारा आया सामने, सुपर हीरो बनकर निकले सैकड़ों बाइकर्स, बच्चों के लिए खिलौने लेके पहुंचे। बीमार बच्चों के चेहरे पर आई से मुस्कान, बाइकर्स ने बच्चों को बांटे खिलौने, बच्चों ने अपने हीरे को गले लगाया। बाइकर्स का खास चिल्ड्रंस डे मिशन, सड़कों पर बाइक रैली का दिखा शानदार नजारा, डिज्नी के किरदारों में भी नजर आए बाइकर्स। अस्पताल बच्चों ने सुपर हीरो संग खिंचवाई तस्वीरें, बच्चों के चेहरों पर दिखे मुस्कान, बना खुशी का माहौल। कावा क्लब की पहल को 20 साल हुए पूरे, 2006 से जारी है ये नेक पहल, हर साल बच्चों के लिए जुटते हैं बाइकर्स। इस्तांबुल में फॉर्मूला विंग वर्ल्ड चैंपियनशिप आयोजित, इटली के अलेक्जेंड्रो टोमासी ने जीता पुरुषों का वर्ल्ड टाइटल। इटली के फ्रांसेस्को कैंपुजो को लगातार दूसरी बार सिल्वर, पिछले साल भी जीता था सिल्वर, इस बार भी गोल्ड से चूके। फ्रांस के थॉमस प्राउस ने जीता ब्रॉन्ज, सीजन की अच्छी फॉर्म जारी रखी, पोडियम पर जगह बनाई। फ्रांस की वेना पिकोट ने महिला वर्ग का जीता खिताब, हवा की चाल ने बदला पूरा मुकाबला, वेना पिकोट का शानदार प्रदर्शन। इटली के मौजूदा चैंपियन स्पानू को सिल्वर से करना पड़ा संतोष, मुश्किल हवाओं के बीच पिकोट से हुआ कड़ा मुकाबला।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
8: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों का ड्रामा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
5: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
9: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है। और सबसे ज्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूं गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रवि गिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना, जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूली, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूरनकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हरड़ के फायदे। ये हरड़ है औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लेटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लेटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरनकंद, यह है सूरनकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में ये है इंद्रायन, ये है इंद्रायन की जड़, इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
8: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों का ड्रामा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: माउंट डेल्टा 41 पर पहली बार पर्वतारोहण और पैराग्लाइडिंग कर जिम एंड डब्ल्यूएस ने रचा इतिहास। 13 सदस्यीय टीम ने भारतीय एडवेंचर के इतिहास में हासिल की बड़ी उपलब्धि। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय युवा शटलर आयुष शेट्टी ने किया बड़ा उलटफेर। दुनिया के नंबर वन चीनी खिलाड़ी शी युकी को सीधे सेटों में दी मात। पुरुष सिंगल्स के दूसरे दौर में मिली एंट्री। भारी बारिश के चलते उत्तर

रहा मंगला गौरी व्रत अखंड सौभाग्य के साथ सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए भगवान शिव माता पार्वती की आराधना। बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर पुंज में सुरक्षा के सख्त इंतजाम, आने जाने वालों पर सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर, यात्रा मार्ग पर कई जगह हो रही सघन जांच।

जय हिंद। गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। 80 साल बीत गए, या यूं कहें कि 80 साल की हो चुकी है हमारी आजादी। कितना अच्छा लगता है ना ये सोचकर, ये महसूस कर कि हम आजाद हैं, आजाद हवा में सांसें लेते हैं। जाहिर है आप सभी ने अपने अपने हिसाब से आजादी का जश्न मनाया होगा, पर जरा सोचिए कि आजाद देश में रहते हुए भी आजादी से दूर जो लोग कैद में हैं, उन्होंने जश्न आजादी कैसे मनाई होगी। जी हाँ, मैं उन कैदियों की बात कर रही हूँ जो किसी ना किसी जुर्म की वजह से जेल में कैद हैं। अब जाहिर है जो खुद कैद हैं, उनसे बेहतर आजादी का मतलब कोई और क्या जाने। तो इसीलिए इस खास मौके पर आज आपको अपने साथ एक जेल लिए चलती हूँ, ये दिखाने और बताने के लिए कि इन कैदियों की नजर में आजादी के मतलब या मायने क्या हैं।

0: पूरा देश जश्न आजादी के रंग में सराबोर था। लाल किले से लेकर शहर शहर, गांव गांव, कस्बों कस्बों तक तिरंगा लहराया और उसी तिरंगे के नीचे खड़े होकर हम सब ने गर्व के साथ आजादी की 80वीं सालगिरह के मौके पर अपने अपने तरीके से आजादी को याद किया, उसे महसूस किया। पर आजादी के इसी मौके पर जीएनटी की टीम ने सोचा कि क्यों ना उन लोगों के बीच जाकर जश्न आजादी के जश्न को देखें, जिनसे बेहतर शायद आजादी की अहमियत को कोई महसूस ही नहीं कर सकता। इसीलिए नहीं कर सकता क्योंकि वो इस वक्त कैद में है, उनकी आजादी पर पहरा है, क्योंकि उन्होंने आजाद देश में वो जुर्म किए जिनके लिए कानून ने उन्हें समाज से अलग कर एक हाथ चार दीवारी में कैद कर रखा है, जिन्हें हम और आप जेल कहते हैं। तो बस कैदियों के साथ आजादी मनाने और आजादी का मतलब समझने हम पहुंच गए जिला कारागार गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा जेल। जुर्म की डिक्शनरी में जितने भी जुर्म हैं, लगभग उन सारे जुर्मों में सजा याफ्ता या विचाराधीन कैदी इस जेल में अपनी अपनी सजाएं काट रहे हैं। लेकिन 15 अगस्त की सुबह 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की तरह वो सारे कैदी भी इसी तिरंगे के साथ थे।
1: जेल के लिए आजादी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी व्यक्ति यहाँ है वो आजाद नहीं है, मन से भी नहीं है और शरीर से भौतिक रूप से भी नहीं है, जेल में बंद है, अपने घर परिवार से दूर है। तो आजादी को वो एक आजादी के पर्व के रूप में देखता है। पहले तो देश से अपने को जोड़ता है क्योंकि किन्हीं कारणों से जेल में आया है, उसका सम्मान और उसका जो सुरक्षा सब कुछ प्रभावित हुई है घर परिवार के दृष्टि में भी, तो उसको लगता है कि देश की सेवा करके मैं लोगों के बीच में मेरा एक अच्छा सम्मान हो जाएगा, मैं बेहतर कर पाऊंगा और मुझे फिर से पुरानी वो चीजें मिल जाएंगी जो मेरी छूट चुकी है, उसके अंदर ऊर्जा भी रहती है। तो जेल में आके वो देश से जुड़ता है, भक्ति से जुड़ता है और कुछ नया करने की कोशिश करता है।
0: ये वो पल था जब इन कैदियों के चेहरों पर सिर्फ एक ही भाव था, राष्ट्रभक्ति का भाव। सब एक साथ एक ही तराना गा रही थी, राष्ट्रभक्ति। यहाँ आकर बार बार मन में एक ही सवाल ख्याल बनकर आ रहा था, हम सब तो आजाद हैं, आजाद देश में आजादी के साथ सांसें ले रहे हैं, अपने हिसाब से जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, काम करते हैं, मगर हमारे इसी आजाद देश में ये कैदी है तो कैद, यानी आजाद देश में रहते

0: हुए भी आजादी से दूर। फिर कैद में रहते हुए आजादी के बारे में क्या सोचते होंगे? क्या हमसे और आपसे आजादी को लेकर इनकी अलग सोच होगी, या इनकी नजर में आजादी की हम सबसे कहीं ज्यादा कदर होगी? तो बारी बारी से हमने इन्हें कैदियों से बातचीत के दौरान इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश की।
1: हम तो यहाँ बंदिश में है मैडम जी, हम कैसे जी रहे हैं? हम तो हर तरह से बंदिश में, अपनी मर्जी से हंस नहीं सकते और अपनी मर्जी से कूद नहीं सकते, अपनी मर्जी से कोई चीज खा नहीं सकते, जो जेल प्रशासन का है उसी को खाएंगे, उसी जो घर के कपड़े दे जाएंगे वही पहनेंगे, हमारी तो हर तरह की बंदिश है।
2: आजादी में जब बाहर थे मैम, वो भी एक आजादी थी, वहां पे मम्मी भी थी, पापा भी थे, सिस्टर भी थी। मम्मी कुछ नहीं देती थी तो पापा दे देते थे सब कुछ, पापा कुछ नहीं देते थे तो मम्मी, दोनों भी कुछ नहीं देते थे ना मैम, तो मैम सिस्टर थी, मेरे पांच सिस्टर है और बहुत प्यार करती है, मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूँ। जब मम्मी पापा रूठ जाते थे या मैं कोई गलती कर देता था तो मैम सिस्टर्स बहुत प्यार करती थी। तो आज़ादी में रह के सबसे ज़्यादा मेरे को तो फील ये होता है कि जैसे हम यहाँ पे हैं, जो हमारे लिए हमारे माँ बाप करते थे अब वो कुछ कोई नहीं करता, वो समझाते थे कि ये गलती मत कर, वो गलती मत कर, लेकिन मैम हमने कर दी तो आज सजा वो बता रहे।
3: मैम मैं तो यहाँ पे बाहर जाना चाहता हूँ बस, और नए मेरे लिए कुछ अपनी फैमिली से मिलना चाहता हूँ, ऐसे टाइम बस।
4: आज़ादी यही है,
3: यही आज़ादी है, सब यहाँ छुट जाने चाहिए, पर
4: बस जेल से आज़ादी मिली तो आप आज़ाद हैं।
5: असली आज़ादी ये है मैडम कि ये जो जेल की जो एक पाबंदी सी है ये ना होकर के जो खुलिया होती है बाहर की वो होनी चाहिए।
6: मैम आज़ादी बहुत मायने रखती है कि चलो अब हम तो जेल में है इस टाइम, ये है कि एक बाहर ये होता है इंसान खुला होता है कि कहीं भी जा सकता है, ये है, लेकिन जेल में ये है आपको जिन जो नियम है कानून है उनके हिसाब से रहना पड़ता है। आप जैसे बैरिक में हैं, बैरिक से निकल के आप यहाँ आ सकते हैं, एक्टिविटी एरिया में आ सकते हैं, बस ये है। यहाँ से आपको जैसे कुछ करना हो आपको मन को मारना पड़ता है इन चीज़ों को लेके।
7: हमारे लिए आज़ादी का हम तो स्वतंत्र तो पहले हो चुके हैं, बस यही कि बाहर होते तो कुछ और बात होती है, अब यहाँ हैं, यहाँ भी इस तरीके से मना रहे हैं यहाँ पे कि बस इंडिया गेट पर थोड़ी बात ही कुछ और है।
4: तो जब आज़ाद हो जाएंगे तो इंडिया गेट पर सेलिब्रेट करना चाहते हैं?
7: होते तो भी बाहर ही होते, नहीं होते
4: क्या करेंगे? आजाद जब यहाँ से बाहर निकलेंगे उसके बाद जब कभी आजादी का ये दिन आएगा तो कैसे सेलिब्रेट करेंगे?
7: सब दोस्तों यार के संग, परिवार के संग जाएंगे, खुला जाके सब खुल के एंजॉय करेंगे,
4: खुली हवा में सांस,
7: आज बड़ी सांस लेंगे।
8: आजादी सब प्रथम तो जीवन में ये है कि आज हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने अपने जान की कुर्बानी दे करके अंग्रेजों से देश के लिए आज़ादी करी, आज़ाद हुए, लेकिन भाग्यवश हम इस उम्र में कारागार आ गए, 2 साल होने जा रही है, और हम आज़ाद अपने को महसूस जब करेंगे जब हम इस जेल से बाहर हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, परिवार में अपने जा मिलेंगे, बच्चों में जा मिलेंगे, एक वो आज़ादी
4: रहेगी।
7: चाहेगा तो वो सब ऊपर वाले के हाथ में है, मालिक चाहेगा तो होएगा, काम जरूर होगा।
0: आजादी के मायने हर इंसान के लिए अलग अलग है। खुली हवा में सांस लेना भी आजादी है और अपने मन पसंद का काम करना भी आजादी है, लेकिन एक कैदी से ज्यादा आजादी की अहमियत और उसके मायने शायद ही कोई समझ पाए।
9: कारागार में जो बंदी निरुद्ध होते हैं उनसे बढ़िया स्वतंत्रता के मायने जो होते हैं कौन समझ सकता है, और उस पर्व को जो कारागार के इस प्रांगण में मनाया जाता है तो एक व्यक्ति जो बंधन में है, बंधन युक्त है, उसको मुक्ति का स्वतंत्रता की जो कीमत है उससे बेहतर कौन माप सकता है। 1947 के बाद ये पहले ऐसे लोग होंगे कारागार के अंदर रहने वाले बंदी होंगे जो स्वतंत्रता की असली कीमत जानते हैं, और हम चूंकि कारागार में हम लोगों को कार्य करते हुए लगभग 11 साल हो भी गए हैं तो हम लोग ये महसूस करते हैं कि जो कारागार से व्यक्ति स्वतंत्रता जब हम उसको छोड़ते हैं यहां से तो उसके चेहरे पे जो खुशी होती है ये महसूस कर पाते हैं कि यही खुशी हम 1947 में अपने समस्त देशवासियों के चेहरे पर भी देखे होंगे जो इतने लंबे समय तक अंग्रेजों के गुलाम थे, और इसके बाद 1947 में जब वो आजाद हुए होंगे तो हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार की खुशियां मनाई होंगी, उस उस जो उस खुशी को हम लोग क्षणिक रूप में अपने जो अंदर बंद कैदी हैं जब ये छूटते हैं तो उनके चेहरे पे हम महसूस कर पाते हैं। इसीलिए हम लोग इस त्योहार को कारागार के अंदर बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और ये ही एक ऐसा त्योहार पर्व है जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं आता है। इसमें समूचा कारागार परिवार चाहे अंदर का हो चाहे बाहर का हो सभी लोग इस तिरंगे के नीचे खड़े होकर अपने देश की आन बान शान और अपने वीर सपूतों को याद करके इस त्योहार को कार्यक्रम के माध्यम से जो जैसे चाहे अपने कलाओं के माध्यम से अपनी बातों के माध्यम से प्रस्तुत करता है और बड़े ही उत्साहपूर्वक इसको एंजॉय करता है।
10: मैं खुद महसूस करता हूँ, मुलाकात आती है जाली के उधर उसकी पत्नी बच्चे हैं तो उसकी कोशिश होती है छू लूं देख लूं पास में करूं, तो वो जो एहसास होता है वो हम ही लोग समझ सकते हैं जो पास से देखते हैं कि व्यक्ति क्या होता है। और ये साइकोलॉजी में कहा भी जाता है टच हगिंग, ये सब चीजें व्यक्ति को थोड़ा सा संतुष्टि प्रदान करती हैं। व्यक्ति इससे दूर है तो उसको जो जितना महसूस होता है शायद अन्य किसी को ना हो। जैसे एक पिंजड़े का पंछी होता है जो उड़ता है चहचहाता है, जब अंदर रहता है तो चीजें थोड़ी सी उसकी कम हो जाती है। तो ये स्वाभाविक है कि बंदियों के साथ भी ये चीज होता है।
0: आजादी अपने साथ जिम्मेदारियां लेकर आती है। एक आजाद देश सचमुच तब आजाद होता है जब समाज को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है। बेशक इनके जुर्मों ने इन्हें समाज से अलग थलग इस चार दीवारी में कैद कर रखा, मगर ये जेल है तो इसी भारत की धरती पर और ये कैदी भी तो भारत के ही हैं। इसीलिए जश्न आजादी या स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर इनके अंदर भी वही देश प्रेम को लेकर वही जज्बा देखने को मिला जो हर हिंदुस्तानी के अंदर देखने को मिलता है।
9: 1947 के बाद जब हमारे लोग इस जेल में रहने लगे, अर्थात भारतीय ही राज भारतीय ही इसके अधिकारी थे और भारतीय ही इस जेल में बंद होते थे, जो हमारे आईपीसी या हमारे नियमों को समाज के चीजों को उल्लंघित करते थे उनको जेल में बंद किया गया, तो उनको जब सामना करना पड़ा तो जेलों की परिभाषाओं को बदलना पड़ा और यह प्रयास किया गया कि ये हमारे लोगों के बीच ये है। और महात्मा गांधी जी की वो लाइन है कि पाप से घृणा करो पापी से नहीं घृणा करो, पापी में सुधार की एक गुंजाइश होती है, तो उसी वाक्य पर हम लोग काम करते हैं। और वर्तमान में मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अब हमारा प्रताड़ना गृह का वो स्वरूप खत्म हो गया है, अब यह सुधारात्मक गृह के रूप में स्थापित हो चुका है। और जैसा कि आपने देखा होगा कि कौशल विकास से लेकर सारी जगहों पर अगर यह न बताया जाए कि यह बंदी है यह कैदी है और इनको किसी मंच पर ले जाकर खड़ा करा करके डांस कराया जाए संगीत कराया जाए तो आप इसको देखकर नहीं कह सकती हैं कि कभी यह कारागार में निरुद्ध रहा है या इसके अंदर इतने ऐब है। जैसा कि लोगों के मन में धारणा होती है कि यह कारागार का व्यक्ति है कारागार में बंदी है, तो हमारे मन में एक नकारात्मकता की जो छवि उभर के आती है उस छवि को हम लोग धूमिल करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं, उसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें हम लगातार सफल हो रहे हैं। और जो सफलता हमें मिल रही है वो हमें अपने बंदियों के माध्यम से ही मिल रही है।
11: जेल में रह के भी हम उस चीज को सेलिब्रेट करने जो हम बातचीत नहीं कर सकते थे, जैसे हमने 15 अगस्त कभी वैसे नहीं मनाया था, स्कूल टाइम में मनाया था, अब इस एज में आके मना रहे हैं, छोटे लड़के मेरे साथ वो मना रहे हैं, अपनी जो परफॉर्मेंस मेरे जिंदगी में रह गई थी स्कूल टाइम में जो करता था आज मैं वो जेल में आके कर रहा हूँ। इस चीज की खुशी भी होती है कि उस चीज को हम जी रहे हैं। बाहर तो ये फिर फैमिली है, जॉब करना है, जॉब पे जाना है, बस बंदिशों में रहते हैं वहां पे भी, लेकिन यहाँ पे ये है जो बंदिश बाहर थी वो यहाँ नहीं है, उस चीज को सेलिब्रेट कर सकते हैं हम आजादी के साथ। यहाँ पे ये था जो जज्बा होता ना अंदर रह के भी, जैसे हम किताबें पढ़ते हैं बहुत लाइब्रेरी में किताबें, उन चीजों का ज्ञान मिलता है कि हमारे देश के लिए ऐसे ऐसे करा हमने कुछ नहीं करा, लेकिन अब हमें जो मौका मिलता ना उस चीज को दिखाने का या करने का वो जज्बा अलग होता ना, देखने में फील होता अंदर से जोश आता किस चीज में। आपने देखा अभी हमने प्रोग्राम करा है भगत सिंह को लेके, भगत सिंह ने अपनी छोटी उम्र में सब कुछ करा, उस चीज को हम अब देखते हैं फील होता है नहीं हमने यार क्या करा बाहर अभी तक जो कुछ नहीं करा, उन्होंने इतने इतने बड़े बड़े काम करे हम उनके लिए सेलिब्रेट भी नहीं कर सकते कुछ दिखा नहीं सकते। और ये चीज है कि अंदर जाकर जोश और जुनून आया था एक चीज को देख के देशभक्ति को लेके, हाँ अभी कुछ कर रहे हैं।
1: इस माहौल में आने के बाद में जो कौशल विकास है इसमें आने के बाद में ये लगा लो हम 9 बजे से आ जाते हैं 4 बजे तक रहते हैं, तो उस समय तो कोई कोई पल आ जाए तो कह ना सके, वरना जो दुखी मन कम होता है
4: कुछ पल।
1: हाँ कुछ
12: मिलजुल के सारे बना रहे हैं, गाने वाने गाए आज हमने और तो काफी प्रोग्राम हुए, उसी में तिरंगा रैली भी निकली कल।
13: अच्छा नहीं लगता पैसों का महत्व बढ़ता हुआ, अच्छा नहीं लगता, दिलों में इंसानियत का स्तर घटता हुआ, मगर फिर भी हमें अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता पर गर्व है, मिलके मनाएंगे हम 15 अगस्त, ये अपनी आजादी का पर्व है।
0: त्योहार आजादी का हो, पूरा देश आजादी के गीत गा रहा हो, तो भला जेल और जेल के कैदी कैसे पीछे रह सकते हैं। इस मौके पर जेल में बंद कई छुपे रुस्तम कैदियों की कलाकारी भी निखर कर बाहर आती दिखाई दी। रंगारंग कार्यक्रम में जश्न आजादी के मौके पर ये जो खास पेशकश आप देख रहे हैं, इसे पेश करने वाले ये सारे के सारे कैदी ही हैं।

स्वतंत्रता दिवस पर इस खास रंगारंग कार्यक्रम के लिए इन्होंने काफी तैयारी की थी। पिछले कई दिनों से रिहर्सल चल रहा था। जेल के स्टाफ ने कैदियों की छुपी कला को पहचान कर उन्हीं में से अलग अलग टीम बनाई थी।

0: बंदियों में कई दिनों से उत्साह, सारे बंदियों में लोग अपने गाने का प्रैक्टिस कर रहे हैं, नाचने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, सामूहिक जो परफॉर्मेंस देना उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और सारे बंदियों को भी इंतजार है कि एक कार्यक्रम आज होगा, सब लोग मिलके, पूरी जेल एक साथ मिलके बैठ के देखेगी, बंधनों से, बीड़ियों से, जकड़नों से, अड़गड़ों से, बैरकों से दूर खुले में बैठ के देखेगी और आजादी के जश्न में शामिल होगी। ये सबको इंतजार रहता है और आज वो दिन है।
1: पूरे दिन आजादी का जश्न मनाने के बाद अब बारी थी खाने की। वैसे तो हर दिन का जेल मेन्यू पहले से तय रहता है, लेकिन आज के खास मौके को देखते हुए सभी कैदियों के लिए खाने के खास इंतजाम किए गए थे। तिरंगा फहराने के बाद पहले तो आज पूरे जेल में सभी कैदियों और जेल स्टाफ को लड्डू बांटे गए और फिर खाने में सब्जी, पूरी और खीर बनाया गया। कैद में ही सही पर जश्न आजादी पर पूरे जेल ने अच्छा खाना खाया।
2: जैसे स्कूलों में आपने देखा होगा कि स्कूल में हम लोग जब छोटे थे तो ध्वजारोहण के पश्चात मिष्ठान वितरण और किसी किसी स्कूलों में पूरी सब्जियों का भी वितरण कराया जाता था। इन सभी चीजों का इस कारागार में भी और पूरे उत्तर प्रदेश के कारागारों में भी इन चीजों को यूज प्रयोग किया जाता है, मिष्ठान वितरण कराया जाता है, साथ में उनको भोजन, अच्छा भोजन, पूरी सब्जी और खीर वगैरह सब चीजें खिलाई जाती
0: है। आज सारे बंदी मिलके प्रोग्राम देख रहे हैं, एक साथ बैठे हुए हैं, सब हंस बोल के सब जो है देख रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, जो परफॉर्मेंस बंदी कर रहे हैं उसका उत्साह वर्धन भी कर रहे हैं। हर आदमी खुश है। इनको आज जो है इस पर्व पे लड्डू भी मिल रहा है, इसके बाद स्पेशल है पूरी सब्जी और खीर है इनके लिए, अलग से आज बनाई जा रही स्पेशल सब्जी है। सारे बंदियों में उत्साह है।
1: बहुत खूबसूरत है ये चार दीवारी, इसकी सजावट, इसका रंग रूप आकार, वाकई बहुत खूबसूरत है ये चार दीवारी। मगर है तो चार दीवारी, इस चार दीवारी के उस पार भी एक दुनिया थी और इस पार भी दिल आजाद रहना चाहता है मगर कैद है, और इसी कैद का नाम तो जेल है। यहीं से तो आजादी चाहते हैं ये लोग। अब आप ही सोचिए, दिन आजादी का हो तो इनकी आजादी की ख्वाहिश और कितनी परवान चढ़ती होगी, है ना? प्रवेश पांडे और विनय अग्रहरी के साथ मनीषा झा, गुड न्यूज टुडे। हमसे पूछो क्या होती है आजादी, हमने तो सांसों को भी पहरे में देखा है। ये कहानी यहाँ के हर एक कैदी की है। इसी के साथ नोएडा जेल से आज के इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। जय हिंद।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
6: तो देखिए राखी के त्योहार में अभी एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त है, लेकिन बाजारों में राखी की रौनक अभी से दिखने लगी है। इस बार राखी की ढेरों वैरायटी बाजार में मौजूद है, तिरंगे वाली राखियों से लेकर कृष्णा, खाटू श्याम भी खूब पसंद की जा रही है। बच्चों के लिए कार्टून वाली राखियां भी मौजूद है। देखिए बाजारों में राखी की रौनक पर हमारी एक खास रिपोर्ट।
7: कहीं राखी पर बाबा खाटू श्याम की तस्वीर, तो कहीं फूलों से सजी राखियां। भाई बहन के रिश्तों में प्यार भरने के लिए कार्टून कैरेक्टर भी तैयार है। रक्षाबंधन अब कुछ ही दिन दूर है और खूबसूरत राखियों से सज गए हैं बाजार। इस बार खाटू श्याम और तिरंगा वाली राखियों की बाजार में खासी डिमांड है। राखियों के डिजाइन में इस बार कुछ अनोखे प्रयोग भी किए गए हैं। बच्चों के पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर भी इस बार राखियों पर दिख रहे हैं। छोटे बच्चों के लिए लोग ऐसी राखियां ही खरीद रहे हैं।
8: इस बार भैया बच्चों के पैटर्न्स बहुत ज्यादा अच्छे आए, नए नए डिजाइन, बच्चों की वैरायटी में बहुत ज्यादा पैटर्न, कॉम्बो की वैरायटीज बहुत ज्यादा आई है इस बार।
9: बच्चों में भी पोकेमॉन वगैरह,
8: बच्चों के अंदर पोकेमॉन, डोरेमोन, कृष्णा जी, लगभग सब वैरायटी है। लबूबू डॉल का ज्यादा क्रेज चल रहा है, जैसे उस टाइप की राखियां बहुत आई है इस बार।
9: खाटू श्याम की
8: बहुत सारे पैटर्न्स आए, बहुत सारे आर्टिकल्स आए उनके।
7: इस साल रक्षाबंधन 28 अगस्त को मनाया जाएगा। त्योहार में अभी एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त है, लेकिन बाजारों में रक्षाबंधन की रौनक अभी से दिखने लगी है। जिन बहनों के भाई दूसरे शहर या देश में रहते हैं, उन्हें डाक से राखी भेजने के लिए बहनें अभी से राखी खरीद रही हैं।
10: इस बार बहुत अच्छा है, जैसे कि नॉलेज या 15 अगस्त के हिसाब से बहुत अच्छा कलेक्शन लग रहा है, बैंक्स वगैरह और कृष्ण जी वगैरह।
7: हर राखी अपने आप में खास होती है, लेकिन अहमदाबाद की इन राखियों में देश प्रेम और समाज सेवा का संदेश छिपा है। कुछ राखियों में तिरंगे की छटा दिख रही है, तो कुछ में स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ी अहम जानकारियां हैं। कहीं इमरजेंसी सपोर्ट नंबर का जिक्र है, तो कहीं मन की बात में प्रधानमंत्री के नशा मुक्त से जुड़े संदेश को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। खास बात ये है कि ये राखियां सामाजिक समस्या का भी पैगाम दे रही हैं।
11: 50 साल से मैं ये दुकान के अंदर भागीदार हूँ। पहले मेरा राधे श्याम गुप्ता जी पार्टनर थे, अभी उनका लड़का सुनील गुप्ता मेरा पार्टनर है और उनके साथ मिलके राम रहीम की जोड़ी का एक पैगाम दुनिया को पहुँचाते हैं कि अभी मैं मुस्लिम होते हुए भी हिंदू बहनों के लिए राखियाँ बनाता हूँ। जिसे इस बार मैंने तिरंगा की राखी के अंदर भी राखियां बनाई कि हर घर घर तिरंगा लहराएगा, इसी तरह ये तिरंगा के अंदर सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा। उसके बाद मन की बात में जो प्रधान मोदी जी ने कहा है कि 100 सप्ताह मेरा ये व्यसन मुक्ति अभियान चलेगा, तो उनके दिमाग में मेरी जो बात थी वो बैठ गई और मैंने उनके लिए लाखों की तादाद में राखियां व्यसन मुक्ति की बनाई है।
7: सावन माह की पूर्णिमा पर मनाया जाने वाला रक्षाबंधन पर्व भाई बहन के रिश्तों को प्रेम के एक अटूट बंधन से जोड़ता है। इस त्योहार को खास बनाने के लिए बहनें अपने भाइयों की पसंद का ख्याल रखते हुए खास राखियां बाजार से खरीद कर लाती हैं। इस बार बाजार में पारंपरिक राखियों के साथ इको फ्रेंडली और अनोखे डिजाइन वाली राखियां इस त्योहार की खूबसूरती को और बढ़ा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।

0: पंजाब की धरती को गुरुओं की धरती कहा जाता है। यही वजह है कि पंजाब में ऐसे कई धार्मिक स्थल हैं जहां लोगों की आस्था और श्रद्धा जुड़ी हुई है। पंजाब में कई ऐसे प्राचीन श्री गुरुद्वारा साहिब भी हैं जहां लोग अपनी मन्नत मांगने आते हैं।
1: गुरुद्वारे के बाहर सजी दुकानों की रौनक और इन दुकानों पर उमड़ी श्रद्धालु की भीड़। कोई मत्था टेक कर लौट रहा है तो कोई अपनी मनोकामना पूरी होने की खुशी में चढ़ावे की तैयारी कर रहा है। इन दुकानों पर खिलौनों की कई वैरायटीज हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नजर खींचते हैं खिलौने वाले हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज।
2: हाँ जी, मन्नतें पूरी हो गई है। अगले अगले नेक्स्ट ईयर शायद जाइए न्यूजीलैंड का नेक्स्ट ईयर। हाँ जी, मन्नतें है बाहर फॉरेन।
1: असल में विदेश जाने की मन्नत लेकर यहाँ आने वाले श्रद्धालु अपनी मन्नत पूरी होने पर हवाई जहाज चढ़ाते हैं, और यही वजह है कि ये गुरुद्वारा साहिब श्रद्धालुओं के बीच हवाई जहाज वाला गुरुद्वारा के नाम से मशहूर है। जलंधर शहर से करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित गुरुद्वारा श्री तलहन साहिब, मान्यता यह है कि पासपोर्ट या वीजा बनाने में कोई भी अड़चन आ रही हो तो खिलौने वाला हवाई जहाज चढ़ाकर अरदास करने से विदेश जाने की राह में आ रही तमाम बाधाएं दूर हो जाती हैं।
3: बहुत टाइम हो गया इतना मत्था टेकन आंदे, मतलब 4-5-6 साल हो चले यार। एक संडे आना आपका मत्था टेकन।
1: खास बात यह है कि इन खिलौनों को आसपास के बच्चों में ही बांट दिया जाता है। किसी के लिए विदेश जाने की उम्मीद है तो किसी के लिए मन्नत पूरी होने की खुशी। जब यही मन्नत के खिलौने बच्चों के हाथों में पहुंचते हैं तो फिर इस आस्था में खुशियों के रंग घुल जाते हैं। जलंधर से देवेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं। अविश्वास में विश्वास बसता है, जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: Good news today.
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों का ड्रामा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
4: माउंट डेल्टा 41 पर पहली बार पर्वतारोहण और पैराग्लाइडिंग कर जिम एंड WS ने रचा इतिहास। 13 सदस्यीय टीम ने भारतीय एडवेंचर के इतिहास में हासिल की उपलब्धि। भारतीय इलेक्शन सिस्टम के मुरीद हुए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, कहा हमें भारत से सीखना चाहिए, सेव अमेरिका एक्ट पास कराने पर दिया जोर। भारी बारिश के चलते यूपी के भदोही में आज 12वीं तक के सभी स्कूल बंद। दिल्ली, यूपी, बिहार समेत 19 राज्यों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी। भारी बारिश और उफनती नदियों के बीच देवदूत बने SDRF के जवान। ऋषिकेश में पानी में फंसे युवकों की बचाई जान। चंबा में भी बड़े स्तर पर चला रेस्क्यू अभियान। सावन के तीसरे मंगलवार को आज रखा जा रहा मंगला गौरी व्रत अखंड सौभाग्य के साथ सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
4: सज गई है खबरों की प्लेट, तैयार है गुड न्यूज का मेन्यू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल।
5: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषा नहीं। हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर हर अहम खबर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं 5:25 अच्छी खबरों के साथ।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
4: सेना के बाद अग्निवीरों को नौकरी, बिजनेस और करियर में मिलेगी नई राह। देश का पहला नेशनल सिविल रिहैबिलिटेशन फोरम अग्नि मंथन ऐप लॉन्च हुआ। अमिताभ बच्चन ने शेयर किया यूपी पुलिस का पहला आधिकारिक एंथम, खाकी का सितारा। लिखा कुछ सितारे आसमान में चमकते हैं, कुछ खाकी बनकर जमीन पर। केरल से एक पहिए की साइकिल पर 1000 किलोमीटर की यात्रा पर निकला युवक। युवाओं में नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाना है मकसद। मेघालय के सीएम संगमा ने पाइन होम इको सस्टेनेबल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना इसका उद्देश्य। कोटा के दो चार्टर्ड अकाउंटेंट दोस्तों की अनोखी सी सक्सेस स्टोरी। 2024 में एनीवे के नाम से शुरू किया हेल्दी स्नैक स्टार्टअप, आज लंदन दुबई तक फैला बिजनेस।
5: आज सावन का तीसरा मंगलवार, मां मंगला गौरी की आराधना और व्रत का दिन। अयोध्या के अरुण कुमार सोनी विशाल कावड़ में बाबा भोलेनाथ की प्रतिमा लेकर जा रहे हैं देवघर। चश्मा, मुकुट और पगड़ी में सजे भोलेनाथ बने आकर्षण का केंद्र। हावड़ा के सोमनाथ अपने 7 महीने के बेटे प्रिंस को कावड़ में बैठाकर ले जा रहे हैं बाबा धाम। मन्नत पूरी होने पर बाबा को धन्यवाद देने के लिए पहुंच रहा है परिवार। पुंछ में बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही के लिए कई जगह सुरक्षा घेरा। आने जाने वालों के लिए कड़ी नजर। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला स्थित प्रसिद्ध श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर पहुंचे क्रिकेटर तिलक वर्मा। भगवान वेंकटेश्वर के किए दर्शन, सुप्रभात सेवा में लिया हिस्सा।
4: जूनियर विश्व चैंपियनशिप में ऐतिहासिक जीत के लिए अनाहत सिंह को सम्मानित किया गया। HCL और स्क्वॉश रैकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने दिया ये सम्मान। विश्व चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय स्क्वाश खिलाड़ी हैं अनाहत। अपनी इस उपलब्धि से लाखों युवाओं की प्रेरणा बनी अनाहत। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में युवा शटलर आयुष शेट्टी ने किया बड़ा उलटफेर। वर्ल्ड नंबर वन चीनी खिलाड़ी शी युकी को सीधे सेट्स में दी मात। दूसरे दौर में मिली एंट्री। पीवी सिंधु ने भी विमेन सिंगल्स के पहले राउंड में आयरलैंड की सोफिया नोबल को 29 मिनट में 21-11 से हराया। दूसरे राउंड में कनाडा की वेन यू झांग से होगा मुकाबला। विमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप में आज साउथ अफ्रीका से होगा भारत का सामना। टीम इंडिया ने पहले मुकाबले में मजबूत चीन के खिलाफ खेला था 2-2 से ड्रॉ। आवारापन 2 की सफलता पर इमरान हाशमी की पत्नी का इमोशनल पोस्ट। और परवीन हाशमी ने फिल्म इंडस्ट्री में इमरान की मेहनत, अनुशासन और सब्र की तारीफ की। राम गोपाल की अगली फिल्म पुलिस कंपनी में नजर आएंगे अभिनेता हर्षवर्धन राणे। 90 के दशक में मुंबई अंडरवर्ल्ड की पृष्ठभूमि पर बन रही फिल्म में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक की भूमिका में आएंगे नजर। फिल्म प्रेम कीटाणु का टीजर जारी। फिल्म में वीर पहाड़िया, अपारशक्ति खुराना, आफिया और राकेश बेदी का अहम रोल। इमरान हाशमी की अपकमिंग फिल्म गनमास्टर G9 की रिलीज डेट आई सामने। फिल्म 27 नवंबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में देगी दस्तक। रणवीर सिंह की प्रलय की शूटिंग शुरू। इस फिल्म में रणवीर सिंह के साथ लुका फेम एक्ट्रेस कल्याणी प्रियदर्शन आएंगी नजर।
6: अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स में अनोखा सा नजारा। सुपर हीरो बनकर निकले साइक्रो बाइकर्स, बच्चों के लिए खिलौने लेकर पहुंचे। इस्तांबुल में फॉर्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप आयोजित की गई। इटली के एलेसांड्रो टोमासी ने जीता पुरुषों का वर्ल्ड टाइटल। भविष्य में गुब्बारे से अंतरिक्ष तक पहुंच हो सकती है काफी आसान। B2 स्पेस का रॉकून सिस्टम तैयार। चीन में दुर्लभ शॉवल नोज रे मछली ने 12 बच्चों को दिया जन्म। ये मछली दुनिया में बेहद कम बची है और गंभीर खतरे में है। तुर्की में टमाटरों का लाल समंदर। तेज धूप में सूखने के बाद इन्हें भेजा जाता है यूरोप।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लो।
4: 25 अच्छी खबरों के बाद खबरें विस्तार से आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। सावन के तीसरे मंगलवार को आज रखा जा रहा है मंगला गौरी व्रत। अखंड सौभाग्य के साथ सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना। बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर पुंछ में सुरक्षा के सख्त इंतजाम। आने जाने वालों पर सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर। यात्रा मार्ग पर कई जगह हो रही सघन जांच। यूपी पुलिस के एंथम खाकी का सितारा को बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन का सलाम। बोले कुछ सितारे आसमान में चमकते हैं, कुछ खाकी पहनकर जमीन पर।
6: उत्तराखंड और हिमाचल में SDRF के जवान बाढ़ में फंसे लोगों के लिए बने देवदूत। देहरादून, ऋषिकेश और चमोली में SDRF ने बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर बचाई उनकी जान।
4: बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय युवा शटर आयुष शेट्टी ने किया बड़ा उलटफेर। दुनिया के नंबर वन चीनी खिलाड़ी शी युकी को सीधे सेटों में दी मात। पुरुष सिंगल्स के दूसरे दौर में मिली एंट्री।

0: और चलिए लंच टाइम में आज सबसे पहले बात सैलाब के बीच में मिशन जिंदगी की। सावन के इस महीने में देखिए देश के कई हिस्सों में हो रही भारी बरसात के बीच में कई नदियां उफान पर हैं, जिससे कई जगहों पर सैलाब जैसे हालात बन गए। इस मुश्किल की घड़ी में जगह जगह रेस्क्यू मिशन भी चलाया जा रहा है और लोगों की जान बचाई जा रही है।
1: देखिए हर एक जिंदगी अनमोल है। ऋषिकेश में SDRF ने पुलिस टीम के साथ मिलकर बेहद मुश्किल हालात में दो लोगों की जान बचाई। बीती शाम ये दोनों लोग बीन नदी में आए उफान में वजह से फंस गए। वहीं पर चंबा में भरमौर में दो अलग अलग घटनाओं में 45 के करीब श्रद्धालु और एक एक दूल्हे की जान बचाई गई है। कैसे ये लोग आसमान से हो रही आफत की बारिश के बीच बहते दरिया में फंस गए, कैसे इस रेस्क्यू मिशन को अंजाम दिया गया, विस्तार से आगे बताएंगे।
0: और देखिए साथ ही आपको कुल्लू में चले 8 मिनट के रेस्क्यू ऑपरेशन और देहरादून के रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें भी दिखाएंगे, जहां बेहद मुश्किल हालात के बीच में सैलाब के बीच लोगों को बचाकर मिशन जिंदगी को अंजाम दिया गया। तो चलिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सैलाब के बीच में मिशन जिंदगी का ये दौर लगातार चलता रहा, लेकिन यहाँ पर हमारे जवानों ने किस तरह से अपनी मुस्तैदी के साथ लोगों का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया है, वो भी तस्वीरें ठीक आपके सामने हैं। ऋषिकेश, चंबा, कुल्लू और देहरादून की ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, जहां बारिश जो है आफत लेकर साथ में आई, लेकिन इस आफत की घड़ी में किस तरह से राहत का पैगाम लेकर हमारे SDRF NDRF के जवान पहुंचे, वो रेस्क्यू की तस्वीरें आपके सामने।
1: ये चार जगह जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, SDRF की टीम मौके पर पहुंची, जो लोग वहां पर फंसे हुए थे, जिनकी जिंदगी वहां फंसी हुई थी, उनको वहां से बचाया गया। ऋषिकेश, चंबा, कुल्लू, देहरादून, क्योंकि मौसम बदल रहा है उसी के साथ पहाड़ी इलाकों में हालात भी बदल रहे हैं। ऋषिकेश में दो जिंदगियों को बचाया गया है, दो लोगों की जान वहां पर फंस गई। SDRF की टीम की सूझबूझ के कारण उन लोगों की जान बचाई जा सकी। तो सबसे पहले अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि उत्तराखंड के ऋषिकेश में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की कहानी, जहां पर उफनती बीन नदी के बीच बेहद ही मुश्किल हालात में SDRF के जवानों ने दो लोगों की जान बचाई है। हालात कितने मुश्किल भरे थे ये तस्वीरें बयां कर रही है। बेहद तेज बहाव के साथ बह रही बीन नदी की ये तस्वीर आप देखिए।
0: और देखिए दरअसल सोमवार शाम से ही हो रही तेज बारिश के चलते बीन नदी उफान पर आ गई थी। नदी के तेज बहाव की वजह से तालघाटी इलाके की ओर जा रही एक गाड़ी कंट्रोल नहीं रख पाई और देर शाम पानी में बह गई। गाड़ी में दो लोग सवार थे। हादसे की सूचना स्थानीय लोगों ने थाना लक्ष्मण झूला पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम और SDRF की टीम मौके पर पहुंची। रात के अंधेरे हालात को और मुश्किल बना रहे थे, लेकिन उसकी परवाह किए बिना रेस्क्यू टीम रस्सी और JCB की मदद से गाड़ी और उसमें सवार सभी लोगों के रेस्क्यू के ऑपरेशन में जुट गई।
1: तस्वीरों में आप देख सकते हैं पानी के तेज बहाव में गाड़ी उलटी हुई है, रस्सी की मदद ली जा रही है, जिससे SDRF के जवान गाड़ी के ऊपर पहुंचते हैं, गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं, उसमें फंसे दोनों लोगों के रेस्क्यू में जुट जाते हैं। काफी मशक्कत करनी पड़ी है, ये तस्वीरें दिखा रही हैं। उसके बाद रेस्क्यू टीम ने गाड़ी में फंसे एक व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाला, फिर SDRF और पुलिस की टीम ने थोड़ी देर में दूसरे व्यक्ति को भी निकाल लिया। नदी से रेस्क्यू करने के बाद दोनों घायलों को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया।
2: ये मामला में जो हमारी टीम है डालवाला में, हमें सूचना मिली लगभग 9:15 के लगभग कि एक मैक्स बीन नदी में पलट गई और जो नीचे चली गई, तो हमारी टीम तुरंत यहाँ पर पहुंची है और यहाँ पे देखा तो एक व्यक्ति उसमें ऊपर बैठा हुआ दिखाई दिया। तो हमारी टीम रोप लगा के अपने उपकरणों के माध्यम से उस तक पहुंची है नदी में और उसको रेस्क्यू कर लिया गया और उसको हॉस्पिटल गया। तो उसके बाद पता चला कि एक व्यक्ति अंदर था जो बुरी तरह से फंसा था। उसके लिए टीम द्वारा हमारे बहुत भरसक प्रयास किया गया और कई प्रयासों के बाद हम उस व्यक्ति का रेस्क्यू कर गए और उसको भी हमें हमारे द्वारा टीम द्वारा हॉस्पिटलाइज किया गया। हमारे सामने हमें दिखा कि जो व्यक्ति अंदर है वो भी चिल्ला रहा था कि मुझे बचाओ और हमारी टीम उसी हौसले के साथ आगे बढ़ी और सभी हमारे जो जितने भी हमारे यहाँ पे टीम के मेंबर्स हैं सभी के प्रयास से हमारे रोप के माध्यम से उस तक पहुंच बनाई और उस व्यक्ति को हमारे द्वारा टीम द्वारा रेस्क्यू किया गया। हमारे
0: चलिए तस्वीरें तो लगातार आपको रेस्क्यू ऑपरेशंस की हम दिखाई रहे हैं। हिमाचल के चंबा की बात कर लेते हैं। भरमौर इलाके में दो अलग अलग रेस्क्यू की घटनाओं को अंजाम दिया गया। एक घटना में 40 से 50 श्रद्धालुओं की उफनती दरिया के बीच में जान बचाई गई, तो वहीं एक दूसरी घटना में एक युवक ने जान पर खेलकर दूल्हे की जान बचाई। देखिए इस रिपोर्ट में।
3: सैलाब का सामना कर रहे हिमाचल प्रदेश के चंबा के रेस्क्यू की ये दो घटनाएं मिशन जिंदगी का जीता जागता सबूत है। पहली तस्वीर 40 से 50 श्रद्धालुओं की जिंदगी बचाने की है तो दूसरी तस्वीर एक दूल्हे के रेस्क्यू की है। चंबा का भरमौर इलाका इन दिनों फ्लैश फ्लड का सामना कर रहा है। बलोट गांव के 84 चला में बादल फटने के बाद आए सैलाब की वजह से लोहे का एक पुल बह गया। बहाव इतना तेज था कि आने जाने के लिए बनी सड़क भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। सड़क और पुल के बह जाने से मां भगवती खुंडी वाली के दर्शन के लिए जा रहे करीब 40 से 50 श्रद्धालु बीच रास्ते में ही फंस गए। तस्वीरों में देख सकते हैं कि बहाव इतना तेज है कि इसके चपेट में आने से लोग खुद को बहने से बचा नहीं सकते थे। ऐसे मुश्किल वक्त में गांव वाले किसी देवदूत की तरह वहां पहुंचे। सभी श्रद्धालुओं को रास्ता दिखाते हुए गांव वाले आगे बढ़े और सैलाब के किनारे होते हुए एक ऐसी जगह पहुंचे जहां लोगों ने दरिया के ऊपर लकड़ी का एक अस्थायी पुल बनाकर सभी का सुरक्षित रेस्क्यू किया। लकड़ी के अस्थायी पुल पर चलते हुए सभी श्रद्धालु दरिया के दूसरी ओर पहुंचे, जिससे उनकी जान बच सकी। मंगलवार को ज्येष्ठ मंगलवार के अवसर पर माता के डल झील में पवित्र स्नान करने की भी परंपरा है, जिसके चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना रहती है। हालात को देखते हुए ऐसे में सावधानी की जरूरत है। बड़ग्राम में फ्लैश फ्लड के बीच एक और मिशन जिंदगी को अंजाम दिया गया। हुआ यूं कि वहां फ्लैश फ्लड आने से पनाली नाला अचानक विकराल रूप में बहने लगा, जिससे बारात फंस गई। संकट की इस घड़ी में एक स्थानीय लड़के ने साहस दिखाते हुए दूल्हे की जान बचाई। लड़के ने अपनी जान जोखिम में डालते हुए दूल्हे को अपनी पीठ पर उठाया और नाले को सुरक्षित पार करवाया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चंबा से विशाल आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: चलिए अब आपको दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश में कुल्लू की मणिकर्णिका घाटी में रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर, जहां पर पार्वती नदी में आए उफान की वजह से नदी के बीच एक चट्टान पर चार पर्यटक फंस गए। ये चारों पर्यटक दिल्ली से मणिकर्णिका घाट घूमने गए थे और चारों युवक नदी के बीच एक चट्टान पर बैठे थे, जब देखते ही देखते पानी ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया।
5: और देखिए, जब खतरे का एहसास हुआ तब तक नदी से बाहर निकलने का रास्ता बंद हो चुका था और फिर चला इन्हें बचाने का रेस्क्यू ऑपरेशन। देखिए वो तस्वीरें।
3: उफंती नदी के बीच चट्टान पर फंसे पर्यटकों के रेस्क्यू की इस गंभीरता को समझना है तो इस तस्वीर को आपको गौर से देखना पड़ेगा। हिमाचल के कुल्लू की मणिकर्ण घाटी में बह रही उफनती पार्वती नदी के बीच चलाए गए रेस्क्यू मिशन की ये छोटी सी झलक है। तस्वीरों में देख सकते हैं चट्टान पर दो युवक खड़े हैं। इनमें से एक दिल्ली का पर्यटक है जो पार्वती नदी में जल स्तर बढ़ने की वजह से वहां फंस गया और दूसरा उसकी जान बचाने के लिए पहुंचा युवक है। ये युवक रस्सी की मदद से उफनते दरिया के बीच अपनी जान जोखिम में डालकर चट्टान तक पहुंचा। पहले ये युवक पर्यटक को रस्सी की मदद से किनारे तक पहुंचाने में मदद करता है और फिर खुद रस्सी के सहारे सकुशल किनारे पर पहुंच जाता है। कुछ देर पहले इसी चट्टान पर चार पर्यटक फंसे थे। ये सभी पर्यटक दिल्ली से मणिकर्ण घाटी घूमने आए थे। बीती दोपहर करीब 3 बजे वो पार्वती नदी के किनारे पहुंचे और नदी के बीच एक चट्टान पर बैठ गए। इसी दौरान अचानक नदी का जल स्तर बढ़ने लगा। कुछ ही देर में पानी चट्टान की चारों ओर पहुंच गया और चारों युवक बीच नदी में ही फंस गए। करीब आधे घंटे तक चारों युवक मदद का इंतजार करते रहे। घटना की जानकारी मिलते ही गाँव वाले पहुँचे, प्रशासन को सूचना दी। कसौल के खुंडरा के रहने वाले आपदा मित्र और आपदा ट्रेनर शंकर मंगल के साथ ही गांव वाले रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में जुट गए। रस्सी की मदद से एक युवक चट्टान तक पहुंचा और बारी बारी से चारों पर्यटकों को किनारे तक पहुंचाने में मदद की। करीब 8 मिनट चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन में चारों पर्यटकों को सकुशल नदी से बाहर निकाल लिया गया। राहत की बात ये रही कि हादसे में किसी भी पर्यटक को चोट नहीं आई। कुल्लू से मनिंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: और इसी बीच देहरादून की भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जहां बाढ़ के बीच में फंसे छह छात्रों के लिए एसडीआरएफ के जवान देवदूत बनकर पहुंच गए। सभी छह छात्रों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। असल में विश्वविद्यालय के ये छह छात्र ट्रैकिंग के लिए स्वर्णा नदी क्षेत्र में गए थे। वापस लौटते हुए अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते स्वर्णा नदी का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ने लगा। नदी का पानी बढ़ने के चलते सभी छह छात्र जंगल में फंस गए। हालात बिगड़ते देख इसकी सूचना एसडीआरएफ को दी गई। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंची, जहां एसडीआरएफ के जवानों ने करीब 6 किलोमीटर पैदल ट्रैकिंग की और कड़ी मशक्कत के बाद सभी छह छात्रों को बचाने में कामयाबी उनको मिली।
4: तो वहीं पश्चिम बंगाल के आसनसोल में लगातार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई इलाके बाढ़ में पूरी तरह से डूब गए। रेल पार इलाके में अचानक से पानी बढ़ने से 100 से ज्यादा घर प्रभावित हुए हैं। कई घरों में पानी घुस गया। स्थानीय लोगों को किस कदर मुश्किल हालात में गुजर बसर करनी पड़ रही है, तस्वीरें बयां कर रही हैं। ऐसे ही मुश्किल हालात में करीब 30 लोगों के फंसे होने की सूचना प्रशासन को मिली, जिसके बाद सिविल डिफेंस और क्यूआरटी की टीमों ने रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। सभी लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है। साथ ही बाढ़ में फंसे लोगों के खाने की भी व्यवस्था की गई है।
5: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं सावन में शिव शक्ति के दर्शन।

0: देखिए आज सावन महीने का तीसरा मंगलवार है, यानी तीसरा मंगला गौरी का व्रत। देश भर के शिवालयों में शिव और शक्ति की शक्ति का रंग चढ़ा है। सोमनाथ में बाबा के धाम को भव्य तरीके से सजाया गया तो भगवान को भोग भी अर्पित हुआ। वहीं उत्तर भारत के बिहार और झारखंड में कांवड़ यात्रा का अलग ही रंग देखने को मिल रहा है। कहीं कांवड़ को अनोखी थीम में सजाया गया तो कहीं कांवड़ के जरिए प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। यानी सावन में आस्था के साथ रचनात्मकता और सामाजिक संदेश भी इस कांवड़ यात्रा का हिस्सा बना है। देखिए भगवान शिव के प्रिय सावन महीने का आज तीसरा मंगलवार है, यानी आज महिलाएं पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ मंगला गौरी व्रत रखती हैं। ज्योतिष के मुताबिक मंगला गौरी व्रत विशेष रूप से अखंड सौभाग्य, दाम्पत्य जीवन में सुख और शांति के साथ सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। सावन में इस व्रत की महिमा और विधान की रिपोर्ट देखिए।
1: सावन के पवित्र महीने में मंगलवार का दिन बेहद खास माना जाता है। सावन में जिस तरह सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है, उसी तरह मंगलवार को माता गौरी यानी कि माँ पार्वती की आराधना की जाती है। आज सावन का तीसरा मंगलवार गौरी व्रत रखा जा रहा है। मान्यता है कि इस खास मौके पर माता गौरी और भगवान शिव की आराधना से वैवाहिक जीवन में सुख शांति और खुशहाली आती है। इसके अलावा विवाह योग युवतियों के अच्छे जीवन साथी की मनोकामना पूरी होती है। पवित्र सावन महीने में मंगला गौरी व्रत को रखने वाली महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। मान्यता है कि अगर संतान प्राप्ति की इच्छा से ये व्रत किया जाए तो जल्द ही संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। इस व्रत को कुंवारी लड़कियों के लिए भी बहुत फलदायी माना गया है। मंगलवार के दिन विधि विधान से माता की आराधना से अच्छे जीवन साथी का आशीर्वाद मिलता है। मंगला गौरी व्रत कुंडली में मौजूद मांगलिक सहित अन्य दोषों से मुक्ति दिलाता है। विवाह में होने वाली देरी के अलावा इस व्रत से वैवाहिक जीवन में आने वाली समस्याएं भी दूर होती हैं। सावन का तीसरा मंगला गौरी विशेष योग बना रहा है। 16 श्रृंगार कर जो भी सुहागिन इस व्रत को रखती है और श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करती है, उन्हें विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत के दौरान सात्विक आहार लेने का विधान है। व्रती अपने फलहार में कुछ खास चीजों का सेवन कर सकती हैं। मंगला गौरी व्रत में कुट्टू या सिंघाड़े की पूरी और पराठे बनाए जा सकते हैं। व्रत में आलू, लौकी और कद्दू का सेवन भी कर सकते हैं। फलहार बनाने के लिए सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। साबूदाने की खिचड़ी या फिर खीर का भी सेवन किया जा सकता है। व्रत के दिन सेब, केला, पपीता समेत दूसरे मौसमी फलों का सेवन कर सकते हैं। मंगला गौरी व्रत के दौरान सुबह और शाम दिन के दोनों पहर में पूजा विधान है। साथ ही जो महिलाएं सुहाग सामग्री दान करती हैं, उन पर माता की विशेष कृपा होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: तो देखिए सावन का महीना कांवड़ यात्रा के रंगों से गुलजार रहता है। इस महीने में अलग अलग तरह के कांवड़ देखने को मिलते हैं, लेकिन राजस्थान के धौलपुर जिले में एकदम अलग और अनूठी कांवड़ यात्रा निकाली गई। पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने के मकसद से बसई नवाब कस्बे में पौधों के साथ कांवड़ यात्रा निकाली गई।
2: हर किसी का ध्यान अपनी ओर इस यात्रा ने आकर्षित किया है। इस विशेष कांवड़ यात्रा में 11 ग्राम पंचायतों के ग्रामीण समेत 5100 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। सभी ने पौधे की कांवड़ बनाकर उसे अपने कंधे पर रखकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है और हरियाली बनाए रखने का संकल्प भी लिया। इस कांवड़ यात्रा के 11,000 पौधों को स्कूली बच्चे ग्रामीणों के बीच बांटा गया है। इस मौके पर सभी ने पौधों की परवरिश करने की शपथ ली।
0: तो देखिए इस कांवड़ यात्रा के रंग देख लीजिए। इस यात्रा के माध्यम से गायत्री परिवार ने एक व्यक्ति एक पौधा लगाने के साथ ही पर्यावरण को स्वच्छ और हरा भरा बनाने में योगदान करने का संदेश भी दिया।
2: सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति, हरियाली और उत्सव का पवित्र और प्रिय महीना माना जाता है। इस महीने में विशेषकर कांवड़ यात्रा की भव्य छटा देखने को मिलती है। इस बार भी बिहार के मुंगेर में कांवड़ मार्ग पर कई भव्य रंग देखने को मिल रहे हैं।

0: सावन के महीने में कावड़ पथ की रौनक देखते ही बनती है। बिहार के मुंगेर में हर दिन असरगंज कच्ची कावड़िया पथ पर आस्था और उत्साह का संगम दिखता है। बम बम भोले और हर हर महादेव का जय घोष करते हुए बड़ी संख्या में शिव भक्त अनोखी छटा बिखेरते हुए बैद्यनाथ धाम की ओर बढ़ते दिखते हैं। ये दृश्य हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब इस तस्वीर को ही देखिए, इसमें भक्त अपने आराध्य को कंधे पर विराजमान कर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। भोलेनाथ अपने भक्तों के भाव देखते हैं, उनके प्रति अपने अगाध आस्था को प्रदर्शित करने के लिए भक्त बाबा को चश्मा मुकुट सबसे पूरी तरह सजाकर दिव्य रूप में अपने साथ ले जा रहे हैं। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से आया कांवड़ियों का ये दल सुल्तानगंज से जल भरने के बाद झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर जल अर्पित करने बढ़ता चला जा रहा है।
1: हम लोग अयोध्या से चलकर यहाँ सुल्तानगंज आए और बाबा भोलेनाथ के दरबार में जा रहे हैं। बाबा का ये जो रूप है बहुत ही निराला हम लोगों को लगा, इसीलिए बाबा को इस गेटअप में हम लोगों ने तैयार किया है। चश्मा लगा के हम लोग ले चल रहे हैं, खुद चश्मा लगाते हैं और बाबा को भी चश्मा लगा के लेके चल रहे हैं।
0: आस्था की इसी यात्रा में कोई कंधे पे कांवड़ उठा रहा है तो कोई अपने बच्चों को भंगी में लेकर बाबा के दरबार की ओर बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल निवासी शिव भक्त अपने 7 महीने के बेटे को भांगी में बैठाकर बाबा की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, तो प्रयागराज निवासी शिव भक्त अपनी 2.5 साल की बिटिया को गमछे से बनी भांगी में लेकर जा रहे हैं। सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर लगभग 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके भक्त देवघर पहुंचते हैं और भगवान भोले शंकर को जल अर्पित करते हैं। इस दौरान कांवड़ मार्ग में शिव भक्तों के लिए की गई व्यवस्थाएं उनकी राह आसान कर देती है।
2: बहुत अच्छा है, लाइट है और निःशुल्क जल सेवा भी है, शौचालय है, सुलभ शौचालय, मेडिसिन वगैरह भी मिल रही है और क्या ही चाहिए, ये तो काफी है।
0: बैद्यनाथ धाम की महिमा अपरंपार मानी जाती है। यहाँ सावन के पूरे महीने कांवड़ियों की भीड़ रहती है, विशेषकर सोमवार को बाबा पर जल अर्पित करने के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ता है।
3: जो बारह ज्योतिर्लिंग में द्वादश ज्योतिर्लिंग में एक हमारे ऐसे ही पांचवा है और यहाँ पे शिव और शक्ति, शक्ति के ऊपर साथ में विराजमान है शिव। एक ऐसा शिव है जहाँ पे सिंदूर भी चढ़ता है, चूंकि शक्ति होने के कारण ये परंपरा बनी हुई है। और यहाँ पे एक चीज खास ये है, और जगह में सब आप त्रिशूल देखेंगे लेकिन यहाँ बाबा वैजनाथ के ऊपर पंसूर देखेंगे, इनका एक अलग ही महत्व रहा है और हम लोग अपने जीवन में उसको बहुत हमें देखने को मिला है कि इनकी कृपा सब पर बनी रहती है और आगे भी बनी रहे। हर हर महादेव।
0: बैद्यनाथ धाम में सावन ही नहीं बल्कि भादो के महीने में भी कांवड़ियों और शिव भक्तों का तांता लगा रहता है। सावन जहां मुख्य कांवड़ मेला मास माना जाता है, वहीं भादो मास में भी श्रद्धालु और डाक कांवड़िये बाबा का जलाभिषेक करने के लिए पहुंचते हैं। मुंगेर से गोविंद कुमार और देवघर से शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: जम्मू कश्मीर के पुंछ की तस्वीरें देख लीजिए, आस्था की दिव्य यात्रा यहां भी जारी है। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था जम्मू से पुंछ पहुंच चुका है। इस जत्थे में शामिल भक्त प्राचीन बाबा बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में बाबा चट्टानी के दर्शन का सौभाग्य मिलने से बहुत ज्यादा उत्साहित दिखाई दे रहे हैं।
0: आस्था की यात्रा की ये दिव्य रंग है। जम्मू से चलकर जब बूढ़ा अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था पुंछ पहुंचा तो भक्तों का जोश देखते ही बन रहा था। भक्ति भाव से झूमते हुए वो अपनी खुशी जता रहे थे। सोमवार 17 अगस्त की सुबह उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जब यात्रा को हरी झंडी दिखाई, उसके बाद जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से जब पहला जत्था पुंछ के लिए रवाना हुआ तो उस वक्त भी शिव भक्त अपने पूरे रंग में नजर आए। हर हर महादेव का जय घोष करते हुए जब जत्था रवाना हुआ तो बस में भी वो झूमते

0: साथ ही यहाँ के लोगों ने भव्य स्वागत किया। पुंछ का ये कॉलेज ग्राउंड बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए मेन बेस कैंप है, जहाँ यात्रियों के ठहरने, खाने से लेकर सभी तक की सुविधाओं के साथ ही सुरक्षा की भी कड़ी व्यवस्था की गई है। पहले जत्थे में शामिल 2041 यात्री यहाँ पहुंचकर बाबा चट्टानी के दर्शन करने को लेकर बहुत ही उत्साहित दिखे।
1: के यात्रा के बारे में सुना था, हमारे दादा दादी ने हमें प्रायोजित किया कि तुम यहाँ पे जाके आओ, बहुत ही अच्छा लगेगा। सो हमने ट्राई किया एंड मैं मन से ये कहना चाहती हूँ कि मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है।
0: बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुँच रहे हैं। 12 दिनों की इस यात्रा में अलग अलग जत्थों में यात्री रवाना किए जाएंगे। पहले जत्थे के पुंछ पहुँचने के दौरान यात्रा मार्ग में जगह जगह चाक चौबंद सुरक्षा नजर आई। पुंछ पहुंचने के बाद श्रद्धालु प्राचीन बूढ़ा अमरनाथ मंदिर के पास पहले पुल सत्य नदी में पवित्र डुबकी लगाते हैं। इसके बाद मंदिर पहुंचकर दर्शन करते हैं। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा सांप्रदायिक सौहार्द का अनूठा प्रतीक है। इस मुस्लिम बहुल इलाके में स्थित प्राचीन मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था में मुस्लिम समुदाय के लोगों की भूमिका अहम रहती है। सावन पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन यहाँ मेला लगता है और उसी के साथ इस वर्ष 28 अगस्त को 12 दिवसीय ये बूढ़ा अमरनाथ यात्रा संपन्न हो जाएगी। जम्मू से राय कपूर और पुंछ से मंजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: राखी के त्योहार में अभी एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त है, लेकिन बाजारों में राखी की रौनक अभी से देखने मिली है। दरअसल उधमपुर में स्कूली छात्राओं ने सीआरपीएफ जवानों को राखी बांधकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया। ये छात्राएं जम्मू कश्मीर हाईवे की सुरक्षा में तैनात जवानों के पास पहुंची और राखियां बांधकर मिठाइयां खिलाई। इन छात्राओं ने जवानों के लिए अपने हाथों से राखियां बनाई थी।
3: और देखिए, राखी बांधने के साथ ही छात्राओं ने जवानों को देश की हिफाजत के लिए शुक्रिया भी कहा। बहनों से राखियां बंधवा कर जवानों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अपना फर्ज निभाने के लिए अपने परिवार से दूर इन जवानों के लिए ये लम्हा यादगार बन गया। और देखिए, वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। काशी के सभी 84 गंगा घाटों की सीढ़ियां जलमग्न हो चुकी हैं। हालात ये हैं कि घाटों पर अब लोगों के लिए बेहद सीमित जगह बची है।
2: दरअसल इसके चलते विश्व प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती का स्थान एक बार फिर से बदल गया। सोमवार शाम पांचवी बार आरती अपने निर्धारित स्थान की बजाय गंगा सेवा निधि के कार्यालय की छत पर की गई। 7 अर्चकों ने विधि विधान और परंपरा के मुताबिक मां गंगा की आरती की।

0: चलिए यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद देखिए 76 साल वाले मेडल मशीन।
1: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों का ड्रामा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
2: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे,
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
0: माउंट डेल्टा 41 पर पहली बार पर्वतारोहण, पहला ग्लाइडिंग कर जिम एंड डब्ल्यूएस ने रचा इतिहास। 13 सदस्य टीम ने भारतीय एडवेंचर के इतिहास में हासिल की एक बड़ी उपलब्धि।

0: भारतीय इलेक्शन सिस्टम के मुरीद हुए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, कहा हमें भारत से सीखना चाहिए, सेव अमेरिका एक्ट पास कराने पर दिया जोर। भारी बारिश के चलते यूपी के भदोही में आज 12वीं तक के सभी स्कूल बंद, दिल्ली यूपी बिहार समेत 19 राज्यों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी। भारी बारिश और उफनती नदियों के बीच देवदूत बने एसडीआरएफ के जवान, ऋषिकेश में पानी में फंसे युवकों की बचाई जान, चंबा में भी बड़े स्तर पर चला रेस्क्यू अभियान। सावन के तीसरे मंगलवार को आज रखा जा रहा मंगला गौरी व्रत, अखंड सौभाग्य के साथ सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लो।
0: देखिए, उम्र को महज एक नंबर साबित कर दिखाया है चरखी दादरी के रहने वाले 76 साल के रामकिशन शर्मा ने। 65 साल की उम्र में मास्टर्स एथलेटिक्स की शुरुआत करने वाले रामकिशन आज मेडल मशीन के नाम से पहचाने जाते हैं।
2: उनके नाम 401 मेडल और 336 प्रमाण पत्र दर्ज हैं। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने भी उनकी उपलब्धियां दर्ज की हैं।
3: जिस उम्र में ज्यादातर लोग रिटायर होकर आराम की जिंदगी जीने की सोचते हैं, उम्र के उस पड़ाव पर 76 साल के ये बुजुर्ग ट्रैक पर युवाओं को चुनौती दे रहे हैं। बड़ी बात ये है कि रामकिशन शर्मा ने मास्टर्स एथलेटिक्स में अपने करियर की शुरुआत ही 65 साल की उम्र से की है। रामकिशन शर्मा ने अपने इस करियर में क्या उपलब्धि हासिल की है, ये मेडल बयां कर रहे हैं। महज 7 से 9 साल के खेल करियर में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में सैकड़ों पदक अपने नाम किए हैं। रामकिशन शर्मा के नाम 401 मेडल और 336 प्रमाण पत्र दर्ज हैं। इनकी उपलब्धियों को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने भी आधिकारिक तौर पर प्रमाणित किया है। इन्हें लोग मेडल मशीन के नाम से जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रामकिशन देश के लिए 10 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 162 गोल्ड, 27 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल इनके नाम हैं। वहीं राज्य स्तर पर भी इन्होंने 98 गोल्ड मेडल जीते हैं।
4: मैंने 65 साल की उम्र के बाद मास्टर एथलेटिक गेम्स में खेलना शुरू किया था और लगातार मैं अब 2026 तक खेलता रहा हूं। इसमें 3 साल में मेडल और शतक भी अपने नाम रिकॉर्ड है ऑल ओवर इंडिया, और 9 साल में 13 शतक भी अपने नाम है।
3: रामकिशन सिर्फ एक या दो स्पर्धाओं तक सीमित नहीं है। 100, 200, 400 और 800 मीटर दौड़ के साथ लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप और हर्डल रेस में भी इन्होंने लगातार शानदार प्रदर्शन किया है।
4: कहना चाहूंगा, नशे से बचें, नशा नाश की जड़ है ये। जिस तरह दीमक वृक्ष की जड़ों खोखला कर देती, इसे इस तरह शराब, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू वगैरह, तो वो अंदर से सारे फेफड़ों को खराब कर देती है और कैंसर होने का भय होता है। तो सभी से मैं आह्वान करता हूँ कि नशे से बचें और अपना समय पर जल्दी उठें, योगा करें और अपने जीवन को सफल बनाएं।
3: ट्रैक पर लगातार कामयाबी हासिल करने वाले रामकृष्ण शर्मा का अगला लक्ष्य भी बड़ा है। अब वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराने की तैयारी में है। चरखी दादरी से प्रदीप कुमार के साथ ब्यौरा रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: मणिपुर की बेटी अरिहा ने एशियन एरोबेटिक जिम्नास्टिक्स चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया है। दरअसल फिलीपींस की तगियाते सिटी में आयोजित चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए अरिहा ने न सिर्फ पोडियम पर सबसे ऊपर जगह बनाई बल्कि इस इवेंट में भारत के लिए पहला गोल्ड भी हासिल किया है। उनकी इस कामयाबी के पीछे है वर्षों की मेहनत, रोजाना घंटों की ट्रेनिंग और पिछली नाकामी से सीख लेकर वापसी करने का जज्बा, जिसके दम पर अरिहा ने मणिपुर से निकलकर एशिया के सबसे बड़े मंच में से एक पर तिरंगा फहराया। उनकी इस कामयाबी पर देखिए हमारी रिपोर्ट।

0: रफ्तार, लय, संतुलन। और हर मोमेंट में गजब का आत्मविश्वास। ये सिर्फ जिमनास्टिक के स्टेप्स नहीं है, बल्कि सालों की मेहनत और तपस्या का नतीजा है। मणिपुर की अरिहा पांगम्मा ने फिलीपींस की तगायते सिटी में इतिहास रच दिया है। 10वीं एशियन एरोबिक जिमनास्टिक चैंपियनशिप में सीनियर महिला वर्ग में अरिहा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है।
1: My work, I would say, it's because of my parents, my coach, my family, and everyone who have supported and guided me. So at that moment, I felt I could see everyone, I would say.

0: अरिहा की ये जीत इसलिए खास है क्योंकि एशियन चैंपियनशिप में सीनियर महिला व्यक्तिगत वर्ग में भारत ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता है। यानी अरिहा सिर्फ चैंपियन नहीं बनी बल्कि उन्होंने भारतीय एरोबिक जिमनास्ट के इतिहास में अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज करा लिया। इस गोल्ड की चमक के पीछे छिपी है एक खिलाड़ी की कड़ी मेहनत, लगन और कभी ना हार मानने वाला जुनून। अरिहा ने चैंपियनशिप की तैयारी के लिए करीब 6 घंटे रोजाना ट्रेनिंग की। घंटों तक शरीर को फिट रखना, एक ही मोमेंट को बार बार दोहराना, अपनी तकनीक में सुधार करना और हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाने की कोशिश। एरोबिक जिमनास्ट में जहां एक छोटी सी गलती भी पूरे प्रदर्शन पर भारी पड़ सकती है, वहां अरिहा ने अपने अभ्यास और अनुशासन को अपने सबसे बड़ी ताकत बनाया। माता पिता के चेहरे की मुस्कान, घर की दीवार पर सजे मेडल्स और बधाई देने वालों के ये गुलदस्ते अरिहा के शानदार प्रदर्शन की गवाही देते हैं।
1: एशियन चैंपियनशिप के लिए मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि सेटिस्फेक्शन उसी में है कोचेस का कि ट्रेनिंग में जो उन्होंने किया, चाहे मेडल ले ना ले, ट्रेनिंग में जो उन्होंने किया वो पूरा अगर कंपटीशन में कर पाए तो उससे बड़ी बात कोच के लिए होता नहीं है मेरे ख्याल से। तो मैं भी कोच हूं तो मैं बहुत खुश हूं और उसी परफॉर्मेंस के साथ उसने उन्होंने अरिहा ने हिस्ट्री भी वो कर दिया, क्रिएट कर दिया, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए।
0: मणिपुर की जमीन से निकलकर एशिया के मंच पर भारत का नाम रोशन करने वाली अरिहा की कहानी उन तमाम युवा खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणा है जो बड़े सपने देखते हैं। उनकी कामयाबी ये बताती है कि खेल में सफलता सिर्फ प्रतिभा से नहीं मिलती, इसके लिए चाहिए अनुशासन, लगातार मेहनत और असफलता के बाद दोबारा खड़े होने का हौसला। फिलीपींस के तगायते सिटी में अरिहा ने जो कर दिखाया वो सिर्फ एक गोल्ड मेडल भर नहीं है, अरिहा की कामयाब एरोबिक जिमनास्टिक के इतिहास में एक नया अध्याय है। पिछली चैंपियनशिप की निराशा से लेकर इस बार की एशियाई चैंपियन बनने तक अरिहा ने साबित किया है कि लगातार मेहनत और लगन से सपनों को हकीकत में बदला जा सकता है। इस ऐतिहासिक जीत के साथ भारतीय जिमनास्टिक ने एशियाई मंच पर अपनी मौजूदगी और मजबूत कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और चलिए बात बैडमिंटन की कर लेते हैं। दिल्ली में हो रही बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में युवा शटलर आयुष शेट्टी ने बड़ा उलटफेर कर दिया है। उन्होंने दुनिया के नंबर वन चीनी खिलाड़ी शी युकी को सीधे सेट्स में मात दी। 21 साल के आयुष ने 21-14, 13-21 और 21-19 से जीत दर्ज की। इसी के साथ दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी शी युकी पहले ही राउंड में वर्ल्ड चैंपियनशिप से बाहर हो गए। वहीं इसी टूर्नामेंट में पीवी सिंधु ने भी जीत से शुरुआत की है। सिंधु ने विमेन्स सिंगल्स के पहले राउंड में आयरलैंड की सोफिया नोबल को 29 मिनट में 21-7, 21-11 से हराया। अब दूसरे राउंड में सिंधु का मैच कनाडा की वेन यू झांग के साथ होगा।
3: और अब 9 साल की बच्ची के अद्भुत हुनर की एक वायरल तस्वीर आपको दिखाते हैं। जयपुर की तीज सवारी में 9 साल की सिनाया ने अपने हुनर से लोगों का दिल जीत लिया। उन्होंने खास राजस्थानी परिधान में हुलाहूप के साथ शानदार प्रस्तुति दी। सिनाया का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस हुनर के दम पर सिनाया 2025 में अपने नाम गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज करवा चुकी है।
2: चले आगे बढ़ते हैं काशी, जहां लोग धर्म और आस्था को समझने के लिए खींचे चले आते हैं, लेकिन यहां कुछ विदेशी मेहमान अपने दमखम को परखने भी पहुंचते हैं। जी हां, काशी के अखाड़ों में कुश्ती के साथ गदा और डंबल का ऐसा रंग जमता है कि देखने वाले बस देखते रह जाएं। इस बार स्पेन और नीदरलैंड से आए पहलवानों ने जब देसी अखाड़े में जोर आजमाइश शुरू की तो वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। आखिर इन विदेशी मेहमानों को काशी के अखाड़ों ने इतना कैसे अपना लिया है, दिखाते हैं आपको।
4: Oh, पसीने से तर शरीर। हाथों में भारी भरकम देसी गदा और पैरों में काशी के अखाड़े की पवित्र मिट्टी। पहली नजर में लगेगा कि ये किसी पारंपरिक भारतीय पहलवान की साधना है, लेकिन थोड़ा गौर से देखिए, ये सात समंदर पार से आए विदेशी मेहमान हैं, जो काशी के देसी अंदाज के मुरीद बन चुके हैं। नागपंचमी के पावन पर्व पर बनारस के अखाड़ों में ऐसा नजारा देखने को मिला कि हर कोई देखता ही रह गया। काशी के अखाड़ों में इस मौके पर कुश्ती के साथ गदा और डंबल का ऐसा रंग जमता है कि हर कोई हैरान रह जाता है। लेकिन इस बार स्पेन और नीदरलैंड से आए पहलवानों ने जब देसी अखाड़े में जोर आजमाई शुरू की तो वहां मौजूद लोग देखते रह गए।
5: काशी न केवल धर्म और आध्यात्म की नगरी है बल्कि खेल का बहुत बड़ा मैदान और केंद्र भी है। खेल का ऐसा नजारा नागपंचमी के पर्व पर दिखाई पड़ता है जिसमें न केवल काशीवासी यहाँ के अखाड़ों में जोर आजमाइश करते हैं, अपने शक्ति का परीक्षण करते, अपने बल का परीक्षण करते, बल्कि सात समंदर पार से आए हुए जो विदेशी मेहमान हैं वे भी यहाँ पर अपनी शक्ति का परीक्षण करते हैं, जोर आजमाइश करते हैं।
4: स्पेन की सेंटियागो, जिन्हें लोग प्यार से सेंटी या शांति भी बुलाते हैं, और नीदरलैंड के हर्बर्ट हर साल नागपंचमी पर काशी का रुख करते हैं। सेंटियागो अपने देश में मिसफ्लो खेल के खिलाड़ी और प्रशिक्षक हैं और कहते हैं कि इनका रिश्ता भारतीय अखाड़ों की जोड़ी और गदा से काफी मिलता जुलता है। उन्हें काशी के अखाड़ों की मिट्टी, यहाँ का माहौल और पहलवानों का भाईचारा पश्चिमी जिम से कहीं ज्यादा पसंद आता है।
1: Well, I'm coming from Spain, and the first time that I came here was in 2023, and after that I'm coming year by year, every year. Well, to be honest, for me, Nagapanchami is the most important day in my year, and I keep coming every year because, well, what you can experience here in Kashi is unique. You cannot see it in any other way.
6: I remember coming here and asking in the tuk-tuk, saying, can you find me some akara? Can you find me some place that I can find training? And he said, there's lots of places here in Varanasi. And from that moment, I fell in love with the city.
4: Kashi ko yun hi adbhut nahi kaha jata. जो एक बार यहाँ की मिट्टी का स्पर्श कर ले वो यहीं का होकर रह जाता है। जिम के डंबल्स को छोड़ काशी के अखाड़ों की गदा थामने वाले इन विदेशी पहलवानों ने साबित कर दिया है कि भारतीय परंपरा और भाईचारे का कोई मुकाबला नहीं।
5: तो जहाँ एक और मॉडर्न कल्चर, वेस्टर्न कल्चर पूरे देश में हावी होता चला जा रहा है जिम के रूप में, तो वहीं जो विदेशी मेहमान है सात समंदर पार से आकर खासकर इस नाग पंचमी के पर्व पर अपनी शक्ति की आजमाइश करते हैं और तमाम जो खेल हैं अखाड़ों में उसको खेलकर प्रतिस्पर्धा में भी भाग लेते हैं। रोशन जायसवाल, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे।
3: इसी के साथ यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए जीएनटी।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
8: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों का ड्रामा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
2: पठानकोट की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इस डैम की झील में शुरू हुआ वाटर स्पोर्ट्स अब सैलानियों का पसंदीदा एडवेंचर स्पोर्ट्स बनने लगा है।
3: बिल्कुल, देखिए स्पीड बोट और पैरासेलिंग की शुरुआत यहाँ होने लगी है और यहाँ सैलानियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। प्रशासन की कोशिश है कि पठानकोट की इस झील को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जाए।
4: पहाड़ों के बीच एक खूबसूरत झील और कुदरत के बेमिसाल सौंदर्य के साथ एडवेंचर स्पोर्ट्स का मौका। पठानकोट में रावी नदी पर बने डैम की झील अब पैरासेलिंग और वाटर स्पोर्ट्स के लिए मशहूर हो रही है। रणजीत सागर डैम की झील के किनारे चमरोड़ और शहारपुर कंडी बैराज झील को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टूरिज्म हब बनाने की तैयारी कर ली गई है। डैम प्रशासन ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए झील में स्पीड बोट्स और पैरासेलिंग की शुरुआत की है। इन वाटर स्पोर्ट्स का आनंद लेने के लिए दूर दूर से सैलानी यहां आ रहे हैं।
5: YouTube में देखा था काफी इसका, मैं पहली बार आया हूं यहां पर, मुझे बहुत अच्छा लगा है यहां पर आकर। वो तो ठीक है, सबको अच्छा है, फूड है।
6: बच्चों को लेके डाइट पे गए, आपको कैसा लगा?
5: अच्छा लगा, बच्चों को बहुत अच्छा लगा है सारा। हम पहली बार आए वहाँ फैमिली लेकर।
7: घूमने के लिए अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, हॉर्स राइडिंग भी अच्छा है आपका, ऊंट का भी, कैमल का भी अच्छा है।
4: वाटर स्पोर्ट्स की शुरुआत होने के बाद झील पर आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। स्पीड बोट के बाद अब पैरासेलिंग की शुरुआत होने से इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन में लोगों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ी है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए डैम प्रशासन ने पर्यटकों की हिफाजत का भी पूरा इंतजाम कर रखा है। पैरासेलिंग और वाटर स्पोर्ट्स का आनंद लेने के लिए पहले लोगों को गोवा जैसी जगहों का रुख करना पड़ता था, लेकिन अब डैम की झील में शुरू हुए इस वाटर स्पोर्ट्स ने पठानकोट को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर एक नई पहचान दिला दी है। पठानकोट से पवन सिंह, गुड न्यूज टुडे।
3: पंजाब की धरती को गुरु की धरती कहा जाता है, यही वजह है कि पंजाब में ऐसे कई धार्मिक स्थल हैं जहां लोगों की आस्था श्रद्धा जुड़ी हुई है। पंजाब में कई ऐसे प्राचीन श्री गुरुद्वारा साहिब भी हैं जहां पर लोग अपनी मन्नत मांगने आते हैं।
8: के बाहर सजी दुकानों की रौनक और इन दुकानों पर उमड़ी श्रद्धालु की भी, कोई मत्था टेक कर लौट रहा है तो कोई अपनी मनोकामना पूरी होने की खुशी में चढ़ावे की तैयारी कर रहा है। इन दुकानों पर खिलौनों की कई वैरायटीज हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नजर खींचते हैं खिलौने वाले हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज।
9: हाँ जी, मन्नत पूरी हो गई है। अगले अगले नेक्स्ट ईयर शायद जाइए न्यूजीलैंड का नेक्स्ट ईयर। हाँ जी, मन्नत है बाहर फॉरन।
8: असल में विदेश जाने की मन्नत लेकर यहाँ आने वाले श्रद्धालु अपनी मन्नत पूरी होने पर हवाई जहाज चढ़ाते हैं, और यही वजह है कि ये गुरुद्वारा साहिब श्रद्धालुओं के बीच हवाई जहाज वाला गुरुद्वारा के नाम से मशहूर है। जलंधर शहर से करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित गुरुद्वारा श्री तलहन साहिब, मान्यता यह है कि पासपोर्ट या वीजा बनाने में कोई भी अड़चन आ रही हो तो खिलौने वाला हवाई जहाज चढ़ाकर अरदास करने से विदेश जाने की राह में आ रही तमाम बाधाएं दूर हो जाती हैं।
10: बहुत टाइम हो गया इतना मत्था टेकन आंदे, मतलब 4-5-6 साल हो चले हैं, एक संडे आना आपका मत्था टेकन।
8: खास बात यह है कि इन खिलौनों को आसपास के बच्चों में ही बांट दिया जाता है।
11: यात्रा सफल होती है, लोगों वीजे लगते हैं, बाहर जाके लोग सेटल भी होते हैं।
8: किसी के लिए विदेश जाने की उम्मीद है तो किसी के लिए मन्नत पूरी होने की खुशी। जब यही मन्नत के खिलौने बच्चों के हाथों में पहुंचते हैं तो फिर इस आस्था में खुशियों के रंग घुल जाते हैं। जलंधर से देवेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: इसी के साथ इन तमाम खबरों के बाद लंच टाइम में आज के लिए बस इतना ही,
2: और चलिए हम दोनों को इजाजत दीजिए। अच्छी और पॉजिटिव खबरें दिन भर जारी है, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
1: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
15: अविश्वास में विश्वास बसता है,
16: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
17: गुड न्यूज टुडे।
18: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
15: अविश्वास में विश्वास बसता है,
16: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
17: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
20: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
3: 41 पर पहली बार पर्वतारोहण और पैराग्लाइडिंग कर जिम एंड WAF ने रचा इतिहास, 13 सदस्य टीम ने भारतीय एडवेंचर के इतिहास में हासिल की बड़ी उपलब्धि। भारतीय इलेक्शन सिस्टम के मुरीद हुए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का, हमें भारत से सीखना चाहिए, सेव अमेरिका एक्ट पास कराने पर दिया जोर। उत्तरकाशी में अपने आराध्य रामेश्वर समेश्वर देवता के साथ खेली गई दूध मक्खन की अनूठी होली, रासोतांडी नृत्य की रंगारंग प्रस्तुति ने माहौल को बनाया भक्ति में। भारी बारिश के चलते यूपी के भदोही में आज 12वीं तक के सभी स्कूल बंद, दिल्ली यूपी बिहार समेत 19 राज्यों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी। भारी बारिश और उफनती नदियों के बीच देवदूत बने SDRF के जवान, ऋषिकेश में पानी में फंसे युवकों की बचाई जान, चंबा में भी बड़े स्तर पर चला रेस्क्यू अभियान।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
3: जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में स्थित प्राचीन बाबा बूढ़ा अमरनाथ की 12वीं दिवसीय वार्षिक यात्रा का दूसरा दिन आस्था की यात्रा में भक्तों का जोश है। पुंछ में बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही के लिए कई जगह सुरक्षा घेरा, आने जाने वाले पर कड़ी नजर। बूढ़ा अमरनाथ प्राचीन मंदिर से पहले कॉलेज ग्राउंड में पहुंचने पर जत्थे में शामिल यात्रियों का किया गया भव्य स्वागत, पहले जत्थे में 2041 यात्री शामिल। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना किया था पहला जत्था, बाबा चट्टानी के दर्शन करने को लेकर उत्साहित भक्त। 28 अगस्त तक जारी रहेगी आस्था की यह यात्रा, रक्षाबंधन के दिन होगा 12 दिवसीय यात्रा का समापन। आज है सावन का तीसरा मंगलवार, मां मंगला गौरी की आराधना और व्रत का दिन। सुहागिन महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्य, सुखी दाम्पत्य और परिवार की समृद्धि का सबसे मंगलकारी पर्व माना जाता है आज का दिन। मान्यताओं के मुताबिक आज के दिन मां मंगला गौरी की पूजा करने वाली महिलाओं पर बरसती है विशेष कृपा। मां मंगला गौरी देती है अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद। मां मंगला गौरी देवी पार्वती का अत्यंत मंगलकारी और करुणामयी स्वरूप। मान्यता है कि उनकी कृपा से दाम्पत्य जीवन में आने वाले संकट होते हैं दूर। मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए हजारों वर्षों तक की थी कठोर तपस्या। कठिन व्रत और अटूट भक्ति के बल पर महादेव को क्या प्रसन्न। अयोध्या के अरुण कुमार सोनी विशाल कावड़ में बाबा भोलेनाथ की प्रतिमा लेकर जा रहे हैं देवघर। चश्मा मुकुट और पगड़ी में सजे भोलेनाथ बने आकर्षण का केंद्र। अररिया की 29 साल की रानी यादव पहली बार परिवार के साथ कर रहे हैं बाबा धाम की यात्रा। कावड़ियों को दी जा रही है सुविधाओं से खुश दिखी रानी। प्रयागराज की रीनू भारती अपनी 2.5 साल की बेटी को बहंगी में बैठा कर जा रही हैं बाबा बैद्यनाथ के दरबार। मन्नत पूरी होने पर बाबा के दरबार में लगाएंगी हाजिरी। हावड़ा के सोमनाथ अपने 7 महीने के बेटे प्रिंस को बहंगी में बैठाकर ले जा रहे हैं बाबा के धाम। मन्नत पूरी होने पर बाबा को धन्यवाद देने पहुंच रहा है परिवार। सुल्तानगंज से देवघर तक कच्ची कावड़िया पथ पर देशभर को श्रद्धालु बाबा धाम की ओर बढ़ रहे हैं। हर तरफ भक्ति और बोलबम के जयकारे दे रहे हैं सुनाई। औरैया में खास मनोकामना के साथ 4 युवा कर रहे हैं कावड़ यात्रा। सीएम योगी आदित्यनाथ के देश का प्रधानमंत्री बनने की कामना लेकर 120 किलोमीटर यात्रा पर युवा। मथुरा जिला कारागार में महिला कैदी बना रहे हैं इको फ्रेंडली राखियां। 20 महिला बंदियों को सामाजिक संस्था द्वारा दिया गया है प्रशिक्षण। इन इको फ्रेंडली राखी बनाने में फूल और सब्जियों के बीजों का किया जा रहा है इस्तेमाल। रोजाना 200 राखियों का निर्माण कर रहे हैं महिला कैदी। कश्मीर की सालों पुरानी परंपरा संगतराश को जीवित रखते हुए बांदीपुरा के एक कारीगर बेजान पत्थरों को सुंदर और कलात्मक चीजों में बदलने में माहिर। लगभग 5 दशक से संग तराश परंपरा से बना रहे हैं कई सुंदर कलाकृतियां। देशभर के अलावा विदेशों में भी इनकी खासी डिमांड। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला स्थित प्रसिद्ध श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर पहुंचे क्रिकेटर तिलक वर्मा। भगवान वेंकटेश्वर के किए दर्शन, सुप्रभात सेवा में लिया हिस्सा। केरल से एक पहिए पर साइकिल यात्रा पर निकला युवक। युवाओं में नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाना मकसद। एक पहिए पर साइकिल चलाते हुए 11,000 किलोमीटर की यात्रा पर निकला है ये शख्स। रास्ते में हर इंसान इस अनोखी साइकिल यात्रा को देखकर हैरान। मेघालय के सीएम संगमा ने पाइन होम इको सस्टेनेबल प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य। मेघालय के मावलंगवीर गांव में करीब 6 करोड़ की लागत से बना है यह प्रोजेक्ट। इससे पर्यटन, स्थानीय कारीगरों और पर्यावरण अनुकूल वास्तुकला को मिलेगा बढ़ावा। सेना के बाद अग्निवीरों को नौकरी, बिजनेस और करियर में मिलेगी नई राह। देश का पहला नेशनल सिविल रिहैबिलिटेशन फोरम अग्निमंथन ऐप लॉन्च। चार साल की सैन्य सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को नागरिक जीवन में बेहतर रोजगार, स्किल डेवलपमेंट और करियर के अवसर उपलब्ध कराना इस ऐप का उद्देश्य। देश के ज्यादा से ज्यादा अग्निवीरों तक अग्निमंथन की पहुंच मुहैया कराने की योजना। सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को मेंटोरशिप और गाइडेंस देगी ऐप। सेना ने जम्मू कश्मीर के रामबन में पूर्व सैनिक सम्मेलन और वीर नारी सम्मान समारोह का किया आयोजन। इस कार्यक्रम में 150 से अधिक पूर्व सैनिक और कई वीरांगनाओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में देश के लिए बलिदान देने वाले सैनिकों की पत्नियों को किया गया सम्मानित। पूर्व सैनिकों की पेंशन, स्वास्थ्य और अन्य शिकायतों के समाधान के लगाए गए विशेष स्टॉल।
2: यूपी पुलिस का पहला आधिकारिक एंथम खाकी का सितारा रिलीज। अमिताभ बच्चन की आवाज और शंकर महादेवन के संगीत से सजा है ये एंथम। अमिताभ बच्चन ने शेयर किया यूपी पुलिस का पहला आधिकारिक एंथम खाकी का सितारा। लेखक कुछ सितारे आसमान में चमकते हैं, कुछ खाकी पहनकर जमीन पर।

0: पुलिस के साथ सेवा, महिला सुरक्षा, आपदा राहत और जनसेवा की दिखाई गई है झलक। 6:30 में पुलिस की पूरी कहानी। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, सुनी लोगों की समस्याएं, दिया जल्द समाधान का आश्वासन। यूपी सरकारी नौकरी की भर्ती को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला, भर्ती प्रक्रिया को वार्षिक कैलेंडर के तहत किया जाएगा समयबद्ध। सीएम योगी का आज से 2 दिवसीय दिल्ली दौरा, कल दिल्ली में सीएम योगी इंडिया जापान बिजनेस कॉन्क्लेव में होंगे शामिल। सीएम योगी जापानी प्रतिनिधिमंडल से करेंगे मुलाकात, जापानी कंपनियों को यूपी में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी का युवाओं को संदेश, बोले युवाओं को निगल रहा है ड्रग और स्मार्टफोन का नशा, दोनों से दूर रहने की अपील। कोटा के 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट दोस्तों की अनोखी सक्सेस स्टोरी, हेल्दी स्नैक स्टार्टअप शुरू करने के लिए छोड़ी मुंबई की नौकरी, आज लंदन दुबई तक फैला बिजनेस। में एनीवे के नाम से शुरू किया हेल्दी स्नैक स्टार्टअप, आज 800 से अधिक दुकानों पर पहुंच चुके हैं कंपनी के प्रोडक्ट्स। पर्वतारोहण और पैराग्लाइडिंग कर जिम एंड डब्ल्यूएस ने रचा इतिहास, पहली बार किया माउंट डेल्टा 41 के शिखर से सीधे पैराग्लाइडिंग द्वारा नीचे उतरने का सफल कारनामा। 13-सदस्यीय टीम ने भारतीय एडवेंचर के इतिहास में हासिल की बड़ी उपलब्धि, इस दल को 11 अगस्त किया था रवाना। लद्दाख के करगिल क्षेत्र में स्थित है माउंट डेल्टा 41, जो माउंट बर्मल के नाम से भी है मशहूर, कर्नल हेमचंद्र सिंह के नेतृत्व में पूरा हुआ यह कारनामा। अलवर की ईशिका जायसवाल ने बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 के लिए किया क्वालिफाई, राजस्थान की पहली खिलाड़ी है ईशिका जो विश्व स्तर पर खेलेगी मैच। ईशिका की इस उपलब्धि से परिवार और कोच खुश, ईशिका ने अमेरिका के कैलिफोर्निया और राजस्थान के अलवर में प्राप्त किया है बैडमिंटन का प्रशिक्षण। जूनियर विश्व चैंपियनशिप में ऐतिहासिक जीत के लिए अनाहत सिंह को किया गया सम्मानित, एचसीएल और स्क्वाश रैकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किया सम्मान। जूनियर विश्व चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय स्क्वाश खिलाड़ी है अनाहत, अपनी इस उपलब्धि से लाखों युवाओं की प्रेरणा बनी अनाहत सिंह। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में युवा शटलर आयुष शेट्टी ने किया बड़ा उलटफेर, वर्ल्ड नंबर 1 चीनी खिलाड़ी शी युकी को सीधे सेटों में दी मात, दूसरे दौर में मिली एंट्री। पीवी सिंधु ने भी विमेन सिंगल्स के पहले राउंड में आयरलैंड की सोफिया नोबल को 29 मिनट में 21-7, 21-11 से हराया, दूसरे राउंड में कनाडा की वेन यू झांग से होगा मुकाबला। विमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप में आज साउथ अफ्रीका से होगा भारत का सामना, टीम इंडिया ने पहले मुकाबले में मजबूत चीन के खिलाफ खेला था 2-2 से ड्रॉ। आवारा पंटू की सफलता पर इमरान हाशमी की पत्नी का इमोशनल पोस्ट, परवीन हाशमी ने फिल्म इंडस्ट्री में इमरान की मेहनत, अनुशासन और सब्र की तारीफ की। रामगोपाल की अगली फिल्म पुलिस कंपनी में नजर आएंगे अभिनेता हर्षवर्धन राणे, 90 के दशक में मुंबई अंडरवर्ल्ड की पृष्ठभूमि पर बन रही फिल्म में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक की भूमिका में आएंगे नजर। फिल्म प्रेम कीटाणु का टीजर रिलीज, फिल्म में वीर पहाड़िया, पारशक्ति खुराना, आफिया और राकेश बेदी का अहम रोल।
1: यार ये अंतर्यामी है क्या?
2: कौन बोल रहा है बदतमीज?
3: तुम कौन है बदतमीज?
4: सेम शराब देता हूँ तुम्हें भी 4 साल को
5: बैक बेंच पे भाई।
6: कहाँ टाइम मिलता है यार?
1: ये अंतर्यामी है क्या?
2: कौन बोल रहा है बदतमीज?
0: इमरान हाशमी की अपकमिंग फिल्म गन मास्टर G9 की रिलीज डेट आई सामने, फिल्म 27 नवम्बर को दुनिया भर में सिनेमाघरों में देगी दस्तक। रणवीर सिंह की प्रलय की शूटिंग शुरू, इस फिल्म में रणवीर सिंह के साथ लोका फेम एक्ट्रेस कल्याणी प्रियदर्शन आएंगी नजर। देहरादून में लगातार बारिश के बीच टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास बहने वाली तमसा नदी उफान पर, तेज बहाव के चलते 1 घंटे तक बाधित रही यात्रा। आसनसोल के रेलपार में बाढ़ जैसे हालात, 100 से ज्यादा घर प्रभावित, युद्ध स्तर पर जारी रेस्क्यू ऑपरेशन। सिविल डिफेंस और क्यूआरटी टीम की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, करीब 30 लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। लगातार बारिश से पिरुलिया में सड़कें जलमग्न, लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई। पिछले दो दिनों में बांकुरा जिले में हुई भारी बारिश, खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंदेश्वर नदी, उफान में फंसा ट्रक। देहरादून में बाढ़ में फंसे 6 छात्रों के लिए एसडीआरएफ के जवान बने देवदूत, सभी छात्रों का रेस्क्यू चलाकर बचाई जान। विश्वविद्यालय के 6 छात्र ट्रैकिंग के लिए गए थे, स्वर्णा नदी अचानक बढ़ गया नदी का जलस्तर। बंगाल के आसनसोल में भारी बारिश से अंडरपास में भरा पानी, वाहनों की आवाजाही पर रोक। भारी बारिश से कई इलाकों में भरा पानी, लोगों की बड़ी परेशानी। भदोही में भारी बारिश जारी, 12वीं तक के सभी स्कूलों में छुट्टी। बाराबंकी में उफान पर सरयू नदी, इलाके में बाढ़ का अलर्ट, निचले इलाकों में बढ़ाई गई सतर्कता। पौड़ी में लगातार बारिश के चलते बढ़ा नदियों का जलस्तर, पौड़ी देवप्रयाग मोटरमार्ग पर पहाड़ी से भारी मलबा आने के कारण यातायात पूरी तरह से ठप। शिमला में भारी बारिश के बाद तापमान में आई गिरावट, पहाड़ों पर छाई धुंध की मोटी परत। प्रयागराज में भारी बारिश से हालात गंभीर, बारिश के चलते 1 से 12 तक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित। ऋषिकेश में भारी बारिश के बीच उफनती बीन नदी में पलटी कार, तेज बहाव के बीच 2 लोग फंसे। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में अनोखा नजारा, सुपर हीरो बनकर निकले सैकड़ों बाइकर्स, बच्चों के लिए खिलौने लेकर पहुंचे। बीमार बच्चों के चेहरे पर आई मुस्कान, बाइकर्स ने बच्चों को बांटे खिलौने, बच्चों ने अपने हीरो को गले लगाया। बाइकर्स का खास चिल्ड्रन डे मिशन, सड़कों पर बाइक रैली का शानदार नजारा देखने को मिला, डिज्नी किरदारों में भी नजर आए बाइकर्स। अस्पताल में बच्चों ने सुपर हीरो संग खिंचवाई तस्वीरें, बच्चों के चेहरे पर दिखे मुस्कान, बना खुशी का माहौल। कावा क्लब की पहल को 20 साल पूरे, 2006 से जारी है ये नेक पहल, हर साल बच्चों के लिए जुटते हैं यहां बाइकर्स। इस्तांबुल में फॉर्मूला विंग वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन, इटली के एलेसांद्रो टोमासी में जीता पुरुषों का वर्ल्ड टाइटल। इटली के फ्रांसिस्को कैपुजो को लगा था दूसरी बार सिल्वर, पिछले साल भी जीता था सिल्वर, इस बार भी गोल्ड से चूके। फ्रांस के थॉमस प्राउस ने जीता ब्रॉन्ज, सीजन की अच्छी फॉर्म जारी रखी, पोडियम पर जगह बनाई। फ्रांस की वेना पिकोट ने महिला वर्ग का जीता खिताब, हवा की चाल ने बदला पूरा मुकाबला, वेना पिकोट का शानदार प्रदर्शन। इटली की मौजूदा चैंपियंस पानू को सिल्वर से करना पड़ा संतोष, मुश्किल हवाओं के बीच पिकोट से हुआ कड़ा मुकाबला।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
5: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों का ड्रामा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: और चलिए अब नजर डाल लेते हैं उन वायरल वीडियोस पर जिन्हें सोशल मीडिया पर बेहद पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ आपको गुदगुदाएंगे, तो कुछ आपको इमोशनल कर जाएंगे।
3: एक बॉल है जिसे सब तक पहुंचनी है, लेकिन एक एक कर जिसके हाथ में गेंद आएगी उसे अपने सामने वाले को पास करना है, लेकिन उछाल कर नहीं, जाकर उसके हाथों में सौंपना है, वो भी खास तरीके से। बच्चे जिस तरह से मेंढक की तरह कूद कूद कर अपना टास्क पूरा कर रहे हैं, वो देखना दिलचस्प है। दाद तो देनी पड़ेगी, आसान नहीं है, पर देखिए कैसे जीत के लिए एक दूसरे का साथ दिया जा रहा है। संभवतः आटा है या फिर कोई पाउडर जैसी चीज, मुंह में फंसाए मोटे कागज पर बिना हाथ लगाए उठाना है और उसे अपने साथी को पास करना है। आखिरी छोर तक पहुंचने के बाद वही प्रक्रिया दोहराते हुए वापस लौटना है। अब पाउडर जैसी चीज को बिना हाथ लगाए संभालना आसान तो नहीं है, लेकिन इन्होंने कर दिखाया। जिस तालमेल और संतुलन के साथ सबने अपने अपने हिस्से का काम किया, वो देखकर लोग इनकी तारीफ कर रहे हैं। यूं ही नहीं कहते कि प्रेम की कोई भाषा नहीं होती। अब इन्हें ही देखिए, दोनों का आपस में कोई मेल नहीं है, ना ही एक दूसरे की भाषा बोलते समझते हैं, लेकिन दोस्ती पक्की वाली लग रही है। जिस तरह से डॉगी और बतख रेस लगा रहे हैं, उससे तो लगता है ये दोनों का नियमित खेल है। जो भी हो, दोनों की ये दोस्ती वाली दौड़ लोगों को खूब पसंद आ रही है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: माउंट एल्टर 41 पर पहली बार पर्वतारोहण और पैराग्लाइडिंग कर जिम एंड डब्ल्यूएस ने रचा इतिहास, 13 सदस्यीय टीम ने भारतीय एडवेंचर के इतिहास में हासिल की बड़ी उपलब्धि। भारतीय इलेक्शन सिस्टम के मुरीद हुए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, कहा हमें भारत से सीखना चाहिए, सेव अमेरिका एक्ट पास कराने पर जोर दिया। उत्तरकाशी में अपने आराध्य समेश्वर देवता के साथ खेली गई दूध मक्खन की अनूठी होली, रासो तांदी नृत्य की रंगारंग प्रस्तुति ने माहौल को बनाया भक्ति में। भारी बारिश के चलते यूपी के भदोही में आज 12वीं तक के सभी स्कूल बंद, दिल्ली यूपी बिहार समेत 19 राज्यों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी। भारी बारिश और उफनती नदियों के बीच देवदूत बने एसडीआरएफ के जवान, ऋषिकेश में पानी में फंसे युवकों की बचाई जान, चंबा में बड़े स्तर पर चला रेस्क्यू अभियान।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत।
8: हमारी ये जो आंखें है ना, ये हमारे चेहरे का सबसे खूबसूरत हिस्सा है, और सही आई मेकअप हमारी आंखों को और भी खूबसूरत बना देता है। लेकिन आई मेकअप सिर्फ आई शैडो और आई लाइनर लगाने का नाम नहीं है, इसके लिए तो सही आईब्रो शेप, उसके साथ साथ सही टेक्निक, सही प्रोडक्ट्स, हाँ और उतना ही जरूरी है आई मेकअप को सही तरीके से रिमूव करना। तो आज के इस खास एपिसोड में बात होगी आईब्रो से लेकर आई लाइनर तक की, मस्कारा से लेकर आई मेकअप रिमूवल टेक्निक की भी। तो चलिए फिर फटाफट शुरू करते हैं हमारा एंटरटेनमेंट से भरा ये सफर। इसी के साथ साथ लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए आपके फेवरेट शोज का हर अपडेट। तो चलिए फिर फटाफट शुरू करते हैं हमारे ये एपिसोड हेडलाइंस के साथ।
9: क्या हुआ ईशा जी, क्या ढूंढ रही हैं?
10: अखंड दिया इसमें रखा था, अब मिल नहीं रहा है।
11: सास बहू और बेटिया की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए शुरू होगा ईशा और सूरज का संदूक रोमांस। सावित्री और उसके पति को लेकर घर में शुरू होगा नया बवाल, वसुधा लेगी फैसला। कराएगी वृंदा और नरेंद्र की जबरदस्ती वाली शादी।

0: मन सुंदर की जानवी यानी कि खुशी मीना संग करेंगे डे आउट। जानेंगे उनके बारे में कई सारी बातें सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटिया में। अब मेकअप ना सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, कुछ ऐसा ही कह रहे हैं हमसे हमारे सूरज। सूरज तो कह रहे हैं कि आजकल पुरुष भी अपनी आईब्रोज पर, ये जो हमारा अंडर आई वाला एरिया होता है, इसकी स्किन पर बहुत ध्यान देते हैं। जी हाँ, अब तो ये ग्रूमिंग बन गई है पुरुषों का भी अहम हिस्सा। लेकिन क्या कुछ हो रहा है आज सूरज और ईशा की इस कहानी में, क्या फिर से आया है यहाँ पर कोई एंटरटेनिंग ट्विस्ट? यस ऑफ कोर्स, लेकर चलते हैं आप सबको पति ब्रह्मचारी के सेट पर।
1: सूरज और ईशा का संदूक रोमांस। फिर एक बार संदूक में जा गिरे ईशा और सूरज। शुरू हुई पति पत्नी की खट्टी मीठी नोक झोंक।
2: एक टाइम पे तुम एक काम नहीं कर सकते थे, उसी टाइम पे कॉल पे बात करना जरूरी था। जरा शोर हुआ।
3: अपनी गलती आप कभी मत मान। पिछली बार कम से कम फोन तो था हाथ में, इस बार तो फोन भी नहीं है, बात गिर गया था आपकी।

0: टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में आज फिर एक बार ईशा पहुंची है अखंड दिया लेने के लिए और वो रखा है इस बड़े से संदूक में। भाई पहले भी ईशा कुछ ऐसा ही करने आई थी जब सूरज और ईशा जा गिरे थे इस संदूक के अंदर, और यहाँ पे फिर एक बार ईशा पहुँच गयी है दिया ढूंढने के लिए। तभी वहाँ सूरज भी पहुँच जाते हैं।
1: क्या ढूंढ रही हैं ईशा जी?
2: अखंड दिया इसमें रखा था, अब मिल नहीं रहा है।
1: ईशा जी आपको याद है एक बार हम दोनों इसी बक्से में गिर गए थे और पता है?
2: हाँ, तुम्हारी गलती के वजह से।
1: क्या मैं? अच्छा, पीछे से डंडा लेकर कौन आया था? हाँ, कितने बुद्ध को देना उस वक्त हम दोनों।
0: अपना वो सीन याद ही कर रहे होते हैं कि फिर एक बार इतिहास दोनों ने दोहरा दिया, यानी फिर एक बार दोनों जा गिरे संदूक में। और इस बार तो सूरज का फोन भी बाहर गिर गया है और इस संदूक में कैद हो चुके हैं सूरज और ईशा। भाई दोनों इस बक्से में कैद तो हो चुके हैं, लेकिन यहाँ रोमांस नहीं बल्कि इनकी नोकझोंक शुरू हो चुकी है, जहाँ दोनों ही एक दूसरे पर इल्जाम पर इल्जाम लगा रहे हैं। यानी कि ये नोकझोंक है लेकिन प्यार भरी।
2: एक टाइम पे तुम एक काम नहीं कर सकते थे? उसी टाइम पे कॉल पे बात करना जरूरी था।
1: अपनी गलती आप कभी मत मानिए। और ये आईपीएस की ट्रेनिंग में आपको बैलेंस करना नहीं सिखाया गया? जो सीधा गिर गई थम्ब से। पिछली बार कम से कम फोन तो था हाथ में, इस बार तो फोन भी नहीं है, बाहर गिर गया फोन आपकी वजह से।
2: चीजें ना वक्त के साथ कभी नहीं बदलती, जैसे कि तुम उसी वक्त बादशाही के साथ झगड़ा करना जरूरी था।
1: अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं कि मैं मोतीचूर के लड्डू मंगवा?
2: सोच क्या बोल रहे हो, बाहर निकलना इसमें कुछ भी बोलने जा रहे हो।
1: जी आपकी गलती है, आप अपनी गलती मानिए।
2: हाँ, बाहर निकालने के बारे में नहीं सोचोगे ना तुम?
1: पीटिए,
2: पीटो। ताइमा ने कहा है कि ले आओ, सारी तैयारियां हो रही है आंटी और काव्य की शादी के लिए। तो उसी बीच सूरज भी आता है, मैं मेहनत कर रही हूँ वो बक्से में, जो बड़ा सा बक्सा एक बार ईशा और सूरज गिर चुके हैं उसमें। तो वही करते करते यादें हम ताजा कर रहे हैं कि देखो उस टाइम कैसे गिर गए थे। सूरज बोल भी रहा है कि तब हम कितने बेवकूफ थे, कुछ भी करते थे। तो ऐसा ही वही बेवकूफी वापस होती है, मैं निकालने जाती हूँ अखंड ज्योत और हम दोनों गिर जाते हैं। मैं वो गिरने बैलेंस पकड़ने के चक्कर में सूरज का शर्ट पकड़ लेती हूँ और गिर जाते हैं हम दोनों फिर से बक्से में, और बक्सा फिर से बंद हो जाता है। तो सेम रिपीट चीज होती है। एंड उसी बीच हमारा अंदर थोड़ा सा नोकझोंक चल रहा है, एंड तभी पूरन भैया और सारी फैमिली वाले आके हमें मतलब छेड़ रहे हैं।
1: क्या हुआ ईशा जी, क्या ढूंढ रही हैं?
2: अखंड दिया इसमें रखा था, अब मिल नहीं रहा है।

का ये खट्टा मीठा प्यार तो चलता रहेगा। वहीं दूसरी तरफ रिया पहुंच गई है अपने बाबूजी के पास, उन्हें बताने अपने दिल की बात कि वो बंटी से प्यार करती है। लेकिन इससे पहले कि वो सच बाबूजी को बता पाती, वहां पर पहुंच जाती है काव्या, और काव्या को देखकर रिया चुप हो जाती है।

0: जो सीन किया है हमने बहुत ही इंटेंस था, इमोशंस फुली था, लाइक इमोशंस थे उसमें बहुत सारे. दो बहनों का यार प्यार दिखाया है कि एक बहन किसी से प्यार करती है और उसकी शादी दूसरी बहन से होने जा रही है, तो आप समझ सकते हैं मतलब बहुत हार्ट ब्रोकन है. बट जो रिया है मतलब वो काव्या से इतना प्यार करती है ना कि उसके लिए कुर्बानी देने वाली है बंटी के लिए. और काव्या को अभी तक पता भी नहीं है कि रिया एंड बंटी दोनों प्यार करते हैं, पर धीरे धीरे रिवील होगा. देखते हैं आगे क्या होता है, काव्या की शादी बंटी से होती है या नहीं होती है. फिलहाल रिया काव्या को कुछ आइडिया नहीं है कि रिया क्यों इतना परेशान है, क्यों इतना दुखी है. तो बस पापा को देख के सीन में हम दोनों बहुत इमोशनल हो गए. बहुत ही प्यारा सीन है यार.
1: भई अब रिया काव्या के लिए अपने प्यार की कुर्बानी तो दे रही है, लेकिन अब देखना होगा कि क्या काव्या और बंटी की शादी होती है या फिर शादी में कोई ट्विस्ट आता है.
2: किस्मत चमक जाएगी बंटी की मेरी काव्या को पाकर.
3: बंटी की दुल्हनिया मैं बन.
1: मुंबई से शीतल कावा और नुपुर मावजी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.
4: सूरज कैसे सुल जाएंगे हम रिश्तों की उलझने.
5: आई शैडोज खरीदते वक्त सिर्फ ब्रांड ना देखें, ये देखें कि उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, उसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, कैसी क्वालिटी है, क्या वो प्रोडक्ट आपकी आई के लिए सूटेबल है या नहीं है. ये सब बहुत ज़रूरी है क्योंकि खूबसूरती से ज़्यादा ना आई केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वैसे इंपॉर्टेंट तो है आप सबके लिए ये अगली कहानी भी, जिसमें कहानी का लेखक फिर से लेकर आया है एक नया ट्विस्ट, यानी यहाँ पर आया है आपके लिए द मच नीडेड ड्रामा. गेट सेट गो.

0: शहर और माहिद की बढ़ती नजदीकियाँ। आंसुओं ने जोड़ा सहर और माहिद का दिल। क्या फिर जुड़ेगा सहर और माहिद का रिश्ता?
1: मन के मन से धागे।
0: कलर्स के सीरियल सहर में सहर और माहिद दोनों पहुंच गए हैं कारपेंटर के रूम में, जहां पर नए स्कूल के लिए बेंचेस बन रहे हैं। असल में माहिद ने भांप लिया है कि सहर परेशानियों से जूझ रही है। ऐसे में उसका ध्यान भटकाने के लिए माहिद सहर को इस कमरे में ले आया है, और देखिए कैसे वो उसके साथ मिलकर बच्चों के लिए बेंचेस बना रहा है और उसका हाथ थामे उसे लकड़ी काटना सिखा रहा है, और यही इनके बीच की नजदीकियां बढ़ा रहा है।

इस पर जोर दे के रखिएगा, और ये लकीर जो हमने बनाई है बस इसकी ओर देखते रहिए और उसी की ओर मशीन चलाते रहिए।

0: अभी हमने आपको तरीका दिखा दिया, तो आप आपकी बारी।
1: भाई बाकी बातों को नजरअंदाज करते हुए सहर अपने काम में मन लगा ही रही थी कि तभी माहिद पहुंच गया उसकी मदद करने के लिए। और देखिए कैसे वो उसका दुपट्टा बांध रहा है ताकि वो दुपट्टा उस कटर के बीच में ना आ जाए। ये देख सहर पुरानी यादों में खो तो रही है, लेकिन साथ ही साथ वो इस बात को लेकर भी बेचैन है कि घर वाले ही माहिद की तबीयत ठीक होने नहीं देना चाहते। इसीलिए देखिए बिना बताए ही सही सहर की आंखों से आंसू बह रहे हैं और वो आंसू माहिद देख रहा है और समझ रहा है उसकी परेशानी को।

0: फिलहाल तो माहिद शहर की परेशानी का कारण जानता नहीं है, लेकिन जल्द ही शहर सच का पता लगा कर ही रहेगी कि आखिर घर का वो सदस्य कौन है जो माहिद के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। वहीं दूसरी ओर इंशा भी पूरी जासूसी में लगी हुई है, वो भी शहर के। तभी तो देखिए कैसे बच्चों को पढ़ा तो रही है, लेकिन जैसे ही उसे शहर की आवाज़ सुनाई देती है तो वो कान लगाकर खिड़की से सुनने लगती है। अब देखना होगा कि क्या इंशा माहिद और शहर के बीच की दीवार बनेगी या फिर किस्मत जोड़ेगी शहर और माहिद का रिश्ता।
1: खुदा के वास्ते हमें अपना काम करने दीजिए, जाइए यहाँ से।
2: मसला पता है क्या, इस काम की वजह से ना हम दोनों के बीच दीवार खड़ी होती है, उस दीवार में खिड़की बना देंगे हम और आपकी मदद कर देते हैं, उसके बाद तो आपको हमारी बात माननी ही पड़ेगी।
3: सर ये क्या कर रहे हैं आप, पागल हो गए क्या?
0: मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
4: ये जो आईब्रोज है ना, ये हमारे चेहरे का फ्रेम होती है और सही शेप हमारी आंखों को और हमारे चेहरे को पूरी तरह बदल देती है। इसलिए कोई भी ट्रेंड फॉलो ना करें। जब भी आप अपनी आईब्रोज को शेप करवाएं तो आप अपने चेहरे की शेप देखें और नेचुरल आईब्रोज की क्या शेप है उसी के हिसाब से उन्हें शेप दें, नहीं तो डेफिनेटली आएगा आपकी जिंदगी में ट्विस्ट। लेकिन क्या करें, असल ट्विस्ट तो यहाँ पहुंचे हैं आपकी फेवरेट कहानियों में। तो चलिए फिर दिखा देते हैं आपको ट्विस्ट का ये सिलसिला, वो भी एक साथ।
5: अनुपमा, 4 जून रात 10 बजे।
6: आपका घर तो अब बन ही जाएगा।
7: ये पैसे हमने नहीं दिए हैं, रकम हमने भरी है।
0: स्टार प्लस की सीरियल अनुपमा में भाई फिर एक बार अनुपमा बीच मझधार में फंस गई है। भाई एक तरफ है उसके खुद के सपने, दूसरी तरफ है बेटी की खुशियां। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में अनुपमा किसे चुनेगी।
8: स्टैम्प पेपर पर लिख दीजिए कि कॉम्पिटिशन आप अपनी मर्जी से हारेंगे।
9: क्या राही के लिए अनुपमा करेगी अपने सपनों का सौदा?
10: तुम्हारी और राही की वजह से टीम टास तो हारी गई है,
11: और आप गढ़े मुर्दे उखाड़ कर इन्हें मोटिवेट करिए श्रुति जी।
0: भाई वैसे इन्हीं सब के बीच बहुत जल्द ग्रैंड फिनाले का कंपटीशन होने वाला है, जिसके पहले ही शुरू हो गई है घमासान लड़ाई। भाई वो भी अपने ही परिवारों के बीच। तभी तो देखिए कैसे आज प्रेम और राही एक दूसरे के सामने ही खड़े हो गए हैं।
12: अच्छी दुआ निकली हो ना तो कोई भी हार्डवर्क मोटिवेशन काम नहीं आते काका, खासकर तब जब दुआ बेटी के दिल से अपनी माँ के लिए निकली हो।
13: ये गलत बात है प्रेम।
14: क्यों? गलत बातों पर सिर्फ तुम्हारा और तुम्हारी मम्मी का कॉपीराइट है। उन्होंने तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे पति के साथ चाहे जितना गलत किया हो, लेकिन तुम्हारे लिए उनकी हार पर बुरा लगना सही है, उनके लिए मन्नतें मांगना सही है, तुम्हारा उनके लिए झूठ बोलकर टास्क हार जाना सही है।
13: मैंने ऐसी कोई मन्नत नहीं मांगी है प्रेम, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। मैंने वहां भी सबके सामने क्लियरली कहा था कि मुझे तुम्हारी जीत की बहुत खुशी होगी,
15: और साथ में ये भी क्लियर किया राही कि अनुपमा के हारने पर तुम्हें दुख होगा।
16: लाइ डिटेक्टर टेस्ट झूठ नहीं बोलता राही, मतलब तुम इस परिवार से अभी तक झूठ बोल रही थी।
13: मेरी हर मन्नत, हर दुआ, हर प्रार्थना तुम्हारे लिए रही है, लेकिन ये बात भी सच है कि मैं मम्मी की हार की खुशी नहीं मना सकती। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या तुम माँ की हार पे खुशी मना पाते?
17: हाँ, मैं तुम्हारी माँ की हार पर खुशी मना पाता, क्योंकि मैं जानता हूँ इस जीत पर सिर्फ मेरा नाम लिखा है। मैं बेस्ट हूँ, तुम्हारी माँ मुझसे बेहतर नहीं है।
13: और अगर यही सच होता तो मेरी तरह तुम्हारे जवाब पे भी रेड लाइट ऑन नहीं होती प्रेम। मुझे तुम्हारी काबिलियत पे पूरा भरोसा है, और ये वहां भी साबित हुआ है। प्रेम, अगर तुम्हें खुद पे जरा सा भी डाउट है ना, अगर तुमने खुद से थोड़ा सा भी झूठ बोला है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। और ये डाउट तुम्हें बेहतर बनाने में हेल्प करेगा, तुम्हें वो पुश देगा जो तुम्हारी जीत के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रेम प्रेम देखो ना, तुम गलत हो और ना मैं, हम दोनों इस भंवर में फंस गए हैं, और जब तक किनारा नहीं मिलता हम फंसे रहेंगे।
18: इस वक्त यश वाजपेयी से मिलने जा रही है, बाजार में 10 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास।
0: कलर्स टीवी के सीरियल महादेव एंड सन्स में भाई फिर एक बार आज रज्जी को मिल गई है मोगरा के खिलाफ टिप। लेकिन क्या रज्जी मोगरा और अपने मामा की सच्चाई पूरे परिवार के सामने ला पाएगी?
19: सारा का सारा इल्जाम हमारे सर पर डाल दिया।
1: तीज का समय पावन होता है,
20: और व्रत या कथा में।
0: असल में आज घर पर मनाया जा रहा है तीज का त्योहार और ये बात जैसे ही रज्जी को पता चली, देखिए कैसे वो अपने परिवार के साथ इस त्योहार को मनाने के लिए सच धज कर घर पहुंच गए, लेकिन उसके आते ही मोगरा ने उसकी बेइज्जती करना शुरू कर दी।
13: हमें मंजूर नहीं इसका यहाँ रहना। नर्मदा, क्या तुम अपने बच्चे की कातिल को तुम्हारे साथ बैठकर भजन आरती करने दोगी? क्या तुम्हें मंजूर है? इसके दिए दर्द को तुम भगवान का कर्म मानकर इसे भूल जाओगी, इसे माफ कर दोगी?

0: बेचारे सदमे में आकर कुछ बोल भी नहीं पा रही।
1: भाई मोगरा को तो बस मौका चाहिए लच्ची को बेइज्जत करके घर से बाहर निकालने का, और आज भी वो कुछ ऐसा ही करने जा रही होती है, लेकिन नर्मदा रोक लेती है।
0: नर्मदा, तुमने इसे माफ कर दिया? इसने तुम्हारे बच्चे को मारा है, तो सब कुछ करने के बाद भी तुम इसे जाने दोगी? बहन मानती थी ना तुम इसे, धोखा दिया इसने तुम्हें।
2: मेरे बच्चे के जान लेने वाले को मैं कभी माफ नहीं करूंगी, लेकिन मैं मां की बात से भी सहमत हूं। भगवान की पूजा के वक्त ना कोई दोस्त और ना ही कोई दुश्मन होता है, वो सिर्फ एक भक्त होता है। और मैं किसी की भक्ति को रोककर पाप नहीं करना चाहती।
0: पापियों के साथ पाप से ही पेश आना चाहिए। इस हथियारन पर दया करोगी ना तो फिर ये
3: मोगरा। बस हो गया, कह दिया ना नर्मदा ने। चलो यहाँ आओ, हमारा हाथ बटाओ।
1: जिसके बाद मिलकर पूरा परिवार एक साथ तीज के इस त्योहार को मनाता है, वो भी खुशी खुशी।

0: तेरा।
1: हमारी बातें सुनकर मेरा मन कर रहा है कि उस पड़ाव के पटाव के तोड़ दूंगा।
2: आप ऐसे कुछ नहीं करेंगे सर। मैंने उस दिन आपको जो कुछ भी कहा था, हम किसी को नहीं बताएंगे। आपको मेरी कसम से।
0: ठीक है।
3: स्टार प्लस के सीरियल ये फितूर तेरा में भैया अजीत बेहद ही गुस्से में है। तभी तो देखिए कैसे ताऊ जी को बातों में उलझा कर उसकी असलियत जानने की कोशिश कर रहा है।
0: थाम ले तो आँख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं, और जब वही हाथ उनकी मर्यादा तोड़ते हैं तो से संगीत नहीं सिस्किया निकलती है।
4: सौम्या ने कुछ बताया?
0: तुमने जो मुझे बताया वो तुमने किसी और को भी बताया? अपने घर वालों को, किसी दोस्त को?
2: क्या आपने ताऊ जी को मारा है?
3: भाई जब से ही जीत को ताऊ जी की असलियत पता चली है, देखिए कैसे वो बस सौम्या को सही राह पर लेकर जाना चाहता है और उसे हिम्मत देकर ताऊ जी की असलियत पूरे परिवार के सामने लाना चाहता है।
0: एक ही घर में उस दरिंदे के साथ रहना, सुबह शाम उसकी शक्ल देखना, तुम्हारा दम नहीं घुटता।
2: क्या वो आप थे सर?
0: मैं नहीं था। अगर मैं होता ना तो धक्का देकर ही उसको छोड़ता।
2: आप ऐसा कुछ नहीं।
0: ऐसे दरिंदे लोगों के साथ, अरे ये तो बहुत ही कम है, इतने बुरे, इतने घटिया, इतने नीचे लोगों के साथ ना बहुत बुरा होना चाहिए। इतना बुरा होना चाहिए कि अगर वो कोशिश भी करे ना एक औरत को देखने की बुरी नजर से, तो उनकी रूह कांप जाए। तुम्हें पता है इधर बुरा हो किसके साथ रहा है? सौम्या वो बुरा तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम्हारे लिए सवाल तुम्हारी किताबों में छुपे होते हैं ना, इसलिए एक क्लास मैंने तुम्हारे लिए खाली कर दी ताकि हम दोनों मिलकर तुम्हारे सवाल का जवाब ढूंढें। टैलेंटेड सौम्या प्लस टॉपर सौम्या प्लस गुड गर्ल सौम्या इक्वल्स टू परफेक्ट इन कॉन्फिडेंस सौम्या। लॉजिकली ये इक्वेशन होनी चाहिए पर है नहीं, क्योंकि इतनी सारी अच्छी क्वालिटीज वाली लड़की कॉन्फिडेंट नहीं है। डरपोक और डब्बू है। तुम्हें पता ये दोनों साइड मिसमैच क्यों है? क्योंकि इनमें एक्स मिसिंग है। ये मिसिंग है एक्स। कौन है ये एक्स जिसने तुम्हारे हर ऑनर पर ग्रैंड लगा दिया है?
5: हमारी आईब्रोज की शेप बदलते ही पूरा चेहरा बदल जाता है। लेकिन देखिए यहाँ एंटरटेनमेंट के दुनिया में भी आया है एक बहुत बड़ा बदलाव जो कर देगा आपको हैरान और परेशान। तभी तो लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए ये एंटरटेनिंग सेगमेंट जहाँ हम दिखाते हैं आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया के अलग अलग रंग। जी हाँ, ये तो है रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज।
3: बॉलीवुड ओटीटी और टीवी की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें बन गई है एल्विश यादव और शिवांगी जोशी की जोड़ी। जी हाँ, ये दोनों साथ साथ नजर आएंगे म्यूजिक वीडियो में जिसकी शूटिंग शुरू हो चुकी है। ऐसे में सामने आए हैं शूटिंग के ये नज़ारे जो हो रहे हैं काफी वायरल, क्योंकि इसमें दोनों का ही लुक है एकदम अलग। बाकी लक्ष्मी फेम एक्ट्रेस मायरा मिश्रा प्रेग्नेंट है, जल्द ही वो मम्मी बनने वाली है। ऐसे में सोशल मीडिया के जरिए मायरा और उनके हस्बैंड राजुल ने प्रेगनेंसी अनाउंस की है। साथ ही मायरा कर रही है अपना बेबी बम्प फ्लॉन्ट।

0: नजर डाल लीजिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा के नए प्रोमो पर, जहां गोकुलधाम सोसाइटी में पोपटलाल लेकर आए हैं अपनी दुल्हनिया। तो क्या उन्होंने कर ली है छुपकर शादी? अब ये पता तो लगाएंगे गोकुलधाम वासी।
1: एक नई टेंशन सोसाइटी में आ गई है। पोपट भाई एक दुल्हन को अपने घर पे लेके गए।
2: को मिलना है
3: चाचा जी, आपकी बहू और आप सबकी भाभी आपसे मिलने के लिए तैयार है।
4: खींचिए, दिखाओ।
0: ये जल्द आने वाला है पति पत्नी और पंगा का नया सीजन। ऐसे में सामने आया है इसका ये प्रोमो। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि इस सीजन में है एंटरटेनमेंट भरपूर।
5: पीछे कुछ काम के नहीं हो तुम?
6: अरे एक वाइड एंगल में खींच दो क्या?
5: तुम रहने दो, इससे बेहतर तो सैटेलाइट इमेज ही आ जाएगी मेरी।
7: पति पत्नियों के ये पंगे तो चलते रहेंगे।
0: नाग पंचमी के मौके पर दीपिका सिंह पहुंची मंदिर में लेने भगवान जी का आशीर्वाद।

सितारों की खूबसूरत आंखों के पीछे सिर्फ जेनेटिक्स नहीं, सही मेकअप और सही टेक्निक्स का भी हाथ होता है। वैसे आज तो हमारी टीम कर रही है आपके फेवरेट सितारे से खास मुलाकात। यहाँ तो हमने जाना है इन्हें आप क्लोज एंड पर्सनल। जी हाँ, मैं जानती हूँ आपसे नहीं हो रहा है इंतजार, तो चलिए फिर फटाफट लेकर चलते हैं आपको इनके पास और हो जाते हैं इनसे रूबरू।

0: नाचती गाती जहानवी। सीरियल में जिद्दी लेकिन रियल में संस्कारी। खुशी मीना की डियर जिंदगानी। दंगल टीवी के सीरियल मन सुंदर में लीप के बाद जूही की बेटी जानवी का किरदार निभाने वाली खुशी मीना सीरियल में रुचिता की प्यारी बहना है और नानी की सबसे लाडली है। लेकिन रियल लाइफ में ये दोनों का ही दिल जीतने वाली है। और तो और ये है बहुत चुलबुली मनचली लेकिन साथ ही है संस्कारी भी। सावन के इस महीने में हर सोमवार व्रत रखती है और भोलेनाथ के दर्शन पाती है। खुद ही अपना मेकअप कर ढल जाती है किरदार में। जमकर नाचती गाती है और खुशी से अपना दिन बिताती है। और इसी दिन को जानने के लिए आज सास बहू और बेटियां पहुंच गया है करने इनसे मुलाकात, जहां पर ये तैयार हैं अपने सेट पर जाने के लिए। लेकिन सेट पर जाने से पहले ये मंदिर जाना कभी नहीं भूलती।
1: हाय गाइस, मैं हूं खुशी मीना। आप मुझे देख रहे हैं मन सुंदर में एज जानवी। तो मैं आज आप लोगों को अपना फेवरेट मंदिर दिखाने वाली हूँ, शिव मंदिर, जहाँ मैं सावन के महीने में डेली आती हूँ। सो लेट्स सी, आ जाओ। तो सावन के महीने में मैं हमेशा एक दुपट्टा कैरी करती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि जब भी आप किसी मंदिर जाते हो तो आपको अपना सर ढकना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है पर्सनली,
0: भाई रियल लाइफ में अपने संस्कारों को फॉलो करते हुए खुशी मीना पहुँच गई है मंदिर के अंदर और भोलेनाथ बाबा के सामने जोड़ लिए हाथ और गाने लगी शिव आरती। भाई भोले बाबा की ये सच्ची भक्त है। हर साल 16 सोमवार का व्रत भी रखती है और हर सोमवार को शिव मंदिर भी जाती है। और आज तो इन्होंने अपने हाथों से शिवलिंग पर दूध चढ़ाया, उनकी पूजा अर्चना की और सच्चे मन से मनोकामना की।

0: गाइस हम लोग इलेक्शन हो चुके हैं और ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप लाइफ में कुछ अचीव करते हो या लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा खराब चल रहा हो, दोनों टाइम सबसे ऊपर आपको भगवान को मानना चाहिए। अगर कुछ बहुत खराब चल रहा है तो आपको भगवान के पास जाकर मत्था टेक कर बोलना चाहिए, भगवान जी तुम सब संभाल लो और वो संभाल लेते हैं। और अगर बहुत अच्छा हो रहा है तो भी उन्हें थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि यू नो अच्छा हो जाता है तब भूल जाते हैं भगवान जी को, बट मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं जब भी मुझे सब कुछ अच्छा होता है तो मैं सिद्धि विनायक जाती हूँ, मुंबा देवी जाती हूँ, एंड ये शिव मंदिर है जो कि बहुत पुराना मंदिर है और ये मेरा फेवरेट मंदिर है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, ठीक है, बहुत आराम से इजीली दर्शन हो जाते हैं भगवान जी के और बहुत पॉजिटिव बन गए और बहुत मज़ा आया यार आज भी दर्शन करके, जैसे रोज़ आता है। और सावन के महीने में तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं रोज़ जाऊँ, और कैसा होता है ना कि अगर जल्दी शिफ्ट कर रहा मान के चलो तो रोज़ नहीं हो पाता, पर मैं मंडे को तो सेट पे बोल कर आती हूँ कि मुझे मॉर्निंग में जाना है बाबा, मुझे जल्दी नहीं बुलाना क्योंकि मंडे को मैं फास्ट भी करती हूँ सावन में, 16 सोमवार किया मैंने इस बार भी, तो शिव जी के दर्शन करना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए और आप सभी के लिए भी होने चाहिए।
1: भाई खुशी मीना ना सिर्फ पूजा आरती करती है बल्कि कुछ पल के लिए वहाँ बैठकर शांत मन से साधना भी करती है, क्योंकि ऐसा करने से उनके मन को शांति जो मिलती है।

0: ओके गाइस, तो हम लोगों के बहुत ही अच्छे दर्शन हो गए और अब हम लोग जा रहे हैं सेट पे, सो लेट्स गो।
1: खुशी मीना अपने सेट की ओर निकल तो पड़ी है, लेकिन सफर के दौरान उन्होंने बताया कि कैसे ऊपर वाले का आशीर्वाद इन पर बना हुआ है और कैसे सफलता इनके कदम चूम रही है और कैसे इन्हें ये किरदार मिला है।
0: सो यू नो व्हाट गाइस, गाड़ी में बैठते ही मैंने कुछ बहुत अच्छा देखा। सामने देखिए, खाटू श्याम जी। तो मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ और राजस्थान में खाटू श्याम जी को बहुत मानते हैं, अगर आप लोगों को पता है। और हमारा जो शो है मन सुंदर, उसमें भी खाटू श्याम जी सबसे ज़्यादा मेन कैरेक्टर है। तो पिछले इतने सालों से खाटू श्याम जी हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं। एंड सी क्या मैं मुझे लाइक ये तो सिग्नल है ना भगवान की तरफ से कि हाँ बस ठीक है, तुम ही हो जो हो। तो या गाइस, बहुत ही अच्छा लगा मुझे उन्हें देखकर, शिव मंदिर एंड देन खाटू श्याम जी। वाओ, टू बी ऑनेस्ट, मैं बहुत छोटी थी, बहुत ज़्यादा ही, जब मैंने एक मूवी देखी थी रब ने बना दी जोड़ी, जिसमें मैंने अनुष्का शर्मा को देखा था। आई वॉज लाइक डूड, मुझे टीवी पे दिखना है। तो उस टाइम पे मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे टीवी पे ही दिखना है और मैं बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो मेरे जो फादर है वो मुझे बोलते थे नहीं बेटा ये सब नहीं अच्छा लगता है, ये सब बड़े लोगों का काम है ये वो। और मैं बहुत ज़िद्दी थी बचपन से, मुझे ऐसा था ना नहीं मैं करके रहूँगी, मुझे करना क्या मतलब बड़े लोगों का काम है, मैं करके दिखाऊंगी। फिर बड़ी हुई, फिर भी पापा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ, पर मैं डॉक्टर नहीं बन पा रही थी और क्योंकि यू नो बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, मुझसे बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती थी। तो मैं मेरा दिमाग हमेशा जब टिकटॉक आया तो टिकटॉक में लग गया, फिर उसके बाद रील्स आई तो मैं रील्स में मैंने अपना बहुत दिमाग लगाना स्टार्ट किया। देन उसके बाद में मैंने सोचा कि कुछ तो मुझे करना पड़ेगा, तो मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया और मैं कॉमेडी रील्स बनाने लगी और मेरे बहुत अच्छे व्यूज़ आने लगे। तो उसके थ्रू मुझे कुछ कास्टिंग वालों ने कॉन्टैक्ट किया, तो मुझे समझ आया कि ओके, तो मैं इन लोगों से हेल्प ले सकती हूँ। एंड टच वुड, लोग कहते हैं कि बॉम्बे में यू नो लोग अच्छे नहीं है, कोई आपकी मदद नहीं करेगा, सब आपका फ़ायदा उठाएंगे, पर आई डोंट नो भगवान जी का साथ था या क्या था, मुझे कभी बुरे लोग नहीं मिले, मुझे हमेशा बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग मिले। ऐसे ही मुझे 2-3 कास्टिंग वाले मिले और उन्होंने मुझे नंबर दिए और लोगों के, मैं उनसे थोड़ा बात करती थी और मैंने बोला सर मुझे बॉम्बे आना है, प्लीज़ आप मेरी थोड़ी हेल्प कीजिए, मुझे ना आप नंबर दे दीजिए और कास्टिंग वालों के। तो वो और देते थे, फिर मैं उनको और बोलती थी। वो आपने मूवी देखी है जय हो, जिसमें बोलते ना सलमान खान की आप 3 की और मदद करो और उनसे कहो कि 3 की और मदद करे, तो मैंने वही फार्मूला अपनाया और मैंने बोला कि प्लीज़ आप मुझे और नंबर दो और आगे को बोलती थी और नंबर दो। तो ऐसे करके मेरे पास बहुत सारे नंबर हो गए और मैं फिर सबको प्रोफाइल भेजती रहती थी और मुझे पता भी नहीं था कि कैसे प्रोफाइल भेजते। तो मुझे कुछ बहुत सारे लोग मुझे हेल्प भी करते थे कि यू नो खुशी ऐसे भेजो ऐसे भेजो। उनमें से एक एक्टर मुझे मिला और उसने मेरी बहुत हेल्प करी। और देन उसके बाद मैंने एक ऑडिशन दिया और मेरा वो ऑडिशन क्रैक हो गया एंड देन मैं डायरेक्ट बॉम्बे आ गई। वो भी बहुत मुश्किल था क्योंकि घर वाले नहीं अलाउ कर रहे थे मुझे बॉम्बे आना, बट मैं बहुत मेरी मम्मी वो बहुत सपोर्टिव है, तो मैं बहुत ज़िद पे अड़ गई थी। मैंने बोला आप लोग नहीं भेजोगे तो मैं फिर भी जाऊँगी, पर मैं जाऊँगी क्योंकि वो मेरा सपना है, मैं पहली बार अपने लिए कुछ स्टेप ले रही हूँ और वो मैं लेकर रहूँगी। तो पहले तो पापा बहुत मना किए, बट एट दी एंड मम्मी ने पापा को मना लिया। अब मम्मी की बात तो सुननी पड़ेगी ना उन्हें। तो उसके बाद में मैं बॉम्बे आई। बॉम्बे आने के बाद जब मेरे पापा ने देखा कि ओके, पहले तो स्टार्टिंग 3-4 महीने पापा ओके नहीं थे कि यू नो उनके खिलाफ जाकर कुछ कर रही हूँ, बट 3-4 महीने बाद जब मैं थोड़ा काम करने लगी, वर्टिकल्स मैंने किए, एड्स मैंने किए, मैंने एक राधा कृष्ण का म्यूज़िक वीडियो किया जिसमें मैंने राधा प्ले किया था, तो जब थोड़ा अर्न करने लगी, जब थोड़ा यू नो सब अपने से करने लगी, तो मेरे पापा को लगा कि ठीक है मतलब कर लेगी ये। पापा को एक्चुअली एज अ पेरेंट ना उनको बहुत डर रहता था मुझे लेकर कि कभी ज़्यादा कुछ देखा नहीं है लाइफ में, अकेले रही है, घर पे ही रही है, तो यू नो वैसा हुआ। पर उसके बाद उनको मुझ पर ट्रस्ट हुआ और उन्होंने मुझे बॉम्बे में रहने दिया। एंड देन उसके बाद मैं धीरे धीरे धीरे धीरे अपने आप को प्रूव करती रही और एट दी एंड मेरे पापा बहुत खुश हैं, मेरी मम्मी बहुत खुश है और मैं मन सुंदर में काम कर रही हूँ। और मन सुंदर जब मुझे मिला था, तो जब मन सुंदर मुझे मिला था तो मुझे लीड ही करना था ऑनेस्टली। मुझे मैं रुचिता के लिए कम से कम मैंने 10-15 बार कास्टिंग वाले को बोला था कि प्लीज़ मेरा प्रोफाइल आगे फॉरवर्ड करो, बट द थिंग इज़ ना कि जो मेरी मदर थी उनका फेस मुझसे बिल्कुल नहीं मिलता था और जो उनकी सिस्टर थी यानी कि जो जूही थी उनका फेस मुझसे मिलता था। तो ही वॉज लाइक कि तुम्हारा नहीं जाएगा रुचिता में, तुम जानवी के लिए ट्राई करो. और मुझे याद है आज भी कि मैं सिद्धि विनायक थी जब मेरे पास कास्टिंग वाले का कॉल आया था. ही वॉज लाइक कि खुशी जानवी के लिए ना तुम शॉर्टलिस्टेड हो और मे बी तुम्हारा हो जाएगा इसमें. तो मैंने बोला ठीक है, मैंने बहुत लाइटली लिया उसको, ज़्यादा सीरियस नहीं लिया. उसके बाद में जो मैं लाइक ये बहुत सीरियस बात है यार, मतलब बिल्कुल झूठ नहीं है इसमें, कि 1 वीक बाद मैं गई मुंबा देवी और सिर्फ ऐवी दर्शन करने गई थी और वहाँ पर मुझे कॉल आया कि आप लॉक हो ऑनेस्टली. और मैं नेक्स्ट डे उसके दिन मैंने लुक टेस्ट किया, उसके नेक्स्ट डे मैंने मॉक शूट किया और फिर उसके 5 या 6 दिन बाद शूट स्टार्ट हो गया. सो या ये थी मेरी जर्नी, छोटी सी सिंपल सी.

अभी तक गाइस आप लोग खुशी से बात कर रहे थे और अभी हम थोड़ी देर में सेट पे पहुंच जाएंगे, उसके बाद आप बात करेंगे जानवी से। जानवी कैसी है, जानवी क्या करती है, जानवी कैसे रेडी होती है, जानवी के फैमिली में कौन है, आपको सब पता लगेगा।

0: मौसम है बड़ा कातिल, खो जाए ना कहीं आवारा दिल, मुश्किल है बड़ी मुश्किल, खो जाए ना कहीं आवारा दिल।
1: सफरनामा सुनाते और गाना गुनगुनाते हुए ये सफर तय किया ही जा रहा था कि तभी खुशी मीना को याद आया कि इस शानदार मौसम में एक कप चाय की चुस्की लेना तो बनता है।
2: भैया एक मिनट रुको रुको गाइस, हमें ना कुछ बहुत ही अच्छा खाने को मिला है और सोचो अगर बारिश हो और एक कप चाय हो जाए तो मजा आ जाएगा ना। लेट्स गो।

0: बारिश हो रही है और आप मिसल ना खाए और चाय ना पिए, बहुत कुछ मिस कर रहे हैं यार आप।
1: पेट पूजा करने के बाद फिर से सफर तय किया गया और चुटकियों में हम पहुंच गए मनसुंदर के सेट पर।
2: तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं हमारी लोकेशन पे, यानी कि मनसुंदर सेट पे। तो ये रहा हमारा प्यारा सा सेट।
1: जाते के साथ ही सबसे पहले अपनी अटेंडेंस लगाई और फिर सीधा पहुंच गई अपने मेकअप रूम में, क्योंकि वहीं तो वो किरदार में ढलती है और वहीं से उनकी सफलता भी शुरू होती है।

0: ओके गाइस, तो हम लोग आ गए मेकअप रूम में। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले मेकअप एंड हेयर, और मैं और रुचिता हम लोग साथ में शेयर कर रहे हैं रूम। सो ये ही रुचिता और ये रहा हम लोगों का जहाँ हम मेकअप करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये हमारी ताई जो मेरा हेयर करती है, और मेकअप दादा भी थोड़ी देर में आ रहे हैं। सो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर मैं सबसे पहले अपना सामान सारा टेबल पर रख लेती हूँ, सो दैट हम लोग जब स्टार्ट करें तो दादा के लिए ईजी हो, वो फटफट कर ले, यू नो, लेकर। तो मैं अपना बैग कैरी करती हूँ जिसमें मैं अपना मेकअप का सामान रखती हूँ। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं।
1: खुशी मीना को समय का सदुपयोग करना बखूबी आता है। तभी तो सेट पर पहुंचते ही वो मेकअप मैन का इंतजार तो करती ही है, लेकिन उसके आने से पहले ही वो अपने स्किन को प्रेप करना शुरू कर देती है ताकि उनकी स्किन मेकअप के लिए तैयार हो सके। और तो और,

मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं अपना जो भी फेस पे डस्ट होता है तो उसे क्लीन करती हूँ वेट टिश्यू से. उसके बाद मैं थोड़ा सा अपना स्किन केयर करती हूँ, लाइक नॉर्मल स्किन केयर, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन एंड देन प्राइमर. और उसके बाद मैं अपना लिप बाम भी, और उसके बाद में मैं अपना मेकअप स्टार्ट करती हूँ. सो दादा आ रहे हैं, उससे पहले मैंने अपना स्किन केयर कर लिया है. अभी दादा आएंगे तो उसके बाद हम लोग मेकअप करेंगे. और ताई साथ साथ में हेयर कर रही है. सो मुझे एक्चुअली एक्सटेंशंस लगते हैं क्योंकि मेरे बाल बहुत छोटे हैं और जानवी के बाल बहुत लंबे हैं, तो मुझे एक्सटेंशंस लगते हैं. और ताई वही लगा रही है अभी. लेट्स सी आज का क्या लुक रहता है.

तो जब तक दादा आते हैं मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं अपना मेकअप स्टार्ट कर लेती हूँ. तो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले मैं अपना बेस यूज करूंगी जो कि मैं अपना पर्सनल कैरी कर रही हूँ बिकॉज मुझे जमता नहीं है यू नो सबका मेकअप जो यूज होता है वो वाला. तो सबसे पहले हम लोग अपने अंडर आईज को कवर करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस. तो जब तक दादा आते हैं मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं अपना मेकअप स्टार्ट कर लेती हूँ. तो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले मैं अपना बेस यूज करूंगी जो कि मैं अपना पर्सनल कैरी कर रही हूँ बिकॉज मुझे जमता नहीं है यू नो सबका मेकअप जो यूज होता है वो वाला. तो सबसे पहले हम लोग अपने अंडर आईज को कवर करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस.

तो देखा कैसे चुटकियों में इनकी हेयर स्टाइलिंग भी हो गई, साथ ही साथ इनके मेकअप का बेस भी लग गया। और अब मेकअप दादा भी आ गए हैं जो इनके मेकअप को फाइनल टच देने वाले हैं और इनकी आंखों को निखारने वाले हैं, क्योंकि जानवी की आंखें ही सब बयां करती हैं, चाहे वो अपनी बहन के लिए प्यार हो या फिर नानी के सामने अपनी जिद।

0: तो हम लोगों का मेकअप एंड हेयर दोनों डन हो चुके हैं और मेरा कॉस्ट्यूम भी आ गया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरा क्या कॉस्ट्यूम है आज. सो मेरा कॉस्ट्यूम है क्यूट प्रिटी फ्रॉक. सो हम फटाफट चेंज करके आते हैं. एक्चुअली मुझे बहुत लोगों ने बोला है कि मैं सारा अली खान लगती हूँ, इवन मुझे वाणी कपूर भी बोला है. तो काफ़ी सारे एक्टर्स का, यू नो, मुझे ऐसा लगता है कि डिफरेंट गेटअप में आप डिफरेंट दिखते हो और इसमें आई थिंक मैं सारा वाली वाइब दे रही हूँ, राइट? तो हाँ, मुझे बहुत लोगों ने बोला है.
1: अब खुशी मीना हो या फिर उनका किरदार जानवी, दोनों को ही डांस करना बहुत पसंद है. ऐसे में नाचते गाते खुशी मीना अपने किरदार में ढल चुकी है और पूरी तरह से तैयार हो गई है जानवी बनकर.

जो जानवी है वो बहुत जेंजी है और उसकी ज्वेलरीज बहुत सारी, यू नो, वॉच, नेकलेस एंड काफ़ी सारी रिंग्स.

0: जान भी तो रेडी स्टेडी गो है अपना सीन फिल्माने के लिए, लेकिन सीन शूट करने में अभी समय है। ऐसे में जानवी को मौका मिल गया है अपने को स्टार्स से मिलवाने का। तभी तो वो सबसे पहले पहुंच गई है अपनी बहन रुचिता के मेकअप रूम में, और देखिए कैसे दोनों बहनें न सिर्फ नाच गा रही हैं, बल्कि एक दूसरे से ऑफ कैमरा कितना प्यार करती हैं और कैसी इनकी दोस्ती है ये भी बता रही है।
1: सो गाइस, खुशी बन गई अब जानवी। तो जो जानवी है वो बहुत ज्यादा जेन ज़ी है, तो उसको बहुत सारी ज्वेलरी पहनना पसंद है। यू कैन सी दैट, यू नो, सी नेकलेस एंड एवरीथिंग। सो खुशी से थोड़ी सी डिफरेंट है जानवी। अभी हम क्या करते हैं ना, हम आपको जानवी के दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोगों से मिलाते हैं। तो फर्स्ट हम जाते हैं जानवी की फेवरेट रुचिता के पास। हाय रुचिता डार्लिंग।
2: हाय।
1: तो ये है मेरी प्यारी रुचिता और ये मेरी छोटी बहन है, और हम दोनों बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, राइट?
2: यस, बहुत ज्यादा। सो सुबह सुबह आते ही उनका वो चालू हो जाता है ऐसा जोर जोर से बातें करने का, एंड मेरी नींद उड़ जाती है, एंड देन लाइक ऐसे सेट पैसे
1: तारीफ भी करनी होती है भाई।
2: तो ऐसे सारे दुनिया भर के गॉसिप्स हम इधर आके कर देते हैं।
1: ये तो सच है, हम लोग इतनी गॉसिप करते हैं साथ में। माइक बंद है, माइक बंद है।
2: सबसे पहले रूम में आके हम माइक बंद करते हैं, फिर गॉसिप करते हैं।
1: पूरे सेट की गॉसिप हम दोनों के पास होती है, किसने क्या बोला, अच्छा तेरे सीन में ये हुआ, अच्छा मेरे सीन तुझे पता ही हुआ, ये पूरा हमारे पास होता है।
2: पूरे पूरे सेट की गॉसिप यहाँ पे आके माइक बंद करके करते
1: हैं, और हम लिटरली बहनों की तरह ही लड़ते हैं। जैसे कभी कुछ हो जाता है ना तो हम लोग लड़ लेंगे, फिर दोनों थोड़ी देर चुप हो जाएंगे, फिर सेट पे जाएंगे, फिर लगेगा यार दोनों ही को तो
2: सॉरी
1: बोल के सॉर्टेड हो जाता है पूरा सब।
2: Yes, and then she is very nice.
1: Oh.
2: Tari. Then she is very cute, and like when I need support, so she is there for me. Like ऐसा हम ऐसा open up कर सकते हैं अगर जरूरत होती है तो उनसे।
1: कुछ गलतियाँ भी अगर हमसे होती है, like you know कुछ भी misunderstanding हो रही है, तो हम ऐसा हमें like हमें उतना comfort zone है कि हम वो discuss कर सकते हैं। It's like बाकी कोई होगा तो हम ignore ही करें, चलो जाने चलो, ज्यादा मुंह नहीं लगेंगे। बट इसके साथ वो नहीं लगता है मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है हो गया कुछ तो बात कर लेती हूँ।
2: हाँ, और अगर मेरे से कुछ गलती हो जाती है या फिर मैं कहीं पे कुछ लैक कर रही हूँ, सो वो आके मुझे बताती है कि तेरा यहाँ यहाँ पे गलत है, यू शुड इम्प्रूव ऑन दैट एंड बाकी यू आर डूइंग गुड। सो वैसा शी इज देयर फॉर मी व्हेनेवर आई नीड समथिंग। ज़ारा ही सच बोल रही हूँ
1: क्योंकि हम लोगों ने कभी ये वाली बातें नहीं करी, फर्स्ट टाइम ऐसे बातें कर रहे हैं हम लोग, वरना तो लड़ते झगड़ते ही रहते हैं मोस्टली।

0: अर्चिता के साथ मस्ती करने के बाद जाह्नवी पहुंच गई है अपनी फेवरेट नानी के कमरे में, जहां पर न सिर्फ ऑन कैमरा बल्कि ऑफ कैमरा भी नानी जाह्नवी से बहुत प्यार करती है।
1: तो अब मैं मिलाती हूँ बड़ी नानी से, लेट्स गो। ओके, तो हम मिलने वाले हैं अब बड़ी नानी से।
2: How are you?
1: Good, good. How are you?
2: I'm good.
1: So, ये है मेरी प्यारी बड़ी नानी।
2: हेलो,
3: क्या बोलेंगे?
2: हाय, मैं अपना घोषाल और पूनम का किरदार प्ले कर रही हूँ इस शो मन सुंदर में, और ये है जाह्नवी जो कि हमारे घर में मेरी सबसे लाडली है और जिसके लिए मैं सब कुछ करती हूँ। खुशी इज अ वंडरफुल एक्टर एंड बहुत मजा आता है करने में, एंड शी इज अ वेरी शी इज वेरी कॉमिकल ऑल्सो एट टाइम्स, शी मेक्स अ लॉट ऑफ फन और मस्ती करती है सेट में, हम लोग अच्छे से इंजॉय करते हैं सीन्स करते हुए, एंड दैट्स वंडरफुल, इट्स वंडरफुल, इट्स अ वंडरफुल टीम एंड इट्स वंडरफुल वर्किंग विद हिम।
1: एंड गाइस, यू नो व्हाट, मुझे ऐसा लगता है कि जितना बड़ी नानी को नेगेटिव शो में दिखाते हैं, इन रियल लाइफ वो इतनी प्यारी है ना, कि मैंने बहुत लोगों को बोला है, बहुत बार इवन इनको खुद को मैंने बोला है कि पूरे शो में मुझे सबसे ज़्यादा यही पसंद है। आई रियली लव हर, सो थैंक यू सो मच।
0: तो देखा आपने कैसे जाह्नवी उर्फ खुशी मीना सेट पर अपना दिन बिताती है, नाचते गाते अपनी शूटिंग भी करती है और खुश मिजाज अंदाज से सभी का दिल जीत लेती है। उम्मीद करते हैं कि खुशी मीना के बारे में जानकर आप सभी को अच्छा लगा होगा।
1: आज के लिए बस इतना ही, और मुझे आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हम सुबह जल्दी निकले, हम लोगों ने मंदिर में दर्शन किए, उसके बाद हम लोगों ने चाय और विसल पाव खाया, एंड उसके बाद हम लोगों ने ग्रीनरी भी देखी और बारिश भी बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने, और फिर मैंने आप लोगों को मिलाया रुचिता से और बड़ी नानी से, जो कि मेरी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप सभी जानते हैं। तो मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि जैसे आप लोगों ने रूही और जूही को प्यार दिया था, वैसे ही आप लोग रुचिता और जाह्नवी को प्यार दो और मेरे किरदार को पसंद करो और मुझे ढेर सारा प्यार दो। थैंक यू सो मच गाइज, बाय, टेक केयर।
0: मुंबई से नूपुर मौसी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
4: अब जब बात करें हम आई मेकअप की, तो हर खूबसूरत चेहरे को ज्यादा मेकअप की जरूरत नहीं होती, कभी कभी एक नेचुरल आई शेडो उसके साथ वेल डन आईब्रोज, मस्कारा और काजल, यही आपके लुक को सिंपल और खूबसूरत बना देता है। और बिल्कुल ऐसी हैं हमारी वसुधा, तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आप सबको वसुधा के पास और देखते हैं क्या कुछ एंटरटेनिंग और एक्साइटिंग हो रहा है इस कहानी में आज। वेल, कहानी में फिर से आया है एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट जिसे आप मिस नहीं कर सकते। गेट सेट गो।
5: लौटा सावित्री का पति, चंद्रिका करेगी इंसाफ।
6: 20 साल पहले कहाँ था तुम्हारा ये प्यार? इतने सालों में एक बार तुमने सावित्री के बारे में जानने की कोशिश की?

0: फैसले की जिम्मेदारी वसुधा पर। जी टीवी के सीरियल वसुधा में सावित्री, जिसे चंद्रिका अपने परिवार जैसा मानती है, उसका पति 20 साल बाद लौट कर आया है। ऐसे में अब चंद्रिका ने सभी परिवार वालों को एकजुट किया है, क्योंकि सावित्री को फैसला चाहिए कि आखिरकार उसके पति के साथ क्या करना चाहिए। ऐसे में सावित्री का पति देखिए कैसे चंद्रिका से माफी मांग रहा है, लेकिन चंद्रिका कुछ सुनने को तैयार नहीं। वो तो जानना चाहती है कि सावित्री क्या सोचती है।
1: इतने सालों में एक बार तुमने सावित्री के बारे में जानने की कोशिश की, पता करने की कोशिश की कि वो कैसे है, क्या कर रही है।
0: भाई सावित्री ने तो अपना फैसला चंद्रिका पर छोड़ दिया है। उसे पूरा विश्वास है कि चंद्रिका जो भी फैसला लेगी उसके लिए वो सही होगा। ऐसे में चंद्रिका भी देखिए कैसे वसुधा पर जिम्मेदारी डालती है। वो वसुधा को बुलाती है और उसे सावित्री और उसके पति के लिए फैसला लेने को कहती है। और अब वसुधा असमंजस में है, क्योंकि सावित्री की जिंदगी का सवाल जो है, ऐसे में वो क्या फैसला ले और क्या नहीं, उसे समझ नहीं आ रहा। विचार विमर्श करने के बाद वसुधा एक फैसला लेती है और एक और मौका सावित्री और उसके पति को देती है, लेकिन अगर वो उसमें जीते तो ही ये साथ रहेंगे, नहीं तो नहीं।

हमारा फैसला है, तुम्हारा आखिरी फैसला होगा। श्याम पर पूरा भरोसा है तुम। गोपाल जी, हमारी वो वाली कुर्सी यहां लेकर आइए।

0: अब ये फैसला वो लेगा जो सावित्री के बारे में सबसे ज्यादा फिक्र करता है। यहाँ आओ वसुधा।
1: पूरा चौहान परिवार, पूरा चौहान हाउस सावित्री मासी की ज़िंदगी के अराउंड घूम रहा है इस वक्त। ये है कि बहुत ही ज़्यादा सालों बाद उनके हस्बैंड लौट के आए हैं और सावित्री मासी जो उनके हस्बैंड कह रहे हैं कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, बहुत पछतावा दिखा रहे हैं सब लोगों को, और हम सब कहीं ना स्पेशली दिव्या तो बहुत ज़्यादा उनसे मान चुकी है कि वो बिल्कुल सुधर चुके हैं और वो बिल्कुल उन्हें मनाना चाहती है कि आप मान जाओ सावित्री मासी। बट देखने को मिलता है कि सावित्री मासी जो है वो बहुत डर जाती है, उनके मन में बहुत ट्रॉमा है उनके हस्बैंड के बारे में सोचते ही, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रही है उन्हें। और फाइनली वो मासा से आके भी पूछते हैं, क्योंकि सावित्री मासी की तो पूरी फैमिली जो उनका मेन फैमिली सब कुछ जो भी कुछ है वो चौहान परिवार है, तो वो आके मासा से भी पूछते हैं कि आप मेरा फैसला ले दो, मैं फंस गई हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये लोग मुझे कह रहे हैं कि ये बंदा ठीक हो चुका है और क्लूज भी उन्हें ऐसे ऐसे मिल रहे हैं कि वो ठीक हो चुके हैं, मतलब हम टेस्ट ले रहे हैं तो वो पास कर जा रहे हैं, पास भी क्या वो फ्लाइंग कलर्स के साथ पास कर जा रहे हैं हर टेस्ट। तो वो कहती है कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है मेरे साथ, आप मेरा कोई अच्छा फैसला कर दो। तो मासा फाइनली कहती है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारा कोई फैसला लेती हूँ। और फाइनली मासा वो जिम्मेदारी कहती कि मुझे मैं जो भी तुम्हें कहूँगी क्या तुम्हें मंजूर है, एंड सावित्री मासी कहती ठीक है। तो मासा कहती मैं ये फैसला करने की जिम्मेदारी वसु को देती हूँ। फिर वसु एक प्लान बनाती, कहती कि मेरा फाइनल टेस्ट है, अगर ये पास हुआ तो सावित्री मासी आपको इनके साथ अपनी लाइफ शुरू करनी है, आप हम पे भरोसा करो, लेकिन अगर ये फेल हुए तो आज के बाद कोई सावित्री मासी कुछ कहेगा नहीं। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग।
2: भाई अब वसुधा पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि सावित्री की जिंदगी का फैसला अब उसके हाथ में जो है, अब देखना होगा वसुधा इसमें खरी उतरती है या नहीं।
0: लेकिन एक बात याद रखना कि तुम्हारे व्रत के लिए आशीर्वाद और आज्ञा दोनों हम तुम्हें तब देंगे जब तुम सावित्री के लिए सही फैसला लोगे, वरना हमसे कोई उम्मीद मत रखना।
2: वहीं दूसरी तरफ दिव्या भी सावित्री से बात करने जाती है, जानने के लिए कि आखिरकार सावित्री क्या चाहती है।
3: आप चौहान हाउस की चिंता मत कीजिए, वहाँ पे पूरा स्टाफ है ना सब कुछ संभालने के लिए। मैं तो आपसे बात करने के लिए आई थी सावित्री मासी। आपने सारी जिंदगी दूसरों की सेवा में लगा दी, आपने हमेशा हमारी खुशियों के बारे में सोचा है, लेकिन अब वक्त आ गया है सावित्री मासी अपने आप के बारे में सोचने का। मैं जानती हूँ कि आपके साथ जो भी कुछ हुआ है उसे भुलाना आसान नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि दिनेश काका भी अपने किए हुए की सजा भुगत रहे हैं, और मैंने आपको इतना तो समझ लिया है कि चाहे आपके मन में उनके लिए प्यार बेशक ना हो, लेकिन आपके दिल में उनके लिए हमदर्दी जरूर है। हम कानूनी रूप से अलग तो नहीं हुए।

0: से सावित्री को लेकर बातें कर रहे हैं। ऐसे में वसुधा को पता चलता है कि चंद्रिका की तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें बुखार है। ऐसे में वसुधा हो जाती है चिंतित। तो भाई इन सब के बीच अब देखना होगा कि वसुधा क्या करती है और सही का साथ देती है। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
1: अब जितना इम्पोर्टेंट मेकअप लगाना है उतना ही इम्पोर्टेंट उसे निकालना भी है, और स्पेशली आई मेकअप को लेकर ना आप थोड़ा सावधान रहिए। एक तो अल्कोहल बेस्ड रिमूवर्स का इस्तेमाल ना करें। इनफैक्ट सबसे सेफ ऑप्शन है कोई भी बेबी ऑयल। अगर पहले आप उस बेबी ऑयल को धीरे से अपनी आंखों के चारों तरफ मसाज कर लें और वेट मॉइस्ट कॉटन से उसे अच्छे से वाइप कर लें, फिर कोई भी मेकअप रिमूवर प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप रखें अपनी आंखों का ख्याल और यहाँ हम रखेंगे आपके एंटरटेनमेंट का ख्याल। तभी तो लेकर हाजिर हैं यहाँ पर आपके लिए अगली कहानी, जिसमें है अनलिमिटेड ड्रामा।
0: बुरे फंसी वृंदा, धनकोर की प्लानिंग, बेहोश वृंदा की नरेंद्र संग शादी,

0: जी टीवी के सीरियल तू हीरे दिल में आज धनकोर अपनी प्लानिंग को कामयाब कर रही है। जरा देखिए कैसे उसने दूसरे गांव में शादी का मंडप सजा दिया है और अपने बेटे नरेंद्र की शादी वृंदा से करा रही है। और वृंदा वो तो बेचारी बेहोश है, उसे तो पता ही नहीं है कि उसके साथ हो क्या रहा है। फिलहाल तो धनकोर और नरेंद्र इंतजार कर रहे हैं पंडित का, लेकिन तभी नरेंद्र का भाई दे देता है बैड न्यूज।
1: अरे पंडित जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं, हम सब यहाँ तैयारी करके बैठे, आप आइए ना। देखिए मना, अरे अरे पंडित जी ने मना कर दिया, फोन काटो।
2: मुझे पहले से ही पता था कि पंडित नहीं आने वाला, इसलिए बाजू के गांव से पंडित जी को बुला लिया।
1: पड़ेगा वैसे क्या चौकस आइडिया मांगा, मतलब इतना दूर किराए में इतना बड़ा घर लिया था कि आपके और वृंदा की शादी हो सके, और गाँव से दूर लिया ताकि वो टांग भी ना आ सके। मानना पड़ेगा नैन भाई।
2: क्या खुद बन के खड़ी रहेगी, चल इसे तैयार कर।
0: भाई प्रेमलता तो वृंदा को बेहोश देख हैरान है और घर वाले जो मनमानी कर रहे हैं उसे तो वो चाह कर भी रोक नहीं पा रही, क्योंकि उसे तो सासू माँ का अल्टीमेटम मिल गया है। ऐसे में अपनी सासू माँ का फैसला सुन प्रेमलता पहुँच जाती है सुहागन का सारा सामान लेने, और देखिए कैसे बेहोश वृंदा को वो अपने हाथों से तैयार कर रही है। कभी चुनरी उड़ा रही है तो कभी कंगन पहना रही है।

भाई वृंदा को दुल्हन जो बनाना है। भाई वृंदा और नरेंद्र का गठबंधन जुड़ गया है और तो और पंडित भी आ गए हैं। उन्हें देख धनकोर खुश हो रही है क्योंकि उसे यकीन है कि आज उसके बेटे नरेंद्र की शादी वृंदा से हो ही जाएगी।

0: आप आए,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सारी सामग्री है और कुछ चाहिए? चलो अभी डबल पैसा दिया है तो डबल झड़प के काम करवा लू। हाँ चल शुरू हो जाओ।
2: भाई नरेंद्र के भाई ने नरेंद्र का गुस्सा शांत किया तो वहीं प्रेमलता भी मौका देखते ही सबकी नजरों से छिपकर वहां से जा चुकी है और यहां शादी संपन्न होने की क्रिया चल रही है। अब बारी है मंगलसूत्र और सिंदूर पहनाने की। देखना होगा क्या सही समय पर संजय आ पाएगा और क्या इनकी शादी में ब्रेक लग जाएगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
3: कुछ मौकों पर ना बोल्ड आई मेकअप नहीं बल्कि हल्का और नेचुरल लुक ही बहुत खूबसूरत लगता है। कुछ ऐसा ही कहनी है आज हमसे हमारी अपराजिता। तो एक नेचुरल आई शेडो, पतला सा लाइनर और मस्कारा कर देता है हमारे लुक को और भी खूबसूरत। और बिल्कुल ऐसी ही खूबसूरत और सिंपल सी है हमारी अपराजिता भी। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको अपराजिता और रक्षित के पास और देखते हैं क्या कुछ हो रहा है इनकी कहानी में आज।
2: बंधी अपराजिता और रक्षित की डोर

0: जुड़ रहा रक्षित और अपराजिता का किस्मत कनेक्शन। स्टार प्लस के सीरियल ओ हमनवा तुम देना साथ मेरा में अपराजिता की वजह से रक्षित की कंपनी को मिली है बड़ी डील और ऐसे में देखिए सभी तैयारियों में जुट गए हैं। अपराजिता लीडर बन सब लोग एक साथ मिलकर कंसाइनमेंट पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में रक्षित अपराजिता के पास पहुंचता है लेकिन दोनों में हिचकिचाहट जरूर है। ऐसे में देखिए फिर एक बार दोनों के रास्ते जुड़ गए और शुरू हो गई आशिकी। भाई इस डोर ने बना दी है दोनों की जोड़ी। भाई सभी टीम मेंबर्स को मोटिवेट भी कर रहे हैं और साथ ही साथ इनका लव कनेक्शन भी जुड़ता नजर आ रहा है।
1: ऑफ कोर्स मैं, मेरी कंपनी, मेरे लोग, मैं काम नहीं करूंगा तो कौन करेगा?
2: दीप, आप ऑर्डर्स दे सकते हैं, आप बॉस हैं ना, आपको ये सब
1: आज कर... मैं बॉस नहीं हूँ, आज हम सब एक है। आप ही ने कहा था ना कि अगर हम सब साथ मिलकर चलेंगे तो मंजिल तक पहुंचेंगे, इसलिए आज नो सीनियर नो जूनियर, आज सब एक बनकर हाउस ऑफ भारद्वाज के लिए काम करेंगे एज वन यूनिट।
3: ऑलराइट, गेट टू वर्क।

0: like?
1: आपने वो रेड स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में सुना?
2: लाल धागे की कहानी? ये कोई हॉरर फिल्म है क्या?
1: नहीं, कहानी नहीं, थ्योरी। वो ये थ्योरी एक्चुअली कहती है कि किस्मत कभी कभी एक धागे से दो लोगों को बांध के रखती है और उन वो लोगों का मिलना तय होता है। वो धागा अनदेखा होता है, किसी को नजर नहीं आता, ना कोई छू सकता, लेकिन वो धागा उन दोनों को हर हाल में एक साथ बांध कर रखता है। और ये धागा न वक्त देखता है, ना हाल ना जगह। फिर वो दो लोग अलग शहरों में पैदा हुए हो, अलग अलग रहते हो, एक दूसरे से कई सालों तक ना मिले हो, अलग रास्ते पर चले हो, लेकिन ये धागा उन्हें बांध कर रखता है, इवेंचुअली मिला देता है। ये धागा हमेशा सीधा नहीं होता, कभी कभी जिंदगी इतना खींचती है कि लगता है टूट जाएगा। कभी वो धागा ऐसे उलझ जाता है कि समझ नहीं आता कहां से शुरू हुआ और कहां जा रहा है। गलत फहमियां होती हैं, दूरियां आती हैं, दर्द होता है, लेकिन वक्त रहते धागा सुलझ जाता है। फिर आप उस धागे को कितना भी खींच लीजिए, कितना भी उलझा लीजिए, वो सुलझता जरूर है, क्योंकि उसे किस्मत ने बांध रखा है। इसलिए जब दो लोग जिंदगी से लड़कर मिलते हैं ना, तो समझ जाना चाहिए कि किस्मत के धागे ने उन्हें बांध रखा है। यही है ये रेड स्ट्रिंग थ्योरी, लाल धागे की कहानी।
2: कुछ बातें और कुछ हालात ना रिश्तों को ऐसे काट देते हैं कि फिर कोई धागा उन रिश्तों को बांध नहीं सकता। फिर किस्मत को भी जो है ना, हार माननी पड़ती है। फिर वो धागे का एक सिरा हमेशा के लिए कहीं खो जाता है, जिंदगी भर भटकता रहता है और उसे उसका हम सफर नहीं मिलता। आपके नोटिस पीरियड खत्म होने के बाद हम भी कभी नहीं मिलेंगे। बिल्कुल इस लाल धागे के दो सिरों की तरह।
3: तो भाई अब देखना होगा कैसे रक्षित और अपराजिता के प्यार की ये डोर फिर एक बार जुड़ती है और शुरू होती है इनकी लव स्टोरी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
4: आईब्रोज को ना हमेशा उनके नेचुरल शेप के हिसाब से ही ग्रूम करें। ज्यादा डार्क आईब्रोज, ज्यादा पतली आईब्रोज चेहरे के लुक को बिगाड़ देती हैं। देखा, ये तो है एक सिंपल एंड अमेजिंग टिप। और इसी के साथ साथ अब लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए स्पेशल स्टोरी, जिसे संभाल कर रखा था हमने ओनली फॉर यू। अब आप मुझसे पूछेंगे ऐसा क्या स्पेशल है इसमें, तो चलिए फिर फटाफट लेकर चलते हैं आप सबको इसकी ओर।
3: शुरू हुआ मुकाबला।

0: होगी जीत, किसकी हार? खेल के साथ साथ मस्ती अनलिमिटेड। सास बहू और बेटियां आपके लिए लेकर आया है द इंडियन गेम शो के इनसाइड नज़ारे, यानी कि BTS नज़ारे, जहां पर चल रही है शूटिंग और यहां मौजूद है भारती और हर्ष। इसी के साथ खास मेहमान बनकर आए हैं प्रिंस नरूला, मरारा चोपड़ा, मनीषा रानी, करण पटेल और अभिषेक कुमार। तो भाई सीधा चलते हैं सेट के अंदर और देखते हैं किस तरह से खेल खेले जा रहे हैं। भाई यहाँ पर होस्टिंग कर रहे हैं भारती और हर्ष, तो वहीं जंग छिड़ गई है अभिषेक और करण पटेल के बीच, जहाँ हो रहा है ये बलून वाला गेम। भाई देखिए कैसे इन एक्टर्स को हार्नेस पर टंगा दिया गया है और सभी गेम खेलते नजर आए।
1: अभिषेक को हर लड़की से जोड़ना है, इस गेम में आपको बलून फूटना है।

गेम के साथ साथ मस्ती भी अनलिमिटेड है। खेल तो खेल ही रहे हैं, लेकिन हंसी के ठहाके भी लग रहे हैं। तो कुछ ये थे इंडियन गेम शो के इनसाइड नज़ारे, क्योंकि यहाँ है एंटरटेनमेंट भरपूर। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।

0: कभी बोल्ड आई लाइनर, कभी स्मोकी आईज, तो कभी ग्लिटर आई शेडो। देखिए, एक जरा सा चेंज ना हमारे लुक को कंप्लीटली बदल सकता है, और यहाँ हम भी बदल देंगे आपका मूड, क्योंकि लेकर हाजिर हैं हम यहाँ पर आपका फेवरेट सेगमेंट। जी हाँ, जहाँ हम दिखाते हैं आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया से अलग अलग न्यूज, क्योंकि देखिए एंटरटेनमेंट की दुनिया में भी रोजाना मचती है खलबली, होता है कुछ ना कुछ अलग, रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज।
1: सिद्धि विनायक मंदिर पहुंची है कंगना रनौत लेने बापा का आशीर्वाद। इसी के साथ सिद्धि विनायक मंदिर पहुंचे हैं डायरेक्टर मधुर भंडारकर और एक्ट्रेस आध्या आनंद।

0: पहाड़िया की जल्द ही एक नई फिल्म आने वाली है जिसका नाम है प्रेम के तानो। सामने आया है इसका टीजर, आप भी डाल लीजिए इस पर एक नजर।
1: क्लास बंक करी होगी, पीटे होंगे, इन सब के बीच में पढ़ाई करने का कहाँ टाइम मिलता है यार।
2: ये अंतर्यामी है क्या?
3: कौन बोल रहा है बदतमीज?
4: तू कौन है बदतमीज?
5: मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी, तुम्हें इस कॉलेज में अगले 4 साल तक कोई लड़की नहीं मिलेगी।
3: अच्छा, मैं भी तुम्हें सेम टू सेम श्राप देता हूँ, तुम्हें भी 4 साल कोई लौंडा नहीं मिलने वाला।
6: चार महीने इजी निकल गए, अब तो 4 सेकंड भी निकालना मुश्किल है।
0: देख लीजिए तो जूलियट जड्डी का ये नया प्रोमो जहाँ पर प्यार का बैटल ग्राउंड शुरू होगा।
7: कॉलेज डिग्री के लिए नहीं, केमिस्ट्री बनाने आया हूँ,
8: अब होगा गर्लफ्रेंड बनाने का सिलेबस शुरू।
9: मेरे सपने इसी कॉलेज से उड़ान भरेंगे, मेरा सीक्रेट किसी को पता ना चल जाए।
10: मेरे गिटार की धुन उसके दिल के तार जरूर छेड़ेगी जो मेरी चाहत है।
11: अब बदलने वाली है इस कॉलेज की वाइफ, 'cause this is our new trend. सीनियर दीदी लगता है चश्मा पहनना भूल गई।
12: ओए जूनियर्स, मैं अपनी पर आ गया ना, तुम सबकी क्लास यहीं शुरू कर दूंगा।
13: पर हमें लेक्चर सुनने की आदत बिल्कुल नहीं है, और वैसे भी अब यहाँ की हवा बदलने वाली है।
14: कई आए और कई गए, लेकिन जिसने भी कोशिश की ना सब हवा हो गए।
15: तू जूनियर जड़ती
0: सर। विशेष भट्ट ने ये कंफर्म किया है कि जल्दी आएगी जन्नत 3 जिसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। अमेज़न प्राइम पर जल्द आने वाला है नया शो द रेवोल्यूशनरीज। ऐसे में इसके प्रमोशंस के लिए साथ साथ नजर आए रोहित सराफ, प्रतिभा रांटा और निखिल अडवाणी। भट्ट ने सोशल मीडिया पर अपने फैंस के लिए शेयर किया है ये वीडियो जहां वो नजर आ रही हैं रणबीर कपूर और बेटी राहा संग, क्योंकि ये पहुंचे हैं फैमिली वेकेशन पर।

कार्तिक आर्यन नई फिल्म में नजर आएंगे, जिसका नाम है कैप्टन इंडिया, जिसकी कास्ट को ज्वाइन किया है पार्वती, थिरुवोथु और मनीष चौधरी ने। इसी के साथ कार्तिक आर्यन अब बन गए हैं प्रोड्यूसर। वो लेकर आ रहे हैं अपना प्रोडक्शन हाउस डोपामिन स्टूडियोज कबीर खान के साथ।

0: सुमन इंदौरी फेम एक्टर साई बल्लाल जल्द ही एंट्री करने वाले हैं सीरियल जूही मुई में, यानी कि वो कहानी में लाएंगे नया ट्विस्ट।
1: तो आज के एपिसोड में हमने यही जाना कि खूबसूरत आंखों के लिए महंगा मेकअप नहीं, सही प्रोडक्ट, सही टेक्निक और आंखों की देखभाल करना भी बहुत ही जरूरी है। तो आप भी याद रखें, एक तो अपनी आईब्रोज को अपने चेहरे के शेप के हिसाब से ही स्टाइल करें, दूसरा ज्यादा आई प्रोडक्ट्स ना लगाएं, ज्यादा आई शैडो भी अपनी आंखों पर ना लगाएं और सोने से पहले आई मेकअप को रिमूव करके जरूर सोएं, क्योंकि खूबसूरती से ज्यादा आई केयर बहुत ही जरूरी है। इसी बात पर लेते हैं आपसे विदा, मुलाकात होगी आपसे कल जहां फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथ पेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
7: स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 का ऐलान, 17 खिलाड़ियों को मिलेगा अर्जुन पुरस्कार, 3 खिलाड़ियों को मिलेगा द्रोणाचार्य अवार्ड। माउंट डेल्टा 41 पर पहली बार पर्वतारोहण और पैराग्लाइडिंग कर ड्रीम एंड WS ने रच दिया इतिहास, 13 सदस्यीय टीम ने भारतीय एडवेंचर के इतिहास में हासिल की बड़ी उपलब्धि। पालतू हाथियों के हित में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, केंद्र को राज्यों के साथ मिलकर हाथी क्लिनिक स्थापित करने को कहा, हाथियों का मेडिकल रिकॉर्ड रखना किया अनिवार्य। श्रद्धा और उत्साह के साथ जारी है बूढ़ा अमरनाथ यात्रा, पहले जत्थे के 2000 से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा के दर्शन, 28 अगस्त को संपन्न होगी ये यात्रा। उत्तरकाशी में अपने आराध्य समेश्वर देवता के साथ खेली गई दूध मक्खन की अनूठी होली, रासो तांदी नृत्य की रंगारंग प्रस्तुति ने माहौल को बनाया भक्तिमय।

0: आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जीएनटी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की शानदार खबर के साथ। तो शानदार खबर यह है कि भारत सरकार ने अर्जुन अवार्ड का ऐलान कर दिया है। 17 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से नवाजा जाएगा, ये शानदार खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। और इसके साथ ही द्रोणाचार्य अवार्ड का भी ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें, बात अगर लिस्ट की करें तो एथलेटिक्स से लेकर बैडमिंटन, हॉकी, शतरंज, शूटिंग और कबड्डी तक अलग अलग खेलों के खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड के लिए चुना गया है। खेल मंत्रालय ने चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर इन पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। एथलेटिक्स में तेजस्विन शंकर, मोहम्मद अजमल वी और प्रियंका गोस्वामी को सम्मान मिलेगा। बैडमिंटन की अगर हम बात करें तो बैडमिंटन में ट्रीसा जॉली और दिग्गज कोच पुलेला गोपीचंद की बेटी यानी कि गायत्री गोपीचंद का सिलेक्शन हुआ है। बॉक्सिंग की अगर बात करें तो बॉक्सिंग में नरेंद्र को अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा। तो इस वक्त की शानदार खबर हम आपको बता रहे हैं। खेल मंत्रालय ने आज यानी 18 अगस्त को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा कर दी है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं जीएनटी एक्सप्रेस।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
0: राष्ट्रीय खेल पुरस्कार साल 2025 की हुई घोषणा। अर्जुन पुरस्कार के लिए चुने गए 17 खिलाड़ी, फुटबॉल के दिग्गज आई अरुणा नायगमन को अर्जुन अवार्ड की लाइफ टाइम कैटेगरी में सम्मान। बैडमिंटन में गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली को दिया जाएगा अर्जुन अवार्ड। महिला डबल्स में भारत की प्रमुख प्लेयर्स में रही हैं दोनों खिलाड़ी। चेस के क्षेत्र से दिव्या देशमुख और विदित गुजराती होंगे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित। दिव्या ने 2025 में FIDE वुमेन्स वर्ल्ड कप का खिताब जीतकर हासिल की थी बड़ी उपलब्धि। एथलेटिक्स में तेजस्विन शंकर को अर्जुन अवार्ड। हाई जंप और डिकैथलॉन में कर चुके हैं भारत का प्रतिनिधित्व। कॉमनवेल्थ गेम्स में डिकैथलॉन में मेडल जीतकर रचा था इतिहास। द्रोणाचार्य अवार्ड के नामों का भी हुआ ऐलान। नियमित कैटेगरी में एथलेटिक्स के परिवार में सिंह, बॉक्सिंग के छोटे लाल यादव और शूटिंग की नेहा नंद कुमार चौहान का नाम। लाइफ टाइम कैटेगरी में बॉक्सिंग के धर्मेंद्र सिंह यादव और कुश्ती के वीरेंद्र कुमार को मिला सम्मान। क्रिकेटर ऋषभ पंत ने रचा इतिहास। टेस्ट में सबसे तेज 100 सिक्स लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने। पंत ने श्रीलंका के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट के चौथे दिन कर दिया कारनामा। सिर्फ 4,918 बॉल का सामना कर लगाए 100 छक्के। पर्वतारोहण और पैराग्लाइडिंग कर GMNWS ने रच दिया इतिहास। पहली बार किया माउंट डेल्टा 41 के शिखर से सीधे पैराग्लाइडिंग द्वारा नीचे उतरने का सफल कारनामा। 13 सदस्यीय टीम ने भारतीय एडवेंचर के इतिहास में हासिल की बड़ी उपलब्धि। इस दल को 11 अगस्त किया गया था रवाना। लद्दाख के करगिल क्षेत्र में स्थित है माउंट डेल्टा 41 जो माउंट बर्मल के नाम से भी मशहूर। कर्नल हेम सिंह के नेतृत्व में पूरा हुआ यह कारनामा। सेना के बाद अग्नि वीरों को नौकरी, बिजनेस और करियर में मिलेगी नई राह। देश का पहला नेशनल सिविल रिहैबिलिटेशन फोरम अग्निमंथन एप लॉन्च। 4 साल की सैन्य सेवा पूरी करने वाले अग्नि वीरों को नागरिक जीवन में बेहतर रोजगार, स्किल डेवलपमेंट और करियर के अवसर उपलब्ध कराना है इस ऐप का उद्देश्य। देश के ज्यादा से ज्यादा अग्नि वीरों तक अग्नि मंथन की पहुंच मुहैया कराने की योजना। सेवा पूरी करने के बाद अग्नि वीरों को मेंटोरशिप और गाइडेंस देगी यह ऐप। सेना ने जम्मू कश्मीर के रामबन में पूर्व सैनिक सम्मेलन और वीर नारी सम्मान समारोह का किया आयोजन। इस कार्यक्रम में 150 से अधिक पूर्व सैनिकों और कई वीरांगनाओं ने लिया हिस्सा। कार्यक्रम में देश के लिए बलिदान देने वाले सैनिकों की पत्नियों को किया गया सम्मानित। पूर्व सैनिकों की पेंशन, स्वास्थ्य और अन्य शिकायतों के समाधान के लिए लगाए गए विशेष स्टॉल। उत्तर प्रदेश पुलिस का पहला आधिकारिक एंथम खाकी का सितारा रिलीज। अमिताभ बच्चन की आवाज, शंकर महादेवन के संगीत से सजा है यह एंथम। अमिताभ बच्चन ने शेयर किया यूपी पुलिस का पहला आधिकारिक एंथम खाकी का सितारा। लिखा, कुछ सितारे आसमान में चमकते हैं तो कुछ खाकी पहनकर जमीन पर। पुलिस के साहस, सेवा, महिला सुरक्षा, आपदा राहत, जनसेवा की दिखाई गई झलक। 6.5 मिनट में पुलिस की पूरी कहानी। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, सुनी लोगों की समस्याएं, दिया जल्द समाधान का आश्वासन। यूपी सरकारी नौकरियों की भर्ती को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। भर्ती प्रक्रिया को अब वार्षिक कैलेंडर के तहत किया जाएगा समयबद्ध। सीएम योगी का आज से 2 दिवसीय दिल्ली दौरा, कल दिल्ली में सीएम योगी इंडिया जापान बिजनेस कॉन्क्लेव में होंगे शामिल। सीएम योगी जापानी प्रतिनिधि मंडल से करेंगे मुलाकात, जापानी कंपनियों को यूपी में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे सीएम योगी। सीएम योगी आदित्यनाथ का युवाओं को संदेश, बोले युवाओं को निगल रहा ड्रग्स और स्मार्टफोन का नशा, दोनों से दूर रहने की अपील। कोटा के 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट दोस्तों की अनोखी सक्सेस स्टोरी, हेल्दी स्नैक स्टार्टअप शुरू करने के लिए छोड़ी मुंबई की नौकरी, आज लंदन दुबई तक फैला है बिजनेस। 2024 में एनीवे के नाम से शुरू किया हेल्दी स्नैक्स का स्टार्टअप, आज 800 से अधिक दुकानों तक पहुंच चुके हैं कंपनी के प्रोडक्ट्स। उत्तरकाशी में स्थित दयारा बुग्याल में दूध मक्खन की अनूठी होली, धूमधाम से मनाया पारंपरिक बटर फेस्टिवल। प्रकृति का आभार जताने के लिए पारंपरिक महोत्सव का हुआ आयोजन, समृद्ध तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर 28 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में होती है दूध मक्खन और मट्ठा की होली। इस दुनिया के अनोखे उत्सव में शामिल होने के लिए जुटते हैं देश विदेश के पर्यटक, सर्दियां शुरू होने से ठीक पहले होता है ये भव्य आयोजन। मेघा जिले की 39 वर्षीय हरप्रीत कौर ने पेश की जीव प्रेम की एक अनोखी मिसाल, अपने घर में रोजाना करीब 500 चिड़िया और अलग अलग पक्षियों को देती है दाना पानी। 13 सालों से हरप्रीत निभा रही हैं ये परंपरा, करीब 500 चिड़ियों की देखभाल कर दे रही हैं प्रकृति का संदेश। केरल से एक पहिए पर साइकिल यात्रा पर निकला युवक, युवाओं में नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाना मकसद। एक पहिए पर साइकिल चलाते हुए 11,000 किलोमीटर की यात्रा पर निकला है ये शख्स, रास्ते में हर इंसान इस अनोखी साइकिल यात्रा को देखकर है हैरान। मेघालय के मुख्यमंत्री संगमा ने पाइन होम इको सस्टेनेबल प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन, पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना है इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य। मेघालय के मावलंग वीर गांव में करीब 6 करोड़ की लागत से बना है ये प्रोजेक्ट, इससे पर्यटन स्थानीय कारीगरों और पर्यावरण अनुकूल वास्तुकला को मिलेगा बढ़ावा। आंध्र प्रदेश के तिरुमला स्थित प्रसिद्ध श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर पहुंचे क्रिकेटर तिलक वर्मा, भगवान वेंकटेश्वर के लिए दर्शन, सुप्रभात सेवा में ले हिस्सा। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में स्थित प्राचीन बाबा बूढ़ा अमरनाथ की 12 दिवसीय वार्षिक यात्रा का आज दूसरा दिन, आस्था की यात्रा में भक्तों का जोश आया। पवित्र यात्रा में नजर आई सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल, मंडी में मुस्लिम समुदाय ने बूढ़ा अमरनाथ यात्रियों के पहले जत्थे का किया जोरदार स्वागत। पुंज में बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही के लिए कई जगह सुरक्षा घेरा, आने जाने वालों पर कड़ी नजर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना किया था पहला जत्था, बाबा चट्टानी के दर्शन करने को लेकर उत्साहित भक्त। 28 अगस्त तक जारी रहेगी आस्था की ये यात्रा, रक्षाबंधन के दिन होगा 12 दिवसीय यात्रा का समापन। अयोध्या के अरुण कुमार सोनी विशाल कावड़ में बाबा भोलेनाथ की प्रतिमा लेकर जा रहे हैं देवघर, चश्मा मुकुट और पगड़ी में सज भोलेनाथ बने आकर्षण का मुख्य केंद्र। अररिया की 29 साल की रानी यादव पहली बार परिवार के साथ कर रही है बाबा धाम की यात्रा, कावड़ियों को दी जा रही है सुविधाओं से खुश दिखी रानी। प्रयागराज की रीनू भारती अपने 2.5 साल के बेटे को बहंगी में बिठाकर जा रही हैं बाबा वैद्यनाथ के दरबार, मन्नत पूरी होने पर बाबा के दरबार में लगाएंगी हाजिरी। हावड़ा के सोमनाथ अपने 7 महीने के बेटे प्रिंस को बहंगी में बिठा के ले जा रहे बाबा धाम, मन्नत पूरी होने पर बाबा को धन्यवाद देने पहुंच रहा है परिवार। सुल्तानगंज से देवघर तक कच्ची कावड़िया पथ पर देशभर से श्रद्धालु बाबा धाम की ओर बढ़ रहे हैं, हर तरफ भक्ति और बोलभम के जयकारे दे रहे हैं सुनाई। औरैया में खास मनोकामना के साथ 4 युवा कर रहे हैं कावड़ यात्रा, सीएम योगी आदित्यनाथ की देश का प्रधानमंत्री बनने की कामना को लेकर 120 किलोमीटर यात्रा पर युवा। मथुरा जिला कारागार में महिला कैदी बना रही हैं इको फ्रेंडली राखियां, 20 महिला बंदियों को सामाजिक संस्था द्वारा दिया जा रहा है परीक्षण। इन इको फ्रेंडली राखी बनाने में फूल और सब्जियों के बीजों का किया जा रहा है इस्तेमाल, रोजाना 200 राखियों का निर्माण कर रही हैं महिला कैदी।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर रात सच्चाई की रात 9 बजे।

0: भाई और बहनों नमस्कार। मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूं वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूं, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूं। इस उम्र में जहां लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूं। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता सबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी गिरी पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असर कारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है, इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर ये सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्थर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में ये है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंध पत्र, ये गंधपुरा पत्र में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है, ये मेजन करी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल, ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। ये है ट्रिक टू, इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। ये है अजवाइन, अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म, यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है, साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा, ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं, फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में
4: विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड साल 2025 का हुआ ऐलान, 17 खिलाड़ियों को मिलेगा अर्जुन पुरस्कार, 3 खिलाड़ियों को मिलेगा द्रोणाचार्य अवार्ड। माउंट डेल्टा 41 पर पहली बार पर्वतारोहण और पैराग्लाइडिंग कर जिम एंड WS ने रचा इतिहास, 13 सदस्यीय टीम ने भारतीय एडवेंचर के इतिहास में हासिल की बड़ी उपलब्धि। पालतू हाथियों के हित में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, केंद्र को राज्यों के साथ मिलकर हाथी क्लिनिक स्थापित करने को कहा, हाथियों का मेडिकल रिकॉर्ड रखना किया अनिवार्य। श्रद्धा और उत्साह के साथ जारी है बूढ़ा अमरनाथ यात्रा, पहले जत्थे के 2000 से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा के दर्शन, 28 अगस्त को संपन्न होगी यात्रा। उत्तरकाशी में अपने आराध्य समेश्वर देवता के साथ खेली गई दूध मक्खन की अनूठी होली, रासो तांदी नृत्य की रंगारंग प्रस्तुति ने माहौल को बनाया भक्तिमय। भारतीय इलेक्शन सिस्टम के मुरीद हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, कहा हमें भारत से सीखना चाहिए, सेव अमेरिका एक्ट पास कराने पर दिया जोर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुन।
3: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा और आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास शो प्रार्थना हो स्वीकार। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सरल और सटीक प्रयोग। 3 पत्तियों में समाई है एक दिव्य अनुभूति जिसके बिना शिव जी की पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती। हम बात कर रहे हैं बेलपत्र की। महादेव को मनाने के लिए और उनसे विशेष कृपा पाने के लिए बेलपत्र का प्रयोग सबसे कारगर उपाय है। तो चलिए जानते हैं बेलपत्र से कैसे प्रसन्न हो जाते हैं देवादिदेव महादेव।
4: बेलपत्र पर सच्चे हृदय से लिख कर नाम

0: चमत्कारी है शिवलिंग की तीन पत्ती। बेलपत्र के अर्पण से मिलेगी कष्टों से मुक्ति। बेलपत्र में समाई है महादेव की शक्ति। बेल का पौधा करता है सकारात्मक ऊर्जा का संचार। तीन पत्तियों से खुल सकता है मोक्ष का द्वार। बेल पत्र को बिल्व पत्र भी कहा जाता है। इसे श्री वृक्ष और शिवद्रुम भी कहते हैं। शिव पुराण कहता है कि भगवान शिव को बेल पत्र अत्यंत प्रिय है।
1: सावन में पौधों का विशेष वर्णन किया गया है और इस मास में हरियाली

0: कृपा प्राप्त हो जाती है।
1: आस्था कहती है कि बेलपत्र के तीनों पत्ते त्रिनेत्र स्वरूप भगवान शिव के तीनों नेत्रों को भाते हैं। मान्यता है कि बेलपत्र के पूजन से सभी पापों का नाश हो जाता है। वो भोले हैं, आदि देव हैं और बस फूल पत्तों से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तभी तो भगवान शिव के पूजन में बेलपत्र का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि शिव की उपासना बिना बेलपत्र के पूरी नहीं होती। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि बेलपत्र के प्रयोग से टल सकती हैं सारी विपत्तियां। कल्याणकारी है बेलपत्र। बिल्व का वृक्ष भगवान शिव का ही स्वरूप है। बिल्व वृक्ष की जड़ में शिवलिंग स्वरूपी भगवान शिव का वास होता है। शिवलिंग पर गंगा जल के साथ साथ बेलपत्र भी चढ़ाने का विधान है। पूजा में इनका प्रयोग करने से वे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। बेल के पेड़ को पानी या गंगा जल से सींचने से समस्त तीर्थों का फल प्राप्त होता है। बिल्व का पेड़ संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। इसकी तीन पत्तियां पवित्र और समृद्धि देने वाली हैं। मान्यता है कि बेलपत्र में माँ लक्ष्मी का भी वास है और घर में बेलपत्र लगाने से महालक्ष्मी की कृपा बरसती है।
0: साक्षात माता पार्वती की कृपा प्राप्त हो जाती है, लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाती है। शिव अति प्रसन्न होते हैं जो व्यक्ति बेल का पौधा भगवान शिव के मंदिर में अपने घर में रख के लगाए, कुछ दिन सेवा करें फिर मंदिर में जाकर लगा दें। ऐसा करने वाले को जीवन में ऐसा कोई सुख नहीं जो कामना रखे और उसको प्राप्त न हो।
1: तो अगर आप भी देवों के देव महादेव की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो बेलपत्र के महत्व को समझना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं कि बेलपत्र क्यों है शिव को इतना प्रिय और क्या है बेलपत्र की महिमा। बेल नामक वृक्ष की पत्तियों को बेलपत्र कहा जाता है। तीन पत्तियां एक ही प्रकार से जुड़ी होती हैं और इनको एक पत्ता माना जाता है। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र के अद्भुत प्रयोग होते हैं। बिना बेलपत्र के शिवजी की पूजा संपूर्ण नहीं हो सकती। बेलपत्र के दैवीय प्रयोग के अलावा औषधीय प्रयोग भी होते हैं। इसके प्रयोग से तमाम बीमारियां गायब की जा सकती हैं।
2: बेल का वृक्ष ज्योतिष के नजरिए से सूर्य का वृक्ष माना जाता है और सूर्य आरोग्यता का कारक होता है। अतः बेल वृक्ष के सभी अंग किसी न किसी रोग को दूर करने के काम आते हैं, जिन्हें योग्य वैद्य के निर्देशानुसार प्रयोग में लाया जा सकता है। वैसे जन सामान्य की जानकारी के लिए बता दूं कि बेल की पत्तियों का रस श्वास संबंधी रोगों में तथा रक्त से संबंधित रोगों में उपयोगी कहा गया है।
1: स्कंद पुराण में बेलपत्र के वृक्ष की उत्पत्ति के संबंध में कहा गया है कि एक बार माँ पार्वती ने अपनी उंगलियों से अपने ललाट पर आया पसीना पोंछकर उसे फेंक दिया। माँ के पसीने की कुछ बूंदे मंदार पर्वत पर गिरी। कहते हैं उसी से बेल वृक्ष उत्पन्न हुआ। कि इस वृक्ष की जड़ों में माँ गिरिजा, तने में माँ माहेश्वरी, बेलपत्र की पत्तियों में माँ पार्वती, इसके फूलों में माँ गौरी और बेलपत्र के फलों में माँ कात्यायनी का वास है।

0: बेलपत्र का केवल दैवीय प्रयोग नहीं है, तमाम औषधियों में भी काम आता है बेलपत्र। इसके प्रयोग से आपकी सेहत से जुड़ी तमाम समस्याएं चुटकियों में हल होती हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि बेलपत्र के औषधीय प्रयोग क्या क्या हैं। बेलपत्र का रस आंख में डालने से आंखों की ज्योति बढ़ती है। बेलपत्र का काढ़ा शहद में मिलाकर पीने से खांसी से राहत मिलती है। सुबह बेलपत्र का रस पीने से पुराना सिरदर्द भी ठीक हो जाता है।
1: बेलपत्र का प्रयोग डायबिटीज जैसे रोगों में भी वैद्यजन करते हैं। पेट के रोग, मुंह के छाले ठीक करने के अलावा

0: सिस्टम को स्ट्रांग यानी मजबूत करने में भी बेलपत्र उपयोगी कहा गया है। विद्वान वैद्य कई रोगों में बेलपत्र का प्रयोग करते हैं।
1: मान्यता है कि भगवान शिव की हर पूजा में बेलपत्र का प्रयोग होता है। जानकारों की माने तो केवल बेलपत्र अर्पित करके भी आप भगवान आशुतोष को प्रसन्न कर सकते हैं। फिर प्रसन्न मुद्रा में प्रभु से मनचाहा वर भी मांग सकते हैं। अगर आपकी जिंदगी विवादों से घिरी रहती हो, विवाह बाधा, कोर्ट कचहरी और मुकदमों का चक्कर परेशान कर रहा हो, तो आगे हम आपको बताएंगे बेलपत्र के प्रयोग से कैसे मिलेगा मनचाहा वरदान। तब तक आप देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
2: त्रिलोकीनाथ त्रिनेत्र धारी को बहुत ही रास आती है बेलपत्र की तीन पत्तियां। अगर आप भी भगवान शंकर की पाना चाहते हैं कृपा, तो इसके लिए सबसे कारगर है बेलपत्र का इस्तेमाल। चाहे संतान की समस्या हो या आप चाहते हो शिव से विवाह का वरदान, शिव शंकर को बेलपत्र अर्पित करने से हर मुश्किल आसान हो जाएगी। तो चलिए आपको बताते हैं बेलपत्र के प्रयोग से कैसे मिल सकता है हर समस्या का समाधान।

0: बेलपत्र बिना अधूरी है शिव आराधना। बेलपत्र से पूरी होगी महादेव की उपासना। शिव को मनाने और उनसे कृपा पाने के लिए सबसे कारगर है बेलपत्र का प्रयोग। मान्यता है कि भगवान शिव की उपासना में जलाभिषेक के साथ ही बेलपत्र और धतूरे का भोग लगाया जाए तो ऐसा करने से महादेव प्रसन्न होते हैं। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि बेलपत्र के प्रयोग से भगवान शिव की असीम कृपा बरसती है और तमाम सांसारिक समस्याएं स्वयं नष्ट होने लगती हैं, क्योंकि महादेव से जुड़ी हर वस्तु पवित्र और चमत्कारी है।
1: त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चत्रियायुधम त्रिजन्म पाप संघारम एक विल्वम शिवार्पणम। शिव जी का त्रिशब्द से, या यूं कहें कि तीन के अंक से गहरा नाता है। जैसे कि शिव जी के नेत्र तीन हैं, इसीलिए हम शिव जी की प्रार्थना के समय त्रिलोचनाय शब्द का प्रयोग करते हैं। शिव जी के पास त्रिशूल है, यानी कि तीन शूलों से बना हुआ शस्त्र या आयुध। शिव जी मस्तक पर त्रिपुंड धारण करते हैं, इसी तरह और इसीलिए ज्यादातर तीन दलों के रूप में मिलने वाला पत्र अर्थात वेलपत्र शिव जी को अत्यंत प्रिय है।
0: जब भी आप महादेव को बेलपत्र अर्पित करें तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि गलत तरीके से अर्पित किया हुआ बेलपत्र शिव अस्वीकार कर सकते हैं। तो गौर से देखिए बेलपत्र से जुड़ी इन सावधानियों के बारे में। एक बेलपत्र में तीन पत्तियां होनी चाहिए। पत्तियां टूटी ना हो और उनमें छेद भी ना हो। बेलपत्र जब भी शिवजी को अर्पित करें चिकनी तरफ से ही चढ़ाएं। एक ही बेलपत्र को जल से धोकर बार बार भी चढ़ा सकते हैं। बिना जल के बेलपत्र अर्पित ना करें। जब भी बेलपत्र अर्पित करें साथ में जल की धारा जरूर चढ़ाएं।
1: बेलपत्र को सोमवार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। इसके अलावा चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, साथ ही साथ संक्रांति वाले दिन भी बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। यदि इन दिनों में बेलपत्र का प्रयोग करना हो तो एक दो दिन या और पहले ही तोड़कर रख लेना चाहिए। पूजा में प्रयोग करने के लिए तीन दल वाले पत्ते ही चाहिए, दो दल वाले नहीं। बेलपत्र कटे फटे या छिद्र वाले नहीं होने चाहिए। बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखना है कि चिकने वाले हिस्से की तरफ से ही पत्र को चढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ बेलपत्र अर्पित करते समय जल भी चढ़ाना चाहिए।
0: ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि बेलपत्र से शिव की उपासना करने वाले को शीघ्र ही मिल जाती है महादेव की कृपा। माना जाता है कि महादेव के संग माँ गौरी का ध्यान करने से विशेष कामनाओं की पूर्ति भी की जा सकती है। अगर आपके विवाह में कोई व्यवधान आ रहा हो तो कैसे बेलपत्र से जुड़ा ये महाप्रयोग आपके जीवन में जीवन साथी का साथ जोड़ सकता है, गौर से देखिए। अगर विवाह में विलम्ब हो 108 बेलपत्र लें। हर बेलपत्र पर चंदन से राम लिखें। ओम नमः शिवाय कहते हुए बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं। जब 108 बेलपत्र चढ़ाएं तो शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। तो देखा आपने कितनी अद्भुत है ये तीन पत्तियां। शिवजी का प्रिय बेलपत्र गंभीर बीमारियों से भी छुटकारा दिला सकता है। तो अगर आप लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान हैं, तो ज्योतिष के विशेषज्ञों द्वारा बताए बेलपत्र के प्रयोग आपके लिए लाभकारी बन सकते हैं। 108 बेलपत्र लें। एक पात्र में चंदन का इत्र लें। एक एक बेलपत्र चंदन में डुबाते जाएं और शिवलिंग पर अर्पित करें। हर बेलपत्र के साथ ओम हौम जूम स कहें। शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करें। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि बेलपत्र के पेड़ की टहनी से चुन चुन कर सिर्फ बेलपत्र ही तोड़ना चाहिए, कभी भी पूरी टहनी ना तोड़े। यही नहीं, अगर आपके जीवन में अब तक संतान का सुख नहीं है तो बेलपत्र के प्रयोग से पूरी हो सकती है आपके जीवन की ये कमी। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि जो लोग संतान की ख्वाहिश में दर दर भटक रहे हैं उनके लिए बहुत कारगर और चमत्कारी है बेलपत्र का ये खास प्रयोग। अगर संतान ना हो रही हो उतने बेलपत्र लें जितनी आपकी उम्र है। एक पात्र में दूध लें, एक एक बेलपत्र दूध में डुबाते जाएं और शिवलिंग पर अर्पित करें। हर बेलपत्र के साथ ओम नमो भगवते महादेवाय कहें, संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। बेलपत्र की तीन पत्तियों में शिवजी की विशेष कृपा रहती है। बेलपत्र की तीनों पत्तियों को शिवजी के त्रिनेत्रों का प्रतीक भी कहा जाता है। तो अगर आप परेशान हैं, तो बेलपत्र के ये प्रयोग आपके लिए समाधान बन सकते हैं। लेकिन बेलपत्र को तोड़ने का एक खास मंत्र भी है, आगे हम आपको बताएंगे।
2: बेलपत्र का न सिर्फ धार्मिक महत्व है बल्कि इसका औषधीय महत्व भी है। ये कई बीमारियों से हमें बचा सकती है। पेट से जुड़ी समस्याओं में तो सिर्फ इसके प्रयोग रामबाण माने गए हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं बेलपत्र को तोड़ने का क्या है मंत्र और इसके प्रयोग से जुड़ी विशेष सावधानियां क्या हैं।

0: भोलेनाथ का जब भी होता है सत्कार, बेलपत्र और धतूरे से होता है श्रृंगार। भगवान शिव की हर पूजा अर्चना में बेलपत्र का उपयोग होता है। बेलपत्र का महत्व शिवमय है। माना जाता है बिल्व वृक्ष की जड़ में शिवलिंग स्वरूपी भगवान शिव का वास होता है, इसलिए बेलपत्र तोड़ने में मंत्रों का उपयोग जरूर करना चाहिए।
1: बेलपत्र तोड़ने का मंत्र है अमृतोद्भव श्री वृक्ष महादेव प्रियः सदा गृह्यामि तव पत्राणि शिव पूजार्थम आदरात्। अर्थात हे अमृत से उत्पन्न सौंदर्य तथा ऐश्वर्यपूर्ण महादेव को हमेशा प्रिय वृक्ष, भगवान शिव की पूजा के लिए मैं आपके पत्ते तोड़ रहा हूं। ऐसा कहते या जपते हुए बेल पत्र तोड़ने का विधान है।
0: अमृतो भवा श्री वृक्ष महादेव प्रिय सदा गृह्यामि तव पत्राणि शिव पूजार्थ मातरात्। अमृत से उत्पन्न सौंदर्य और ऐश्वर्यपूर्ण वृक्ष महादेव को हमेशा प्रिय है। भगवान शिव की पूजा के लिए है वृक्ष, मैं तुम्हारे पत्र तोड़ता हूँ। हम आज अपनी खास पेशकश में आपको बेलपत्र की महिमा बता रहे हैं। ये तो आपने जान लिया कि आदि देव को परम प्रिय है बेलपत्र, इसलिए इसे तोड़ने में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। बेलपत्र को कभी भी टहनियों के साथ नहीं तोड़ें। बेलपत्र के एक एक त्रिदल को तोड़ना चाहिए। सावधानी रखें कि वृक्ष को कोई क्षति ना हो। बेलपत्र तोड़ने से पहले और बाद में वृक्ष को प्रणाम करें। सोमवार और विशेष पर्वों पर बेलपत्र ना तोड़ें। तो देखा आपने बेलपत्र के प्रयोग में आपकी हर समस्या का समाधान छिपा है। ये उपाय आपको शिव की विशेष कृपा का भागी बना सकता है। तो ये उपाय कीजिए और शिव का नाम जपते रहिए।
2: और इसी के साथ प्रार्थना और स्वीकार में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों को देखने के लिए बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
1: सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति, हरियाली और उत्सवों का पवित्र और प्रिय महीना माना जाता है। इस महीने में विशेषकर कावड़ यात्रा की भव्य छटा देखने को मिलती है। और देखिए, इस बार भी बिहार के मुंगेर में कावड़ मार्ग पर कई भव्य रंग देखने को मिल रहे हैं।

0: सावन के महीने में कावड़ पथ की रौनक देखते ही बनती है। बिहार के मुंगेर में हर दिन असरगंज कच्ची कावड़िया पथ पर आस्था और उत्साह का संगम दिखता है। बम बम भोले और हर हर महादेव का जय घोष करते हुए बड़ी संख्या में शिव भक्त अनोखी छटा बिखेरते हुए बैद्यनाथ धाम की ओर बढ़ते दिखते हैं। ये दृश्य हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब इस तस्वीर को ही देखिए, इसमें भक्त अपने आराध्य को कंधे पर विराजमान कर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। भोलेनाथ अपने भक्तों के भाव देखते हैं, उनके प्रति अपने अगाध आस्था को प्रदर्शित करने के लिए भक्त बाबा को चश्मा मुकुट सबसे पूरी तरह सजाकर दिव्य रूप में अपने साथ ले जा रहे हैं। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से आया कांवड़ियों का ये दल सुल्तानगंज से जल भरने के बाद झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर जल अर्पित करने बढ़ता चला जा रहा है।
1: हम लोग अयोध्या से चलकर यहाँ सुल्तानगंज आए और बाबा भोलेनाथ के दरबार में जा रहे हैं। बाबा का ये जो रूप है बहुत ही निराला हम लोगों को लगा, इसीलिए बाबा को इस गेटअप में हम लोगों ने तैयार किया है। चश्मा लगा के हम लोग ले चल रहे हैं, खुद चश्मा लगाते हैं और बाबा को भी चश्मा लगा के लेके चल रहे हैं।
0: आस्था की इसी यात्रा में कोई कंधे पे कांवड़ उठा रहा है तो कोई अपने बच्चों को बंगी में लेकर बाबा के दरबार की ओर बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल निवासी शिव भक्त अपने 7 महीने के बेटे को बांगी में बैठाकर बाबा की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, तो प्रयागराज निवासी शिव भक्त अपनी 2.5 साल की बिटिया को गमछे से बनी बांगी में लेकर जा रहे हैं। सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर लगभग 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके भक्त देवघर पहुंचते हैं और भगवान भोले शंकर को जल अर्पित करते हैं। इस दौरान कांवड़ मार्ग में शिव भक्तों के लिए की गई व्यवस्थाएं उनकी राह आसान कर देती है।
2: बहुत अच्छा है, लाइट है और निःशुल्क जल सेवा भी है, शौचालय सुलभ शौचालय, मेडिसिन वगैरह भी मिल रही है और क्या ही चाहिए, ये तो काफी है।
0: बैद्यनाथ धाम की महिमा अपरंपार मानी जाती है। यहाँ सावन के पूरे महीने कांवड़ियों की भीड़ रहती है, विशेषकर सोमवार को बाबा पर जल अर्पित करने के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ता है।
3: जो 12 ज्योतिर्लिंग में द्वादश ज्योतिर्लिंग में एक हमारे ऐसे ये पांचवा है और यहाँ पे शिव और शक्ति शक्ति के ऊपर साथ में विराजमान है शिव। एक ऐसा शिव है जहाँ पे सिंदूर भी चढ़ता है, चूंकि शक्ति होने के कारण ये परंपरा बनी हुई है। और यहाँ पे एक चीज खास ये है, और जगह में सब आप त्रिशूल देखेंगे लेकिन यहाँ बाबा बैद्यनाथ के ऊपर पंचशूल देखेंगे, इनका एक अलग ही महत्व रहा है और हम लोग अपने जीवन में उसको बहुत हमें देखने को मिला है कि इनकी कृपा सब पर बनी रहती है और आगे भी बनी रहे हर हर महादेव।
0: बैद्यनाथ धाम में सावन ही नहीं बल्कि भादो के महीने में भी कांवड़ियों और शिव भक्तों का तांता लगा रहता है। सावन जहां मुख्य कांवड़ मेला मास माना जाता है, वहीं भादो मास में भी श्रद्धालु और डाक कांवड़िए बाबा का जलाभिषेक करने के लिए पहुँचते हैं। मुंगेर से गोविंद कुमार और देवघर से शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: अब आगे बढ़ते बात करते हैं जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले की, जहां पर आस्था की दिव्य यात्रा जारी है। देखिए, बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था जम्मू से पुंछ पहुंच चुका है। इस जत्थे में शामिल भक्त प्राचीन बाबा बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में बाबा चट्टानी के दर्शन का सौभाग्य मिलने को लेकर बहुत उत्साहित दिख रहे हैं।
0: आस्था की यात्रा की ये दिव्य रंग है। जम्मू से चलकर जब बूढ़ा अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था पुंछ पहुंचा तो भक्तों का जोश देखते ही बन रहा था। भक्ति भाव से झूमते हुए वो अपनी खुशी जता रहे थे। सोमवार 17 अगस्त की सुबह उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जब यात्रा को हरी झंडी दिखाई, उसके बाद जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से जब पहला जत्था पुंछ के लिए रवाना हुआ तो उस वक्त भी शिव भक्त अपने पूरे रंग में नजर आए। हर हर महादेव का जय घोष करते हुए जब जत्था रवाना हुआ तो बस में भी वो झूमते गाते दिखे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच से गुजरते हुए जम्मू से रवाना हुआ बूढ़ा अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था पुंछ पहुंचा। बूढ़ा अमरनाथ प्राचीन मंदिर से पहले कॉलेज ग्राउंड में पहुंचने पर जत्थे में शामिल यात्रियों का जिला प्रशासन के साथ ही यहाँ के लोगों ने भव्य स्वागत किया। पुंछ का ये कॉलेज ग्राउंड बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए मेन बेस कैंप है, जहां यात्रियों के ठहरने, खाने से लेकर सभी तक की सुविधाओं के साथ ही सुरक्षा की भी कड़ी व्यवस्था की गई है। पहले जत्थे में शामिल 2041 यात्री यहां पहुंचकर बाबा चट्टानी के दर्शन करने को लेकर बहुत ही उत्साहित दिखे।
2: बूढ़ा अमरनाथ के यात्रा के बारे में सुना था, हमारे दादा दादी ने हमें प्रायोजित किया कि तुम यहां पे जाके आओ, बहुत ही अच्छा लगेगा। सो हमने ट्राई किया एंड मैं मन से ये कहना चाहती हूँ कि मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है।
0: बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुँच रहे हैं। 12 दिनों की इस यात्रा में अलग अलग जत्थों में यात्री रवाना किए जाएंगे। पहले जत्थे के पुंज पहुंचने के दौरान यात्रा मार्ग में जगह जगह चाक चौबंद सुरक्षा नजर आई। पुंज पहुंचने के बाद श्रद्धालु प्राचीन बूढ़ा अमरनाथ मंदिर के पास पहले पुलसत्य नदी में पवित्र डुबकी लगाते हैं। इसके बाद मंदिर पहुंचकर दर्शन करते हैं। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा सांप्रदायिक सौहार्द का अनूठा प्रतीक है। इस मुस्लिम बहुल इलाके में स्थित प्राचीन मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था में मुस्लिम समुदाय के लोगों की भूमिका अहम रहती है। सावन पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन यहाँ मेला लगता है और उसी के साथ इस वर्ष 28 अगस्त को 12 दिवसीय ये बूढ़ा अमरनाथ यात्रा संपन्न हो जाएगी। जम्मू से राय कपूर और पुंछ से मंजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: क्या है शिवलिंग की महिमा? क्या शिवलिंग घर में स्थापित कर सकते हैं? शिवलिंग का क्या होगा पूजा विधान और क्या होंगी सावधानियां, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे,
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
15: HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
7: नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 का ऐलान, 17 खिलाड़ियों को मिलेगा अर्जुन पुरस्कार, 3 खिलाड़ियों को मिलेगा 2000 अवार्ड। श्रीलंका के खिलाफ गोल टेस्ट में ऋषभ पंत ने रचा इतिहास, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेजी से 100 छक्के जड़ने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने, टेस्ट डेब्यू के 8 साल बाद हासिल की उपलब्धि। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां तेज, प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर बैठक की, 4 सितंबर को होगा भव्य आयोजन। पालतू हाथियों के हित में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, केंद्र को राज्यों के साथ मिलकर हाथी क्लिनिक स्थापित करने को कहा, हाथियों का मेडिकल रिकॉर्ड रखना अनिवार्य। ऋषिकेश में बड़ा गंगा का जलस्तर, प्रशासन ने आसपास के लोगों को अलर्ट किया, घाटों तक पहुंचा पानी, हालात पर प्रशासन की पहली नजर। भारतीय इलेक्शन सिस्टम के मुरीद हुए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, कहा हमें भारत से सीखना चाहिए, सेव अमेरिका एक्ट पास कराने पर दिया जोर।

क्या अल नीनो डालेगा दुनिया की थाली पर डाका, आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत संधावा। इसी पर आज आगे बात होगी। मॉनसूनी सीजन है, लेकिन ये मॉनसून इन दिनों मौन नजर आ रहा है और ये अल नीनो की वजह से हो रहा है। इसी साल अल नीनो को लेकर दो बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। तो क्या अल नीनो के चक्रव्यूह में फंसा है मॉनसून? दुनिया के मौसम पर क्या है बड़ी चेतावनी? क्यों लगातार चढ़ रहा है समंदर का पारा? क्यों धधक रही है प्रशांत महासागर की लहरें? मॉनसून कहां अटका है, कहां भटका है पूरब का गर्म समंदर? क्या सर्दी भी करेगा सुस्त ग्लोबल फूड सप्लाई पर? अमेरिका से चेतावनी क्या आई है? ऐसे तमाम सवालों का जवाब आज मौसम वैज्ञानिक और पर्यावरण विशेषज्ञों से जानने की कोशिश करेंगे।

0: तो क्या एल नीनो डालेगा दुनिया की थाली पर असर, चर्चा आगे करेंगे। लेकिन इसको लेकर बात क्यों हो रही है, पहले उसे समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल देश के कई हिस्सों में कम बारिश हुई है और इसकी वजह सीधे तौर पर एल नीनो को माना जा रहा है। देश में अब तक अगर देखा जाए तो सामान्य से करीब 12% कम बारिश दर्ज की गई है। और इसी बीच मौसम अनुमान से जुड़ी निजी एजेंसी स्काईमेट ने भी मॉनसून पर अपना अनुमान घटा दिया है। उसने बारिश का औसत अनुमान यानी कि लॉन्ग पीरियड एवरेज, जिसको हम एलपीए भी कहते हैं, घटाकर 85% कर दिया। वहीं अप्रैल में जो अनुमान जताया गया था वो था 94%। मौसम विभाग ने पहले ही 10% कम बारिश का अनुमान जताया ही था। अब स्काईमेट ने भी कह दिया है कि एल नीनो की वजह से मॉनसून पर असर पड़ा है। वहीं जेपी मॉर्गन की भी एक रिपोर्ट आई है जो वाकई चौंकाने वाली है। अब उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अगले साल खाद्य संकट को लेकर अलर्ट है और इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2027 यानी कि अगला साल ग्लोबल फूड क्राइसिस का साया उस पर मंडरा रहा है। फूड सप्लाई चेन पर असर पड़ने की संभावना है, तो ऐसे में दुनिया भर में खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ सकते हैं। अगले बरस तक एल नीनो का साया रहेगा, भारत समेत दुनिया भर पर इसका असर नजर आएगा जो अब तक इतिहास में नहीं हुआ। तो अब एल नीनो की वजह से ये सब कुछ देखने को मिलेगा। आशंकाएं ऐसी ही जताई जा रही हैं और इन रिपोर्ट्स में आशंकाएं जताई गई हैं। और इस बीच नागपुर और महाराष्ट्र में इन दिनों कम बारिश हो रही है, आगे भी कम बारिश होने की ही संभावना है। तापमान में अब वृद्धि हो सकती है।
1: जो हम देख रहे हैं कि विदर्भ के अधिकांश भागों में जो बारिश है उसमें काफी कमी देखने को मिल रही है और ये जो प्रवृत्ति अगले आने वाले 3-5 डेज तक बनी रहेगी, क्योंकि अभी ऐसी कोई भी सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम्स नहीं है क्षेत्र के आसपास जिससे विदर्भ को एक अच्छी बारिश मिलने की संभावना नहीं बन पा रही है। अभी मुख्य तौर पे जो गंगेटिक वेस्ट बंगाल और एडजॉइनिंग एरिया में जो एक सिस्टम बने उसका जो मुख्य तौर पे जो प्रभाव बना रहेगा वो ईस्टर्न इंडिया के ऊपर बना रहेगा। खासतौर पे झारखंड की बात करें, गंगेटिक वेस्ट बंगाल की बात करें या नॉर्थ उत्तर प्रदेश या फिर ईस्ट मध्य प्रदेश का जो रीजन है वहाँ पे एक अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। लेकिन मुख्य तौर पे जो विदर्भ का जो क्षेत्र है वहाँ पे जो बारिश रहेगी अगले आने वाले 4-5 दिन वो काफी सामान्य से कम बनी रहेगी और उसकी जो इंटेंसिटी रहेगी वो भी काफी कम रहेगी, हल्की से मध्यम बारिश ही होने की संभावना बन रही है। और हम पुनः देखेंगे 20 तारीख के आसपास तापमान में थोड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। अधिकतम तापमान में दिन के तापमान में जो है 3-4 डिग्री तक की इजाफा देखने को मिलेगी और नागपुर का खासतौर पर तापमान देखेंगे कि अगले आने वाले 20 तारीख के आसपास से 30-32 के आसपास पहुंच सकता है। और फिर से हम देखेंगे जो बादल अभी जो देख पा रहे हैं अभी आसमान में उसमें भी जो है धीरे धीरे हटने शुरू हो जाएंगे और जो है धूप की इंटेंसिटी बढ़ने की संभावना बन रही है।
0: तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर एल नीनो क्या है। दरअसल एल नीनो प्रशांत महासागर में एक जटिल जलवायु घटना है और इसकी वजह यह है कि जब समंदर की सतह पर पानी सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है तब ये हालात बनते हैं। हर 2-7 साल में ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं जिसका असर 9-12 महीने तक रहता है और यही एल नीनो अब दुनिया भर में जी का जंजाल बन चुका है, जिसके उम्मीद जताई जा रही है कि अगले साल तक रहने का अनुमान है। और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, डॉक्टर गुफरान बेग हमारे साथ क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर गुरुदत्त मिश्रा वेदर एक्सपर्ट हैं हमारे साथ, डॉक्टर सुशील द्विवेदी साइंस एंड कम्युनिकेटर एंड एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं हमारे साथ, प्रोफेसर धीरेश कुलश्रेष्ठ इकोनॉमिस्ट मौजूद हैं, क्योंकि जो रिपोर्ट आई है कि खाद्य संकट हो सकता है। धीरेश जी आज इसी पर आपसे चर्चा करेंगे लेकिन शुरुआत डॉक्टर गुफरान आप ही से करेंगे। सबसे पहले जो रिपोर्ट आई है, हालांकि ये अनुमान कई बार चर्चा हुई है अप्रैल से हम और आप कर ही रहे हैं चर्चा, मौसम विभाग ने पहले ही कहा था कि 10% कम बारिश हो सकती है, लेकिन अभी की स्थिति को देखते हुए क्या अनुमान लगाया जा रहा है?
2: देखिए ये जो चल रहा था एनसो का, हम लोग ये दो चीजें हैं इसके अंदर। पहले जैसा आपने बताया कि 12-15 महीने तक इसका रहता है, तो पहले ये काफी देर से फ्रीक्वेंसी की बहुत कम थी आते थे। अब पिछले 5-6 साल से बैक टू बैक एल नीनो लानीना आ रहा है। ये तो एक नई चीज हुई है जो कि जिसको कि क्लाइमेट चेंज को चलते उसके जिसका रीजन दिया जाता है। दूसरी चीज ये हो रही है कि जो एल नीनो अभी तक हुआ करते थे वो सामान्य हुआ करते थे। सामान्य का मतलब ये है कि 0.5 डिग्री लेस देन 1 डिग्री प्रशांत महासागर जो है गर्म होता था और उसके बाद में धीरे धीरे ठंडा होता था, न्यूट्रल कंडीशन हो जाती थी, न्यूट्रल रहती थी 3-4 साल तक, फिर लानीना आ जाता था। इस टाइप की चीजें होती थी। दो चीजें पढ़ी हैं, वो क्या है कि पहली चीज ये है कि इस बार इसका नाम आपने सुना होगा कि सुपर एलिनो बोल रहे हैं इस बार। सुपर एलिनो क्या है कि इस सेंचुरी में मेरे ख्याल से ये पहला ऐसा एलिनो है जिसके अंदर के प्रशांत महासागर में जो गर्म होने की जो उसकी इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है। अभी ही वो 2 डिग्री के आसपास पहुंच गया है, जो बहुत बड़ी चीज होती है। 0.5, 0.7, लेस देन 1 डिग्री रहता है, नंबर वन। नंबर टू, जैसा आपने बोला कि 8 से 12 महीने तक नॉर्मली रहता है, लेकिन ये पिछले 6 महीने से हम सुन रहे हैं मानसून का इसका असर हो गया है, और आने वाले 2027 में जो मई जून तक इसका प्रकोप रहेगा, अगर ये और एक्सटेंड हो गया जिसकी अनिश्चितता बनी हुई है, तो हमारे आने वाले मानसून को भी प्रभावित कर सकता है, क्योंकि हमारा मानसून जो है जून जुलाई के अंदर आ जाता है 2027 को। तो यही मानसून के अंदर नहीं कि वो प्रॉब्लम कर रहा है, बल्कि आने वाले मानसून के ऊपर भी एक हल्का सा खतरा मंडरा रहा है।
0: अच्छा, इसमें एक चीज और मैं ऐड ऑन कर दूं, वो भी समझाते चलिए। आपने
2: जी
0: कहा आने वाला मॉनसून जो हम अगले साल का प्रेडिक्शन कर रहे हैं, लेकिन सर आने वाले सीजन्स पर भी तो असर इसका हो सकता है अगर ऐसा कंटिन्यू, और उम्मीद यही जताई जा रही कि 27 तक रहने वाला है सर।
2: जी तो वो तो मैंने बता दिया, एक एक्सट्रीम मानसून की बात हो रही थी, इसके लिए मैंने मानसून का बताया।
0: जी जी
2: लेकिन इसके पीछे दो ऋतुएं और हैं हमारी, जो कि सर्दी आएगी और उसके बाद में गर्मी आएगी। सबसे बड़ा जो खतरा जो हो रहा है वो यही है कि जो अभी एलनीनो और लानीना जो भी हो रहा है वो बहुत अनिश्चितता की स्थिति पैदा करता है, यानी कि एक्सट्रीम इवेंट्स लाता है। पहले ये एक्सट्रीम इवेंट्स नहीं हुआ करते थे, जो भी आता था, अगर ड्राउट होना है तो ड्राउट होता था, यानी कि पूरी तरह से बारिश का मामला कम होता था, या सर बारिश ज्यादा हो जाती थी लानीना के अंदर। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि एक जगह पे भारत के एक नक्शे के ऊपर बाढ़ आ गई, दूसरे नक्शे के ऊपर देखा तो सूखा पड़ा हुआ है। अगर आपने एवरेज ले लिया तो आपको लगेगा हाँ भाई मानसून बहुत नॉर्मल है, जो कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कुछ सालों तक अभी तक देता रहता था कि भाई 92 और 94 जो आप बता रही हैं, हो सकता है कि सितंबर के खत्म होते होते वो बिल्कुल नॉर्मल मानसून लगे आपको। लेकिन जो असर छोड़ा है इसने वो ये है कि एक जगह ड्राउट हो गया है, एक जगह बाढ़ आ गई है, दोनों खतरनाक हैं, दोनों एक्सट्रीम हैं, और आपको लग रहा है कि मानसून नॉर्मल है।
0: बिल्कुल
2: तो ये जो बीच में आने, तो ये तो मानसून की बात हुई, लेकिन अगर गर्मी और सर्दी की बात हुई तो वहां पे वही प्रॉब्लम आएगी कि ज्यादातर जहां पे सर्दी पड़ती थी, यानी दिल्ली और उसके आसपास के जो एरिया है जिसको आप आईजीपी रीजन या एंडोगंज गांगी क्षेत्र बोलते हैं, वहां पर आने वाले समय में सर्दी बहुत ज्यादा होगी, कोहरा ज्यादा होगा और फॉग ज्यादा होगा, तो पोल्यूशन भी ज्यादा होगा। तो यानी कि सब एक हिसाब से सब जो खराब चीजें हैं
0: बिल्कुल, उसके
2: वो
0: लिए
2: इकट्ठी हो गई।
0: रेडी रहना चाहिए। बिल्कुल, डॉक्टर गुरुदत्त मिश्रा वेदर एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। डॉक्टर गुरुदत्त, एक बार जरा समझाते चलिए, अभी तक कितनी बारिश हुई है, आगे अनुमान क्या लगाया जा रहा है, क्योंकि मौसम विभाग ये भी कह रहा है कि 20 तारीख के बाद वापस से गर्मी बढ़नी शुरू हो जाएगी, यानी कि तापमान बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसका अर्थ क्या निकाला जाए? क्या मॉनसून पूरी तरह से खत्म हो गया या फिर इस पे ब्रेक लगेगा? ये पूरे देश का अगर हम हाल बताएं, राज्य दर राज्य, या फिर हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ भी बता बता दीजिए।
3: देखिए, पहली मैं बता दूं कि जो ये लीनो का प्रभाव है अभी शुरू हुआ है वहां प्रशांत महासागर में करीब 15 अगस्त से, तो हमारे यहाँ 45 दिन लगता है अलिनो का प्रभाव पहुंचने में। तो जब पहुंचेगा हमें तो लगभग मानसून हमारे यहाँ समाप्ति की ओर होगी। दूसरी बात ये करूँ कि जो लगातार बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बन रहे हैं, अभी बने हैं, अभी भी बना हुआ है, ये हमको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, इसमें अभी करीब 23 तारीख तक हमको रेन मिलेगी। अब मैं मध्य प्रदेश की अगर बात करूं तो यहाँ 900 मिलीमीटर रेन हुआ, जगह स्थिति बहुत खराब है। पश्चिम यूपी बहुत अच्छी स्थिति है, -17% यूपी चल रहा है, मध्य प्रदेश -12% है। तो जो मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि हम 92-94% ±4% रेन बाद आएगा। रबी की फसल होती है खासकर इंडिया में, जो अगली रबी की फसल के लिए पानी नहीं मिलेगा, बिजली कहाँ से लाएंगे आप, क्योंकि ओवरऑल हमारे जो डैम वगैरह है उतने नहीं भर पाए। जैसे कल बरगी डैम है जबलपुर में, उसके बांध के गेट खोले गए, तो हर स्थिति पूरी इंडिया में समान वितरण नहीं, असमान वितरण से अलिनो के प्रभाव तो है, लेकिन जो अलिनो हमारा प्रभाव करेगा 1 अक्टूबर के बाद करेगा। ठंड भी मेरे को लगता है कम होगी और ये जनवरी फरवरी तक जाएगा। अब ठंड कम होगी, बिजली की चूंकि उत्पादन में पानी की जरूरत पड़ेगी, तो कहाँ बहुत बड़ा है, फसल संकट भी हो सकता है। चूंकि हमारे यहाँ गेहूं का उत्पादन होता है रबी में, तो गेहूं वगैरह की स्थिति भी गड़बड़ हो सकती है। ये किसी तरह से खरीफ की फसल तो हम निकाल ले जाएंगे। और दूसरी बात, हमारे देश में भरपूर खाद्यान्न है, तो खाद्यान्न की समस्या तो नहीं आएगी, लेकिन बिजली तेल महंगे होंगे, बहुत सारी चीजें होंगे। अब जो जेपी मॉर्गन की आप बात कर रहे हैं, तो इसकी चिंता से हम इनकार तो नहीं कर सकते, लेकिन इसे अभी निश्चित तौर पर यह नहीं कह सकते कि वैश्विक खाद्य संकट होगा, जलवायु होगी, फसल उत्पादन, व्यापार नीति, युद्ध, उर्वरक की कीमत और मौसम सभी खाद्य महंगाई आदि को तय करेंगे कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन एक समाधान भी है, कि समाधान ऐसा है कि जल संरक्षण है, मौसम आधारित कृषि,
0: पर आगे सर चर्चा करेंगे, बिल्कुल समाधान की भी बात आगे करेंगे। डॉक्टर सुशील द्विवेदी को इंक्लूड कर लेती हूँ। डॉक्टर साहब, चिंता तो है वाकई, फूड सप्लाई चेन पर कहा जा रहा है कि असर पड़ेगा, और ऐसी तमाम रिपोर्ट, अब जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट की बात करूं तो अगले साल खाद्य संकट हो सकता है, जिसको लेकर डिटेल में मैं प्रोफेसर धीरेश से जानूंगी। लेकिन उससे पहले डॉक्टर द्विवेदी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, अब देखिए बहुत सारे ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर बेतहाशा बारिश हुई है, और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर बारिश कम हुई है। अब अनुमान ये भी जताया जा रहा है कि आने वाले समय में और कम हो सकती है, अनुमानित जो पहले ही मौसम विभाग ने कहा था कि 10% कम बारिश होगी। सर, ऐसे जितने भी इलाके हैं खास तौर पर, इसका असर सीधे तौर पर फसलों पर कितना पड़ेगा डॉक्टर द्विवेदी?
4: बिल्कुल, ये एक दुखद पहलू है जो कि जलवायु परिवर्तन हम और आप लोग पूरी दुनिया में देख रहे हैं। उसका सबसे दुखद पहलू यही है कि एक समय पर दुनिया के किसी हिस्से में, या भारत की ही बात करें तो किसी एक हिस्से में बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिलेगी, ठीक उसी समय दूसरे हिस्से में आपको सूखा देखने को मिलेगा। तो आमतौर पर ऐसा पहले नहीं होता था, जो हम और आप लोग देखते थे बरसात के समय कि जिसे हम चौमासा कहते थे, अर्थात 4 महीने लगातार बारिश होती थी। लेकिन आज स्थिति ये है कि भारत के कई हिस्सों में बारिश अभी भी तरसा रही है, और दूसरे हिस्सों में जहां बारिश कम होती थी वहां हम लोग बेतहाशा बारिश, मतलब थोड़े से समय में बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेसिपिटेशन देख रहे हैं। तो इसकी वजह से निश्चित ही हमारी आपकी सीधे सीधे जो पारिस्थितिक तंत्र है या इकोलॉजिकल सिस्टम है, ये सीधे सीधे प्रभावित होगा। मेरे आपकी भविष्य में थाली में भोजन कम आने की संभावना है। जब थाली में भोजन कम आएगा तो सीधी सी बात है कि भारत एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, तो भारत की अपनी अर्थव्यवस्था भी कहीं ना कहीं से बिगड़ेगी। हम लोग अपने देश को 2047 में एक विकसित देश का सपना लेके चल रहे हैं, तो हमारा एक सपना है कि 2047 में हम लोग एक विकसित इकोनॉमी के रूप में दुनिया के सामने आए। तो जब ये जो जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल थपेड़े हैं, जिसमें कि हम और आप लोग एल निनो और ला निनो में हम कहीं ना कहीं से जलवायु परिवर्तन की वजह से कुछ ना कुछ हद तक इंटेंसिटी को ज्यादा देखते हुए जा रहे हैं, तो निश्चित ही आने वाले समय में हमारे ऐसे सपने पूरा करने में हमें निश्चित ही दुखद स्थिति प्राप्त होगी। साथ ही भारत को अन्न का कटोरा कहा जाता था है, हम लोग गेहूं और चावल, इसके अलावा हम लोग दालों को भी अलग अलग हिस्सों में काफी मात्रा में उसको प्रोड्यूस करते हैं, यील्ड करते हैं और उसको दुनिया के कई हिस्सों में देते हैं। तो विशेषकर गेहूं की बात को लेके, तो जब हमारे देश में एक तरफ जनसंख्या तो बढ़ ही रही है दुनिया की और हमारे देश में भी, और अगर हम इतना प्रोडक्शन कर पाने में ना ही सफल हुए तो भविष्य में निश्चित ही एक समय आएगा कि हमें आपको फिर वैकल्पिक फसलों की तरफ देखना पड़ेगा, या हमें ऐसे अनाज अपनाने पड़ेंगे जिन्हें हम कोर्स ग्रेन या मिलेट्स या मोटे अनाज कहते हैं, जो कम बारिश में उगते हैं। मतलब मैं कह सकता हूं कि हमें धीरे धीरे अब अपनी जो हमारी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है, हमारे कुकर्म है जिसके द्वारा हमने जल जंगल जमीन को तबाह किया, तो अब हमें इन सब के लिए तैयार होना पड़ेगा कि वेदर विपर्यास या फिर एक न्यू नॉर्मल जो क्रिएट हो रहे हैं, तो अब हमें उसी के साथ आगे बढ़ते हुए कुछ बदलाव करने पड़ेंगे फसलों के बारे में भी, अपनी अपनी जीवनचर्या के बारे में भी, तभी हम एक अच्छे
0: निर्माताओं को उस हिसाब से पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब मैं आती हूं प्रोफेसर धीरेश आपके पास। मौसम में जो भारी बदलाव हुआ है, अलनीनो का जो सबसे ज्यादा असर है, सर भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये तमाम ऐसे देश हैं जहां पर असर हुआ है। वैश्विक तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है, हम सब इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। सीधे तौर पर असर सर फसलों पर होगा, फसलों पर असर होगा तो खाद्य संकट आएगा तो सीधे तौर पर महंगाई बढ़ेगी, यानी हर जगह पर। और जो जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है वो पहले से ही अलार्मिंग रिपोर्ट है, जिसमें 2027 में खाद्य संकट हो सकता है, सप्लाई चेन पर असर रहेगा। सर ओवरऑल अगर इसको देखें भारत कहां पर खड़ा है, कितना असर हो सकता है?
1: जी बहुत ही अच्छे विषय पे हम लोग बात कर रहे हैं नवजोत जी। देखिए जेपी मॉर्गन ने रिपोर्ट जो दी है वो इस ओर इशारा करती है कि अगर हम भारत की ही बात करें पहले तो 7.3% के आसपास हमारा क्वार्टर वन का मैम जो है ना ग्रोथ रेट रहा है। जेपी मॉर्गन कहता है कि लगभग 0.6% इंडिया के ऊपर असर पड़ेगा, यानी कि आने वाले क्वार्टर्स में। और कब आएगा? जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर पड़ रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि दो क्वार्टर्स जब आएंगे Q2 और Q3, तो इसके रिजल्ट हमें 27 में देखने को मिल जाएंगे, यानी कि जब फसल पूरी क्रॉप तैयार होगी तब उसके बाद हमें अलिनो का इफेक्ट आएगा। अब ये अलिनो इफेक्ट करेगा कैसे और भारत सरकार इसमें कैसे इससे निपट सकती है? जेपी मॉर्गन बहुत रेनॉन्ड इंस्टीट्यूशन है और WMO, मैंने अभी इसको चूंकि स्टडी किया, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने, जो कि एजेंसी है UN की, वो कहती है कि अगर इस तरीके से जो कि जेपी मॉर्गन भी सतर्क कर रहा है और अलिनो का जो प्रभाव दिख रहा है वो ग्लोबल फूड इन्फ्लेशन पर, फूड क्राइसिस पर 5% रिड्यूस कर सकता है, मतलब 5% तक हमारी इन्फ्लेशन हाइक कर सकती है पूरी विश्व के स्तर पर। अब इससे होगा क्या? सबसे पहले मानसून, भारत पर कमजोर अनियमित मानसून का जोखिम बढ़ रहा है, खरीफ फसलों की प्रोडक्टिविटी प्रभावित होगी, जैसा कि मैंने कहा, वर्षा का असमान वितरण, जैसे कि सभी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कहीं सूखा है कहीं पर अत्यधिक बारिश देखने को मिल रही है, सोइंग क्रॉप ग्रोथ और हार्वेस्टिंग, इवन नवजोत जी हम देख पा रहे हैं कि यूरोप के अंदर भी आज टेम्परेचर की क्या स्थिति है, 40-45 के आसपास टेम्परेचर हो चुका है। राइस, भारत की बात करें, धान उत्पादन और कीमतों पर दबाव, पल्सिस उत्पादन जब घटेगा तो इंपोर्ट्स भी हम बढ़ाएंगे और जब इंपोर्ट बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से हमारी GDP घटेगी, हम लोग जानते हैं इकोनॉमिक्स के होने के नाते। ऑयल सीड, सोयाबीन, ग्राउंडनट आज प्रभावित होंगे, सुगर केन कम बारिश होने से गर्मी से यील्ड प्रभावित होगी, कॉटन की भी स्थिति रेनफॉल चूंकि ब्रेक हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि ग्लोबल फर्टिलाइजर सप्लाई डिस्ट्रप्शन से लेकर के और खेती की इनपुट कॉस्ट तक सारा कुछ बढ़ने वाला है। उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि फूड क्राइसिस, फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगा। क्राइसिस मीन्स फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगा, यानी कि भारत सरकार को अभी से अलिनो के इफेक्ट से निपटना है तो कोई ना कोई पॉलिसीज को आज ही इम्प्लीमेंट करना होगा, लागू करना होगा, ताकि भविष्य में फूड इन्फ्लेशन पे हम रोक लगा सकें। एक तरफ हम देख रहे हैं कि डीजल और एनर्जी क्राइसिस है, जिससे कि क्रूड डीजल, इरिगेशन, ट्रांसपोर्ट, और भारत के अंदर तो मैम हम लोग जानते हैं जैसे कि पर्यावरण विद बैठे हैं और अन्य हमारे विद्वजन बैठे हैं वो जानते हैं कि भारत तो लगभग 60-70% कृषि जो है ना भारत की वो अभी भी हमारी मानसून पर आधारित है। तो ऐसी स्थिति में ये सीधा सीधा प्रभाव फार्मर्स की इनकम पर डालेगा। गवर्नमेंट के बजट में हम लोग देखेंगे कि हम गवर्नमेंट निश्चित रूप से इन आज अगर पॉलिसी लेती तो आने वाले 2027 के बजट में हमें दिखेगा कि इस फील्ड में क्राइसिस से निपटने के लिए गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स ले रही है, जैसे कि फर्टिलाइजर्स की सब्सिडी के लिए, फूड की सब्सिडी के लिए, और फिस्कल प्रेशर जिसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स में नवजोत जी, वो बढ़ेगा निश्चित रूप से। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से अलिनो इंपैक्ट करते दिख रहा है। अब बात होती है कि गरीब हाउस होल्ड पर सबसे अधिक असर पड़ेगा, यस ऑफकोर्स पड़ेगा। एक तरफ जो हमारा गरीब हाउस होल्ड है वो फूड क्राइसिस से वैसे इसलिए जूझ रहा है क्योंकि अभी बीच में जो ईरान और मिडिल ईस्ट के अंदर जो अनरेस्ट रहा उससे जो एनर्जी क्राइसिस हुआ उस कारण से उनके रोजगार पर भी असर पड़ा और उनकी जो जिसको कहते हैं ना अदृश्य बेरोजगारी बढ़ी, जिससे कि वो वैसे ही पूर्व से ही इस दिशा में बढ़ रहे हैं। और हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, खासतौर से होटल इंडस्ट्रीज, वो छोटे छोटे उद्योग बंद हुए थे उस बीच में और अभी भी वो संभल नहीं पाए। कहने का मतलब है निश्चित रूप से जो GDP ग्रोथ रेट 7.3% से बढ़ रही है वो निश्चित रूप से जब नीचे घटेगी 6.5 और 6.7 के आसपास, जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट मैंने पूरी पढ़ी है,
5: वो बताते हैं कि वो इसको इम्पैक्ट करेगी। उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि 80 साल का भारत और 100 साल के भारत में क्या क्या होगा, निश्चित रूप से इसका इम्पैक्ट हमारी हमारी खुद की ग्रोथ
0: वहां
5: पर
0: पर कितना
5: पड़ेगा और
0: होगा,
5: डेवलपमेंट।
0: क्या पॉलिसीज में बदलाव होगा। सर आपसे आगे जानूंगी, डॉक्टर गुफरान आपसे चर्चा करेंगे। अब सर क्लाइमेट चेंज को लेकर बातचीत होती रहती है, ऊपर से अब ये अलनीनो का पूरा इफेक्ट, ऋतुओं पर वैसे ही इसका असर पड़ रहा है। अब इसका असर मैं ये स्पेसिफिकली जानना चाहूंगी, क्या हम ये माने कि इस बार सर्दी भी सुस्त रहने वाली है पूरे देश में?
2: मैं ये नहीं बोलूंगा कि सर्दी सुस्त रहने वाली है। मेरा अनुमान ये है क्लाइमेट चेंज के चलते जो अनिश्चितता की स्थितियां हैं, जिस हिसाब से हमारी बारिश कहीं ज्यादा कहीं कम वाला है, वैसा ही सर्दी के कुछ पॉकेट्स होंगे जहां पे के ज्यादा होता है वहां पर सर्दी बहुत ज्यादा पड़ने वाली है और उसी हिसाब से कोहरा और फूंक की संभावना है। और जहां पे सर्दी कम पड़ती है वहां पे और भी कम पड़ेगी, यानी कि हीटिंग रहेगी सर्दियों के जमाने के अंदर, के मेनली दक्षिणी भारत के अंदर। तो ये जो अनिश्चितता की स्थिति है ये एक बहुत, यानी कि बहुत डेंजरस सिग्नल है। लेकिन एक बहुत अहम पहलू इसका ये भी है कि देखिए हमारा जो वायु प्रदूषण है वो हमेशा जो है ये मौसम से और पेडी फील्ड से, यानी कि चावल की फसल से जुड़ा रहता है। अभी आप देखिएगा कि कुछ क्षेत्रों में भारत के जहां पे कि बारिश नहीं हुई है अभी तक, वहां पर सोइंग नहीं हुई है पेडी की, यानी कि जो करीब करीब करीब जो एक 38 मिलियन हेक्टर्स अभी तक हमारी सोइंग हुई है पेडी की, खरीफ फसल की, जो कि करीब 4 से 5% अभी तक कम है। तो अगर ये सोइंग कम हुई है तो धीरे धीरे सोइंग तो होगी क्योंकि हमारी इकोनॉमी डालना है और उनको किसानों को यानी कि चावल तो लेना ही है। तो अगर ये सोइंग और डिले होती है, यानी लेट बारिश अगर होती है, तो उसकी कटाई उसी हिसाब से अक्टूबर
0: बिल्कुल
2: नवंबर के बाद में दिसंबर में भी चले जा सकती है, यानी कि प्रदूषण जो हमारा अक्टूबर नवंबर के अंदर बहुत ज्यादा होता था पेडी फील्ड्स के बढ़ने से, यानी कि स्टबल बर्निंग से, शायद वो एक्सटेंड हो जाए दिसंबर तक कम से कम। और
0: ठीक है।
2: एक अच्छा पहलू इसका ये है, क्योंकि कम पेडी हुई है वो अच्छी बात नहीं है किसानों के हिसाब से, लेकिन पेडी कम चलेगी और अक्टूबर नवंबर यानी अर्ली डेज के अंदर शायद प्रदूषण उतना ना बढ़े जितना कि हर साल बढ़ता रहता
0: लेकिन वही है ना सर, सर्दी का जो पीक सीजन है, खासतौर पर अगर हम उत्तर भारत की बात करें, स्पेशली जब सबसे ज्यादा असर दिल्ली एनसीआर पर होता है, जब हम अक्सर चर्चा भी करते हैं कि गैस चैम्बर बन गया, वो तो दिसंबर जनवरी में होता है। तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो ये और ज्यादा खतरनाक होगी। एक बार डॉक्टर द्विवेदी, सुशील द्विवेदी आपके पास आना चाहूंगी। सर ये इस स्थिति के बारे में एक राय आपकी, आप इस पर क्या देखते हैं? क्योंकि अगर ये फसलों का सीजन भी डिले होता है तो इसका असर तो अगली फसल पर भी होगा, गेहूं की फसल पर सीधे तौर पर असर होगा फिर।
4: बिल्कुल, एक नवजोत जी एक बिल्कुल कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट होगा, ये पूरे पूरे इकोसिस्टम की तबाही के रूप में हम और आप लोग देखेंगे। क्योंकि जब कोई भी फसल तैयार होती है तो उसी के अनुरूप उससे जुड़े हुए कीड़े मकोड़ों का, जो भी इंसेक्ट हैं, जो पॉलिनेटर जिन्हें हम कहते हैं, उनका जीवन काल भी उसी अनुसार बिल्कुल तैयार होता है। मतलब वो भी उसी के साथ सिंक्रोनाइज वे में चलते हैं। जब हम और आप लोगों ने पूरी तरह से मौसम की तबाही अब देख रहे हैं जिसमें हमारा आपका योगदान है, तो जब पता चला कि इंसेक्ट मतलब मैच्योर हो गए और उस समय फ्लावरिंग नहीं देखने को मिल रही फसलों में, या फिर फसलें कोई फसल पहले तैयार हो गई मतलब उसमें फ्लावरिंग हो गई, कोई बहुत देर में हो रही, तो ये पूरा पूरा इकोसिस्टम गड़बड़ा जाएगा। अब मतलब हम कह सकते हैं कि एक फूड चेन होती है और उस फूड चेन में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है, तो जब वो पूरा का पूरा ये जो कड़ी गड़बड़ाएगी तो ये हम पूरी घटना को एक इकोसिस्टम की तबाही के रूप में भी देख सकते हैं। दूसरा जो आपने कहा कि जब इस प्रकार की घटनाएं होंगी तो इसकी वजह से अनेक अनेक प्रकार के ऐसे ऐसे जो हानिकारक कीड़े भी हम और आप लोग अभी भी देख रहे हैं और भविष्य में और देखने के लिए हमें आपको तैयार रहना पड़ेगा। बेनिफिशियल इंसेक्ट हैं, जो यूजफुल इंसेक्ट हैं, जिनसे मेरी आपकी जीवनचर्या में बहुत बड़ा योगदान है, जिससे मेरी आपकी फूड सिक्योरिटी होती है, तो उन उनकी संख्या कम होते हुए हम लोग देखेंगे, और हार्मफुल इंसेक्ट जिनके द्वारा हम और आप लोग मानवता प्रभावित है उनकी संख्या बढ़ते हुए देखेंगे। तो एक तरफ वैसे ही पूरी दुनिया अलग अलग खतरों से जूझ रही है। इस साल हमने देखा कि यूरोप में बेतहाशा गर्मी, अलग अलग जंगलों में हमने आग लगती हुए देखा। तो एक तरफ ये धरती पर पाए जाने वाले हर जीव जंतु सीधे सीधे प्रभावित हो रहा है, और दुखद बात यह है कि हर उस जीव जंतु का उतना ही अधिकार धरती पर है जितना मेरा आपका, लेकिन दुखद सत्य ये है कि उनका विचारों का इसमें कोई योगदान भी नहीं है। योगदान किसका है? इंसानी गतिविधियों का है, और वो जाने अनजाने इस सबकी सजा भुगत रहे हैं।
0: एक मुझे डॉक्टर द्विवेदी एक ब्रेक लेना है, लेकिन उससे पहले प्रोफेसर धीरे जल्दी से इस पर, क्योंकि चर्चा चल रही है, इस पर जवाब दीजिए। अगर फसलों का सीजन डिले होगा, जाहिर सी बात है, तो किसान भी प्रोडक्ट नहीं कर पा रहा है, ये तो नुकसान किसान के लिए भी है, और फिर उसके बाद सीधा सर हमारी इकोनॉमी पे, वो भी तब जब भारत है ही कृषि प्रधान देश। छोटा सा जवाब सर।
5: जी जी नवजोत जी, हो क्या रहा है कि इसको IMF पहले से प्रेडिक्ट कर चुका है। हालांकि JP Morgan का रिपोर्ट है, वो प्रेडिक्शन दे चुका है कि लगभग 6.6% या 6.7% तक अब ग्रोथ रेट डाउन हो जाएगी, जो 7.3 हमारी चल रही थी। यानी कि जो अप्रैल मई जून में जो हम 7.3 भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट थी वो डाउन होगी, और ये अलिनो का इफेक्ट है। इससे क्या हुआ कि क्लाइमेट शॉक डाउनसाइड रिस्क है, और सबसे बड़ी बात फूड इंपोर्टिंग एग्रीकल्चर डिपेंडेंट इकोनॉमीज पर पड़ रहा है। किसानों के लिए गवर्नमेंट को अभी से कोई एक पॉलिसीज पे बात करनी होगी। मैं ब्रेक के बाद बताता हूँ वो पॉलिसीज क्या।
0: बिल्कुल सर, हाँ छोटा सा ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। ब्रेक के बाद क्या इसका समाधान हो सकता है, आप तमाम खास मेहमानों से उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल एक ब्रेक, तुरंत लौटते हैं।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: अलिनो डालेगा दुनिया की थाली पर असर, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। समाधान की तरफ आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले एक सवाल डॉक्टर गुफरान आपसे, फिर उसके बाद डॉक्टर गुरुदत्त जी आपके पास भी आऊंगी। सर, अभी तो हम कह रहे हैं कि अलिनो की वजह से बारिश कम हो रही है, या फिर छोटे छोटे पॉकेट्स में बारिश हो रही है, कहीं अनइवन जिसको हम कहते हैं हो रही है, लेकिन बहुत बार सर ऐसा भी देखा गया जब अलिनो नहीं है तब भी बारिश कम होती है।
1: ये मैं बताता हूं आपको कि अगर लॉन्ग टर्म का आपको रिकॉर्ड देखा जाए तो दो चीजें बहुत क्लियर कट डिसिप्लिन हिसाब से होती थी कि हर 4-5 से 7 साल के बीच में एल नीनो आता था, एल होता था, फिर ला नीना जो दूसरा उसका घटक है वो आता था और अपने नॉर्मल अवस्था में रहता था और सब चीजें होती थी। तो उस समय धारा बिल्कुल ठीक चल रहा था कि भाई ला नीना जो है वो अच्छे बारिश के है, एल नीनो जो है ड्राउट से रिलेटेड है। तो अभी क्या हो रहा है कि वो साइकिल टूट गया है, एक के बाद न्यूट्रल कंडीशंस बहुत कम रहती हैं, तो एक के बाद ये चीजें हो रही हैं। अब जब चीजें बिना ऋतु के होंगी या बिना ट्रेंड के होंगी या बिना एक डिसिप्लिन को करे हुए होंगी तो ये बिल्कुल निश्चित है कि अनिश्चितता तो आएगी। और वही रीजन इसका अभी ये हो रहा है कि जो प्रशांत महासागर 0.5-1 डिग्री से कम एल नीनो के टाइम पे गर्म होता था वो अभी 2 डिग्री तक गर्म हो रहा है। और ब्रह्मांड ने या हमारे धरती ने ये चीजों का, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि पिछले कई दशकों से इसका एक्सपीरियंस नहीं किया, तो ये सब नई चीजें आ रही हैं, इसीलिए इसको सुपर एल नीनो कहा गया अभी, जबकि 2 डिग्री या 2.5 डिग्री तक आने वाले समय में, यानी कि 26 खत्म होते होते वो हो जाएगा। अब उसका क्या असर होना है, रिवर्स हो जाता है या बहुत गंभीर होता है या वीकर होता है, इसमें अनिश्चितता बनी हुई है। और यही कारण है कि हम अभी जो डिफिसिट और एक्सेस रेनफॉल से जो ला नीना और एल नीनो यानी एनसो को जोड़ा जाता था वो क्लाइमेट चेंज के चलते उसको अनिश्चितता की स्थिति से जोड़ने का वैज्ञानिकों का उसकी समरी या उसका उसका असर समझ रहे हैं वैज्ञानिक अभी।
0: ठीक है डॉक्टर गुरुदत्त जी।

0: ओशियन डायपोल और ईएनएसओ ने काफी उसको कंट्रोल करके रखा, क्योंकि आईओडी पॉजिटिव था तो एलिनो का उतना प्रभाव भारत में नहीं हो पाया। लेकिन अभी जो वर्तमान में मौसम, इसमें 22, 23, 25 तारीख तक तो हमको रेन मिलेगी, उसके बाद जो मानसून की द्रोणिका है थोड़ा सा हिमालय ऊपर ऊपर चली जाएगी और वर्षा की गतिविधि में कम आएगी। लेकिन अभी पूरा सितंबर बाकी है मानसून के लिए और ये 10 दिन बाकी है अगस्त के, तो ऐसा कहना भी कि बारिश नहीं होगी, बारिश अभी फिलहाल कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि जो ईएनएसओ और आईओडी है ये दोनों हमको सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए ऐसा होगा। दूसरी बात, मैं देख रहा था कि जुलाई में जो फूड इन्फ्लेशन था 6.5 5.52 है, इस कारण से देखा कि ये अपना सोयाबीन तेल का आयात वगैरह 16। एक और चीज है कि सर्दियों में जो सर्दियां हैं उसमें जो तापमान है सर्दियों के सामान्य से ऊपर रहेगा, लेकिन हमको अभी भी आशा है कि सितंबर तक हमको वर्षा मिलेगी और जहां वर्षा मिल रही है वहां खरीफ की जो फसल है लगभग वो ठीक रहेगी, बहुत ज्यादा उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां वर्षा
1: लेकिन
0: ये
1: लेकिन
0: आज
1: सर
0: जमकर
1: गुरुदत्त
0: वगैरह है।
1: जी, लेकिन सितंबर तक आप कह रहे हैं कि वर्षा रह सकती है, तो वो भी तो असामान्य वर्षा ही होगी ना?
0: हाँ, असमान वर्षा तो होगी, लेकिन जहां बिल्कुल नहीं होने वाली स्थिति थी और जहां हो रही है, तो जिनके पास पानी है, क्योंकि भारत में अभी भी 50% ही सिंचाई के साधन उपलब्ध है, उस 50% में कुछ नहीं है जो वर्षा पे आधारित है लोग, लेकिन जिनके यहाँ थोड़ी बहुत वर्षा हो रही है और सिंचाई के साधन है, वो अपनी फसलों को बचा रहे हैं, बचा लेंगे और वो
1: ठीक है,
0: कोशिश करेंगे कि रबी की फसल की बोनी करें अगर उनके पास पानी का साधन है। लेकिन ये कहना उचित नहीं होगा कि बिजली कैसे मिलेगी जब हमारे बांध नहीं भरेंगे, उनकी सप्लाई कैसे होगी, पावर हाउस कैसे चलेंगे, सारी स्थितियां तो होना है। तो ये कठिन दौर आने वाला है 6-8 महीने करीब, फरवरी मार्च तक आने वाले दिनों में, क्योंकि
1: ठीक
0: जिस तरह से WMO सारी एजेंसियां कह रही कि एलिनो भारत में प्रभाव डालेगा और
1: है।
0: अक्टूबर से ये करीब करीब ये शुरू हो जाएगा,
1: ठीक है,
0: तो आने वाले
1: समाधान
0: दिनों
1: की
0: में
1: तरफ
0: भी
1: अब आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल गुरुदत्त जी, लौटूंगी अब आपके पास आना चाहूंगी डॉक्टर त्रिपाठी, कि अब समाधान की अगर हम बात करें, आप मोटे अनाज की, डॉक्टर द्विवेदी, डॉक्टर सुशील द्विवेदी माफी चाहूंगी, मोटे अनाज को लेकर आप अक्सर ये बात करते हैं और इंडिया का तो स्टेपल फूड भी वही है आजकल, अगर
0: जी
1: देखा जाए तो तमाम जो लोग डाइट करते हैं वो तकरीबन इसी फूड का इस्तेमाल करते हैं। और मेरा ये भी मानना है, हाल फिलहाल में सर देखा भी गया है, इनफैक्ट अगर आप तमाम डाइटिशियन से भी बात करें तो उन्होंने लोगों के फूड हैबिट्स में चेंज की बात भी कही है, हो भी रही है चेंज, कितना असर इससे पड़ेगा। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्टर गुरुदत्त जी ने बात कही कि वाटर कंजर्वेशन, जिसको लेकर आप हमेशा जिस बात को लेकर स्ट्रेस देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए अगर इस तरह की स्थिति आती है तो।
2: बिल्कुल, एक तरफ पूरी दुनिया और भारत भी संसाधनों की भूख से पूरा खाली होता जा रहा है, मतलब मेरी आपकी बहुत ज्यादा ग्रीडीनेस या जरूरतें बढ़ती जा रही, लालचपन बढ़ता जा रहा, तो ऐसी स्थिति में हमें और आपको कुछ निगोशिएशन करने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ हमें अपने व्यवहारिक बदलाव करने पड़ेंगे, और स्वाभाविक से बदलाव में हमें अपनी एंशियंट ग्रेन्स को अपनाना पड़ेगा जिन्हें हम पूर्वजों की फसलें मानते रहे हैं। इनमें मोटे अनाज स्वाभाविक से विकल्प हैं, ये कम बारिश में कम पानी में उगते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इनमें न्यूट्रिएंट भरपूर होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं, रफेज होते हैं, और ये हमारी इंटेस्टाइन की एक्सरसाइज कराते हैं। इन्हें सुपर फूड कहा गया है भारतीय ग्रंथों में, और भी जो भी हमारे उपनिषद वेद हैं उनमें भी इनका वर्णन मिला हुआ है। तो एक तरफ तो हमें ये सोचना पड़ेगा, दूसरी तरफ वैज्ञानिकों को भी आगे आना पड़ेगा, जो उन्होंने लैब टू लैंड एक कंसेप्ट चल रही है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी उसमें बहुत ज्यादा वैज्ञानिकों का आह्वान कर रहे हैं कि जो अलग अलग प्रयोगशालाएं हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, या जो भी CSIR की, या जो अलग अलग प्रयोगशालाएं हैं वहां पर जो भी प्रयोग किए गए और जो भी ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप्स डेवलप की जा रही हैं, मिसाल के रूप में गेहूं या पैडी जो ज्यादा पानी में उगती हैं, अब कम पानी में उगने वाली ऐसी फसलों को किसानों तक पहुंचाने की उनकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि अब आने वाला समय दुखदायी होने वाला है, बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार हमें आपको तैयार रहने की जरूरत है। अगली चीज ये है कि हमें माइक्रो इरिगेशन या ड्रिप इरिगेशन को अपनाना पड़ेगा, इसके लिए हमें सिंगापुर या फिर मिडिल ईस्ट के अलग अलग कंट्री या इजराइल से हमें सबक लेना होगा, लेसन लेना होगा, वहां वो पानी की एक भी बूंद बर्बाद नहीं होने देते और हर उस कीमती बूंद का इस्तेमाल करते हैं। आप और मैं तब पानी बचाने की कल्पना नहीं कर सकते जब तक कि हम उसका संचय नहीं करें। मेरी जेब फटी होगी, मैं पैसा डालूंगा, बार बार पैसा गिर जाएगा, मैं गरीब बना रहूंगा। ठीक वैसे ही अगर जो बारिश का जो बहुमूल्य पानी अभी गिर रहा है उसे भारत सरकार ने अमृत सरोवरों के माध्यम से, मेरा खेत मेरा जल अभियान या अलग अलग अभियानों के माध्यम से पानी को संचय करने का एक बहुत, कैच द रेन वेयर इट फॉल वेयर इट कैन, वहां पर ऐसे कई सारे इनिशिएटिव शुरू किए हैं

0: और आपकी तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आप लगातार मैं देखता हूँ गुड न्यूज टुडे इस मुहिम का लगातार हिस्सा बनता है, तो ये भी करना पड़ेगा, हमें जल संचय की तरफ जाना पड़ेगा और साथ में अपनी जरूरतों को सीमित करना पड़ेगा। देखिए हर चीज के पीछे पानी छिपा है, वो चाहे मेरा कपड़े हो सकते हैं, चाहे मेरी कार हो सकती है, चाहे मेरी जो भी डेली का मैं भोजन करता हूँ उसे हम वर्चुअल वाटर या वाटर फुटप्रिंट कहते हैं। मैं और आप जो कुछ भी काम करते हैं दुनिया में उसके पीछे पानी छिपा है, क्योंकि उस चीजों को बनाने में, उन चीजों को उगाने में, मिसाल के रूप में एक कप कॉफी में अगर पीता हूँ तो 140 लीटर पानी उसके पीछे छिपा है। अर्थात उस कॉफी के बीजों को हम खेत में उगाते हैं, जब बोते हैं फिर उससे कॉफी के प्लांट्स बनते हैं और सीड लाते हैं, उनकी रिफाइनिंग करके और जो मेरे घर तक पहुंचते हैं, तो उस बीच में बहुत सारा वाटर यूज होता है, इसे वर्चुअल वाटर या वाटर फुटप्रिंट कहते हैं। तो हमें और आपको ये नहीं है कि खाना पीना छोड़ना है, कपड़े पहनना छोड़ना है या चाय कॉफी पीना बंद करना है, नहीं, सब कुछ कहना है, लेकिन जितनी जरूरत है उतना कहना है, क्योंकि
1: सर इस पर
0: आज
1: क्या
0: के दौर
1: कहेंगे,
0: में इस
1: अभी आप इसकी
0: जी
1: जरूरत की बात कर रहे हैं, एआई में जिसको लेकर सबसे ज्यादा पानी इस्तेमाल हो रहा है, जिसको लेकर लोग अमेरिका तक में सड़कों पर आए हैं, वहां
0: बिल्कुल,
1: क्या
0: अभी
1: कीजिएगा,
0: ये
1: कहां, अब तो एआई की दुनिया में हम कदम रखने वाले हैं, ये तो संकट
0: बिल्कुल
1: गहरा
0: बड़े
1: होगा
0: बड़े
1: इस ऐसे
0: सुपर
1: में।
0: कंप्यूटर जी, क्लाउड स्टोरेज को और उनके जो सुपर कंप्यूटर है उनको ठंडा करने के लिए तमाम अलग अलग जगह पर डेटा सेंटर के लिए पानी की जरूरत होती है, वो छिपा हुआ पानी वो कहीं से कहाँ से आएगा। तो हमें आपको सोचना पड़ेगा कि हम जो नई तकनीकें आ रहे हैं उनको आंख बंद करके हम अपनाते चले जा रहे हैं, मतलब हमें जो अपने जो पुरानी रवायतें रही हैं, जो हमारे प्रकृति हितैषी जीवन जीते थे, हम लोग प्रकृति का कम से कम नुकसान करते थे, उस तरफ हमें उनसे सबक लेना पड़ेगा और वो हमारे वेद पुराण ग्रंथों में दी हुई है, कहीं और नहीं जाना है, और हमें उन्हीं से सबक लेना है कि किस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन को जिया और
1: बिल्कुल
0: हमारी सभ्यता हजारों सालों के द्वारा बाद भी आज इतनी अच्छे से फल फूल रही है, तो कहीं
1: हाँ,
0: ना कहीं से हमारी जीवन शैली अच्छी रही होगी, तभी तो हम इस स्थिति में पहुंचे।
1: बहुत सारी चीजें हैं। अब डॉक्टर धीरेश कुलश्रेष्ठ, अब आपके पास आना चाहूंगी, प्रोफेसर धीरेश कुलश्रेष्ठ सर। अब देखिए बात तो ये भी सही है कि अगर हम वाटर कंजर्वेशन नहीं करेंगे, पानी को नहीं बचाएंगे, स्थितियां अगर ऐसी ही रही, ग्लोबल वार्मिंग लगातार हो रही है, क्लाइमेट चेंज लगातार हो रहा है, फसलों ऋतु परिवर्तन देखिए होते जा रहे हैं, अनप्रिडिक्टेबल हो गया है मौसम भी, किसान के लिए कंफ्यूजन वाली स्थिति है, इन सब के बीच हमें आगे 2047 का लक्ष्य भी देखना है और उस बीच एआई भी जहां पर सबसे ज्यादा पानी इस्तेमाल होता है, ये सारी चीजें एक साथ है सर, इसको देखते हुए आप कहां देखते हैं आज भारत को और इसके बाद कैसे आगे पॉलिसीज में बदलाव की जरूरत है?
2: नवजोत जी, मैं ये देख पा रहा था जब मैं ये पूरा रिपोर्ट जेपी मॉर्गन का पढ़ा, तो अलनीनो पहले कभी आया है क्या? जेपी मॉर्गन और एक रिपोर्ट है जिसका मैं यह जिक्र करना चाहूंगा, उस रिपोर्ट का नाम है जेपी मॉर्गन सेंटर फॉर कमोडिटीज एट द यूनिवर्सिटीज ऑफ कॉलोराडो डेनवर बिजनेस स्कूल की रिपोर्ट है 2015 की, और वो बुलफार्ड पुटनम की रिपोर्ट है। वो क्या कहते हैं कि 2015 में उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि अलनीनो आएगा तो इसके रिपरकेशंस कहाँ जाएंगे, तो फिस्कल पॉलिसीज के लिए और मॉनेटरी पॉलिसीज के लिए दोनों ही टर्म्स में हमें सुधार करना पड़ेगा। अब अगर मैं दोनों की बात करूं तो पहला एक रिपोर्ट है सेंट्रल बैंक का, जो सेंट्रल बैंक मतलब यूरोप के लिए जर्मनी का सबसे बड़ा सेंट्रल बैंक है, डच बैंक रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो लिखते हैं अलनीनो द नेक्स्ट सप्लाई शॉक। एक्चुअली पूरी दुनिया इस अनिश्चितता से रिस्क है, एक्चुअली ये बहुत बड़ा रिस्क है, जैसा कि सभी विद्वजन यहाँ बोल भी रहे हैं और हम लोग समझ भी रहे हैं, और ये प्रेडिक्शन है कि 2026 खत्म होते होते इसका इम्पैक्ट, बैड इम्पैक्ट आने वाला है, और अगर आता है तो वो सप्लाई शॉक से निपटेंगे कैसे? तो दो तरीके से इकोनॉमिक्स में इस रिस्क को कवर किया जाता है, पहला है आपका फिस्कल लेवल, फिस्कल पॉलिसी लेवल पर, और दूसरा है आरबीआई लेवल पर। और ये 20 जुलाई 2026 की रिपोर्ट है मैम, जो डच बैंक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने दी है। अब मैं अगर मैं भारत की ही बात कर लूँ तो हमारा सेंट्रल बैंक भी, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो कहता है, उन्होंने रिपोर्ट दिया, अगस्त की रिपोर्ट है, आरबीआईज न्यू वरी इज अल नीनो, व्हाट गवर्नर संजय मल्होत्रा सेड, ही इज सेइंग, मतलब वो कह रहे हैं कि हमें किधर जाना है, हमें मॉनेटरी कंसर्न्स की बात करनी है, हमें रेपो रेट 5.25 को बनाए रखना है, हमें ग्रोथ रेट को अगर 7.3% रखना है तो क्या करना है, अगर क्राइसिस आता है, जैसे कि गवर्नमेंट के लेवल पर फिर हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि ब्लैक होल्डिंग्स को रोकें, क्योंकि कालाबाजारी होगी, रेट बढ़ेंगे तो और उस समय पर कालाबाजारी की संभावनाएं ज्यादा होंगी। तो गवर्नमेंट को उस लेवल पर जाकर के बात करनी होगी। किसानों के लिए हमें क्रॉप प्रोडक्शन, फार्म इनकम, रूरल कंजम्पशन, ट्रैक्टर टू व्हीलर की डिमांड, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये जब हम कहते हैं ना एग्रीकल्चर इम्पैक्ट होगा, तो एग्रीकल्चर इम्पैक्ट का मतलब क्या है? एग्रीकल्चर का मतलब है कि ये सारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिपेंड किस पर है? कॉटन के प्रोडक्शन पर। और कॉटन का प्रोडक्शन अगर प्रभावित होगा, या मैं एक और वर्ड यूज करूँ, कुप प्रभावित होगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर प्रभाव पड़ेगा, ईटेबल ऑयल्स पर प्रभाव पड़ेगा, हमारी पल्सेज, हमारा खाना, यानी कि सारा का सारा फूड क्राइसिस जो है वो इस पर प्रभाव पड़ेगा। तब ऐसी स्थिति में भारत सरकार कोई ना कोई पॉलिसीज निश्चित रूप से बना रही है, जिसकी डिक्लेरेशन कर रहे हैं वो लगातार, पिछले क्वार्टर्स में उन्होंने कहा है। और ये चूंकि जेपी मॉर्गन का रिपोर्ट आया, आपका कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि Q2 में, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जैसे जैसे हम इस दिसंबर तक बढ़ेंगे और जैसे जैसे अलिनो का इफेक्ट आएगा, हमारा पॉलिसी मेकर्स, हमारी गवर्नमेंट्स अच्छे इनिशिएटिव्स लेगी इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन, इन टर्म्स ऑफ RBI मॉनिटरी ईजिंग, कैसे हम उसको ईज करें, कैसे कर सकते हैं। हमको किसी भी हाल में जो प्राइसेस हैं, जिस पर हम किसान क्रेडिट कार्ड पर किसान को जो लोन दिया है, क्या हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, ये आगे की बात कर रहा हूँ। हालांकि इसके लिए अभी कहना जल्दबाजी है, लेकिन जरूर RBI इसलिए चिंता कर रहा है। RBI के बुलेटिन से अगर हम लोग माइन्यूटली देखें तो वो लगातार कह रहे हैं कि BR कीप ऑन आई ऑन द अलिनो इफेक्ट इन इंडिया। तो हम लोग ये इस तरीके से इम्पैक्ट को देख सकते हैं नवजोत जी।
1: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए डॉक्टर गुफरान, अब आपके पास आती हूं। अब इसका असर, आपने शुरुआत में जब हमने चर्चा की थी, आपने कहा था कि 27 के मौसम पर भी इसका असर पड़ेगा, तो एक बार जरा फिर से हमें समझा दीजिए कहां कितना असर। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, आपने सर्दियों के बारे में भी जो प्रेडिक्शन किया है कि कहीं बहुत ज्यादा सर्दी हो सकती है, कहीं बहुत कम हो सकती है, दिल्ली और NCR की अगर हम बात करें, या फिर जो गैंजेटिक प्लेन्स की आप जिक्र कर रहे थे, वहां पर कोहरा बहुत ज्यादा हो सकता है। इसी के साथ साथ क्या बाकी ऋतुओं पर असर होगा? अगर आपको याद होगा, इस वक्त हमारे साथ दोनों खास मेहमान, गुरुदत्त जी भी हमारे साथ है और मेरे ख्याल से उस शो में डॉक्टर द्विवेदी भी थे, जब हमने कहा था कि बसंत गायब हो गया, बसंत आया ही नहीं, क्या माने कि ऐसे कुछ ऋतुएं गायब भी हो सकती हैं, इसे असर उस पर होगा?
3: ये जो अभी आप 2027 के शुरुआत में जो स्थिति देखने वाले हैं, ये बहुत अद्भुत होगी और वैज्ञानिकों के लिए भी एक आई ओपनर होगा, ऐसा मेरा मानना है। कारण उसका ये है कि ये सुपर एलनीनो से हम पहली बार जूझ रहे हैं, और यही कारण है कि अलग अलग राय वैज्ञानिकों के अंदर भी बढ़ रही है। कोई कभी ये भी प्रेडिक्शन आता है कि सर्दी इस बार कम पड़ेगी, दूसरी, जैसा मेरा मानना, मैंने आपको बताया कि सर्दी के अंदर बहुत एक्सट्रीम्स होंगे, और वही कारण है कि अगर एक्सट्रीम सर्दी, यानी कि सर्दी, सपोज सर्दी कम पड़ी और उसके बाद में गर्मी ज्यादा पड़ गई, तो जो बीच का मौसम है, जिसको हम ऑटम बोलते हैं, स्प्रिंग बोलते हैं, सॉरी, वो स्प्रिंग का सीजन खत्म हो जाएगा, तो ये अनिश्चितता की स्थिति आने वाले मई 2027 तक बनी रहेगी। और समुद्र की गर्माई और ठंडाई क्या मोड़ लेती है उसके बाद में मालूम पड़ेगा। लेकिन मैं इसके अंदर आपको जाते जाते दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है वो बता दूं कि आपने जैसे बहुत सही सवाल किया था कि हम इसका समाधान क्या है, तो समाधान हमारे जो है ना, इसके अंदर दो टाइप के समाधान होते हैं, एक तो मिटिगेशन होता है, एक अडाप्टेशन होता है, हिंदी में उसको बोलते हैं शमन या गोद लेना, यानी कि अपने आप को या तो चेंज करिए नंबर वन, ताकि हम अनिश्चितता की स्थिति को मुकाबला कर सके जहां तक करें, और शमन वो होता है मिटिगेशन के जड़ से ही ऐसी चीज को निकाल दें। लेकिन जहां तक एलिनो का सवाल है, वो है एक प्राकृतिक मौसम का एक पैरामीटर है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो उसकी जड़ वही है कि क्लाइमेट चेंज को का असर हम कम करें और ग्लोबल वार्मिंग कम करें।
1: और थोड़ा सा ध्यान दें, अपनी जिम्मेदारी को भी निभाएं। जल्दी से चलते चलते प्रोफेसर धीरेश, देखिए अगर एलिनो का असर होता है, क्लाइमेट चेंज का असर होता है, मौसम ऐसा रहता है, इसके लिए भारत तैयार कितना है, हमारे पास बफर स्टॉक कितना है? सर छोटा सा जवाब। सर ऑडियो म्यूट है। जी
2: इंडिया का जो CPI इन्फ्लेशन है, सॉरी इन्फ्लेशन है, वो 4.45% हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं, बिकॉज प्रिडिक्शन के बेस पे है, क्योंकि रिस्क है और रिस्क मैनेजमेंट तो करना है ना। तो फूड इन्फ्लेशन हम लोग बात करें 5.52% है, अब दो जुलाई 2026 में जब 5.52% है, और अगर ये बढ़ता है यानी कि खाने की चीजों के दाम बढ़ते हैं तो क्राइसिस आएगा। तो
1: ठीक,
2: ऐसी स्थिति में हम अपनी स्टोरेज और काला बाजारी को कंट्रोल कैसे करें, फूड आइटम्स की जो कीमतें हैं उनको हम कैसे जोड़ के और संभाल के रख पाए, ये बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ा
1: ठीक
2: जो
1: है,
2: है ना जोखिम खास तौर पर हमारी सरकारों के साथ
1: उन
2: है, और इससे निबट सकते हैं। ऐसा नहीं
1: बिल्कुल
2: जैसे मैंने
1: सरकारों के
2: आपको
1: लिए एक बहुत बड़ा
2: पीपीई के
1: चैलेंज होगा।
2: वक्त
1: जाहिर सी बात है, आपने शुरू कहा भी कि अलिनो अब दुनिया भर की सरकारों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन ही रहा है। तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अलिनो का। सर, कितना मौसम पर, मॉनसून पर पड़ रहा है, साथ ही साथ इसका असर कितना इकोनॉमी पर होगा, इसको लेकर आज हमने चर्चा की। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, आप देख रहे हैं।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति, हरियाली और उत्सवों का पवित्र और प्रिय महीना माना जाता है, और इस महीने में विशेषकर कावड़ यात्रा की भव्य छटा देखने को मिलती है। इस बार भी बिहार के मुंगेर में कावड़ मार्ग पर कई भव्य रंग देखने को मिल रहे हैं।

0: सावन के महीने में कावड़ पथ की रौनक देखते ही बनती है। बिहार के मुंगेर में हर दिन असरगंज कच्ची कावड़िया पथ पर आस्था और उत्साह का संगम दिखता है। बम बम भोले और हर हर महादेव का जय घोष करते हुए बड़ी संख्या में शिव भक्त अनोखी छटा बिखेरते हुए बैद्यनाथ धाम की ओर बढ़ते दिखते हैं। ये दृश्य हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब इस तस्वीर को ही देखिए, इसमें भक्त अपने आराध्य को कंधे पर विराजमान कर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। भोलेनाथ अपने भक्तों के भाव देखते हैं, उनके प्रति अपने अगाध आस्था को प्रदर्शित करने के लिए भक्त बाबा को चश्मा मुकुट सबसे पूरी तरह सजा कर दिव्य रूप में अपने साथ ले जा रहे हैं। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से आया कांवड़ियों का ये दल सुल्तानगंज से जल भरने के बाद झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर जल अर्पित करने बढ़ता चला जा रहा है।
1: हम लोग अयोध्या से चलकर यहाँ सुल्तानगंज आए और बाबा भोलेनाथ के दरबार में जा रहे हैं। बाबा का ये जो रूप है बहुत ही निराला हम लोगों को लगा, इसीलिए बाबा को इस गेटअप में हम लोगों ने तैयार किया है। चश्मा लगा के हम लोग ले चल रहे हैं, खुद चश्मा लगाते हैं और बाबा को भी चश्मा लगा के लेके चल रहे हैं।
0: आस्था की इसी यात्रा में कोई कंधे पे कांवड़ उठा रहा है तो कोई अपने बच्चों को भंगी में लेकर बाबा के दरबार की ओर बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल निवासी शिव भक्त अपने 7 महीने के बेटे को भंगी में बैठाकर बाबा की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, तो प्रयागराज निवासी शिव भक्त अपनी 2.5 साल की बिटिया को गमछे से बनी भंगी में लेकर जा रहे हैं। सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर लगभग 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके भक्त देवघर पहुंचते हैं और भगवान भोले शंकर को जल अर्पित करते हैं। इस दौरान कावड़ मार्ग में शिव भक्तों के लिए की गई व्यवस्थाएं उनकी राह आसान कर देती है।
2: बहुत अच्छा है, लाइट है और निःशुल्क जल सेवा भी है, शौचालय सुलभ शौचालय, मेडिसिन वगैरह भी मिल रही है और क्या ही चाहिए, ये तो काफी है।
0: बैद्यनाथ धाम की महिमा अपरंपार मानी जाती है। यहाँ सावन के पूरे महीने कांवड़ियों की भीड़ रहती है, विशेषकर सोमवार को बाबा पर जल अर्पित करने के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ता है।
3: जो 12 ज्योतिर्लिंग में द्वादश ज्योतिर्लिंग में एक हमारे ऐसे ये पांचवा है और यहाँ पे शिव और शक्ति के ऊपर साथ में विराजमान है शिव। एक ऐसा शिव है जहाँ पे सिंदूर भी चढ़ता है, चूंकि शक्ति होने के कारण ये परंपरा बनी हुई है। और यहाँ पे एक चीज खास ये है, और जगह में सब आप त्रिशूल देखेंगे लेकिन यहाँ बाबा बैद्यनाथ के ऊपर पंचशूल देखेंगे, इनका एक अलग ही महत्व रहा है और हम लोग अपने जीवन में उसको बहुत हमें देखने को मिला है कि इनकी कृपा सब पर बनी रहती है और आगे भी बनी रहे हर हर महादेव।
0: बैद्यनाथ धाम में सावन ही नहीं बल्कि भादों के महीने में भी कांवड़ियों और शिव भक्तों का तांता लगा रहता है। सावन जहां मुख्य कांवड़ मेला मास माना जाता है, वहीं भादो मास में भी श्रद्धालु और डाक कांवड़िए बाबा का जलाभिषेक करने के लिए पहुंचते हैं। मुंगेर से गोविंद कुमार और देवघर से शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रही हैं।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा, स्वागत है आपका चाय पर चर्चा में। आज शुरुआत खुशियों और उमंग के पारंपरिक त्योहार दही हांडी के साथ होगी। तो भाई, महाराष्ट्र में मनाए जाने वाले इस पर्व की बात अगर की जाए तो फिलहाल ये ग्लोबल होने वाला है, तो कैसे सब कुछ मुमकिन होगा और स्पेन के साथ दही हांडी पर्व का कनेक्शन क्या है, इस पर भी आगे हम विस्तार से बात करेंगे।
3: नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। देखिए, सावन के महीने में हो रही भारी बरसात के बीच उत्तराखंड, हिमाचल और नॉर्थ ईस्ट रीजन में कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन कर लोगों की जिंदगी बचाई जा रही है, इसकी भी तमाम तस्वीरें आई हैं, वो आज हम आपको दिखाएंगे।
2: नमस्कार, मैं शुगुप्ता, स्वागत है आप सभी का चाय पर चर्चा में। बात युवा बैडमिंटन खिलाड़ी आयुष शेट्टी की भी करेंगे, जिन्होंने अपने डेब्यू में ही वर्ल्ड नंबर वन शी यूकी को हरा दिया। साथ ही एशिया के सबसे बड़े मंचों में से एक पर तिरंगा फहराने वाली मणिपुर की जिमनास्ट अरिहा की कहानी भी आपको सुनाएंगे।
4: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। तो देखिए, फिनलैंड के एक छोटे से परिवार ने छोड़ा अपना खूबसूरत देश, इसके बारे में हम आपको बताएंगे और क्यों ये परिवार दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक फिनलैंड को छोड़कर मुंबई आकर बस गया, इसके पीछे की भी दिलचस्प कहानी है, उसके बारे में आपको बताएंगे।
5: नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ दीपिका शर्मा। देखिए, आज फेमस गीतकार गुलजार साहब का जन्मदिन है, तो आज गुलजार साहब की मुंह जुबानी शायरी भी आपको सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं देश भर की बड़ी खबरें।
6: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2025 का ऐलान, 17 खिलाड़ियों को मिलेगा अर्जुन पुरस्कार, 3 खिलाड़ियों को मिलेगा द्रोणाचार्य अवार्ड। श्रीलंका के खिलाफ गोल टेस्ट में ऋषभ पंत ने रचा इतिहास, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेजी से 100 छक्के जड़ने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने, टेस्ट डेब्यू के 8 साल बाद हासिल की उपलब्धि। पवित्र सावन महीने में धूमधाम से जारी कांवड़ यात्रा, जौनपुर में शिव भक्तों पर की गई फूलों की बारिश, प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से बरसाया फूल। मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां तेज, प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर की बैठक, 4 सितंबर को होगा भव्य आयोजन। नोएडा में यूपी पुलिस की सराहनीय पहल, ऑपरेशन अपराजय का किया शुभारंभ, ऑटिज्म और डाउन सिंड्रोम से प्रभावित स्पेशल बच्चों को दे रहे हैंडमेड ज्वेलरी बनाने की ट्रेनिंग। ऋषिकेश में बढ़ा गंगा का जलस्तर, प्रशासन ने आसपास के लोगों को किया अलर्ट, घाटों तक पहुंचा पानी, हालात पर प्रशासन की पैनी नजर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत त्योहारों का देश है और यहाँ की संस्कृति इतनी खूबसूरत है, इतनी प्यारी हमारी संस्कृति और परंपरा है कि विदेशों से भी लोग यहाँ आते हैं, खास करके हमारे त्योहारों को एंजॉय करने के लिए। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, बस आने ही वाला है दही हांडी। जी हाँ, आपको बता दें कि गणेश उत्सव के मौके पर उसके आसपास ये दही हांडी का पर्व मनाया जाता है, त्योहार मनाया जाता है, लेकिन आज हम आपको ये खबर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको बता दें यही दही हांडी इससे मिलता जुलता एक इसी तरह का पर्व है, कह लीजिए एक परंपरा है, जो कि स्पेन में निभाई जाती है, कैस्टल्स उसे कहा जाता है। दरअसल स्पेन के कैटालोनिया क्षेत्र में कैस्टल्स एक बेहद पुरानी परंपरा है, जिसमें लोग एक दूसरे के कंधों पर खड़े होकर 6 से 10 मंजिल तक ऊंचे मानव पिरामिड बनाते हैं। और अब सबसे बड़ी बात ये शगुफ्ता की यूनेस्को में इसे शामिल किए जाने की बात कही जा रही है। महाराष्ट्र सरकार जो है वो कोशिश करेगा कि यूनेस्को की जो लिस्ट होती है उसमें दही हांडी भी शामिल हो जाए।
7: मुझे लगता है ऐसे तमाम जो पर्व त्योहार है ना जो आपको एक साथ जोड़ते हैं, ऐसे त्योहारों को मान्यता तो जरूर देनी चाहिए। मुझे तस्वीर में सीधा पहुंच गई मुंबई में, नॉस्टैल्जिया हो गया मुंबई की तस्वीरों का, क्योंकि दही हांडी मैंने देखा है। और देखिये ऐसा ही मानव पिरामिड उसमें बनाया जाता है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि प्रैक्टिस बहुत चाहिए होती है, स्टेमिना चाहिए होता है, स्ट्रेंथ आपके कंधों में चाहिए होती है, क्योंकि इट्स अ टीम वर्क आफ्टर ऑल। और खास बात यह है कि देखिए इस अनोखे उत्सव का आयोजन स्थानीय त्योहारों के दौरान किया जाता है, इसे यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा भी हासिल है। और भारत की बात कर लेते हैं, महाराष्ट्र की पहचान से जुड़ा हुआ यह त्योहार है दही हांडी, बल्कि सहयोग, एकता, आध्यात्मिकता का संदेश भी देता है। यहां गोविंदा एक दूसरे के ऊपर चढ़कर मानव पिरामिड बनाते हैं, मटकी फोड़ते हैं। और अब खास बात यह है कि महाराष्ट्र सरकार दही हांडी की इस परंपरा को यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल करवाने की कोशिश करेगी। इतना ही नहीं, गोविंदाओं को अपना हुनर दिखाने के लिए स्पेन भी भेजा जाएगा, ये खास बात है।

0: खुशियों और उमंग का पारंपरिक त्योहार दही हांडी उत्सव। कान्हा की बाल लीलाओं की याद दिलाने वाला पर्व दही हांडी। यहाँ गोविंदा की टोलियाँ मिलकर फोड़ती हैं ऊंची ऊंची हांडियाँ। आपसी सहयोग और अहंकार त्याग कर एकजुटता के साथ ऊंचे लक्ष्यों को पाने का आध्यात्मिक संदेश देता है दही हांडी। और अब एकता, उत्साह और भाईचारे का यही पर्व इंटरनेशनल होने जा रहा है। कान्हा की बाल लीलाओं से जुड़ा ये खूबसूरत त्योहार अब यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल हो सकता है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि वो दही हांडी उत्सव को यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल कराने के लिए प्रयास करेगी। यही नहीं, दही हांडी में ऊंचे ह्यूमन पिरामिड बनाने वाले गोविंदाओं को स्पेन भेजने की भी योजना बनाई गई है, जहां वो महाराष्ट्र की इस पारंपरिक संस्कृति का प्रदर्शन करेंगे। मानव पिरामिड और मीनारे बनाने की ये पारंपरिक प्रथा दही हांडी उत्सव और स्पेन के बीच दरअसल एक साझा कड़ी है। स्पेन में कई समुदाय मानव मीनारे बनाने की परंपरा का पालन करते आए हैं, जिसे केस्टल्स कहते हैं। स्पेनिश टीमें अक्सर दही हांडी उत्सव में भाग लेने के लिए मुंबई और ठाणे भी आती रहती हैं। ऐसे में अब दही हांडी में ऊंचे ह्यूमन पिरामिड बनाने वाले गोविंदा स्पेन जाकर अपनी परंपरा का प्रदर्शन करेंगे। जाहिर है कृष्ण जन्माष्टमी के बाद मनाए जाने वाले दही हांडी पर्व में प्रतिभागी यानी गोविंदा दही, मक्खन और दूध से भरे मटके को तोड़ने के लिए कई परतों वाला मानव पिरामिड बनाते हैं, जो हमारे देश की एक प्राचीन परंपरा रही है। और इसी परंपरा को महाराष्ट्र में दही हांडी पर्व के रूप में हर साल निभाया जाता रहा है। यही वजह है कि सरकार ने पारंपरिक त्योहारों के उचित संरक्षण पर जोर देते हुए दही हांडी को अब विरासत के रूप में यूनेस्को ले जाने की भी तैयारी कर ली है। यानी जहां कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व संस्कृति, रचनात्मकता और उत्सव का अनूठा संगम है, तो वहीं दही हांडी पर्व पारंपरिक और सांस्कृतिक शिक्षा की भी अद्भुत मिसाल है, जो खास तौर से आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी परंपराओं और विरासत को ग्लोबली शोकेस करने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: यकीनन ये हमारे देश के लिए गर्व की बात है। वैसे गर्व हमें एक और बात को लेकर करना चाहिए। देखिए, अनइवन मॉनसून है हर जगह पर, कहीं बहुत ज्यादा बारिश है, कहीं बहुत कम बारिश हो रही है, लेकिन हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां, चाहे वो एनडीआरएफ है या फिर एसडीआरएफ है या फिर स्थानीय प्रशासन पुलिस की बात अगर की जाए, तो ऐसे हालात में वो लोग अपनी ड्यूटी पूरी मुस्तैदी के साथ निभा रहे हैं।
2: बिल्कुल, आई थिंक विजुअल्स बहुत सारे देखे हैं जीएनटी पर भी। ऐसे ऐसे इलाकों में एनडीआरएफ एसडीआरएफ विद इन टाइम पहुंच जाती है जहां पर उसकी जरूरत पड़ती है। आई थिंक हैट्स ऑफ।
3: और आप ये देखिए, इतने लार्ज स्केल पे रिसोर्सेज कम होने के बावजूद भी वो अपनी जिंदगी जोखिम में डालती है, फिर लोगों को बचाते हैं। बिल्कुल, तो वो बहुत एक
4: मतलब उफनती नदी देखकर ऐसे ही कोई जाना नहीं चाहेगा, लेकिन इनका काम ही यही है। उसके बाद भी देखिए, चाहे जैसा भी सिचुएशन हो, ये जाते हैं और रेस्क्यू करके लाते हैं। वाकई सल्यूट टू देम।
2: बिल्कुल, देखिए बारिश आती है, मौसम सुहाना हो जाता है, लेकिन मुसीबतों का सबब भी बन जाता है। तो देखिए, वही चंबा के भरमौर में दो अलग अलग घटनाओं में करीब 45 श्रद्धालुओं और एक दूल्हे की जान बचाई गई। आप खुद ही सोचिए, आसमान से आफत की बारिश हो रही थी, सामने तेज बहता दरिया था और इसी के बीच ये लोग फंस गए थे। लेकिन देखिए, रेस्क्यू टीम इन्हें कैसे इन लोगों तक पहुंचकर इन्हें सुरक्षित बाहर निकाला, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, जिसके बारे में शगुफ्ता भी कह रही थी कि विद इन मिनट्स वो पहुंच जाते हैं देवदूत बनकर लोगों की जान बचाने के लिए। और इस मुश्किल रेस्क्यू मिशन को कैसे अंजाम दिया गया, साथ ही आपको कुल्लू में सिर्फ 8 मिनट चले उस रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें भी दिखाएंगे और देहरादून का वो रेस्क्यू ऑपरेशन भी, जहां सैलाब के बीच फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान जारी।
3: तो देखिए, हिमाचल प्रदेश के चंबा के भरमौर इलाके में भी दो अलग अलग रेस्क्यू की घटनाओं को अंजाम दिया गया। एक घटना में 40 से 50 श्रद्धालु की उफनती दरिया के बीच जान बचाई गई, तो वहीं एक दूसरी घटना में एक युवक ने जान पर खेलकर दूल्हे की जान बचाई।
5: सैलाब का सामना कर रहे हिमाचल प्रदेश के चंबा के रेस्क्यू की ये दो घटनाएं मिशन जिंदगी का जीता जागता सबूत है। पहली तस्वीर 40 से 50 श्रद्धालुओं की जिंदगी बचाने की है तो दूसरी तस्वीर एक दूल्हे के रेस्क्यू की है। चंबा का भरमौर इलाका इन दिनों फ्लैश फ्लड का सामना कर रहा है। बलोट गांव के 84 चला में बादल फटने के बाद आए सैलाब की वजह से लोहे का एक पुल बह गया। बहाव इतना तेज था कि आने जाने के लिए बनी सड़क भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। सड़क और पुल के बह जाने से मां भगवती खुंडी वाली के दर्शन के लिए जा रहे करीब 40 से 50 श्रद्धालु बीच रास्ते में ही फंस गए। तस्वीरों में देख सकते हैं कि बहाव इतना तेज है कि इसके चपेट में आने से लोग खुद को बहने से बचा नहीं सकते थे। ऐसे मुश्किल वक्त में गांव वाले किसी देवदूत की तरह वहां पहुंचे। सभी श्रद्धालुओं को रास्ता दिखाते हुए गांव वाले आगे बढ़े और सैलाब के किनारे होते हुए एक ऐसी जगह पहुंचे जहां लोगों ने दरिया के ऊपर लकड़ी का एक अस्थायी पुल बनाकर सभी का सुरक्षित रेस्क्यू किया। लकड़ी के अस्थायी पुल पर चलते हुए सभी श्रद्धालु दरिया के दूसरी ओर पहुंचे, जिससे उनकी जान बच सकी। मंगलवार को ज्येष्ठ मंगलवार के अवसर पर माता के डल झील में पवित्र स्नान करने की भी परंपरा है, जिसके चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना रहती है। हालात को देखते हुए ऐसे में सावधानी की जरूरत है। बड़ग्राम में फ्लैश फ्लड के बीच एक और मिशन जिंदगी को अंजाम दिया गया। हुआ यूं कि वहां फ्लैश फ्लड आने से पनाली नाला अचानक विकराल रूप में बहने लगा, जिससे बारात फंस गई। संकट की इस घड़ी में एक स्थानीय लड़के ने साहस दिखाते हुए दूल्हे की जान बचाई। लड़के ने अपनी जान जोखिम में डालते हुए दूल्हे को अपनी पीठ पर उठाया और नाले को सुरक्षित पार करवाया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चंबा से विशाल आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: और चलिए अब आपको दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश में कुल्लू की मणिकर्ण घाटी में रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें, जहां पार्वती नदी में आए उफान की वजह से नदी के बीच एक चट्टान पर चार पर्यटक फंस गए और ये चारों पर्यटक दिल्ली से मणिकर्ण घाटी घूमने गए थे।
2: दरअसल चारों युवक नदी के बीच एक चट्टान पर बैठे थे, जब देखते ही देखते पानी ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। जब खतरे का एहसास हुआ तब तक नदी से बाहर निकलने का रास्ता बंद हो चुका था और फिर चला इन्हें बचाने का रेस्क्यू ऑपरेशन। देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
5: उफंती नदी के बीच चट्टान पर फंसे पर्यटकों के रेस्क्यू की इस गंभीरता को समझना है तो इस तस्वीर को आपको गौर से देखना पड़ेगा। हिमाचल के कुल्लू की मणिकर्ण घाटी में बह रही उफनती पार्वती नदी के बीच चलाए गए रेस्क्यू मिशन की ये छोटी सी झलक है। तस्वीरों में देख सकते हैं चट्टान पर दो युवक खड़े हैं। इनमें से एक दिल्ली का पर्यटक है जो पार्वती नदी में जल स्तर बढ़ने की वजह से वहां फंस गया और दूसरा उसकी जान बचाने के लिए पहुंचा युवक है। ये युवक रस्सी की मदद से उफनते दरिया के बीच अपनी जान जोखिम में डालकर चट्टान तक पहुंचा। पहले ये युवक पर्यटक को रस्सी की मदद से किनारे तक पहुंचाने में मदद करता है और फिर खुद रस्सी के सहारे सकुशल किनारे पर पहुंच जाता है। कुछ देर पहले इसी चट्टान पर चार पर्यटक फंसे थे। ये सभी पर्यटक दिल्ली से मणिकर्ण घाटी घूमने आए थे। बीती दोपहर करीब 3 बजे वो पार्वती नदी के किनारे पहुंचे और नदी के बीच एक चट्टान पर बैठ गए। इसी दौरान अचानक नदी का जल स्तर बढ़ने लगा। कुछ ही देर में पानी चट्टान की चारों ओर पहुंच गया और चारों युवक बीच नदी में ही फंस गए। करीब आधे घंटे तक चारों युवक मदद का इंतजार करते रहे। घटना की जानकारी मिलते ही गांव वाले पहुंचे, प्रशासन को सूचना दी। कसौल के खुंडरा के रहने वाले आपदा मित्र और आपदा ट्रेनर शंकर मंगल के साथ ही गांव वाले रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में जुट गए। रस्सी की मदद से एक युवक चट्टान तक पहुंचा और बारी बारी से चारों पर्यटकों को किनारे तक पहुंचाने में मदद की। करीब 8 मिनट चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन में चारों पर्यटकों को सकुशल नदी से बाहर निकाल लिया गया। राहत की बात ये रही कि हादसे में किसी भी पर्यटक को चोट नहीं आई। कुल्लू से मनिंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: अब देखिए, आफत के साथ साथ राहत की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं अलग अलग जगहों से। पश्चिम बंगाल का आसनसोल इन दिनों जल परीक्षा से गुजर रहा है। लगातार बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। कई मकानों में पानी घुस चुका है तो कहीं कहीं पूरा इलाका जलमग्न नजर आएगा। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग अपने घरों में ही कैद होकर रह गए हैं।
1: हालांकि राहत और बचाव अभियान लगातार चलाया जा रहा है और लोगों को भी सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। वहीं जो लोग अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाहते उन तक राहत टीमें खाना और पानी पहुंचा रही है।

0: पेटी या डब्बा बांध के गिराइए। दूध परोटी हम लोग लेके आए हैं, अभी सिविल डिफेंस का टीम ऑलरेडी यहाँ पे आया हुआ है, कहीं कोई अगर निकलना चाहता है फंस गया तो बताइए। और अभी सबका खाना का प्रबंध हो रहा है, पूरी सब्जी बन रहा है, घबराना किसी को नहीं है।
1: जहाँ सड़कें थीं वहाँ सैलाब बह रहा है, सड़कें पानी पानी हो चुकी हैं, घरों के अंदर कई फीट तक पानी भर चुका है। बारिश ने आसनसोल की तस्वीर बदल दी है। आलम ये है कि लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह गए हैं। ऐसे हालात में सिविल डिफेंस की टीम नहरों को चीरते हुए मदद की उम्मीद लेकर जरूरतमंदों तक पहुँच रही है। आसनसोल के रेलपार इलाके में बाढ़ जैसे हालात के बीच बड़ी संख्या में लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह गए। मदद की आस में लोग टकटकी लगाए राहत बचाव टीम का इंतजार करते रहे। खबर मिलते ही सिविल डिफेंस और क्विक रिस्पांस टीम ने राहत और बचाव अभियान चलाया।
0: ये हम लोग का रेलपार तरी मोहल्ला नई बस्ती है। यहाँ पे घरों में लोग जो फंसे हुए हैं सबको अभी पारोटी दूध दिया गया है। अभी हम लोग सोन पापड़ी गली, काली मंदिर, भातका रोड पोस्ट ऑफिस गली, बोहाल, सब तरफ हम लोग का टीम पहुंचेगा। हम लोग खुद पहुंचेंगे और घर घर में जाके लोगों को हम लोग जो खाने पीने का सामग्री ये सिलसिल चीजें देंगे।
1: राहत बचाव टीम के सदस्य कमर तक भरे पानी में उतरे। तंग गलियों से होते हुए टीम धीरे धीरे आगे बढ़ी। हाथों में खाने पीने का सामान था और मकसद था हर जरूरतमंद तक मदद पहुंचाना। इसके बाद लोगों ने ऊपर से रस्सी से बंधी बाल्टियां नीचे लटकाई। इन बाल्टियों में राहत बचाव टीम ने खाने पीने का सामान रखा और उन्हें जल्द सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने का भरोसा दिया। बाद में नाव की मदद से बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया गया। आसनसोल से अनिल गिरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड डे टुडे।
2: तो चलिए अब आपको दिखाते हैं उत्तराखंड के ऋषिकेश में चले रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें, जहां उफनती बीन नदी के बीच बेहद मुश्किल हालात में एसडीआरएफ के जवानों ने दो लोगों की जान बचाई। हालात कितने मुश्किल भरे थे, बेहद तेज बहाव के साथ बह रही थी बीन नदी की तस्वीरें बयां कर रही हैं। दरअसल सोमवार शाम से ही हो रही तेज बारिश के चलते बीन नदी उफान पर आ गई। नदी के तेज बहाव की वजह से ताल घाटी इलाके की ओर जा रही एक गाड़ी कंट्रोल नहीं रख पाई और देर शाम पानी में बह गई। गाड़ी में दो लोग सवार थे। हादसे की सूचना स्थानीय लोगों ने थाना लक्ष्मण झूला पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू शुरू कर दिया गया।
3: बिल्कुल, आपको बता दें कि रात के अंधेरे में हालात को देखते हुए देखिए मुश्किल कितनी मुश्किल थी, आप इसको अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। हम तस्वीरें देख रहे हैं और देखिए रेस्क्यू किस तरह से किया गया, लेकिन इसकी परवाह किए बिना कि कितने मुश्किल हालात थे, रेस्क्यू टीम रस्सी और जेसीबी की मदद से गाड़ी और उसमें सवार सभी लोगों को रेस्क्यू में जुट गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पानी के तेज बहाव में गाड़ी उल्टी हुई है। रस्सी की मदद से एसडीआरएफ के जवान गाड़ी के ऊपर पहुंचते हैं, गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं और उसमें फंसे दोनों लोगों को रेस्क्यू करने में जुट जाते हैं। काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम ने गाड़ी में फंसे एक व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने थोड़ी देर में दूसरे व्यक्ति को भी निकाल लिया। नदी से रेस्क्यू करने के बाद दोनों घायलों को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया। देखिए हम लोग यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं, लेकिन देख के इन तस्वीरों को खौफ होता है और कितनी मुश्किल से हम सोच भी नहीं सकते कि इसमें कोई जिंदा बच भी पाएगा,
4: रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
3: बिल्कुल
4: ये सब,
3: और लेकिन उसके बावजूद देखिए इस उफनती नदी में ये लोग जाते हैं और उसके बाद दोनों का रेस्क्यू कर लिया गया। और ऐसी तमाम तस्वीरें शगुफ्ता, सुबह से आप सरगम आप भी खबरें पढ़ते होंगे, तो ऐसी ना जाने आजकल कितनी तस्वीरें आ रही हैं।
4: मुझे ना ये देख के जो विजुअल दिमाग में आया, उत्तराखंड में जब आप नैनीताल से आगे जाते हैं ना, तो रास्ते में कई बार ऐसे मौसम में रपटे आते हैं, वहाँ के लोग उस लैंग्वेज को रपटा कहते हैं,
5: रपटा।
4: बार नदी का पानी सड़क पर आता है तो ऐसा ही, ठीक ऐसा ही विजुअल होता है, जल स्तर बढ़ जाता है तो आप क्रॉस नहीं कर पाते हैं, वो बहुत मुश्किल हालात होते हैं। आई थिंक सेम हालात इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं,
6: लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को भी थोड़ा एहतियात बरतना चाहिए। जब आप जान रहे हैं कि
4: है।
6: मौसम ऐसा है, स्थिति ऐसी है, तो आप खुद ब खुद थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं।
4: तो देखिए उधर देहरादून में बाढ़ के बीच फंसे 6 छात्रों के लिए एसडीआरएफ के जवान देवदूत बनकर पहुंचे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, रोंगटे खड़े देने वाली ये तस्वीरें हैं। सभी 6 छात्रों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। असल में विश्वविद्यालय के ये 6 छात्र ट्रैकिंग के लिए स्वर्णा नदी क्षेत्र में गए थे। वापस लौटते वक्त अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और देखते ही देखते स्वर्णा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा, जिसके बाद ये छात्र यहाँ पर फंस गए।
2: तो देखिए, नदी का पानी बढ़ने के चलते सभी 6 छात्र जंगल में फंस गए। हालात बिगड़ते देख इसकी सूचना SDRF को दी गई। सूचना मिलते ही SDRF की रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंची, जहां SDRF के जवानों ने करीब 6 किलोमीटर तक पैदल ट्रैकिंग की और कड़ी मशक्कत करने के बाद सभी 6 छात्रों तक पहुंचने में वो कामयाब रहे।
6: दो तस्वीरें आपके सामने, और दोनों ही तस्वीरों में देखिए किस तरीके से उफनती नदी में फंसे ये लोग, और फिर उसके बाद जो राहत एजेंसियां NDRF SDRF की टीमें मौके पर पहुंची, रेस्क्यू किया गया। लेकिन वही बात है कि लगातार आप किसी भी एरिया में जाते हैं तो आपको पहले से ही, पहली बात तो ये है कि वहाँ के इलाके की पूरी रेकी कर लेनी चाहिए, फिर उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि मौसम विभाग, स्थानीय प्रशासन पहले से इस बात को लेकर चेतावनी देते हैं कि आगे खतरा है या फिर आप आगे नहीं जाइए, या अपने सफर को इस हिसाब से प्लान कीजिए कि कम से कम ऐसी स्थिति से बचा जा सके। तो थोड़ा अलर्ट खुद भी रहने की जरूरत है, सुरक्षा एजेंसियों की वाकई, क्योंकि रात के अंधेरे में इस तरह का रेस्क्यू करना बहुत ही चैलेंजिंग था। चलिए आगे बढ़ते बात उस युवा खिलाड़ी की, जिसने अपने डेब्यू में ही ऐसा कमाल कर दिखाया कि पूरा देश उनकी चर्चा कर रहा है। नाम है आयुष शेट्टी। भारत के इस उभरते हुए शटलर ने इंदिरा गांधी स्टेडियम में खेले जा रहे बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपने डेब्यू को यादगार बना दिया, और वो भी किसी मामूली जीत के साथ नहीं, बल्कि दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी और मौजूदा विश्व चैंपियन को हरा कर।
3: बिल्कुल, और सोचिए जरा कि जिस खिलाड़ी को दुनिया का नंबर वन कहा जाता है, जिसके नाम विश्व चैंपियन का खिताब है, उसी के सामने एक युवा भारतीय खिलाड़ी उतरता है। डेब्यू मैच है, दबाव भी होगा, उम्मीदें भी होंगी, लेकिन आयुष शेट्टी ने इन सबको पीछे छोड़ते हुए अपने करियर की सबसे बड़ी जीत दर्ज कर दी।
5: कहते हैं बड़ी मैच में बड़ा खिलाड़ी वही होता है जो सबसे बड़े खिलाड़ी को मात दे, और आयुष शेट्टी ने वर्ल्ड चैंपियनशिप के अपने डेब्यू में यही कर दिखाया है। उनके सामने थे वर्ल्ड नंबर वन प्लेयर, खेल के डिफेंडिंग चैंपियन और खिताब के सबसे बड़े दावेदारों में से एक शी युकी, लेकिन आयुष ने ऐसा खेल दिखाया कि युकी की एक न चली। पहले गेम में आयुष ने शुरुआत से ही मोर्चा संभाले रखा, क्रॉस कोर्ट स्मैश का जवाब ब्लॉक से और मौका मिलते ही पलटवार, नतीजा पहला गेम आयुष के नाम रहा। दूसरे गेम में शी युकी ने पलटवार किया, यहां आयुष की लय थोड़ी बिगड़ी जरूर, और युकी ने गेम जीतकर मुकाबला भी बराबरी पर ला दिया, लेकिन अब बारी थी आखिरी और निर्णायक गेम की। यहां आयुष ने फिर अपना दम दिखाया, दोनों खिलाड़ियों ने ऐसी जान फूंकी कि सभी की सांसें थम गईं, लेकिन इस बार बाजी आयुष के नाम रही। कहा जा रहा है कि इस मैच के साथ बैडमिंटन की दुनिया में भारत को एक नया सितारा मिल गया है। 61 साल के लंबे इंतजार के बाद आयुष बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष सिंगल खिलाड़ी बने हैं। 61 साल के लंबे इंतजार के बाद आयुष बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष सिंगल्स खिलाड़ी बने हैं। आयुष की कहानी किसी बड़े शहर की चमकदार बैडमिंटन अकादमी से शुरू नहीं हुई, बल्कि उनका सफर कर्नाटक में करकाला के पास बसे छोटे से कस्बे से शुरू हुआ। इस लड़की ने महज 8 साल की उम्र में रैकेट थामा। उनके पहले कोच उनके पिता बने, जिन्होंने घर के आंगन को ही आयुष का पहला बैडमिंटन कोर्ट बना दिया। आज वही लड़का बैडमिंटन का बड़ा सितारा बनने की राह पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो वही मणिपुर की बेटी आर्या ने एशियन एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया है। फिलीपींस के तयाक्ते सिटी में आयोजित चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए आर्या ने न सिर्फ पोडियम पर सबसे ऊपर जगह बनाई है, बल्कि इस इवेंट में भारत के लिए पहला गोल्ड भी हासिल किया है।
7: बिल्कुल, देखिये आर्या की इस कामयाबी के पीछे है वर्षों की मेहनत, रोजाना घंटों की ट्रेनिंग और पिछली नाकामी से सीख लेकर वापसी करने का जज्बा, जिसके दम पर आर्या ने मणिपुर से निकलकर एशिया के सबसे बड़े मंचों में से एक पर तिरंगा फहरा दिया।
8: रफ्तार, लय, संतुलन और हर मोमेंट में गजब का आत्मविश्वास, ये सिर्फ जिम्नास्टिक के स्टेप्स नहीं है बल्कि सालों की मेहनत और तपस्या का नतीजा है। मणिपुर की अरिहा पांगम्मा ने फिलीपींस की तगायते सिटी में इतिहास रच दिया है। 10वीं एशियन एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में सीनियर महिला वर्ग में अरिहा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है।
9: माई वर्क आई वुड से इट्स बिकॉज ऑफ माई पेरेंट, माई कोच, माई फैमिली एंड एवरीवन हु हैव सपोर्टेड एंड गाइडेड मी।
8: अरिहा की ये जीत इसलिए खास है क्योंकि एशियन चैंपियनशिप में सीनियर महिला व्यक्तिगत वर्ग में भारत ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता है। अरिहा ने चैंपियनशिप की तैयारी के लिए करीब 6 घंटे रोजाना ट्रेनिंग की। घंटों तक शरीर को फिट रखना, एक ही मोमेंट को बार बार दोहराना, अपनी तकनीक में सुधार करना और हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाने की कोशिश। माता पिता के चेहरे की मुस्कान, घर की दीवार पर सजे मेडल्स और बधाई देने वालों के ये गुलदस्ते अरिहा के शानदार प्रदर्शन की गवाही देते हैं।
10: एशियन चैंपियनशिप के लिए मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि सेटिस्फेक्शन उसी में है कोचेस का कि ट्रेनिंग में जो उन्होंने किया, चाहे मेडल ले ना ले, ट्रेनिंग में जो उन्होंने किया वो पूरा अगर कंपटीशन में कर पाए तो उससे बड़ी बात कोच के लिए होता नहीं है मेरे ख्याल से। तो मैं भी कोच हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ और उसी परफॉर्मेंस के साथ अरिहा ने हिस्ट्री भी वो कर दिया, क्रिएट कर दिया, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए।
8: मणिपुर की जमीन से निकलकर एशिया के मंच पर भारत का नाम रोशन करने वाली अरिहा की कहानी उन तमाम युवा खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणा है जो बड़े सपने देखते हैं। फिलीपींस के तगायते सिटी में अरिहा ने जो कर दिखाया वो सिर्फ एक गोल्ड मेडल भर नहीं है। अरिहा की कामयाब एरोबिक जिम्नास्टिक के इतिहास में एक नया अध्याय है। पिछली चैंपियनशिप की निराशा से लेकर इस बार की एशियाई चैंपियन बनने तक अरिहा ने साबित किया है कि लगातार मेहनत और लगन से सपनों को हकीकत में बदला जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: चलिए बढ़ते आगे। आपको बता दें कि लद्दाख के जांस्कर इलाके से रोमांच और साहस की ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने भारतीय एडवेंचर स्पोर्ट्स में नया इतिहास रच दिया है। जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स यानी कि जिम एंड डब्ल्यूएस की टीम ने 5921 मीटर ऊंचे माउंट बरमाल पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। खास बात यह है कि चोटी फतह करने के बाद दो पर्वतारोहियों ने वहीं से पैराग्लाइडिंग के जरिए सीधे बेस कैंप तक उतरकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है।
4: 13 सदस्यीय टीम ने कर्नल हेम चंद सिंह की अगुवाई में इस बेहद चुनौतीपूर्ण चैलेंजिंग अभियान को अंजाम दिया। 11 अगस्त को सोनमर्ग से अभियान की शुरुआत हुई और इसके बाद टीम लद्दाख के करगिल के तंगोल इलाके में पहुंची। इस दौरान टीम को तेज हवाओं, माइनस तापमान और मुश्किल हालातों का भी सामना करना पड़ा और इस कामयाबी ने न सिर्फ भारतीय पर्वतारोहण और पैराग्लाइडिंग की नई संभावनाएं खोल दी है बल्कि लद्दाख के जांस्कर क्षेत्र में एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी नए रास्ते खोल दिए।
11: पठानकोट में डैम की झील में शुरू हुआ वाटर स्पोर्ट्स अब सैलानियों का पसंदीदा एडवेंचर स्पोर्ट्स बनने लगा है। स्पीड बोट और पैरासेलिंग की शुरुआत होने के साथ ही यहां पर सैलानियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है और प्रशासन की कोशिश यही है कि पठानकोट की इस झील को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जाए।
8: पहाड़ों के बीच एक खूबसूरत झील और कुदरत के बेमिसाल सौंदर्य के साथ एडवेंचर स्पोर्ट्स का मौका। पठानकोट में रावी नदी पर बने डैम की झील अब पैरासेलिंग और वाटर स्पोर्ट्स के लिए मशहूर हो रही है। रणजीत सागर डैम की झील के किनारे चमरोड़ और शहारपुर कंडी बैराज झील को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टूरिज्म हब बनाने की तैयारी कर ली गई है। डैम प्रशासन ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए झील में स्पीड बोट्स और पैरासेलिंग की शुरुआत की है। इन वाटर स्पोर्ट्स का आनंद लेने के लिए दूर दूर से सैलानी यहां आ रहे हैं।
12: YouTube में देखा था काफी इसका, मैं पहली बार आया हूं यहां पर, मुझे बहुत अच्छा लगा है यहां पर आकर। वो तो ठीक है, सबको अच्छा है, फूड है,
13: बच्चों को लेके डाइट पे गए यहां पर, कैसा लगा?
12: अच्छा लगा, बच्चों को बहुत अच्छा लगा है सारा। हम पहली बार आए वहाँ फैमिली लेकर,
14: घूमने के लिए अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, हॉर्स राइडिंग भी अच्छा है आपका, ऊंट का भी, कैमल का भी अच्छा है। हाँ नहीं अच्छा है।
8: वाटर स्पोर्ट्स की शुरुआत होने के बाद झील पर आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। स्पीड बोट के बाद अब पैरासेलिंग की शुरुआत होने से इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन में लोगों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ी है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए डैम प्रशासन ने पर्यटकों की हिफाजत का भी पूरा इंतजाम कर रखा है। पैरासेलिंग और वाटर स्पोर्ट्स का आनंद लेने के लिए पहले लोगों को गोवा जैसी जगहों का रुख करना पड़ता था, लेकिन अब डैम की झील में शुरू हुए इस वाटर स्पोर्ट्स ने पठानकोट को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर एक नई पहचान दिला दी है। पठानकोट से पवन सिंह, गुड न्यूज टुडे।
7: चलिए फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे क्यों फिनलैंड से मुंबई में आकर बस गया एक परिवार।
15: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: ब्रेक के बाद अब सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आप देख रहे हैं चाय पे चर्चा। इससे पहले आगे बढ़े नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
3: पहाड़ों पर मौसम की मेहरबानी बरकरार, हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश, शिमला में सुहाने मौसम का आनंद ले रहे पर्यटक। वाराणसी में बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर, घाटों पर एनडीआरएफ और जल पुलिस की तैनाती, नमो घाट तक पहुंचा पानी। पवित्र सावन महीने में धूमधाम से जारी कांवड़ यात्रा, जौनपुर में शिव भक्तों पर की गई फूलों की बारिश, प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से बरसाए फूल। नोएडा में यूपी पुलिस की सराहनीय पहल, ऑपरेशन अपराजय का किया शुभारंभ, ऑटिज्म और डाउन सिंड्रोम से प्रभावित स्पेशल बच्चों को दे रहे हैंडमेड ज्वेलरी बनाने की ट्रेनिंग। शाहरुख खान के घर मन्नत में घुसा 8 फीट लंबा सांप, टीम ने किया रेस्क्यू, घर के सभी सदस्य सुरक्षित। देखिए ये तो आप सभी जानते हैं कि फिनलैंड दुनिया के सबसे सुरक्षित और विकसित देशों में गिना जाता है। वहां की बेहतरीन सुविधाएं और कंफर्टेबल लाइफस्टाइल दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। लेकिन अब एक ऐसा मामला सामने आया है जो थोड़ा सा हैरान करेगा आपको, क्योंकि फिनलैंड का एक परिवार अपना देश छोड़कर सीधे मुंबई यानी हमारे देश में बस गया है।
4: बिल्कुल, देखिए जिस देश में रहने का सपना दुनिया के कई लोग देखते हैं, वहां की जिंदगी छोड़कर इस परिवार ने मुंबई को अपना नया घर बना लिया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ है कि वो लोग मुंबई आए हैं, जिसने फिनलैंड के इस परिवार को यहां रहने का फैसला करने पर मजबूर कर दिया? तो चलिए आपको दिखाते हैं इस परिवार की पूरी कहानी।

0: करने का ख्वाब देखता है। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर द फिनिडियन फैमिली के नाम से मशहूर इस फिनिश परिवार ने अपने देश फिनलैंड की ही उस आरामदायक जिंदगी को छोड़कर मुंबई को अपना लिया है। क्यों है ना चौंकाने वाली खबर।
1: वी आर लीविंग वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड फॉर इंडिया।
0: फिनलैंड के इस दंपति का नाम है टोको और जानिका तूनेनेन, जिनका मानना है कि फिनलैंड में भले ही उनकी जिंदगी बेहद शानदार तरीके से चल रही थी, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे दुनिया का सिर्फ एक पहलू देखकर ही बड़े हों। इसलिए उनकी परवरिश को एक नया स्वरूप देने के लिए ही बच्चों को जिंदगी जीने का एक नया नजरिया और दुनिया का असली अनुभव देने के लिए ही वो अपने कम्फर्ट जोन से बाहर आए और पहुँच गए मुंबई। यकीनन फिनलैंड की शांति और सुरक्षा का माहौल छोड़कर मुंबई आना इस फिनिश फैमिली के लिए उनकी जिंदगी का एक बड़ा फैसला रहा। अपने बच्चों को जिंदगी के दूसरे पहलुओं से परिचित कराने के लिए ही जब जुलाई के आखिरी हफ्ते में ये फिनिश परिवार मुंबई पहुंचा, तो बारिश की फुहारों ने मानो उनको वो आराम महसूस कराया जिसकी उनको तलाश थी। जाहिर है ये परिवार उस फिनलैंड से आया है जिसकी स्टेबिलिटी और कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के कारण ही दुनिया में कई लोग वहाँ बसने का ख्वाब पालते हैं। खुद भारतीय भी फिनलैंड समेत कई और विकसित देशों में जाकर बसने की इच्छा रखते हैं। ऐसे में इस फिनिश परिवार का भारत आकर रहने का बेहद जुदा अंदाज हर किसी को प्रभावित कर रहा है। फिलहाल तो जहां पिछले 9 साल से फिनलैंड लगातार वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में पहले पायदान पर बना हुआ है, तो वहीं इसी शांत धरती से आने वाला ये दंपति लहरों के विपरीत चलकर सपनों के शहर मुंबई में बसने के बाद अपने बच्चों को जिंदगी के दूसरे नजरिए को भी प्रैक्टिकली जीना सिखा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: उम्र को महज एक नंबर साबित कर दिखाया है चरखी दादरी के 76 साल के रामकिशन शर्मा ने। जिस उम्र में ज्यादातर लोग खेल के मैदान की ओर देखना तक भूल जाते हैं, उस उम्र में रामकिशन शर्मा मैदान पर उतरकर नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। और खास बात यह है कि उन्होंने मास्टर एथलेटिक्स की शुरुआत भी कोई कम उम्र में नहीं की, वो 65 साल के थे जब उन्होंने इसकी शुरुआत की।
3: बिल्कुल, कहते हैं ना एज इज जस्ट अ नंबर। तो देखिए, देखते ही देखते उनका ये जो जुनून है ऐसी कामयाबी में बदल गया है, तब्दील हो गया कि आज रामकिशन शर्मा की पहचान मेडल मशीन के तौर पर होती है। 76 साल की उम्र में भी उनका जोश और जज्बा किसी युवा खिलाड़ी से कम नहीं है। दौड़ हो, कूद हो या फिर कोई और भी एथलेटिक्स स्पर्धा, रामकिशन हर बार अपनी फिटनेस और मेहनत से सभी को हैरान कर देते हैं।
4: जिस उम्र में ज्यादातर लोग रिटायर होकर आराम की जिंदगी जीने की सोचते हैं, उम्र के उस पड़ाव पर 76 साल के ये बुजुर्ग ट्रैक पर युवाओं को चुनौती दे रहे हैं। बड़ी बात ये है कि रामकिशन शर्मा ने मास्टर्स एथलेटिक्स में अपने करियर की शुरुआत ही 65 साल की उम्र से की है। रामकिशन शर्मा ने अपने इस करियर में क्या उपलब्धि हासिल की है ये मेडल बयां कर रहे हैं। महज 7 से 9 साल के खेल करियर में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में सैकड़ों पदक अपने नाम किए हैं। रामकिशन शर्मा के नाम 401 मेडल और 336 प्रमाण पत्र दर्ज हैं। इनकी उपलब्धियों को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने भी आधिकारिक तौर पर प्रमाणित किया है। इन्हें लोग मेडल मशीन के नाम से जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रामकिशन देश के लिए 10 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 162 गोल्ड, 27 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल इनके नाम है। वहीं राज्य स्तर पर भी इन्होंने 98 गोल्ड मेडल जीते हैं।
5: मैंने 65 साल की उम्र के बाद मास्टर एथलेटिक गेम्स में खेलना शुरू किया था और लगातार 2026 तक खेलता रहा हूँ। इसमें 3 साल में मेडलों आज तक भी अपने नाम रिकॉर्ड है ऑल ओवर इंडिया, और 9 साल में 3 आज तक भी अपने नाम है।
4: रामकिशन सिर्फ एक या दो स्पर्धाओं तक सीमित नहीं है। 100, 200, 400 और 800 मीटर दौड़ के साथ लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप और हर्डल रेस में भी इन्होंने लगातार

0: शानदार प्रदर्शन किया है।
1: कहना चाहूंगा नशे से बचें, नशा नाश की जड़ है ये, जिस तरह दीमक वृक्ष की जड़ों खोखला कर देती है, इस तरह शराब बीड़ी गुटखा तम्बाकू वगैरह तो वो अंदर से सारे फेफड़ों को खराब कर देती है और कैंसर होने का भय होता है। तो सभी से मैं आह्वान करता हूँ कि नशे से बचें और अपना समय पर जल्दी उठें, योगा करें और अपने जीवन को सफल बनाएं।
0: ट्रैक पर लगातार कामयाबी हासिल करने वाले रामकृष्ण शर्मा का अगला लक्ष्य भी बड़ा है। अब वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराने की तैयारी में हैं। चरखी दादरी से प्रदीप कुमार के साथ ब्यौरा रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: देखिए डॉग्स की खूबसूरती आप सभी ने देखी होगी, किसी के लंबे बाल होते हैं तो किसी की प्यारी आंखें तो किसी की मासूमियत देखकर आप भी कह उठते होंगे कितना प्यारा डॉग है। लेकिन जरा सोचिए, अगर दुनिया के सबसे बदसूरत डॉग को चुनने की बकायदा उसके लिए प्रतियोगिता हो तो नजारा कैसा होगा। जी हाँ, अमेरिका के कैलिफोर्निया में कुछ ऐसा ही अनोखा आयोजन किया गया।
3: जी हाँ, देखिए यहाँ डॉग्स ने अपनी खूबसूरती नहीं बल्कि अपने अलग और अनोखे लुक्स के दम पर मुकाबला किया। और खास बात यह रही, इस प्रतियोगिता ने अपना 50वां साल पूरा किया है। लेकिन ये कहानी सिर्फ अजीब दिखने वाले डॉग्स की नहीं बल्कि उन डॉग्स की है जिन्होंने अपनी जिंदगी में मुश्किलों का सामना किया फिर भी अपने मालिकों के दिल में खास जगह बनाई।
4: इस प्रतियोगिता की असली खूबसूरती इन कुत्तों की शक्ल में नहीं बल्कि उनकी कहानियों में है। प्रतियोगिता का संदेश साफ है, कमियां चाहे कितनी भी हो, प्यार के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं। इस अनोखी प्रतियोगिता ने इस साल अपनी 50वीं सालगिरह मनाई। कभी काउंटी मेले के एक छोटे से आकर्षण के तौर पर शुरू हुआ ये आयोजन अब दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहा है। इस प्रतियोगिता में इस साल का खिताब 6 साल की पग जिनी लू ने अपने नाम किया जबकि दूसरे स्थान पर 1 साल की पिंकी रही। इसकी मालकिन लॉरा ब्राउन रेस्क्यू और फॉस्टर डॉग्स के साथ काम करती है। इसी प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रहा 2 साल का ओटो। मुश्किल हालात के बावजूद ओटो ने जिंदगी की जंग जीती और अब प्रतियोगिता के मंच तक पहुँचा। इस प्रतियोगिता का मकसद रेस्क्यू किए गए कुत्तों की देखभाल और उनको अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित करना है। प्रतियोगिता का नाम भले ही सबसे बदसूरत हो लेकिन यहाँ पहुँचे कुत्तों की कहानियाँ हिम्मत संघर्ष और बेशुमार प्यार की है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो चलिए यहाँ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे कहाँ रेगिस्तान में नजर आए एक नहीं बल्कि 2-2 इंद्रधनुष।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: क्या है शिवलिंग की महिमा, क्या शिवलिंग घर में स्थापित कर सकते हैं, शिवलिंग का क्या होगा पूजा विधान और क्या होंगी सावधानियां, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
5: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: देखिए आज गुलजार साहब का जन्मदिन है, वैसे किसी परिचय के मोहताज तो है नहीं, आई थिंक हम सब लोगों ने उनके गाने सुने हैं, गुनगुनाए हैं, रील्स बड़ी बनाई है,
9: गुनगुनाना चाहिए उनके गाने को जो कि आज भी सबके जहन में, मतलब मास्टरपीस।
10: और ये भी लगता है कि चाहे जेंजी हो, मिलेनियल्स हो, सब उनको पसंद करते हैं उनकी शायरी।
9: मेरे को याद आ रहा है, दिल तो बच्चा है जी,
10: बिल्कुल।
3: आपको कौन सा गाना याद आ रहा है?
10: मुझे तो उनकी शायरी, अब आप पूछिए ना, मतलब हम कुछ भी रील्स देखते हैं उसमें गुलजार साहब की शायरी आ रही है, किसी को भेजना होता है तो गुलजार साहब को एकदम से सर्च कर लो,
3: सर्च कर लो,
10: अच्छा है उनका जो
3: रोमांटिक शायरी की जब बात आती है तो गुलजार जी को जरा गूगल कीजिए। मेरा भी ये है कि मैं भी इंस्टा रील्स फर्दर जब रीशेयर करती हूँ, गुलजार जी की शायरी को रीशेयर किया जाता है ना, उनसे बेहतरीन कोई ऑप्शन मिलता ही नहीं।
10: पता नहीं आपको इतने ऐसे नजदीक से देखे, मुझे उनके दो लाइन याद आ रहे हैं कि आपकी आंखों में कुछ राज है, बहुत ही प्यारा गाना है,
3: भी खूबसूरत आपके अंदाज।
10: तो एक से एक गाने उन्होंने लिखे हैं, और मतलब मुझे वही जो दीपिका ने कहा कि भाई कोई भी एरा हो, मतलब ये 90s के किड्स हो या फिर अभी के बच्चे हो, भाई सबको वो पसंद आए हैं। सोचे जरा, शायर धड़कनों के सांस पर 116 चांद रातों की गिनती करता हो, उसके लिए उम्र के नंबर भला क्या मायने रखेंगे। तो वो मशगूल हैं आज भी उन जज्बातों को शब्दों की शक्ल देने में, जिनके जरिए हमने प्यार के एहसास को समझा है। देखिए
11: कि मैं हूं क्यों, अभी मैं क्यों लिखता हूं और मैं क्या करता हूं। मैं कबाड़ी हूं, कबाड़ी आप जानते हैं, मैं कबाड़ी, रात की टूटी हुई नींदें उठाना, वो जो रात को टूट गई नींद, और क्यों टूटी आप जानते हैं, लोगों के साथ होती, आपके साथ भी हुई, और मैं वो जमा कर लेता हूं। मैं कबाड़ी, रात की टूटी हुई नींदें उठाना, जमा करना ख्वाबों के टुकड़े जो सोते में तकिए से गिरे हों, करवटों की सलवटों को, उन क्रम्पल्स को, करवटों की सलवटों को खोलना, तय करके रखना ऐंठने अंगड़ाइयों की, और जिस्म की कच्ची दरारें ढूंढना और चुन के रखना, टूटे फूटे लोग ले जाकर सजा देता हूँ अपने ताकचों में। मैं कबाड़ी जिंदगी का, मैं कबाड़ी जिंदगी का खाली डिब्बों बोतलों में नज़में भर के बेचता हूँ। मैं नज़में ओढ़ कर बैठा हुआ हूँ, मैं वो नज़में ओढ़ कर बैठा हुआ हूँ, ठिठरने लगता हूँ कोना उठाता है कोई जब भी कहीं से, क्योंकि ठंडी हवा आती है। मैं नज़में ओढ़ कर बैठा हुआ हूँ, ठिठरने लगता हूँ कोना उठाता है कोई जब भी कहीं से, मेरे नंगे बदन में कपकपी सी दौड़ जाती है, बिना नज़मों के मैं अंदर से नंगा हूँ, मेरी ओढ़नी, मेरे नंगे बदन में कपकपी सी दौड़ जाती है, बिना नज़मों के मैं नंगा हूँ अंदर से। बहुत सी चोटें हैं तशबीहों में, सिमिलीज में, बहुत सी चोटें तशबीहों के अंदर ढांप रखी हैं, आई कवर्ड देम विद सिमिलीज विच आई डोंट रिवील ओपनली। बिना नज़मों के मैं नंगा हूं अंदर से, बहुत सी चोटें तशबीहों के अंदर ढांप रखी हैं, बहुत से दर्द सूजे सूजे लफ्जों में छुपा रखे हैं मैंने, वो दोज वर्ड्स हैव सोलन जिनके अंदर मैंने वो दर्द छुपा लिए अपने। मुझे जब चोट लगती है, नई एक नज़्म लिखकर ओढ़ लेता हूँ।
3: तो ये राखी के त्योहार में अभी एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त है, लेकिन बाजारों में राखी की रौनक आपको अभी से दिखाई देगी। इस बार राखी की ढेरों वैरायटीज बाजार में आपको मिल जाएंगी।
9: बिल्कुल, देखिए राखी का इंतजार सभी को है, और राखियों की अगर बात करें तो तिरंगे वाले राखियों से लेकर कृष्णा, खाटू श्याम भी काफी ज्यादा पसंद की जा रही है। बच्चों के लिए कार्टून वाली खूबसूरत राखियां भी मौजूद है, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो। चलिए अब आपको दिखाते हैं बाजारों में राखी की कैसी रौनक बिखरी हुई है।
12: कहीं राखी पर बाबा खाटू श्याम की तस्वीर तो कहीं फूलों से सजी राखियां। भाई बहन के रिश्तों में प्यार भरने के लिए कार्टून कैरेक्टर भी तैयार है। रक्षाबंधन अब कुछ ही दिन दूर है और खूबसूरत राखियों से सज गए हैं बाजार। इस बार खाटू श्याम और तिरंगा वाली राखियों की बाजार में खासी डिमांड है। राखियों के डिजाइन में इस बार कुछ अनोखे प्रयोग भी किए गए हैं। बच्चों के पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर भी इस बार राखियों पर दिख रहे हैं। छोटे बच्चों के लिए लोग ऐसी राखियां ही खरीद रहे हैं।
13: इस बार भैया बच्चों के पैटर्न्स बहुत ज्यादा अच्छे आए हैं। नए नए डिजाइन, बच्चों की वैरायटी में बहुत ज्यादा पैटर्न, कॉम्बो की वैरायटीज बहुत ज्यादा आई है इस बार।
14: बच्चों में भी पोकेमॉन वगैरह,
13: बच्चों के अंदर पोकेमॉन, डोरेमोन, कृष्णा जी, लगभग सब वैरायटी है। लबूबू डॉल का ज्यादा क्रेज चल रहा है, जैसे उस टाइप की राखियां बहुत आई है इस बार।
14: खाटू श्याम
13: के बहुत सारे पैटर्न्स आए, बहुत सारे आर्टिकल्स आए उनके।
12: इस साल रक्षाबंधन 28 अगस्त को मनाया जाएगा। त्योहार में अभी एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त है, लेकिन बाजारों में रक्षाबंधन की रौनक अभी से दिखने लगी है। जिन बहनों के भाई दूसरे शहर या देश में रहते हैं, उन्हें डाक से राखी भेजने के लिए बहनें अभी से राखी खरीद रही हैं।
15: हाँ, इस बार बहुत अच्छा है, जैसे कि इन्होंने 15 अगस्त के हिसाब से बहुत अच्छा कलेक्शन लग रहा है। बैंक्स वगैरह और कृष्ण जी वगैरह, भगवान से रिलेटेड।
12: हर राखी अपने आप में खास होती है, लेकिन अहमदाबाद की इन राखियों में देश प्रेम और समाज सेवा का संदेश छिपा है। कुछ राखियों में तिरंगे की छटा दिख रही है, तो कुछ में स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ी अहम जानकारियां हैं। कहीं इमरजेंसी सपोर्ट नंबर का जिक्र है, तो कहीं मन की बात में प्रधानमंत्री के नशा मुक्त से जुड़े संदेश को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। खास बात ये है कि ये राखियां सामाजिक समरसता का भी पैगाम दे रही हैं।
16: 50 साल से मैं ये दुकान के अंदर भागीदार हूँ। पहले मेरा राधेश्याम गुप्ता जी पार्टनर थे, अभी उनका लड़का सुनील गुप्ता मेरा पार्टनर है, और उनके साथ मिलके राम रहीम की जोड़ी का एक पैगाम दुनिया को पहुँचाते हैं कि भाई मैं मुस्लिम होते हुए भी हिंदू बहनों के लिए राखियाँ बनाता हूँ। जिसे इस बार मैंने तिरंगा की राखी के अंदर भी राखियां बनाई कि हर घर घर तिरंगा लहराएगा, इसी तरह ये तिरंगा के अंदर सारे जहां से अच्छा हिंदू सीखा हमारा। उसके बाद मन की बात में जो प्रधान मोदी जी ने कहा है कि 100 सप्ताह मेरा ये व्यसन मुक्ति अभियान चलेगा, तो उनके दिमाग में मेरी जो बात थी वो बैठ गई और मैंने उनके लिए लाखों की तादाद में राखियां व्यसन मुक्ति की बनाई है।
12: सावन माह की पूर्णिमा पर मनाया जाने वाला रक्षाबंधन पर्व भाई बहन के रिश्तों को प्रेम के एक अटूट बंधन से जोड़ता है। इस त्योहार को खास बनाने के लिए बहनें अपने भाइयों की पसंद का ख्याल रखते हुए खास राखियां बाजार से खरीद कर लाती हैं। इस बार बाजार में पारंपरिक राखियों के साथ इको फ्रेंडली और अनोखे डिजाइन वाली राखियां इस त्योहार की खूबसूरती को और बढ़ा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: तो यहाँ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: चीन के बदायूं जारान रेगिस्तान में बारिश के बाद कुदरत का ऐसा नजारा देखने को मिला जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। आसमान में एक साथ दो इंद्रधनुष नजर आए और नीचे सुनहरे रेतीले टीलों के बीच फिरोजी रंग की झील। पूरा नजारा किसी खूबसूरत पेंटिंग जैसा दिखाई दे रहा था,
7: और आप भी इन तस्वीरों में देख सकते हैं, बेहद खूबसूरत। वाकई चीन की ये तस्वीरें हैं उत्तरी हिस्से की, जहां पर मौजूद इनर मंगोलिया के बदायूं जारान रेगिस्तान में ये खूबसूरत इंद्रधनुष नजर आए। बारिश के बाद यहाँ आसमान में एक दुर्लभ डबल रेनबो नजर आया है। एक तरफ आसमान में रंगों के दो घेरे, वहीं दूसरी तरफ रेगिस्तान के बीच मौजूद बदायूं झील के पानी में इनका खूबसूरत प्रतिबिंब। सुनहरी रेत, नीला पानी और आसमान में रंगों की ये लकीरें, इस अद्भुत नजारे ने रेगिस्तान की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा दिया।
8: सच बताऊं तो पहली बार जब इस विजुअल को देखा मुझे लगा ये AI जनरेटेड है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि वाकई इतनी खूबसूरत जगह कहाँ हो सकती है और इतना खूबसूरत नजारा कहाँ दिखाई दिया होगा। तो हम आपको बता रहे हैं, दरअसल ये सच्चाई है और ये चीन में बदायूं जारान में ये दिखाई दे रहा है। वहां का जो रेगिस्तान है बदायूं जारान, वहां पर चीन का ये तीसरा सबसे बड़ा और दूसरा सबसे बड़ा शिफ्टिंग डेजर्ट है। यहाँ दुनिया के सबसे ऊंचे स्थिर रेत के टीलों के साथ साथ बड़ी संख्या में रेगिस्तानी झीलें भी मौजूद है।
1: तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही, मुलाकात होगी कल शाम 5 बजे चाय पर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
9: क्या है शिवलिंग की महिमा, क्या शिवलिंग घर में स्थापित कर सकते हैं, शिवलिंग का क्या होगा पूजा विधान और क्या होंगी सावधानियां, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
6: पहाड़ों पर मौसम की मेहरबानी बरकरार, हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश, शिमला में सुहाने मौसम का आनंद ले रहे पर्यटक। वाराणसी में बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर, घाटों पर NDRF और जल पुलिस की तैनाती, नमो घाट तक पहुंचा पानी। पवित्र सावन महीने में धूमधाम से जारी कांवड़ यात्रा, जौनपुर में शिव भक्तों पर की गई फूलों की बारिश, प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से बरसाए फूल। नोएडा में यूपी पुलिस की सराहनीय पहल, ऑपरेशन अपराजय का किया शुभारंभ, ऑटिज्म और साउंड

0: चिल्ड्रन
1: सिंड्रोम से प्रभावित स्पेशल बच्चों को दे रहे हैंडमेड ज्वेलरी बनाने की ट्रेनिंग। शाहरुख खान के घर मन्नत में घुसा 8 फीट लंबा सांप, टीम ने किया रेस्क्यू, घर के सभी सदस्य सुरक्षित।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: नमस्कार, जेएनडी स्पेशल में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। बाबा बर्फानी के दर्शन तो हर साल बहुत सारे श्रद्धालु करते हैं, लेकिन आज हम आपको लेकर चलेंगे बाबा चट्टानी के पवित्र धाम पर। जी हाँ, बाबा चट्टानी, जिन्हें बूढ़े अमरनाथ के नाम से भी जाना जाता है। बूढ़ा अमरनाथ का धाम जम्मू के पुंछ जिले के मंडी तहसील में मौजूद है और मान्यता इसके साथ ये जुड़ी है कि भगवान शिव ने माँ पार्वती को अमृतत्व की कथा शुरुआत में यही सुनाई थी, जो बाद में अमरनाथ की गुफा में जाकर पूर्ण हुई। अब आप समझ गए होंगे कि बाबा चट्टानी की आध्यात्मिक महिमा क्या है। उसी बाबा बर्फानी का दर्शन के लिए आज देश भर से श्रद्धालुओं का पहला जत्था पहुंचा और आदिकालीन मंदिर में भगवान शिव के चट्टानी स्वरूप के दर्शन कर धन्य हो गया। 28 अगस्त यानी रक्षाबंधन के दिन तक बाबा चट्टानी के धाम पर श्रद्धालुओं का ऐसे ही तांता लगा रहेगा।

0: बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों के बीच 2000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे ने किया बाबा चट्टानी का अद्भुत अलौकिक दर्शन। जम्मू के पुंछ जिले की मंडी तहसील में स्थित बाबा चट्टानी की ख्याति बूढ़े अमरनाथ के नाम से पूरी दुनिया में है। इस साल पहले दर्शन के दौरान पूरे मंदिर परिसर का वातावरण भक्ति की उमंग से सराबोर नजर आया। पुंछ जिले में मंडी तहसील के राजपुरा में स्थित बूढ़ा अमरनाथ मंदिर अत्यंत प्राचीन है और मान्यता है कि यहां आकर बाबा चट्टानी के दर्शन करने वालों को साक्षात भगवान की कृपा प्राप्त होती है।
1: महादेव की जयघोष से यहां मंडी मंदिर में जो यात्रा का पहला जत्था यहां पहुंचा और जहां हजारों की संख्या में लोग आए और कोई लोग राजस्थान से, कर्नाटका से और बंगाल से ये लोग यात्रा आए और 2 से 3 हजार की संख्या में लोग बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए दर्शन के लिए आए हैं।
0: आपको बता दें कि 17 अगस्त से शुरू हुई ये तीर्थ यात्रा 28 अगस्त यानी रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर समाप्त होगी। 11 दिन तक जारी रहने वाली इस तीर्थ यात्रा में देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं और बाबा चट्टानी का दर्शन कर अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। काबिले गौर है कि जम्मू कश्मीर में जब आतंकवाद अपने चरम पर था तो आदिकाल से चली आ रही बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा स्थगित करने पड़ गई थी, लेकिन साल 2005 में इसे दोबारा शुरू किया गया है और तब से हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां आते हैं और यहां विराजमान बूढ़े अमरनाथ का दर्शन कर भाव विभोर हो जाते हैं। यहां पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों का उत्साह श्रद्धा की सारी कहानी बयां कर देता है।
2: हमें यहां पे आके ही पता चल रहा है कि शिवजी बहुत महान थे, मतलब उनकी ये भक्ति बहुत देश देश में जगी हुई है जिससे कि हर जागरूक बहुत ऐसे प्रसन्न हो रहा है और मुझे तो दिल से बहुत ही खुशी हो रही है कि शिवजी महाकाल देवों के देव महादेव है और उनकी भक्ति तो बहुत ही ऊंची है।
3: हमें यहां आके बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे बहुत प्रशासन की व्यवस्था है, बहुत अच्छी है। पहले पहला दिन का पहला दर्शन हम लोग कर रहे हैं और हम पूरे भारत से अलग अलग प्रांत से अलग अलग लोग आए हैं और हम सभी को कहना चाहेंगे कि यहाँ पे पूरे भारत से अलग अलग सब लोग आए और बाबा भोलेनाथ के दर्शन करें और अपना सौभाग्य प्राप्त करें।
0: शिव भक्तों के मन में इस मंदिर के प्रति अगाध श्रद्धा है। पौराणिक मान्यता के मुताबिक भगवान शिव ने माँ पार्वती को अमर कथा सुनाने की शुरुआत यहीं से की थी जो बाद में अमरनाथ गुफा में पूरी हुई थी। यही वजह है कि इस मंदिर को श्रद्धालु केवल एक धाम नहीं बल्कि मोक्ष का महत्वपूर्ण पड़ाव मानते हैं। इस साल पहले जत्थे के रूप में मध्य भारत, कर्नाटक और राजस्थान के भक्त यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पहुँचने के बाद उन्हें अद्भुत सुकून की अनुभूति हो रही है।
4: हम जयपुर प्रांत से आए हैं यहाँ बूढ़ा बाबा के यहाँ यात्रा करने के लिए। बूढ़ा बाबा के मैं तीसरी बार आ रहा हूँ यहाँ पे जो सुविधा मिलती है और यहाँ पे बाबा का जो चमत्कार है उसी की वजह से आज हमने 100 की संख्या से इस यात्रा को शुरू किया था। आज हम 900 लोगों का जत्था जयपुर प्रांत से लेके आ रहे हैं। हमारे को रास्ते में जो सुविधाएं मिली है, भक्तों का जो प्रेम मिला है, काफी सहयोग मिला है, उसका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और अमरनाथ बाबा का सब पे आशीर्वाद बना रहे और सब भक्तों के ऊपर इनकी कृपा बने रहे। जय जय श्री राम, हर हर महादेव।
0: दर्शन शुरू होने के बाद मंदिर में भक्तों की लंबी कतार देखने को मिली। प्रकृति के मनोरम आंचल में मौजूद इस मंदिर की आध्यात्मिक फिजा अद्भुत और अलौकिक महसूस होती है। यहाँ लगातार होने वाले जयकारों की गूंज आपके सारे कष्ट कलेश दूर कर देती है।
1: तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि ये लंबी कतारें जो ये बाबा बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन के लिए देख रहे हैं, दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये लोग सभी लोग बाहर से आए, पूरे हिंदुस्तान लोग से ये लोग आए। लोगों का ये कहना है कि हम बार बार आएंगे और हर अपने पूरे जो हिंदुस्तान के लोगों को यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पे आए और यहाँ बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन करें।
0: बूढ़ा अमरनाथ मंदिर आध्यात्मिक शक्ति के साथ सांप्रदायिक सौहार्द के लिए भी मशहूर है। पुंछ जिले के मंडी तहसील में स्थित इस प्राचीन मंदिर में देश के तमाम हिस्सों से आए श्रद्धालुओं का स्थानीय लोग तहे दिल से स्वागत करते हैं। श्रद्धालुओं का पहला जत्था जब मंडी तहसील पहुंचा तो स्थानीय लोगों ने माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया।
5: 2005 में यात्रा शुरू हुई थी। वैसे तो ये यात्रा सारा साल चलती रहती है, लेकिन श्रावण के मास में इस यात्रा का विशेष महत्व रहता है। और 2005 में जब टेररिज्म यहाँ पर फैल रहा था और उस वक्त इस तरह का संकल्प लिया गया कि ये टेररिज्म कहीं ऐसा ना हो कि मंडी और पुंछ के लोगों को भारत के लोगों से कहीं अलग ना कर दे, जुदा ना कर दे, हमारा जो रिश्ते हैं सांस्कृतिक रिश्ते हैं उनमें कहीं दरार तकरार ना आ जाए, तो भारत के सब लोग सारे निवासी जो हैं ये बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शन और आशीर्वाद करने के लिए यहाँ आए, लेने के लिए यहाँ आए, और स्थानीय निवासियों से भी उनका प्रेम प्यार बढ़े। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो 2005 का संकल्प जो है वो सिद्ध हुआ है। जिस तादाद में स्थानीय निवासी यात्रा का स्वागत कर रहे हैं और उधर से जिस तादाद में यात्रा का नंबर बढ़ता जा रहा है, मेरा ऐसा मानना है कि ये ऐसी यात्रा और लोगों का आना जाना पूरे वर्ष लगा रहना चाहिए, केवल मात्र श्रावण के मास में इतना नंबर ना हो, पूरे साल इतना नंबर हो, जिससे कि यहाँ पे पिलग्रिमेज टूरिज्म की वजह से इकोनॉमी में भी बढ़ोतरी हो, लोग अपने व्यवसाय करें। जब इतने लोग यहाँ पर आएंगे लोगों के व्यवसाय बढ़ेंगे, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन बढ़ेगी और इकोनॉमिक रूप में भी बहुत ज्यादा खुशहाली आएगी, आपसी रिश्ते भी बढ़ेंगे।
0: काबिले गौर है कि इस इलाके में मुस्लिम आबादी 90% से ज्यादा है, लेकिन यहां आने वाले बाबा चट्टानी के भक्तों का जिस गर्मजोशी और अपनापन के साथ स्वागत किया जाता है उससे आपसी भाईचारे का पैगाम पूरे देश में जाता है। स्थानीय लोग श्रद्धालुओं की हर सुविधा का ख्याल रखते हैं और अपनी मेहमान नवाजी से उन्हें ये महसूस नहीं होने देते कि वो अपने घर से दूर आए हैं।
6: सारे इकट्ठे जो है ये एक रिवायत रही है यहाँ हमारी मंडी की, एक रिवायत रही है यहाँ, जो भी बाहर से मेहमान आते हैं ये आज के लिए आज 30 साल से चला आ रहा है। बाहर से लोग आते हैं, बूढ़ा बाबा बूढ़ा अमरनाथ यहाँ यात्रा के लिए आते हैं और यहाँ वेलकम के लिए हम जो है उनका इस्तेमाल करते हैं, जबकि यहाँ इस एरिया में यहाँ जो है 99% मुस्लिम पॉपुलेशन होने के बावजूद भी हम उनका वेलकम करते हैं और ये हमारी रिवायत रही है यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद का एक जो है रिवायत है। हम पूरे भारत के लोगों को ये कहना चाहते हैं कि वो आएँ, खुशी से आएँ और यहाँ बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा करें और ये बहुत बड़ा स्थान है यहाँ पे बाबा बूढ़ा अमरनाथ का, जहाँ कश्मीर जाते हैं लोग और कश्मीर अगर जाएंगे वहाँ यात्रा करने के लिए, अगर बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा नहीं करेंगे उनकी यात्रा अधूरी रहती है। हम पूरे हिंदुस्तान के लोगों से कहना चाहते हैं कि यहाँ मंडी में पुंछ मंडी में आए बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा करने के लिए, तभी उनकी यात्रा जो है बहुत बड़ा स्थान है। यहाँ जो लोग जाने पहचाने लोग हैं, फलाने लोग हैं, वो कहते हैं यहाँ बहुत दुनिया आती थी, इस वक्त भी लोग आते हैं, अमन अमान है यहाँ, शांति है, बगैर किसी हिजत से आए हम यहाँ उनका इस्तेमाल करेंगे और वेलकम करेंगे।
0: आपको बता दें कि श्रद्धालुओं का पहला जत्था जो यहाँ पहुँचा है उसे जम्मू स्थित भगवती नगर यात्री निवास से सोमवार को सूबे के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। सोमवार को जब पहला जत्था निकला तो शिव भक्तों का जोश देखने लायक था।
7: 2005 आयोजित की जा रही यात्रा केवल पर्वतों और घाटियों को पार करने वाली यात्रा नहीं है, ये हमारे बाहरी पथ से कहीं अधिक हम सबके अंतर्मन की यात्रा है। बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की ये तीर्थ यात्रा स्वयं के भीतर से चेतना को पहचानने की भी यात्रा है। यह पावन तीर्थ यात्रा भगवान शिव की ओर अग्रसर होने की भी यात्रा है, जो श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी स्थल की दिव्य ऊंचाइयों में विद्यमान।
0: भगवान भोले के जो भक्त बाबा चट्टानी का दर्शन करने यहां आते हैं उनका मकसद सिर्फ एक मंदिर में आकर दर्शन की औपचारिकता को पूरा करना नहीं होता, बल्कि प्रकृति के अनुपम सौंदर्य के बीच ये यात्रा अमृतत्व और दिव्य रहस्य की एक सतत कथा है, जिसे समझना एक अद्वितीय अनुभव है। तभी तो तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए देश भर के शिव भक्त श्रद्धा से सराबोर होकर पहले जम्मू और फिर पुंछ आते हैं और फिर पुंछ से 25 किलोमीटर की दूरी तय कर इस प्राचीन धाम पहुंचते हैं। जम्मू पहुंचने के बाद से ही शिव भक्तों का उत्साह चरम पर पहुंच जाता है।
8: जी कहां से आए?
9: जयपुर से।
8: जयपुर से आए, कब से आ रहे बाबा की यात्रा?
9: 30 साल है साहब।
8: तो कैसा लग रहा है इस बार की व्यवस्था, ये सब चीज?
9: अपन ये चाहते हैं कि पूरा देश आए और जो अपने महादेव जिनकी यहाँ पे स्थापना हुई थी, किसी कारण से यहाँ पे वो लुप्त हो गए, जिनकी पूजा होना बिल्कुल बंद हो गई थी, जो आज यहाँ के किया है लोगों ने, जनता ने अपने देश के लिए, और उसको जागृत किया है, और आज यहाँ लाखों की तादाद के अंदर बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा कर रहे हैं। बहुत ही हर्ष और उल्लास की बात है और बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।
8: आप कहाँ से आए?
10: गंगा शर्मा है मेरा नाम और मैं जयपुर से हूँ।
8: कब से आ रही है यात्रा में?
10: मैं अभी, मुझे 2 साल हो चुके हैं।
8: अच्छा, कैसा लग रहा है कि एक बॉर्डर में महादेव का वहाँ पर वास होना, पुंछ, और अपने आप में ही आपको पता है और कितना बदलाव हुआ है, आप यहाँ पर पूरे अपने सब मित्रों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ यहाँ पहुँचे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे?
10: मेरे को यहाँ पे मतलब जब भी सेकेंड बार थर्ड बार आई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसमें। मैं चाहती हूँ कि मैं हर बार आऊँ यहाँ पे देखने, और पिछले साल की तुलना में जो जब पहले गए हुए हैं उसकी तुलना में इस बार की संख्या बहुत अच्छी है, और मैं चाहती हूँ कि इससे ज़्यादा बढ़कर ये संख्या बढ़े, और मैं चाहती हूँ सभी जितने भी हमारे देशवासी हैं वो सब यहाँ आए, दर्शन करें, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लें।
11: हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात है कि हमारा सौभाग्य, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, पर मैं अपने आप को प्राउड फील करती हूँ कि मैं इस यात्रा का हिस्सा हूँ, और मैं तो यही चाहूँगी कि देश का यूथ एजुकेशन और इन सिस्टम से अलग होकर देश और धर्म के लिए भी थोड़ा वो करे और इन यात्राओं में आए, जिससे अपने वो सनातन धर्म को पहचाने।
12: तीसरी बार इस यात्रा में आ रहा हूँ, यहाँ के लोगों के जीवन में भी इस यात्रा से बहुत बदलाव आया है। यहाँ के लोग ऐसे कहते थे कि बूढ़ा बाबा अमरनाथ की वजह से हमारे जो यहाँ डेवलपमेंट हुआ है, हमारी यहाँ जो रोडों का विकास हुआ है, पहले पुंछ जैसी जगह पहुँचना बहुत ही मुश्किल था, वहाँ के लिए ओवरब्रिज बनाया है सरकार ने, वहाँ की रोडों की मरम्मत करी है, तो अब जो समय 8 घंटे लगता था वहाँ 4 घंटे में
8: बिल्कुल। अभी ही टनल ओपन हुआ है, स्पेशली टनल एक ओपन किया है, कैसे देखते हैं?
12: तो ये बहुत ही सुखद है। इस यात्रा का उद्देश्य लोगों के जीवन का विकास करना भी है, धर्म का।
0: दरअसल प्रकृति की गोद में स्थित ये मंदिर सिर्फ एक धाम नहीं बल्कि हिंदुस्तान की आध्यात्मिक धरा का साक्षात प्रमाण है। यहाँ भगवान शिव आदिकाल से ही चट्टान के रूप में विराजमान है, इसलिए इन्हें बाबा चट्टानी भी कहा जाता है।
13: पुंछ से मंजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
14: बाबा चट्टानी का महात्म्य 2 संदर्भों में मिलता है। एक तो ये कि जो लोग पवित्र अमरनाथ की गुफा में स्वास्थ्य या किसी और कारण से नहीं पहुंच पाते, वो लोग बाबा चट्टानी के दर्शन कर भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा ये कि जो लोग अमरनाथ की पवित्र गुफा में जाकर बाबा बर्फानी के दर्शन करते हैं, वो अगर बाबा चट्टानी के भी दर्शन कर ले तो उनकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आपको बता दें कि बूढ़ा अमरनाथ से जुड़ी आस्था की कहानी सतयुग में रावण के दादा ऋषि पुलस्त से जुड़ी है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक जम्मू कश्मीर की रानी चंद्रिका ने भगवान शिव को यहां बूढ़ा अमरनाथ कहकर पुकारा था, तभी से बाबा चट्टानी को बूढ़ा अमरनाथ कहकर पुकारा जाने लगा। क्या है पूरी कथा, जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
15: अद्भुत है भगवान शिव के दोनों धाम, कश्मीर में बाबा बर्फानी है तो यहाँ जम्मू में बाबा चट्टानी। अमरनाथ में बर्फ से बना प्राकृतिक शिवलिंग तो यहाँ पुंछ में सफेद चमचम शिवलिंग। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए कठिन चढ़ाई है तो बाबा चट्टानी तक पहुँचना आसान। अमरनाथ की लंबी चली यात्रा के बाद अब 10 दिनों तक बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन की होड़ है। जैसा पावन धाम वैसी पुरानी इसकी कहानी जो शुरू हुई सतयुग से। कहते हैं सतयुग में एक दिन जब महर्षि पुलस्त ध्यान में बैठे थे तो उन्हें बोध हुआ कि पांचाल पहाड़ी में वो जगह मौजूद है जहां भगवान शिव ने पहली बार देवी पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। पुलस्त इस जगह पर पहुंचे और छोटी सी गुफा में घोर तप शुरू किया। तब से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। पुलस्त ने कहा कि जहां आपके दर्शन हुए हैं उसे ऐसा धार्मिक महत्व प्रदान करें कि युगों युगों तक आपके भक्त यहां आते रहें। इसके बाद भगवान शिव अदृश्य हुए तो एक चट्टान की गुफा में भगवान शंकर का स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ जिसकी बनावट चट्टान जैसी थी। इसके बाद पुलस्त ऋषि ने यहां वर्षों तप किया। कहते हैं इसी वजह से इस पूरे क्षेत्र का नाम पुलस्त नगरी पड़ गया जो अपभ्रंश होते होते पुंछ हो गया। इसी वजह से श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर के साथ बहने वाली नदी का नाम पुलस्त गंगा पड़ा जिसे आज भी पाप नाशनी गंगा मानकर हजारों श्रद्धालु स्नान करते हैं और हर साल बड़ी तादाद में भोले के भक्त अपने आराध्य का आशीर्वाद पाने यहां आते हैं।
16: पहली बार आए हैं यहाँ, बहुत अच्छा लग रहा है।
17: अरेंजमेंट कैसे लगे?
16: अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ, व्यवस्था भी बहुत अच्छी हुई है।
18: बहुत ही खुशी और हर्षोल्लास का विषय है आज कि हम प्रतिवर्ष ये साहसिक यात्रा करते हैं। ये यात्रा अलग अलग प्रांत की प्रतिदिन निकलती है। आज पहला जत्था मध्य भारत प्रांत और हमारे दो तीन प्रांतों का इकट्ठा होकर निकल रहा है। ये 27 तारीख तक यात्रा लगातार चलेगी। अलग अलग प्रांतों के लोग इस यात्रा में प्रतिदिन सहभागी बनेंगे।
17: अरेंजमेंट कैसे लगे यहाँ? जो
18: बहुत शानदार, बहुत उत्तम अरेंजमेंट है।
15: चट्टान जैसे शिवलिंग की वजह से नाम पड़ा बाबा चट्टानी, लेकिन बाबा बूढ़ा अमरनाथ नाम पड़ने की कथा बड़ी ही दिलचस्प है। कहते हैं करीब 2000 साल पहले पुंछ जिले का गांव लोरन तब के जम्मू कश्मीर राज्य की राजधानी थी जिस पर उस समय रानी चंद्रिका का शासन था। रामकाज में निपुण रानी चंद्रिका अत्यंत दयालु एवं शिव भक्त थी जो हर साल सावन में अमरनाथ गुफा में हिमलिंग की पूजा करने के बाद व्रत तोड़ती थी। लेकिन एक साल मौसम खराब होने से अमरनाथ जाने के सभी मार्ग बंद हो गए। ये सोच कर कि किसी भूल से भोलेनाथ रुष्ट हैं, रानी ने अन्न जल त्याग दिया और बीमार हो गए। कहते हैं एक दोपहर रानी ने सपने में एक बूढ़े साधु को देखा जिन्होंने रानी से उसके महल के 10 मील दूरी पर मौजूद शिव का लुप्त स्थान पर पूजा करने को कहा। इसके ठीक बाद श्वेत कपड़ों में एक साधु ने रानी को दर्शन दिए और अपने साथ उस गुफा तक लेकर आए जिसमें 4 द्वार बने थे। मंदिर सामने आते ही भगवान शिव के रूप में आए बूढ़े साधु गायब हो गए और इसके बाद रानी ने उन्हें बूढ़ा अमरनाथ कहकर पुकारा जो प्रचलित हो गया।
19: थोजत जिला से प्रथम बार ऐसा हुआ है कि हम 95 की संख्या के अंदर हम यात्री यहाँ पहुँचे हैं और जितने भी राजस्थान के विभिन्न राज्य और भी राज्य हैं वहाँ से भी बहुत सारी संख्या के अंदर इतने उत्साह से लोग आए हैं यहाँ पे। जो उनके मन में जो उनके उत्साह है वो यहाँ उत्साह आज देखने को मिल रहा है कि विभिन्न राज्य के जो लोग हैं सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। पूरे अरेंजमेंट्स सब उच्च स्तर के अरेंजमेंट्स है जिसके अंदर अभी प्रथम वर्ष ऐसा हुआ है कि पूरा इसमें सिस्टम डिजिटल कर दिया है। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के अंदर अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो पहले ऑफलाइन हुआ करते थे, अभी ऑनलाइन सिस्टम करने से अधिक सुलभता हो गई है। जो भी यात्री है अगर यात्रा करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद अपने आप जो भी संगठन के है वो आपको संपर्क कर लेंगे।
20: सबके अंदर बहुत अच्छी भावना है, श्रद्धालु सारे और बहुत भक्ति भाव से भरे हैं और अमरनाथ बाबा की यात्रा के लिए सब रवाना हुए हैं और सबको बहुत ही अच्छा लग रहा है।
21: लोगों में बहुत उत्साह है। जैसे बर्फानी बाबा की यात्रा शुरू की थी तो 2005 से लेकर इस यात्रा को आरंभ किया गया है तो अभी एक विशाल वटवृक्ष के रूप में काफी संख्या में लोग यहाँ आना आरंभ हो गए हैं और आने वाले समय में जैसे बर्फानी बाबा में जाते हैं वैसे ही लोग इस यात्रा में जाना आरंभ कर लेंगे जिसका प्रतिरूप अभी आप देख ही रहे हैं आपके सामने। कम से कम 60-70 हजार लोग इस वर्ष जाएंगे इन 7 दिनों में। अलग अलग प्रांत से अलग अलग की सारणी बनाई हुई है, वो अलग अलग आ रहे हैं।
15: कहते हैं स्वयं भगवान शिव द्वारा दिखाया गया ये स्थान सैकड़ों वर्षों के बाद भी एक बार फिर अदृश्य हो गया था जिसे दक्षिण भारत के एक साधु स्वामी चंद्रचूड़ मुनि ने उजागर कर वर्षों तक यहां तप किया था। इस मंदिर के साथ ही पूर्व दिशा में स्वामी चंद्रचूड़ मुनि की समाधि भी बनाई गई है। सावन में कुल 12 दिनों तक बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा चलती है और श्रद्धालु दर्शन करते हैं, लेकिन इस दर्शन पूजन के साथ ही जुड़ी है पवित्र छड़ी यात्रा जो पुंछ के 10 नामी अखाड़े से निकलती है और बड़े ही धूमधाम से बूढ़ा अमरनाथ मंदिर तक जाती है। सीमा सुरक्षा बल, मंदिर ट्रस्ट और जिला प्रशासन द्वारा छड़ी का स्वागत कर उसे आदर सहित मंदिर प्रांगण में ले जाया जाता है। पुलिस द्वारा छड़ी को सलामी दी जाती है और फिर छड़ी को बूढ़े अमरनाथ शिवलिंग पर स्थापित किया जाता है जो रक्षाबंधन के एक दिन बाद तक विराजमान रहती है। इस छड़ी यात्रा के साथ ही मंदिर में 3 दिवसीय यात्रा एवं मेला शुरू हो जाता है जो रक्षाबंधन के एक दिन बाद तक जारी रहता है। दशनामी अखाड़े से निकलने वाली छड़ी यात्रा इस धाम को एक अलग आभा देती है और बाबा के भक्तों को एक अलग अनुभव। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
14: चलिए इसी के साथ जी एनटी स्पेशल की आज की हमारी बेहद खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: क्या है शिवलिंग की महिमा, क्या शिवलिंग घर में स्थापित कर सकते हैं, शिवलिंग का क्या होगा पूजा विधान और क्या होंगी सावधानियां, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: नोएडा पुलिस ने स्पेशल बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ऐसी पहल की शुरुआत की है जो खाकी की संवेदनशील तस्वीर पेश करती है। ऑपरेशन अपराजय के तहत ऑटिज्म और डाउन सिंड्रोम से प्रभावित बच्चों को हैंडमेड ज्वेलरी बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसका मकसद सिर्फ हुनर सिखाना नहीं बल्कि इस हुनर को रोजगार और आत्मनिर्भरता से जोड़ना भी है। जहां मोती धागे और रंग बिरंगे सामान अब सिर्फ ज्वेलरी का हिस्सा नहीं बल्कि दिव्यांग बच्चों के सपनों और आत्मविश्वास की कड़ी बन रही है। ऑपरेशन अपराजय के तहत करीब 25 से 30 बच्चों के साथ इस पहल की शुरुआत की गई है। बच्चों को हैंडमेड ज्वेलरी बनाने की बारीकियां सिखाई जा रही हैं ताकि उनकी क्रिएटिविटी को एक हुनर में बदला जा सके। किसी के हाथों में मोती है तो कोई धागों को एक खूबसूरत डिजाइन में पिरो रहा है। हर छोटी कोशिश के पीछे एक बड़ी उम्मीद है कि दिव्यांग बच्चों को उनके क्षमता के मुताबिक हुनर मिले और उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने का मौका मिले। नोएडा पुलिस की ये पहल ये बताती है कि जरूरत सिर्फ सहानुभूति की नहीं है, सही अवसर और भरोसे की भी है।
4: बच्चे ऑटिस्टिक हैं, इनके लिए सब कुछ इतना आसान नहीं होता, समाज से इन्हें बराबर जोड़े रखना भी आसान नहीं होता, लेकिन इसमें अब कई लोग आगे आ रहे हैं। आज इन बच्चों को लेकर एक नई शुरुआत हुई है, आप तमाम सारी चीज़ें देख रहे हैं। इन चीज़ों के ज़रिए बच्चे क्या कुछ नया बना सकते हैं, क्या कुछ नया सीख सकते हैं, उसकी एक कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तरह तरह की चीज़ें, चाहे वो ब्रेसलेट हो या दूसरी चीज़ें हो, वो इन बच्चों को आज यहाँ पर बनाना सिखाया जा रहा है। हैंडीक्राफ्ट से इनको जोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि ये बच्चे जब थोड़ा बड़े हों तो समाज में अलग थलग महसूस ना करें या खुद अपने लिए कोई काम कर सके, कोई काम चुन सके। यहाँ पर आपको तमाम बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं और नोएडा पुलिस की शुरुआत है, ऑपरेशन अपराजय शुरू किया गया था, जिसमें था कि कोई भी बच्चा हारे नहीं, निराश ना हो। उसके तहत आप देखिए, जो ऑटिस्टिक बच्चे जिनके लिए बात करना, अपनी बात को समझाना, सब कुछ कह देना बहुत आसान नहीं होता, वो बच्चे यहाँ पर आए हैं और कोशिश की जा रही है इंडस्ट्री के साथ मिलकर, इंडस्ट्री के लोग इन बच्चों को ट्रेनिंग दें, उन्हें सिखाएं, उन्हें आगे बढ़ाएं, ताकि ये बच्चे जब समाज में पहुँचे तो ये कहीं से भी खुद को अलग थलग महसूस ना करें। आसान नहीं होता इनके लिए चीज़ों को कभी कभी ठीक से पकड़ना या होल्ड करना भी। अभी आपको यहाँ तमाम बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं तो सिर्फ चुपचाप बैठे हैं, कुछ काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन ये इनके लिए एक शुरुआत है। आगे जाकर जब लगातार इनकी ये ट्रेनिंग होती रहेगी तो ये हो सकता है एक दिन ऐसा है जब अपने पैरों पर खड़े हो पाएं, क्योंकि अमूमन माना जाता है कि ऐसे बच्चे हमेशा फिनेंशियली कम से कम किसी ना किसी पर डिपेंड होते हैं। इन कोशिश यही कही जा रही है कि आने वाले वक्त में ये बच्चे अपने आप को इंडिपेंडेंट बना पाएं, अपनी कमाई वो खुद कर पाएं। मनीष और असिया, न्यूज़ टुडे, नोएडा।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: पहाड़ से मैदान तक मौसम की मेहरबानी बरकरार, शिमला में सुहाने मौसम का आनंद ले रहे पर्यटक का चंडीगढ़ में जमकर बरसे बदरा। वाराणसी में बढ़ा गंगा नदी के जलस्तर, घाटों पर एनडीआरएफ और जल पुलिस की तैनाती, नमो घाट तक पहुंचा पानी। गुजरात के नवसारी में मछुआरों के लिए कोस्ट गार्ड के जवान बने देवदूत, 9 मछुआरों को किया एयरलिफ्ट, एनडीआरएफ भी राहत अभियान में रही शामिल। पवित्र सावन महीने में धूमधाम से जारी कांवड़ यात्रा, जौनपुर में शिव भक्तों पर की गई फूलों की बारिश, प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से बरसाए फूल। शाहरुख खान के घर मन्नत को 60 फीट लंबा सांप, टीम ने किया रेस्क्यू, घर के सभी सदस्य सुरक्षित।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़।
1: राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा। अर्जुन पुरस्कार के लिए चुने गए 17 खिलाड़ी। फुटबॉल के दिग्गज आय अरुमाया नायागम को अर्जुन अवार्ड की लाइफ टाइम कैटेगरी में सम्मान। बैडमिंटन में गायत्री गोपी चंद और त्रिशा जौली को दिया जाएगा अर्जुन अवार्ड। महिला डबल्स में भारत की प्रमुख प्लेयर्स में रही हैं दोनों खिलाड़ी। चेस के क्षेत्र से दिव्या देशमुख और विदित गुजराती होंगे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित। दिव्या ने 2025 में FITF वुमेन्स वर्ल्ड कप का खिताब जीतकर हासिल की थी बड़ी उपलब्धि। एथलेटिक्स में तेजस्विन शंकर को अर्जुन अवार्ड। हाई जंप और डेकाथ्लोन में कर चुके हैं भारत का प्रतिनिधित्व। द्रोणाचार्य अवार्ड के नामों का भी ऐलान कर दिया गया है। नियमित कैटेगरी में एथलेटिक्स के परवीर सिंह, बॉक्सिंग के छोटे लाल यादव और शूटिंग की नेहा चौहान का नाम। क्रिकेटर ऋषभ पंत ने रच दिया इतिहास। टेस्ट में सबसे तेज 106 लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने। पंत ने श्रीलंका के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट के चौथे दिन कराया कारनामा। सिर्फ 4,918 बॉल का सामना करते हुए 100 छक्के लगे। पर्वतारोहण और पैराग्लाइडिंग कर जिम एंड WS ने रच दिया इतिहास। तेरह सदस्यीय टीम ने भारतीय एडवेंचर के इतिहास में हासिल की बड़ी उपलब्धि। इस दल को 11 अगस्त तक किया गया था टर्न। लद्दाख के करगिल क्षेत्र में स्थित है माउंट डेल्टा 41 जो माउंट बर्मल के नाम से भी मशहूर है। सेना के बाद अग्निवीरों को नौकरी, बिजनेस और करियर में मिलेगी नई राह। देश का पहला नेशनल सिविल रिहैबिलिटेशन फोरम अग्निमंथन ऐप लॉन्च। 4 साल की सैन्य सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को नागरिक जीवन में बेहतर रोजगार, स्किल डेवलपमेंट और करियर के अवसर उपलब्ध कराना है मकसद। देश के ज्यादा से ज्यादा अग्निवीरों तक अग्निमंथन की पहुंच मुहैया कराने की योजना। सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को मेंटोरशिप और गाइडेंस देगी ऐप। सेना ने जम्मू कश्मीर के रामबन में पूर्व सैनिक सम्मेलन और वीर नारी सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 150 से ज्यादा पूर्व सैनिक और कई वीरांगनाओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में देश के लिए बलिदान देने वाले सैनिकों की पत्नियों को भी सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस का पहला आधिकारिक एंथम खाकी का सितारा हुआ रिलीज। अमिताभ बच्चन की आवाज और शंकर महादेवन के संगीत से सजा है एंथम। अमिताभ बच्चन ने शेयर किया उत्तर प्रदेश पुलिस का पहला आधिकारिक एंथम खाकी का सितारा। पुलिस के साहस, सेवा, महिला सुरक्षा, आपदा, राहत और जनसेवा की दिखाई गई है झलक। 6.5 मिनट में पुलिस की पूरी कहानी। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार, लोगों की फरियाद सुनी, जल्द निपटारे के आदेश। उत्तर प्रदेश सरकारी नौकरियों की भर्ती को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। भर्ती प्रक्रिया को अब वार्षिक कैलेंडर के तहत किया जाएगा समयबद्ध। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज से 2 दिवसीय दिल्ली दौरा। कल दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इंडिया जापान बिजनेस कॉन्क्लेव में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापानी प्रतिनिधि मंडल से करेंगे मुलाकात। जापानीज कंपनियों के उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का युवाओं को संदेश, बोले युवाओं को निकल रहा है ड्रग और स्मार्टफोन का नशा। कोटा के 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट दोस्तों की अनोखी सक्सेस स्टोरी। हेल्दी स्नैक्स स्टार्टअप शुरू करने के लिए छोड़ी मुंबई की नौकरी, आज लंदन दुबई तक फैला बिजनेस। 2024 में एनीवे के नाम से शुरू किया हेल्दी स्नैक्स स्टार्टअप, आज 800 से ज्यादा दुकानों तक पहुंच चुके हैं कंपनी के प्रोडक्ट्स। उत्तरकाशी में स्थित दयारा बुग्याल में दूध मक्खन की अनूठी होली धूमधाम से मनाया पारंपरिक बटर फेस्टिवल। प्रकृति का आभार जताने के लिए पारंपरिक महोत्सव का आयोजन किया गया। समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर 28 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में होती है दूध मक्खन मठा की होली। इस दुनिया के अनोखे उत्सव में शामिल होने के लिए जुड़ते हैं देश विदेश से हजारों पर्यटक। मोगा जिले की 39 वर्षीय हरप्रीत कौर ने पेश की जीव प्रेम की एक अनोखी मिसाल। अपने घर में रोजाना करीब 500 चिड़िया और अलग अलग पंक्षियों को देती है दाना।

एक पहिए पर साइकिल चलाते हुए 11,000 किलोमीटर की यात्रा करने निकला है शख्स। रास्ते में हर इंसान इस अनोखी साइकिल यात्रा को देखकर हैरान। मेघालय के मुख्यमंत्री संगमा ने पाइन होम इको सस्टेनेबल प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। मेघालय के बावा लंगवेरा गांव में करीब 6 करोड़ की लागत से बना है ये प्रोजेक्ट। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला स्थित प्रसिद्ध श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर पहुंचे क्रिकेटर तिलक वर्मा, भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन पूजन किए। मध्य प्रदेश के युवक ने साइकिल से 45 दिन में तय की 3,000 किलोमीटर की दूरी, अगले एक साल में 22,000 किलोमीटर की दूरी तय करना लक्ष्य। भारत को विश्व गुरु बनाने का संदेश लेकर 25,000 किलोमीटर की यात्रा पर निकला है युवक, 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा का लक्ष्य। उत्तराखंड दिल्ली राजस्थान होते हुए गुजरात पहुंचे मध्य प्रदेश के बैतूल के रहने वाले निखिल, पशुपतिनाथ समेत सभी बड़े धामों के दर्शन कर रहे हैं। उत्तराखंड के कुटकी की खेती और उससे जुड़े काम के लिए बागेश्वर में किसान दया दानू का सम्मान, खेती से 400 से ज्यादा महिलाओं को स्वरोजगार। बागेश्वर जिले की कपकोट तहसील के किसान दया दानू का मिला तिलू रतौली सम्मान। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में स्थित प्राचीन बाबा बूढ़ा अमरनाथ की 12 दिवसीय वार्षिक यात्रा का आज दूसरा दिन आस्था की यात्रा में भक्तों का जोश आया। पवित्र यात्रा में नजर आई सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल। मंडी में मुस्लिम समुदाय ने बूढ़ा अमरनाथ यात्रियों के पहले जत्थे का जबरदस्त स्वागत किया। पुंछ में बाबा बूढ़ा अमरनाथ को लेकर सुरक्षा के चाकचौबंद इंतजाम, यात्रियों की सुरक्षा और आवाजाही में रखी जा रही निगरानी। राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना किया था पहला जत्था, बाबा चट्टानी के दर्शन करने को लेकर उत्साहित नजर आए भक्त। 28 अगस्त तक जारी रहेगी आस्था की यह यात्रा, रक्षाबंधन के दिन होगा 12 दिवसीय यात्रा का समापन। भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग में से एक का भीमाशंकर महादेव मंदिर में मुड़ रहे हैं श्रद्धालु। सावन में भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए दूर दूर से पहुंचते हैं श्रद्धालु। करीब 110 किलोमीटर दूर सहयाद्री पर्वत श्रृंखला पर लगभग 3,250 फीट की ऊंचाई पर स्थित है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। मान्यता है कि भगवान शिव ने यहां पर राक्षस भीम या त्रिपुरासुर का वध किया था। नागर और हेमद पंथी शैली का मिश्रण है काले पत्थरों से बना यह मंदिर। कुदरत की गोद में बसे इस ज्योतिर्लिंग में सावन महीने में होती है ज्यादा भीड़। यातायात नियंत्रित करने के लिए करीब 7 किलोमीटर दूरी पर बनाए गए हैं 4 पार्किंग स्थल। औरैया में खास मनोकामना के साथ 4 युवा कर रहे हैं कांवड़ यात्रा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के देश का प्रधानमंत्री बनने की कामना करने को लेकर 120 किलोमीटर की यात्रा पर युवा। मथुरा जिला कारागार में महिला कैदी बना रही हैं इको फ्रेंडली राखियां। यानी इको फ्रेंडली राखी बनाने में फूल और सब्जियों की बीजों का किया जा रहा इस्तेमाल। रोजाना 200 राखियों का निर्माण कर रही है महिला कैदी। कश्मीर की सालों पुरानी परंपरा असंग तराश को जीवित रखते हुए बांदीपुरा को एक कारीगर बेजान पत्थरों को सुंदर और कलात्मक चीजों में बदलने में माहिर। लगभग 5 दशक से असंग तराश परंपरा से बनाई जा रही हैं कई सुंदर कलाकृतियां। देहरादून में लगातार बारिश के बीच टपकेश्वर यानी इको फ्रेंडली राखी बनाने में फूल और सब्जियों की बीजों का किया जा रहा है इस्तेमाल। रोजाना 200 राखियों का निर्माण कर रही है महिला कैदी। कश्मीर की सालों पुरानी परंपरा असंग तराश को जीवित रखते हुए बांदीपुरा को एक कारीगर बेजान पत्थरों को सुंदर और कलात्मक चीजों में बदलने में माहिर। लगभग 5 दशक से असंग तराश परंपरा से बनाई जा रही है कई सुंदर कलाकृतियां।

देहरादून में लगातार बारिश के बीच टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास बहने वाली तमसा नदी उफान पर, तेज बहाव के चलते एक घंटे तक बाधित रही यात्रा। आसनसोल के रेल पार में बाढ़ जैसे हालात, 100 से ज्यादा घर प्रभावित, युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन। सिविल डिफेंस और QRT टीम की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, करीब 30 लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। लगातार बारिश से पुरलिया में सड़कें जलमग्न, लोगों से एहतियात बरतने की अपील। पिछले दो दिनों में बांकुर जिले में हुई भारी बारिश, खतरे के निशान के ऊपर बह रही है नंदेश्वरी नदी, उफान पर फंसा ट्रैफिक। देहरादून में बाढ़ में फंसे 6 छात्रों के लिए SDRF के जवान बने देवदूत, सभी छात्रों का सफल रेस्क्यू। विश्वविद्यालय के 6 छात्र ट्रैकिंग के लिए गए थे स्वर्णा नदी, अचानक बढ़ गया नदी का जलस्तर। बंगाल के आसनसोल में भारी बारिश से अंडरपास में भर गया पानी, वाहन की आवाजाही ठप। भारी बारिश से कई इलाकों में भर गया पानी, लोगों की बढ़ी परेशानी। भदोही में भारी बारिश जारी, 12वीं तक के सभी स्कूल्स में छुट्टी। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित शक्तिपीठ नैना देवी मंदिर में हुई जबरदस्त बारिश, श्रावण अष्टमी मेले के दौरान मंदिर की पौड़ियों में लगा पानी। श्रावण अष्टमी मेले के उपलक्ष्य में बड़ी संख्या में शक्तिपीठ धाम पहुंचे श्रद्धालु, बारिश की वजह से श्रद्धालुओं के जोश में कोई कमी नहीं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हो रही है बारिश का असर, ऋषिकेश में बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर। दिल्ली के सर्वोदय कन्या विद्यालय की 4 छात्राओं ने मनाया हेल्दी फ्रूट चॉकलेट, मुस्कान, काजल, मिष्टी और अक्षी ने मिलकर तैयार किया हेल्दी फ्रूट चॉकलेट। स्कूली छात्राओं के बनाए गए इस फ्रूट चॉकलेट में डाले गए नेचुरल डार्क चॉकलेट, वहीं पर चॉकलेट के भीतर ड्राई फ्रूट्स। अपन 2 की सफलता पर इमरान हाशमी की पत्नी का इमोशनल पोस्ट, परवीन हाशमी ने फिल्म इंडस्ट्री में इमरान की मेहनत, अनुशासन और सब्र की तारीफ की। राम गोपाल की अगली फिल्म पुलिस कंपनी में नजर आएंगे अभिनेता हर्षवर्धन राणी, 90 के दशक में मुंबई अंडरवर्ल्ड की पृष्ठभूमि पर बनी है फिल्म। प्रेम कीटाणु का टीजर हुआ जारी, फिल्म में वीर पहाड़िया, अपार शक्ति खुराना नजर आए। इमरान हाशमी की अपकमिंग फिल्म गनमास्टर G9 की रिलीज डेट आई निकलकर सामने, फिल्म 27 नवंबर को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। रणवीर सिंह की प्रलय की शूटिंग हो गई शुरू, इस फिल्म में रणवीर सिंह के साथ लूका फेम एक्ट्रेस कल्याणी भी नजर आएंगे। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में अनोखा नजारा, सुपर हीरो बनकर निकले सैकड़ों बाइकर्स, बच्चों के लिए खिलौने लेकर पहुंचे। बीमार बच्चों के चेहरे पर आई मुस्कान, बाइकर्स ने बच्चों को बांटी खिलौने, बच्चों ने अपने हीरो को गले लगाया। का खास चिल्ड्रंस डे मिशन रहा, सड़कों पर बाइक रैली का शानदार नजारा, डिज्नी किरदारों में नजर आए बाइकर्स। अस्पताल, बच्चों ने सुपर हीरो संग खिंचवाई तस्वीरों, बच्चों के चेहरे पर आई मुस्कान, बना खुशी का माहौल। कावा क्लब की पहली को 20 साल हुए पूरे, 2006 से लगातार जारी है नेक पहल, हर साल बच्चों के लिए जुटते हैं बाइकर्स। इस्तांबुल में फॉर्मूला विंग वर्ल्ड चैंपियनशिप आयोजित हुआ, इटली के एलेसांद्रो टोमासी ने जीता पुरुषों का वर्ल्ड टाइटल। इटली के फ्रांसेस्को

0: कैप पुजो को लगातार दूसरी बार मिला सिल्वर। फ्रांस के थॉमस प्राउस ने जीता ब्रॉन्ज, सीजन के चीफ फॉर्म लगातार जारी रखी। फ्रांस की वैना पिकोट्रा ने महिला वर्ग का जीता खिताब, हवा की चाल ने बदल दिया पूरा मुकाबला। इटली की मौजूदा चैंपियन स्पानु को सिल्वर से करना पड़ा संतुष्ट, मुश्किल हवाओं के बीच पिकोट से हुआ कड़ा मुकाबला। भविष्य में गुब्बारे से अंतरिक्ष तक पहुंच सकते हैं और हो जाएगी आसान। B2 स्पेस का रॉकून सिस्टम हुआ तैयार। बड़े गुब्बारे से रॉकेट 35 किलोमीटर ऊपर जाएगा, फिर अंतरिक्ष की ओर होगा लॉन्च। छोटे सैटेलाइट्स के लिए नई उम्मीद, गुब्बारे से सैटेलाइट टेस्टिंग भी होगी, खर्च भी कम होगा। अंतरिक्ष की सीमा तक पहुंचाएगा गुब्बारा, बड़ा स्ट्रेटोफोर्स का गुब्बारा होगा इस्तेमाल, सैटेलाइट और रॉकेट को मिलेगी ऊंचाई। से पहले सैटेलाइट की टेस्टिंग, तेज यूवी रेडिएशन और तापमान की भी होगी जांच। चीन में दुर्लभ शॉवल नोज ने मछली ने 12 बच्चे को दिया जन्म। ये मछली दुनिया में बहुत कम बची है और गंभीर खतरे में। ये सभी बच्चे 31 जुलाई को चीन के सान्या में पैदा हुए। वैज्ञानिकों ने इन्हें कृत्रिम तरीके से पैदा करने में कामयाबी हासिल की। इस मछली को IUCN ने गंभीर खतरे वाली प्रजाति माना है, अगर बचाव नहीं किया गया तो विलुप्त हो सकती है मछली। मछलियों के माता पिता को 2018 में कानूनी तरीके से एक्वेरियम में लाया गया था, तब से उनकी नस्ल और सेहत का लगातार रिकॉर्ड रखा जा रहा है। इस कामयाबी से वैज्ञानिकों को लुप्त होती समुद्री प्रजातियों को बचाने में मिलेगी मदद। इन 12 बच्चों पर रिसर्च करके आगे इनके संरक्षण की नई तकनीकें विकसित की जाएंगी। तुर्की में टमाटरों का लाल समुंदर, तेज धूप में सूखने के बाद इन्हें भेजा जाता है यूरोप। इन सूखे टमाटरों से यूरोप में पिज्जा की सॉस बनती है। यूरोप की इस कई स्वादिष्ट डिश में तुर्की के इन टमाटरों का स्वाद। टमाटर तोड़ने वाले मजदूर 40 डिग्री से ज्यादा तापमान में करते हैं काम। तेज गर्मी के बीच वे टमाटर तोड़ते हैं, काटते हैं और नमक लगाकर सुखाते हैं। टमाटरों की फसल के लिए तुर्की के अलग अलग इलाकों से मौसमी मजदूर पहुंचते हैं। गर्मी के महीनों में कई दिनों तक खेतों में रहकर वो तैयार करते हैं फसल। टमाटरों को पहले आधा काटकर खेतों में धूप के नीचे फैलाया जाता है, सूखने के बाद इन्हें पैक करके यूरोप भेजा जाता है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
2: नेपाल में तनाव है, घुसपैठियों पर आर पार है। अवैध घुसपैठियों की बस्ती को जलाने का सच। चरखी दादरी गैंगवार का नया वीडियो। बड़ी बहन का मां जैसा प्यार। वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए नवजोत रंधावा के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
0: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: नवसारी के समुद्र से इस वक्त एक बड़ी और राहत भरी खबर निकलकर सामने आई है। समुद्र की ऊंची लहरों के बीच डूबती बोट में फंसी 9 जिंदगियों को सुरक्षित बचा लिया गया है। देखिए दरअसल तोलाई बंदर से वलसाड की तरफ करीब 2.5 नॉटिकल माइल्स दूरी पर कृष्णपुर गांव की जयमाला बोट समुद्र में डूब गई। महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड इस बोट पर उस वक्त कुल 9 मछुआरे सवार थे और बोट के समुद्र में डूबने की खबर मिलते ही जिला प्रशासन ने बिना किसी देरी के रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। एनडीआरएफ की टीम ने बचाव अभियान में पूरी ताकत झोंक दी, उसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि देखिए समुद्र की चुनौती बड़ी थी, ऐसे में कोस्ट गार्ड से मदद मांगी गई। इसके बाद समुद्र में फंसी इन 9 जिंदगियों को बचाने के लिए कोस्ट गार्ड ने मोर्चा पूरी तरीके से संभाला। कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर समुद्र के ऊपर पहुंचा और शुरू हुआ जिंदगी बचाने का वो ऑपरेशन जिसमें हर पल बहुत अहम था। समुद्र की लहरों और मुश्किल हालात के बीच कोस्ट गार्ड के जवानों ने शानदार तालमेल और साहस दिखाते हुए सभी 9 मछुआरों का सफल एयरलिफ्ट रेस्क्यू करके दिखाया है और एक एक करके सभी मछुआरों को सुरक्षित समुद्र से बाहर निकाल लिया। और सबसे बड़ी बात इसमें यह रही कि ये जो खबर है सभी 9 मछुआरे सुरक्षित रहे। हिमाचल प्रदेश के चंबा के भरमौर इलाके में भी 2 अलग अलग रेस्क्यू की घटनाओं को अंजाम दिया गया। एक घटना में 40 से 50 श्रद्धालुओं की उपंती दरिया के बीच जान बचाई गई, तो वहीं पर एक दूसरी घटना में एक युवक ने जान पर खेलकर दूल्हे की जान बचाई।
2: सैलाब का सामना कर रहे हिमाचल प्रदेश के चंबा के रेस्क्यू की ये 2 घटनाएं मिशन जिंदगी का जीता जागता सबूत है। पहली तस्वीर 40 से 50 श्रद्धालुओं की जिंदगी बचाने की है तो दूसरी तस्वीर एक दूल्हे के रेस्क्यू की है। चंबा का भरमौर इलाका इन दिनों फ्लैश फ्लड का सामना कर रहा है। बलोट गांव के 84 चला में बादल फटने के बाद आए सैलाब की वजह से लोहे का एक पुल बह गया। बहाव इतना तेज था कि आने जाने के लिए बनी सड़क भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। सड़क और पुल के बह जाने से मां भगवती खुंडी वाली के दर्शन के लिए जा रहे करीब 40 से 50 श्रद्धालु बीच रास्ते में ही फंस गए। तस्वीरों में देख सकते हैं कि बहाव इतना तेज है कि इसके चपेट में आने से लोग खुद को बहने से बचा नहीं सकते थे। ऐसे मुश्किल वक्त में गांव वाले किसी देवदूत की तरह वहां पहुंचे। सभी श्रद्धालुओं को रास्ता दिखाते हुए गांव वाले आगे बढ़े। और सैलाब के किनारे होते हुए एक ऐसी जगह पहुंचे जहां लोगों ने दरिया के ऊपर लकड़ी का एक अस्थायी पुल बनाकर सभी का सुरक्षित रेस्क्यू किया। लकड़ी के अस्थायी पुल पर चलते हुए सभी श्रद्धालु दरिया के दूसरी ओर पहुंचे, जिससे उनकी जान बच सकी। मंगलवार को ज्येष्ठ मंगलवार के अवसर पर माता के डल झील में पवित्र स्नान करने की भी परंपरा है, जिसके चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना रहती है। हालात को देखते हुए ऐसे में सावधानी की जरूरत है। बड़ग्राम में फ्लैश फ्लड के बीच एक और मिशन जिंदगी को अंजाम दिया गया। हुआ यूं कि वहां फ्लैश फ्लड आने से पनाली नाला अचानक विकराल रूप में बहने लगा, जिससे बारात फंस गई। संकट की इस घड़ी में एक स्थानीय लड़के ने साहस दिखाते हुए दूल्हे की जान बचाई। लड़के ने अपनी जान जोखिम में डालते हुए दूल्हे को अपनी पीठ पर उठाया और नाले को सुरक्षित पार करवाया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चंबा से विशाल आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
7: पहाड़ से मैदान तक मौसम की मेहरबानी बरकरार, शिमला में सुहानी मौसम का आनंद ले रहे पर्यटक, चंडीगढ़ में जमकर बरस रहे बादल। वाराणसी में बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर, घाटों पर NDRF और जल पुलिस की तैनाती, नमो घाट तक पहुंचा पानी। गुजरात के नवसारी में मछुआरों के लिए कोस्ट गार्ड के जवान बने देवदूत, 9 मछुआरों को किया एयरलिफ्ट, NDRF भी राहत अभियान में रही शामिल। पवित्र सावन महीने में धूमधाम से जारी कांवड़ यात्रा, जौनपुर में शिव भक्तों पर की गई फूलों की बारिश, प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से बरसाए फूल। चीन के उपो वाटरफॉल पर दिखा शानदार नजारा, 1000 से ज्यादा पर्यटकों ने एक साथ गाया पारंपरिक गीत, प्राकृतिक खूबसूरती और संगीत का संगम।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
7: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। जम्मू कश्मीर के पुंछ में स्थित पवित्र बूढ़ा अमरनाथ मंदिर, जहां भोलेनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। हर हर महादेव के जय घोष से पूरा मंडी क्षेत्र गूंज रहा है। यात्रियों के पहले जत्थे के पहुंचने से वहां आस्था, उमंग और उल्लास का माहौल है। ऐसे में आज की हमारी जो पहली गुड न्यूज है वो है बाबा बूढ़ा अमरनाथ का पहला दर्शन। जी हाँ, श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन की तरह ही बूढ़ा अमरनाथ के पवित्र दर्शन को लेकर उत्साहित हैं। बड़ी संख्या में लोग दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रशासन ने यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं।

0: हर हर महादेव बम बम भोले के जयकारों के साथ पुंछ का मंडी इलाका गूंज रहा है। आज बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था मंदिर पहुंचा, तो ये नजारा बेहद भव्य नजर आया। बाबा के दर्शन को लेकर भक्तों में भारी उत्साह देखने के लिए मिला।
1: हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे बहुत प्रशासन की व्यवस्था है, बहुत अच्छी है। पहले पहला दिन का पहला दर्शन हम लोग कर रहे हैं और हम पूरे भारत से अलग अलग प्रांत से अलग अलग लोग आए हैं और हम सभी को कहना चाहेंगे कि यहाँ पे पूरे भारत से अलग अलग सब लोग आए और बाबा भोलेनाथ के दर्शन करें और अपना सौभाग्य प्राप्त करें।
0: देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। हर कोई बाबा के दरबार में मत्था टेकने और अपनी मनोकामना पूरी करने की अर्जी लगाने आया है।
2: यात्रा हर बार अच्छी तरीके से होती है। यहाँ राजौरी जिले में भी काफी अच्छी कार्यकर्ताओं की व्यवस्था रहती है और काफी अच्छी कार्यकर्ताओं का यहाँ का स्वभाव है और कार्यकर्ता बहुत ही जोश उत्साह के साथ आने वाले यात्री और यात्रियों का 2000 लोगों का या 2000 से प्लस लोगों का यहाँ जत्था है।
3: किस तरह का रहा पूरा सफर आपका वो बताएंगे?
2: पूरा सफर बढ़िया रहा, जगह जगह सुंदरबनी में, अखनूर में जगह जगह रुके गए, कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत भव्य स्वागत किया।
0: पुंछ के मंडी में स्थित बूढ़ा अमरनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव के दर्शन का विशेष महत्व है। यात्रा के दौरान श्रद्धालु कठिन रास्तों और पहाड़ी इलाकों से गुजरते हुए बाबा के दरबार तक पहुँचते हैं।
4: नाटका, राजस्थान और कुछ अन्य प्रदेशों से यात्री आए हैं। एक बड़े ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न में यात्रा यहाँ पर आती है इस सावन के महीने में और बड़ी अच्छी संख्या में यात्रा आई पहुंची है। सबने ये बताया कि पिछले साल जो पहले दिन की यात्रा थी आज उससे डबल से भी ज्यादा है। के साथ बड़ी श्रद्धा के साथ बड़ी वार्मथ के साथ यात्रियों के स्वागत के लिए यहाँ मंदिर के प्रवेश द्वार के ऊपर सब लोग पहुंचे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो यात्रियों की संख्या दुगनी हुई है इसी प्यार मोहब्बत की वजह से ही हुई है।
0: बूढ़ा अमरनाथ यात्रा की सबसे खूबसूरत तस्वीरों में से एक सद्भाव है। पुंछ में स्थानीय मुस्लिम समुदाय की ओर से यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं का विशेष स्वागत किया गया। ये तस्वीर बताती है कि घाटी में इंसानियत और भाईचारे का रिश्ता कितना मजबूत है।
5: मंडी की एक रिवायत रही है, यहाँ जो भी बाहर से मेहमान आते हैं, ये आज 30 साल से चला आ रहा है। बाहर से लोग आते हैं, बूढ़ा अमरनाथ यहाँ यात्रा के लिए आते हैं और यहाँ वेलकम के लिए हम जो है उनका इस्तेमाल करते हैं। जबकि यहाँ इस एरिया में यहाँ जो है 99% मुस्लिम पॉपुलेशन होने के बावजूद भी हम उनका वेलकम करते हैं और ये हमारी रिवायत रही है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद का एक जो है रिवायत है। हम पूरे भारत के लोगों को ये कहना चाहते हैं कि वो आए, खुशी से आए और यहाँ बाबा बूढ़ा अमरनाथ।
0: बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुँच रहे हैं। बारह दिनों की इस यात्रा में अलग अलग जत्थों में यात्री रवाना किए जाएंगे। पहले जत्थे के पुंछ पहुंचने के दौरान यात्रा मार्ग में जगह जगह चाक चौबंद सुरक्षा नजर आई। पुंछ पहुंचने के बाद श्रद्धालु प्राचीन बूढ़ा अमरनाथ मंदिर के पास पहले पुलसत्य नदी में पवित्र डुबकी लगाते हैं, इसके बाद मंदिर पहुंचकर दर्शन करते हैं। आस्था के सफर के साथ सुरक्षा व्यवस्था को भी पूरी तरह मजबूत किया गया है। यात्रा मार्ग पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ाई गई है और श्रद्धालुओं की आवाजाही पर लगातार नजर रखी जा रही है ताकि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के अपनी यात्रा पूरी कर सके।
6: पूरे एन रूट हम रजौरी पुंछ रेंज की बात करें तो सुंदरबनी से यहाँ तक रोड जो जितनी भी है वहाँ पे सिक्योरिटी के पूरे जो सिक्योरिटी इंतजाम वो किए गए हैं, पूरा डोमिनेशन हर जगह पे है। फिर जहाँ पे कहीं लंगर लगे हुए हैं, कहीं चाय का इंतजाम रखा हुआ है या लॉजमेंट सेंटर्स हैं, जैसे यहाँ पे भी हैं, काफी लॉजमेंट सेंटर हैं, हर जगह पे सिक्योरिटी का 3-tier सिक्योरिटी हमने रखी हुई है, सीसीटीवी कवरेज रखी हुई है। हमने पूरी ऐसी इंतजाम किए हुए हैं कि किसी भी कोई जो घटना नहीं हो सकती है, ये हम आपको इस चीज के निश्चित करवाएं।
0: श्रद्धालु की बढ़ती आवाजाही से स्थानीय बाजार गुलजार है और लोगों की आमदनी के अवसर बढ़े हैं। यानी बूढ़ा अमरनाथ यात्रा जहां आस्था और भक्ति का केंद्र बनी है, वहीं स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और कारोबार का भी बड़ा सहारा साबित हो रही है। पुंछ से मंजीत सिंह, गुड न्यूज टुडे।
7: राखी आने वाली है और राखी का त्यौहार विश्वास, सुरक्षा और अपनत्व की मजबूत डोर को दिखाता है। राखी के धागे सिर्फ भाई बहन के रिश्ते को ही नहीं बल्कि भाईचारे, देशभक्ति और सामाजिक एकता का संदेश भी दे रहे हैं। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है स्कूली बच्चियों ने फौजी भाइयों के लिए पिरोया प्यार। जी हाँ, उधमपुर के स्कूली छात्राओं ने सीआरपीएफ जवानों की कलाई पर राखी बांधकर उन्हें देश की रक्षा के लिए धन्यवाद दिया। तो वहीं अजमेर के बाजारों में खाटू श्याम, कार्टून कैरेक्टर और तिरंगे वाली राखियों की खूब मांग है।

0: दिन रात देश की रक्षा में पहरा देते ये जवान अपनों से दूर रहकर भी देशवासियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाते हैं। सरहद हो या संवेदनशील इलाका, हर मोर्चे पर मुस्तैद रहते हैं। इन जवानों का हौसला बढ़ाने और त्योहार पर देश की रक्षा में डटे रहने के लिए उधमपुर की स्कूली बहनें धन्यवाद देने पहुंची और उनकी कलाई पर राखी बांधी। बेटियों की इस राखी ने जवानों को भी भावुक कर दिया और रक्षाबंधन का यह पर्व रिश्तों के साथ देशभक्ति के रंग में भी रंग गया
1: है। और हमने देखा कि कैसे हमारे जवान सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर अपनी सेना तैनात कर हमारे हाईवे में ड्यूटीज दे रहे थे। तो हमने सोचा क्यों ना हम उनके साथ रक्षाबंधन मनाएं। वो अपनी बहनों के साथ मिलने नहीं जा पाते, क्यों ना हम उनकी बहन बनकर वो हमारी पूरी देश की सेवा करते, तो हमारा तो फर्ज बनता है कि उनके साथ रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर पाएं।
2: जो हमारे हाईवे पे जो सीआरपीएफ के जवान खड़े थे, आज हमने उनको राखी बांधी है। और मेरा यही कहना है सारी बहनों को, ये अपने घर नहीं जा पाते, ये अपने बहनों से नहीं मिल पाते, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि इनकी लंबी उम्र के लिए अपने घर बैठे कामना करें सारे।
0: रक्षाबंधन के त्योहार में अब कुछ ही दिन बाकी है, ऐसे में देश भर में बहनें सरहद पर तैनात अपने भाइयों के लिए राखियां तैयार करने में जुटी हैं। इन राखियों में सिर्फ रंग बिरंगे धागे नहीं बल्कि बहनों का प्यार, दुआएं और अपने भाइयों की सलामती की कामना जुड़ी है। और ऐसी ही प्यार की मिसाल अहमदाबाद में देखने के लिए मिल रही है, जहां राखियां बेहद प्यार और भाव के साथ तैयार की जा रही हैं। राखी में एकता और सामाजिक सौहार्द का संदेश भी है।
3: इस बार मैंने तिरंगा की राखी के अंदर भी राखियां बनाई कि हर घर घर तिरंगा लहराएगा, इसी तरह ये तिरंगा के अंदर सारे जहां से अच्छा हिंदू सीखा हमारा। उसके बाद मन की बात में जो प्रधान मोदी जी ने कहा है कि 100 सप्ताह मेरा ये व्यसन मुक्ति अभियान चलेगा, तो उनके दिमाग में मेरी जो बात थी वो बैठ गई और मैंने उनके लिए लाखों की तादाद में राखियां व्यसन मुक्ति की बनाई है। क्या कि युवा धन बचे और अपना जो युवा धन बचे और देश का विकास हो।
0: राजस्थान के अजमेर में भी रक्षाबंधन को लेकर तैयारी जोरों पर है। बाजार पूरी तरह सज चुके हैं, दुकानों पर तरह तरह की राखियां दिखाई दे रही है। बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर वाली राखियां हैं तो खाटू श्याम वाली राखियां भी ग्राहकों का दिल जीत रही हैं।
4: बच्चों के अंदर पोकेमोन, डोरेमोन, कृष्णा जी, लगभग सब वैरायटी है। लबूबू डॉल का ज्यादा क्रेज चल रहा है, जैसे उस टाइप की राखियां बहुत आई है इस बार।
5: खाटू श्याम
4: की बहुत सारे पैटर्न आए, बहुत सारे आर्टिकल्स है उनके। राखियां अपने पास 10 रुपए से शुरू है, जैसा आप लेना चाहो, जिस तरह की वैरायटी आप लेना चाहो, सारी अवेलेबल है अपने पास।
0: रक्षाबंधन पर्व के रंग बाजार ही नहीं कारागार में भी दिखाई दे रहे हैं। मथुरा की जेल में बंदी सुधार को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी कड़ी में रक्षाबंधन पर्व को ध्यान में रखते एक सामाजिक संस्था ने कैदियों को इको फ्रेंडली राखियां बनाने का प्रशिक्षण दिया, जिसमें महिला कैदियों ने इको फ्रेंडली राखी बनाई। इन राखियों में फूल सब्जियों के बीजों का भी प्रयोग किया गया है, ताकि रक्षाबंधन त्योहार के बाद इस्तेमाल की गई राखियों को घर के गमले में या गार्डन में मिट्टी में डाल देने से उससे फूल या सब्जी का पौधा तैयार हो सके।
6: राखियां बनाई जा रही हैं। राखी बनाने का प्रशिक्षण खजानी वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से
0: क्या है, ताकि रक्षाबंधन त्योहार के बाद इस्तेमाल की गई राखियों को घर के गमले में या गार्डन में मिट्टी में डाल देने से उससे फूल या सब्जी का पौधा तैयार हो सके।
6: हिंदुओं द्वारा राखियां बनाई जा रही हैं। राखी बनाने का प्रशिक्षण खजानी वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से प्रदान किया गया है। यह प्रशिक्षण करीब 20 महिलाओं को दिया गया है। प्रतिदिन 100 से 200 राखियों का निर्माण जिला कारागार में किया जा रहा है। पिछले वर्ष की तरह ही इस बार भी इको फ्रेंडली राखियां बनाई जा रही हैं।
0: मथुरा में जहां कारागार में इको फ्रेंडली राखी तैयार हो रही है, तो वहीं अलीगढ़ में डाक विभाग की ओर से राखी के पर्व को लेकर बहनों के लिए खास पहल की गई है। डाक विभाग ने रक्षाबंधन के अवसर पर 10% की छूट का प्रावधान किया है, तो राखियों के लिए वाटरप्रूफ पार्सल की भी व्यवस्था की गई है। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: और छत्तीसगढ़ की दुर्ग पुलिस ने यात्रियों की सुरक्षा और चालकों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए यातायात पुलिस ने ऑटो और ई रिक्शा के लिए QR कोड आधारित डिजिटल पहचान की नई व्यवस्था शुरू की है। QR कोड से यात्री सफर से पहले वाहन और ड्राइवर की जानकारी ऑनलाइन वेरीफाई कर सकेंगे, इससे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। इसी से जुड़ी आज की हमारी अगली यानी कि तीसरी गुड न्यूज है, और वो है QR कोड से ऑटो चालकों की पहचान, सुरक्षा का इंतजाम। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अब ऑटो और ई रिक्शा से सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दुर्ग पुलिस ने नई पहल शुरू की है। दुर्ग पुलिस ने सड़कों पर चलने वाले ऑटो और ई रिक्शा में QR कोड लगाने की प्रक्रिया की शुरुआत की। इसके लिए ऑटो रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू किया गया। पुलिस का लक्ष्य आगामी एक सप्ताह के भीतर जिले में संचालित सभी ऑटो और ई रिक्शा का 100% रजिस्ट्रेशन पूरा करना है। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद प्रत्येक ऑटो और ई रिक्शा को एक QR कोड उपलब्ध कराया जाएगा। इस QR कोड में वाहन और उसके चालक से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी मौजूद रहेगी। दुर्ग पुलिस के मुताबिक इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के साथ किसी आपराधिक घटना या आपात स्थिति में संबंधित वाहन और चालक की पहचान जल्द सुनिश्चित करना है। किसी घटना के बाद ऑटो या ई रिक्शा की पहचान करने की जरूरत पड़ने पर रजिस्ट्रेशन से उपलब्ध जानकारी पुलिस के लिए मददगार साबित होगी। इससे पुलिस को त्वरित कार्रवाई करने में भी सहायता मिलने की उम्मीद है। कोटा की पहचान अब सिर्फ कोचिंग और शिक्षा के शहर के तौर पर नहीं बल्कि नए आइडिया और स्टार्टअप की जमीन के रूप में भी बन रही है। इस शहर के दो चार्टर्ड अकाउंटेंट दोस्तों अगम अग्रवाल और शुभम मित्तल ने ऐसा हेल्दी स्नैक ब्रांड शुरू किया है जिससे प्रोडक्ट देश के कई शहरों के साथ लंदन और दुबई तक पहुंच चुके हैं। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। नौकरी छोड़ कारोबार में कमाया CA बंधु ने। जी हां, कामयाब हुए हैं। कोटा के दो दोस्त अगम और शुभम दोनों मुंबई में चार्टर्ड अकाउंटेंट की नौकरी कर रहे थे, लेकिन दोनों दोस्तों ने नौकरी छोड़कर अपने अनुभव और एक नए आइडिया को बिजनेस में बदला। एनीवे नाम से हेल्दी स्नैक्स का स्टार्टअप शुरू किया। अप्रैल 2024 में दोनों ने अपनी फैक्ट्री शुरू की और अलग अलग प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग व ट्रायल किए। इसके बाद अक्टूबर 2024 में कोटा से एनीवे की कमर्शियल लॉन्चिंग हुई। शुरुआत में करीब 50 लाख रुपए का निवेश किया गया। पहले साल कंपनी का टर्नओवर करीब 12 लाख रुपए रहा, जबकि अगले साल ये बढ़कर करीब 40 लाख रुपए तक पहुंच गया। अब कंपनी ने 7.5 करोड़ रुपए के टर्नओवर का लक्ष्य रखा है। खास बात यह है कि इस स्टार्टअप के जरिए देश भर में करीब 25 से 30 लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। एनीवे की सबसे खास बात इसका कॉन्सेप्ट है। कंपनी का फोकस ऐसे जंक फूड को हेल्दी अंदाज में पेश करने का था जिसे लोग पहले से पसंद करते हैं। इसी सोच के साथ कोटा की मशहूर कचौड़ी से प्रेरणा लेकर कचौड़ी बाइट्स तैयार किए गए। मल्टीग्रेन बेस से बने इन बाइट्स में हरी और लाल चटनी की सीजनिंग की गई है। छोटे आकार और अलग स्वाद के कारण ये प्रोडक्ट लोगों को पसंद आ रहा है और इसकी मांग विदेश तक पहुंच गई है।
5: मैं और मेरा दोस्त दोनों बॉम्बे में जॉब करते थे और हम शाम को जब भी कुछ खाते थे तो बाद में गिल्ट महसूस करते थे कि ये हमने शायद कुछ जंक खा लिया है। तो हमको कुछ ऐसा खाना था या ऐसा बनाना था जो हेल्दी हो लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी हो, अफोर्डेबल हो और सब जगह मिल जाए। तो तब एक आइडिया आया कि यार कुछ ऐसा स्नैकिंग ब्रांड बनाया जाए। तब शुरुआत हुई। हम देखते थे कि लोग अपने जो ट्रेडिशनल चीज़ हैं वो खाना पसंद करते हैं, जैसे कोटा में लोग कचौड़ी खाते हैं या जब हम बॉम्बे में थे तो लोग वड़ा पाव खाते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इसी को इनोवेट करें, इसी को कुछ हेल्दी बना दें। तो वहां से हमें आइडिया आना स्टार्ट हुआ और फिर धीरे धीरे और पूरी रेंज बनी।
8: तो हम लोगों ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया कचौड़ी बाइट्स नाम से, जिसके ऊपर इमली चटनी और पुदीना चटनी भी

0: है और वो बिना मैदा बिना पाम ऑयल के बना हुआ है। वो अभी करीब 13+ सिटीज के अंदर जा रहा है, करीब 1200+ स्टोर्स में हम लोगों का माल जाता है और काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। और हम लोगों ने एक पायलट लंदन में भी स्टार्ट किया है। ऐसे करके हम लोग के 3 प्रोडक्ट है, एक फ्रिस्बी भी है जो मल्टीग्रेन चिप्स है, और तीसरा प्रोडक्ट जो हमने लॉन्च किया वो मिराकल पॉप्स है। तो मिराकल पॉप्स में आजकल इंडिया में प्रोटीन का काफी वेव चल रहा है, तो उसी को देखते हुए हमने एक प्रोडक्ट निकाला जिसमें 46 ग्राम प्रोटीन है 100 ग्राम में, और वो अभी हम लोग का काफी हिट चल रहा है।
1: कहते हैं कि जुनून और मेहनत के आगे उम्र कोई बाधा नहीं होती, इसे सच कर दिखाया है हरियाणा के चरखी दादरी के रहने वाले 76 साल के एथलीट रामकिशन शर्मा ने। रामकिशन ने अब तक एथलेटिक्स में 400 से ज्यादा पदक जीतकर मेडल मशीन का खिताब हासिल किया है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो पांचवी गुड न्यूज है वो है 76 वर्ष के बुजुर्ग का एथलेटिक्स में रिकॉर्ड। जी हाँ, 65 साल की उम्र में मास्टर्स एथलेटिक्स में कदम रखने वाले रामकिशन शर्मा ने ट्रैक पर एक के बाद एक कामयाबी हासिल की और अब तक वे 401 मेडल जीत चुके हैं। रामकृष्ण शर्मा 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर दौड़ के अलावा लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप व हर्डल रेस जैसे कठिन स्पर्धाओं में लगातार पोडियम फिनिश करते रहे हैं।
2: जिस उम्र में ज्यादातर लोग रिटायर होकर आराम की जिंदगी जीने की सोचते हैं, उम्र के उस पड़ाव पर 76 साल के ये बुजुर्ग ट्रैक पर युवाओं को चुनौती दे रहे हैं। बड़ी बात ये है कि रामकिशन शर्मा ने मास्टर्स एथलेटिक्स में अपने करियर की शुरुआत ही 65 साल की उम्र से की है। रामकिशन शर्मा ने अपने इस करियर में क्या उपलब्धि हासिल की है ये मेडल बयां कर रहे हैं। महज 7 से 9 साल के खेल करियर में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में सैकड़ों पदक अपने नाम किए हैं। रामकिशन शर्मा के नाम 401 मेडल और 336 प्रमाण पत्र दर्ज हैं। इनकी उपलब्धियों को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने भी आधिकारिक तौर पर प्रमाणित किया है। इन्हें लोग मेडल मशीन के नाम से जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रामकिशन देश के लिए 10 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 162 गोल्ड, 27 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल इनके नाम हैं। वहीं राज्य स्तर पर भी इन्होंने 98 गोल्ड मेडल जीते हैं।
3: मैंने 65 साल की उम्र के बाद मास्टर एथलेटिक गेम्स में खेलना शुरू किया था और लगातार मैं 2026 तक खेलता रहा हूं। इसमें 3 साल में मेडलों आज तक भी अपने नाम रिकॉर्ड है ऑल ओवर इंडिया, और 9 साल में 83 तक भी अपने नाम है।
2: रामकिशन सिर्फ एक या दो स्पर्धाओं तक सीमित नहीं है। 100, 200, 400 और 800 मीटर दौड़ के साथ लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप और हर्डल रेस में भी इन्होंने लगातार शानदार प्रदर्शन किया है।
3: कहना चाहूंगा, नशे से बचें, नशा नाश की जड़ है ये। जिस तरह दीमक वृक्ष की जड़ों को खोखला कर देती है, इसे इस तरह शराब, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू वगैरह तो वो अंदर से सारे फेफड़ों को खराब कर देती है और कैंसर होने का भय होता है। तो सभी से मैं आह्वान करता हूँ कि नशे से बचें और अपना समय पर जल्दी उठें, योगा करें और अपने जीवन को सफल बनाएं।
2: ट्रैक पर लगातार कामयाबी हासिल करने वाले रामकृष्ण शर्मा का अगला लक्ष्य भी बड़ा है। अब वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराने की तैयारी में है। चरखी दादरी से प्रदीप कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: पंजाब का पठानकोट अब पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर टूरिस्ट्स को पैरासेलिंग और वाटर स्पोर्ट्स की सुविधा मिल रही है। पठानकोट के रावी नदी पर बने डैम की झील में ये सारी सुविधाएं सैलानियों को मिल रही है। ऐसे में आज की हमारी छठी जो गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी हुई है, और वो है पंजाब में गोवा वाटर स्पोर्ट्स में बदल रही पहचान। जी हाँ, आपको बता दें कि रणजीत सागर डैम की झील के किनारे स्थित मिनी गोवा के नाम पर जाने जाते रहे चमरोड़ और नए बने शाहपुर कंडी बैराज झील को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टूरिज्म हब बनाने के लिए लगातार डैम प्रशासन की ओर से कोशिश की जा रही है। पहले यहां पर्यटक सिर्फ स्पीड बोट से नजारा लेते थे और अब वो पैरासेलिंग का भी लुत्फ उठा रहे हैं।

0: अब पंजाब के लोगों को पैरासेलिंग और वाटर स्पोर्ट्स के लिए गोवा जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब पंजाब के प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में पहचान बन चुके पठानकोट में लोगों को ये सुविधा मिलने लगी है। यहाँ के रावी नदी पर बने डैम की झील में पर्यटक स्पीड बोट के साथ पैरासेलिंग का भी आनंद ले सकेंगे। दरअसल पठानकोट में रावी नदी पर बने डैम की झील अब पैरासेलिंग और वाटर स्पोर्ट्स के लिए मशहूर हो रही है, क्योंकि रणजीत सागर डैम की झील के किनारे चमरोड़ और शाहरपुर कंडी बैराज झील को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टूरिज्म हब बनाने की तैयारी कर ली गई है। डैम प्रशासन ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए झील में स्पीड बोट्स और पैरासेलिंग की शुरुआत की है।
1: मैंने देखा, YouTube में देखा था काफी इसका, मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पर, मुझे बहुत अच्छा लगा है यहाँ पर आकर। वो तो ठीक है, सबको अच्छा है, फूड है,
2: बच्चों को लेके डाइट पे गए, आपको कैसा लगा?
1: अच्छा लगा, बच्चों को बहुत अच्छा लगा है सारा। हम पहली बार आए वहाँ फैमिली लेकर।
0: डैम प्रशासन इस क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रहा है। पहले यहाँ सिर्फ पर्यटक स्पीड बोट से यहाँ के नजारे का आनंद लेते थे, लेकिन अब उन्हें यहाँ पर पैरासेलिंग का भी लुत्फ उठाने का मौका मिल रहा है। इन वाटर स्पोर्ट्स का आनंद लेने के लिए दूर दूर से सैलानी यहाँ पहुँच रहे हैं।
3: अच्छी जगह बनी हुई है घूमने के लिए, अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, हॉर्स राइडिंग भी अच्छा है, आपका ऊंट का भी कैमल का भी अच्छा है।
2: झील का नजारा,
3: झील का नजारा बहुत बढ़िया है।
0: वाटर स्पोर्ट्स की शुरुआत होने के बाद झील पर आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। स्पीड बोट के बाद अब पैरासेलिंग की शुरुआत होने से इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन में लोगों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ रही है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए डैम प्रशासन ने पर्यटकों की हिफाजत का भी पूरा इंतजाम कर लिया है।
4: वाटर स्पोर्ट्स शुरू कर रहे हैं, ये साड़ियाँ स्पोर्ट्स जीडियाँ हैगी, इधर टेंडर हो गया, अलॉट हो चुका, सिक्योरिटी नॉर्म्स सारे फुलफिल करेंगे जी असं, क्योंकि साड़ा जो शाहपुर कंडी डैम है काफी इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, ना कुछ किसी भी तरह की ढिल नहीं पड़ती है।
0: पैरासेलिंग और वाटर स्पोर्ट्स का आनंद लेने के लिए पहले लोगों को गोवा जैसी जगहों का रुख करना पड़ता था, लेकिन अब डैम की झील में शुरू हुए इस वाटर स्पोर्ट्स ने पठानकोट को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर एक नई पहचान दिला दी है। पठानकोट से पवन सिंह, गुड न्यूज टुडे।
5: मणिपुर की जिमनास्ट अरिहा पंगवम ने एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। अरिहा देश की पहली एथलीट हैं जिन्होंने 10वें एशियन एरोबिक जिमनास्टिक्स चैंपियनशिप में सीनियर महिला व्यक्तिगत वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। उनकी सफलता पर उन्हें चारों ओर से बधाई मिल रही है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि 7वीं और आखिरी गुड न्यूज है, एरोबिक जिमनास्टिक में अरिहा ने जीता पहला गोल्ड। जी हाँ, आपको बता दें कि अरिहा जब गोल्ड जीतने के बाद अपने घर पहुंची तो वहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। उनकी जीत से अरिहा के पूरे परिवार में खुशी का माहौल है।

0: रफ्तार, लय, संतुलन। और हर मोमेंट में गजब का आत्मविश्वास। ये सिर्फ जिमनास्टिक के स्टेप्स नहीं है, बल्कि सालों की मेहनत और तपस्या का नतीजा है। मणिपुर की अरिहा पांगम्मा ने फिलीपींस की तगायते सिटी में इतिहास रच दिया है। 10वीं एशियन एरोबिक जिमनास्टिक चैंपियनशिप में सीनियर महिला वर्ग में अरिहा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है।
1: My work, I would say, it's because of my parents, my coach, my family, and everyone who have supported and guided me. So at that moment, I felt I could see everyone. I would say.
0: अरिहा की ये जीत इसलिए खास है क्योंकि एशियन चैंपियनशिप में सीनियर महिला व्यक्तिगत वर्ग में भारत ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता है। अरिहा ने चैंपियनशिप की तैयारी के लिए करीब 6 घंटे रोजाना ट्रेनिंग की। घंटों तक शरीर को फिट रखना, एक ही मोमेंट को बार बार दोहराना, अपनी तकनीक में सुधार करना और हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाने की कोशिश। माता पिता के चेहरे की मुस्कान, घर की दीवार पर सजे मेडल्स और बधाई देने वालों के ये गुलदस्ते अरिहा के शानदार प्रदर्शन की गवाही देते हैं।
2: एशियन चैंपियनशिप के लिए मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि सेटिस्फेक्शन उसी में है कोचेस का कि ट्रेनिंग में जो उन्होंने किया, चाहे मेडल ले ना ले, ट्रेनिंग में जो उन्होंने किया वो पूरा अगर कंपटीशन में कर पाए तो उससे बड़ी बात कोच के लिए होता नहीं है मेरे ख्याल से। तो मैं भी कोच हूं तो मैं बहुत खुश हूं, और उसी परफॉर्मेंस के साथ अरिहा ने हिस्ट्री भी वो कर दिया, क्रिएट कर दिया, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे।
0: मणिपुर की जमीन से निकलकर एशिया के मंच पर भारत का नाम रोशन करने वाली अरिहा की कहानी उन तमाम युवा खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणा है जो बड़े सपने देखते हैं। फिलीपींस के तगायते सिटी में अरिहा ने जो कर दिखाया वो सिर्फ एक गोल्ड मेडल भर नहीं है, अरिहा की कामयाब एरोबिक जिमनास्टिक के इतिहास में एक नया अध्याय है। पिछली चैंपियनशिप की निराशा से लेकर इस बार की एशियाई चैंपियन बनने तक अरिहा ने साबित किया है कि लगातार मेहनत और लगन से सपनों को हकीकत में बदला जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
0: महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की तैयारियां तेज, मुंबई के प्रसिद्ध कला चौकी महागणपति का हुआ आगमन, सिंह पर सवार नजर आए 22 फीट ऊंचे बप्पा। पवित्र सावन महीने में धूमधाम से जारी कांवड़ यात्रा, जौनपुर में शिव भक्तों पर की गई फूलों की बारिश, प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से बरसाए फूल। पहाड़ से मैदान तक मौसम की मेहरबानी बरकरार, शिमला में सुहावने मौसम का आनंद ले रहे पर्यटक, चंडीगढ़ में जमकर बरसे बादल।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़।
0: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरफ फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी किसी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है, और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं, यहां हर किसी के हाथ में एक कैमरा है, हर घटना हर तस्वीर कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है, कोई पुरानी घटना बताकर परोस दी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। लेकिन फैक्ट चेक के जरिए हम ऐसी खबरों की पड़ताल करते हैं, आप तक सही और सच्ची खबर लेके आते हैं। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात होगी उस वायरल वीडियो की, जिसको शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि नेपाल में अवैध घुसपैठियों की बस्ती को आग के हवाले कर दिया गया। सच्चाई क्या आ गया जानिए। इसके अलावा हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी, जिसको शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि हरियाणा के चरखी दादरी में 6 अगस्त को ही गोलीबारी का असली वीडियो है। सच्चाई आगे बताएंगे, शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ला।
0: सोशल मीडिया पर भीषण आग का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आग इतनी तेज है कि आसमान में धुएं की लपटें नजर आ रही है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि ये नेपाल के एक ऐसे गांव का वीडियो है जहां अवैध घुसपैठिए रहते हैं। दावा है कि इस पूरे गांव को आग के हवाले कर दिया गया है, जिसके बाद पूरा इलाका जलकर खाक हो गया। क्या है सच्चाई, देखिए हमारी रिपोर्ट।
8: हाल ही में नेपाल में धार्मिक प्रतीकों और लाउडस्पीकर विवाद को लेकर दो समुदायों के बीच हिंसक झड़पें हुई थीं। हालात इतने बिगड़ गए थे कि इस पर काबू पाने के लिए कई जिलों में कर्फ्यू लगाया गया और सेना को भी तैनात किया गया। अब इसी से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर भीषण आग का ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। आग इतनी तेज है कि आसमान में धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। कुछ लोग इस वीडियो के जरिए ये दावा कर रहे हैं कि ये नेपाल के एक ऐसे गांव का वीडियो है जहां अवैध घुसपैठिए रहते थे। दावा है कि इस पूरे गांव को आग के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद पूरा इलाका जलकर राख हो गया। वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, गजवाए नेपाल की मानसिकता पाले नेपाल में घुसे अवैध घुसपैठियों के पूरे गांव को जलाकर राख कर दिया, न सबूत बचे न गवाह। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
0: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आग इतनी तेज है कि आसमान में धुएं की लपटें नजर आ रही हैं। कुछ लोग इस वीडियो के जरिए दावा कर रहे हैं कि नेपाल के एक ऐसे गांव का वीडियो है जहां पर अवैध घुसपैठिए रहते हैं, और दावा यह है कि इस पूरे गांव को आग के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद पूरा इलाका जलकर खाक हो गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ वीडियो को शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने इसकी पड़ताल शुरू की और दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और इसे सुना भी। इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड से आ रही आवाजों पर गया और जब हमने इसे गौर से सुना तो इशारा मिला कि ये नेपाल में बोली जाने वाली भाषा नहीं है, ये कहीं और की भाषा हो सकती है। इसके अलावा वीडियो के फ्रेम दर फ्रेम देखने से ऐसा लग रहा है कि किसी पहाड़ के जंगल में ये आग लगी हुई है और फायर ब्रिगेड की एक टीम इसे बुझाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वीडियो में कहीं पर भी घर देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि अगर किसी इंसानी बस्ती को आग के हवाले किया जाता तो उसके निशान यहां पर जरूर नजर आते, लेकिन वीडियो में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। साथ ही सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिलती है जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, क्योंकि अगर वीडियो का संबंध नेपाल से होता तो कहीं ना कहीं इसके बारे में जानकारी जरूर होती। लिहाजा हमने वायरल हो रहे दावे को सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही था कि अगर दावा सही है तो फिर इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। हमारा दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए लोगों को गुमराह करने की कोशिश तो नहीं हो रही है। सच और झूठ क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए।

इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। पड़ताल के लिए सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये तुर्की के मीडिया संस्थान के यूट्यूब चैनल पर मिला। यहाँ इसे 29 जुलाई को अपलोड किया गया था। कैप्शन के मुताबिक ये तुर्की के मुगला प्रदेश में लगी जंगल की आग का वीडियो है। सर्च के दौरान तुर्की की एक और न्यूज आउटलेट की 29 जुलाई की वीडियो रिपोर्ट में भी वायरल

0: एक खेती बाड़ी की जगह पर लगी आग तेज हवाओं के चलते जंगल तक फैल गई और देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया। एक रिपोर्ट से ये भी जानकारी सामने आई कि इस आग को बुझाने के अभियान में 5 एयरक्राफ्ट, 18 हेलीकॉप्टर और 93 दमकल की गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। इस अभियान में 800 से ज्यादा जवान शामिल थे। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। वायरल हो रहे वीडियो का नेपाल से कोई लेना देना नहीं है। ये वीडियो तुर्की के मुगला का है, जहां एक जंगल में भयानक आग लग गई थी। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: हरियाणा के चरखी दादरी में 6 अगस्त को दिन दहाड़े सिटी पुलिस थाने के सामने एक स्कॉर्पियो गाड़ी पर करीब 30 राउंड की फायरिंग हुई। इस गोलीबारी में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनमें से एक की मौत हो गई। इस घटना से जोड़ते हुए सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि हरियाणा के चरखी दादरी में 6 अगस्त को ही गोलीबारी का ये असली वीडियो है, लेकिन सच्चाई क्या है इस रिपोर्ट में जानिए।
2: हरियाणा के चरखी दादरी में 6 अगस्त को दिन दहाड़े सिटी पुलिस थाने के सामने एक सनसनीखेज तरीके से एक स्कॉर्पियो गाड़ी पर करीब 30 राउंड की फायरिंग हुई थी। इसी घटना के संदर्भ में अब सोशल मीडिया पर एक क्लिप काफी वायरल हो रही है, जिसमें काली स्कॉर्पियो गाड़ी पर अंधाधुंध गोलियां चल रही हैं। इसे शेयर करने वाले कई सोशल मीडिया यूजर्स दावा कर रहे हैं कि ये चरखी दादरी में हुई गोलीबारी का नजारा है। वायरल वीडियो के पहले हिस्से में गाड़ी पर गोलीबारी और गोली लगने के बाद गाड़ी की हालत दिखाई गई है। वहीं दूसरे हिस्से में खून से लथपथ एक शख्स को गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे हुए देखा जा सकता है। कई लोग गाड़ी को घेरे हुए हैं। वीडियो शेयर करते हुए कई सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया कि ये 6 अगस्त को चरखी दादरी में कोर्ट के पास हुई 30 राउंड की फायरिंग का असली दृश्य है और रोहित गोदारा गैंग से जुड़े नवीन बॉक्सर नाम के एक शख्स ने इसकी जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि हरियाणा के चरखी दादरी का वीडियो है और 6 अगस्त को हुई गोलीबारी का ये असली वीडियो है। वायरल वीडियो के पहले हिस्से में गाड़ी और गोलीबारी और गोली लगने के बाद गाड़ी की हालत दिखाई गई है। वहीं दूसरे हिस्से की बात करें तो खून से लथपथ एक शख्स को गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे हुए देखा जा सकता है। कई लोग गाड़ी को घेरे हुए हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की जांच शुरू की। तो सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को हमने गौर से देखा। इस दौरान हमें ये इशारा मिला कि ये अलग अलग क्लिप्स को एक साथ जोड़कर वीडियो बनाया गया हो सकता है। इसके अलावा वायरल हो रहे वीडियो के पहले हिस्से में जिस गाड़ी पर फायरिंग हो रही है उसे जब हमने फ्रेम दर फ्रेम गौर से देखा तो कुछ ऐसी गलतियां देखने को मिली जिससे हमें वायरल वीडियो के असली होने पर शक हुआ। उदाहरण के तौर पर वीडियो में नजर आ रहे काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी का नंबर प्लेट पर जो नंबर दिख रहा है वो अजीब तरीके से लिखा हुआ है। अक्सर AI वीडियो में ये गलतियां देखने को मिलती हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि जिस गाड़ी पर 6 अगस्त को हरियाणा के चरखी दादरी में फायरिंग हुई थी वो काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी ही थी। जब इस गाड़ी को थाने लाया गया था तब उसका वीडियो भी सामने आया था। आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी उसे देख सकते हैं। वायरल हो रहे वीडियो में नजर आ रही गाड़ी और ओरिजिनल वीडियो में दिख रही गाड़ी को अगर आप देखेंगे तो आपको फर्क साफ नजर आ जाएगा। वायरल वीडियो में फायरिंग के बाद गाड़ी की हालत बिल्कुल खराब हो गई थी, जबकि थाने में जो गाड़ी खड़ी है उसमें ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। लिहाजा हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल ये कि अगर दावा सही है, सच्चा है, तो फिर वायरल हो रहा वीडियो के बारे में कोई प्रमाणिक जानकारी हमें क्यों नहीं मिली। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर एडिटेड वीडियो के जरिए लोगों के बीच भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा। सच और झूठ क्या है इस रिपोर्ट में जानिए।
2: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। हमें असली वीडियो एक इंस्टाग्राम यूजर के हैंडल पर मिला। 12 मई को पोस्ट किए गए इस वीडियो से साफ हो जाता है

0: कि 6 अगस्त को हुई गोलीबारी से इसका कोई संबंध नहीं है। वायरल वीडियो के कैप्शन में यूजर ने वीडियो एडिटिंग का क्रेडिट किसी दूसरे यूजर को दिया है। इस पोस्ट के रिप्लाई में कई यूजर्स ने इस वीडियो को AI जनरेटेड बताया, जिस पर कोई असहमति जताए बिना यूजर ने सिर्फ हंसी का इमोजी बनाया है। इसके बाद हमने गूगल AI से बनी तस्वीरों और वीडियो को डिटेक्ट करने वाले टूल सिंथाइडी से इस वीडियो को टेस्ट किया। इस टूल ने भी बताया कि ये वीडियो गूगल AI की मदद से बनाया गया है। साथ ही हमने इसे हाइव मॉडरेशन टूल से भी टेस्ट किया। इस टूल ने भी इस वीडियो के AI से बने होने की 96.2% संभावना बताई। हालांकि वायरल वीडियो के दूसरे हिस्से में, जहां खून से लथपथ एक शख्स को गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे हुए देखा जा सकता है, वो हिस्सा चरखी दादरी की असली घटना का है। इस गोलीबारी में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनमें से एक की मौत हो गई थी। इस वारदात के बाद SP लोकेश कुमार ने 6 पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड किया था। इस तरह हमारी पड़ताल से ये साफ हो गया कि दो हिस्से को जोड़कर ये वीडियो तैयार किया गया है। स्कॉर्पियो में गोलीबारी वाला वीडियो का पहला हिस्सा AI से बनाया गया है, चरखी दादरी में हुई गैंगवार से इसका कोई लेना देना नहीं है, जबकि दूसरे हिस्से में, जहां खून से लथपथ एक शख्स को गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे हुए देखा जा सकता है, वो हिस्सा चरखी दादरी की असली घटना का है। रिद्धेश दत्ता के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे वायरल वर्ल्ड में क्या कुछ हो रहा है, लिए चलेंगे आपको वायरल दुनिया में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं,
3: बारिश बाढ़ और रेस्क्यू लाइट, चंबा में सांसें थाम देने वाला रेस्क्यू ऑपरेशन, अमरता के स्वामी का मिलेगा आशीर्वाद, नोएडा पुलिस बनाएगी सक्षम, देखिए अच्छी खबर सच्ची खबर रात 8 बजे।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
8: और वक्त हो चला फैक्ट चेक के आखिरी सफर का. आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है.
9: सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है, जिसमें एक छोटी बहन अपने भाई की जिस तरह देखभाल करती नजर आ रही है, उसे देखकर लोग भावुक हो रहे हैं. वायरल वीडियो में भाई बहन के बीच का बेहद मासूम रिश्ता देखने को मिलता है. छोटा भाई अपनी ही दुनिया में मस्ती करता दिखाई देता है, जबकि उसकी बहन लगातार उसकी छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखती नजर आती है. कभी वो भाई की स्कूल ड्रेस ठीक करती है तो कभी उसे संभालती हुई दिखाई देती है. वीडियो का सबसे प्यारा हिस्सा वो है जब बहन अपने छोटे भाई को गोद में लेकर घूमती नजर आती है. उसकी उम्र भले ही कम हो, लेकिन भाई के लिए उसके व्यवहार में जिम्मेदारी और अपनापन साफ दिखाई देता है. भाई की ड्रेस ठीक करने से लेकर उसे संभालने तक बहन के हर छोटे प्रयास में एक अलग ही प्यार नजर आता है. ऐसा लगता है जैसे वो अपने छोटे भाई की सिर्फ बहन नहीं बल्कि उसकी छोटी से केयर टेकर भी हो. यही मासूम पल वीडियो को खास बना रहे हैं. इसमें ना कोई बड़ी बात है और ना ही कोई बनावटी भावनाएं, लेकिन भाई बहन के बीच दिख रहा अपनापन सीधे लोगों के दिल तक पहुंच रहा है. सोशल मीडिया पर ये दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. इंस्टा पर शेयर इस वीडियो के साथ एक लाइन लिखी गई है, जिसका मतलब है कि जिंदगी में आप सच में बहुत अमीर हैं। अगर आप अपने बच्चे को उसके जन्मदिन पर वो चीज दे सकते हैं जिसकी उसे सबसे ज्यादा इच्छा थी. वीडियो की शुरुआत बेसबॉल प्रैक्टिस से होती है. बच्चा मैदान में बल्लेबाजी की तैयारी करता दिखाई देता है. उसके माता पिता उसे खास शॉट लगाने के लिए कहते हैं. बच्चा पूरी मेहनत के साथ बल्ला घुमाता है और स्लो मोशन में शॉट लगाने की कोशिश करता है. इसके बाद कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट आता है. जैसे ही बच्चा बल्ला पीछे करता है, उसके पिता किसी बहाने से उसके हाथ से बल्ला ले लेते हैं. बच्चे को उस वक्त शायद समझ ही नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसे जो मिलता है वो उसके लिए बेहद खास होता है. पिता पुराने बल्ले की जगह उसके हाथ में एक नया बल्ला थमा देते हैं. उस समय बच्चे के हाथ पीछे की ओर होते हैं. जैसे ही वो अपने हाथ आगे लाता है और नए बल्ले को देखता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं. दरअसल ये वही बल्ला था जिसे वो अपने जन्मदिन पर पाना चाहता था. बच्चे के चेहरे पर खुशी और आंखों में आए आंसू देखकर साफ समझ आता है कि उसके लिए ये सिर्फ एक नया बैट नहीं था, ये उसके माता पिता की तरफ से दिया गया ऐसा तोहफा था जिसमें उसकी मेहनत, प्यार और बच्चे की पसंद को समझने की भावना छिपी थी. सोशल मीडिया पर ये वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है. वीडियो में दादा पोती के रिश्ते की खूबसूरत झलक देखने को मिल रही है. दादाजी का स्नेह और पोती के प्रति अपनापन देखकर यूजर्स भावुक हो रहे हैं. लोग इस प्यारे पल को खूब पसंद और शेयर कर रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि दादाजी अपनी पोती के स्कूल जाने की तैयारी में उसका साथ देते दिखाई देते हैं. वो बड़े प्यार से उससे पूछते हैं कि क्या वो उसके स्कूल बैग में किताबें रखने में मदद करेंगे.
10: मैं हेल्प कर दूंगा तो बता दूं उसे बैग में. मैं डाल देता हूं. अच्छा हो रहा है अभी.
9: दादाजी का ये छोटा सा सवाल सुनने में भले ही सामान्य लगे, लेकिन इसमें पोती के लिए उनका अपनापन और चिंता साफ दिखाई देती है. बच्चों के लिए स्कूल जाने की तैयारी रोजमर्रा की बात होती है, लेकिन दादाजी के लिए पोती के साथ बिताया यही छोटा सा पल बेहद खास नजर आता है. वीडियो में दादाजी जिस सहज अंदाज में उसकी मदद करने की बात करते हैं, वो लोगों को काफी भावुक कर रहा है.
10: मैं हेल्प कर दूंगा तो बता दूं उसे बैग में. मैं डाल देता हूं. लॉक.
9: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को खूब देखा जा रहा है. वीडियो में बच्चे को आर्मी की यूनिफॉर्म पहनाई जा रही है. जैसे ही वो पूरी तरह सैनिक की वर्दी में तैयार होती है, उसके चेहरे की खुशी देखते ही बनती है. वर्दी पहनते ही बच्चे का अंदाज भी पूरी तरह बदल जाता है. वो खुद को आर्मी की ड्रेस में देखकर काफी उत्साहित नजर आती है. उसके चेहरे पर मासूमियत तो है ही, साथ ही ऐसा आत्मविश्वास भी दिखता है जिसे देखकर परिवार वाले भी खुश हो जाते हैं. वीडियो का सबसे दिलचस्प हिस्सा उस समय आता है जब बच्ची वर्दी पहनने के बाद बेहद मासूम अंदाज में कहती है, मुझे टेररिस्ट को मारना है. बच्चे की बात सुनकर घर में मौजूद लोग मुस्कुराने लगते हैं. परिवार वाले मजाकिया अंदाज में उससे पूछते हैं कि आखिर उसके लिए टेररिस्ट कहां से लेकर आए.
11: अब आतंकवादी कहां से लाऊं तेरे लिए मैं? आतंकवादी कहां है यार? बेटा हम छोड़ दियो, तुम आतंकवादी को कैसे मारोगी?
12: मारा.
9: बच्चे के इस मासूम जवाब और उसके एक्सप्रेशन ने सोशल मीडिया यूजर्स का भी दिल जीत लिया। मामा के घर आकर डोरेमोन देखने वाला ये भांजा अब खुद डोरेमोन बन गया है। बच्चे ने अपनी पैंट के जेब को ही डोरेमोन की पॉकेट बना लिया और उसमें घर का सामान छुपा कर बैठ गया। इसके बाद एक एक करके जेब से सामान निकालने लगा, जैसे डोरेमोन अपने गैजेट निकाल रहा हो, कभी कोई चीज तो कभी कुछ और। बच्चे का ये अंदाज देखने में बेहद मजेदार है। घर के सामान को अपनी जेब में छुपा कर जिस तरह बच्चा उसे निकाल कर दे रहा है, उसकी क्यूटनेस ने लोगों का दिल जीत लिया। पढ़ाई का नाम सुनते ही ज्यादातर बच्चों के चेहरे उतर जाते हैं, और जब बात केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल की हो तो इसे याद करना किसी पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है। लेकिन बेंगलुरु के एक टीचर ने इस मुश्किल काम को बच्चों के लिए खेल बना दिया। वीडियो में साफ दिखता है कि कैसे आकाश ने बोरिंग केमिस्ट्री क्लास को एक एनर्जेटिक पार्टी में बदल दिया। ब्लैक बोर्ड पर पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स लिखे हैं और एक हाथ में स्केल पकड़े आकाश एक एक एलिमेंट की तरफ इशारा करते हुए मस्ती में गा रहे हैं। इस दौरान बच्चों का जोश देखने लायक था। बच्चे सिर्फ बैठे नहीं रहे बल्कि अपने टीचर के साथ सुर से सुर मिलाकर नाचने और गाने लगे। बच्चों का ऐसा उत्साह देखकर खुद टीचर आकाश भी अपने आप को रोक नहीं पाए और उनके साथ झूमने लगे। कश्मीर से खूबसूरत मोमेंट सामने आया है। इस पल को लोग कश्मीरियत भी बोल रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बुजुर्ग महिला जिन्होंने पारंपरिक कश्मीरी हेड रैप पहना हुआ है, धीरे धीरे चलकर सीआरपीएफ जवान के पास आती है। उनके हाथों में ताजे फल हैं जो वो मुस्कुराते हुए जवान को भेंट करती है। जवान भी इस निस्वार्थ प्यार को देख कर अभिभूत हो जाता है। वो खुशी खुशी उस तोहफे को स्वीकार करता है और कैमरे की तरफ उन फलों को दिखाते हुए बेहद भावुक शब्दों में महिला का शुक्रिया अदा करता है।
12: भैया हम कश्मीर में खड़ा है, माता जी देख लो, हमें मुहा के लेके आए हैं, देख लो दिए कितना अच्छा, थैंक यू शुक्रिया, देख लो भैया कितना सम्मान के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
9: इस वीडियो की सबसे खास बात यह है कि महिला और जवान के बीच कोई लंबी चौड़ी बातचीत नहीं होती है, लेकिन चंद सेकंड का ये वीडियो कश्मीरियत, इंसानियत और सुरक्षा बलों के प्रति स्थानीय लोगों के सम्मान की एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर पेश करता है। इंडोनेशियाई सेना के एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों को भावुक कर रहा है। वीडियो में सेना की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जवानों के लिए खास समारोह रखा गया था। वहाँ ज्यादातर युवा सैनिकों के साथ उनके माता पिता, पार्टनर या परिवार के लोग मौजूद थे। हर तरफ खुशी और गर्व का माहौल था, लेकिन इसी बीच एक जवान ऐसा भी था जो अकेला खड़ा नजर आया। जहाँ बाकी सैनिक अपने करीबियों के साथ इस खास पल को सेलिब्रेट कर रहे थे, वहीं उस जवान के पास कोई अपना दिखाई नहीं दे रहा था। वो चुपचाप बाकी लोगों से थोड़ा अलग खड़ा था। तभी वहाँ मौजूद एक सीनियर अधिकारी की नजर उस जवान पर पड़ी। उन्होंने उसकी स्थिति को समझने में देर नहीं लगाई। अधिकारी सीधे उसके पास पहुँचे और उसे अपने पास बुलाकर गर्मजोशी से गले लगा लिया। ये कोई औपचारिक सैन्य सलाम या बधाई नहीं थी, बल्कि बिल्कुल एक पिता की तरह दिया गया अपनापन था। शुरुआत में जवान ने खुद को संभालने की कोशिश की, उसने अपनी भावनाओं को रोक कर रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन शायद उस पल का अकेलापन और अचानक मिला प्यार दोनों ही उसके लिए बहुत ज्यादा थे। कुछ ही सेकंड में उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, वो अधिकारी के कंधे से लगकर रो पड़ा। सोशल मीडिया पर इन दिनों अफ्रीकी देश तंजानिया के एक नौजवान फजल का वीडियो काफी छाया हुआ है। फजल ने एक पंजाबी गाना इतनी खूबसूरती से गाया कि सुनने वाले हैरान रह गए। फजल को पंजाबी भाषा बिल्कुल नहीं आती, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जिस साफ अंदाज और सही उच्चारण के साथ ये गाना गाया है, उसने इंटरनेट पर सभी का दिल जीत लिया है।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
8: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए, ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। मॉनसून के दौरान जगह जगह किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, आज उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। किस तरीके से एनडीआरएफ एसडीआरएफ पूरी तरह से मुस्तैद है, आगे देखिए। अमरता के स्वामी का मिल रहा है आशीर्वाद, पहले जत्थे ने किए बूढ़ा अमरनाथ के अलौकिक दर्शन। और इसके साथ ही साथ स्पेशल बच्चों के लिए हुनरमंद बनने का मौका, नोएडा पुलिस के ऑपरेशन अपराजय के तहत आत्मनिर्भरता का मंत्र। शुरुआत हेडलाइंस के साथ।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
8: महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की तैयारियां तेज, मुंबई के प्रसिद्ध काला चौकी महागणपति का हुआ आगमन, सिंह पर सवार नजर आए 22 फीट ऊंचे बप्पा। पवित्र सावन महीने में धूमधाम से जारी कांवड़ यात्रा, जौनपुर में शिव भक्तों पर की गई फूलों की बारिश, प्रशासन हेलीकॉप्टर से बरसाए फूल। पहाड़ से मैदान तक मौसम की मेहरबानी बरकरार, शिमला में 21 अगस्त तक बारिश का अलर्ट, चंडीगढ़ में जमकर बरस रहे हैं बादल। गुजरात के नवसारी में मछुआरों के लिए कोस्ट गार्ड के जवान बने देवदूत, 9 मछुआरों को किया एलर्ट, एनडीआरएफ भी राहत अभियान में शामिल। चीन के हुकोउ वाटरफॉल पर दिखा शानदार नजारा, 1000 से ज्यादा पर्यटकों ने एक साथ गाया पारंपरिक गीत, प्राकृतिक खूबसूरती और संगीत का संगम। अच्छी और सच्ची खबरों में हम सबसे पहले बात करेंगे बाढ़ और रेस्क्यू की, और इस वक्त देश के कई राज्यों में बारिश और बाढ़ जैसे हालात का सामना लोग कर रहे हैं। ऐसे में लोगों की मदद के लिए राहत और बचाव एजेंसियों को लगाया गया है, जो अब तक कई लोगों की जान बचा चुकी हैं। मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। इसमें झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश शामिल है। साथ ही साथ अन्य राज्यों में आंधी तूफान और बिजली कड़कने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के इस अलर्ट के मद्देनजर लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है।

0: अगस्त के इस महीने में मानसून की बारिश से कई राज्यों में हाहाकार मचा हुआ है। चाहे पहाड़ी राज्य हो या फिर मैदानी राज्य, भारी बारिश के चलते नदी नाले सब उफान पर हैं और जगह जगह लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। रेस्क्यू की एक चौंकाने वाली तस्वीर हिमाचल प्रदेश के चंबा से सामने आई, जहां भरमौर इलाके के 84 चला में बादल फटने से लोहे का पुल बह गया और सड़क भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इसके चलते करीब 40 से 50 श्रद्धालु रास्ते में ही फंस गए, जिसकी सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और बारी बारी से सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित बचाया। रेस्क्यू का एक ऐसा ही रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के ऋषिकेश से सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे एसडीआरएफ के जवानों ने दो जिंदगियों को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। रात के वक्त किया गया यह रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत ही खतरों से भरा था, लेकिन एसडीआरएफ जवानों ने इसकी परवाह नहीं की और बीन नदी की उफनती लहरों से लड़कर गाड़ी में फंसे दोनों लोगों को सकुशल बचा लिया। रेस्क्यू का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है और हर कोई एसडीआरएफ जवानों की हौसला अफजाई कर रहा है।
1: हमें सूचना मिली लगभग 9:15 के लगभग कि एक मैक्स बीन नदी में पलट गई और जो नीचे चली गई, तो हमारी टीम तुरंत यहाँ पर पहुंची है और यहाँ पे देखा तो एक व्यक्ति उसमें ऊपर बैठा हुआ दिखाई दिया। कुछ हमारी टीम रोप लगा के अपने उपकरणों के माध्यम से उस तक पहुंची है नदी में और उसको रेस्क्यू कर लिया गया और उसको हॉस्पिटलाइज किया। तो उसके बाद पता चला कि एक व्यक्ति अंदर था जो पूरी तरह से फंसा था। उसके लिए टीम द्वारा हमारे बहुत भरसक प्रयास किया गया और कई प्रयासों के बाद हम उस व्यक्ति का रेस्क्यू कर गए और उसको भी हमें हमारे द्वारा टीम द्वारा हॉस्पिटलाइज किया गया। हमारे सामने हमें दिखा कि जो व्यक्ति अंदर है वो भी चिल्ला रहा था कि मुझे बचाओ और हमारी टीम उसी हौसले के साथ आगे बढ़ी और सभी हमारे जो जितने भी हमारे यहाँ पे टीम के मेंबर्स हैं सभी के प्रयास से हमारे रोप के माध्यम से उस तक पहुंच बनाई और उस व्यक्ति को हमारे द्वारा टीम द्वारा रेस्क्यू किया गया।
0: वहीं एसडीआरएफ की टीम ने देहरादून के मिसराज पट्टी इलाके में ट्रैकिंग के लिए पहुंचे यूपीईएस के 6 छात्र नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद जंगल में फंस गए। इस बात की सूचना जैसे ही एसडीआरएफ टीम को मिली, उसने दुर्गम रास्तों और खराब मौसम के बीच करीब 6 किलोमीटर पैदल ट्रैकिंग कर सभी छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। राज्य में लगातार हो रही बारिश के कारण इस वक्त ज्यादातर नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की गई है।
2: कई स्थानों पर बहुत ज्यादा बरसात हुई है और बरसात के कारण निश्चित रूप से कुछ दिक्कतें भी हुई हैं। कई जगह नदियों का पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जलस्तर काफी बढ़ गया है। ऋषिकेश के पास में जलस्तर काफी हद तक बढ़ गया है। आज की बात करें तो आज देहरादून के लिए, टिहरी के लिए, पौड़ी और उधम सिंह नगर 4 जनपदों के लिए ऑरेंज अलर्ट है। सभी जनपदों को एसईओसी से निर्देश जारी किए गए हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी संबंधित से अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर ऐसे किसी स्थान पर रह रहे हैं जहां पानी के बढ़ने की संभावना है, जलस्तर बढ़ने की संभावना है, बाढ़ आने की संभावना है, ऐसे स्थानों पर जो लोग रह रहे हैं सावधानी के साथ रहें, अलर्ट पे रहें ताकि किसी प्रकार से पानी का स्तर बढ़ने पर उनको सकुशल वहां से निकासी संभव हो सके। इसके साथ साथ मैं सभी से यह भी अनुरोध करूंगा कि अपने मोबाइल में सचेत ऐप डाउनलोड कर लें ताकि मौसम के अपडेट लगातार उनको मिलते रहें और जो लोग ट्रेवल करना चाहते हैं अनावश्यक रूप से ट्रेवल करने से बचें।
0: पहाड़ों पर लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब मैदानी राज्यों में भी दिखाई देने लगा है। यूपी से लेकर बिहार तक गंगा और उसकी सहायक नदियों का जल स्तर बढ़ने से लोगों को बाढ़ का डर सताने लगा है। ये 3 तस्वीरें प्रयागराज, वाराणसी और बिहार के बक्सर की है, जहाँ गंगा नदी का जल स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसके चलते तमाम घाट पानी में डूब चुके हैं और घाटों के आसपास रहने वाले लोग अब सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। हर घंटे बढ़ते जलस्तर को देखते हुए राहत और बचाव एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है और लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की गई है।
3: आज तीसरे दिन भी वाराणसी में गंगा के बढ़ते जल स्तर का क्रम जारी है, लेकिन राहत की खबर यह है कि जहां 7 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ोतरी जारी थी, तो अब बढ़ोतरी घटकर 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की रह गई है। वाराणसी में केंद्रीय जल आयोग की डेली फ्लड रिपोर्ट की बुलेटिन के मुताबिक अभी भी 4.5 मीटर चेतावनी बिंदु से तो 5.5 मीटर खतरे के निशान के नीचे गंगा बह रही है। एहतियातन देख सकते हैं कि नावों के संचालन पर, मोटरबोटों के संचालन पर फिलहाल प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसके चलते घाट किनारे नावें बंधी हुई हैं, थमी हुई हैं और लगातार नाविक भी इस पर निगरानी रखे हुए हैं। तो वहीं हम इस समय वाराणसी के 80 घाट पर हैं, इसके बगल में गंगा महल घाट है, फिर रीवा और तुलसी घाट, लेकिन साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो घाटों का आपसी कनेक्शन है, एक घाट से दूसरे घाट तक 84 घाटों का आपसी जो संपर्क का रास्ता है वे टूट गया है।
4: पहाड़ों पर लगातार बारिश का सीधा असर बक्सर में देखने को मिल रहा है। गंगा का रफ्तार काफी ज्यादा तेज हो चुका है, ऐसे में गंगा बक्सर में अब धीरे धीरे बाढ़ का सफर अख्तियार करती जा रही है। मैं सीधे तौर पर गंगा को दिखाने का प्रयास करूंगा। देखिए वो सीढ़ियां हैं, कभी जहां पर लोग नीचे तक नहाने जाते थे, लेकिन गंगा का जो रफ्तार है वो तेजी से बढ़ा हुआ है।
5: यूपी के चित्रकूट में तो मंदाकिनी नदी का जल स्तर खतरे के निशान को पार करने के बाद तमाम घाट और घाट के आसपास की दुकानें पानी में डूब चुकी हैं। हालात को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है और रामघाट जाने वाले रास्ते पर बैरिकेडिंग लगाकर लोगों को घाट किनारे जाने से रोक दिया गया है। साथ ही अनाउंसमेंट कर लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से दूर रहने की अपील की जा रही है।
6: अभी तो स्टेबल है, अगर मध्य प्रदेश के कैचमेंट में बारिश होती है तो फिर संभावना है बढ़ने की, लेकिन अभी लगभग 1 घंटे से गेज स्थिर बनी हुई है, जो 70 सेंटीमीटर ऊपर चल रही थी उतनी ही चल रही है।
5: उधर देश के पूर्वी राज्य बंगाल में भी लगातार भारी बारिश के कारण कुछ जिलों में इस वक्त लोग बाढ़ जैसे हालात का सामना कर रहे हैं। पुरुलिया, बांकुड़ा और आसनसोल में भारी बारिश से कई निचले रिहायशी इलाके पानी में डूब चुके हैं, जहां से लोगों के रेस्क्यू के लिए राहत टीमों को लगाया गया है, जो बोट के जरिए लोगों के रेस्क्यू में लगी है और राहत सामग्री भी पहुंचा रही है।
7: हम लोग सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अब रिस्क ना लें, आप लोग सिविल डिफेंस की टीम आया हुआ है और आप लोग घर से निकल, आप लोग को हम लोग लेने के लिए आ रहे हैं, साथ में निकले क्योंकि ये रिस्की हो जाएगा, पानी बहुत बढ़ते जा रहा है।
5: मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। चंबा से विशाल आनंद, देहरादून से अंकित शर्मा, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, वाराणसी से रोशन जायसवाल, बक्सर से पुष्पेंद्र पांडे और आसनसोल से अनिल गिरी, गुड न्यूज टुडे।
8: और अगली खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां पर बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर तीर्थयात्रियों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच आज श्रद्धालुओं का पहला जत्था बूढ़ा अमरनाथ धाम पहुंचा और इसके बाद देश भर से आए श्रद्धालुओं ने श्रद्धा भाव के साथ बाबा बूढ़ा अमरनाथ की पूजा अर्चना की।

0: खूबसूरत वादियों के बीच मौजूद ये शिव धाम हर हर महादेव और बोलबम के जयकारों से गूंज उठा है। क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं और क्या पुरुष, हर कोई आस्था की डोर थामे बूढ़ा अमरनाथ के धाम दौड़ा चला आया है। लंबी लंबी कतारें और इन कतारों में लगे लोग जो हाथों में जल से भरा कलश और फूल लेकर बाबा बूढ़ा अमरनाथ को अर्पित करने लाए हैं। ये आस्थावान श्रद्धालु देश के अलग अलग हिस्सों से बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए आए हैं। एक दिन पहले तीर्थ यात्रियों का ये पहला जत्था जम्मू बेस कैंप से चला था, जो आज बाबा बूढ़ा अमरनाथ के धाम पहुंचा है।
1: रूप के माध्यम से देख सकते हैं कि ये लंबी कतारें जो ये बाबा बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन के लिए देख रहे, दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये लोग सभी लोग बाहर से आए, पूरे हिंदुस्तान लोग से ये लोग आए। इन लोगों का ये कहना है कि हम बार बार आएंगे और हर अपने पूरे जो हिंदुस्तान के लोगों को यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पे आए और यहाँ बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन करें।
2: हम जयपुर राजस्थान से आए हैं, हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे बहुत प्रशासन की व्यवस्था है, बहुत अच्छी है।
3: बूढ़ा बाबा के मैं तीसरी बार आ रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे जो सुविधा मिलती है और यहाँ पे बाबा का जो चमत्कार है, उसी की वजह से आज हमने 100 की संख्या से इस यात्रा को शुरू किया था। आज हम 900 लोगों का जत्था जयपुर प्रांत से लेके आ रहे हैं।
0: बूढ़ा अमरनाथ मंदिर जम्मू कश्मीर में एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जो जम्मू संभाग के पुंछ जिले के मंडी तहसील के राजपुरा गांव में है। भगवान भोलेनाथ को समर्पित ये मंदिर श्री अमरनाथ गुफा के समान ही आस्था का प्रमुख केंद्र है। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि भगवान शिव ने मां पार्वती को अमर कथा सुनाने की शुरुआत यहीं से की थी, जो बाद में अमरनाथ गुफा में पूरी हुई थी। जबकि दूसरी मान्यता यह भी है कि यहां एक महिला को भगवान शिव ने बूढ़े बाबा के रूप में दर्शन दिए थे, इसीलिए उन्हें बूढ़ा अमरनाथ कहा जाता है।
4: सबसे पहले तो आज जो पूजा पहली यात्रा का पहला पूजन हुआ है कि ये तीर्थ यात्रा जो है निर्विघ्न संपन्न हो और तीर्थयात्री जो बाहर से आ रहे हैं, आज आए हैं, सब लोग अच्छे से बाबा का आशीर्वाद लेकर के अपने अपने घरों को लौटे। सभी को यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, भोलेनाथ का आशीर्वाद सबको मिलता रहे और अधिकाधिक संख्या में यहाँ तीर्थयात्री आए और इस स्थान का, इस एरिया का भी बहुत बहुत विकास हो, ऐसी हमारी कामना।
0: बाबा बूढ़ा अमरनाथ की धार्मिक यात्रा हिंदुओं की एक सालाना तीर्थ यात्रा है, जो श्रावण मास में होती है। इस यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों को कोई दिक्कत और परेशानी ना हो, इसके लिए आने जाने, ठहरने, खाने पीने, स्वास्थ्य और सुरक्षा का इंतजाम प्रशासन ने किया है, ताकि यात्रा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके।
5: पूरे रूट हम रजौरी पुंछ रेंज की बात करें तो सुंदरबनी से यहाँ तक रोड जो जितनी भी है वहाँ पे सिक्योरिटी के पूरे जो सिक्योरिटी इंतजाम वो किए गए हैं, पूरा डोमिनेशन हर जगह पे है। फिर जहाँ पे कहीं लंगर लगे हुए हैं, कहीं चाय का इंतजाम रखा हुआ है या लाजमेल सेंटर्स हैं, जैसे यहाँ पे भी हैं, काफी लाजमेल सेंटर हैं, हर जगह पे सिक्योरिटी का 3-tier सिक्योरिटी हमने रखी हुई है, CCTV कवरेज रखी हुई है। हमने पूरी ऐसी इंतजाम किए हुए कि किसी भी कोई जो घटना नहीं हो सकती है, ये हम आपको इस चीज के निश्चित करवाना चाहते हैं।
6: मेरी ये पहली यात्रा है और मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा कि इतने भी यहाँ पे सिक्योरिटी, इतना अपने लोग अपनी हेल्प करते हैं और यहाँ पे सोल्जर्स और यहाँ की पब्लिक अपना खूब ख्याल रखती है और ये सीमा पर है, लेकिन कोई डर की बात नहीं है। इधर सब अब सुरक्षित, सभी अच्छे से हमको यहाँ दर्शन करवा रहे हैं।
0: बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा के शुरू होने से स्थानीय लोग भी बहुत उत्साहित हैं। देश भर से आ रहे इन तीर्थ यात्रियों का सिर्फ पुंछ में ही ढोल लगाड़ों और फूलों से स्वागत किया जा रहा है, बल्कि यात्रा के रूट पर जगह जगह स्थानीय लोग इनका स्वागत सत्कार बहुत गर्मजोशी से कर रहे हैं। इस तीर्थ यात्रा के जरिए भाईचारे, सौहार्द और शांति का संदेश देने की कोशिश भी की जा रही है। पुंछ से मंजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: और बात नोएडा पुलिस की ऐसी पहल की जो प्रशंसा के लायक है। इस साल 9 जून को लॉन्च किए गए ऑपरेशन अपराजय के तहत स्पेशल बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने का मंत्र दिया गया है ताकि वो जिंदगी में हुनरमंद बन सके। जिन बच्चों को बातचीत, किसी चीज को समझने या सीखने या फिर लिखने में तकलीफ होती है, उन्हें ऑपरेशन अपराजय के तहत हैंडमेड ज्वेलरी यानी कि हाथों से बनाए जाने वाले आभूषणों को तैयार करने की ट्रेनिंग दी जा रही ताकि आगे चलकर वो स्वावलंबी बन सकें।

0: आम बच्चों की तरह ये बच्चे भी सम्मान से जीने का हुनर सीख रहे हैं। उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने का कौशल सिखाया जा रहा है ताकि ये आत्मनिर्भर हो सके। दूसरे बच्चों की तुलना में इन बच्चों के सोचने, समझने, संवाद करने और दूसरों से मेलजोल बढ़ाने का तरीका कुछ अलग है। कम उम्र से ही इन्हें अपने अस्तित्व को समझने की जद्दोजहद के बीच संतुलन बनाने की कला सिखाई जा रही है। ये स्पेशल बच्चे अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर ना रहें, इसके लिए उत्तर प्रदेश के नोएडा की पुलिस ने इन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अनोखी पहल शुरू की है। जिन बच्चों को बातचीत, किसी चीज को समझने और सीखने या लिखने में तकलीफ होती है, उन्हें ऑपरेशन अपराजय के तहत हैंडमेड ज्वेलरी यानी हाथों से बनाए जाने वाले आभूषणों को बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। ऑटिज्म, ADHD, सेरेब्रल प्लेसी या डाउन सिंड्रोम से प्रभावित इन बच्चों को स्वावलंबी बनाने के लिए नोएडा पुलिस ने इंडस्ट्री से हाथ मिलाया है ताकि बच्चों को हुनरमंद बनाने के अलावा आगे चलकर रोजगार के अच्छे अवसर भी मिल सके।
1: ये बच्चे ऑटिस्टिक हैं, इनके लिए सब कुछ इतना आसान नहीं होता, समाज से इन्हें बराबर जोड़े रखना भी आसान नहीं होता, लेकिन इसमें अब कई लोग आगे आ रहे हैं। आज इन बच्चों को लेकर एक नई शुरुआत हुई है, आप तमाम सारी चीज़ें देख रहे हैं। इन चीज़ों के ज़रिए बच्चे क्या कुछ नया बना सकते हैं, क्या कुछ नया सीख सकते हैं, उसकी एक कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तरह तरह की चीज़ें, चाहे वो ब्रेसलेट हो या दूसरी चीज़ें हो, वो इन बच्चों को आज यहाँ पर बनाना सिखाया जा रहा है। हैंडीक्राफ्ट से इनको जोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि ये बच्चे जब थोड़ा बड़े हों तो समाज में अलग थलग महसूस ना करें, ये खुद अपने लिए कोई काम कर सके, कोई काम चुन सके।
0: आमतौर पर आर्टिफिशियल ज्वेलरी पीतल, तांबा, जमक, एल्यूमिनियम या मिले जुली धातुओं से बनाई जाती है, लेकिन ये बच्चे कांच, लकड़ी या प्लास्टिक के रंग बिरंगे मोतियों को नायलॉन, सूती और मोम वाले धागे में पिरोकर आभूषण बनाना सीख रहे हैं। इस तरह इन बेहद खास बच्चों को कुछ अलग सीखने के साथ साथ अपनी प्रतिभा दिखाने का भी मौका मिल रहा है।
1: क्या इन सब चीजों से ये रास्ता खुल सकता है कि बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो पाए?
2: बिल्कुल हो सकते हैं। इसमें ऐसा भी नहीं है कि अगर ऑटिज्म का बच्चा ये फाइनेंशियली किसी और के ऊपर डिपेंड रहे हैं। जैसे हम बच्चों को अपना स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम सिखा रहे हैं, आज जैसे बच्चे हाथ का काम सीखेंगे, ज्वेलरी मेकिंग सीखेंगे, आपके सामने इस बच्चे ने अभी ब्रेसलेट बना दिया है, तो क्यों ना हम इसी बच्चे को इसी लाइन में ट्रेन कर दे, सो देट आने वाले 4 या 5 साल के बाद बच्चा कहीं ना कहीं एक जॉब कर सके, ऐसे ज्वेलरी मेकिंग कर सके, हैंडीक्राफ्ट में कुछ ना कुछ कर सके और खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके।
0: साफ है कि ऑटिज्म और डाउन सिंड्रोम से प्रभावित बच्चों के लिए ये सिर्फ एक ट्रेनिंग नहीं बल्कि आत्मनिर्भर होने की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। ज्वेलरी इंडस्ट्री से जुड़े विशेषज्ञों की देखरेख में इन बच्चों की रचनात्मकता एक खास हुनर में बदल रही है।
3: हम लोग पहले से भी गांव की औरतों को हुनर जो है देते आए हैं और उनको काम जो है सिखाते हैं, तो इसी सोच के साथ हमने ये सोचा कि अगर हम उन औरतों को सिखा सकते हैं तो क्यों ना इन विशेष बच्चों के लिए कुछ किया जाए। और चूंकि ऑपरेशन अपराजय के संज्ञान में आते ही हमारी सोच को बल जो है मिला।
0: नोएडा पुलिस की इस पहल का मकसद इन बच्चों को सिर्फ सहानुभूति देना नहीं बल्कि उन्हें हुनर, सम्मान और आत्मनिर्भरता का अवसर देना है। शुरुआत भले ही 25 से 30 बच्चों से हुई हो, लेकिन जल्दी ही ये मुहिम बड़ी हो जाएगी। संदेश साफ है कि मौका मिले तो खास बच्चे भी अपनी अलग पहचान बना सकते हैं।
4: देखिए, ऑपरेशन अपराजय जो हम लोगों ने लॉन्च किया था स्पेशल नीड्स के बच्चों को, एक उनकी सुविधा के लिए, उनके सारे होल राउंड सपोर्ट के लिए, उनके सेफ एनवायरनमेंट को बूस्ट अप करने के लिए जो एक हम लोगों ने माहौल तैयार किया था, उसमें हमारे पास बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जो इस दिशा में काम कर रही है, साथ में एक प्लेटफॉर्म पर आती जा रही है। आज यहाँ पर आर्या फैशन में हम लोग एकत्र हुए हैं जिसमें इन बच्चों की स्पेशल नीड्स को देखते हुए इनके मोटर कोऑर्डिनेशन, इनकी डेक्सटेरिटी को बढ़ाने के कुछ हम लोग इनकी ट्रेनिंग का उपाय शुरू कर रहे हैं। जो बच्चे ऑफ एज हैं जिनको इस माहौल से जोड़ा जा सकता है ताकि आगे चलकर वो इस स्किल को, इस कौशल को उठाकर अपने जीवन यापन का कोई रास्ता खोज सके, उस दिशा में आर्या फैशन के द्वारा अच्छी पहल की गई है जिसका हम स्वागत करते हैं।
0: भारत में हर 68 में से एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार है। ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों की इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद इसे लेकर देश और समाज में जागरूकता कम है। न्यूरो डेवलपमेंटल समस्या से जूझ रहे बच्चों के साथ साथ उनके परिवारों को जीवन यापन में सामाजिक स्वीकार्यता की कमी भी झेलनी पड़ती है। स्कूलों में समावेशी शिक्षा का अभाव और भविष्य में आजीविका की अनिश्चितता जैसी गंभीर समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में किसी काम को अच्छे से सीखना और कम समय में करने की योग्यता या हुनर इन्हें आगे चलकर आत्मनिर्भर ही बनाएगी। नोएडा से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुन रहे गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
12: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात सावन की हो, बात शिव जी की हो, बिना शिवलिंग के ये बातें पूरी नहीं हो सकती। भगवान शिव की लिंग रूप में पूरे विश्व में पूजा की जाती है। आखिर ये शिवलिंग है क्या, इसका महत्व क्या है, और क्या शिवलिंग की पूजा कभी भी कोई भी कर सकता है, इन तमाम विषयों पर आज चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की, और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 19 अगस्त 2026 दिन बुधवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि शाम के 7:19 तक, नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र प्रातः 6:46 तक, चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 12:01:30 तक, उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 19 अगस्त 2026 दिन बुधवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। बुध और बृहस्पति विद्यमान हैं कर्क राशि में, सूर्य और केतु सिंह राशि में, शुक्र कन्या राशि में, चंद्रमा तुला राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और मंगल फिलहाल विद्यमान हैं मिथुन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि शिवलिंग की महिमा क्या है। देखिए, शिवलिंग को शिव जी का निराकार स्वरूप माना जाता है। वैसे तो दिखाई देता है, आप उसे स्पर्श भी कर सकते हैं, लेकिन ये दरअसल प्रकाश का प्रतीक है और शिव जी का निराकार स्वरूप इसको मानते हैं। शिव जी की पूजा में शिव जी की मूर्तियां ना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बिना शिवलिंग के शिव जी की पूजा नहीं होगी। शिव जी की पूजा में इसकी सर्वाधिक मान्यता है। शिवलिंग में शिव और शक्ति दोनों समाहित होते हैं। शिवलिंग की जब आप उपासना करते हैं, शिवलिंग की जब आप पूजा करते हैं, तो शिव और शक्ति दोनों की उपासना संपूर्ण हो जाती है। अलग अलग प्रकार के शिवलिंगों की पूजा करने का प्रावधान शास्त्रों में बताया गया है। जैसे स्वयंभू शिवलिंग अपने आप जो धरती से प्रकट हुआ, नर्मदेश्वर शिवलिंग जो नर्मदा नदी से प्रकट हुआ, जनेऊधारी शिवलिंग जिस शिवलिंग पर सफेद रंग की लकीर हो, सोने और चांदी के शिवलिंग और पारद यानी पारे से बना हुआ शिवलिंग। स्वयंभू शिवलिंग की पूजा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। जो शिवलिंग अपने आप प्रकट हुआ है उसकी पूजा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा फलदायी भी है। भारत में कई जगहों पर स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुए हैं और उनकी विशेष पूजा उपासना सावन के महीने में या सोमवार के दिन की जाती है। शिवलिंग पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष वृषभ मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आती दिखाई दे रही है।

वृषभ राशि, चिंताएं समाप्त होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, मानसिक तनाव कम होगा, करियर की बाधा दूर होगी, धन खर्च बढ़ा रहेगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में कोई जोखिम ना लें, वाहन सावधानी से चलाएं, हरे फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शिवलिंग के माध्यम से हम लोग नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा उपासना करते हैं, लेकिन कुछ बातें शिवलिंग के लिए बड़ी महत्वपूर्ण हैं, वो बात भी आपको जानना चाहिए। देखिए, शिवलिंग की पूजा उपासना शिव पूजा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। शिवलिंग घर में अलग तरह से स्थापित होता है और मंदिर में शिवलिंग अलग तरीके से स्थापित होता है। शिवलिंग कहीं भी स्थापित हो, घर में हो या मंदिर में हो, उसकी वेदी का मुख उत्तर दिशा की तरफ ही होना चाहिए। घर में अगर आप शिवलिंग स्थापित करते हैं तो शिवलिंग बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, अधिक से अधिक 6 इंच का शिवलिंग यानी 12 अंगुल का शिवलिंग आप घर में रख सकते हैं। मंदिर में कितना भी बड़ा शिवलिंग स्थापित किया जा सकता है। विशेष उद्देश्यों के लिए और विशेष कामनाओं को पूर्ण करने के लिए पार्थिव शिवलिंग नदी की मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उसकी भी पूजा की जाती है। तो जो ये सोचते हैं कि हम घर में शिवलिंग नहीं रख सकते, उनको मैं बता दूं कि छोटे आकार का सबसे उत्तम होगा नर्मदा नदी से निकला हुआ नर्मदेश्वर शिवलिंग, अगर आप अपने घर में स्थापित करें और नियमित रूप से उनको जल अर्पित करें तो आपका कल्याण होगा। शिवलिंग पर चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, कोई शुभ सूचना आपको इस समय प्राप्त होगी, नौकरी में पदोन्नति होगी, पारिवारिक समस्या हल होगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, करियर में सुधार होगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, धन

बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर में कुछ बदलाव होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, काम में लापरवाही ना करें, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब आपको बताते हैं कि जब आप शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो शिवलिंग की पूजा में आपको क्या क्या अर्पित करना चाहिए। देखिए, शास्त्र कहता है कि भगवान विष्णु अलंकार से प्रसन्न होते हैं, सूर्य देव नमस्कार से प्रसन्न होते हैं और शिव जी जल से प्रसन्न होते हैं। तो शिव जी की पूजा में दो वस्तुओं का बड़ा महत्व है, सबसे ज्यादा तो जल का और उसके बाद बेलपत्र का। जल और बेलपत्र, इन दोनों वस्तुओं से शिव जी की विधिवत पूजा की जा सकती है। इसके अलावा कच्चा दूध, सुगंध, गन्ने का रस, चंदन, इनसे भी शिव जी का अभिषेक किया जाता है। शिव जी को कभी भी सेमल, जूही, कदंब और केतकी अर्पित नहीं करना चाहिए, वरना आपकी पूजा का फल नहीं मिलेगा, पूजा आपकी निष्फल हो जाएगी। अब आप शिवलिंग पर मान लिया जल चढ़ा रहे हैं या पंचामृत चढ़ा रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखेंगे? शिवलिंग पर जलीय पदार्थ अगर लिक्विड अर्पित करेंगे तो उसकी धारा बनाकर शिवलिंग पर अर्पित करिएगा। अगर ठोस पदार्थ अर्पित कर रहे हैं, मिठाई है, फल है, फूल है, तो दोनों हाथों से उसको शिवलिंग पर लगाइएगा। शिवलिंग पर आप कुछ भी अर्पित करें, अंत में जल जरूर अर्पित करिएगा। और शिवलिंग पर तामसिक चीजें अर्पित नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग पर बहुत सारे लोग सरसों का तेल अर्पित करते हैं। आपको पता नहीं है कि शिवलिंग पर सरसों का तेल अर्पित करना एक मारण प्रयोग है। विशेष मंत्रों के साथ तंत्र में इसका प्रयोग होता है, बिना जाने बूझे केवल सुन सुनाकर दिखावे के लिए शिवलिंग पर तेल अर्पित मत करिए, वरना परिणाम सुखद नहीं होंगे। शिवलिंग पर सबसे महत्वपूर्ण है कि आप हर हाल में अपने घर से भरकर जल ले जाइए और शिवलिंग पर अर्पित करिए, मंदिर का जल भर के मंदिर में अर्पित मत करिएगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन की प्राप्ति होगी, परिवार में शुभ कार्य होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
मकर राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, रुका हुआ काम बन जाएगा, विवाह तय हो सकता है। शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, करियर में लाभ होगा, अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, रिश्तों में समस्या हो सकती है, हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब कार्यक्रम में जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर आपकी एकाग्रता कमजोर है तो जहां काम करते हैं, जहां पढ़ते लिखते हैं, वहां उगते हुए सूर्य का चित्र लगाइएगा। सामने अपनी आंखों के उगते हुए सूर्य का चित्र लगाएं, निरंतर उसे देखते रहें, आपका कॉन्सेंट्रेशन, आपकी एकाग्रता बेहतर हो जाएगी। अब जान लेते हैं दिनांक 19 अगस्त 2026 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल शिव जी को शिवलिंग पर जाकर बेलपत्र अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उसमें से एक बेलपत्र अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
6: मुंबई में गणेशोत्सव की तैयारियां तेज हो गई हैं। गणपति बप्पा के जयकारों से मुंबई की गलियां गूंजने लगी हैं, और गणेशोत्सव के शुरू होने से पहले ही काला चौकी के महागणपति बप्पा अपने भक्तों के बीच पहुंच चुके हैं। 22 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा को कारखाने से पंडाल तक पूरे विधि विधान और भक्तिभाव के साथ लाया गया। सिंह पर सवार मां गणपति का ये स्वरूप भक्तों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मानो बप्पा स्वयं महालक्ष्मी के दिव्य स्वरूप में भक्तों को आशीर्वाद देने पहुंच रहे हों। बप्पा के आगमन की खबर मिलते ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु सड़कों पर उमड़ पड़े। कहीं ढोल ताशों की गूंज थी तो कहीं बप्पा के जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय हो उठा। भक्तों ने जमकर डांस किया, नौजिम की ताल पर कदम थिरकाए और अपने आराध्य का जोरदार स्वागत किया। दरअसल मुंबई में गणेश प्रतिमाओं के पंडालों तक पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बड़ी बड़ी प्रतिमाओं को पंडालों में स्थापित करने के बाद अब साज सज्जा और डेकोरेशन का काम तेजी से हो रहा है, क्योंकि 14 सितंबर को मुंबई समेत महाराष्ट्र और देश भर में गणेशोत्सव की शुरुआत। चले आपको ले चलते गुजरात के सबसे बड़े शक्तिपीठ मां अंबा के उस पावन दरबार में, जहां पर भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने परिवार के साथ पहुंचकर मां का आशीर्वाद लिया। अक्षर पटेल अपने माता पिता, पत्नी और बेटे के साथ अंबाजी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से मां की आराधना की, पूजा अर्चना की, सुख समृद्धि की कामना मांगी। अक्षर के मंदिर पहुंचते ही मंदिर ट्रस्ट की ओर से उनका स्वागत किया गया और इस दौरान क्रिकेटर ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मां के दर्शन किए। गुजरात के बनासकांठा में स्थित अंबाजी मंदिर देश के प्रमुख शक्तिपीठों में शामिल है और मान्यता यह है कि मां अंबा के इस दिव्य दरबार के दर्शन करने से भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर।
7: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा, स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
7: झूलनोत्सव के बीच राम मंदिर का भव्य श्रृंगार, सुनहरी रोशनी से नहाया मंदिर का शिखर, सावन के पवित्र महीने में दिखा अनोखा नजारा। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की तैयारियां तेज, मुंबई के प्रसिद्ध काला चौकी महागणपति का हुआ आगमन, सिंह पर सवार नजर आए 22 फीट ऊंचे बप्पा। पवित्र सावन महीने में धूमधाम से जारी कांवड़ यात्रा, जौनपुर में शिव भक्तों पर की गई फूलों की बारिश, प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से बरसाए फूल। पहाड़ से मैदान तक मौसम की मेहरबानी बरकरार, शिमला में 21 अगस्त तक बारिश का अलर्ट, चंडीगढ़ में जमकर बरस रहे बादल। महिला हॉकी वर्ल्ड कप में भारत का दबदबा, साउथ अफ्रीका को 6-1 से हराकर पूल डी में हासिल किया टॉप स्थान, अब इंग्लैंड से होगा सामना। आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है, इनसे आपका बाखबर होना भी है जरूरी है, क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा उत्तरकाशी में खेली गई दूध और मक्खन की होली की भी है।
9: ओडिशा के गंजम से एक चोर और उसका पीछा करती चार थानों की पुलिस का दिलचस्प वीडियो सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि एक जेसीबी तेज रफ्तार से आती है और बैरिकेड्स तोड़ती हुई आगे निकल जाती है। पुलिस बैरिकेड्स लगाती है, उसे हाथों के इशारे से रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन जेसीबी नहीं रुकती और चोर एक बार फिर फरार हो जाता है। लेकिन पुलिस भी उसका पीछा करना नहीं छोड़ती और उसे तब तक सड़कों पर दौड़ाती रही जब तक कि उसने हार नहीं मान ली। असल में ये जेसीबी चोरी की थी। पुलिस को जब इसकी सूचना मिली तो चार थानों की पुलिस छानबीन में लग गई और फिर ये मंजर सामने आया। हालांकि पुलिस ने जेसीबी बरामद कर ली है, लेकिन चोर का भी पता नहीं चला। पुलिस के मुताबिक चोर थक कर खुद ही जेसीबी को खेत में छोड़कर भाग गया। पंजाब के मोगा में एक महिला का पंछी प्रेम चर्चा में है। इनका नाम है हरप्रीत कौर। ये तस्वीरें उनके घर की हैं, जो करीब 500 पंछियों का बसेरा है। ये यहाँ रोजाना आते हैं और अपनी चहचहाट से इस घर को गुलजार रखते हैं, क्योंकि यहाँ उन्हें न सिर्फ धूप और बारिश से बचने का ठिकाना मिलता है, बल्कि यहाँ इनके लिए इनके हिसाब से दाना पानी की भी व्यवस्था है। हरप्रीत ये जिम्मेदारी पिछले 13 सालों से संभाल रही हैं। उनका ज्यादातर वक्त इनके साथ ही बीतता है। उनके इस नेक काम में परिवार के लोग भी इनकी मदद करते हैं। हरप्रीत के मुताबिक सालों पहले एक चिड़िया अपने बच्चे के साथ ठिकाना ढूंढती यहाँ पहुंची थी, उसकी मदद के बाद से ही ये सिलसिला चल पड़ा। तस्वीरें उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल की हैं, जहां धूमधाम से मनाया गया बटर फेस्टिवल। इस मौके पर लोगों ने दूध, मक्खन और मट्ठे से जमकर होली खेली। होली के बाद कृष्ण और राधा के बिना अधूरी है, सो बुग्याल के इस पारंपरिक बटर फेस्टिवल में राधा और कृष्ण की झलक भी देखने को मिली। यहां हर साल भाद्रपद महीने की संक्रांति को ये त्यौहार मनाया जाता है। खास परंपरा के जरिए प्रकृति का आभार जताने वाले इस त्यौहार का आयोजन रैथल गांव की दयारा पर्यटन उत्सव समिति और ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। रैथल के ग्रामीण इसमें बड़े ही उत्साह के साथ हिस्सा लेते हैं। ईश्वर में आस्था की ये तस्वीरें देखिए। एक माँ अपनी 2.5 साल की बच्ची को बहंगी में लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम चली हैं। इनका नाम रीनू भारती है, प्रयागराज के रहने वाली हैं। रीनू के मुताबिक उन्होंने मन्नत मांगी थी कि संतान होने पर बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचकर अपनी बच्ची का मुंडन संस्कार करवाएंगे। अब मन्नत पूरी हो गई तो भगवान से किया हुआ अपना वादा निभाने बेटी को लेकर बाबा के दरबार जा रही हैं। वहीं हावड़ा के शिवपुर से सोमनाथ भी अपने 7 महीने के बेटे प्रिंस को बहंगी में बैठाकर बाबा धाम के लिए निकले हैं। कांवड़ में एक तरफ गंगा जल और दूसरी तरफ उनका मासूम बेटा है। इनकी भी मन्नत पूरी हुई है, ये भी बाबा बैद्यनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने जा रहे हैं।
7: और अब बात करते हैं रक्षाबंधन की तैयारियों की। रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम और अटूट विश्वास का पवित्र त्यौहार है, जो हर साल सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं, उनकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं, और भाई अपनी बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। रक्षाबंधन का पर्व 28 अगस्त को मनाया जाएगा। ऐसे में बाजारों में कई तरह की राखी बिक रही है, जहां अजमेर के बाजारों में खाटू श्याम, कार्टून कैरेक्टर और तिरंगे वाली राखियों की डिमांड है, तो वहीं उधमपुर में छात्राओं ने सीआरपीएफ जवानों को राखी बांधकर उन्हें देश की रक्षा के लिए धन्यवाद दिया।

0: रक्षाबंधन के पावन पर्व को लेकर देश भर के बाजार रंग बिरंगे और आकर्षक राखियों से पूरी तरह सज गए हैं। सुबह से शाम तक बाजारों में चहल पहल बनी हुई है। दुकानों पर डिजाइनर कुंदन मोती और बच्चों के लिए कार्टून वाली राखियां उपलब्ध हैं, जिन्हें खरीदने के लिए बाजारों में बहनों की भारी भीड़ उमड़ रही है। दुकानदार भी बड़ी भीड़ से अच्छे कारोबार की उम्मीद लगाए हैं। कहीं राखी पर बाबा खाटू श्याम की तस्वीर तो कहीं फूलों से सजी राखियां। रक्षाबंधन अब कुछ ही दिन दूर है और खूबसूरत राखियों से बाजार सज गए हैं। इस बार खाटू श्याम और तिरंगा वाली राखियों की बाजार में खासी डिमांड है। इस बार राखियों के डिजाइन में कुछ अनोखे प्रयोग भी किए गए हैं। बच्चों के पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर राखियों पर दिख रहे हैं। छोटे बच्चों के लिए लोग ऐसी ही राखियां खरीद रहे हैं।
1: बार भैया बच्चों के पैटर्न्स बहुत ज्यादा अच्छे आए, नए नए डिजाइन, बच्चों की वैरायटी में बहुत ज्यादा पैटर्न, कॉम्बो की वैरायटीज बहुत ज्यादा आई है इस बार।
2: बच्चों में भी पोकेमॉन वगैरह,
1: बच्चों के अंदर पोकेमॉन, डोरेमोन, कृष्णा जी, लगभग सब वैरायटी है। लबूबू डॉल का ज्यादा क्रेज चल रहा है, जैसे उस टाइप की राखियां बहुत आई है इस बार। खाटू श्याम के बहुत सारे पैटर्न्स आए, बहुत सारे आर्टिकल्स आए उनके।
0: इस साल रक्षाबंधन का पर्व 28 अगस्त को मनाया जाएगा। त्योहार में अभी एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त है, लेकिन बाजारों में रक्षाबंधन की रौनक अभी से देखने लगी है। जिन बहनों के भाई दूसरे शहर या देश में रहते हैं, उन्हें डाक से राखी भेजने के लिए बहनें अभी से राखी खरीद रही हैं।
3: इस बार बहुत अच्छा है, जैसे कि इन्होंने 15 अगस्त के हिसाब से बहुत अच्छा कलेक्शन रखा है, बैंक्स वगैरह और कृष्ण जी वगैरह, भगवान से रिलेटेड बहुत सारी राखियां हैं, बहुत अच्छी।
0: हर राखी अपने आप में खास होती है, लेकिन अहमदाबाद की इन राखियों में देश प्रेम और समाज सेवा का संदेश भी छिपा है। कुछ राखियों में तिरंगे की छटा दिख रही है, तो कुछ में स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ी अहम जानकारियां हैं। कहीं इमरजेंसी सपोर्ट नंबर का जिक्र है, तो कहीं मन की बात में प्रधानमंत्री के नशा मुक्ति से जुड़े संदेश को जन जन तक पहुँचाने की कोशिश की गयी है। खास बात यह है कि ये राखियां सामाजिक समरसता का पैगाम भी दे रही हैं।
4: पचास साल सी मैं ये दुकान के अंदर भागीदार हूँ। पहले मेरा राधे श्याम गुप्ता जी पार्टनर थे, अभी उनका लड़का सुनील गुप्ता मेरा पार्टनर है, और उनके साथ मिलके राम रहीम की जोड़ी का एक पैगाम दुनिया को पहुँचाते हैं कि अभी मैं मुस्लिम होते हुए भी हिंदू बहनों के लिए राखियाँ बनाता हूँ। जिसे इस बार मैंने तिरंगा की राखी के अंदर भी राखियां बनाई कि हर घर घर तिरंगा लहराएगा, इसी तरह ये तिरंगा के अंदर सारे जहां से अच्छा हिंदू सीखा हमारा। उसके बाद मन की बात में जो प्रधान मोदी जी ने कहा है कि 100 सप्ताह मेरा ये व्यसन मुक्ति अभियान चलेगा, तो उनके दिमाग में मेरी जो बात थी वो बैठ गई और मैंने उनके लिए लाखों की तादाद में राखियां व्यसन मुक्ति की बनाई है।
0: ये तस्वीरें अलीगढ़ के पोस्ट ऑफिस की हैं, जहां वाटरप्रूफ लिफाफा खरीदने और राखी भेजने के लिए लंबी कतारें लगी हुई हैं। रक्षाबंधन पर दूर रहने वाले भाइयों तक राखी सुरक्षित पहुंचाने के लिए डाक विभाग ने विशेष तैयारी की है। बारिश के मौसम को देखते हुए डाकघरों में 10 रुपए की कीमत वाले वाटरप्रूफ लिफाफे उपलब्ध कराए गए हैं। डाक विभाग ने राखी बॉय स्पीड पोस्ट लिफाफा जारी किया है। विशेष राखी लिफाफा रंगीन और वाटरप्रूफ है। इसे राखियों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। डाक विभाग की ओर से इसकी हैंडलिंग के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है, ताकि राखियां सुरक्षित तरीके से गंतव्य तक पहुँच सकें। इन लिफाफों में राखी भेजने पर उसके भीगने या खराब होने की चिंता नहीं रहेगी। बारिश के दौरान सामान्य लिफाफे के भीगने से राखी खराब होने की आशंका रहती है, लिहाजा डाक विभाग ने वाटरप्रूफ लिफाफे उपलब्ध कराए हैं। इनमें राखी रखकर देश के किसी भी हिस्से में भेजी जा सकती है।
5: 2026 में रक्षाबंधन के त्योहार को सफलतापूर्वक मनाए जाने के लिए डाक विभाग द्वारा 10 रुपए का जो वाटर प्रूफ विशेष राखी का लिफाफा तैयार करा करके काउंटरों पर और अलीगढ़ मंडल के प्रत्येक डाकघर में जो है ये उपलब्ध करा दिए गए हैं।
0: कम कीमत में राखी सुरक्षित भेजने की सुविधा डाक विभाग की अच्छी पहल है। इससे दूर रह रहे भाई बहनों के बीच रक्षाबंधन का त्योहार और खास हो सकेगा।
6: ये बहुत अच्छा है डाकघर, ये यहाँ पे जो लिफाफे मिल रहे हैं वो वाटरप्रूफ है, बहुत अच्छा है और यहाँ पे सेवाएं बहुत अच्छी है। 24 घंटे डाकघर में कांटो खुले ही रहते हैं।
0: उपभोक्ता इस लिफाफे में राखी रखकर स्पीड पोस्ट या साधारण डाक के माध्यम से देश के किसी भी हिस्से में भेज सकते हैं। डाक विभाग का उद्देश्य है कि त्योहार के अवसर पर बहनों का स्नेह और शुभकामनाएं समय पर उनके भाइयों तक पहुंच सके। भाई बहनों के अटूट स्नेह और सम्मान का त्योहार रक्षाबंधन इस रिश्ते को एक सूत्र में पिरो देता है। भावुक कर देने वाली ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के उधमपुर से आई हैं। उधमपुर में रक्षाबंधन से पहले छात्राओं ने सीआरपीएफ जवानों के साथ त्योहार की खुशियां साझा की। इस दौरान छात्राओं ने जवानों की कलाई पर राखी बांधी और उनके प्रति स्नेह और सम्मान जताया। वहीं जवानों ने भी छात्राओं को आशीर्वाद दिया। इस भावुक मौके पर भाई बहन के रिश्ते के साथ देश की सुरक्षा में तैनात जवानों के प्रति सम्मान की खूबसूरत झलक देखने को मिली।
7: कैसे हमारे जवान सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर अपनी सेना तैनात कर हमारे हाईवे में ड्यूटीज दे रहे थे। हमने सोचा क्यों ना हम उनके साथ रक्षाबंधन मनाएं। वो अपनी बहनों के साथ मिलने नहीं जा पाते, क्यों ना हम उनकी बहन बनकर वो हमारी पूरी देश की सेवा करते, तो हमारा तो फर्ज बनता है कि उनके साथ रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर पाएं। हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप जब तक हमारे बॉर्डर पे हैं तब तक हम चैन की नींद घर पर सो पा रहे हैं, वरना ये बहुत मुश्किल था। जैसे आपने देखा कि बहुत से इंसिडेंट अभी पिछले ही हुए हैं, टेररिस्ट अटैक्स वगैरह, लेकिन इनकी बदौलत हम अपने घर पर चैन की नींद सो पाते हैं।
0: ड्यूटी पर तैनात सीआरपीएफ जवानों को देखकर छात्राओं ने महसूस किया कि ड्यूटी के कारण ये जवान अपनी बहनों के साथ रक्षाबंधन नहीं मना पाते। इसी भावना के साथ उन्होंने जवानों को अपना भाई मानकर उनकी कलाई पर राखी बांधी। इस दौरान माहौल भावुक और अपनापन से भरा नजर आया। पावन सावन की पूर्णिमा पर मनाया जाने वाला रक्षाबंधन पर्व भाई बहन के रिश्ते को प्रेम के अटूट बंधन से जोड़ता है। इस त्योहार को खास बनाने के लिए बहनें अपने भाई की पसंद का ख्याल रखते हुए खास राखियां बाजार से खरीद कर लाती हैं। इस बार बाजार में पारंपरिक राखियों के साथ इको फ्रेंडली और अनोखे डिजाइन वाली राखियां इस त्योहार की खूबसूरती को और बढ़ा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का ऐलान हो गया है। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
0: नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 का ऐलान हो गया है। इसमें अलग अलग खेलों के 17 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड के लिए चुना गया है, जबकि 3 कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाएगा। द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए एथलेटिक्स में परवीर सिंह, बॉक्सिंग में छोटेलाल यादव और शूटिंग के लिए नेहानंद कुमार चौहान को चुना गया है। वहीं अर्जुन पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ियों में एथलेटिक्स से तेजस्विनी शंकर, बैडमिंटन में त्रिशा जौली, बॉक्सिंग में नरेंद्र शामिल हैं। नोएडा में यूपी पुलिस की ओर से ऑपरेशन अपराजय के तहत दिव्यांग और ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के लिए खास ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें ऑटिज्म और डाउन सिंड्रोम से प्रभावित स्पेशल बच्चों को हैंडमेड ज्वेलरी बनाने की ट्रेनिंग दी गई। ये ट्रेनिंग कैंप आर्या फैशन और रेनबो किड्स फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित किया गया। पालतू हाथियों के हित में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को राज्यों के साथ मिलकर हाथी क्लिनिक स्थापित करने को कहा है, साथ ही हाथियों का मेडिकल रिकॉर्ड रखना अनिवार्य कर दिया है। केरल के कन्नूर के रहने वाले साइकिलिस्ट सनीद नशे के खिलाफ एक कठिन यात्रा पर निकले हैं। सनीद युवाओं में नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए साइकिल से नेपाल के एवरेस्ट बेस कैंप की लंबी यात्रा पर निकले हैं। खास बात यह है कि इसके लिए उन्होंने जो साइकिल चुनी है वो बिना फ्रंट टायर यानी एक पहिए वाली है।
8: और अब बात बारिश, बाढ़ और रेस्क्यू की। देश में कई राज्य भारी बारिश और बाढ़ से परेशान हैं। भारी बारिश के चलते तमाम नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में पुलिस और एसडीआरएफ जैसी एजेंसियों को राहत और बचाव के लिए लगाया गया है, जो अब तक सैकड़ों जिंदगियों को बचा चुकी है। वहीं मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान लगाया है। इनमें झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश शामिल है। यानी अगस्त के महीने में देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहने वाला है।
0: सावन के महीने में देश के कई हिस्सों में हो रही भारी बारिश के बीच कई नदियां उफान पर बह रही हैं, जिससे कई जगहों पर सैलाब जैसे हालात बन गए हैं। और इस मुश्किल हालात में देश के जांबाज रेस्क्यू मिशन चलाकर लोगों को बचाने में जुटे हुए हैं। सैलाब के सितम को देखकर किसी की भी रूहें कांप उठेंगी। ऐसा लगता है कि नदी की तेज धारा से उठता ये सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा ले जाएगा, लेकिन जाबाजों की दिलेरी के आगे यह सैलाब बौना नजर आया। उत्तराखंड के ऋषिकेश में SDRF ने पुलिस के साथ मिलकर बेहद मुश्किल हालात में सैलाब में फंसे 2 लोगों की जान बचाई। दरअसल सोमवार शाम से हो रही तेज बारिश के चलते बीन नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। नदी के तेज बहाव की वजह से तालघाटी इलाके की ओर जा रही एक गाड़ी कंट्रोल नहीं रख पाई और पानी में बह गई। इस गाड़ी में 2 लोग सवार थे। हादसे की सूचना स्थानीय लोगों ने थाना लक्ष्मण झूला पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम और SDRF की टीम मौके पर पहुंची। तस्वीरों में देख सकते हैं कि पानी के तेज बहाव में गाड़ी उल्टी हुई है। रस्सी की मदद से SDRF के जवान गाड़ी के ऊपर पहुंचते हैं, गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं और उसमें फंसे 2 लोगों के रेस्क्यू में जुट जाते हैं। काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम ने गाड़ी में फंसे एक व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाल लिया और थोड़ी देर में दूसरे व्यक्ति को भी निकाल लिया। रेस्क्यू करने के बाद दोनों घायलों को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।
9: ये मामला हमें जो हमारी टीम है डालवाला में, हमें सूचना मिली लगभग 9:15 के लगभग कि एक मैक्स बीन नदी में पलट गई और जो नीचे चली गई। तो हमारी टीम तुरंत यहाँ पर पहुंची है और यहाँ पे देखा तो एक व्यक्ति उसमें ऊपर बैठा हुआ दिखाई दिया। तो हमारी टीम रोप लगा के अपने उपकरणों के माध्यम से उस तक पहुंची है उप नदी में और उसको रेस्क्यू कर लिया गया और उसको हॉस्पिटल गया। तब उसके बाद पता चला कि एक व्यक्ति अंदर था जो बुरी तरह से फंसा था। उसके लिए टीम द्वारा हमारे बहुत भरसक प्रयास किया गया और कई प्रयासों के बाद हम उस व्यक्ति का रेस्क्यू कर गए और उसको भी हमें हमारे द्वारा टीम द्वारा हॉस्पिटलाइज किया गया।
0: उधर देहरादून में बाढ़ के बीच फंसे 6 छात्रों के लिए SDRF के जवान देवदूत बनकर पहुंचे। पहली नजर में तो ऐसा लगता है जैसे किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है। लोहे के पुल पर ये लोग धीरे धीरे खिसक कर बचने की कोशिश कर रहे हैं। असल में यूनिवर्सिटी के ये 6 छात्र ट्रैकिंग के लिए स्वर्णा नदी क्षेत्र में गए थे। वापस लौटते वक्त अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और देखते देखते स्वर्णा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा। नदी का पानी बढ़ने के कारण ये वहां फंस गए। हालात बिगड़ते देख इसकी सूचना SDRF को दी। सूचना मिलते ही SDRF की रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद सभी का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में जहां सड़कें थी वहां सैलाब बह रहा है। घरों के अंदर कई फीट तक पानी भर चुका है। आसनसोल के रेलपार इलाके में बाढ़ जैसे हालात के बीच बड़ी संख्या में लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह गए हैं। राहत बचाव टीम के सदस्य कमर तक भरे पानी में उतरकर तंग गलियों से होते हुए जरूरतमंदों तक खाने पीने की चीजें पहुंचा रहे हैं।
10: सिविल डिफेंस का टीम ऑलरेडी यहाँ पे आया हुआ है, कहीं कोई अगर निकलना चाहता है फंस गया तो बताइए। और अभी सबका खाना का प्रबंध हो रहा है, पूरी सब्जी बन रहा है, घबराना किसी को नहीं है। यहाँ पे घरों में लोग जो फंसे हुए है सबको अभी पावरोटी दूध दिया गया है। अभी हम लोग सोन पापड़ी गली, काली मंदिर, भातका रोड पोस्ट ऑफिस गली, बुहार, सब तरफ हम लोग टीम पहुंचेगा। हम लोग खुद पहुंचेंगे और घर घर में जाके लोगों को हम लोग जो खाने पीने का सामग्री एसेंशियल चीजें देंगे। उसके अलावा हम लोग सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अब रिस्क ना ले आप लोग। सिविल डिफेंस का टीम आया हुआ है और आप लोग घर से निकल, आप लोग को हम लोग लेने के लिए आ रहे हैं, साथ में निकले क्योंकि ये रिस्की हो जाएगा, पानी बहुत बढ़ते जा रहा है।
0: ऐसे हालात में सिविल डिफेंस की टीम पीड़ितों की मदद के लिए घर घर पहुंचकर मुसीबत में फंसे लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचा रही है। हिमाचल में कुल्लू की मणिकर्ण घाटी में उफनती पार्वती नदी के बीच फंसे युवक को बचाने की जद्दोजहद चल रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि चट्टान पर 2 युवक खड़े हैं। इनमें से एक दिल्ली का पर्यटक है जो पार्वती नदी में जलस्तर बढ़ने की वजह से वहां फंस गया और दूसरा उसकी जान बचाने के लिए पहुंचा युवक है। ये युवक रस्सी की मदद से उफनती नदी के बीच अपनी जान जोखिम में डालकर चट्टान तक पहुंचा। पहले ये युवक पर्यटक को रस्सी की मदद से किनारे तक पहुंचाने में मदद करता है, फिर खुद रस्सी के सहारे सकुशल किनारे पर पहुंच जाता है। हिमाचल प्रदेश में चंबा का भरमौर इलाका इन दिनों फ्लैश फ्लड का सामना कर रहा है। और बलूच गांव में बादल फटने के बाद आए सैलाब की वजह से लोहे का एक पुल बह गया। बहाव इतना तेज था कि यहां की सड़क भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। सड़क और पुल के बह जाने से मां भगवती खुंडी वाली के दर्शनों के लिए जा रहे करीब 40 से 50 श्रद्धालु बीच रास्ते में ही फंस गए। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि नदी के तेज बहाव के आसपास दिख रहे लोग खुद को बचा नहीं सकते थे। ऐसे मुश्किल वक्त में गांव वाले इनका रेस्क्यू करने पहुंचे। यहां फंसे सभी लोगों को रास्ता दिखाते हुए गांव वाले आगे बढ़े और सैलाब के किनारे किनारे होते हुए एक ऐसी जगह पहुंचे जहां लोगों ने नदी के ऊपर लकड़ी का एक अस्थायी पुल बनाकर सभी को सुरक्षित रेस्क्यू किया।

0: बड़ग्राम में फ्लैश फ्लड के बीच एक और मिशन जिंदगी को अंजाम दिया गया। ये वाक्य जितना दिलचस्प है कहीं उससे अधिक हैरान करने वाला भी है। हुआ ये कि फ्लैश फ्लड आने से पनाली नाला ने अचानक विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे इस रास्ते से जा रही बारात फंस गई। संकट की इस घड़ी में एक स्थानीय लड़के ने अपनी जान जोखिम में डालकर दूल्हे को अपनी पीठ पर उठाया और उफनते नाले को सुरक्षित पार करवाया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आसनसोल से अनिल गिरी, चंबा से विशाल आनंद और कुल्लू से मनिंदर अरोड़ा के साथ देहरादून संकेत शर्मा, गुड न्यूज टुडे।
1: न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
0: हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 493 अंक लुढ़क कर 77,235 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी लगातार छठे दिन गिरा और 133 अंक फिसल कर 24,155 पर आ गया। सोने चांदी की कीमतों में तेजी आई। ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के मुताबिक मंगलवार को सोना 2,000 रुपये महंगा हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 1,58,800 रुपये हो गई। वहीं चांदी भी 730 रुपये ऊपर चढ़ी। अब 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 2,40,730 रुपये पर पहुंच गई। मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया, इसमें 7 पैसे की गिरावट आई। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 95.68 रुपए हो गई।
1: प्राइम वीडियो की पीरियड ड्रामा सीरीज द रेवोल्यूशनरीज का प्रीमियर 11 सितंबर को होगा। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चले फिल्मी मोड पर।
0: प्राइम वीडियो की पीरियड ड्रामा सीरीज द रेवोल्यूशनरीज का प्रीमियर 11 सितंबर को होगा। इसमें भुवन बाम, रोहित सर्राफ, प्रतिभा रांटा और गुरफते पीरजादा मुख्य भूमिकाओं में हैं। निखिल आडवाणी के निर्देशन में बनी ये सीरीज लेखक संजीव सान्याल की किताब रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम पर आधारित है। कहानी 4 कम चर्चित क्रांतिकारियों की है जो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष का रास्ता चुनते हैं। सीरीज में रास बिहारी बोस, सचेंद्र नाथ सान्याल, प्रतिभा लाहिड़ी और बाघा जितिन की कहानी दिखाई जाएगी। सलमान खान की अगली फिल्म SVC 63 की शूटिंग इन दोनों मुंबई के गोरेगांव में बने अफगानिस्तान के सेट पर चल रही है। यहां फिल्म के अहम एक्शन सीक्वेंस शूट किए जा रहे हैं। इसी बीच 26 अगस्त को सलमान खान के हिंदी सिनेमा में 38 साल पूरे होने वाले हैं। ऐसे में फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि इस खास मौके पर फिल्म का ऑफिशियल टाइटल या अनाउंसमेंट टीजर जारी किया जा सकता है। एक फैन ने प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस को ईमेल भी किया है। हालांकि मेकर्स ने अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। फिल्म का निर्देशन वामसी पेडिपल्ली कर रहे हैं। आवारापन 2 बॉक्स ऑफिस पर लगातार मजबूत पकड़ बनाए हुए है और अब फिल्म 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने की ओर बढ़ चुकी है। वीकेंड पर शानदार कमाई के बाद सोमवार को भी फिल्म की कमाई मजबूत रही। खासतौर पर टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मंगलवार को टिकटों पर मिल रहे डिस्काउंट ऑफर से थिएटर्स में दर्शकों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि रिलीज के 5वें दिन फिल्म 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा छू सकती है। अक्षय ओबेरॉय और हेली दारूवाला स्टारर लव लॉटरी का टीजर रिलीज हो गया है। फिल्म 18 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। टीजर रिश्तों की पेचीदगियों के साथ कई गंभीर सवाल खड़े करता है। ये फिल्म कोर्टरूम ड्रामा, मर्डर मिस्ट्री और सस्पेंस थ्रिलर का मिश्रण है। फिल्म में कबीर, दुहन सिंह, हेमंत पांडे, विजयंत कोहली, इंदिरा कृष्णन और संतोष शुक्ला भी अहम भूमिकाओं में हैं। कुलदीप भार्गव ने इसे प्रोड्यूस किया है जबकि अरविंद पांडे इसके निर्देशक हैं। कहानी अंकुर खत्रे ने लिखी है। फिल्म रेड आई स्टूडियोज की रिलीज है।
1: फ्रैंकफर्ट में ब्राजील ने रिदमिक जिमनास्टिक्स में शानदार इतिहास रचा है। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां दुनिया भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
0: अंतरिक्ष तक पहुंच को आसान और कम खर्चीला बनाने की दिशा में B2 स्पेस का रॉकून सिस्टम नई उम्मीद जगा रहा है। इस तकनीक में एक बड़ा स्ट्रेटोस्फेरिक गुब्बारा रॉकेट को करीब 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाएगा। इसके बाद रॉकेट को वहां से अंतरिक्ष की ओर लॉन्च किया जाएगा। इससे छोटे सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में भेजने से पहले उसकी टेस्टिंग भी की जा सकेगी। तेज यूवी रेडिएशन, तापमान और भारी पेलोड जैसी परिस्थितियों में सैटेलाइट्स की जांच संभव होगी। इससे अंतरिक्ष मिशनों की लागत कम करने में मदद मिल सकती है। चीन में दुर्लभ शवल नोज रे मछली के संरक्षण की दिशा में बड़ी कामयाबी मिली है। सान्या में इस प्रजाति ने 12 बच्चों को जन्म दिया है। वैज्ञानिकों ने कृत्रिम प्रजनन के जरिए इन बच्चों को पैदा करने में सफलता हासिल की। IUCN के मुताबिक ये प्रजाति गंभीर खतरे में है और संरक्षण नहीं मिलने पर इसके विलुप्त होने का खतरा है। मछली के माता पिता को 2018 में कानूनी तरीके से एक्वेरियम लाया गया था। तब से उनकी सेहत और प्रजनन पर लगातार नजर रखी जा रही थी। अब इन 12 बच्चों पर रिसर्च से इस प्रजाति के संरक्षण की नई तकनीक विकसित करने में मदद मिलेगी। तुर्की के खेत इन दिनों लाल टमाटरों से पटे नजर आ रहे हैं। तेज धूप में सुखाए जाने के बाद इन टमाटरों को यूरोप भेजा जाता है, जहां का इस्तेमाल पिज्जा सॉस और कई स्वादिष्ट डिश बनाने में होता है। खास बात यह है कि मजदूर 40 डिग्री से ज्यादा तापमान में भी खेतों में काम करते हैं। पहले टमाटरों को तोड़ा जाता है, फिर आधा काटकर उन पर नमक लगाया जाता है और धूप में सुखाया जाता है। कई दिनों तक चलने वाली इस प्रक्रिया के बाद सूखे टमाटरों को पैक कर यूरोप भेज दिया जाता है। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में ब्राजील ने रिदमिक जिम्नास्टिक्स में शानदार इतिहास रच दिया। ब्राजील की लियोआस टीम ने एक ही दिन में 2 गोल्ड मेडल जीतकर अपना दबदबा कायम किया। 5 बॉल्स फाइनल में टीम ने स्पेन और बुल्गारिया को पछाड़ते हुए अपना पहला वर्ल्ड टाइटल जीता। वहीं यूक्रेन की ओनो फ्रिचुक ने होप फाइनल में गोल्ड अपने नाम किया। इटली की सोफिया राफेली ने सिल्वर जीता। बुल्गारिया की निकोलोवा ने क्लब्स में गोल्ड और रिबन में सिल्वर हासिल किया, जबकि जर्मनी की वारफोलोमीव ने 14वां वर्ल्ड टाइटल जीता है।
1: न्यूज पथ में हम खबरों के सफर को आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
1: झूलनोत्सव के बीच राम मंदिर का भव्य श्रृंगार, सुनहरी रोशनी से नहाया मंदिर का शिखर, सावन के पवित्र महीने में दिखा अनोखा नजारा। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की तैयारियां तेज, मुंबई के प्रसिद्ध काला चौकी महागणपति का हुआ आगमन, सिंह पर सवार नजर आए 22 फीट ऊंचे बप्पा। पवित्र सावन महीने में धूमधाम से जारी कांवड़ यात्रा, जौनपुर में शिव भक्तों पर की गई फूलों की बारिश, प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से बरसाए फूल। पहाड़ से मैदान तक मौसम की मेहरबानी बरकरार, शिमला में 21 अगस्त तक बारिश का अलर्ट, चंडीगढ़ में जमकर बरसे बादल। महिला हॉकी वर्ल्ड कप में भारत का दबदबा, साउथ अफ्रीका को 6-1 से हराकर पूल डी में हासिल किया टॉप स्थान, अब इंग्लैंड से होगा सामना। चलिए न्यूज पथ में खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
0: संतुलन और लगातार अभ्यास का ऐसा कमाल देखकर हर कोई हैरान है। वीडियो में कुछ महिलाओं ने अपने शरीर को इस तरह साधा कि उनका आकार कमल जैसा नजर आने लगा। कोई जमीन पर खड़ी होकर शरीर को बैलेंस कर रही है, तो कोई पैरों को मोड़कर बेहद मुश्किल मुद्रा में संतुलन बनाए हुए है। शरीर को इतनी आसानी से मोड़ना और लंबे समय तक उसी स्थिति में टिके रहना आसान नहीं होता। महिलाओं का यही गजब का बैलेंस और हुनर सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है। दुनिया के लिए आप शायद एक व्यक्ति हों, लेकिन किसी एक के लिए आप पूरी दुनिया हो सकते हैं। ये वीडियो भाई बहन के इसी खूबसूरत रिश्ते की मिसाल है। छोटे बच्चे के दोनों हाथ नहीं हैं, लेकिन उसकी छोटी बहन हर कदम पर उसके साथ खड़ी है। स्कूल में लंच टाइम के दौरान बहन अपने भाई को अपने हाथों से खाना खिलाती नजर आ रही है। भाई के चेहरे पर सुकून और बहन के प्यार ने लोगों का दिल जीत लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक लड़के ने मंच पर अपने अनोखे फुटबॉल हुनर का ऐसा प्रदर्शन किया कि देखने वाले देखते रह गए। वीडियो में लड़का अपने पैरों और शरीर के इशारों से फुटबॉल को लगातार अलग अलग दिशाओं में घुमाता नजर आ रहा है। कभी गेंद को पैरों से संभालता है, तो कभी शरीर को घुमाकर उसे अपने कंट्रोल में रखता है। उसके शानदार बैलेंस, कंट्रोल और लगातार अभ्यास की झलक इस प्रदर्शन में साफ दिखाई देती है। सोशल मीडिया पर लोग उसके हुनर की जमकर तारीफ कर रहे हैं। अपने अनोखे ह्यूमर और मजेदार सोशल मीडिया पोस्ट के लिए मशहूर नागालैंड के मंत्री तेमजिन अलोंग एक बार फिर अपने अंदाज से इंटरनेट पर छा गए हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक मजेदार वीडियो शेयर किया है। वीडियो में एक नागा व्यक्ति का ऑनलाइन केवाईसी किया जा रहा है। केवाईसी की प्रक्रिया और वीडियो में नजर आ रहा अंदाज लोगों को खूब गुदगुदा रहा है। यही वजह है कि वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और यूजर्स इसे देखकर मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। हौसले के आगे मुश्किल क्या चीज है, ये वीडियो का शानदार उदाहरण है। वीडियो में एक महिला अपने एक हाथ से दो बोतलों के साथ ऐसा कमाल का बैलेंस दिखा रही है कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं। खास बात यह है कि महिला एक ही हाथ से एक बोतल को हवा में उछालती है और उसी दौरान दूसरी बोतल को भी उसी हाथ से संभाल लेती है। उसकी तेजी, संतुलन और शानदार कंट्रोल देखकर लोग दंग है। सोशल मीडिया पर यूजर्स महिला के अनोखे टैलेंट की जमकर तारीफ कर रहे हैं।
1: न्यूज पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी देश के रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं को लेकर सामने आई एक रिपोर्ट की। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए। देश के 512 प्रमुख रेलवे स्टेशन की जांच के बाद आई सीएजी की रिपोर्ट हैरान करने वाली है। रिपोर्ट बताती है कि रेलवे के पास 5,956 करोड़ होने के बावजूद 42% पैसा जन सुविधाओं पर खर्च नहीं किया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि रेल यात्रियों को स्टेशन पर कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा है। सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार 89% से अधिक ऑडिट किए गए रेलवे स्टेशन पर बुनियादी सुविधाओं की कमी पाई गई। इस ऑडिट में 16 रेलवे जोन के 512 स्टेशन को शामिल किया गया है, जिसमें 2019 से 20 और 2023 से 24 तक की अवधि की जांच की गई। रिपोर्ट के मुताबिक कई बड़े और करोड़ों रुपए कमाने वाले स्टेशन भी पानी के पीने के पानी, शौचालय, बैठने की व्यवस्था, प्लेटफॉर्म शेल्टर और दिव्यांग सुविधाओं जैसी बुनियादी चीजों में पीछे हैं। नई दिल्ली, हावड़ा, मुंबई सेंट्रल, सीएसएमटी, अहमदाबाद, चेन्नई सेंट्रल और सिकंदराबाद जैसे देश के प्रमुख रेलवे स्टेशन भी जरूरी सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। कई स्टेशन के पानी के नमूनों में ई कोलाई और टोटल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया भी पाए गए हैं, जिससे कि लोगों की तबीयत खराब हो सकती है। ई कोलाई के कुछ संक्रमणों से डायरिया, फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारियां हो सकती है, जबकि कुछ मामलों में किडनी भी खराब हो सकता है। रेल मंत्रालय ने सीएजी के रिपोर्ट पर कहा है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा की है और सुरक्षित पेयजल के लिए तत्काल कदम उठाने के आदेश दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 54 रेलवे स्टेशन ही ऐसे थे जहां यात्री सुविधाओं में कोई कमी नहीं पाई गई। रेलवे बोर्ड ने अप्रैल 2018 में निर्देश दिया था कि सभी स्टेशन पर न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जाए, लेकिन 7 साल बाद भी ये लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए मौजूद सुविधाओं पर आई इस रिपोर्ट पर हमने जयपुर के रेलवे स्टेशन पर लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
3: लाइक बेसिकली अगर आपके पास खुद के अरेंज्ड एमिनिटीज नहीं है तो लाइक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। लाइक अगर आपको जाना है फ्रॉम लाइक बेसिकली ए टू बी प्लेस, तो आपको खुद से 2 दिन पहले तैयारी करनी पड़ेगी खाने की, या फिर आपको पता है रेलवे कैंटीन्स कैसे होती है, ट्रेन में कैसा खाना मिलता है। मतलब गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, जो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन बेसिकली जैसे आप प्लेटफॉर्म पे देख लो या फिर वहाँ पे लाइक नॉट प्रॉपरली नहीं अरेंज है। बेसिकली इट्स आर ड्यूटी ऑल्सो, बट गवर्नमेंट को थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए जिस हिसाब से बजट है रेलवे का।
4: नहीं, वैसे तो सुविधाएं थोड़ी थोड़ी बड़ी हैं, मगर और बढ़ाना चाहिए, जैसे टॉयलेट्स वगैरह और वाटर कूलर, पानी की सुविधाएं वगैरह, और थोड़ा जो पुलिस है ना, तो पुलिस भी घूमती रहनी चाहिए थोड़ा थोड़ा, ताकि थोड़ा सेफ्टी लगे, महिलाओं को भी ट्रैवल करने में भी अच्छा लगे, और बीच बीच में कंपार्टमेंट के अंदर भी जाना चाहिए, ट्रेन के अंदर भी पुलिस विजिट होनी चाहिए, और थोड़ी और सुविधाएं बढ़ानी चाहिए, क्लीनिंग थोड़ी और अच्छी करनी चाहिए, टॉयलेट्स वगैरह बहुत क्लीन होने चाहिए, क्योंकि जनरली ट्रैवल करते तो वो ट्रैवल बहुत लंबा होता है और उसमें टॉयलेट अगर ख़राब मिलेंगे तो वो हेल्थ इशू आ जाती है, फिर उससे बड़ा जूझना पड़ता है। एक दिन के सफ़र में मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, एक एक दो दो महीना, तो अगर वो ठीक नहीं हुआ, साफ़ नहीं हुआ, तो फिर उससे तो परेशानी आनी है, तो वहाँ पर एक थोड़ा ध्यान देना चाहिए।
5: एक जो एक दिक्कत आती है मैम, जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, उनको बैठने में काफ़ी समस्या होती है मैम, इसके लिए भी अलग से सुविधा होनी चाहिए। अब बड़े बुजुर्ग को कभी धक्का लग जाता है, कभी क्या हो जाता है मैम, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब भी कोई बीमार आदमी लाते हैं तो उनको कहाँ बिठाए मैम, ये बिल्कुल बहुत बड़ी दिक्कत है। और साफ सफाई का बिल्कुल नहीं है, पर्याप्त डब्बे नहीं है, उसमें और बढ़ाए जाए मैम, ऐसी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है मैम।
6: मेन समस्या तो ये है, स्टेशन तो बना देते हैं पर मेंटेन करना चाहिए ना उसको। अब टॉयलेट देख लो कितना बुरा हाल है, वहाँ कोई जान से नजर बदबू है, कहीं टूटे पड़े हैं, और पानी यहाँ तो कोई पी नहीं सकता यहाँ का, मेन बात ये है। वैसे अब यहाँ 200 करोड़ का बना दो, 400 करोड़ का बना दो, वही बात है, साफ सफाई बिल्कुल नहीं है। आप टॉयलेट में जाके देखो, वहाँ कोई जा ही नहीं सकता, बिल्कुल इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है। चाहे यहाँ क्या दिल्ली में चले जाओ, पूरे देश का ये हाल है। और डब्बे ये अब नए नए जैसे स्टेशन बन रहे हैं तो डब्बे दो तीन डब्बे होते हैं मेन जनरल के आगे पीछे, जनसंख्या बहुत ज्यादा हो रही है। और आप देखना, आप जैसे बच्चे चढ़ेंगे पीछे आगे तो कितना ज्यादा, मतलब कभी कोई दुर्घटना हो सकती है। मतलब डिब्बे बढ़ाए जाए, ये भी अब देश इतना विकसित हुआ नहीं है अभी कि सब वो करवा लेंगे रिजर्वेशन। रिजर्वेशन होता भी तो नहीं, एक दो महीना पहले भी नहीं होता, ये तो समस्या है।
1: दिल्ली के एक सरकारी स्कूल की चार छात्राओं ने एक ऐसी जादुई कॉपी तैयार की है। इसकी खासियत ये है कि इसमें बार बार लिखकर मिटाया जा सकता है, मतलब एक ही कॉपी का लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें सबक याद रखने के लिए रिकॉर्डर और एनसीईआरटी की किताबें पढ़ने के लिए क्यूआर कोड भी दिया गया है। इस मैजिकल कॉपी को मानवी, वंशिका, पूजा और जिया देवलकर तैयार किया है।
7: किताबें नहीं, कॉपियां हैं, वो भी एकदम खास, मैजिकल। अब आप ही सोचिए, कॉपी पर लिखकर भला मिटाया जा सकता है क्या? नहीं ना, लेकिन इन कॉपियों के पन्नों पर आप लिखकर मिटा सकते हैं, यानी एक ही कॉपी का इस्तेमाल बार बार कर सकते हैं, बिल्कुल स्लेट की तरह, है ना जादू? और ये जादुई कॉपियां बनाई है दिल्ली के एक सरकारी स्कूल के इन छात्राओं ने। इन्हें ये कॉपी बनाने का आइडिया कहां से आया, इन्हीं से जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि इन जादुई कॉपियों में और क्या खास बात है।
8: ये चार छात्राएं जो है इस वक्त मेरे साथ है, जिन्होंने बनाई है ये मैजिकल कॉपी। सबसे पहले तो मैं इस कॉपी से ही शुरुआत करूंगी, इसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी मैजिकल ये कॉपी है और क्यों मैं इसको इतनी मैजिकल बोल रही हूँ। आप देखेंगे तो एकदम ये आपको आम कॉपी की तरह आपको जो है नजर आने वाली है। आगे से आपको नॉर्मल नोटबुक नजर आएगी, स्पाइरल बाइंडिंग आपको नजर आएगी, लैमिनेशन के साथ नजर आएंगी। जब आपको खोलेंगे तो इंडेक्स पेज जिस तरीके से हर एक किताब में होता है वो आपको नजर आ जाएगा, और उसके बाद अलग अलग पन्ने आपको जो है नजर आ जाएंगे। लेकिन इसको मैजिकल ये बुक इसलिए बनाती है क्योंकि इसकी जो खासियत है वो ये पन्ने जिनको लैमिनेशन किया गया है। आप इसको एक बार मैं नज़दीक से दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से हर एक पन्ने को जो है लैमिनेट किया गया है, ताकि इस पर आप कुछ भी लिखे तो आप वापस से इसको इरेज कर सकते हैं और उसके बाद इन्हीं पन्नों पर जो है वापस से लिख सकते हैं। मैं एक बार लिख के दिखाऊंगी ताकि जो हम इसको मैजिकल किताब बोल रहे हैं वो है या नहीं। माय मैजिकल कॉपी, ठीक है, ये मैंने आपके सामने अभी लिखा है। और अब मैं इसको इरेज करके भी आपको दिखाऊंगी। अब ये बिल्कुल वापस से रेडी है ताकि आप इसके ऊपर जो भी आप लिखना चाहे वो आप इस पे लिख सकते हैं।
7: इस कॉपी में सिर्फ लिखने और मिटाने का ही फीचर नहीं है, बल्कि अगर आप क्लास के दौरान टीचर की हर बात नोट नहीं कर पा रहे या उसे दोबारा सुनना चाहते हैं तो उसका भी इंतजाम है।
8: आपको यहाँ पर एक रेट्रो साउंड का एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट, छोटा सा डिवाइस जो है वो नजर आ जाएगा, लेकिन इसको आपको पहले प्रेस करना होगा, उसके बाद आप इसमें अपनी वॉइस जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट रिसर्च है वो रिकॉर्ड कर सकते हो, और उसके बाद आप इसको बाद में सुन सकते हो। इतनी देर की ड्यूरेशन जो है,
9: एक से दो मिनट तक ये रिकॉर्ड कर सकते हैं।
8: एक से दो मिनट, आपने सोचा कभी इसको कि अगर लेक्चर

0: ज्यादा से ज्यादा लोग कर सकें और जिससे कागज की खपत को भी कम करने में मदद मिले।
1: हमने सबसे पहले देखा कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनको हर साल नई नोटबुक्स खरीदनी पड़ती है। एक बच्चा एक साल पढ़ता है और उसके बाद जो उसकी पहली नोटबुक्स होती है वो वेस्ट हो जाती है, तो फिर वो नोटबुक्स जो वेस्ट होती है उससे हमारे एनवायरनमेंट को कितना लॉस होता है। हमने उसी से सोचा और हमें पता चला कि हम एक ऐसी नोटबुक बना सकते हैं जो वेस्ट ही ना हो कभी। जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम लोग बातें करते हैं वैसे सस्टेनेबल एजुकेशन पॉसिबल है। हमें इससे सोचकर हमने अपनी नोटबुक बनाई।
0: सामान्य सी कॉपी को मैजिकल बनाने के लिए इन छात्राओं ने 20 पन्नों को लैमिनेट करवाया और फिर इस पर प्रयोग किए। भरोसा पक्का हुआ तो इसे बाजार तक लाने की सोची और स्कूल में शुरू हुआ ये इनोवेशन अब धीरे धीरे एक छोटे स्टार्टअप का रूप लेने लगा है।
2: तो स्कूल में भी काफ़ी बच्चे यूज़ कर रहे हैं इनका प्रोडक्ट। जब स्कूल में इन्होंने डिस्प्ले किया था तो उसके बाद बहुत बच्चों ने उनको देखा, मैंने भी देखा, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा और आगे इनका ये सिलेक्ट भी इसी वेस पर हुआ कि ये बड़ी यूज़फुल है अपने आप में। और इनका बच्चों का एक नया प्रोडक्ट सामने आया, बच्चों का माइंड इन्होंने यूज़ किया और इसमें कुछ ना कुछ वो नयापन हर बार ला रहे हैं। तो ये अपने आप में वाकई में बहुत मेरे लिए तो अच्छी है ही है। बाकी मेरे बच्चे स्कूल के और भी यूज़ कर रहे हैं और करेंगे इनको, और मैं इनको करती हूँ कि इनका ये प्रोडक्ट अच्छे से सेल हो और इसमें इनको अच्छी रेस्पॉन्स मिले।
0: छात्राओं ने इस मैजिकल कॉपी की कीमत 250 रुपए रखी है। उनके मुताबिक इस प्रोजेक्ट से उन्हें अब तक करीब 3 से 5 हजार रुपए तक का मुनाफा हुआ है, जिसे चारों छात्राओं ने आपस में बांटा है। लेकिन इनकी माने तो उनके लिए ये सिर्फ कमाई का जरिया नहीं है बल्कि अपने आइडिया को और आगे ले जाने की शुरुआत भर है। मनीषा लड्डा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे।
3: और अब बात उस युवा खिलाड़ी की जिसने अपने डेब्यू में ही ऐसा कमाल कर दिखाया है कि पूरा देश उनकी चर्चा कर रहा है। नाम है आयुष शेट्टी। भारत के इस उभरते हुए शटलर ने इंदिरा गांधी स्टेडियम में खेले जा रहे बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपने डेब्यू को यादगार बना दिया है, और वो भी किसी मामूली जीत के साथ नहीं बल्कि दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी और मौजूदा विश्व चैंपियन को हराकर। आपको बता दें कि जिस खिलाड़ी को दुनिया का नंबर वन कहा जाता है, जिसके नाम विश्व चैंपियन का खिताब है, उसी के सामने एक युवा भारतीय खिलाड़ी उतरता है। डेब्यू मैच, दबाव भी होगा, उम्मीदें भी होंगी, लेकिन आयुष शेट्टी ने इन सबको पीछे छोड़ते हुए अपने करियर की सबसे बड़ी जीत दर्ज कर दी।
4: कहते हैं बड़ी मैच में बड़ा खिलाड़ी वही होता है जो सबसे बड़े खिलाड़ी को मात दे, और आयुष शेट्टी ने वर्ल्ड चैंपियनशिप के अपने डेब्यू में यही कर दिखाया है। उनके सामने थे वर्ल्ड नंबर वन प्लेयर, खेल के डिफेंडिंग चैंपियन और खिताब के सबसे बड़े दावेदारों में से एक शी युकी। लेकिन आयुष ने ऐसा खेल दिखाया कि युकी की एक न चली। पहले गेम में आयुष ने शुरुआत से ही मोर्चा संभाले रखा, क्रॉस कोर्ट स्मैश का जवाब ब्लॉक से और मौका मिलते ही पलटवार। नतीजा पहला गेम आयुष के नाम रहा, दूसरे गेम में शी युकी ने पलटवार किया। यहां आयुष की लय थोड़ी बिगड़ी जरूर और युकी ने गेम जीतकर मुकाबला भी बराबरी पर ला दिया, लेकिन अब बारी थी आखिरी और निर्णायक गेम की। यहां आयुष ने फिर अपना दम दिखाया, दोनों खिलाड़ियों ने ऐसी जान फूंकी कि सभी की सांसें थम गईं। लेकिन इस बार बाजी आयुष के नाम रही। कहा जा रहा है कि इस मैच के साथ बैडमिंटन की दुनिया में भारत को एक नया सितारा मिल गया है। 61 साल के लंबे इंतजार के बाद आयुष बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष सिंगल खिलाड़ी बने हैं। 61 साल के लंबे इंतजार के बाद आयुष बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष सिंगल्स खिलाड़ी बने हैं। आयुष की कहानी किसी बड़े शहर की चमकदार बैडमिंटन अकादमी से शुरू नहीं हुई बल्कि उनका सफर कर्नाटक में करकाला के पास बसे छोटे से कस्बे से शुरू हुआ। इस लड़की ने महज 8 साल की उम्र में रैकेट थामा। उनके पहले कोच उनके पिता बने जिन्होंने घर के आंगन को ही आयुष का पहला बैडमिंटन कोर्ट बना दिया। आज वही लड़का बैडमिंटन का बड़ा सितारा बनने की राह पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: पठानकोट में डैम की झील में शुरू हुआ वाटर स्पोर्ट्स अब सैलानियों का पसंदीदा एडवेंचर स्पोर्ट्स बनने लगा है। स्पीड बोट और पैरासेलिंग की शुरुआत होने से यहां सैलानियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। प्रशासन की कोशिश है कि पठानकोट की इस झील को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जाए।

0: पहाड़ों के बीच एक खूबसूरत झील और कुदरत के बेमिसाल सौंदर्य के साथ एडवेंचर स्पोर्ट्स का मौका। पठानकोट में रावी नदी पर बने डैम की झील अब पैरासेलिंग और वाटर स्पोर्ट्स के लिए मशहूर हो रही है। रणजीत सागर डैम की झील के किनारे चमरोड़ और शहारपुर कंडी बैराज झील को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टूरिज्म हब बनाने की तैयारी कर ली गई है। डैम प्रशासन ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए झील में स्पीड बोट्स और पैरासेलिंग की शुरुआत की है। इन वाटर स्पोर्ट्स का आनंद लेने के लिए दूर दूर से सैलानी यहां आ रहे हैं।
1: YouTube में देखा था काफी इसका, मैं पहली बार आया हूं यहां पर, मुझे बहुत अच्छा लगा है यहां पर आकर। ठीक है, सबको अच्छा है, फूड है,
2: बच्चों को लेकर डाइट पे गए आप, कैसा लगा?
1: अच्छा लगा, बच्चों को बहुत अच्छा लगा है सारा। हम पहली बार आए वहाँ फैमिली लेकर।
3: घूमने के लिए अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, हॉर्स राइडिंग भी अच्छा है आपका, ऊंट का भी, कैमल का भी अच्छा है।
0: वाटर स्पोर्ट्स की शुरुआत होने के बाद झील पर आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। स्पीड बोट के बाद अब पैरासेलिंग की शुरुआत होने से इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन में लोगों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ी है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए डैम प्रशासन ने पर्यटकों की हिफाजत का भी पूरा इंतजाम कर रखा है। पैरासेलिंग और वाटर स्पोर्ट्स का आनंद लेने के लिए पहले लोगों को गोवा जैसी जगहों का रुख करना पड़ता था, लेकिन अब डैम की झील में शुरू हुए इस वाटर स्पोर्ट्स ने पठानकोट को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर एक नई पहचान दिला दी है। पठानकोट से पवन सिंह, गुड न्यूज टुडे।
4: ब्रेक प्लाजा पर हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मजा आएगा। ब्रेक के बाद लिए चलेंगे खेल चक्कर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो
10: कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के।
12: गोल टेस्ट में ऋषभ पंत ने रचा इतिहास। खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चले खेल चक्कर।
13: ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के पूरे कर लिए हैं और ऐसा करने वाले वो दुनिया के सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं। पंत ने अपनी इस पारी से ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट का रिकॉर्ड तोड़ा है। ऋषभ भारत की ओर से टेस्ट में छक्कों का शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज भी बन गए हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के लक्ष्य सेन और उन्नति हुड्डा ने जीत से शुरुआत की है। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में चल रहे मुकाबलों में लक्ष्य ने रोमानिया के कॉलिंस फिलिमोन को 16-21, 21-8 और 21-4 से हराया। अगले दौर में लक्ष्य का मैच स्विट्जरलैंड के टोबियास कुंजी और अमेरिका के गैरेट टैन के विजेता से होगा। वहीं वुमेन सिंगल्स में उन्नति हुड्डा ने म्यांमार की थेत हमतार थुजार को 22-20, 21-16 से हरा दिया। उन्नति का अगला मैच कनाडा की 19वीं वरीय खिलाड़ी मिशेल ली से होगा। हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने साउथ अफ्रीका पर शानदार जीत दर्ज की है। एम्स्टरडैम के वेगनर स्टेडियम में खेले गए FIH हॉकी विश्व कप के अपने दूसरे मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 6-1 से करारी शिकस्त दे दी है। अपने पहले मैच में टीम इंडिया ने चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ खेला था।
12: इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी।
14: मंगल का कौन सा योग वैवाहिक जीवन में अलगाव ले आता है? मंगल का कौन सा योग साहस और आत्मविश्वास को कमजोर कर देता है? मंगल का कौन सा योग जीवन में प्रचंड दुर्घटना का कारण बनता है? कौन से हैं मंगल के अशुभ योग और क्या है उनका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
15: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो
16: कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
16: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
17: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: मंगल का कौन सा योग वैवाहिक जीवन में अलगाव ले आता है? मंगल का कौन सा योग साहस और आत्मविश्वास को कमजोर कर देता है? मंगल का कौन सा योग जीवन में प्रचंड दुर्घटना का कारण बनता है? कौन से हैं मंगल के अशुभ योग और क्या है उनका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
3: जुलूनोत्सव के बीच राम मंदिर का भव्य श्रृंगार, सुनहरी रोशनी से नहाया मंदिर का शिखर, सावन के पवित्र महीने में देखा अनोखा नजारा। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की तैयारियां तेज, मुंबई के प्रसिद्ध काला चौकी महागणपति का हुआ आगमन, सिंह पर सवार नजर आए 22 फीट ऊंचे बप्पा। पवित्र सावन महीने में धूमधाम से जारी है कांवड़ यात्रा, जौनपुर में शिव भक्तों पर की गई फूलों की बारिश, प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से बरसाए फूल। पहाड़ से मैदान तक मौसम की मेहरबानी बरकरार, शिमला में 21 अगस्त तक बारिश का अलर्ट, चंडीगढ़ में जमकर बरसे पतरा। महिला हॉकी वर्ल्ड कप में भारत का दबदबा, साउथ अफ्रीका को 6-1 से हराकर पूल डी में हासिल किया टॉप स्थान, अब इंग्लैंड से होगा सामना।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की
3: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं जान दांव पर लगाकर जान की हिफाजत करने वाली रेस्क्यू टीम की। अगस्त आधा गुजर चुका है पर पहाड़ से लेकर मैदान तक बादल जमकर बरस रहे हैं और इसकी वजह से खासतौर पर अगर हम देखें तो उत्तराखंड और हिमाचल में जिंदगी का कड़ा इम्तिहान है। अचानक बारिश से किसी भी वक्त सैलाब से सामना हो रहा है और लेकिन दिन हो या रात SDRF की जो टीमें हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैद हैं, जुटी हुई हैं और नदी नालों के उफान में फंसे लोगों को लगातार बचाया जा रहा है। आज आपको ऋषिकेश, देहरादून और चंबा समेत कई इलाकों में रेस्क्यू टीम का हैरतअंगेज हौसला दिखाएंगे। इन दिनों पहाड़ी इलाकों में क्यों सावधान रहने की अब आवश्यकता है इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ बात होगी काशी की, जहां पर गंगा का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है और इसी वजह से घाट की बजाय छत पर गंगा आरती हो रही है। गंगा के घाटों पर सुरक्षा के इंतजाम तमाम आपको दिखाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के साथ, जहां पर मॉनसून की भारी बारिश के बाद नदी नालों में उफान देखने को मिल रहा है। ऊपरी इलाकों में तेज बारिश की वजह से अचानक नदियों में सैलाब आ गया है और इसी वजह से ऋषिकेश में लोगों की जान पर बनाई है, लेकिन 24/7 मुस्तैद SDRF टीम ने पानी के तेज बहाव में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को बचा लिया। इसी तरह देहरादून में आधा दर्जन छात्रों की जान बचाई गई जो नदी के बीच में टापू पर फंस गए थे। रिपोर्ट देखिए।
4: बादल बंदिश नहीं जानते, कहीं गरजे तो कहीं बरसे और ऐसे बरसे कि सैलाब आ गया। पहाड़ों पर बारिश की मनमर्जियां ऐसी ही हैं कि अफरा तफरी मची है। कहीं बादल फटने से पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं नदियों में उफान है जो लोगों के लिए बड़ा खतरा है, पर शुक्र है कि इस चुनौती से निपटने के लिए रेस्क्यू टीम दिन रात जुटी हुई है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के ऋषिकेश की हैं, जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से बीन नदी में अचानक जलस्तर बढ़ गया, नदी की तेज धार की चपेट में ये कार आ गई। नदी का ऐसा रौद्र रूप और रात का वक्त, कार में फंसे दो नौजवानों को बचाना लगभग नामुमकिन लग रहा था, लेकिन SDRF के जवानों ने मोर्चा संभाला, अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर उन्होंने इस उफनती नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रस्सी के जरिए कुछ जवान नदी में उतरे और कार के करीब पहुंच गए। दूसरे सिरे पर मौजूद टीम के सदस्यों ने रस्सी को मजबूती से थामे रखा। नदी में पानी का बहाव इतना तेज था कि जरा सी चूक भारी पड़ सकती थी, लेकिन रेस्क्यू टीम ने एक एक करके पहले लड़कों को कार के अंदर से बाहर निकाला और फिर उन्हें थाम कर धीरे धीरे किनारे तक ले आए। जान बची तो लाखों पाए, पर ऐसे मुश्किल समय में अगर SDRF के जवान देवदूत बनकर नहीं आते तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। रेस्क्यू टीम की दिलेरी और उनका कौशल दिखाने वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है और लोग इनके हौसले की तारीफ कर रहे हैं।
1: ये मामला हमें, जो हमारी टीम है डालवाला में, हमें सूचना मिली लगभग 9:15 के लगभग कि एक मैक्स बीन नदी में पलट गई और जो नीचे चली गई, तो हमारी टीम तुरंत यहाँ पर पहुंची है और यहाँ पे देखा तो एक व्यक्ति उसमें ऊपर बैठा हुआ दिखाई दिया। तो हमारी टीम रोप लगा के अपने उपकरणों के माध्यम से उस तक पहुंची है, उप नदी में, और उसको रेस्क्यू कर लिया गया और उसको हॉस्पिटल गया। तब उसके बाद पता चला कि एक व्यक्ति अंदर था जो बुरी तरह से फंसा था। उसके लिए टीम द्वारा हमारे बहुत भरसक प्रयास किया गया और कई प्रयासों के बाद हम उस व्यक्ति का रेस्क्यू कर गए और उसको भी हमें हमारे द्वारा टीम द्वारा हॉस्पिटलाइज किया गया। हमारे सामने हमें दिखा कि जो व्यक्ति अंदर है वो भी चिल्ला रहा था कि मुझे बचाओ, और हमारी टीम उसी हौसले के साथ आगे बढ़ी और सभी हमारे जो जितने भी हमारे यहाँ पे टीम के मेंबर्स हैं सभी के प्रयास से हमारे रोप के माध्यम से उस तक पहुंच बनाई और उस व्यक्ति को हमारे द्वारा टीम द्वारा रेस्क्यू किया गया।
4: अगस्त आधा गुजर चुका है लेकिन उत्तराखंड में बेहिसाब बारिश का सिलसिला जारी है और उसका असर ये कि ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। आसमान से ली गई गंगा की ये तस्वीरें भले ही भव्य नजर आ रही हों, पर जमीनी सच्चाई ये है कि इस वक्त घाटों तक पानी है और नदी का प्रवाह ऐसा है कि घाटों पर गिनती के लोग हैं। शाम के वक्त जहां गंगा आरती होती है वहां तक गंगा का पानी पहुंच चुका है। हालात देखते हुए SDRF की टीमें पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं।
1: नदी का जो जलस्तर है यानी कि चंद्रभागा का भी जलस्तर थोड़ा बढ़ गया है, यहाँ तक कि खारा सोत का भी जलस्तर बढ़ चुका है। हमारी टीम अभी वहाँ पर गई थी तो कुछ लोग वहाँ पे नदी नालों में चले गए थे, तो उनको हमने वहाँ पे हमारे जो लाउड अलर्ट के माध्यम से चेतावनी दी जा रही है कि आप नदी नालों में न जाएं, और उस कारण गंगा का जलस्तर भी बढ़ रहा है और देर रात अभी भी बारिश चल रही है। हमारी टीमें SDRF की टीमें पूरी तरह से अलर्ट है और किसी भी प्रकार की कोई हमें सूचना मिल रही तो हमारी टीम वहां पर रिस्पॉन्स करती है। ये जो अभी पानी बढ़ा है हमारी टीमें वहां पर गई हैं, सभी को जो स्थानीय लोग हैं जिनके कुछ लोग वहां पे आसपास जो घर हैं तो सभी को हमारे द्वारा बताया गया कि आप पानी जो जलस्तर है उस पर नजर बनाए रखें और जैसे पानी बढ़ता है तो आप उससे दूर रहें, किसी भी प्रकार की कोई अपना जोखिम न लें।
4: वैसे ऋषिकेश ही नहीं उत्तराखंड के कई इलाकों में तेज बारिश के बाद चुनौतियां बढ़ गई हैं। देहरादून में स्वर्णा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और कई छात्रों की जान जोखिम में आ गई। ट्रैकिंग करने गए UPES यूनिवर्सिटी के 6 छात्रों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि नदी के पास एक मुसीबत उनका इंतजार कर रही है। जब गए थे सब कुछ ठीक ठाक था, पर अचानक नदी में जैसे सैलाब आ गया। सभी छात्र नदी के बीच एक टापू में फंस गए। गनीमत रही कि छात्रों के वहां फंसे होने की खबर तुरंत SDRF को मिल गई और टीम ने इस सैलाब का सामना करते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रात के वक्त ये ऑपरेशन आसान नहीं था, पर रेस्क्यू टीम ने सूझबूझ दिखाई, लोहे के पाइप को पुल की तरह इस्तेमाल किया। किनारे से टापू तक लगे पाइप के जरिए छात्रों को एक एक करके निकाला गया। अब टिहरी गढ़वाल की ये तस्वीरें भी देख लीजिए। कहने को तो ये बरसाती नाला है लेकिन मूसलाधार बारिश की वजह से इसमें उफान आ गया। कुछ लोग जो वहां मौजूद थे उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला और देखते ही देखते वो बेबस हो गए। लेकिन SDRF की टीम अलर्ट पर थी, जवानों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया और दरिया के बीच जाकर रस्सियों की मदद से सभी को बाहर निकाल लिया। जो लोग इस सैलाब में फंस गए थे उनमें कुछ सैलानी भी थे जिन्हें पहाड़ों की ऐसी बारिश और सैलाब का जरा भी अंदाजा नहीं था, लेकिन सुरक्षित निकलने के बाद उन्होंने राहत की सांस ली।
5: मुरादाबाद, मुरादाबाद, पीतल नगरी, पिताजी का नाम क्या
6: है? धरम सिंह।
5: धरम सिंह। उम्र कितनी है आपकी?
6: उम्र 36।
5: 36 साल। घूमने?
6: नहीं तो
5: ओपन बनाया। तुम ठीक हो? आप दोस्त हैं वो तिरंगे साइड
6: तो मैं
4: देहरादून में बेहसा बारिश से नदी नालों में तेज तूफान है। टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास तमसा नदी भी रौद्र रूप में है और हालात ये हैं कि श्रद्धालुओं से नदी के पास न जाने की अपील की जा रही है। बारिश के चलते देहरादून के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। ऐसी तस्वीर उत्तराखंड के कई इलाकों में है और लोगों को नदी नालों से दूर रहने की अपील की जा रही है।
7: इस तरह से कई स्थानों पर बहुत ज्यादा बरसात हुई है और बरसात कारण निश्चित रूप से कुछ दिक्कतें भी हुई हैं। कई जगह नदियों का पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है। ऋषिकेश के पास में जलस्तर काफ़ी हद तक बढ़ गया है। आज की बात करें तो आज देहरादून के लिए, टिहरी के लिए, पौड़ी और ऊधम सिंह नगर चार जनपदों के लिए ऑरेंज अलर्ट है। सभी जनपदों को SEOC से निर्देश जारी किए गए हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी संबंधित से अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर ऐसे किसी स्थान पर रह रहे हैं जहाँ पानी के बढ़ने की संभावना है, जलस्तर बढ़ने की संभावना है, बाढ़ आने की संभावना है, ऐसे स्थानों पर जो लोग रह रहे हैं सावधानी के साथ रहें, अलर्ट पे रहें ताकि किसी प्रकार से पानी का स्तर बढ़ने पर उनको सकुशल वहाँ से निकासी संभव हो सके। इसके साथ साथ मैं सभी से यह भी अनुरोध करूँगा कि अपने मोबाइल में सचेत ऐप डाउनलोड कर लें ताकि मौसम के अपडेट लगातार उनको मिलते रहें और जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं अनावश्यक रूप से ट्रैवल करने से बचें।
4: ऐसी बारिश में चुनौतियां दूसरी भी हैं। पौड़ी देर प्रयाग मार्ग पर सौर के करीब पहाड़ी से भारी मलबा आने के कारण यातायात पूरी तरह से ठप नजर आ रहा है। सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई, यात्रियों को देर तक इंतजार करना पड़ा। हालांकि खबर मिलते ही प्रशासन तुरंत एक्टिव हो गया, मशीन से मलबा हटाने का काम शुरू हुआ और काफी मशक्कत के बाद रास्ता दुरुस्त किया गया। पौड़ी गढ़वाल में लगातार बारिश की वजह से भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं। महरगांव में भूस्खलन के बाद चार लोग मलबे में दब गए। सूचना मिलते ही प्रशासन, SDRF और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और एक महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मौसम का रुख देखते हुए प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है और नदी नालों पर नजर बनाए हुए है। ऋषिकेश से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: आइए बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। उत्तराखंड की तरह ही हाल हिमाचल का देखने को मिल रहा है। कई जिलों में मूसलाधार बारिश की वजह से रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित है, पर मुश्किल बादल फटने के बाद तेज बारिश से है। चंबा में जब ऐसा हुआ तो नदी में सैलाब आ गया। पहाड़ों से आए मलबे की चपेट में आने से लोहे का एक पुल बह गया और लगभग 50 तीर्थयात्रियों की जान मुश्किल में फंस गई, लेकिन रेस्क्यू टीम ने ऑपरेशन चलाकर उनको बचा लिया। इसी तरीके से कुल्लू में भी नदी के उफान ने कुछ सैलानी फंस गए थे जिन्हें SDRF ने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से सकुशल बाहर निकाला। रिपोर्ट देखिए।
8: एक तरफ सैलाब है, दूसरी ओर जिंदगी, चुनौती बड़ी है। ऐसे हालात में कब, कहां और कैसे फंस जाएगा कहना मुश्किल है। बेहिसाब बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में नदी नाले उफान पर हैं और जिंदगी का कड़ा इम्तिहान है। ये तस्वीरें चंबा की हैं, जहां बादल फटने के बाद जैसे सैलाब आ गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि उसके साथ पहाड़ों से मलबा नीचे आने लगा और भारी मलबे की वजह से लोहे का पुल बह गया। पुल नदारद और रास्ता बंद। अब 40 से 50 श्रद्धालुओं के सामने संकट खड़ा था, जो माँ भगवती खुंडी वाली के दर्शन के लिए जा रहे थे। ये लोग ना तो आगे जा सकते थे और न पीछे। श्रद्धालुओं के फंसे होने की खबर जैसे ही रेस्क्यू टीम को मिली वो एक्टिव हो गए, लेकिन उनके साथ स्थानीय लोग भी जुट गए। फिर शुरू हुआ श्रद्धालुओं को इस दरिया से निकालने का ऑपरेशन। बेहद सावधानी से रेस्क्यू टीम के लोग रस्सी के जरिए उस पार पहुंचे और एक एक करके सभी श्रद्धालुओं को दरिया के किनारे पर लाया गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती थी, लेकिन धैर्य और हौसले के साथ इन सभी श्रद्धालुओं को सकुशल निकाल लिया गया। चंबा ही नहीं, कुल्लू में भी भारी बारिश के चलते हालात चुनौतीपूर्ण हैं। नदी में पानी कब अचानक बढ़ जाएगा इसका अंदाजा नहीं। देखिए कैसे कुल्लू की मणिकर्ण घाटी में पार्वती नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और नदी के बीच चट्टान पर बैठे दिल्ली के सैलानी पानी से गिर गए। बाहर निकलने का रास्ता बंद होने के बाद स्थानीय युवाओं और आपदा मित्रों ने रस्सी के सहारे रेस्क्यू शुरू किया। नदी की बेहद तेज धार में ये काम जोखिम भरा था। हालांकि किनारे खड़े लोगों ने मजबूती से रस्सी थाम रखी थी, फिर भी लहरों का सामना करते हुए इस पार आना आसान नहीं था। पर कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय युवक जान जोखिम में डालकर रस्सी के सहारे नदी के तेज बहाव के बीच पहुंचे और सभी सैलानियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लाहौल स्पीति के दूर दराज इलाकों में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। चोखंग इलाके में पहाड़ियों पर हुई तेज बारिश के बाद गौरी नाले में अचानक पानी का बहाव बढ़ गया और देखते ही देखते नाला उफान पर आ गया। नतीजा ये हुआ कि भारी मात्रा में मलबा और पत्थर सड़क तक पहुंच गए और लिंक रोड का करीब 400 मीटर हिस्सा मलबे से भर गया और आवाजाही रुक गई। हालांकि प्रशासन तेजी से मलबा हटाने में जुटा है। जिस तरह से पहाड़ों पर आफत का पानी बरस रहा है और भूस्खलन हो रहा है, उसने लोगों की जिंदगी को संकट में डाल रखा है। लेकिन सैलानियों के लिए भी सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि पहाड़ों में मौसम और नदियों का मिजाज कभी भी बदल सकता है। ऊपरी इलाकों में बारिश होने पर नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ सकता है और तब नदी या नाले के पास जाना खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए प्रशासन लगातार पर्यटकों से अपील कर रहा है कि जब तक मूसलाधार बारिश हो रही है, नदी नालों से सुरक्षित दूरी पर रहें और जोखिम न उठाएं। चंबा से विशाल आनंद और कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो देखिए, हिमाचल में अगले चार दिनों तक जबरदस्त बारिश का अनुमान जताया गया है। बिलासपुर, कांगड़ा और मंडी में ऑरेंज अलर्ट है, तो वहीं पर चंबा, कुल्लू, सोलन और शिमला में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। राज्य में 22 अगस्त तक बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान है। आज शिमला में जमकर बदरा बरसे, इसलिए मॉल रोड पर रंग बिरंगे छाते नजर आए। सैलानियों ने भी इस बारिश का जमकर लुत्फ उठाया। शिमला में लगातार हो रही बारिश की वजह से तापमान कम हो गया है और घिरे हुए बादलों की वजह से वहां की खूबसूरती में और चार चांद लग गए। चलिए, पहाड़ों के बाद अब मैदान का हाल देख लेते हैं। वाराणसी में इन दिनों गंगा घाट पर भीड़भाड़ पहले जैसी नहीं है, सैलानियों की तादाद भी कम है। वजह है गंगा का बढ़ता हुआ जलस्तर। गंगा खतरे के निशान से अभी भी नीचे है, लेकिन तमाम घाटों पर पानी आ चुका है और इसी वजह से घाट पर सुरक्षा ज्यादा बढ़ा दी गई है। आरती की जगह अब बदल दी गई है। नमो घाट पर बैरिकेडिंग है और छोटी नावों पर रोक लगा दी गई है। देखिए वाराणसी से ये खास रिपोर्ट।
9: गंगा के दोनों किनारों को जोड़ता है यह पुल और यहाँ से देखिए तो बनारस में गंगा की विशाल धारा का अंदाजा होता है। पर सैलानी दूर से नहीं, घाट पर जाकर गंगा के निर्मल पानी का अनुभव लेना चाहते हैं, नाव पर घूमना चाहते हैं, पर इन दिनों ये मुमकिन नहीं क्योंकि बारिश की वजह से गंगा का जल स्तर बढ़ गया है। यहाँ तक कि नमो घाट पर बने 75 फीट ऊंचे नमस्ते के स्कल्पचर तक पानी है और सुरक्षा के मद्देनजर घाट की बैरिकेडिंग कर दी गई है। सुरक्षा गार्ड्स लोगों को आगाह कर रहे हैं।
10: धीरे धीरे ही सही, वाराणसी में गंगा ने अपना रौद्र रूप अख्तियार करना शुरू कर दिया है। नमो घाट जो लोगों के बीच में बहुत ही पसंद किया जाने वाला नया घाट है, वहां पर अभी हमारी मौजूदगी है और देख सकते हैं कि हमारे ठीक पीछे 75 फीट का नमस्ते का स्कल्पचर है, वो भी जलमग्न होना शुरू हो गया है। यहाँ तक बाढ़ का पानी पहुंचना शुरू हो गया है। केंद्रीय जल आयोग की डेली फ्लड बुलेटिन की मानते हैं तो गंगा का जल स्तर चेतावनी बिंदु से महज 3.5 मीटर तो खतरे के निशान से 4.5 मीटर ही शेष रह गया है। नमो घाट बनारस का चौपाटी कहा जाता है। यहाँ लगातार जो लोग आते हैं, आस्थावान पर्यटक सैलानी आते हैं, वे काफी संख्या में होते हैं, जिनको हटाने के लिए, जिनको आगाह करने के लिए लगातार गार्ड यहाँ अलर्ट हैं और लोगों को इस बाढ़ के पानी के नजदीक जाने से, घाट की सीढ़ियों के नजदीक जाने से मना कर रहे हैं। तो वहीं एहतियात के तौर पर बनारस में सभी तरह के नौका का संचालन अगले आदेश तक रोक दिया गया है। तो वहीं NDRF, जल पुलिस और गोताखोर की भी ड्यूटी लगाई गई है। तटवर्ती इलाकों के लोगों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। 5 बार गंगा आरती का स्थल भी बदल दिया गया है और अब गंगा आरती छत पर की जा रही है। माना जा रहा है कि गंगा अगर यूं ही बढ़ती रही, जलस्तर में बढ़ाव देखा गया तो आने वाले दिनों में तटवर्ती इलाकों के लोगों की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं।
9: गंगा में पानी के बढ़ते प्रवाह को देखते हुए वाराणसी की चौपाटी कहे जाने वाले नमो घाट पर आने वाले लोगों की संख्या काफी कम हो गई है। स्थानीय दुकानदारों की रोजी रोटी पर तो असर है ही, पर्यटकों और श्रद्धालुओं में भी निराशा है।
11: इस समय बहुत नुकसान हो रहा है और धंधा बहुत खराब चल रहा है। बाढ़ की वजह से भीड़ नहीं आ रही है, यात्री लोग आ नहीं रहे हैं, बहुत दिक्कतें हम लोग को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
12: आमदनी कितनी कम हो गई है?
11: बहुत ज्यादा कम हो गई,
12: खर्चा उतना ही। अभी कब तक इसी तरह लगा रहेगा?
11: 2 महीना लग जाएगा लगभग।
13: अभी कुछ भी नहीं देख पा रहे, बोट चल नहीं रही है, तो इससे जो हमारा यहाँ आने का इच्छा था वो सब खत्म सा हो गया,
12: अधूरा ही रह
13: गया। हाँ, अधूरा रह गया।
12: और घाटों का आपसी कनेक्शन भी कटा हुआ?
13: हाँ, कटा हुआ। हाँ, एक दूसरे घाट से जा नहीं सकते। हाँ,
12: इससे थोड़ी निराशा है?
13: निराशा तो है ही, अभी इतनी दूर से आए हैं इसी काम के लिए। हाँ, सिर्फ बाबा के दर्शन हो पाएंगे हमें।
14: चारों तरफ घूम भी नहीं पा रहे हैं बारिश की वजह से, पानी पानी है।
15: भदोही के रहने वाले हैं, यहाँ घूमने आए थे और यहाँ पे फिलहाल बोटिंग के लिए आए थे और बोटिंग बंद हो गई है, तो काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो गए हम लोग। अब ये सब भी नहीं चल रहा, और बाकी अगर वैसे होता ये नाव में भी घूम लेते, वो भी बंद हो गया है पानी बढ़ने की वजह से।
12: अभी नमो घाट पे क्या कंडीशन है? पानी यहाँ भी भर गया है?
15: अब पानी है तो बस देख के घर जाना पड़ेगा वापस, ऐसे ही बिना घूमे टहले।
16: घाटों पे थोड़ा रश भी है और लेकिन पानी का स्तर बढ़ा हुआ है, वो उस वजह से हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे। पानी में पीछे से भी पानी थोड़ा वो आ रहा है, मिट्टी वाला आ रहा है, तो बोटिंग वगैरह हो नहीं रही, तो जो हम बोटिंग में जाना चाहते थे वो नहीं जा पा रहे।
12: थोड़ी सी निराशा
16: तो रहती है। अभी इतनी दूर से आए हैं तो रहेगा, बार बार आना होता नहीं है। और भगवान बाबा जी की कृपा रही तो हम अगले सावन फिर आएंगे।
17: पानी का स्तर काफी बढ़ा हुआ है जिसके कारण बोटिंग वगैरह बंद की हुई है और बहुत सारे घाट आपस में से जुड़े हुए नहीं है।
9: वाराणसी में गंगा का जलस्तर अभी खतरे के निशान से 4.5 मीटर नीचे है, पर प्रति घंटे 4 सेंटीमीटर का बढ़ाव दर्ज किया जा रहा है। माना जा रहा है कि गंगा का जलस्तर यूं ही बढ़ता रहा तो जल्दी ही नमो घाट पूरी तरह से पानी में समा जाएगा, इसलिए एहतियात के तौर पर जगह जगह गंगा घाटों पर NDRF और जल पुलिस की तैनाती कर दी गई है।
18: आप लोग किनारों पर ही स्नान करें, किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें।
9: ऐसा नहीं कि गंगा के घाट पर पूजा पाठ और दूसरे धार्मिक क्रियाकल्प बंद है, सब कुछ पहले जैसा ही है, पर गंगा आगे बढ़ती जा रही है और घाट पर आरती के लिए बनाए गए प्लेटफॉर्म पीछे जा रहे हैं। रस्सियों का जो घेरा है उसके आगे नहाने की इजाजत नहीं। परेशानी पुरोहित और यजमान दोनों को है, पर बारिश के दिनों में ये तस्वीर नई नहीं, छोटे नावों और मोटर बोट के चलने पर रोक है।
10: एहतियातन देख सकते हैं कि नावों के संचालन पर, मोटरबोटों के संचालन पर फिलहाल प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसके चलते घाट किनारे नावें बंधी हुई हैं, थमी हुई हैं और लगातार नाविक भी इस पर निगरानी रखे हुए हैं। तो वहीं हम इस समय वाराणसी के 80 घाट पर हैं, इसके बगल में गंगा महल घाट है, फिर रीवा और तुलसी घाट, लेकिन साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो घाटों का आपसी कनेक्शन है, एक घाट से दूसरे घाट तक 84 घाटों का आपसी जो संपर्क का रास्ता है वे टूट गया है, और लगातार बढ़ाव जारी रहने से जो तीर्थयात्री आ रहे हैं, जो यहाँ घूमने लोग आ रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं, आस्थावान आ रहे हैं, उनको भी काफ़ी निराशा हाथ लग रही है क्योंकि नौका संचालन पर रोक लगी हुई है। और माना जा रहा है कि अगर गंगा के जलस्तर में यूं ही बढ़ोतरी जारी रही तो दिक्कत और बढ़ेगी। फिलहाल तटवर्ती इलाकों के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, या यहाँ रोजी रोटी चलाने वाले हों या गंगा आरती करने वाले आस्थावान हों, लगातार अपने साजो सामान को ऊपर की ओर शिफ्ट कर रहे हैं। और आज 5वीं बार दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती भी पीछे शिफ्ट होगी। माना जा रहा है कि ये आरती आज छत पर होगी, तो लगातार गंगा के जो बढ़ते जलस्तर से लोगों की दुश्वारियां बढ़ती चली जा रही हैं, और माना जा रहा है कि अगर यूं ही गंगा का जलस्तर बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में मुश्किलें और भी बढ़ेंगी।
9: वाराणसी में गंगा घाट पर जो रौनक होती है वो बारिश के इन दिनों में थोड़ी कम है। गंगा में पानी जब तक बढ़ रहा है और घाट सुरक्षित नहीं, तब तक हालात ऐसे ही रहने वाले हैं। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: खास कार्यक्रम में इतना ही, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
19: मंगल का कौन सा योग वैवाहिक जीवन में अलगाव ले आता है? मंगल का कौन सा योग साहस और आत्मविश्वास को कमजोर कर देता है? मंगल का कौन सा योग जीवन में प्रचंड दुर्घटना का कारण बनता है? कौन से हैं मंगल के अशुभ योग और क्या है उनका समाधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
20: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
21: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
22: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
21: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
23: और दुर्भाग्य कहता है
24: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
22: अविश्वास में विश्वास बसता है,
21: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
20: गुड न्यूज टुडे।
24: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: Yeah.

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम। गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: झूलनोत्सव के बीच राम मंदिर का भव्य श्रृंगार, सुनहरी रोशनी से नहाया मंदिर का शिखर, सावन के पवित्र महीने में देखा अनोखा नजारा। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की तैयारियां तेज, मुंबई के प्रसिद्ध काला चौकी महागणपति का हुआ आगमन, सिंह पर सवार नजर आए 22 फीट ऊंचे बप्पा। पवित्र सावन महीने में धूमधाम से जारी है कांवड़ यात्रा, जौनपुर में शिव भक्तों पर की गई फूलों से बारिश, प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से बरसाए फूल। पहाड़ से मैदान तक मौसम की मेहरबानी बरकरार, शिमला में 21 अगस्त तक बारिश का अलर्ट, चंडीगढ़ में जमकर बरसे पतरा। महिला हॉकी वर्ल्ड कप में भारत का दबदबा, साउथ अफ्रीका को 6-1 से हराकर पूल डी में हासिल किया टॉप पोजीशन, अब इंग्लैंड से होगा सामना।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
7: बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में लक्ष्य सेन की शानदार जीत, लक्ष्य ने पहले दौर में ऑस्ट्रिया की कॉलिंस फेलमोन को 16-21, 21-8, 21-4 से हराया। लक्ष्य सेन ने पहला गेम हराने के बाद की शानदार वापसी, दूसरा और तीसरा गेम जीतकर अपने नाम में मैच, इसी के साथ लक्ष्य ने राउंड ऑफ 32 में एंट्री की। महिला हॉकी विश्व कप में भारत की शानदार जीत, दक्षिण अफ्रीका को 6-1 से बड़े अंतर के साथ हराया। भारत की ओर से नवनीत कौर, सुनेलिता टोपो, सुशीला समेत तमाम दिग्गज। भारतीय टीम ने दर्ज की टूर्नामेंट की अपनी पहली और अब तक की सबसे बड़ी जीत, भारत ने अपने पहले मुकाबले में चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ किया। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा, अर्जुन पुरस्कार के लिए चुने गए 17 खिलाड़ी, फुटबॉल के दिग्गज आए अरुमाय नायांगम को अर्जुन अवार्ड की लाइफ टाइम कैटेगरी से सम्मान। बैडमिंटन में गायत्री गोपी चंद और त्रिशा जौली को दिया जाएगा अर्जुन अवार्ड। चेस के क्षेत्र में दिव्या देशमुख और विदिता गुजराती होंगे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित। एथलेटिक्स में तेजस्वी शंकर को अर्जुन अवार्ड। हाई जंप और डिकलोथोन में कर चुके हैं भारत का प्रतिनिधित्व। द्रोणाचार्य अवार्ड के नामों का भी ऐलान हो गया। नियमित कैटेगरी में एथलेटिक्स के परिवार सिंह, बॉक्सिंग और छोटे लाल यादव को, शूटिंग की नेहा नंदकुमार चौहान का नाम। क्रिकेटर ऋषभ पंत ने रच दिया इतिहास, टेस्ट में सबसे तेज 100 सिक्स लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए। पंत ने श्रीलंका के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट के चौथे दिन कारनामा किया, सिर्फ 4,918 बॉल में 100 छक्के लगाए। पर्वतारोहण और पैराग्लाइडिंग कर जिम एंड डब्ल्यूएस ने रच दिया इतिहास, पहली बार किया माउंट डेल्टा 41 के शिखर से सीधे पैराग्लाइडिंग द्वारा नीचे उतरने का सफल कारनामा। 13 सदस्यीय टीम ने भारतीय एडवेंचर के इतिहास में हासिल की बड़ी उपलब्धि। लद्दाख के करगिल क्षेत्र में स्थित है माउंट डेल्टा 41 जो माउंट बर्मल के नाम से भी मशहूर है। जीर्णोत्सव के बीच राम मंदिर का भव्य दिव्य श्रृंगार सुनहरी रोशनी से जगमगाया। मुंबई में गणपति उत्सव की तैयारियां शुरू, शेर पर सवार महालक्ष्मी अवतार वाले 22 फीट ऊंचे काला चौकी की महागणपति पधारी पंडाल। श्रद्धालुओं ने ढोल ताशों के साथ बप्पा का जबरदस्त स्वागत किया। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने गुजरात के नर्मदा में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का किया दौरा। प्रवेश वर्मा ने साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर दिल्ली में यमुना रिवर फ्रंट बनाने का भी किया ऐलान। बिहार के अंग क्षेत्र में धूमधाम से मनाया जा रहा है लोक पर्व मनसा विषहरी, पूजा केंद्र पर उमड़ा रही है श्रद्धालुओं की भारी भीड़। पूजा केंद्रों पर दिख रही आस्था परंपरा और अंग प्रदेश के इतिहास की झलक। लोकपर्व के लिए पूजा केंद्रों मनसी तल्ले बड़ा बाजार गुलजार पोखर रायसर समेत तमाम जगह सजावट। आजेबाजी के साथ निकाली गई बाला लखिंद्रा की बारात। आज प्रतिमा दर्शन करने के बाद कल किया जाएगा प्रतिमा का विसर्जन। पूरे क्षेत्र में 3 दिन तक धूमधाम से मनाया जाता है लोक पर्व। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में है भगवान भोलेनाथ का अनोखा धाम। गोमती नदी के किनारे घने जंगल के बीच बसे बाबा 71 नाथ धाम को लेकर मान्यता है। भोलेनाथ के इस धाम में रंग बदलते शिवलिंग और पहली पूजा को लेकर भक्तों में गहरी आस्था। पीलीभीत के पूरनपुर तहसील इलाके में पुन्नापुर टांडा गांव के पास घने जंगलों के बीच मौजूद है। भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए यहां गोमती नदी के किनारे बसे घने जंगल से गुजरता है यहां पर पहुंचते हैं श्रद्धालु। माना है कि महर्षि गौतम के श्राप से मुक्ति के लिए देवराज इंद्र ने यहां की थी 71वीं शिवलिंग की स्थापना। तमिलनाडु की लाखों कामकाजी महिलाओं के लिए गुड न्यूज, राज्य सरकार ने तीसरे बच्चे के लिए 1 साल का मातृत्व अवकाश देने का ऐलान किया। मध्य प्रदेश में रेलवे नेटवर्क के विस्तार से जुड़ी हुई गुड न्यूज, ग्वालियर चंबल अंचल में कैलासरस सबलगढ़ बीरपुर रेल सेक्शन हुआ। रेल सेक्शन के उद्घाटन में केंद्रीय मंत्री मुख्यमंत्री समेत कई नेता शामिल हुए। असम में युवाओं से जुड़े मामलों को सुलझाने के लिए युवा कल्याण विभाग बनाएगी सरकार। गुजरात के राजकोट में बिना नंबर प्लेट वाली और बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल। इंदौर के डॉक्टर की बड़ी उपलब्धि, 1 दिन में 51 रोबोटिक बेरियाट्रिक सर्जरी करके बनाया रिकॉर्ड। बेरियाट्रिक और रोबोटिक सर्जन डॉक्टर मोहित भंडारी ने स्वतंत्रता दिवस पर सर्जिकल स्वराज पहल के तहत 1 ही दिन में 50 से ज्यादा रोबोटिक सर्जरी की। अब तक 40,000 सर्जरी कर चुके हैं डॉक्टर मोहित भंडारी। डॉक्टर भंडारी को उपलब्धि, भारतीय हेल्थ केयर और रोबोटिक सर्जरी के क्षेत्र में मील का पत्थर। गुजरात के नवसारी में मछुआरों के लिए कोस्ट गार्ड के जवान बने देवदूत, 9 मछुआरों को किया एयरलिफ्ट। वाराणसी में बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर, घाटों पर एनडीआरएफ और जल पुलिस की तैनाती। सेना के बाद अग्निवीरों को

सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में देश के लिए बलिदान देने वाले सैनिकों की पत्नियों को सम्मानित किया गया। पूर्व सैनिकों की पेंशन, स्वास्थ्य और अन्य शिकायतों के समाधान के लिए लगातार विशेष स्टॉल्स। उत्तर प्रदेश पुलिस का पहला आधिकारिक एंथम खाकी का सितारा हुआ रिलीज। अमिताभ बच्चन की आवाज और शंकर महादेवन का संगीत। अमिताभ बच्चन ने शेयर किया उत्तर प्रदेश पुलिस का पहला आधिकारिक एंथम खाकी का सितारा। पुलिस के साहस, सेवा, महिला सुरक्षा, आपदा राहत और जनसेवा की दिखाई गई झलक। 6.5 मिनट में पुलिस की पूरी कहानी। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया, लोगों की फरियाद सुनी, जल्द निपटारे के आदेश। उत्तर प्रदेश सरकारी नौकरियों की भर्ती को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला, भर्ती प्रक्रिया को अब वार्षिक कैलेंडर के हिसाब से निपटाया जाए। उत्तरकाशी में स्थित तयारा बुग्याल में दूध मक्खन की अनूठी रंगोली। प्रकृति का आभार जताने वाली यह परंपरा है। समुद्र तल से 11,000 की फीट की ऊंचाई पर 28 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में होती है दूध मक्खन और मठा से होती है। इस दुनिया के अनोखे उत्सव में शामिल होने के लिए जुड़ते हैं देश विदेश से हजारों पर्यटक। मोगा जिले की 39 वर्षीय हरप्रीत कौर ने पेश की जीव प्रेम की एक अनोखी मिसाल। अपने घर में रोजाना करीब 500 चिड़िया और अलग अलग पक्षियों को दाना देती हैं। 13 सालों से हरप्रीत निभा रही ये परंपरा। करीब 500 चिड़ियों को देखभाल करती है। केरल से एक पहिए पर साइकिल यात्रा पर निकला युवक। युवाओं में नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाना मकसद। एक पहिए पर साइकिल चलाते हुए 11,000 किलोमीटर की यात्रा पर निकला है यह शख्स। मेघालय के मुख्यमंत्री संगमा ने पाइन होम इको सस्टेनेबल प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। मेघालय के मावलंग गांव में करीब 6 करोड़ की लागत से बना है यह प्रोजेक्ट। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला स्थित प्रसिद्ध श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर पहुंचे क्रिकेटर तिलक वर्मा, पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश के युवक ने साइकिल से 45 दिन में तय की 3,000 किलोमीटर की दूरी। अगले एक साल में 22,000 किलोमीटर की दूरी तय करना है लक्ष्य। भारत को विश्व गुरु बनाने का संदेश लेकर 25,000 किलोमीटर की यात्रा पर निकला है युवक। उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान होते हुए गुजरात पहुंचे मध्य प्रदेश के बैतूल के रहने वाले निखिल कनौजिया। उत्तराखंड में कूट की खेती और उससे जुड़े हुए काम करने के लिए बागेश्वर में किसान दया दानू का सम्मान। खेती से 400 से ज्यादा महिलाओं को रोजगार दिया। बागेश्वर जिले की कपकोट तहसील के किसान दया दानू को मिला तिलू रौतेली सम्मान। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में स्थित प्राचीन बाबा बूढ़ा अमरनाथ की 12 दिवसीय वार्षिक यात्रा का आज दूसरा दिन। पवित्र यात्रा में नजर आई सांप्रदायिक सौहार्द की शानदार मिसाल। मंडी में मुस्लिम समुदाय ने बूढ़ा अमरनाथ की यात्रियों के पहले जत्थे का स्वागत किया। पुंछ में बाबा बूढ़ा अमरनाथ को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप में रवाना किया था पहला जत्था। 28 अगस्त तक जारी रहेगी आस्था की ये शानदार यात्रा। रक्षाबंधन के दिन होगा 12 दिवसीय यात्रा का समापन। भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक भीमा शंकर महादेव मंदिर में उमड़ रहे हैं भारी संख्या में श्रद्धालु। से करीब 110 किलोमीटर दूर सह्याद्री पर्वत श्रृंखला पर लगभग 3,250 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मान्यता है कि भगवान शिव ने यहाँ पर राक्षस भीम या त्रिपुरासुर का वध किया था जिससे यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए भगवान। नागर और हेमद पंथी शैली का मिश्रण है ये काले पत्थर से बना हुआ मंदिर। कुदरत की गोद में बसे इस ज्योतिर्लिंग में सावन महीने में होती है ज्यादा भीड़। यातायात नियंत्रित करने के लिए करीब 7 किलोमीटर दूर पर बनाए गए हैं 4 पार्किंग स्थल। उरई में खास मनोकामना के साथ 4 युवा कर रहे हैं कांवड़ यात्रा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के देश के प्रधानमंत्री बनने की कामना को लेकर 120 किलोमीटर की यात्रा। मथुरा जिला कारागार में महिला कैदी बना रही हैं इको फ्रेंडली राखियां। इन इको फ्रेंडली राखी बनाने में फूल और सब्जियों का हो रहा इस्तेमाल।
कश्मीर की साल पुरानी परंपरा संगा तराश को जीवित

0: راکبوونی باندی پوراک ایک کاریگر لگ بھگ پانچ دشک سے سنگ تراش پرمپرا سے بنا رہے لگاتار کئی سندر کلاکرتیاں دہرادون میں لگاتار بارش کے بیچ ٹپکیشور مہادیو مندر کے پاس بہنے والی تمسا ندی کا افان پر تیز بہاؤ کے چلتے ایک گھنٹے تک بادھت رہی یاترا آسنسول کی ریل پار میں باڑھ جیسے حالات سو سے زیادہ گھر پربھاوت یدھ استر پر ریسکیو آپریشن سول ڈیفینس اور کیو آر ٹی ٹیم کی مدد سے ریسکیو آپریشن لگاتار جاری قریب 30 لوگوں کو نکال کر باہر پہنچایا لگاتار بارش سے پرلیا میں سڑکیں جلمل میں لوگوں سے احتیاط برتنے کی اپیل پچھلے دو دنوں سے بانکور ضلع میں ہوئی ہے لگاتار بارش خطرے کے نشان کے اوپر بہہ رہی ہے گندھیشوری ندی ہماچل پردیش کے بلاسپور استھت شکتی پیٹھ نینا دیوی میں زبردست بارش ہوئی شراون اشٹمی میلے کے دوران مندر کی پوڑیوں میں لگا پانی شراون اشٹمی میلے کے اپلکش میں بڑی سنکھیا میں شکتی پیٹھ دھام پہنچے شردھالو بارش کی وجہ سے شردھالوں کے جوش آئے اتراکھنڈ کے پہاڑی علاقوں میں بھی لگاتار بارش کا اثر رشیکیش میں بڑا گنگا ندی کا جلستر دل کے سرودے کنیا وشودیالیہ کی چار چھاتراؤں نے بنایا ہیلدی فروٹ چاکلیٹ چھاتراؤں کے بنائے گئے اس فروٹ چاکلیٹ میں ڈالے گئے ہیں نیچرل ڈارک چاکلیٹ اور چاکلیٹ کے بھیتر ڈرائی فروٹس اور اپن ٹو کی سفلتا پر عمران ہاشمی کی پتنی کا ایموشنل پوسٹ پروین ہاشمی نے فلم انڈسٹری میں عمران کی محنت انوشاسن اور صبر کی تعریف کی رام گوپال کی اگلی فلم پولیس کمپنی میں نظر آئیں گے ابھینیتا ہرش وردھن رانے 90 کے دشک میں ممبئی انڈر ورلڈ کی پرشٹھ بھومی پر آدھارت ہے فلم فلم پریم کیٹاڑو کی ٹیزر ہوا ریلیز فلم میں ویر بہاڑیا پر شکتی خورانہ آفیہ نظر آئے عمران ہاشمی کی اپ کمنگ فلم گن ماسٹر G9 کی ریلیز ڈیٹ آگے نکل کر سامنے فلم 27 نومبر کو دنیا مکروں میں ریلیز ہوئی رنویر سنگھ کی پرلے کی شوٹنگ ہو گئی شروع اس فلم میں رنویر سنگھ ساتھ دو کا فیم ایکٹریس نظر آئیں گی ارجنٹینا کے بیونس آئرس میں انوکھا نظارہ سپر ہیرو بن کر نکلے سینکڑوں بائکرز بچوں کے لیے کھلونے لے کر پہنچے بیمار بچوں کے چہرے پر آئی مسکان بائکرز نے بچوں کو بانٹے کھلونے بچوں نے اپنے ہیرو کو گلے لگایا بائکرز کا خاص چلڈرنز ڈے مشن سڑکوں پر بائک ریلی کا شاندار نظارہ اسپتال بچوں نے سپر ہیرو سنگ کھچوائی تصویریں بچوں کے چہرے کھلے کاوا کلب کی پہل کو 20 سال ہو گئے پورے 2006 سے لگاتار جاری ہے نیک پہل ہر سال بچوں کے لیے جڑتے ہیں بائکرز
1: گڈ نیوز ٹوڈے اس لیے اچھا لگتا ہے اس کے اندر نا اس خبروں کی موڑ دھوڑ اور چلا چلی نہیں ہے کم سے کم لو
2: منگل کا کون سا یوگ ویواہک جیون میں الگاو لے آتا ہے منگل کا کون سا یوگ ساہس اور آتم وشواس کو کمزور کر دیتا ہے منگل کا کون سا یوگ جیون میں پرچنڈ درگھٹنا کا کارن بنتا ہے کون سے ہیں منگل کے اشبھ یوگ اور کیا ہے ان کا سمادھان جانیے میرے ساتھ صرف گڈ لک ٹوڈے میں
3: مجھے تقریباً 21 سال ہو گئے پترکاریتا کرتے خبروں کو سمجھنا اور ان کو سمجھانا مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو کچھ ایسی خبریں سمجھیں گے اور آپ کو سمجھائیں گے دیکھیے میرے یعنی نوجوت رندھاوا کے ساتھ گڈ نیوز ٹوڈے میں
1: گڈ نیوز ٹوڈے اس لیے اچھا لگتا ہے اس کے اندر نا اس خبروں کی موڑ دھوڑ اور چلا چلی نہیں ہے کم سے کم لوگوں کو خبریں تو آرام سے سننے کو مل جائے اس کے اوپر اس کے اوپر ایسے اچھی سوچ کے ساتھ ایک اچھی شروعات کی ہے اس کے پرنام بھی اچھے آنے چاہیے ویسے اچھی چیزوں کی مارکیٹ آج کل بڑھ رہی ہے
4: دیش دیکھ رہا ہے اچھی خبریں गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
0: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
0: उम्र को महज एक नंबर साबित कर दिखाया है चरखी दादरी के 76 साल के रामकिशन शर्मा ने। जिस उम्र में ज्यादातर लोग खेल के मैदान की ओर देखना तक भूल जाते हैं, उस उम्र में रामकिशन शर्मा मैदान पर उतर कर नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। जी हाँ, खास बात यह है कि उन्होंने मास्टर्स एथलेटिक्स की शुरुआत भी कोई कम उम्र में नहीं बल्कि 65 साल की उम्र में की थी।
6: जिस उम्र में ज्यादातर लोग रिटायर होकर आराम की जिंदगी जीने की सोचते हैं, उम्र के उस पड़ाव पर 76 साल के ये बुजुर्ग ट्रैक पर युवाओं को चुनौती दे रहे हैं। बड़ी बात ये है कि रामकिशन शर्मा ने मास्टर्स एथलेटिक्स में अपने करियर की शुरुआत ही 65 साल की उम्र से की है। रामकिशन शर्मा ने अपने इस करियर में क्या उपलब्धि हासिल की है ये मेडल बयां कर रहे हैं। महज 7 से 9 साल के खेल करियर में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में सैकड़ों पदक अपने नाम किए हैं। रामकिशन शर्मा के नाम 401 मेडल और 336 प्रमाण पत्र दर्ज हैं। इनकी उपलब्धियों को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने भी आधिकारिक तौर पर प्रमाणित किया है। इन्हें लोग मेडल मशीन के नाम से जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रामकिशन देश के लिए 10 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 162 गोल्ड, 27 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल इनके नाम है। वहीं राज्य स्तर पर भी इन्होंने 98 गोल्ड मेडल जीते हैं।
7: मैंने 65 साल की उम्र के बाद मास्टर एथलेटिक गेम्स में खेलना शुरू किया था और लगातार मैं 2026 तक खेलता रहा हूँ। इसमें 3 साल में मेडलों आज तक भी अपने नाम रिकॉर्ड है ऑल ओवर इंडिया, और 9 साल में 83 तक भी अपने नाम है।
6: रामकिशन सिर्फ एक या दो स्पर्धाओं तक सीमित नहीं है। 100, 200, 400 और 800 मीटर दौड़ के साथ लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप और हर्डल रेस में भी इन्होंने लगातार शानदार प्रदर्शन किया है।
7: कहना चाहूंगा नशे से बचें, नशा नाश की जड़ है ये। जिस तरह दीमक वृक्ष की जड़ों खोखला कर देती है, इस तरह शराब, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू वगैरह तो वो अंदर से सारे फेफड़ों को खराब कर देती है और कैंसर होने का भय होता है। तो सभी से मैं आह्वान करता हूँ कि नशे से बचें और अपना समय पर जल्दी उठें, योगा करें और अपने जीवन को सफल बनाएं।
6: ट्रैक पर लगातार कामयाबी हासिल करने वाले रामकृष्ण शर्मा का अगला लक्ष्य भी बड़ा है। अब वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराने की तैयारी में है। चरखी दादरी से प्रदीप कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रही है। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
0: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
0: झूलनोत्सव के बीच राम मंदिर का भव्य श्रृंगार, सुनहरी रोशनी से नहाया मंदिर का शिखर, सावन के पवित्र महीने में देखा अनोखा नजारा। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की तैयारियां तेज, मुंबई के प्रसिद्ध काला चौकी महागणपति का हुआ आगमन, सिंह पर सवार नजर आए 22 फीट ऊंचे बप्पा। पवित्र सावन महीने में धूमधाम से जा रही है कांवड़ यात्रा, जौनपुर में शिव भक्तों पर की गई फूलों की बारिश, प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से बरसाए फूल। पहाड़ से मैदान तक मौसम की मेहरबानी बरकरार, शिमला में 21 अगस्त तक बारिश का अलर्ट, चंडीगढ़ में जमकर बरसे पतरा। महिला हॉकी वर्ल्ड कप में भारत का दबदबा, साउथ अफ्रीका को 6-1 से हराकर पूल डी में हासिल किया टॉप स्थान, अब इंग्लैंड से होगा सामना।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: जी नमस्कार।
0: तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे मंगल के अशुभ योगों के बारे में। जी हाँ, आपकी कुंडली में अगर मंगल का अशुभ योग बन रहा है तो उसको सही करने के उपाय क्या हैं, उसको शांत करने के उपाय क्या हैं, उस पर पंडित जी से करेंगे हम विस्तार से चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र।
1: अगर आत्मविश्वास कम रहता हो, कॉन्फिडेंस साहस कम रहता हो, आत्मविश्वास और साहस की समस्या हो, तो रोज सुबह स्नान करने के बाद लाल चंदन का गोल तिलक लगाना चाहिए। अगर नित्य प्रातः ऐसा करें, आपका आत्मविश्वास और आपका साहस प्रबल होगा।
0: और आइए जान लेते हैं 19 अगस्त 2026 यानी कि बुधवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 19 अगस्त 2026 दिन बुधवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, शाम के 7:19 तक। नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, प्रातः 6:46 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: और चलिए जानेंगे पंडित जी से कि मंगल के अशुभ योग आखिर होते क्या हैं।
1: जी, हम आपको आज बता रहे हैं कि अगर आपकी कुंडली में मंगल का कोई अशुभ योग है तो क्या उपाय करें जिससे मंगल का वो अशुभ योग शांत हो जाए। मंगल के अशुभ योग क्या होते हैं? मंगल जीवन में साहस, ऊर्जा और सुरक्षा का स्वामी है। जब मंगल किन्हीं अशुभ ग्रहों के प्रभाव में आता है तो ये जीवन में निगेटिव परिणाम, नकारात्मक परिणाम देता है। इन अशुभ योगों से जिसकी कुंडली में होता है उसके स्वास्थ्य पर और उसकी सुरक्षा पर विशेष प्रभाव पड़ता है। मंगल के अगर अशुभ योग कुंडली में हैं तो इसके कारण व्यक्ति दुर्घटना का और शल्य चिकित्सा का शिकार हो जाता है। मंगल के अलग अलग अशुभ योग होते हैं जो जीवन में दुर्घटना, विवाद, मुकदमेबाजी, जेल यात्रा जैसी नौबत ले आते हैं।
0: तो चलिए जान लेते हैं कि अंगारक दोष आखिर होता क्या है, इसके प्रभाव क्या होते हैं और इससे बचने के आखिर उपाय क्या है।
1: मंगल का पहला अशुभ योग है अंगारक योग। क्या होता है ये? देखिए, कुंडली में अगर मंगल और राहु एक साथ बैठे तो अंगारक योग जीवन में बन जाता है और अंगारक योग प्रचंड दुर्घटना, शल्य चिकित्सा और रक्त ब्लड संबंधी गंभीर समस्या देता है। अंगारक योग के होने पर पारिवारिक संबंध काफी खराब होते हैं, ऐसा देखा गया है। पति पत्नी में से किसी एक की कुंडली में अगर अंगारक योग है तो ये अलगाव पैदा करता है, या पति पत्नी को एक दूसरे से दूर रहना पड़ता है। अगर ये योग आपकी कुंडली में है तो मंगलवार का उपवास रखिए और हर मंगलवार को कुमार कार्तिकेय की मुरुगन स्वामी की उपासना करिए। अगर ऐसा नियमित रूप से करें तो अंगारक योग का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा।
0: और अब वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, तो चलिए जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि वालों का क्या कहता है राशिफल।
1: मेष राशि, इस समय आर्थिक मजबूती आएगी, करियर में कुछ बदलाव होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, चिंताएं समाप्त होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक तनाव कम होगा, करियर की बाधा दूर होगी, धन खर्च बढ़ा रहेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और चलिए अब जानते हैं कि मंगल दोष क्या है और इसके निवारण और इसके उपाय क्या हैं।
1: मंगल का जो दूसरा अशुभ योग है वो है मंगल दोष। मंगल दोष क्या होता है और इसका निवारण कैसे करेंगे? देखिए, कुंडली में अगर मंगल लग्न में चतुर्थ में सप्तम अष्टम या द्वादश भाव में हो तो कुंडली में मंगल दोष बनता है। मंगल दोष होने पर रिश्ते काफी संवेदनशील हो जाते हैं, रिश्तों में गड़बड़ आने की संभावना बन जाती है। इसीलिए मंगल दोष होने पर कुंडली मिलान की सलाह दी जाती है। कुंडली में अगर मंगल दोष है तो विवाह और रिश्तों के मामले में गंभीर हो जाना चाहिए। अगर मंगल दोष की वजह से समस्या हो रही है तो नियमित रूप से हर मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाइए और जमीन पर या जमीन के निकट सोने का प्रयास करिए, मंगल दोष का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाएगा।
0: और अब वक्त हो गया है कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के राशिफल को जानने का।
1: कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, करियर में कोई जोखिम ना लें, वाहन सावधानी से चलाएं, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, नौकरी में पदोन्नति होगी, पारिवारिक समस्या हल होगी, शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: समस्याएं हल होंगी, करियर में सुधार होगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और गुड लक में अब वक्त हो गया आज के सवालों का और उनके जवाब देने का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि आज का पहला सवाल वो किसका लेने वाले हैं।
0: जी आज का पहला प्रश्न रागिनी पाल ने हमें मध्य प्रदेश से लिखा है। 20 अगस्त 2005 का जन्म है, होशंगाबाद मध्य प्रदेश। ये कह रही हैं कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूं, क्या मुझे सरकारी नौकरी मिल सकेगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। रागिनी आपकी कुंडली कुंभ राशि की है और जिस तरह के कॉम्बिनेशन है कुंडली में, अगर आप बैंक में, फाइनेंस में, प्रशासनिक सेवा में, इन क्षेत्रों में जाने का प्रयास करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। साल 2028 और 2029 में आपके सफलता की संभावना बनती है, तो आप अपना प्रयास जारी रखिएगा। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और सुबह के समय एक बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो आपको लाभ होगा।
1: अगर आपके मन में भी कोई सवाल है और आप चाहते हैं पंडित जी से पूछना, तो आप हमें अपना सवाल भेज सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए इसी के साथ वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का, तो जानेंगे पंडित जी से आज का दूसरा सवाल वो किसका ले रहे हैं।
0: जी अगला प्रश्न सरोजिनी दत्ता ने हमें लिखा है। कटक ओडिशा से मेल लिखती हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 18 मार्च 2001 9:05 प्रातः कटक ओडिशा। ये पूछ रही हैं कि मेरा बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी करे आगे या पोस्ट ग्रेजुएशन करे, पीजी करे, किस डायरेक्शन में जाना मेरे बेटे के लिए ठीक रहेगा। सरोजनी जी आपकी पुत्र की कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और धनु राशि की, महादशा चंद्रमा की और अंतर दशा बुध की चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से आपके पुत्र को पोस्ट ग्रेजुएशन में अपना नाम लिखा लेना चाहिए और साथ में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी करते रहना चाहिए। साल 2028 में इनके लिए सफलता की संभावनाएं बन रही हैं। इनका स्वास्थ्य बेहतर रहे, इनकी एकाग्रता बेहतर रहे, इसके लिए इनको एक पन्ना बनवा करके पहनाइए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके धारण करवाएं और इनको बोलें कि ये रोज सुबह अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए अब जानते हैं कि आखिर ये नीच मंगल क्या होता है, क्योंकि हमारी कुंडली में नीच मंगल भी होता है, तो इसका अर्थ क्या होता है और इसका प्रभाव हमारे जीवन पर किस तरह से पड़ता है।
0: मंगल की एक और अशुभ स्थिति है नीच का मंगल, नीचस्थ मंगल, अगर आपकी कुंडली में नीच का मंगल है तो ये क्या करता है? मंगल कर्क राशि में नीच का हो जाता है, यानी बहुत ज्यादा कमजोर होता है। अगर मंगल कुंडली में कर्क राशि में बैठा है, नीच की स्थिति में बैठा है, तो व्यक्ति को आत्मविश्वास की, रक्त की और साहस की कमी देखी जाती है। हालांकि कर्क का मंगल कभी कभी व्यक्ति को बहुत अच्छा सर्जन भी बना देता है। अगर आपकी कुंडली में नीच का मंगल है और ये आपको जीवन में समस्या दे रहा है, तो तांबा धारण करिए, गुड़ और काली मिर्च नियमित रूप से खाते रहिए। अगर ऐसा करेंगे तो नीच के मंगल का दुष्प्रभाव आपके ऊपर कम पड़ेगा।
1: और अब वक्त हो गया है तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के राशिफल को जानने का।
0: तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर में कुछ बदलाव होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, काम में लापरवाही ना करें, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन की प्राप्ति होगी, परिवार में शुभ कार्य होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब जान लेते हैं कि शनि और मंगल अगर संबंध बनाते हैं हमारी कुंडली में, तो इसका हमारे जीवन पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है।
0: कुंडली में बहुत बार शनि और मंगल का संबंध बनता है। अगर शनि और मंगल का परस्पर संबंध कुंडली में है तो कैसा प्रभाव डालता है? देखिए, शनि अगर वायु है तो मंगल अग्नि है, मंगल आग है। दोनों के मिलन से प्रबल अग्नि और प्रबल विस्फोट पैदा होता है। शनि मंगल का अगर संबंध हो कुंडली में तो व्यक्ति व्यक्ति के साथ शस्त्राघात, शस्त्र से हमला, वायुयान दुर्घटना और आतंकी घटनाएं होने की संभावना बनती है। लेकिन शनि मंगल का योग व्यक्ति को एकदम से बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है, और जिनकी कुंडली में शनि मंगल का संबंध है वो एकदम से ऊंचाइयों पर जाते हैं और एकदम से जिंदगी समाप्त हो जाती है। अगर ये योग कुंडली में है तो रोज सवेरे माता पिता के चरण स्पर्श करें, हफ्ते में दो दिन शनिवार और मंगलवार को सुंदर कांड का पाठ करें। अगर ऐसा नियमित रूप से करें तो शनि मंगल के संबंध का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा।
1: और अब वक्त हो गया आज के अंतिम राशिफल के बारे में जानने का, तो चलिए जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का क्या कहता है राशिफल।
0: मकर राशि, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी, रुका हुआ काम बन जाएगा, विवाद तय हो सकता है। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, करियर में लाभ होगा, अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, रिश्तों में समस्या हो सकती है। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: और अब वक्त हो गया आज के तीसरे सवाल का, तो चलिए जान लेते हैं कि आज का तीसरा सवाल पंडित जी को कहां से और किसने भेजा है।
0: जी, अगला प्रश्न मधु जी ने हमें लिखा है, पश्चिम बंगाल से लिखती हैं। 18 फरवरी 1979 का जन्म है। 11:30 प्रातः नदिया, पश्चिम बंगाल। ये कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा नहीं रहता है, कुछ न कुछ स्वास्थ्य की समस्या हमेशा लगी रहती है, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो जाए। मधु जी, आपकी कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और तुला राशि की। महादशा बुध की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। देखिए, पहली समस्या तो आपकी ज्यादातर मानसिक दिखाई दे रही है। तनाव बहुत है, चिंताएं बहुत हैं और उस वजह से आपका स्वास्थ्य बेहतर नहीं है। आपकी कुंडली के हिसाब से आप अपने खान पान का और अपनी मानसिक स्थिति का अगर ध्यान दें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। एक ओपल बनवा करके पहनिए, 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें। रोज सुबह एक बार नारायण कवच का अगर पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और इसी के साथ गुड लक में वक्त हो गया आज के अंतिम प्रश्न का, तो जानेंगे पंडित जी से आज का अंतिम और चौथा प्रश्न वो किसका लेंगे।
0: जी, आज का अंतिम प्रश्न अर्जुन जी ने लिखा है, इंदौर से लिखते हैं। 7 अक्टूबर 1990 का जन्म है। 10:55 प्रातः इंदौर मध्य प्रदेश। ये पूछ रहे हैं कि मेरा विवाह कब तक होगा और कैसा रहेगा और क्या मेरी कुंडली मांगलिक है या नहीं है। अर्जुन जी, आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और मेष राशि की, महादशा राहु की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। तो सबसे पहली बात यह है कि आपके विवाह का समय चल रहा है साल 2027 के शुरुआती समय में आपका विवाह होगा। आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो जब भी विवाह करिएगा कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। कुंडली आपकी मांगलिक है, मंगल सप्तम स्थान में कुंडली में बैठा हुआ है। एक मोती बनवा करके पहने, 10-12 रत्ती की मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करें। रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: पंडित जी, एक सवाल था, क्योंकि आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं मंगल की, तो अगर हमारी कुंडली में मंगल बहुत दिक्कतें हमें दे रहा है तो हमें किस भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए ताकि उसका प्रभाव कम हो सके।
0: जी देखिए, ज्यादातर लोग ऐसा समझते हैं और ऐसा जानते हैं कि अगर मंगल कोई दिक्कत दे रहा है, मंगल से संबंधित कोई समस्या है, तो हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। ज्यादातर लोग यही जानते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ज्योतिष ये कहता है कि अगर मंगल से संबंधित गंभीर समस्या है या मंगल की वजह से अगर जीवन में ज्यादा दिक्कत है तो हनुमान जी की नहीं बल्कि कुमार कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए, जिनको दक्षिण भारत में मुरुगन स्वामी या सुब्रमण्यम स्वामी भी कहते हैं। तो मंगल कितना भी नकारात्मक क्यों ना हो, मंगल कितना भी निगेटिव क्यों ना हो, अगर आप कुमार कार्तिकेय की नियमित रूप से उपासना करें, उनके मंत्र का, उनके स्तोत्र का पाठ करें तो मंगल संबंधी समस्याओं को आप बैलेंस कर पाएंगे।
1: जिनका जन्मदिन आने वाला है उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए जानते हैं कि आपका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा।

0: 19 अगस्त को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में धन और संपत्ति की स्थिति उत्तम रहेगी। स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर ठीक बना रहेगा। करियर और धन का मामला स्थिर रहेगा। विवाह होने और संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
1: और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जान लेते हैं पंडित जी से कि आज की जिज्ञासा क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या मांगलिक व्यक्ति की शादी विवाह मांगलिक से ही होना चाहिए? अगर किसी व्यक्ति की कुंडली मांगलिक है तो विवाह के समय मंगल पर विचार करना जरूरी है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि मांगलिक व्यक्ति का विवाह मांगलिक व्यक्ति से ही किया जाए। केवल आपको ये देखना है कि लड़के और लड़की की कुंडली में मंगल दोष बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है।
1: गुड लक में जानेंगे शुभ पहर के बारे में, तो चलिए जान लेते हैं 19 अगस्त 2026 यानी कि बुधवार का शुभ पहर कौन सा है।
0: दिनांक 19 अगस्त 2026 दिन बुधवार, शुभ पहर का समय है शाम के 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में गणेश जी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपको करियर के मामलों में सफलता मिलेगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 19 अगस्त बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में।
1: गुड लक में अब जानेंगे आज की गुड लक राशि के बारे में, तो चलिए जान लेते हैं पंडित जी से ही कि आज की गुड लक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग शिव जी की पूजा कैसे करेंगे। आज की गुड लक राशि है मकर। आपको शिवलिंग पर काला तिल मिला हुआ जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य और आपका करियर दोनों ठीक रहेंगे।
1: गुड लक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि आज का महा उपाय क्या है।
0: जी, आज आपको महा उपाय में बताते हैं कि अगर आप कारोबारी हैं, व्यापारी हैं और कारोबार काफी धीमा चल रहा है तो क्या करेंगे? अपने बिजनेस या काम के स्थान पर अपनी कुर्सी पर किसी और को बैठने मत दीजिए। कारोबार के स्थान पर सुगंधित धूप बत्ती नियमित रूप से जलाइए और जिस जगह मेज कुर्सी पर डेस्क पर बैठकर काम करते हैं वहां एक सफेद रंग की कोई सजावटी मूर्ति या देवी देवता की मूर्ति रखिए, आपको लाभ होगा।
1: पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया, बाकी देश और दुनिया की तमाम अच्छी और सच्ची खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: राइए बात करेंगे बारिश, बाढ़ और रेस्क्यू ऑपरेशन की। इस वक्त देश के कई राज्य भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात का सामना लगातार कर रहे हैं, ऐसे में लोगों की मदद करने के लिए राहत और बचाव एजेंसियां लगातार मुस्तैद हैं, जो अब तक कई लोगों की जान बचा चुकी हैं। मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है।

0: अगस्त के इस महीने में मानसून की बारिश से कई राज्यों में हाहाकार मचा हुआ है। चाहे पहाड़ी राज्य हो या फिर मैदानी राज्य, भारी बारिश के चलते नदी नाले सब उफान पर हैं और जगह जगह लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। रेस्क्यू की एक चौंकाने वाली तस्वीर हिमाचल प्रदेश के चंबा से सामने आई, जहां भरमौर इलाके के 84 चला में बादल फटने से लोहे का पुल बह गया और सड़क भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इसके चलते करीब 40 से 50 श्रद्धालु रास्ते में ही फंस गए, जिसकी सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और बारी बारी से सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित बचाया। रेस्क्यू का एक ऐसा ही रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के ऋषिकेश से सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे एसडीआरएफ के जवानों ने दो जिंदगियों को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। रात के वक्त किया गया यह रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत ही खतरों से भरा था, लेकिन एसडीआरएफ जवानों ने इसकी परवाह नहीं की और बीन नदी की उफनती लहरों से लड़कर गाड़ी में फंसे दोनों लोगों को सकुशल बचा लिया। रेस्क्यू का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है और हर कोई एसडीआरएफ जवानों की हौसला अफजाई कर रहा है।
1: हमें सूचना मिली लगभग 9:15 बजे के लगभग कि एक मैक्स बीन नदी में पलट गई और जो नीचे चली गई, तो हमारी टीम तुरंत यहाँ पर पहुंची है और यहाँ पे देखा

0: नदी में, और उसको रेस्क्यू कर लिया गया और उसको हॉस्पिटलाइज किया। तो उसके बाद पता चला कि एक व्यक्ति अंदर था जो बुरी तरह से फंसा था। उसके लिए टीम द्वारा हमारे बहुत भरसक प्रयास किया गया और कई प्रयासों के बाद हम उस व्यक्ति का रेस्क्यू कर गए और उसको भी हमें हमारे द्वारा टीम द्वारा हॉस्पिटलाइज किया गया। हमारे सामने हमें दिखा कि जो व्यक्ति अंदर है वो भी चिल्ला रहा था कि मुझे बचाओ, और हमारी टीम उसी हौसले के साथ आगे बढ़ी और सभी हमारे जो जितने भी हमारे यहाँ पे टीम के मेंबर्स हैं सभी के प्रयास से हमारे रोप के माध्यम से उस तक पहुंच बनाई और उस व्यक्ति को हमारे द्वारा टीम द्वारा रेस्क्यू किया गया।
1: वहीं एसडीआरएफ की टीम ने देहरादून के मिसराज पट्टी इलाके में ट्रैकिंग के लिए पहुंचे यूपीईएस के 6 छात्र नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद जंगल में फंस गए। इस बात की सूचना जैसे ही एसडीआरएफ टीम को मिली, उसने दुर्गम रास्तों और खराब मौसम के बीच करीब 6 किलोमीटर पैदल ट्रैकिंग कर सभी छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। राज्य में लगातार हो रही बारिश के कारण इस वक्त ज्यादातर नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की गई है।
2: कई स्थानों पर बहुत ज्यादा बरसात हुई है और बरसात के कारण निश्चित रूप से कुछ दिक्कतें भी हुई हैं। कई जगह नदियों का पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जलस्तर काफी बढ़ गया है। ऋषिकेश के पास में जलस्तर काफी हद तक बढ़ गया है। आज की बात करें तो आज देहरादून के लिए, टिहरी के लिए, पौड़ी और ऊधम सिंह नगर 4 जनपदों के लिए ऑरेंज अलर्ट है। सभी जनपदों को एसईओसी से निर्देश जारी किए गए हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी संबंधित से अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर ऐसे किसी स्थान पर रह रहे हैं जहां पानी के बढ़ने की संभावना है, जलस्तर बढ़ने की संभावना है, बाढ़ आने की संभावना है, ऐसे स्थानों पर जो लोग रह रहे हैं सावधानी के साथ रहें, अलर्ट पे रहें, ताकि किसी प्रकार से पानी का स्तर बढ़ने पर उनको सकुशल वहां से निकासी संभव हो सके। इसके साथ साथ मैं सभी से यह भी अनुरोध करूंगा कि अपने मोबाइल में सचेत ऐप डाउनलोड कर लें ताकि मौसम के अपडेट लगातार उनको मिलते रहें, और जो लोग ट्रेवल करना चाहते हैं अनावश्यक रूप से ट्रेवल करने से बचें।
1: पहाड़ों पर लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब मैदानी राज्यों में भी दिखाई देने लगा है। यूपी से लेकर बिहार तक गंगा और उसकी सहायक नदियों का जल स्तर बढ़ने से लोगों को बाढ़ का डर सताने लगा है। ये 3 तस्वीरें प्रयागराज, वाराणसी और बिहार के बक्सर की है, जहां गंगा नदी का जल स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसके चलते तमाम घाट पानी में डूब चुके हैं और घाटों के आसपास रहने वाले लोग अब सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। हर घंटे बढ़ते जलस्तर को देखते हुए राहत और बचाव एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है और लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की गई है।
3: आज तीसरे दिन भी वाराणसी में गंगा के बढ़ते जल स्तर का क्रम जारी है, लेकिन राहत की खबर यह है कि जहां 7 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ोतरी जारी थी तो अब बढ़ोतरी घटकर 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की रह गई है। वाराणसी में केंद्रीय जल आयोग की डेली फ्लड रिपोर्ट की बुलेटिन के मुताबिक अभी भी 4.5 मीटर चेतावनी बिंदु से तो 5.5 मीटर खतरे के निशान के नीचे गंगा बह रही है। एहतियातन देख सकते हैं कि नावों के संचालन पर, मोटरबोटों के संचालन पर फिलहाल प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसके चलते घाट किनारे नावें बंधी हुई हैं, थमी हुई हैं और लगातार नाविक भी इस पर निगरानी रखे हुए हैं। तो वहीं हम इस समय वाराणसी के 80 घाट पर हैं, इसके बगल में गंगा महल घाट है, फिर रीवा और तुलसी घाट, लेकिन साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो घाटों का आपसी कनेक्शन है, एक घाट से दूसरे घाट तक 84 घाटों का आपसी जो संपर्क का रास्ता है वे टूट गया है।
4: पहाड़ों पर लगातार बारिश का सीधा असर बक्सर में देखने को मिल रहा है। गंगा का रफ्तार काफी ज्यादा तेज हो चुका है, ऐसे में गंगा बक्सर में अब धीरे धीरे बाढ़ का सफर अख्तियार करती जा रही है। मैं सीधे तौर पर गंगा को दिखाने का प्रयास करूंगा। देखिए वो सीढ़ियां हैं, कभी जहां पर लोग नीचे तक नहाने जाते थे, लेकिन गंगा का जो रफ्तार है वो तेजी से बढ़ा हुआ है।
1: यूपी के चित्रकूट में तो मंदाकिनी नदी का जल स्तर खतरे के निशान को पार करने के बाद तमाम घाट और घाट के आसपास की दुकानें पानी में डूब चुकी हैं। हालात को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है और राम घाट जाने वाले रास्ते पर बैरिकेडिंग लगाकर लोगों को घाट किनारे जाने से रोक दिया गया है। साथ ही अनाउंसमेंट कर लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से दूर रहने की अपील की जा रही है।
5: नीचे पानी में उतरने का प्रयास ना करें।
6: अब
5: अभी तो स्टेबल है, अगर मध्य प्रदेश के कैचमेंट में बारिश होती

0: होती है तो फिर संभावना है बढ़ने की, लेकिन अभी लगभग एक घंटे से गेज स्थिर बनी हुई है, जो 70 सेंटीमीटर ऊपर चल रही थी उतनी ही चल रही है।
1: उधर देश के पूर्वी राज्य बंगाल में भी लगातार भारी बारिश के कारण कुछ जिलों में इस वक्त लोग बाढ़ जैसे हालात का सामना कर रहे हैं। पुरुलिया, बांकुड़ा और आसनसोल में भारी बारिश से कई निचले रिहायशी इलाके पानी में डूब चुके हैं, जहां से लोगों के रेस्क्यू के लिए राहत टीमों को लगाया गया है, जो बोट के जरिए लोगों के रेस्क्यू में लगी है और राहत सामग्री भी पहुँचा रही है।
2: हम लोग सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अब रिस्क ना ले आप लोग, सिविल डिफेंस की टीम आया हुआ है और आप लोग घर से निकल, आप लोग को हम लोग लेने के लिए आ रहे हैं, साथ में निकले क्योंकि ये रिस्की हो जाएगा, पानी बहुत बढ़ते जा रहा है।
1: मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। चंबा से विशाल आनंद, देहरादून से अंकित शर्मा, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, वाराणसी से रोशन जायसवाल, बक्सर से पुष्पेंद्र पांडे और आसनसोल से अनिल गिरी, गुड न्यूज टुडे।
3: आइए बात करते हैं नोएडा पुलिस की एक ऐसी पहल की जो प्रशंसा के लायक है। जी हाँ, इस साल 9 जून को लॉन्च किए गए ऑपरेशन अपराजय के तहत स्पेशल बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मंत्र लगातार दिया जा रहा है ताकि वो जिंदगी में हुनरमंद बन सके। जी हाँ, जिन बच्चों को बातचीत, किसी चीज को समझने और सीखने या फिर लिखने में तकलीफ होती है, उन्हें ऑपरेशन अपराजय के तहत हैंडमेड ज्वेलरी यानी हाथों से बनाए जाने वाले आभूषणों को तैयार करने की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि आगे चलकर वो स्वावलंबी बन सकें।

0: आम बच्चों की तरह ये बच्चे भी सम्मान से जीने का हुनर सीख रहे हैं। उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने का कौशल सिखाया जा रहा है ताकि ये आत्मनिर्भर हो सके। दूसरे बच्चों की तुलना में इन बच्चों के सोचने, समझने, संवाद करने और दूसरों से मेलजोल बढ़ाने का तरीका कुछ अलग है। कम उम्र से ही इन्हें अपने अस्तित्व को समझने की जद्दोजहद के बीच संतुलन बनाने की कला सिखाई जा रही है। ये स्पेशल बच्चे अपने बुनियादी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर ना रहें, इसके लिए उत्तर प्रदेश के नोएडा की पुलिस ने इन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अनोखी पहल शुरू की है। जिन बच्चों को बातचीत, किसी चीज को समझने और सीखने या लिखने में तकलीफ होती है, उन्हें ऑपरेशन अपराजय के तहत हैंडमेड ज्वेलरी यानी हाथों से बनाए जाने वाले आभूषणों को बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। ऑटिज्म, ADHD, सेरेब्रल प्लेसी या डाउन सिंड्रोम से प्रभावित इन बच्चों को स्वावलंबी बनाने के लिए नोएडा पुलिस ने इंडस्ट्री से हाथ मिलाया है ताकि बच्चों को हुनरमंद बनाने के अलावा आगे चलकर रोजगार के अच्छे अवसर भी मिल सके।
1: ये बच्चे ऑटिस्टिक हैं, इनके लिए सब कुछ इतना आसान नहीं होता, समाज से इन्हें बराबर जोड़े रखना भी आसान नहीं होता, लेकिन इसमें अब कई लोग आगे आ रहे हैं। आज इन बच्चों को लेकर एक नई शुरुआत हुई है, आप तमाम सारी चीज़ें देख रहे हैं। इन चीज़ों के ज़रिए बच्चे क्या कुछ नया बना सकते हैं, क्या कुछ नया सीख सकते हैं, उसकी एक कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तरह तरह की चीज़ें, चाहे वो ब्रेसलेट हो या दूसरी चीज़ें हो, वो इन बच्चों को आज यहाँ पर बनाना सिखाया जा रहा है। हैंडीक्राफ्ट से इनको जोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि ये बच्चे जब थोड़ा बड़े हों तो समाज में अलग थलग महसूस ना करें या खुद अपने लिए कोई काम कर सके, कोई काम चुन सके।
0: आमतौर पर आर्टिफिशियल ज्वेलरी पीतल, तांबा, जमक, एल्यूमिनियम या मिले जुली धातुओं से बनाई जाती है, लेकिन ये बच्चे कांच, लकड़ी या प्लास्टिक के रंग बिरंगे मोतियों को नायलॉन, सूती और मोम वाले धागे में पिरोकर आभूषण बनाना सीख रहे हैं। इस तरह इन बेहद खास बच्चों को कुछ अलग सीखने के साथ साथ अपनी प्रतिभा दिखाने का भी मौका मिल रहा है।
1: क्या इन सब चीजों से ये रास्ता खुल सकता है कि बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो पाए?
2: बिल्कुल हो सकते हैं। इसमें ऐसा भी नहीं है कि अगर ऑटिज्म का बच्चा ये फाइनेंशियली किसी और के ऊपर डिपेंड रहे हैं। जैसे हम बच्चों को अपना स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम सिखा रहे हैं, आज जैसे बच्चे हाथ का काम सीखेंगे, ज्वेलरी मेकिंग सीखेंगे, आपके सामने इस बच्चे ने अभी ब्रेसलेट बना दिया है, तो क्यों ना हम इसी बच्चे को इसी लाइन में ट्रेन कर दे, सो देट आने वाले 4 या 5 साल के बाद बच्चा कहीं ना कहीं एक जॉब कर सके, ऐसे ज्वेलरी मेकिंग कर सके, हैंडीक्राफ्ट में कुछ ना कुछ कर सके और खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके।
0: साफ है कि ऑटिज्म और डाउन सिंड्रोम से प्रभावित बच्चों के लिए ये सिर्फ एक ट्रेनिंग नहीं बल्कि आत्मनिर्भर होने की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। ज्वेलरी इंडस्ट्री से जुड़े विशेषज्ञों की देखरेख में इन बच्चों की रचनात्मकता एक खास हुनर में बदल रही है।
3: हम लोग पहले से भी गांव की औरतों को हुनर जो है देते आए हैं और उनको काम जो है सिखाते हैं, तो इसी सोच के साथ हमने ये सोचा कि अगर हम उन औरतों को सिखा सकते हैं तो क्यों ना इन विशेष बच्चों के लिए कुछ किया जाए। और चूंकि ऑपरेशन अपराजय के संज्ञान में आते ही हमारी सोच को बल जो है मिला।
0: नोएडा पुलिस की इस पहल का मकसद इन बच्चों को सिर्फ सहानुभूति देना नहीं बल्कि उन्हें हुनर, सम्मान और आत्मनिर्भरता का अवसर देना है। शुरुआत भले ही 25 से 30 बच्चों से हुई हो, लेकिन जल्दी ही ये मुहिम बड़ी हो जाएगी। संदेश साफ है कि मौका मिले तो खास बच्चे भी अपनी अलग पहचान बना सकते हैं।
4: देखिए, ऑपरेशन अपराजय जो हम लोगों ने लॉन्च किया था स्पेशल नीड्स के बच्चों को, एक उनकी सुविधा के लिए, उनके सारे होल राउंड सपोर्ट के लिए, उनके सेफ एनवायरनमेंट को बूस्ट अप करने के लिए जो एक हम लोगों ने माहौल तैयार किया था, उसमें हमारे पास बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जो इस दिशा में काम कर रही है, साथ में एक प्लेटफॉर्म पर आती जा रही है। आज यहाँ पर आर्या फैशन में हम लोग एकत्र हुए हैं जिसमें इन बच्चों की स्पेशल नीड्स को देखते हुए मोटर कोऑर्डिनेशन, इनकी डेक्सटेरिटी को बढ़ाने के कुछ हम लोग इनकी ट्रेनिंग का उपाय शुरू कर रहे हैं। जो बच्चे ऑफ एज हैं जिनको इस माहौल से जोड़ा जा सकता है ताकि आगे चलकर वो इस स्किल को, इस कौशल को उठाकर अपने जीवन यापन का कोई रास्ता खोज सके, उस दिशा में आर्या फैशन के द्वारा अच्छी पहल की गई है जिसका हम स्वागत करते हैं।
0: भारत में हर 68 में से एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार है। ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों की इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद इसे लेकर देश और समाज में जागरूकता कम है। न्यूरो डेवलपमेंटल समस्या से जूझ रहे बच्चों के साथ साथ उनके परिवारों को जीवन यापन में सामाजिक स्वीकार्यता की कमी भी झेलनी पड़ती है। स्कूलों में समावेशी शिक्षा का अभाव और भविष्य में आजीविका की अनिश्चितता जैसी गंभीर समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में किसी काम को अच्छे से सीखना और कम समय में करने की योग्यता या हुनर इन्हें आगे चलकर आत्मनिर्भर ही बनाएगी। नोएडा से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: ये तो हम सभी जानते हैं कि फिनलैंड दुनिया के सबसे सुरक्षित और विकसित देशों में से एक गिना जाता है। वहाँ की बेहतर सुविधाएं और कंफर्टेबल लाइफस्टाइल दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर लगातार आकर्षित करता है। लेकिन अब ऐसा मामला निकलकर सामने आया जो थोड़ा हैरान करने वाला है, क्योंकि फिनलैंड का एक परिवार अपना देश छोड़कर सीधे मुंबई आकर बस गया।

0: दुनिया का सबसे खुशहाल देश फिनलैंड, जहां हर कोई इसकी शांत और सुरक्षित और साथ ही आरामदायक जगह पर बसने का ख्वाब देखता है। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर द फिनिडियन फैमिली के नाम से मशहूर इस फिनिश परिवार ने अपने देश फिनलैंड की ही उस आरामदायक जिंदगी को छोड़कर मुंबई को अपना लिया है। क्यों है ना चौंकाने वाली खबर।
1: वी आर लीविंग वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड फॉर इंडिया।
0: फिनलैंड के इस दंपति का नाम है टोको और जानिका तूनेनेन, जिनका मानना है कि फिनलैंड में भले ही उनकी जिंदगी बेहद शानदार तरीके से चल रही थी, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे दुनिया का सिर्फ एक पहलू देखकर ही बड़े हों। इसलिए उनकी परवरिश को एक नया स्वरूप देने के लिए ही बच्चों को जिंदगी जीने का एक नया नजरिया और दुनिया का असली अनुभव देने के लिए ही वो अपने कम्फर्ट जोन से बाहर आए और पहुँच गए मुंबई। यकीनन फिनलैंड की शांति और सुरक्षा का माहौल छोड़कर मुंबई आना इस फिनिश फैमिली के लिए उनकी जिंदगी का एक बड़ा फैसला रहा। अपने बच्चों को जिंदगी के दूसरे पहलुओं से परिचित कराने के लिए ही जब जुलाई के आखिरी हफ्ते में ये फिनिश परिवार मुंबई पहुंचा, तो बारिश की फुहारों ने मानो उनको वो आराम महसूस कराया जिसकी उनको तलाश थी। जाहिर है ये परिवार उस फिनलैंड से आया है जिसकी स्टेबिलिटी और कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के कारण ही दुनिया में कई लोग वहाँ बसने का ख्वाब पालते हैं। खुद भारतीय भी फिनलैंड समेत कई और विकसित देशों में जाकर बसने की इच्छा रखते हैं। ऐसे में इस फिनिश परिवार का भारत आकर रहने का बेहद जुदा अंदाज हर किसी को प्रभावित कर रहा है। फिलहाल तो जहां पिछले 9 साल से फिनलैंड लगातार वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में पहले पायदान पर बना हुआ है, तो वहीं इसी शांत धरती से आने वाला ये दंपति लहरों के विपरीत चलकर सपनों के शहर मुंबई में बसने के बाद अपने बच्चों को जिंदगी के दूसरे नजरिए को भी प्रैक्टिकली जीना सिखा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं जान दांव पर लगाकर जान की हिफाजत करने वाली रेस्क्यू टीम की। अगस्त आधा गुजर चुका है, पर पहाड़ से लेकर मैदान तक बादल जमकर बरस रहे हैं, और इसकी वजह से खासतौर पर अगर हम देखें तो उत्तराखंड और हिमाचल में जिंदगी का कड़ा इम्तिहान है। अचानक बारिश से, किसी भी वक्त सैलाब से सामना हो रहा है, और लेकिन दिन हो या रात SDRF की जो टीमें हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैद हैं, जुटी हुई हैं, और नदी नालों के उफान में फंसे लोगों को लगातार बचाया जा रहा है। आज आपको ऋषिकेश, देहरादून और चंबा समेत कई इलाकों में रेस्क्यू टीम का हैरतअंगेज हौसला दिखाएंगे। इन दिनों पहाड़ी इलाकों में क्यों सावधान रहने की आवश्यकता है, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ बात होगी काशी की, जहां पर गंगा का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है, और इसी वजह से घाट की बजाय छत पर गंगा आरती हो रही है। गंगा के घाटों पर सुरक्षा के इंतजाम तमाम आपको दिखाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के साथ, जहां पर मॉनसून की भारी बारिश के बाद नदी नालों में उफान देखने को मिल रहा है। ऊपरी इलाकों में तेज बारिश की वजह से अचानक नदियों में सैलाब आ गया है, और इसी वजह से ऋषिकेश में लोगों की जान पर बनाई है। लेकिन 24/7 मुस्तैद SDRF टीम ने पानी के तेज बहाव में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को बचा लिया। इसी तरह देहरादून में आधा दर्जन छात्रों की जान बचाई गई जो नदी के बीच में टापू पर फंस गए थे। रिपोर्ट देखिए।
1: बादल बंदिश नहीं जानते, कहीं गरजे तो कहीं बरसे, और ऐसे बरसे कि सैलाब आ गया। पहाड़ों पर बारिश की मनमर्जियां ऐसी ही हैं कि अफरा तफरी मची है। कहीं बादल फटने से पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं नदियों में उफान है जो लोगों के लिए बड़ा खतरा है। पर शुक्र है कि इस चुनौती से निपटने के लिए रेस्क्यू टीम दिन रात जुटी हुई है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के ऋषिकेश की हैं, जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से बीन नदी में अचानक जलस्तर बढ़ गया। नदी की तेज धार की चपेट में ये कार आ गई। नदी का ऐसा रौद्र रूप और रात का वक्त, कार में फंसे दो नौजवानों को बचाना लगभग नामुमकिन लग रहा था, लेकिन SDRF के जवानों ने मोर्चा संभाला। अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर उन्होंने इस उफनती नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रस्सी के जरिए कुछ जवान नदी में उतरे और कार के करीब पहुंच गए। दूसरे सिरे पर मौजूद टीम के सदस्यों ने रस्सी को मजबूती से थामे रखा। नदी में पानी का बहाव इतना तेज था कि जरा सी चूक भारी पड़ सकती थी, लेकिन रेस्क्यू टीम ने एक एक करके पहले लड़कों को कार के अंदर से बाहर निकाला और फिर उन्हें थाम कर धीरे धीरे किनारे तक ले आए। जान बची तो लाखों पाए, पर ऐसे मुश्किल समय में अगर SDRF के जवान देवदूत बनकर नहीं आते तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। रेस्क्यू टीम की दिलेरी और उनका कौशल दिखाने वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है, और लोग इनके हौसले की तारीफ कर रहे हैं।
2: ये मामला में जो हमारी टीम है डालवाला में, हमें सूचना मिली लगभग 9:15 के लगभग कि एक मैक्स बीन नदी में पलट गई और जो नीचे चली गई, तो हमारी टीम तुरंत यहाँ पर पहुंची है। और यहाँ पे देखा तो एक व्यक्ति उसमें ऊपर बैठा हुआ दिखाई दिया, तो हमारी टीम रोप लगा के अपने उपकरणों के माध्यम से उस तक पहुंची है नदी में, और उसको रेस्क्यू कर लिया गया और उसको हॉस्पिटल गया। तो उसके बाद पता चला कि एक व्यक्ति अंदर था जो बुरी तरह से फंसा था, उसके लिए टीम द्वारा हमारे बहुत भरसक प्रयास किया गया, और कई प्रयासों के बाद हम उस व्यक्ति का रेस्क्यू कर गए और उसको भी हमें हमारे द्वारा टीम द्वारा हॉस्पिटलाइज किया गया। हमारे सामने हमें दिखा कि जो व्यक्ति अंदर है वो भी चिल्ला रहा था कि मुझे बचाओ, और हमारी टीम उसी हौसले के साथ आगे बढ़ी, और सभी हमारे जो जितने भी हमारे यहाँ पे टीम के मेंबर्स हैं सभी के प्रयास से हमारे रोप के माध्यम से उस तक पहुंच बनाई और उस व्यक्ति को हमारे द्वारा टीम द्वारा रेस्क्यू किया गया।
1: अगस्त आधा गुजर चुका है लेकिन उत्तराखंड में बेहिसाब बारिश का सिलसिला जारी है और उसका असर ये कि ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। आसमान से ली गई गंगा की ये तस्वीरें भले ही भव्य नजर आ रही हों, पर जमीनी सच्चाई ये है कि इस वक्त घाटों तक पानी है और नदी का प्रवाह ऐसा है कि घाटों पर गिनती के लोग हैं। शाम के वक्त जहां गंगा आरती होती है वहां तक गंगा का पानी पहुंच चुका है। हालात देखते हुए एसडीआरएफ की टीमें पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं।
2: नदी का जो जलस्तर है यानी कि चंद्रभागा का भी जलस्तर थोड़ा बढ़ गया है, यहां तक कि खारा सोत का भी स्तर जलस्तर बढ़ चुका है। हमारी टीम अभी वहां पर गई थी तो कुछ लोग वहां पे नदी नालों में चले गए थे तो उनको हमने वहां पे हमारे जो लाउड के माध्यम से चेतावनी दी जा रही है कि आप नदी नालों में न जाएं और उस कारण गंगा का जलस्तर भी बढ़ रहा है और देर रात अभी भी बारिश चल रही है। हमारी टीमें एसडीआरएफ की टीमें पूरी तरह से अलर्ट है और किसी भी प्रकार की कोई हमें सूचना मिली तो हमारी टीम वहां पर रिस्पॉन्स करती है। ये जो अभी पानी बढ़ा है हमारी टीमें वहां पर गई हैं, सभी को जो स्थानीय लोग हैं जिनके कुछ लोग वहां पे आसपास जो घर है तो सभी को हमारे द्वारा बताया गया है कि आप पानी जो जलस्तर है उस पर नजर बनाए रखें और जैसे पानी बढ़ता है तो आप उससे दूर रहें, किसी भी प्रकार की कोई अपना जोखिम न लें।
1: वैसे ऋषिकेश ही नहीं उत्तराखंड के कई इलाकों में तेज बारिश के बाद चुनौतियां बढ़ गई हैं। देहरादून में स्वर्णा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और कई छात्रों की जान जोखिम में आ गई। ट्रैकिंग करने गए यूपीईएस यूनिवर्सिटी के 6 छात्रों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि नदी के पास एक मुसीबत उनका इंतजार कर रही है। जब गए थे सब कुछ ठीक ठाक था पर अचानक नदी में जैसे सैलाब आ गया। सभी छात्र नदी के बीच एक टापू में फंस गए। गनीमत रही कि छात्रों के वहां फंसे होने की खबर तुरंत एसडीआरएफ को मिल गई और टीम ने इस सैलाब का सामना करते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रात के वक्त यह ऑपरेशन आसान नहीं था। रेस्क्यू टीम ने सूझबूझ दिखाई, लोहे के पाइप को पुल की तरह इस्तेमाल किया। किनारे से टापू तक लगे पाइप के जरिए छात्रों को एक एक करके निकाला गया। अब टिहरी गढ़वाल की ये तस्वीरें भी देख लीजिए। कहने को तो ये बरसाती नाला है लेकिन मूसलाधार बारिश की वजह से इसमें उफान आ गया। कुछ लोग जो वहां मौजूद थे उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला और देखते ही देखते वो बेबस हो गए। लेकिन एसडीआरएफ की टीम अलर्ट पर थी। जवानों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया और दरिया के बीच जाकर रस्सियों की मदद से सभी को बाहर निकाल लिया। जो लोग इस सैलाब में फंस गए थे उनमें कुछ सैलानी भी थे जिन्हें पहाड़ों की ऐसी बारिश और सैलाब का जरा भी अंदाजा नहीं था लेकिन सुरक्षित निकलने के बाद उन्होंने राहत की सांस ली।
3: पिताजी का नाम क्या
4: है?
5: धर्म सिंह। उम्र कितनी है आपकी?
3: उम्र
4: 36।
3: 36 साल घूमने
4: नहीं तो
3: ओपन बनाया तुम ठीक हो? आप दोस्त का है वो तीरंगे साइड
4: तो
1: देहरादून में बेहिसाब बारिश से नदी नालों में तेज उफान है। टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास तमसा नदी भी रौद्र रूप में है और हालात ये हैं कि श्रद्धालुओं से नदी के पास न जाने की अपील की जा रही है। बारिश के चलते देहरादून के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। ऐसी तस्वीर उत्तराखंड के कई इलाकों में है और लोगों को नदी नालों से दूर रहने की अपील की जा रही है।
6: इस तरह से कई स्थानों पर बहुत ज्यादा बरसात हुई है और बरसात के कारण निश्चित रूप से कुछ दिक्कतें भी हुई हैं। कई जगह नदियों का पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है। ऋषिकेश के पास में जलस्तर काफ़ी हद तक बढ़ गया है। आज की बात करें तो आज देहरादून के लिए, टिहरी के लिए, पौड़ी और ऊधम सिंह नगर 4 जनपदों के लिए ऑरेंज अलर्ट है। सभी जनपदों को SEOC से निर्देश जारी किए गए हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी संबंधित से अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर ऐसे किसी स्थान पर रह रहे हैं जहाँ पानी के बढ़ने की संभावना है, जलस्तर बढ़ने की संभावना है, बाढ़ आने की संभावना है, ऐसे स्थानों पर जो लोग रह रहे हैं सावधानी के साथ रहें, अलर्ट पे रहें ताकि किसी प्रकार से पानी का स्तर बढ़ने पर उनको सकुशल वहाँ से निकासी संभव हो सके। इसके साथ साथ मैं सभी से यह भी अनुरोध करूँगा कि अपने मोबाइल में सचेत ऐप डाउनलोड कर लें ताकि मौसम के अपडेट लगातार उनको मिलते रहें और जो लोग ट्रेवल करना चाहते हैं अनावश्यक रूप से ट्रेवल करने से बचें।
1: ऐसी बारिश में चुनौतियां दूसरी भी हैं। पौड़ी देर प्रयाग मार्ग पर सौर के करीब पहाड़ी से भारी मलबा आने के कारण यातायात पूरी तरह से ठप नजर आ रहा है। सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई, यात्रियों को देर तक इंतजार करना पड़ा। हालांकि खबर मिलते ही प्रशासन तुरंत एक्टिव हो गया, मशीन से मलबा हटाने का काम शुरू हुआ और काफी मशक्कत के बाद रास्ता दुरुस्त किया गया। पौड़ी गढ़वाल में लगातार बारिश की वजह से भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं। महरगांव में भूस्खलन के बाद 4 लोग मलबे में दब गए। सूचना मिलते ही प्रशासन, SDRF और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और एक महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मौसम का रुख देखते हुए प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है और नदी नालों पर नजर बनाए हुए है। ऋषिकेश से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: आइए बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। उत्तराखंड की तरह ही हाल हिमाचल का देखने को मिल रहा है। कई जिलों में मूसलाधार बारिश की वजह से रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित है, पर मुश्किल बादल फटने के बाद तेज बारिश से है। चंबा में जब ऐसा हुआ तो नदी में सैलाब आ गया। पहाड़ों से आए मलबे की चपेट में आने से लोहे का एक पुल बह गया और लगभग 50 तीर्थयात्रियों की जान मुश्किल में फंस गई, लेकिन रेस्क्यू टीम ने ऑपरेशन चलाकर उनको बचा लिया। इसी तरीके से कुल्लू में भी नदी के उफान ने कुछ सैलानी फंस गए थे, जिन्हें SDRF ने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से सकुशल बाहर निकाला। रिपोर्ट देखिए।
7: एक तरफ सैलाब है, दूसरी ओर जिंदगी चुनौती बड़ी है। ऐसे हालात में कब, कहां और कैसे फंस जाएगा कहना मुश्किल है। बेहिसाब बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में नदी नाले उफान पर हैं और जिंदगी का कड़ा इम्तिहान है। ये तस्वीरें चंबा की हैं, जहां बादल फटने के बाद जैसे सैलाब आ गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि उसके साथ पहाड़ों से मलबा नीचे आने लगा और भारी मलबे की वजह से लोहे का पुल बह गया। पुल नदारद और रास्ता बंद। अब 40 से 50 श्रद्धालुओं के सामने संकट खड़ा था, जो माँ भगवती खुंडी वाली के दर्शन के लिए जा रहे थे। ये लोग ना तो आगे जा सकते थे और न पीछे। श्रद्धालुओं के फंसे होने की खबर जैसे ही रेस्क्यू टीम को मिली वो एक्टिव हो गई, लेकिन उनके साथ स्थानीय लोग भी जुट गए। फिर शुरू हुआ श्रद्धालुओं को इस दरिया से निकालने का ऑपरेशन। बेहद सावधानी से रेस्क्यू टीम के लोग रस्सी के जरिए उस पार पहुंचे और एक एक करके सभी श्रद्धालुओं को दरिया के किनारे पर लाया गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती थी, लेकिन धैर्य और हौसले के साथ इन सभी श्रद्धालुओं को सकुशल निकाल लिया गया। चंबा ही नहीं, कुल्लू में भी भारी बारिश के चलते हालात चुनौतीपूर्ण है। नदी में पानी कब अचानक बढ़ जाएगा इसका अंदाजा नहीं। देखिए कैसे कुल्लू की मणिकर्ण घाटी में पार्वती नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और नदी के बीच चट्टान पर बैठे दिल्ली के सैलानी पानी से घिर गए। बाहर निकलने का रास्ता बंद होने के बाद स्थानीय युवाओं और आपदा मित्रों ने रस्सी के सहारे रेस्क्यू शुरू किया। नदी की बेहद तेज धार में ये काम जोखिम भरा था। हालांकि किनारे खड़े लोगों ने मजबूती से रस्सी थाम रखी थी, फिर भी लहरों का सामना करते हुए इस पार आना आसान नहीं था। पर कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय युवक जान जोखिम में डालकर रस्सी के सहारे नदी के तेज बहाव के बीच पहुंचे और सभी सैलानियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लाहौल स्पीति के दूर दराज इलाकों में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। चोखंग इलाके में पहाड़ियों पर हुई तेज बारिश के बाद गौरी नाले में अचानक पानी का बहाव बढ़ गया और देखते ही देखते नाला उफान पर आ गया। नतीजा ये हुआ कि भारी मात्रा में मलबा और पत्थर सड़क तक पहुंच गए और लिंक रोड का करीब 400 मीटर हिस्सा मलबे से फट गया और आवाजाही रुक गई। हालांकि प्रशासन तेजी से मलबा हटाने में जुटा है। जिस तरह से पहाड़ों पर आफत का पानी बरस रहा है और भूस्खलन हो रहा है, उसने लोगों की जिंदगी को संकट में डाल रखा है, लेकिन सैलानियों के लिए भी सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि पहाड़ों में मौसम और नदियों का मिजाज कभी भी बदल सकता है। ऊपरी इलाकों में बारिश होने पर नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ सकता है और तब नदी या नाले के पास जाना खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए प्रशासन लगातार पर्यटकों से अपील कर रहा है कि जब तक मूसलाधार बारिश हो रही है, नदी नालों से सुरक्षित दूरी पर रहें और जोखिम न उठाएं। चंबा से विशाल आनंद और कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: तो तो देखिए, हिमाचल में अगले चार दिनों तक जबरदस्त बारिश का अनुमान जताया गया है। बिलासपुर, कांगड़ा और मंडी में ऑरेंज अलर्ट है, तो वहीं पर चंबा, कुल्लू, सोलन और शिमला में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। राज्य में 22 अगस्त तक बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान है। आज शिमला में जमकर बदरा बरसे, इसलिए मॉल रोड पर रंग बिरंगे छाते नजर आए। सैलानियों ने भी इस बारिश का जमकर लुत्फ उठाया। शिमला में लगातार हो रही बारिश की वजह से तापमान कम हो गया है और घिरे हुए बादलों की वजह से वहां की खूबसूरती में और चार चांद लग गए। चलिए, पहाड़ों के बाद अब मैदान का हाल देख लेते हैं। वाराणसी में इन दिनों गंगा घाट पर भीड़भाड़ पहले जैसी नहीं है, सैलानियों की तादाद भी कम है। वजह है गंगा का बढ़ता हुआ जलस्तर। गंगा खतरे के निशान से अभी भी नीचे है, लेकिन तमाम घाटों पर पानी आ चुका है और इसी वजह से घाट पर सुरक्षा ज्यादा बढ़ा दी गई है। आरती की जगह अब बदल दी गई है। नमो घाट पर बैरिकेडिंग है और छोटी नावों पर रोक लगा दी गई है। देखिए वाराणसी से ये खास रिपोर्ट।
8: गंगा के दोनों किनारों को जोड़ता है यह पुल और यहाँ से देखिए तो बनारस में गंगा की विशाल धारा का अंदाजा होता है, पर सैलानी दूर से नहीं घाट पर जाकर गंगा के निर्मल पानी का अनुभव लेना चाहते हैं, नाव पर घूमना चाहते हैं, पर इन दिनों ये मुमकिन नहीं क्योंकि बारिश की वजह से गंगा का जल स्तर बढ़ गया है। यहाँ तक कि नमो घाट पर बने 75 फीट ऊंचे नमस्ते के स्कल्पचर तक पानी है और सुरक्षा के मद्देनजर घाट की बैरिकेडिंग कर दी गई है। सुरक्षा गार्ड्स लोगों को आगाह कर रहे हैं।
9: धीरे धीरे ही सही, वाराणसी में गंगा ने अपना रौद्र रूप अख्तियार करना शुरू कर दिया है। नमो घाट जो लोगों के बीच में बहुत ही पसंद किया जाने वाला नया घाट है, वहां पर अभी हमारी मौजूदगी है और देख सकते हैं कि हमारे ठीक पीछे 75 फीट का नमस्ते का स्कल्पचर है, वो भी जलमग्न होना शुरू हो गया है। यहाँ तक बाढ़ का पानी पहुंचना शुरू हो गया है। केंद्रीय जल आयोग की डेली फ्लड बुलेटिन की मानते हैं तो गंगा का जल स्तर चेतावनी बिंदु से महज 3.5 मीटर तो खतरे के निशान से 4.5 मीटर ही शेष रह गया है। नमो घाट बनारस का चौपाटी कहा जाता है। यहाँ लगातार जो लोग आते हैं, आस्थावान पर्यटक सैलानी आते हैं, वे काफी संख्या में होते हैं, जिनको हटाने के लिए, जिनको आगाह करने के लिए लगातार गार्ड यहाँ अलर्ट हैं और लोगों को इस बाढ़ के पानी के नजदीक जाने से, घाट की सीढ़ियों के नजदीक जाने से मना कर रहे हैं। तो वहीं एहतियात के तौर पर बनारस में सभी तरह के नौका का संचालन अगले आदेश तक रोक दिया गया है। तो वहीं NDRF, जल पुलिस और गोताखोर की भी ड्यूटी लगाई गई है। तटवर्ती इलाकों के लोगों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। 5 बार गंगा आरती का स्थल भी बदल दिया गया है और अब गंगा आरती छत पर की जा रही है। माना जा रहा है कि गंगा अगर यूं ही बढ़ती रही, जलस्तर में बढ़ाव देखा गया, तो आने वाले दिनों में तटवर्ती इलाकों के लोगों की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं।
8: गंगा में पानी के बढ़ते प्रवाह को देखते हुए वाराणसी की चौपाटी कहे जाने वाले नमो घाट पर आने वाले लोगों की संख्या काफी कम हो गई है। स्थानीय दुकानदारों की रोजी रोटी पर तो असर है ही, पर्यटकों और श्रद्धालुओं में भी निराशा है।
10: इस समय बहुत नुकसान हो रहा है और धंधा बहुत खराब चल रहा है। बाढ़ की वजह से भीड़ नहीं आ रही है, यात्री लोग आ नहीं रहे हैं, बहुत दिक्कतें हम लोग को, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
11: आमदनी कितनी कम हो गई है?
10: बहुत ज्यादा कम हो गई,
11: खर्चा उतना ही। तो अभी कब तक इसी तरह लगा रहेगा?
10: 2 महीना लग जाएगा लगभग।
12: अभी कुछ भी नहीं देख पा रहे, बोट चल नहीं रही है, तो इससे जो हमारा यहाँ आने का इच्छा था वो सब खत्म सा हो गया,
11: अधूरा ही रह
12: गया। हाँ, अधूरा रह गया सर।
11: और घाटों का आपसी कनेक्शन भी कटा हुआ?
12: हाँ, कटा हुआ। हाँ, एक दूसरे घाट से जा नहीं सकते।
11: इससे थोड़ी निराशा है?
12: निराशा तो है ही, अभी इतनी दूर से आए हैं इसी काम के लिए, सिर्फ बाबा के दर्शन हो पाएंगे हमें।
13: चारों तरफ घूम भी नहीं पा रहे हैं बारिश की वजह से, पानी पानी है।
14: भदोही के रहने वाले हैं, यहाँ घूमने आए थे और यहाँ पे फिलहाल बोटिंग के लिए आए थे और बोटिंग बंद हो गई है, तो काफी डिसअपॉइंटेड हो गए हम लोग। अब ये सब भी नहीं चल रहा और बाकी अगर वैसे होता ये नाव में भी घूम लेते, वो भी बंद हो गया है पानी बढ़ने की वजह से।
11: अभी नमो घाट पे क्या कंडीशन है, पानी यहाँ भी भर गया है?
14: अब पानी है तो बस देख के घर जाना पड़ेगा वापस ऐसे ही बिना घूमे टहले।
15: घाटों पे थोड़ा रश भी है और लेकिन पानी का स्तर बढ़ा हुआ है, वो उस वजह से हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे। पानी में पीछे से भी पानी थोड़ा वो आ रहा है, मिट्टी वाला आ रहा है, तो बोटिंग वगैरह हो नहीं रही, तो जो हम बोटिंग में जाना चाहते थे वो नहीं जा पा रहे।
11: थोड़ी सी निराशा
15: तो रहती है। अभी इतनी दूर से आए हैं तो रहेगा, बार बार आना होता नहीं है। और भगवान बाबा जी की कृपा रही तो हम अगले सावन फिर आएंगे।
16: पानी का स्तर काफी बड़ा हुआ है जिसके कारण बोटिंग वगैरह बंद की हुई है और बहुत सारे घाट आपस में से जुड़े हुए नहीं है।
8: वाराणसी में गंगा का जल स्तर अभी खतरे के निशान से 4.5 मीटर नीचे है, पर प्रति घंटे 4 सेंटीमीटर का बढ़ाव दर्ज किया जा रहा है। माना जा रहा है कि गंगा का जल स्तर यूं ही बढ़ता रहा तो जल्दी ही नमो घाट पूरी तरह से पानी में समा जाएगा, इसलिए एहतियात के तौर पर जगह जगह गंगा घाटों पर NDRF और जल पुलिस की तैनाती कर दी गई है।
17: आप लोग किनारों पर ही स्नान करें, किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें।
8: ऐसा नहीं कि गंगा के घाट पर पूजा पाठ और दूसरे धार्मिक क्रियाकल्प बंद है, सब कुछ पहले जैसा ही है, पर गंगा आगे बढ़ती जा रही है और घाट पर आरती के लिए बनाए गए प्लेटफॉर्म पीछे जा रहे हैं। रस्सियों का जो घेरा है उसके आगे नहाने की इजाजत नहीं। परेशानी पुरोहित और यजमान दोनों को है, पर बारिश के दिनों में ये तस्वीर नई नहीं, छोटे नावों और मोटर बोट के चलने पर रोक है।
9: एहतियातन देख सकते हैं कि नावों के संचालन पर, मोटर बोटों के संचालन पर फिलहाल प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसके चलते घाट किनारे नावें बंधी हुई हैं, थमी हुई हैं और लगातार नाविक भी इस पर निगरानी रखे हुए हैं। तो वहीं हम इस समय वाराणसी के 80 घाट पर हैं, इसके बगल में गंगा महल घाट है, फिर रीवा और तुलसी घाट, लेकिन साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो घाटों का आपसी कनेक्शन है, एक घाट से दूसरे घाट तक 84 घाटों का आपसी जो संपर्क का रास्ता है वे टूट गया है और लगातार बढ़ाव जारी रहने से जो तीर्थयात्री आ रहे हैं, जो यहाँ घूमने लोग आ रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं, आस्थावान आ रहे हैं, उनको भी काफ़ी निराशा हाथ लग रही है क्योंकि नौका संचालन पर रोक लगी हुई है और माना जा रहा है कि अगर गंगा के जलस्तर में यूं ही बढ़ोतरी जारी रही तो दिक्कत और बढ़ेगी। फिलहाल तटवर्ती इलाकों के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, या यहाँ रोजी रोटी चलाने वाले हों या गंगा आरती करने वाले आस्थावान हों, लगातार अपने साजो सामान को ऊपर की ओर शिफ्ट कर रहे हैं और आज 5वीं बार दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती भी पीछे शिफ्ट होगी। माना जा रहा है कि ये आरती आज छठ पर होगी, तो लगातार गंगा के जो बढ़ते जलस्तर से लोगों की दुश्वारियां बढ़ती चली जा रही हैं और माना जा रहा है कि अगर यूं ही गंगा का जलस्तर बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में मुश्किलें और भी बढ़ेंगी।
8: वाराणसी में गंगा घाट पर जो रौनक होती है वो बारिश के इन दिनों में थोड़ी कम है। गंगा में पानी जब तक बढ़ रहा है और घाट सुरक्षित नहीं, तब तक हालात ऐसे ही रहने वाले हैं। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: खास कार्यक्रम में इतना ही, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: कन का महीना भगवान शिव की भक्ति, हरियाली और उत्सवों का पवित्र और प्रिय महीना माना जाता है, और इस महीने में विशेषकर कावड़ यात्रा की भव्य छटा देखने को मिलती है। इस बार भी बिहार के मुंगेर में कावड़ मार्ग पर कई भव्य रंग देखने को मिल रहे हैं।

0: सावन के महीने में कावड़ पथ की रौनक देखते ही बनती है। बिहार के मुंगेर में हर दिन असरगंज कच्ची कावड़िया पथ पर आस्था और उत्साह का संगम दिखता है। बम बम भोले और हर हर महादेव का जय घोष करते हुए बड़ी संख्या में शिव भक्त अनोखी छटा बिखेरते हुए बैद्यनाथ धाम की ओर बढ़ते दिखते हैं। ये दृश्य हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब इस तस्वीर को ही देखिए, इसमें भक्त अपने आराध्य को कंधे पर विराजमान कर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। भोलेनाथ अपने भक्तों के भाव देखते हैं, उनके प्रति अपने अगाध आस्था को प्रदर्शित करने के लिए भक्त बाबा को चश्मा मुकुट सबसे पूरी तरह सजाकर दिव्य रूप में अपने साथ ले जा रहे हैं। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से आया कांवड़ियों का ये दल सुल्तानगंज से जल भरने के बाद झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर जल अर्पित करने बढ़ता चला जा रहा है।
1: हम लोग अयोध्या से चलकर यहाँ सुल्तानगंज आए और बाबा भोलेनाथ के दरबार में जा रहे हैं। बाबा का ये जो रूप है बहुत ही निराला हम लोगों को लगा, इसीलिए बाबा को इस गेटअप में हम लोगों ने तैयार किया है। चश्मा लगा के हम लोग ले चल रहे हैं, खुद चश्मा लगाते हैं और बाबा को भी चश्मा लगा के लेके चल रहे हैं।
0: आस्था की इसी यात्रा में कोई कंधे पे कांवड़ उठा रहा है तो कोई अपने बच्चों को भंगी में लेकर बाबा के दरबार की ओर बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल निवासी शिव भक्त अपने 7 महीने के बेटे को भंगी में बैठाकर बाबा की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, तो प्रयागराज निवासी शिव भक्त अपनी 2.5 साल की बिटिया को गमछे से बनी भंगी में लेकर जा रहे हैं। सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर लगभग 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके भक्त देवघर पहुंचते हैं और भगवान भोले शंकर को जल अर्पित करते हैं। इस दौरान कांवड़ मार्ग में शिव भक्तों के लिए की गई व्यवस्थाएं उनकी राह आसान कर देती है।
2: बहुत अच्छा है, लाइट है और निःशुल्क जल सेवा भी है, शौचालय है, सुलभ शौचालय, मेडिसिन वगैरह भी मिल रही है और क्या ही चाहिए, ये तो काफी है।
0: बैद्यनाथ धाम की महिमा अपरंपार मानी जाती है। यहाँ सावन के पूरे महीने कांवड़ियों की भीड़ रहती है, विशेषकर सोमवार को बाबा पर जल अर्पित करने के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ता है।
3: जो 12 ज्योतिर्लिंग में द्वादश ज्योतिर्लिंग में एक हमारे ऐसे ही 5वां है और यहाँ पे शिव और शक्ति, शक्ति के ऊपर साथ में विराजमान है शिव। एक ऐसा शिव है जहाँ पे सिंदूर भी चढ़ता है, चूंकि शक्ति होने के कारण ये परंपरा बनी हुई है। और यहाँ पे एक चीज खास ये है, और जगह में सब आप त्रिशूल देखेंगे लेकिन यहाँ बाबा वैद्यनाथ के ऊपर पंचूर देखेंगे, इनका एक अलग ही महत्व रहा है और हम लोग अपने जीवन में उसको बहुत हमें देखने को मिला है कि इनकी कृपा सब पर बनी रहती है और आगे भी बनी रहे हर हर महादेव।
0: बैद्यनाथ धाम में सावन ही नहीं बल्कि भादों के महीने में भी कांवड़ियों और शिव भक्तों का तांता लगा रहता है। सावन जहां मुख्य कांवड़ मेला मास माना जाता है, वहीं भादो मास में भी श्रद्धालु और डाक कांवड़िए बाबा का जलाभिषेक करने के लिए पहुंचते हैं। मुंगेर से गोविंद कुमार और देवघर से शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
5: मंगल का कौन सा योग वैवाहिक जीवन में अलगाव ले आता है? मंगल का कौन सा योग साहस और आत्मविश्वास को कमजोर कर देता है? मंगल का कौन सा योग जीवन में प्रचंड दुर्घटना का कारण बनता है? कौन से हैं मंगल के अशुभ योग और क्या है उनका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: झूलनोत्सव के बीच राम मंदिर का भव्य श्रृंगार, सुनहरी रोशनी से नहाया मंदिर का शिखर, सावन के पवित्र महीने में देखा अनोखा नजारा। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की तैयारियां तेज, मुंबई के प्रसिद्ध काला चौकी महागणपति का हुआ आगमन, सिंह पर सवार नजर आए 22 फीट ऊंचे बप्पा। पवित्र सावन महीने में धूमधाम से जा रही है कांवड़ यात्रा, जौनपुर में शिव भक्तों पर की गई फूलों की बारिश, प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से बरसाए फूल। पहाड़ से मैदान तक मौसम की मेहरबानी बरकरार, शिमला में 21 अगस्त तक बारिश का अलर्ट, चंडीगढ़ में जमकर बरसे पतरा। महिला हॉकी वर्ल्ड कप में भारत का दबदबा, साउथ अफ्रीका को 6-1 से हराकर पूल डी में हासिल किया टॉप स्थान, अब इंग्लैंड से होगा सामना।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली।
2: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी किसी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं, यहां हर किसी के हाथ में एक कैमरा है, हर घटना हर तस्वीर कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है, कोई पुरानी घटना बताकर परोस दी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। लेकिन फैक्ट चेक के जरिए हम ऐसी खबरों की पड़ताल करते हैं, आप तक सही और सच्ची खबर लेके आते हैं। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे जिसमें सबसे पहले बात होगी उस वायरल वीडियो की जिसको शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि नेपाल में अवैध घुसपैठियों की बस्ती को आग के हवाले कर दिया गया। सच्चाई क्या आ गया जानिए। इसके अलावा हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी जिसको शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि हरियाणा के चरखी दादरी में 6 अगस्त को हुई गोलीबारी का असली वीडियो है। सच्चाई आगे बताएंगे, शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली।
2: सोशल मीडिया पर भीषण आग का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आग इतनी तेज है कि आसमान में धुएं की लपटें नजर आ रही है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि ये नेपाल के एक ऐसे गांव का वीडियो है जहां अवैध घुसपैठिए रहते हैं। दावा है कि इस पूरे गांव को आग के हवाले कर दिया गया है जिसके बाद पूरा इलाका जलकर खाक हो गया। क्या है सच्चाई, देखिए हमारी रिपोर्ट।
3: हाल ही में नेपाल में धार्मिक प्रतीकों और लाउडस्पीकर विवाद को लेकर दो समुदायों के बीच हिंसक झड़पें हुई थीं। हालात इतने बिगड़ गए थे कि इस पर काबू पाने के लिए कई जिलों में कर्फ्यू लगाया गया और सेना को भी तैनात किया गया। अब इसी से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर भीषण आग का ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। आग इतनी तेज है कि आसमान में धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। कुछ लोग इस वीडियो के जरिए ये दावा कर रहे हैं कि ये नेपाल के एक ऐसे गाँव का वीडियो है जहां अवैध घुसपैठिए रहते थे। दावा है कि इस पूरे गांव को आग के हवाले कर दिया गया जिसके बाद पूरा इलाका जलकर राख हो गया। वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, गजवाए नेपाल की मानसिकता पाले नेपाल में घुसे अवैध घुसपैठियों के पूरे गांव को जलाकर राख कर दिया, न सबूत बचे न गवाह। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
2: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आग इतनी तेज है कि आसमान में धुएं की लपटें नजर आ रही हैं। कुछ लोग इस वीडियो के जरिए दावा कर रहे हैं कि नेपाल के एक ऐसे गांव का वीडियो है जहां पर अवैध घुसपैठिए रहते हैं और दावा यह है कि इस पूरे गांव को आग के हवाले कर दिया गया जिसके बाद पूरा इलाका जलकर खाक हो गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ वीडियो को शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने इसकी पड़ताल शुरू की और दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और इसे सुना भी। इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड से आ रही आवाजों पर गया और जब हमने इसे गौर से सुना तो इशारा मिला कि ये नेपाली नेपाल में बोली जाने वाली भाषा नहीं है, ये कहीं और की भाषा हो सकती है। इसके अलावा वीडियो के फ्रेम दर फ्रेम देखने से ऐसा लग रहा है कि किसी पहाड़ के जंगल में ये आग लगी हुई है और फायर ब्रिगेड की एक टीम इसे बुझाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वीडियो में कहीं पर भी घर देखने को नहीं मिल रहे। क्योंकि अगर किसी इंसानी बस्ती को आग के हवाले किया जाता तो उसके निशान यहां पर जरूर नजर आते, लेकिन वीडियो में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। साथ ही सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिलती है जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, क्योंकि अगर वीडियो का संबंध नेपाल से होता तो कहीं ना कहीं इसके बारे में जानकारी जरूर होती। लिहाजा हमने वायरल हो रहे दावे को सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही था कि अगर दावा सही है तो फिर इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। हमारा दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए लोगों को गुमराह करने की कोशिश तो नहीं हो रही है। सच और झूठ क्या है इस रिपोर्ट में जानिए।

0: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। पड़ताल के लिए सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये तुर्की के मीडिया संस्थान के यूट्यूब चैनल पर मिला। यहाँ इसे 29 जुलाई को अपलोड किया गया था। कैप्शन के मुताबिक ये तुर्की के मुगला प्रदेश में लगी जंगल की आग का वीडियो है। सर्च के दौरान तुर्की की एक और न्यूज आउटलेट की 29 जुलाई की वीडियो रिपोर्ट में भी वायरल वीडियो वाला हिस्सा देखने को मिला। रिपोर्ट के मुताबिक मुगला के सेडी केमर जिले में एक खेती बाड़ी की जगह पर लगी आग तेज हवाओं के चलते जंगल तक फैल गई और देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया। एक रिपोर्ट से ये भी जानकारी सामने आई कि इस आग को बुझाने के अभियान में 5 एयरक्राफ्ट, 18 हेलीकॉप्टर और 93 दमकल की गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। इस अभियान में 800 से ज्यादा जवान शामिल थे। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। वायरल हो रहे वीडियो का नेपाल से कोई लेना देना नहीं है। ये वीडियो तुर्की के मुगला का है, जहां एक जंगल में भयानक आग लग गई थी। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: हरियाणा के चरखी दादरी में 6 अगस्त को दिन दहाड़े सिटी पुलिस थाने के सामने एक स्कॉर्पियो गाड़ी पर करीब 30 राउंड की फायरिंग हुई। इस गोलीबारी में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनमें से एक की मौत हो गई। इस घटना से जोड़ते हुए सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि हरियाणा के चरखी दादरी में 6 अगस्त को ही गोलीबारी का ये असली वीडियो है, लेकिन सच्चाई क्या है इस रिपोर्ट में जानिए।
2: हरियाणा के चरखी दादरी में 6 अगस्त को दिन दहाड़े सिटी पुलिस थाने के सामने एक सनसनीखेज तरीके से एक स्कॉर्पियो गाड़ी पर करीब 30 राउंड की फायरिंग हुई थी। इसी घटना के संदर्भ में अब सोशल मीडिया पर एक क्लिप काफी वायरल हो रही है, जिसमें काली स्कॉर्पियो गाड़ी पर अंधाधुंध गोलियां चल रही हैं। इसे शेयर करने वाले कई सोशल मीडिया यूजर्स दावा कर रहे हैं कि ये चरखी दादरी में हुई गोलीबारी का नजारा है। वायरल वीडियो के पहले हिस्से में गाड़ी पर गोलीबारी और गोली लगने के बाद गाड़ी की हालत दिखाई गई है। वहीं दूसरे हिस्से में खून से लथपथ एक शख्स को गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे हुए देखा जा सकता है। कई लोग गाड़ी को घेरे हुए हैं। वीडियो शेयर करते हुए कई सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया कि ये 6 अगस्त को चरखी दादरी में कोर्ट के पास हुई 30 राउंड की फायरिंग का असली दृश्य है और रोहित गोदारा गैंग से जुड़े नवीन बॉक्सर नाम के एक शख्स ने इसकी जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि हरियाणा के चरखी दादरी का वीडियो है और 6 अगस्त को हुई गोलीबारी का ये असली वीडियो है। वायरल वीडियो के पहले हिस्से में गाड़ी और गोलीबारी और गोली लगने के बाद गाड़ी की हालत दिखाई गई है। वहीं दूसरे हिस्से की बात करें तो खून से लथपथ एक शख्स को गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे हुए देखा जा सकता है। कई लोग गाड़ी को घेरे हुए हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की जांच शुरू की। तो सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को हमने गौर से देखा। इस दौरान हमें यह इशारा मिला कि ये अलग अलग क्लिप्स को एक साथ जोड़कर वीडियो बनाया गया हो सकता है। इसके अलावा वायरल हो रहे वीडियो के पहले हिस्से में जिस गाड़ी पर फायरिंग हो रही है उसे जब हमने फ्रेम दर फ्रेम गौर से देखा तो कुछ ऐसी गलतियां देखने को मिली जिससे हमें वायरल वीडियो के असली होने पर शक हुआ। उदाहरण के तौर पर वीडियो में नजर आ रहे काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी का नंबर प्लेट पर जो नंबर दिख रहा है वो अजीब तरीके से लिखा हुआ है। अक्सर एआई वीडियो में ये गलतियां देखने को मिलती हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि जिस गाड़ी पर 6 अगस्त को हरियाणा के चरखी दादरी में फायरिंग हुई थी वो काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी ही थी। जब इस गाड़ी को थाने लाया गया था तब उसका वीडियो भी सामने आया था। आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी उसे देख सकते हैं। वायरल हो रहे वीडियो में नजर आ रही गाड़ी और ओरिजिनल वीडियो में दिख रही गाड़ी को अगर आप देखेंगे तो आपको फर्क साफ नजर आ जाएगा। वायरल वीडियो में फायरिंग के बाद गाड़ी की हालत बिल्कुल खराब हो गई थी, जबकि थाने में जो गाड़ी खड़ी है उसमें ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। लिहाजा हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल ये कि अगर दावा सही है, सच्चा है, तो फिर वायरल हो रहा वीडियो के बारे में कोई प्रमाणिक जानकारी हमें क्यों नहीं मिली। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर एडिटेड वीडियो के जरिए लोगों के बीच भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा, सच और झूठ क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए।
2: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। हमें असली वीडियो एक इंस्टाग्राम यूजर के हैंडल पर मिला। 12 मई को पोस्ट किए गए इस वीडियो से साफ हो जाता है कि 6 अगस्त को हुई गोलीबारी से इसका कोई संबंध नहीं है। वायरल वीडियो के कैप्शन में यूजर ने वीडियो एडिटिंग का क्रेडिट किसी दूसरे यूजर को दिया है। इस पोस्ट के रिप्लाई में कई यूजर्स ने इस वीडियो को AI जनरेटेड बताया, जिस पर कोई असहमति जताए बिना यूजर ने सिर्फ हंसी का इमोजी बनाया है। इसके बाद हमने गूगल AI से बनी तस्वीरों और वीडियो को डिटेक्ट करने वाले टूल सिंथाइडी से इस वीडियो को टेस्ट किया। इस टूल ने भी बताया कि ये वीडियो गूगल AI की मदद से बनाया गया है। साथ ही हमने इसे हाइव मॉडरेशन टूल से भी टेस्ट किया। इस टूल ने भी इस वीडियो के AI से बने होने की 96.2% संभावना बताई। हालांकि वायरल वीडियो के दूसरे हिस्से में जहां खून से लथपथ एक शख्स को गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे हुए देखा जा सकता है, वो हिस्सा चरखी दादरी की असली घटना का है। इस गोलीबारी में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनमें से एक की मौत हो गई थी। इस वारदात के बाद SP लोकेश कुमार ने 6 पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड किया था। इस तरह हमारी पड़ताल से ये साफ हो गया कि दो हिस्से को जोड़कर ये वीडियो तैयार किया गया है। स्कॉर्पियो में गोलीबारी वाला वीडियो का पहला हिस्सा AI से बनाया गया है, चरखी दादरी में हुई गैंगवार से इसका कोई लेना देना नहीं है, जबकि दूसरे हिस्से में जहां खून से लथपथ एक शख्स को गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे हुए देखा जा सकता है, वो हिस्सा चरखी दादरी की असली घटना का है। रिद्धेश दत्ता के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे वायरल वर्ल्ड में क्या कुछ हो रहा है, लिए चलेंगे आपको वायरल दुनिया में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: और वक्त हो चला फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है।
5: सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है, जिसमें एक छोटी बहन अपने भाई की जिस तरह देखभाल करती नजर आ रही है, उसे देखकर लोग भावुक हो रहे हैं। वायरल वीडियो में भाई बहन के बीच का

0: कभी वो भाई की स्कूल ड्रेस ठीक करती है तो कभी उसे संभालती हुई दिखाई देती है। वीडियो का सबसे प्यारा हिस्सा वो है जब बहन अपने छोटे भाई को गोद में लेकर घूमती नजर आती है। उसकी उम्र भले ही कम हो लेकिन भाई के लिए उसके व्यवहार में जिम्मेदारी और अपनापन साफ दिखाई देता है। भाई की ड्रेस ठीक करने से लेकर उसे संभालने तक बहन के हर छोटे प्रयास में एक अलग ही प्यार नजर आता है। ऐसा लगता है जैसे वो अपने छोटे भाई की सिर्फ बहन नहीं बल्कि उसकी छोटी से केयर टेकर भी हो। यही मासूम पल वीडियो को खास बना रहे हैं। इसमें ना कोई बड़ी बात है और ना ही कोई बनावटी भावनाएं, लेकिन भाई बहन के बीच दिख रहा अपनापन सीधे लोगों के दिल तक पहुँच रहा है। सोशल मीडिया पर ये दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। इंस्टा पर शेयर इस वीडियो के साथ एक लाइन लिखी गई है जिसका मतलब है कि जिंदगी में आप सच में बहुत अमीर हैं। अगर आप अपने बच्चे को उसके जन्मदिन पर वो चीज दे सकते हैं जिसकी उसे सबसे ज्यादा इच्छा थी। वीडियो की शुरुआत बेसबॉल प्रैक्टिस से होती है। बच्चा मैदान में बल्लेबाजी की तैयारी करता दिखाई देता है। उसके माता पिता उसे खास शॉट लगाने के लिए कहते हैं। बच्चा पूरी मेहनत के साथ बल्ला घुमाता है और स्लो मोशन में शॉट लगाने की कोशिश करता है। इसके बाद कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट आता है। जैसे ही बच्चा बल्ला पीछे करता है उसके पिता किसी बहाने से उसके हाथ से बल्ला ले लेते हैं। बच्चे को उस वक्त शायद समझ ही नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसे जो मिलता है वो उसके लिए बेहद खास होता है। पिता पुराने बल्ले की जगह उसके हाथ में एक नया बल्ला थमा देते हैं। उस समय बच्चे के हाथ पीछे की ओर होते हैं। जैसे ही वो अपने हाथ आगे लाता है और नए बल्ले को देखता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दरअसल ये वही बल्ला था जिसे वो अपने जन्मदिन पर पाना चाहता था। बच्चे के चेहरे पर खुशी और आंखों में आए आंसू देखकर साफ समझ आता है कि उसके लिए ये सिर्फ एक नया बैट नहीं था, ये उसके माता पिता की तरफ से दिया गया ऐसा तोहफा था जिसमें उसकी मेहनत, प्यार और बच्चे की पसंद को समझने की भावना छिपी थी। सोशल मीडिया पर ये वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है। वीडियो में दादा पोती के रिश्ते की खूबसूरत झलक देखने को मिल रही है। दादाजी का स्नेह और पोती के प्रति अपनापन देखकर यूजर्स भावुक हो रहे हैं। लोग इस प्यारे पल को खूब पसंद और शेयर कर रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि दादाजी अपनी पोती के स्कूल जाने की तैयारी में उसका साथ देते दिखाई देते हैं। वो बड़े प्यार से उससे पूछते हैं कि क्या वो उसके स्कूल बैग में किताबें रखने में मदद करेंगे।
1: मैं हेल्प कर दूं तो बता दूं सर, बैग में मैं डाल देता हूं। अच्छा हो रहा है अभी।
0: दादाजी का ये छोटा सा सवाल सुनने में भले ही सामान्य लगे लेकिन इसमें पोती के लिए उनका अपनापन और चिंता साफ दिखाई देती है। बच्चों के लिए स्कूल जाने की तैयारी रोजमर्रा की बात होती है लेकिन दादाजी के लिए पोती के साथ बिताया यही छोटा सा पल बेहद खास नजर आता है। वीडियो में दादाजी जिस सहज अंदाज में उसकी मदद करने की बात करते हैं वो लोगों को काफी भावुक कर रहा है।
1: मैं हेल्प कर दूं तो बता दूं सर, बैग में मैं डाल देता हूं। लॉक।
0: सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस वीडियो को खूब देखा जा रहा है। वीडियो में बच्चे को आर्मी की यूनिफॉर्म पहनाई जा रही है। जैसे ही वो पूरी तरह सैनिक की वर्दी में तैयार होती है उसके चेहरे की खुशी देखते ही बनती है। वर्दी पहनते ही बच्चे का अंदाज भी पूरी तरह बदल जाता है। वो खुद को आर्मी की ड्रेस में देखकर काफी उत्साहित नजर आती है। उसके चेहरे पर मासूमियत तो है ही, साथ ही ऐसा आत्मविश्वास भी दिखता है जिसे देखकर परिवार वाले भी खुश हो जाते हैं। वीडियो का सबसे दिलचस्प हिस्सा उस समय आता है जब बच्ची वर्दी पहनने के बाद बेहद मासूम अंदाज में कहती है, मुझे टेररिस्ट को मारना है। बच्ची की बात सुनकर घर में मौजूद लोग मुस्कुराने लगते हैं। परिवार वाले मजाकिया अंदाज में उससे पूछते हैं कि आखिर उसके लिए टेररिस्ट कहां से लेकर आए।
2: अब आतंकवादी कहां से लाऊं तेरे लिए मैं? आतंकवादी कहां है यार? बेटा तुम छोड़ दियो, तुम आतंकवादी को कैसे मारोगी?
0: बच्चे के इस मासूम जवाब और उसके एक्सप्रेशन ने सोशल मीडिया यूजर्स का भी दिल जीत लिया। मामा के घर आकर डोरेमोन देखने वाला ये भांजा अब खुद डोरेमोन बन गया है। बच्चे ने अपनी पैंट के जेब को ही डोरेमोन की पॉकेट बना लिया और उसमें घर का सामान छुपा कर बैठ गया। इसके बाद एक एक करके जेब से सामान निकालने लगा जैसे डोरेमोन अपने गैजेट निकाल रहा हो, कभी कोई चीज तो कभी कुछ और। बच्चे का ये अंदाज देखने में बेहद मजेदार है। घर के सामान को अपनी जेब में छुपा कर जिस तरह बच्चा उसे निकाल कर दे रहा है उसकी क्यूटनेस ने लोगों का दिल जीत लिया।

0: पढ़ाई का नाम सुनते ही ज्यादातर बच्चों के चेहरे उतर जाते हैं, और जब बात केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल की हो तो इसे याद करना किसी पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है। लेकिन बेंगलुरु के एक टीचर ने इस मुश्किल काम को बच्चों के लिए खेल बना दिया। वीडियो में साफ दिखता है कि कैसे आकाश ने बोरिंग केमिस्ट्री क्लास को एक एनर्जेटिक पार्टी में बदल दिया। ब्लैक बोर्ड पर पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स लिखे हैं और एक हाथ में स्केल पकड़े आकाश एक एक एलिमेंट की तरफ इशारा करते हुए मस्ती में गा रहे हैं। इस दौरान बच्चों का जोश देखने लायक था। बच्चे सिर्फ बैठे नहीं रहे बल्कि अपने टीचर के साथ सुर से सुर मिलाकर नाचने और गाने लगे। बच्चों का ऐसा उत्साह देखकर खुद टीचर आकाश भी अपने आप को रोक नहीं पाए और उनके साथ झूमने लगे। कश्मीर से खूबसूरत मोमेंट सामने आया है। इस पल को लोग कश्मीरियत भी बोल रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बुजुर्ग महिला जिन्होंने पारंपरिक कश्मीरी हेड रैप पहना हुआ है धीरे धीरे चलकर सीआरपीएफ जवान के पास आती है। उनके हाथों में ताजे फल हैं जो वो मुस्कुराते हुए जवान को भेंट करती है। जवान भी इस निस्वार्थ प्यार को देख कर अभिभूत हो जाता है। वो खुशी खुशी उस तोहफे को स्वीकार करता है और कैमरे की तरफ उन फलों को दिखाते हुए बेहद भावुक शब्दों में महिला का शुक्रिया अदा करता है।
1: भैया हम कश्मीर में खड़ा है, माता जी देख लो, हमें मुहाए के लेके आए हैं, देख लो दिए कितना अच्छा, थैंक यू शुक्रिया, देख लो भैया कितना सम्मान के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद।
0: इस वीडियो की सबसे खास बात यह है कि महिला और जवान के बीच कोई लंबी चौड़ी बातचीत नहीं होती है, लेकिन चंद सेकंड का ये वीडियो कश्मीरियत, इंसानियत और सुरक्षा बलों के प्रति स्थानीय लोगों के सम्मान की एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर पेश करता है। इंडोनेशियाई सेना के एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों को भावुक कर रहा है। वीडियो में सेना की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जवानों के लिए खास समारोह रखा गया था। वहाँ ज्यादातर युवा सैनिकों के साथ उनके माता पिता, पार्टनर या परिवार के लोग मौजूद थे। हर तरफ खुशी और गर्व का माहौल था, लेकिन इसी बीच एक जवान ऐसा भी था जो अकेला खड़ा नजर आया। जहाँ बाकी सैनिक अपने करीबियों के साथ इस खास पल को सेलिब्रेट कर रहे थे, वहीं उस जवान के पास कोई अपना दिखाई नहीं दे रहा था। वो चुपचाप बाकी लोगों से थोड़ा अलग खड़ा था। तभी वहाँ मौजूद एक सीनियर अधिकारी की नज़र उस जवान पर पड़ी। उन्होंने उसकी स्थिति को समझने में देर नहीं लगाई। अधिकारी सीधे उसके पास पहुँचे और उसे अपने पास बुलाकर गर्मजोशी से गले लगा लिया। ये कोई औपचारिक सैन्य सलाम या बधाई नहीं थी, बल्कि बिल्कुल एक पिता की तरह दिया गया अपनापन था। शुरुआत में जवान ने खुद को संभालने की कोशिश की, उसने अपनी भावनाओं को रोक कर रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन शायद उस पल का अकेलापन और अचानक मिला प्यार दोनों ही उसके लिए बहुत ज्यादा थे। कुछ ही सेकंड में उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, वो अधिकारी के कंधे से लगकर रो पड़ा। सोशल मीडिया पर इन दिनों अफ्रीकी देश तंजानिया के एक नौजवान फजल का वीडियो काफी छाया हुआ है। फजल ने एक पंजाबी गाना इतनी खूबसूरती से गाया कि सुनने वाले हैरान रह गए। फजल को पंजाबी भाषा बिल्कुल नहीं आती, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जिस साफ अंदाज और सही उच्चारण के साथ ये गाना गाया है, उसने इंटरनेट पर सभी का दिल जीत लिया है।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज़ टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: नवसारी के समुद्र से इस वक्त एक बड़ी और राहत भरी खबर निकलकर सामने आई है। समुद्र की ऊंची लहरों के बीच डूबती बोट में फंसी 9 जिंदगियों को सुरक्षित बचा लिया गया है। देखिए, दरअसल तोलाई बंदर से वलसाड की तरफ करीब 2.5 नॉटिकल माइल्स दूरी पर कृष्णपुर गांव की जयमाला बोट समुद्र में डूब गई। महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड इस बोट पर उस वक्त कुल 9 मछुआरे सवार थे और बोट के समुद्र में डूबने की खबर मिलते ही जिला प्रशासन ने बिना किसी देरी के रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। एनडीआरएफ की टीम ने बचाव अभियान में पूरी ताकत झोंक दी। उसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए समुद्र की चुनौती बड़ी थी। ऐसे में कोस्ट गार्ड से मदद मांगी गई। इसके बाद समुद्र में फंसी इन 9 जिंदगियों को बचाने के लिए कोस्ट गार्ड ने मोर्चा पूरी तरीके से संभाला। कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर समुद्र के ऊपर पहुंचा और शुरू हुआ जिंदगी बचाने का वो ऑपरेशन जिसमें हर पल बहुत अहम था। समुद्र की लहरों और मुश्किल हालात के बीच कोस्ट गार्ड के जवानों ने शानदार तालमेल और साहस दिखाते हुए सभी 9 मछुआरों का सफल एयरलिफ्ट रेस्क्यू करके दिखाया है और एक एक करके सभी मछुआरों को सुरक्षित समुद्र से बाहर निकाल लिया। और सबसे बड़ी बात इसमें यह रही कि ये जो खबर है, सभी 9 मछुआरे सुरक्षित रहे। हिमाचल प्रदेश के चंबा के भरमौर इलाके में भी 2 अलग अलग रेस्क्यू की घटनाओं को अंजाम दिया गया। एक घटना में 40 से 50 श्रद्धालुओं की उपंती दरिया के बीच जान बचाई गई, तो वहीं पर एक दूसरी घटना में एक युवक ने जान पर खेलकर दूल्हे की जान बचाई।
2: सैलाब का सामना कर रहे हिमाचल प्रदेश के चंबा के रेस्क्यू की ये 2 घटनाएं मिशन जिंदगी का जीता जागता सबूत है। पहली तस्वीर 40 से 50 श्रद्धालुओं की जिंदगी बचाने की है, तो दूसरी तस्वीर एक दूल्हे के रेस्क्यू की है। चंबा का भरमौर इलाका इन दिनों फ्लैश फ्लड का सामना कर रहा है। बलोट गांव के 84 चला में बादल फटने के बाद आए सैलाब की वजह से लोहे का एक पुल बह गया। बहाव इतना तेज था कि आने जाने के लिए बनी सड़क भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। सड़क और पुल के बह जाने से मां भगवती खुंडी वाली के दर्शन के लिए जा रहे करीब 40 से 50 श्रद्धालु बीच रास्ते में ही फंस गए। तस्वीरों में देख सकते हैं कि बहाव इतना तेज है कि इसके चपेट में आने से लोग खुद को बहने से बचा नहीं सकते थे। ऐसे मुश्किल वक्त में गांव वाले किसी देवदूत की तरह वहां पहुंचे। सभी श्रद्धालुओं को रास्ता दिखाते हुए गांव वाले आगे बढ़े और सैलाब के किनारे होते हुए एक ऐसी जगह पहुंचे जहां लोगों ने दरिया के ऊपर लकड़ी का एक अस्थायी पुल बनाकर सभी का सुरक्षित रेस्क्यू किया। लकड़ी के अस्थायी पुल पर चलते हुए सभी श्रद्धालु दरिया के दूसरी ओर पहुंचे, जिससे उनकी जान बच सकी। मंगलवार को ज्येष्ठ मंगलवार के अवसर पर माता के डल झील में पवित्र स्नान करने की भी परंपरा है, जिसके चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना रहती है। हालात को देखते हुए ऐसे में सावधानी की जरूरत है। बड़ग्राम में फ्लैश फ्लड के बीच एक और मिशन जिंदगी को अंजाम दिया गया। हुआ यूं कि वहां फ्लैश फ्लड आने से पनाली नाला अचानक विकराल रूप में बहने लगा, जिससे बारात फंस गई। संकट की इस घड़ी में एक स्थानीय लड़के ने साहस दिखाते हुए दूल्हे की जान बचाई। लड़के ने अपनी जान जोखिम में डालते हुए दूल्हे को अपनी पीठ पर उठाया और नाले को सुरक्षित पार करवाया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चंबा से विशाल आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
3: मंगल का कौन सा योग वैवाहिक जीवन में अलगाव ले आता है? मंगल का कौन सा योग साहस और आत्मविश्वास को कमजोर कर देता है? मंगल का कौन सा योग जीवन में प्रचंड दुर्घटना का कारण है?
0: कम से कम लोगों को खबर।
3: मंगल का कौन सा योग वैवाहिक जीवन में अलगाव ले आता है? मंगल का कौन सा योग साहस और आत्मविश्वास को कमजोर

0: में अलगाव ले आता है। मंगल का कौन सा योग साहस और आत्मविश्वास को कमजोर कर देता है? मंगल का कौन सा योग जीवन में प्रचंड दुर्घटना का कारण?
1: एक से हराकर पूल डी में हासिल किया टॉप स्थान, अब इंग्लैंड से होगा सामना।

0: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं जान दांव पर लगाकर जान की हिफाजत करने वाली रेस्क्यू टीम की। अगस्त आधा गुजर चुका है, पर पहाड़ से लेकर मैदान तक बादल जमकर बरस रहे हैं, और इसकी वजह से खासतौर पर अगर हम देखें तो उत्तराखंड और हिमाचल में जिंदगी का कड़ा इम्तिहान है। अचानक बारिश से, किसी भी वक्त सैलाब से सामना हो रहा है, और लेकिन दिन हो या रात SDRF की जो टीमें हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैद हैं, जुटी हुई हैं, और नदी नालों के उफान में फंसे लोगों को लगातार बचाया जा रहा है। आज आपको ऋषिकेश, देहरादून और चंबा समेत कई इलाकों में रेस्क्यू टीम का हैरतअंगेज हौसला दिखाएंगे। इन दिनों पहाड़ी इलाकों में क्यों सावधान रहने की अब आवश्यकता है, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ बात होगी काशी की, जहां पर गंगा का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है, और इसी वजह से घाट की बजाय छत पर गंगा आरती हो रही है। गंगा के घाटों पर सुरक्षा के इंतजाम तमाम आपको दिखाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के साथ, जहां पर मॉनसून की भारी बारिश के बाद नदी नालों में उफान देखने को मिल रहा है। ऊपरी इलाकों में तेज बारिश की वजह से अचानक नदियों में सैलाब आ गया है, और इसी वजह से ऋषिकेश में लोगों की जान पर बनाई है। लेकिन 24/7 मुस्तैद SDRF टीम ने पानी के तेज बहाव में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को बचा लिया। इसी तरह देहरादून में आधा दर्जन छात्रों की जान बचाई गई, जो नदी के बीच में टापू पर फंस गए थे। रिपोर्ट देखिए।
1: बादल बंदिश नहीं जानते, कहीं गरजे तो कहीं बरसे, और ऐसे बरसे कि सैलाब आ गया। पहाड़ों पर बारिश की मनमर्जियां ऐसी ही हैं कि अफरा तफरी मची है। कहीं बादल फटने से पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं नदियों में उफान है जो लोगों के लिए बड़ा खतरा है। पर शुक्र है कि इस चुनौती से निपटने के लिए रेस्क्यू टीम दिन रात जुटी हुई है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के ऋषिकेश की हैं, जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से बीन नदी में अचानक जलस्तर बढ़ गया। नदी की तेज धार की चपेट में ये कार आ गई। नदी का ऐसा रौद्र रूप और रात का वक्त, कार में फंसे दो नौजवानों को बचाना लगभग नामुमकिन लग रहा था, लेकिन SDRF के जवानों ने मोर्चा संभाला। अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर उन्होंने इस उफनती नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रस्सी के जरिए कुछ जवान नदी में उतरे और कार के करीब पहुंच गए। दूसरे सिरे पर मौजूद टीम के सदस्यों ने रस्सी को मजबूती से थामे रखा। नदी में पानी का बहाव इतना तेज था कि जरा सी चूक भारी पड़ सकती थी, लेकिन रेस्क्यू टीम ने एक एक करके पहले लड़कों को कार के अंदर से बाहर निकाला और फिर उन्हें थाम कर धीरे धीरे किनारे तक ले आए। जान बची तो लाखों पाए, पर ऐसे मुश्किल समय में अगर SDRF के जवान देवदूत बनकर नहीं आते तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। रेस्क्यू टीम की दिलेरी और उनका कौशल दिखाने वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है, और लोग इनके हौसले की तारीफ कर रहे हैं।
2: ये मामला में जो हमारी टीम है डालवाला में, हमें सूचना मिली लगभग 9:15 के लगभग कि एक मैक्स बीन नदी में पलट गई और जो नीचे चली गई। तो हमारी टीम तुरंत यहाँ पर पहुंची है, और यहाँ पे देखा तो एक व्यक्ति इसमें ऊपर बैठा हुआ दिखाई दिया। तो हमारी टीम रोप लगा के अपने उपकरणों के माध्यम से उस तक पहुंची है,

0: नदी में, और उसको रेस्क्यू कर लिया गया और उसको हॉस्पिटलाइज किया। तब उसके बाद पता चला कि एक व्यक्ति अंदर था जो बुरी तरह से फंसा था। उसके लिए टीम द्वारा हमारे बहुत बरसे प्रयास किया गया, और कई प्रयासों के बाद हम उस व्यक्ति का रेस्क्यू कर गए और उसको भी हमें हमारे द्वारा टीम द्वारा हॉस्पिटलाइज किया गया। हमारे सामने हमें ये दिखा कि जो व्यक्ति अंदर है वो भी चिल्ला रहा था कि मुझे बचाओ, और हमारी टीम उसी हौसले के साथ आगे बढ़ी, और सभी हमारे जो जितने भी हमारे यहाँ पे टीम के मेंबर्स हैं सभी के प्रयास से हमारे रोप के माध्यम से उस तक पहुंच बनाई और उस व्यक्ति को हमारे द्वारा टीम द्वारा रेस्क्यू किया गया।
1: अगस्त आधा गुजर चुका है, लेकिन उत्तराखंड में बेहिसाब बारिश का सिलसिला जारी है, और उसका असर ये कि ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। आसमान से ली गई गंगा की ये तस्वीरें भले ही भव्य नजर आ रही हों, पर जमीनी सच्चाई ये है कि इस वक्त घाटों तक पानी है, और नदी का प्रवाह ऐसा है कि घाटों पर गिनती के लोग हैं। शाम के वक्त जहां गंगा आरती होती है वहां तक गंगा का पानी पहुंच चुका है। हालात देखते हुए एसडीआरएफ की टीमें पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं।
0: नदी का जो जलस्तर है, यानी कि चंद्रभागा का भी जलस्तर थोड़ा बढ़ गया है, यहाँ तक कि खारा सोत का भी स्तर जलस्तर बढ़ चुका है। हमारी टीम अभी वहाँ पर गई थी तो कुछ लोग वहाँ पे नदी नालों में चले गए थे, तो उनको हमने वहाँ पे हमारे जो लाउड अलर्ट के माध्यम से चेतावनी दी जा रही है कि आप नदी नालों में न जाएं, और उस कारण गंगा का जलस्तर भी बढ़ रहा है। और देर रात अभी भी बारिश चल रही है। हमारी टीमें, एसडीआरएफ की टीमें पूरी तरह से अलर्ट है, और किसी भी प्रकार की कोई हमें सूचना मिल रही तो हमारी टीम वहां पर रिस्पॉन्स करती है। ये जो अभी पानी बढ़ा है, हमारी टीमें वहां पर गई हैं, सभी को जो स्थानीय लोग हैं जिनके कुछ कुछ लोग वहां पे आसपास जो घर है, तो सभी को हमारे द्वारा बताया गया कि आप पानी जो जलस्तर है उस पर नजर बनाए रखें, और जैसे पानी बढ़ता है तो आप उससे दूर रहें, किसी भी प्रकार की कोई अपना जोखिम न लें।
1: वैसे ऋषिकेश ही नहीं, उत्तराखंड के कई इलाकों में तेज बारिश के बाद चुनौतियां बढ़ गई हैं। देहरादून में स्वर्णा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और कई छात्रों की जान जोखिम में आ गई। ट्रैकिंग करने गए UPES यूनिवर्सिटी के 6 छात्रों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि नदी के पास एक मुसीबत उनका इंतजार कर रही है। जब गए थे सब कुछ ठीक ठाक था, पर अचानक नदी में जैसे सैलाब आ गया। सभी छात्र नदी के बीच एक टापू में फंस गए। गनीमत रही कि छात्रों के वहां फंसे होने की खबर तुरंत SDRF को मिल गई, और टीम ने इस सैलाब का सामना करते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रात के वक्त यह ऑपरेशन आसान नहीं था, पर रेस्क्यू टीम ने सूझबूझ दिखाई। लोहे के पाइप को पुल की तरह इस्तेमाल किया। किनारे से टापू तक लगे पाइप के जरिए छात्रों को एक एक करके निकाला गया। अब टिहरी गढ़वाल की ये तस्वीरें भी देख लीजिए। कहने को तो ये बरसाती नाला है, लेकिन मूसलाधार बारिश की वजह से इसमें उफान आ गया। कुछ लोग जो वहां मौजूद थे उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला, और देखते ही देखते वो बेबस हो गए। लेकिन SDRF की टीम अलर्ट पर थी। जवानों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया और दरिया के बीच जाकर रस्सियों की मदद से सभी को बाहर निकाल लिया। जो लोग इस सैलाब में फंस गए थे उनमें कुछ सैलानी भी थे, जिन्हें पहाड़ों की ऐसी बारिश और सैलाब का जरा भी अंदाजा नहीं था, लेकिन सुरक्षित निकलने के बाद उन्होंने राहत की सांस ली।
2: पिताजी का नाम क्या है?
3: धर्म सिंह।
2: उम्र कितनी है आपकी?
3: उम्र 36।
2: 36 साल। घूमने
3: नहीं तो
2: ओपन बनाया तुम ठीक हो? आप दोस्त का है वो तिरंगे
1: देहरादून में बेहिसाब बारिश से नदी नालों में तेज उफान है। टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास तमसा नदी भी रौद्र रूप में है, और हालात ये हैं कि श्रद्धालुओं से नदी के पास न जाने की अपील की जा रही है। बारिश के चलते देहरादून के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। ऐसी तस्वीर उत्तराखंड के कई इलाकों में है, और लोगों को नदी नालों से दूर रहने की अपील की जा रही है।
4: इस तरह से कई स्थानों पर बहुत ज्यादा बरसात हुई है, और बरसात के कारण निश्चित रूप से कुछ दिक्कतें भी हुई हैं। कई कई जगह नदियों का पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जलस्तर काफी बढ़ गया है। ऋषिकेश के पास में जलस्तर काफी हद तक बढ़ गया है। आज की बात करें तो आज देहरादून के लिए, टिहरी के लिए, पौड़ी और ऊधम सिंह नगर 4 जनपदों के लिए ऑरेंज अलर्ट है। सभी जनपदों को SEOC से निर्देश जारी किए गए हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी संबंधित से अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर ऐसे किसी स्थान पर रह रहे हैं जहां पानी के बढ़ने की संभावना है, जलस्तर बढ़ने की संभावना है, बाढ़ आने की संभावना है, ऐसे स्थानों पर जो लोग रह रहे हैं सावधानी के साथ रहें, अलर्ट पे रहें, ताकि किसी प्रकार से पानी का स्तर बढ़ने पर उनको सकुशल वहां से निकासी संभव हो सके। इसके साथ साथ मैं सभी से यह भी अनुरोध करूंगा कि अपने मोबाइल में सचेत ऐप डाउनलोड कर लें ताकि मौसम के अपडेट लगातार उनको मिलते रहें, और जो लोग ट्रेवल करना चाहते हैं अनावश्यक रूप से ट्रेवल करने से बचें।
1: ऐसी बारिश में चुनौतियां दूसरी भी हैं। पौड़ी देर प्रयाग मार्ग पर सौर के करीब पहाड़ी से भारी मलबा आने के कारण यातायात पूरी तरह से ठप नजर आ रहा है। सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई, यात्रियों को देर तक इंतजार करना पड़ा। हालांकि खबर मिलते ही प्रशासन तुरंत एक्टिव हो गया, मशीन से मलबा हटाने का काम शुरू हुआ और काफी मशक्कत के बाद रास्ता दुरुस्त किया गया। पौड़ी गढ़वाल में लगातार बारिश की वजह से भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं। महरगांव में भूस्खलन के बाद 4 लोग मलबे में दब गए। सूचना मिलते ही प्रशासन, SDRF और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और एक महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मौसम का रुख देखते हुए प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है और नदी नालों पर नजर बनाए हुए है। ऋषिकेश से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: आइए बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। उत्तराखंड की तरह ही हाल हिमाचल का देखने को मिल रहा है। कई जिलों में मूसलाधार बारिश की वजह से रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित है, पर मुश्किल बादल फटने के बाद तेज बारिश से है। चंबा में जब ऐसा हुआ तो नदी में सैलाब आ गया। पहाड़ों से आए मलबे की चपेट में आने से लोहे का एक पुल बह गया और लगभग 50 तीर्थयात्रियों की जान मुश्किल में फंस गई, लेकिन रेस्क्यू टीम ने ऑपरेशन चलाकर उनको बचा लिया। इसी तरीके से कुल्लू में भी नदी के उफान ने कुछ सैलानी फंस गए थे, जिन्हें SDRF ने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से सकुशल बाहर निकाला। रिपोर्ट देखिए।
6: सैलाब है, दूसरी ओर जिंदगी, चुनौती बड़ी है। ऐसे हालात में कब, कहां और कैसे फंस जाएगा कहना मुश्किल है। बेहिसाब बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में नदी नाले उफान पर हैं और जिंदगी का कड़ा इम्तिहान है। ये तस्वीरें चंबा की हैं, जहां बादल फटने के बाद जैसे सैलाब आ गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि उसके साथ पहाड़ों से मलबा नीचे आने लगा और भारी मलबे की वजह से लोहे का पुल बह गया। पुल नदारद और रास्ता बंद। अब 40 से 50 श्रद्धालुओं के सामने संकट खड़ा था, जो माँ भगवती खुंडी वाली के दर्शन के लिए जा रहे थे। ये लोग ना तो आगे जा सकते थे और न पीछे। श्रद्धालुओं के फंसे होने की खबर जैसे ही रेस्क्यू टीम को मिली वो एक्टिव हो गए, लेकिन उनके साथ स्थानीय लोग भी जुट गए। फिर शुरू हुआ श्रद्धालुओं को इस दरिया से निकालने का ऑपरेशन। बेहद सावधानी से रेस्क्यू टीम के लोग रस्सी के जरिए उस पार पहुंचे और एक एक करके सभी श्रद्धालुओं को दरिया के किनारे पर लाया गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती थी, लेकिन धैर्य और हौसले के साथ इन सभी श्रद्धालुओं को सकुशल निकाल लिया गया। चंबा ही नहीं, कुल्लू में भी भारी बारिश के चलते हालात चुनौतीपूर्ण है। नदी में पानी कब अचानक बढ़ जाएगा इसका अंदाजा नहीं। देखिए कैसे कुल्लू की मणिकर्ण घाटी में पार्वती नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और नदी के बीच चट्टान पर बैठे दिल्ली के सैलानी पानी से घिर गए। बाहर निकलने का रास्ता बंद होने के बाद स्थानीय युवाओं और आपदा मित्रों ने रस्सी के सहारे रेस्क्यू शुरू किया। नदी की बेहद तेज धार में ये काम जोखिम भरा था। हालांकि किनारे खड़े लोगों ने मजबूती से रस्सी थाम रखी थी, फिर भी लहरों का सामना करते हुए इस पार आना आसान नहीं था। पर कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय युवक जान जोखिम में डालकर रस्सी के सहारे नदी के तेज बहाव के बीच पहुंचे और सभी सैलानियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लाहौल स्पीति के दूर दराज इलाकों में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। चोखंग इलाके में पहाड़ियों पर हुई तेज बारिश के बाद गौरी नाले में अचानक पानी का बहाव बढ़ गया और देखते ही देखते नाला उफान पर आ गया। नतीजा ये हुआ कि भारी मात्रा में मलबा और पत्थर सड़क तक पहुंच गए और लिंक रोड का करीब 400 मीटर हिस्सा मलबे से फट गया और आवाजाही रुक गई। हालांकि प्रशासन तेजी से मलबा हटाने में जुटा है। जिस तरह से पहाड़ों पर आफत का पानी बरस रहा है और भूस्खलन हो रहा है, उसने लोगों की जिंदगी को संकट में डाल रखा है, लेकिन सैलानियों के लिए भी सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि पहाड़ों में मौसम और नदियों का मिजाज कभी भी बदल सकता है। ऊपरी इलाकों में बारिश होने पर नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ सकता है और तब नदी या नाले के पास जाना खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए प्रशासन लगातार पर्यटकों से अपील कर रहा है कि जब तक मूसलाधार बारिश हो रही है नदी नालों से सुरक्षित दूरी पर रहें और जोखिम न उठाएं। चंबा से विशाल आनंद और कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: तो देखिए, हिमाचल में अगले चार दिनों तक जबरदस्त बारिश का अनुमान जताया गया है। बिलासपुर, कांगड़ा और मंडी में ऑरेंज अलर्ट है, तो वहीं पर चंबा, कुल्लू, सोलन और शिमला में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। राज्य में 22 अगस्त तक बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान है। आज शिमला में जमकर बदरा बरसे, इसलिए मॉल रोड पर रंग बिरंगे छाते नजर आए। सैलानियों ने भी इस बारिश का जमकर लुत्फ उठाया। शिमला में लगातार हो रही बारिश की वजह से तापमान कम हो गया है और घिरे हुए बादलों की वजह से वहां की खूबसूरती में और चार चांद लग गए। चलिए, पहाड़ों के बाद अब मैदान का हाल देख लेते हैं। वाराणसी में इन दिनों गंगा घाट पर भीड़भाड़ पहले जैसी नहीं है, सैलानियों की तादाद भी कम है। वजह है गंगा का बढ़ता हुआ जलस्तर। गंगा खतरे के निशान से अभी भी नीचे है, लेकिन तमाम घाटों पर पानी आ चुका है और इसी वजह से घाट पर सुरक्षा ज्यादा बढ़ा दी गई है। आरती की जगह अब बदल दी गई है। नमो घाट पर बैरिकेडिंग है और छोटी नावों पर रोक लगा दी गई है। देखिए वाराणसी से ये खास रिपोर्ट।
7: गंगा के दोनों किनारों को जोड़ता है यह पुल और यहाँ से देखिए तो बनारस में गंगा की विशाल धारा का अंदाजा होता है, पर सैलानी दूर से नहीं घाट पर जाकर गंगा के निर्मल पानी का अनुभव लेना चाहते हैं, नाव पर घूमना चाहते हैं, पर इन दिनों ये मुमकिन नहीं क्योंकि बारिश की वजह से गंगा का जल स्तर बढ़ गया है। यहाँ तक कि नमो घाट पर बने 75 फीट ऊंचे नमस्ते के स्कल्पचर तक पानी है और सुरक्षा के मद्देनजर घाट की बैरिकेडिंग कर दी गई है। सुरक्षा गार्ड्स लोगों को आगाह कर रहे हैं।
8: धीरे धीरे ही सही, वाराणसी में गंगा ने अपना रौद्र रूप अख्तियार करना शुरू कर दिया है। नमो घाट जो लोगों के बीच में बहुत ही पसंद किया जाने वाला नया घाट है, वहां पर अभी हमारी मौजूदगी है और देख सकते हैं कि हमारे ठीक पीछे 75 फीट का नमस्ते का स्कल्पचर है, वो भी जलमग्न होना शुरू हो गया है। यहाँ तक बाढ़ का पानी पहुंचना शुरू हो गया है। केंद्रीय जल आयोग की डेली फ्लड बुलेटिन की मानते हैं तो गंगा का जल स्तर चेतावनी बिंदु से महज 3.5 मीटर तो खतरे के निशान से 4.5 मीटर ही शेष रह गया है। नमो घाट बनारस का चौपाटी कहा जाता है। यहाँ लगातार जो लोग आते हैं, आस्थावान पर्यटक सैलानी आते हैं, वे काफी संख्या में होते हैं, जिनको हटाने के लिए, जिनको आगाह करने के लिए लगातार गार्ड यहाँ अलर्ट है और लोगों को इस बाढ़ के पानी के नजदीक जाने से, घाट की सीढ़ियों के नजदीक जाने से मना कर रहे हैं। तो वहीं एहतियात के तौर पर बनारस में सभी तरह के नौका का संचालन अगले आदेश तक रोक दिया गया है। तो वहीं NDRF, जल पुलिस और गोताखोर की भी ड्यूटी लगाई गई है। तटवर्ती इलाकों के लोगों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। 5 बार गंगा आरती का स्थल भी बदल दिया गया है और अब गंगा आरती छत पर की जा रही है। माना जा रहा है कि गंगा अगर यूं ही बढ़ती रही, जलस्तर में बढ़ाव देखा गया, तो आने वाले दिनों में तटवर्ती इलाकों के लोगों की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं।
7: गंगा में पानी के बढ़ते प्रवाह को देखते हुए वाराणसी की चौपाटी कहे जाने वाले नमो घाट पर आने वाले लोगों की संख्या काफी कम हो गई है। स्थानीय दुकानदारों की रोजी रोटी पर तो असर है ही, पर्यटकों और श्रद्धालुओं में भी निराशा है।
9: इस समय बहुत नुकसान हो रहा है और धंधा बहुत खराब चल रहा है। बाढ़ की वजह से भीड़ नहीं आ रही है, यात्री लोग आ नहीं रहे हैं, बहुत दिक्कतें हम लोग को, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
10: आमदनी कितनी कम हो गई है?
9: बहुत ज्यादा कम हो गई,
10: खर्चा उतना ही। अभी कब तक इसी तरह लगा रहेगा?
9: 2 महीना लग जाएगा लगभग।
11: अभी कुछ भी नहीं देख पा रहे, बोट चल नहीं रही है, तो इससे जो हमारा यहाँ आने का इच्छा था वो सब खत्म सा हो गया,
10: अधूरा ही।
11: हाँ, अधूरा रह गया।
10: और घाटों का आपसी कनेक्शन भी कटा हुआ?
11: हाँ, कटा हुआ। हाँ, एक दूसरे घाट से जा नहीं सकते। हाँ,
10: इससे थोड़ी निराशा है?
11: निराशा तो है ही, अभी इतनी दूर से आए हैं इसी काम के लिए। हाँ। सिर्फ बाबा के दर्शन हो पाएंगे हमें।
12: चारों तरफ घूम भी नहीं पा रहे हैं बारिश की वजह से, पानी पानी है।
13: भदोही के रहने वाले हैं, यहाँ घूमने आए थे और यहाँ पे फिलहाल बोटिंग के लिए आए थे और बोटिंग बंद हो गई है, तो काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो गए हम लोग। अब ये सब भी नहीं चल रहा और बाकी अगर वैसे होता ये नाव में भी घूम लेते, वो भी बंद हो गया है पानी बढ़ने की वजह से।
10: अभी नमो घाट पे क्या कंडीशन है, पानी यहाँ भी भर गया है?
13: अब पानी है तो बस देख के घर जाना पड़ेगा वापस ऐसे ही बिना घूमे टहले।
14: घाटों पे थोड़ा रश भी है और लेकिन पानी का सतर बढ़ा हुआ है, वो उस वजह से हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे। पानी में पीछे से भी पानी थोड़ा वो आ रहा है, मिट्टी वाला आ रहा है, तो बोटिंग वगैरह हो नहीं रही, तो जो हम बोटिंग में जाना चाहते थे वो नहीं जा पा रहे।
10: थोड़ी सी निराशा
14: तो रहती है, अभी इतनी दूर से आए हैं तो रहेगा, बार बार आना होता नहीं है। और भगवान बाबा जी की कृपा रही तो हम अगले सावन फिर आएंगे।
15: पानी का स्तर काफी बड़ा हुआ है जिसके कारण बोटिंग वगैरह बंद की हुई है और बहुत सारे घाट आपस में से जुड़े हुए नहीं है।
7: वाराणसी में गंगा का जल स्तर अभी खतरे के निशान से 4.5 मीटर नीचे है, पर प्रति घंटे 4 सेंटीमीटर का बढ़ाव दर्ज किया जा रहा है। माना जा रहा है कि गंगा का जल स्तर यूं ही बढ़ता रहा तो जल्दी ही नमो घाट पूरी तरह से पानी में समा जाएगा, इसलिए एहतियात के तौर पर जगह जगह गंगा घाटों पर NDRF और जल पुलिस की तैनाती कर दी गई है।
16: आप लोग किनारों पर ही स्नान करें, किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें।
7: ऐसा नहीं कि गंगा के घाट पर पूजा पाठ और दूसरे धार्मिक क्रियाकल्प बंद है, सब कुछ पहले जैसा ही है, पर गंगा आगे बढ़ती जा रही है और घाट पर आरती के लिए बनाए गए प्लेटफॉर्म पीछे जा रहे हैं। रस्सियों का जो घेरा है उसके आगे नहाने की इजाजत नहीं। परेशानी पुरोहित और यजमान दोनों को है, पर बारिश के दिनों में ये तस्वीर नई नहीं, छोटे नावों और मोटर बोट के चलने पर रोक है।
8: एहतियातन देख सकते हैं कि नावों के संचालन पर, मोटर बोटों के संचालन पर फिलहाल प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसके चलते घाट किनारे नावें बंधी हुई हैं, थमी हुई हैं और लगातार नाविक भी इस पर निगरानी रखे हुए हैं। तो वहीं हम इस समय वाराणसी के 80 घाट पर हैं, इसके बगल में गंगा महल घाट है, फिर रीवा और तुलसी घाट, लेकिन साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो घाटों का आपसी कनेक्शन है एक घाट से दूसरे घाट तक, 84 घाटों का आपसी जो संपर्क का रास्ता है वे टूट गया है और लगातार बढ़ाव जारी रहने से जो तीर्थयात्री आ रहे हैं, जो यहाँ घूमने लोग आ रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं, आस्थावान आ रहे हैं, उनको भी काफ़ी निराशा हाथ लग रही है क्योंकि नौका संचालन पर रोक लगी हुई है और माना जा रहा है कि अगर गंगा के जलस्तर में यूं ही बढ़ोतरी जारी रही तो दिक्कत और बढ़ेगी। फिलहाल तटवर्ती इलाकों के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, या यहाँ रोजी रोटी चलाने वाले हों या गंगा आरती करने वाले आस्थावान हों, लगातार अपने साजो सामान को ऊपर की ओर शिफ्ट कर रहे हैं और आज 5वीं बार दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती भी पीछे शिफ्ट होगी। माना जा रहा है कि ये आरती आज छत पर होगी, तो लगातार गंगा के जो बढ़ते जलस्तर से लोगों की दुश्वारियां बढ़ती चली जा रही हैं और माना जा रहा है कि अगर यूं ही गंगा का जलस्तर बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में मुश्किलें और भी बढ़ेंगी।
7: वाराणसी में गंगा घाट पर जो रौनक होती है वो बारिश के इन दिनों में थोड़ी कम है। गंगा में पानी जब तक बढ़ रहा है और घाट सुरक्षित नहीं तब तक हालात ऐसे ही रहने वाले हैं। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: खास कार्यक्रम में इतना ही, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे,
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति, हरियाली और उत्सवों का पवित्र और प्रिय महीना माना जाता है, और इस महीने में विशेषकर कावड़ यात्रा की भव्य छटा देखने को मिलती है। इस बार भी बिहार के मुंगेर में कावड़ मार्ग पर कई भव्य रंग देखने को मिल रहे हैं।

0: सावन के महीने में कावड़ पथ की रौनक देखते ही बनती है। बिहार के मुंगेर में हर दिन असरगंज कच्ची कावड़िया पथ पर आस्था और उत्साह का संगम दिखता है। बम बम भोले और हर हर महादेव का जय घोष करते हुए बड़ी संख्या में शिव भक्त अनोखी छटा बिखेरते हुए बैद्यनाथ धाम की ओर बढ़ते दिखते हैं। ये दृश्य हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब इस तस्वीर को ही देखिए, इसमें भक्त अपने आराध्य को कंधे पर विराजमान कर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। भोलेनाथ अपने भक्तों के भाव देखते हैं, उनके प्रति अपने अगाध आस्था को प्रदर्शित करने के लिए भक्त बाबा को चश्मा मुकुट सबसे पूरी तरह सजाकर दिव्य रूप में अपने साथ ले जा रहे हैं। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से आया कांवड़ियों का ये दल सुल्तानगंज से जल भरने के बाद झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर जल अर्पित करने बढ़ता चला जा रहा है।
1: हम लोग अयोध्या से चलकर यहाँ सुल्तानगंज आए और बाबा भोलेनाथ के दरबार में जा रहे हैं। बाबा का ये जो रूप है बहुत ही निराला हम लोगों को लगा, इसीलिए बाबा को इस गेटअप में हम लोगों ने तैयार किया है। चश्मा लगा के हम लोग ले चल रहे हैं, खुद चश्मा लगाते हैं और बाबा को भी चश्मा लगा के लेके चल रहे हैं।
0: आस्था की इसी यात्रा में कोई कंधे पे कांवड़ उठा रहा है तो कोई अपने बच्चों को बंगी में लेकर बाबा के दरबार की ओर बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल निवासी शिव भक्त अपने 7 महीने के बेटे को बांगी में बैठाकर बाबा की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, तो प्रयागराज निवासी शिव भक्त अपनी 2.5 साल की बिटिया को गमछे से बनी बांगी में लेकर जा रहे हैं। सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर लगभग 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके भक्त देवघर पहुंचते हैं और भगवान भोले शंकर को जल अर्पित करते हैं। इस दौरान कांवड़ मार्ग में शिव भक्तों के लिए की गई व्यवस्थाएं उनकी राह आसान कर देती है।
2: बहुत अच्छा है, लाइट है और निःशुल्क जल सेवा भी है, शौचालय है, सुलभ शौचालय है, मेडिसिन वगैरह भी मिल रही है और क्या ही चाहिए, ये तो काफी है।
0: बैद्यनाथ धाम की महिमा अपरंपार मानी जाती है। यहाँ सावन के पूरे महीने कांवड़ियों की भीड़ रहती है, विशेषकर सोमवार को बाबा पर जल अर्पित करने के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ता है।
3: जो हमारे ज्योतिर्लिंग में द्वादश ज्योतिर्लिंग में एक हमारे ऐसे ही पांचवा है और यहाँ पे शिव और शक्ति के ऊपर साथ में विराजमान है शिव। एक ऐसा शिव है जहाँ पे सिंदूर भी चढ़ता है, चूंकि शक्ति होने के कारण ये परंपरा बनी हुई है। और यहाँ पे एक चीज खास ये है, और जगह में सब आप त्रिशूल देखेंगे लेकिन यहाँ बाबा बैद्यनाथ के ऊपर पंचूर देखेंगे, इनका एक अलग ही महत्व रहा है और हम लोग अपने जीवन में उसको बहुत हमें देखने को मिला है कि इनकी कृपा सब पर बनी रहती है और आगे भी बनी रहे।
0: बैद्यनाथ धाम में सावन ही नहीं बल्कि भादों के महीने में भी कांवड़ियों और शिव भक्तों का तांता लगा रहता है। सावन जहां मुख्य कांवड़ मेला मास माना जाता है, वहीं भादो मास में भी श्रद्धालु और डाक कांवड़िए बाबा का जलाभिषेक करने के लिए पहुंचते हैं। मुंगेर से गोविंद कुमार और देवघर से शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
5: मंगल का कौन सा योग वैवाहिक जीवन में अलगाव ले आता है? मंगल का कौन सा योग साहस और आत्मविश्वास को कमजोर कर देता है? मंगल का कौन सा योग जीवन में प्रचंड दुर्घटना का कारण बनता है? कौन से हैं मंगल के अशुभ योग और क्या है उनका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: जुलूनोत्सव के बीच राम मंदिर का भव्य श्रृंगार, सुनहरी रोशनी से नहाया मंदिर का शिखर, सावन के पवित्र महीने में देखा अनोखा नजारा। बारह महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की तैयारियां तेज। मुंबई के प्रसिद्ध काला चौकी महागणपति का हुआ आगमन। सिंह पर सवार नजर आए 22 फीट ऊंचे बप्पा। पवित्र सावन महीने में धूमधाम से जारी है कांवड़ यात्रा। जौनपुर में शिव भक्तों पर की गई फूलों की बारिश। प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से बरसाए फूल। बाढ़ से मैदान तक मौसम की मेहरबानी बरकरार। शिमला में 21 अगस्त तक बारिश का अलर्ट। चंडीगढ़ में जमकर बरसे पतरा। महिला हॉकी वर्ल्ड कप में भारत का दबदबा। साउथ अफ्रीका को 6-1 से हराकर पूल डी में हासिल किया टॉप स्थान। अब इंग्लैंड से होगा सामना।
4: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
6: नमस्कार, मैं हूं नवजोत चंदावा। सोशल मीडिया की दुनिया में सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी किसी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं। यहां हर किसी के हाथ में एक कैमरा है, हर घटना हर तस्वीर कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना बताकर परोस दी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, लेकिन फैक्ट चेक के जरिए हम ऐसी खबरों की पड़ताल करते हैं, आप तक सही और सच्ची खबर लेके आते हैं। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात होगी उस वायरल वीडियो की, जिसको शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि नेपाल में अवैध घुसपैठियों की बस्ती को आग के हवाले कर दिया गया। सच्चाई क्या आ गया जानिए। इसके अलावा हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी, जिसको शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि हरियाणा के चरखी दादरी में 6 अगस्त को हुई गोलीबारी का असली वीडियो है। सच्चाई आगे बताएंगे, शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
4: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
6: सोशल मीडिया पर भीषण आग का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आग इतनी तेज है कि आसमान में धुएं की लपटें नजर आ रही है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि ये नेपाल के एक ऐसे गांव का वीडियो है जहां अवैध घुसपैठिए रहते हैं। दावा है कि इस पूरे गांव को आग के हवाले कर दिया गया है, जिसके बाद पूरा इलाका जलकर खाक हो गया। क्या है सच्चाई, देखिए हमारी रिपोर्ट।
8: हाल ही में नेपाल में धार्मिक प्रतीकों और लाउडस्पीकर विवाद को लेकर दो समुदायों के बीच हिंसक झड़पें हुई थीं। हालात इतने बिगड़ गए थे कि इस पर काबू पाने के लिए कई जिलों में कर्फ्यू लगाया गया और सेना को भी तैनात किया गया। अब इसी से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर भीषण आग का ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। आग इतनी तेज है कि आसमान में धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। कुछ लोग इस वीडियो के जरिए ये दावा कर रहे हैं कि ये नेपाल के एक ऐसे गाँव का वीडियो है जहां अवैध घुसपैठिए रहते थे। दावा है कि इस पूरे गांव को आग के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद पूरा इलाका जलकर राख हो गया। वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, गजवाए नेपाल की मानसिकता पाले नेपाल में घुसे अवैध घुसपैठियों के पूरे गांव को जलाकर राख कर दिया, न सबूत बचे न गवाह। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
6: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आग इतनी तेज है कि आसमान में धुएं की लपटें नजर आ रही हैं। कुछ लोग इस वीडियो के जरिए दावा कर रहे हैं कि नेपाल के एक ऐसे गांव का वीडियो है जहां पर अवैध घुसपैठिए रहते हैं और दावा यह है कि इस पूरे गांव को आग के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद पूरा इलाका जलकर खाक हो गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ वीडियो को शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने इसकी पड़ताल शुरू की और दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और इसे सुना भी। इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड से आ रही आवाजों पर गया और जब हमने इसे गौर से सुना तो इशारा मिला कि ये नेपाल में बोली जाने वाली भाषा नहीं है। ये कहीं और की भाषा हो सकती है। इसके अलावा वीडियो के फ्रेम दर फ्रेम देखने से ऐसा लग रहा है कि किसी पहाड़ के जंगल में ये आग लगी हुई है और फायर ब्रिगेड की एक टीम इसे बुझाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वीडियो में कहीं पर भी घर देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि अगर किसी इंसानी बस्ती को आग के हवाले किया जाता तो उसके निशान यहां पर जरूर नजर आते, लेकिन वीडियो में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। साथ ही सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिलती है जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, क्योंकि अगर वीडियो का संबंध नेपाल से होता तो कहीं ना कहीं इसके बारे में जानकारी जरूर होती। लिहाजा हमने वायरल हो रहे दावे को सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही था कि अगर दावा सही है तो फिर इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। हमारा दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए लोगों को गुमराह करने की कोशिश तो नहीं हो रही है। सच और झूठ क्या है इस रिपोर्ट में जानिए।

0: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। पड़ताल के लिए सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये तुर्की के मीडिया संस्थान के यूट्यूब चैनल पर मिला। यहाँ इसे 29 जुलाई को अपलोड किया गया था। कैप्शन के मुताबिक ये तुर्की के मुगला प्रदेश में लगी जंगल की आग का वीडियो है। सर्च के दौरान तुर्की की एक और न्यूज आउटलेट की 29 जुलाई की वीडियो रिपोर्ट में भी वायरल वीडियो वाला हिस्सा देखने को मिला। रिपोर्ट के मुताबिक मुगला के सेडी केमर जिले में एक खेती बाड़ी की जगह पर लगी आग तेज हवाओं के चलते जंगल तक फैल गई और देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया। एक रिपोर्ट से ये भी जानकारी सामने आई कि इस आग को बुझाने के अभियान में 5 एयरक्राफ्ट, 18 हेलीकॉप्टर और 93 दमकल की गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। इस अभियान में 800 से ज्यादा जवान शामिल थे। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। वायरल हो रहे वीडियो का नेपाल से कोई लेना देना नहीं है। ये वीडियो तुर्की के मुगला का है, जहां एक जंगल में भयानक आग लग गई थी। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: हरियाणा के चरखी दादरी में 6 अगस्त को दिन दहाड़े सिटी पुलिस थाने के सामने एक स्कॉर्पियो गाड़ी पर करीब 30 राउंड की फायरिंग हुई। इस गोलीबारी में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनमें से एक की मौत हो गई। इस घटना से जोड़ते हुए सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि हरियाणा के चरखी दादरी में 6 अगस्त को ही गोलीबारी का यह असली वीडियो है, लेकिन सच्चाई क्या है इस रिपोर्ट में जानिए।
2: हरियाणा के चरखी दादरी में 6 अगस्त को दिन दहाड़े सिटी पुलिस थाने के सामने एक सनसनीखेज तरीके से एक स्कॉर्पियो गाड़ी पर करीब 30 राउंड की फायरिंग हुई थी। इसी घटना के संदर्भ में अब सोशल मीडिया पर एक क्लिप काफी वायरल हो रही है, जिसमें काली स्कॉर्पियो गाड़ी पर अंधाधुंध गोलियां चल रही हैं। इसे शेयर करने वाले कई सोशल मीडिया यूजर्स दावा कर रहे हैं कि ये चरखी दादरी में हुई गोलीबारी का नजारा है। वायरल वीडियो के पहले हिस्से में गाड़ी पर गोलीबारी और गोली लगने के बाद गाड़ी की हालत दिखाई गई है। वहीं दूसरे हिस्से में खून से लथपथ एक शख्स को गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे हुए देखा जा सकता है। कई लोग गाड़ी को घेरे हुए हैं। वीडियो शेयर करते हुए कई सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया कि ये 6 अगस्त को चरखी दादरी में कोर्ट के पास हुई 30 राउंड की फायरिंग का असली दृश्य है और रोहित गोदारा गैंग से जुड़े नवीन बॉक्सर नाम के एक शख्स ने इसकी जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि हरियाणा के चरखी दादरी का वीडियो है और 6 अगस्त को हुई गोलीबारी का ये असली वीडियो है। वायरल वीडियो के पहले हिस्से में गाड़ी और गोलीबारी और गोली लगने के बाद गाड़ी की हालत दिखाई गई है। वहीं दूसरे हिस्से की बात करें तो खून से लथपथ एक शख्स को गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे हुए देखा जा सकता है। कई लोग गाड़ी को घेरे हुए हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की जांच शुरू की। तो सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को हमने गौर से देखा। इस दौरान हमें यह इशारा मिला कि ये अलग अलग क्लिप्स को एक साथ जोड़कर वीडियो बनाया गया हो सकता है। इसके अलावा वायरल हो रहे वीडियो के पहले हिस्से में जिस गाड़ी पर फायरिंग हो रही है उसे जब हमने फ्रेम दर फ्रेम गौर से देखा तो कुछ ऐसी गलतियां देखने को मिली जिससे हमें वायरल वीडियो के असली होने पर शक हुआ। उदाहरण के तौर पर वीडियो में नजर आ रहे काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी का नंबर प्लेट पर जो नंबर दिख रहा है वो अजीब तरीके से लिखा हुआ है। अक्सर एआई वीडियो में ये गलतियां देखने को मिलती हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि जिस गाड़ी पर 6 अगस्त को हरियाणा के चरखी दादरी में फायरिंग हुई थी वो काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी ही थी। जब इस गाड़ी को थाने लाया गया था तब उसका वीडियो भी सामने आया था। आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी उसे देख सकते हैं। वायरल हो रहे वीडियो में नजर आ रही गाड़ी और ओरिजिनल वीडियो में दिख रही गाड़ी को अगर आप देखेंगे तो आपको फर्क साफ नजर आ जाएगा। वायरल वीडियो में फायरिंग के बाद गाड़ी की हालत बिल्कुल खराब हो गई थी, जबकि थाने में जो गाड़ी खड़ी है उसमें ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। लिहाजा हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल ये कि अगर दावा सही है, सच्चा है, तो फिर वायरल हो रहा वीडियो के बारे में कोई प्रमाणिक जानकारी हमें क्यों नहीं मिली। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर एडिटेड वीडियो के जरिए लोगों के बीच भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा, सच और झूठ क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए।
2: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। हमें असली वीडियो एक इंस्टाग्राम यूजर के हैंडल पर मिला। 12 मई को पोस्ट किए गए इस वीडियो से साफ हो जाता है कि 6 अगस्त को हुई गोलीबारी से इसका कोई संबंध नहीं है। वायरल वीडियो के कैप्शन में यूजर ने वीडियो एडिटिंग का क्रेडिट किसी दूसरे यूजर को दिया है। इस पोस्ट के रिप्लाई में कई यूजर्स ने इस वीडियो को AI जनरेटेड बताया, जिस पर कोई असहमति जताए बिना यूजर ने सिर्फ हंसी का इमोजी बनाया है। इसके बाद हमने गूगल AI से बनी तस्वीरों और वीडियो को डिटेक्ट करने वाले टूल सिंथाइडी से इस वीडियो को टेस्ट किया। इस टूल ने भी बताया कि ये वीडियो गूगल AI की मदद से बनाया गया है। साथ ही हमने इसे हाइव मॉडरेशन टूल से भी टेस्ट किया। इस टूल ने भी इस वीडियो के AI से बने होने की 96.2% संभावना बताई। हालांकि वायरल वीडियो के दूसरे हिस्से में जहां खून से लथपथ एक शख्स को गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे हुए देखा जा सकता है, वो हिस्सा चरखी दादरी की असली घटना का है। इस गोलीबारी में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनमें से एक की मौत हो गई थी। इस वारदात के बाद SP लोकेश कुमार ने 6 पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड किया था। इस तरह हमारी पड़ताल से ये साफ हो गया कि दो हिस्से को जोड़कर ये वीडियो तैयार किया गया है। स्कॉर्पियो में गोलीबारी वाला वीडियो का पहला हिस्सा AI से बनाया गया है, चरखी दादरी में हुई गैंगवार से इसका कोई लेना देना नहीं है, जबकि दूसरे हिस्से में जहां खून से लथपथ एक शख्स को गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे हुए देखा जा सकता है, वो हिस्सा चरखी दादरी की असली घटना का है। रिद्धेश दत्ता के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे वायरल वर्ल्ड में क्या कुछ हो रहा है, लिए चलेंगे आपको वायरल दुनिया में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
1: और वक्त हो चला है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है।
5: सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है, जिसमें एक छोटी बहन अपने भाई की जिस तरह देखभाल करती नजर आ रही है, उसे देखकर लोग भावुक हो रहे हैं। वायरल वीडियो में भाई बहन के बीच का बेहद मासूम रिश्ता देखने को मिलता है। छोटा भाई अपनी ही दुनिया में मस्ती करता दिखाई देता है, जबकि उसकी बहन लगातार उसके छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखती नजर आती है। कभी वो भाई की स्कूल ड्रेस ठीक करती है तो कभी उसे संभालती हुई दिखाई देती है। वीडियो का सबसे प्यारा हिस्सा वो है जब बहन अपने छोटे

0: बहन के हर छोटे प्रयास में एक अलग ही प्यार नजर आता है। ऐसा लगता है जैसे वो अपने छोटे भाई की सिर्फ बहन नहीं बल्कि उसकी छोटी से केयर टेकर भी हो। यही मासूम पल वीडियो को खास बना रहे हैं। इसमें ना कोई बड़ी बात है और ना ही कोई बनावटी भावनाएं, लेकिन भाई बहन के बीच दिख रहा अपनापन सीधे लोगों के दिल तक पहुँच रहा है। सोशल मीडिया पर ये दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। इंस्टा पर शेयर इस वीडियो के साथ एक लाइन लिखी गई है जिसका मतलब है कि जिंदगी में आप सच में बहुत अमीर हैं। अगर आप अपने बच्चे को उसके जन्मदिन पर वो चीज दे सकते हैं जिसकी उसे सबसे ज्यादा इच्छा थी। वीडियो की शुरुआत बेसबॉल प्रैक्टिस से होती है। बच्चा मैदान में बल्लेबाजी की तैयारी करता दिखाई देता है। उसके माता पिता उसे खास शॉट लगाने के लिए कहते हैं। बच्चा पूरी मेहनत के साथ बल्ला घुमाता है और स्लो मोशन में शॉट लगाने की कोशिश करता है। इसके बाद कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट आता है। जैसे ही बच्चा बल्ला पीछे करता है उसके पिता किसी बहाने से उसके हाथ से बल्ला ले लेते हैं। बच्चे को उस वक्त शायद समझ ही नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसे जो मिलता है वो उसके लिए बेहद खास होता है। पिता पुराने बल्ले की जगह उसके हाथ में एक नया बल्ला थमा देते हैं। उस समय बच्चे के हाथ पीछे की ओर होते हैं। जैसे ही वो अपने हाथ आगे लाता है और नए बल्ले को देखता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दरअसल ये वही बल्ला था जिसे वो अपने जन्मदिन पर पाना चाहता था। बच्चे के चेहरे पर खुशी और आंखों में आए आंसू देखकर साफ समझ आता है कि उसके लिए ये सिर्फ एक नया बैट नहीं था, ये उसके माता पिता की तरफ से दिया गया ऐसा तोहफा था जिसमें उसकी मेहनत, प्यार और बच्चे की पसंद को समझने की भावना छिपी थी। सोशल मीडिया पर ये वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है। वीडियो में दादा पोती के रिश्ते की खूबसूरत झलक देखने को मिल रही है। दादाजी का स्नेह और पोती के प्रति अपनापन देखकर यूजर्स भावुक हो रहे हैं। लोग इस प्यारे पल को खूब पसंद और शेयर कर रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि दादाजी अपनी पोती के स्कूल जाने की तैयारी में उसका साथ देते दिखाई देते हैं। वो बड़े प्यार से उससे पूछते हैं कि क्या वो उसके स्कूल बैग में किताबें रखने में मदद करेंगे।
1: मैं हेल्प कर दूंगा, बैठा दूंगा बैग में, मैं जा देता हूं।
0: दादाजी का ये छोटा सा सवाल सुनने में भले ही सामान्य लगे लेकिन इसमें पोती के लिए उनका अपनापन और चिंता साफ दिखाई देती है। बच्चों के लिए स्कूल जाने की तैयारी रोजमर्रा की बात होती है, लेकिन दादाजी के लिए पोती के साथ बिताया यही छोटा सा पल बेहद खास नजर आता है। वीडियो में दादाजी जिस सहज अंदाज में उसकी मदद करने की बात करते हैं वो लोगों को काफी भावुक कर रहा है।
1: मैं हेल्प कर दूंगा, बैठा दूंगा।
0: सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस वीडियो को खूब देखा जा रहा है। वीडियो में बच्चे को आर्मी की यूनिफॉर्म पहनाई जा रही है। जैसे ही वो पूरी तरह सैनिक की वर्दी में तैयार होती है उसके चेहरे की खुशी देखते ही बनती है। वर्दी पहनते ही बच्चे का अंदाज भी पूरी तरह बदल जाता है। वो खुद को आर्मी की ड्रेस में देखकर काफी उत्साहित नजर आती है। उसके चेहरे पर मासूमियत तो है ही, साथ ही ऐसा आत्मविश्वास भी दिखता है जिसे देखकर परिवार वाले भी खुश हो जाते हैं। वीडियो का सबसे दिलचस्प हिस्सा उस समय आता है जब बच्ची वर्दी पहनने के बाद बेहद मासूम अंदाज में कहती है, मुझे टेररिस्ट को मारना है। बच्ची की बात सुनकर घर में मौजूद लोग मुस्कुराने लगते हैं। परिवार वाले मजाकिया अंदाज में उससे पूछते हैं कि आखिर उसके लिए टेररिस्ट कहां से लेकर आए।
2: अब आतंकवादी कहां से लाऊं तेरे लिए मैं? आतंकवादी कहां है यार? बेटा तुम छोड़ दियो, तुम आतंकवादी को कैसे मारोगी?
0: बच्चे की इस मासूम जवाब और उसके एक्सप्रेशन ने सोशल मीडिया यूजर्स का भी दिल जीत लिया। मामा के घर आकर डोरेमोन देखने वाला ये भांजा अब खुद डोरेमोन बन गया है। बच्चे ने अपनी पैंट के जेब को ही डोरेमोन की पॉकेट बना लिया और उसमें घर का सामान छुपा कर बैठ गया। इसके बाद एक एक करके जेब से सामान निकालने लगा जैसे डोरेमोन अपने गैजेट निकाल रहा हो, कभी कोई चीज तो कभी कुछ और। बच्चे का ये अंदाज देखने में बेहद मजेदार है। घर के सामान को अपनी जेब में छुपा कर जिस तरह बच्चा उसे निकाल कर दे रहा है उसकी क्यूटनेस ने लोगों का दिल जीत लिया। पढ़ाई का नाम सुनते ही ज्यादातर बच्चों के चेहरे उतर जाते हैं और जब बात केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल की हो तो इसे याद करना किसी पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है। लेकिन बेंगलुरु के एक टीचर ने इस मुश्किल काम को बच्चों के लिए खेल बना दिया।

0: वीडियो में साफ दिखता है कि कैसे आकाश ने बोरिंग केमिस्ट्री क्लास को एक एनर्जेटिक पार्टी में बदल दिया। ब्लैक बोर्ड पर पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स लिखे हैं और एक हाथ में स्केल पकड़े आकाश एक एक एलिमेंट की तरफ इशारा करते हुए मस्ती में गा रहे हैं। इस दौरान बच्चों का जोश देखने लायक था। बच्चे सिर्फ बैठे नहीं रहे बल्कि अपने टीचर के साथ सुर से सुर मिलाकर नाचने और गाने लगे। बच्चों का ऐसा उत्साह देखकर खुद टीचर आकाश भी अपने आप को रोक नहीं पाए और उनके साथ झूमने लगे। कश्मीर से खूबसूरत मोमेंट सामने आया है। इस पल को लोग कश्मीरियत भी बोल रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बुजुर्ग महिला जिन्होंने पारंपरिक कश्मीरी हेड रैप पहना हुआ है धीरे धीरे चलकर सीआरपीएफ जवान के पास आती है। उनके हाथों में ताजे फल हैं जो वो मुस्कुराते हुए जवान को भेंट करती है। जवान भी इस निस्वार्थ प्यार को देख कर अभिभूत हो जाता है। वो खुशी खुशी उस तोहफे को स्वीकार करता है और कैमरे की तरफ उन फलों को दिखाते हुए बेहद भावुक शब्दों में महिला का शुक्रिया अदा करता है।
1: भैया हम कश्मीर में खड़ा है न, माता जी देख लो, हमें मुहाय के लेके आए हैं, देख लो दिए कितना अच्छा, थैंक यू शुक्रिया, देख लो भैया कितना सम्मान के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद।
0: इस वीडियो की सबसे खास बात यह है कि महिला और जवान के बीच कोई लंबी चौड़ी बातचीत नहीं होती है, लेकिन चंद सेकंड का ये वीडियो कश्मीरियत, इंसानियत और सुरक्षा बलों के प्रति स्थानीय लोगों के सम्मान की एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर पेश करता है। इंडोनेशियाई सेना के एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों को भावुक कर रहा है। वीडियो में सेना की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जवानों के लिए खास समारोह रखा गया था। वहाँ ज्यादातर युवा सैनिकों के साथ उनके माता पिता, पार्टनर या परिवार के लोग मौजूद थे। हर तरफ खुशी और गर्व का माहौल था, लेकिन इसी बीच एक जवान ऐसा भी था जो अकेला खड़ा नजर आया। जहाँ बाकी सैनिक अपने करीबियों के साथ इस खास पल को सेलिब्रेट कर रहे थे, वहीं उस जवान के पास कोई अपना दिखाई नहीं दे रहा था। वो चुपचाप बाकी लोगों से थोड़ा अलग खड़ा था। तभी वहाँ मौजूद एक सीनियर अधिकारी की नज़र उस जवान पर पड़ी। उन्होंने उसकी स्थिति को समझने में देर नहीं लगाई। अधिकारी सीधे उसके पास पहुँचे और उसे अपने पास बुलाकर गर्मजोशी से गले लगा लिया। ये कोई औपचारिक सैन्य सलाम या बधाई नहीं थी, बल्कि बिल्कुल एक पिता की तरह दिया गया अपनापन था। शुरुआत में जवान ने खुद को संभालने की कोशिश की, उसने अपनी भावनाओं को रोक कर रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन शायद उस पल का अकेलापन और अचानक मिला प्यार दोनों ही उसके लिए बहुत ज्यादा थे। कुछ ही सेकंड में उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, वो अधिकारी के कंधे से लगकर रो पड़ा। सोशल मीडिया पर इन दिनों अफ्रीकी देश तंजानिया के एक नौजवान फजल का वीडियो काफी छाया हुआ है। फजल ने एक पंजाबी गाना इतनी खूबसूरती से गाया कि सुनने वाले हैरान रह गए। फजल को पंजाबी भाषा बिल्कुल नहीं आती, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जिस साफ अंदाज और सही उच्चारण के साथ ये गाना गाया है, उसने इंटरनेट पर सभी का दिल जीत लिया है।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: खबरें, कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: नवसारी के समुद्र से इस वक्त एक बड़ी और राहत भरी खबर निकलकर सामने आई है। समुद्र की ऊंची लहरों के बीच डूबती बोट में फंसी 9 जिंदगियों को सुरक्षित बचा लिया गया है। देखिए, दरअसल दोलाई बंदर से वलसाड की तरफ करीब 2.5 नॉटिकल माइल्स दूरी पर कृष्णपुर गांव की जयमाला बोट समुद्र में डूब गई। महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड इस बोट पर उस वक्त कुल 9 मछुआरे सवार थे और बोट के समुद्र में डूबने की खबर मिलते ही जिला प्रशासन ने बिना किसी देरी के रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। एनडीआरएफ की टीम ने बचाव अभियान में पूरी ताकत झोंक दी। उसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए समुद्र की चुनौती बड़ी थी, ऐसे में कोस्ट गार्ड से मदद मांगी गई। इसके बाद समुद्र में फंसी इन 9 जिंदगियों को बचाने के लिए कोस्ट गार्ड ने मोर्चा पूरी तरीके से संभाला। कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर समुद्र के ऊपर पहुंचा और शुरू हुआ जिंदगी बचाने का वो ऑपरेशन जिसमें हर पल बहुत अहम था। समुद्र की लहरों और मुश्किल हालात के बीच कोस्ट गार्ड के जवानों ने शानदार तालमेल और साहस दिखाते हुए सभी 9 मछुआरों का सफल एयरलिफ्ट रेस्क्यू करके दिखाया है और एक एक करके सभी मछुआरों को सुरक्षित समुद्र से बाहर निकाल लिया। और सबसे बड़ी बात इसमें यह रही कि ये जो खबर है, सभी 9 मछुआरे सुरक्षित रहे। हिमाचल प्रदेश के चंबा के भरमौर इलाके में भी 2 अलग अलग रेस्क्यू की घटनाओं को अंजाम दिया गया। एक घटना में 40 से 50 श्रद्धालुओं की उपंती दरिया के बीच जान बचाई गई, तो वहीं पर एक दूसरी घटना में एक युवक ने जान पर खेलकर दूल्हे की जान बचाई।
5: सैलाब का सामना कर रहे हिमाचल प्रदेश के चंबा के रेस्क्यू की ये 2 घटनाएं मिशन जिंदगी का जीता जागता सबूत है। पहली तस्वीर 40 से 50 श्रद्धालुओं की जिंदगी बचाने की है, तो दूसरी तस्वीर एक दूल्हे के रेस्क्यू की है। चंबा का भरमौर इलाका इन दिनों फ्लैश फ्लड का सामना कर रहा है। बलोट गांव के 84 चला में बादल फटने के बाद आए सैलाब की वजह से लोहे का एक पुल बह गया। बहाव इतना तेज था कि आने जाने के लिए बनी सड़क भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। सड़क और पुल के बह जाने से मां भगवती खुंडी वाली के दर्शन के लिए जा रहे करीब 40 से 50 श्रद्धालु बीच रास्ते में ही फंस गए। तस्वीरों में देख सकते हैं कि बहाव इतना तेज है कि इसके चपेट में आने से लोग खुद को बहने से बचा नहीं सकते थे। ऐसे मुश्किल वक्त में गांव वाले किसी देवदूत की तरह वहां पहुंचे। सभी श्रद्धालुओं को रास्ता दिखाते हुए गांव वाले आगे बढ़े और सैलाब के किनारे होते हुए एक ऐसी जगह पहुंचे जहां लोगों ने दरिया के ऊपर लकड़ी का एक अस्थायी पुल बनाकर सभी का सुरक्षित रेस्क्यू किया। लकड़ी के अस्थायी पुल पर चलते हुए सभी श्रद्धालु दरिया के दूसरी ओर पहुंचे, जिससे उनकी जान बच सकी। मंगलवार को ज्येष्ठ मंगलवार के अवसर पर माता के डल झील में पवित्र स्नान करने की भी परंपरा है, जिसके चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना रहती है। हालात को देखते हुए ऐसे में सावधानी की जरूरत है। बड़ग्राम में फ्लैश फ्लड के बीच एक और मिशन जिंदगी को अंजाम दिया गया। हुआ यूं कि वहां फ्लैश फ्लड आने से पनाली नाला अचानक विकराल रूप में बहने लगा, जिससे बारात फंस गई। संकट की इस घड़ी में एक स्थानीय लड़के ने साहस दिखाते हुए दूल्हे की जान बचाई। लड़के ने अपनी जान जोखिम में डालते हुए दूल्हे को अपनी पीठ पर उठाया और नाले को सुरक्षित पार करवाया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चंबा से विशाल आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मारधाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: मंगल का कौन सा योग वैवाहिक जीवन में अलगाव ले आता है? मंगल का कौन सा योग साहस और आत्मविश्वास को कमजोर कर देता है? मंगल का साहस को कमजोर कर देता है। मंगल बनता है, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मारधाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: झूलनोत्सव के बीच राम मंदिर का भव्य श्रृंगार, सुनहरी रोशनी से नहाया मंदिर का शिखर, सावन के पवित्र महीने में देखा अनोखा नजारा। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की तैयारियां तेज। मुंबई के प्रसिद्ध काला चौकी महागणपति का हुआ आगमन। सिंह पर सवार नजर आए 22 फीट ऊंचे बप्पा। पवित्र सावन महीने में धूमधाम से जा रही है कांवड़ यात्रा। जौनपुर में शिव भक्तों पर की गई फूलों की बारिश। प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से बरसाए फूल। पहाड़ से मैदान तक मौसम की मेहरबानी बरकरार। शिमला में 21 अगस्त तक बारिश का अलर्ट। चंडीगढ़ में जमकर बरसे पतरा। महिला हॉकी वर्ल्ड कप में भारत का दबदबा। साउथ अफ्रीका को 6-1 से हराकर पूल डी में हासिल किया टॉप स्थान। अब इंग्लैंड से होगा सामना।

0: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं जान दांव पर लगाकर जान की हिफाजत करने वाली रेस्क्यू टीम की। अगस्त आधा गुजर चुका है, पर पहाड़ से लेकर मैदान तक बादल जमकर बरस रहे हैं, और इसकी वजह से खासतौर पर अगर हम देखें तो उत्तराखंड और हिमाचल में जिंदगी का कड़ा इम्तिहान है। अचानक बारिश से, किसी भी वक्त सैलाब से सामना हो रहा है, और लेकिन दिन हो या रात SDRF की जो टीमें हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैद हैं, जुटी हुई हैं, और नदी नालों के उफान में फंसे लोगों को लगातार बचाया जा रहा है। आज आपको ऋषिकेश, देहरादून और चंबा समेत कई इलाकों में रेस्क्यू टीम का हैरतअंगेज हौसला दिखाएंगे। इन दिनों पहाड़ी इलाकों में क्यों सावधान रहने की आवश्यकता है, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ बात होगी काशी की, जहां पर गंगा का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है, और इसी वजह से घाट की बजाय छत पर गंगा आरती हो रही है। गंगा के घाटों पर सुरक्षा के इंतजाम तमाम आपको दिखाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के साथ, जहां पर मॉनसून की भारी बारिश के बाद नदी नालों में उफान देखने को मिल रहा है। ऊपरी इलाकों में तेज बारिश की वजह से अचानक नदियों में सैलाब आ गया है, और इसी वजह से ऋषिकेश में लोगों की जान पर बनाई है। लेकिन 24/7 मुस्तैद SDRF टीम ने पानी के तेज बहाव में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को बचा लिया। इसी तरह देहरादून में आधा दर्जन छात्रों की जान बचाई गई, जो नदी के बीच में टापू पर फंस गए थे। रिपोर्ट देखिए।
1: बादल बंदिश नहीं जानते, कहीं गरजे तो कहीं बरसे, और ऐसे बरसे कि सैलाब आ गया। पहाड़ों पर बारिश की मनमर्जियां ऐसी ही हैं कि अफरा तफरी मची है। कहीं बादल फटने से पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं नदियों में उफान है जो लोगों के लिए बड़ा खतरा है। पर शुक्र है कि इस चुनौती से निपटने के लिए रेस्क्यू टीम दिन रात जुटी हुई है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के ऋषिकेश की हैं, जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से बीन नदी में अचानक जलस्तर बढ़ गया। नदी की तेज धार की चपेट में ये कार आ गई। नदी का ऐसा रौद्र रूप और रात का वक्त, कार में फंसे दो नौजवानों को बचाना लगभग नामुमकिन लग रहा था, लेकिन SDRF के जवानों ने मोर्चा संभाला। अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर उन्होंने इस उफनती नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रस्सी के जरिए कुछ जवान नदी में उतरे और कार के करीब पहुंच गए। दूसरे सिरे पर मौजूद टीम के सदस्यों ने रस्सी को मजबूती से थामे रखा। नदी में पानी का बहाव इतना तेज था कि जरा सी चूक भारी पड़ सकती थी, लेकिन रेस्क्यू टीम ने एक एक करके पहले लड़कों को कार के अंदर से बाहर निकाला और फिर उन्हें थाम कर धीरे धीरे किनारे तक ले आए। जान बची तो लाखों पाए, पर ऐसे मुश्किल समय में अगर SDRF के जवान देवदूत बनकर नहीं आते तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। रेस्क्यू टीम की दिलेरी और उनका कौशल दिखाने वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है, और लोग इनके हौसले की तारीफ कर रहे हैं।
2: ये मामला हमें, जो हमारी टीम है डालवाला में, हमें सूचना मिली लगभग 9:15 के लगभग कि एक मैक्स बीन नदी में पलट गई और जो नीचे चली गई। तो हमारी टीम तुरंत यहाँ पर पहुंची है, और यहाँ पे देखा तो एक व्यक्ति उसमें ऊपर बैठा हुआ दिखाई दिया। तो हमारी टीम रोप लगा के अपने उपकरणों के माध्यम से उस तक पहुंची है, नदी में, और उसको रेस्क्यू कर लिया गया और उसको अस्पताल गया। तो उसके बाद पता चला कि एक व्यक्ति अंदर था जो बुरी तरह से फंसा था। उसके लिए टीम द्वारा हमारे बहुत भरसक प्रयास किया गया, और कई प्रयासों के बाद हम उस व्यक्ति का रेस्क्यू कर गए, और उसको भी हमें हमारे द्वारा टीम द्वारा हॉस्पिटलाइज किया गया। हमारे सामने हमें दिखा कि जो व्यक्ति अंदर है वो भी चिल्ला रहा था कि मुझे बचाओ, और हमारी टीम उसी हौसले के साथ आगे बढ़ी, और सभी हमारे जो जितने भी हमारे यहाँ पे टीम के मेंबर्स हैं, सभी के प्रयास से हमारे रोप के माध्यम से उस तक पहुंच बनाई और उस व्यक्ति को हमारे द्वारा टीम द्वारा रेस्क्यू किया गया।
1: अगस्त आधा गुजर चुका है लेकिन उत्तराखंड में बेहिसाब बारिश का सिलसिला जारी है और उसका असर ये कि ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। आसमान से ली गई गंगा की ये तस्वीरें भले ही भव्य नजर आ रही हों, पर जमीनी सच्चाई ये है कि इस वक्त घाटों तक पानी है और नदी का प्रवाह ऐसा है कि घाटों पर गिनती के लोग हैं। शाम के वक्त जहां गंगा आरती होती है वहां तक गंगा का पानी पहुंच चुका है। हालात देखते हुए एसडीआरएफ की टीमें पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है।
2: नदी का जो जलस्तर है यानी कि चंद्रभागा का भी जलस्तर थोड़ा बढ़ गया है, यहाँ तक कि खारासोत का भी स्तर जलस्तर बढ़ चुका है। हमारी टीम अभी वहां पर गई थी तो कुछ लोग वहां पे नदी नालों में चले गए थे तो उनको हमने वहां पे हमारे जो लाउड के माध्यम से चेतावनी दी जा रही है कि आप नदी नालों में न जाएं और उस कारण गंगा का जलस्तर भी बढ़ रहा है और देर रात अभी भी बारिश चल रही है। हमारी टीमें एसडीआरएफ की टीमें पूरी तरह से अलर्ट है और किसी भी प्रकार की कोई हमें सूचना मिली तो हमारी टीम वहां पर रिस्पॉन्स करती है। ये जो अभी पानी बढ़ा है हमारी टीमें वहां पर गई हैं, सभी को जो स्थानीय लोग हैं जिनके कुछ कुछ लोग वहां पे आसपास जो घर है तो सभी को हमारे द्वारा बताया गया कि आप पानी जो जलस्तर है उसमें नजर बनाए रखें और जैसे पानी बढ़ता है तो आप उससे दूर रहें, किसी भी प्रकार की कोई अपना जोखिम न लें।
1: वैसे ऋषिकेश ही नहीं उत्तराखंड के कई इलाकों में तेज बारिश के बाद चुनौतियां बढ़ गई हैं। देहरादून में स्वर्णा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और कई छात्रों की जान जोखिम में आ गई। ट्रैकिंग करने गए यूपीईएस यूनिवर्सिटी के 6 छात्रों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि नदी के पास एक मुसीबत उनका इंतजार कर रही है। जब गए थे सब कुछ ठीक ठाक था पर अचानक नदी में जैसे सैलाब आ गया। सभी छात्र नदी के बीच एक टापू में फंस गए। गनीमत रही कि छात्रों के वहां फंसे होने की खबर तुरंत एसडीआरएफ को मिल गई और टीम ने इस सैलाब का सामना करते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रात के वक्त यह ऑपरेशन आसान नहीं था पर रेस्क्यू टीम ने सूझबूझ दिखाई, लोहे के पाइप को पुल की तरह इस्तेमाल किया। किनारे से टापू तक लगे पाइप के जरिए छात्रों को एक एक करके निकाला गया। अब टिहरी गढ़वाल की ये तस्वीरें भी देख लीजिए। कहने को तो ये बरसाती नाला है लेकिन मूसलाधार बारिश की वजह से इसमें उफान आ गया। कुछ लोग जो वहां मौजूद थे उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला और देखते ही देखते वो बेबस हो गए। लेकिन एसडीआरएफ की टीम अलर्ट पर थी, जवानों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया और दरिया के बीच जाकर रस्सियों की मदद से सभी को बाहर निकाल लिया। जो लोग इस सैलाब में फंस गए थे उनमें कुछ सैलानी भी थे जिन्हें पहाड़ों की ऐसी बारिश और सैलाब का जरा भी अंदाजा नहीं था लेकिन सुरक्षित निकलने के बाद उन्होंने राहत की सांस ली।
3: पिताजी का नाम क्या है?
4: धर्म सिंह।
3: धर्म सिंह। उम्र कितनी है आपकी?
4: उम्र 36।
3: 36 साल।
4: घूमने?
3: नहीं तो
4: ओपन बनाया तुम बस। ठीक हो आप दोस्त का है वो तिरंगे साइड
3: तो मैं
4: किनारे।
1: देहरादून में बेहिसाब बारिश से नदी नालों में तेज तूफान है। टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास तमसा नदी भी रौद्र रूप में है और हालात ये हैं कि श्रद्धालुओं से नदी के पास न जाने की अपील की जा रही है। बारिश के चलते देहरादून के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। ऐसी तस्वीर उत्तराखंड के कई इलाकों में है और लोगों को नदी नालों से दूर रहने की अपील की जा रही है।
5: इस तरह से कई स्थानों पर बहुत ज्यादा बरसात हुई है और बरसात के कारण निश्चित रूप से कुछ दिक्कतें भी हुई हैं। कई कई जगह नदियों का पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है। ऋषिकेश के पास में जलस्तर काफ़ी हद तक बढ़ गया है। आज की बात करें तो आज देहरादून के लिए, टिहरी के लिए, पौड़ी और ऊधम सिंह नगर 4 जनपदों के लिए ऑरेंज अलर्ट है। सभी जनपदों को एसईओसी से निर्देश जारी किए गए हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी संबंधित से अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर ऐसे किसी स्थान पर रह रहे हैं जहाँ पानी के बढ़ने की संभावना है, जलस्तर बढ़ने की संभावना है, बाढ़ आने की संभावना है, ऐसे स्थानों पर जो लोग रह रहे हैं सावधानी के साथ रहें, अलर्ट पे रहें ताकि किसी प्रकार से पानी का स्तर बढ़ने पर उनको सकुशल वहाँ से निकासी संभव हो सके। इसके साथ साथ मैं सभी से यह भी अनुरोध करूँगा कि अपने मोबाइल में सचेत ऐप डाउनलोड कर लें ताकि मौसम के अपडेट लगातार उनको मिलते रहें और जो लोग ट्रेवल करना चाहते हैं अनावश्यक रूप से ट्रेवल करने से बचें।
1: ऐसी बारिश में चुनौतियां दूसरी भी हैं। पौड़ी देर प्रयाग मार्ग पर सौर के करीब पहाड़ी से भारी मलबा आने के कारण यातायात पूरी तरह से ठप नजर आ रहा है। सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई, यात्रियों को देर तक इंतजार करना पड़ा। हालांकि खबर मिलते ही प्रशासन तुरंत एक्टिव हो गया, मशीन से मलबा हटाने का काम शुरू हुआ और काफी मशक्कत के बाद रास्ता दुरुस्त किया गया। पौड़ी गढ़वाल में लगातार बारिश की वजह से भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं। महरगांव में भूस्खलन के बाद 4 लोग मलबे में दब गए। सूचना मिलते ही प्रशासन, SDRF और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और एक महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मौसम का रुख देखते हुए प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है और नदी नालों पर नजर बनाए हुए है। ऋषिकेश से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: आइए बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। उत्तराखंड की तरह ही हाल हिमाचल का देखने को मिल रहा है। कई जिलों में मूसलाधार बारिश की वजह से रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित है, पर मुश्किल बादल फटने के बाद तेज बारिश से है। चंबा में जब ऐसा हुआ तो नदी में सैलाब आ गया। पहाड़ों से आए मलबे की चपेट में आने से लोहे का एक पुल बह गया और लगभग 50 तीर्थयात्रियों की जान मुश्किल में फंस गई, लेकिन रेस्क्यू टीम ने ऑपरेशन चलाकर उनको बचा लिया। इसी तरीके से कुल्लू में भी नदी के उफान ने कुछ सैलानी फंस गए थे, जिन्हें SDRF ने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से सकुशल बाहर निकाला। रिपोर्ट देखिए।
6: एक तरफ सैलाब है, दूसरी ओर जिंदगी, चुनौती बड़ी है। ऐसे हालात में कब, कहां और कैसे फंस जाएगा कहना मुश्किल है। बेहिसाब बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में नदी नाले उफान पर हैं और जिंदगी का कड़ा इम्तिहान है। ये तस्वीरें चंबा की हैं, जहां बादल फटने के बाद जैसे सैलाब आ गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि उसके साथ पहाड़ों से मलबा नीचे आने लगा और भारी मलबे की वजह से लोहे का पुल बह गया। पुल नदारद और रास्ता बंद। अब 40 से 50 श्रद्धालुओं के सामने संकट खड़ा था, जो माँ भगवती खुंडी वाली के दर्शन के लिए जा रहे थे। ये लोग ना तो आगे जा सकते थे और न पीछे। श्रद्धालुओं के फंसे होने की खबर जैसे ही रेस्क्यू टीम को मिली, वो एक्टिव हो गए, लेकिन उनके साथ स्थानीय लोग भी जुट गए। फिर शुरू हुआ श्रद्धालुओं को इस दरिया से निकालने का ऑपरेशन। बेहद सावधानी से रेस्क्यू टीम के लोग रस्सी के जरिए उस पार पहुंचे और एक एक करके सभी श्रद्धालुओं को दरिया के किनारे पर लाया गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती थी, लेकिन धैर्य और हौसले के साथ इन सभी श्रद्धालुओं को सकुशल निकाल लिया गया। चंबा ही नहीं, कुल्लू में भी भारी बारिश के चलते हालात चुनौतीपूर्ण है। नदी में पानी कब अचानक बढ़ जाएगा इसका अंदाजा नहीं। देखिए कैसे कुल्लू की मणिकर्ण घाटी में पार्वती नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और नदी के बीच चट्टान पर बैठे दिल्ली के सैलानी पानी से घिर गए। बाहर निकलने का रास्ता बंद होने के बाद स्थानीय युवाओं और आपदा मित्रों ने रस्सी के सहारे रेस्क्यू शुरू किया। नदी की बेहद तेज धार में ये काम जोखिम भरा था। हालांकि किनारे खड़े लोगों ने मजबूती से रस्सी थाम रखी थी, फिर भी लहरों का सामना करते हुए इस पार आना आसान नहीं था। पर कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय युवक जान जोखिम में डालकर रस्सी के सहारे नदी के तेज बहाव के बीच पहुंचे और सभी सैलानियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लाहौल स्पीति के दूर दराज इलाकों में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। चोखंग इलाके में पहाड़ियों पर हुई तेज बारिश के बाद गौरी नाले में अचानक पानी का बहाव बढ़ गया और देखते ही देखते नाला उफान पर आ गया। नतीजा ये हुआ कि भारी मात्रा में मलबा और पत्थर सड़क तक पहुंच गए और लिंक रोड का करीब 400 मीटर हिस्सा मलबे से फट गया और आवाजाही रुक गई। हालांकि प्रशासन तेजी से मलबा हटाने में जुटा है। जिस तरह से पहाड़ों पर आफत का पानी बरस रहा है और भूस्खलन हो रहा है, उसने लोगों की जिंदगी को संकट में डाल रखा है, लेकिन सैलानियों के लिए भी सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि पहाड़ों में मौसम और नदियों का मिजाज कभी भी बदल सकता है। ऊपरी इलाकों में बारिश होने पर नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ सकता है और तब नदी या नाले के पास जाना खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए प्रशासन लगातार पर्यटकों से अपील कर रहा है कि जब तक मूसलाधार बारिश हो रही है, नदी नालों से सुरक्षित दूरी पर रहें और जोखिम न उठाएं। चंबा से विशाल आनंद और कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: तो देखिए, हिमाचल में अगले चार दिनों तक जबरदस्त बारिश का अनुमान जताया गया है। बिलासपुर, कांगड़ा और मंडी में ऑरेंज अलर्ट है, तो वहीं पर चंबा, कुल्लू, सोलन और शिमला में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। राज्य में 22 अगस्त तक बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान है। आज शिमला में जमकर बदरा बरसे, इसलिए मॉल रोड पर रंग बिरंगे छाते नजर आए। सैलानियों ने भी इस बारिश का जमकर लुत्फ उठाया। शिमला में लगातार हो रही बारिश की वजह से तापमान कम हो गया है और घिरे हुए बादलों की वजह से वहां की खूबसूरती में और चार चांद लग गए। चलिए पहाड़ों के बाद अब मैदान का हाल देख लेते हैं। वाराणसी में इन दिनों गंगा घाट पर भीड़भाड़ पहले जैसी नहीं है, सैलानियों की तादाद भी कम है। वजह है गंगा का बढ़ता हुआ जलस्तर। गंगा खतरे के निशान से अभी भी नीचे है, लेकिन तमाम घाटों पर पानी आ चुका है और इसी वजह से घाट पर सुरक्षा ज्यादा बढ़ा दी गई है। आरती की जगह अब बदल दी गई है। नमो घाट पर बैरिकेडिंग है और छोटी नावों पर रोक लगा दी गई है। देखिए वाराणसी से ये खास रिपोर्ट।
7: गंगा के दोनों किनारों को जोड़ता है यह पुल और यहाँ से देखिए तो बनारस में गंगा की विशाल धारा का अंदाजा होता है, पर सैलानी दूर से नहीं घाट पर जाकर गंगा के निर्मल पानी का अनुभव लेना चाहते हैं, नाव पर घूमना चाहते हैं, पर इन दिनों ये मुमकिन नहीं क्योंकि बारिश की वजह से गंगा का जल स्तर बढ़ गया है। यहाँ तक कि नमो घाट पर बने 75 फीट ऊंचे नमस्ते के स्कल्पचर तक पानी है और सुरक्षा के मद्देनजर घाट की बैरिकेडिंग कर दी गई है। सुरक्षा गार्ड्स लोगों को आगाह कर रहे हैं।
8: धीरे धीरे ही सही वाराणसी में गंगा ने अपना रौद्र रूप अख्तियार करना शुरू कर दिया है। नमो घाट जो लोगों के बीच में बहुत ही पसंद किया जाने वाला नया घाट है, वहां पर अभी हमारी मौजूदगी है और देख सकते हैं कि हमारे ठीक पीछे 75 फीट का नमस्ते का स्कल्पचर है, वो भी जलमग्न होना शुरू हो गया है। यहाँ तक बाढ़ का पानी पहुंचना शुरू हो गया है। केंद्रीय जल आयोग की डेली फ्लड बुलेटिन की मानते हैं तो गंगा का जल स्तर चेतावनी बिंदु से महज 3.5 मीटर, तो खतरे के निशान से 4.5 मीटर ही शेष रह गया है। नमो घाट बनारस का चौपाटी कहा जाता है। यहाँ लगातार जो लोग आते हैं, आस्थावान पर्यटक सैलानी आते हैं, वे काफी संख्या में होते हैं, जिनको हटाने के लिए, जिनको आगाह करने के लिए लगातार गार्ड यहाँ अलर्ट हैं और लोगों को इस बाढ़ के पानी के नजदीक जाने से, घाट की सीढ़ियों के नजदीक जाने से मना कर रहे हैं। तो वहीं एहतियात के तौर पर बनारस में सभी तरह के नौका का संचालन अगले आदेश तक रोक दिया गया है। तो वहीं NDRF, जल पुलिस और गोताखोर की भी ड्यूटी लगाई गई है। तटवर्ती इलाकों के लोगों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। 5 बार गंगा आरती का स्थल भी बदल दिया गया है और अब गंगा आरती छत पर की जा रही है। माना जा रहा है कि गंगा अगर यूं ही बढ़ती रही, जलस्तर में बढ़ाव देखा गया, तो आने वाले दिनों में तटवर्ती इलाकों के लोगों की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं।
7: गंगा में पानी के बढ़ते प्रवाह को देखते हुए वाराणसी की चौपाटी कहे जाने वाले नमो घाट पर आने वाले लोगों की संख्या काफी कम हो गई है। स्थानीय दुकानदारों की रोजी रोटी पर तो असर है ही, पर्यटकों और श्रद्धालुओं में भी निराशा है।
9: इस समय बहुत नुकसान हो रहा है और धंधा बहुत खराब चल रहा है। बाढ़ की वजह से भीड़ नहीं आ रही है, यात्री लोग आ नहीं रहे हैं, बहुत दिक्कतें, हम लोग को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
10: आमदनी कितनी कम हो गई है?
9: बहुत ज्यादा कम हो गई,
10: खर्चा उतना ही है। तो अभी कब तक इसी तरह लगा रहेगा?
9: 2 महीना लग जाएगा लगभग।
11: अभी कुछ भी नहीं देख पा रहे, बोट चल नहीं रही है, तो इससे जो हमारा यहाँ आने का इच्छा था वो सब खत्म सा हो गया,
10: अधूरा ही रह
11: गया। हाँ, अधूरा रह गया।
10: और घाटों का आपसी कनेक्शन भी कटा हुआ?
11: हाँ, कटा हुआ। हाँ, एक दूसरे घाट से जा नहीं सकते।
10: इससे थोड़ी निराशा है?
11: निराशा तो है ही, अभी इतनी दूर से आए हैं इसी काम के लिए, सिर्फ बाबा के दर्शन हो पाएंगे हमें।
12: चारों तरफ घूम भी नहीं पा रहे हैं बारिश की वजह से, पानी पानी है।
13: भदोही के रहने वाले हैं, यहाँ घूमने आए थे और यहाँ पे फिलहाल बोटिंग के लिए आए थे और बोटिंग बंद हो गई है, तो काफी डिसअपॉइंटेड हो गए हम लोग। अब ये सब भी नहीं चल रहा और बाकी अगर वैसे होता ये नाव में भी घूम लेते, वो भी बंद हो गया है पानी बढ़ने की वजह से।
10: अभी नमो घाट पे क्या कंडीशन है? पानी यहाँ भी भर गया है?
13: अब पानी है तो बस देख के घर जाना पड़ेगा वापस, ऐसे ही बिना घूमे टहले।
14: घाटों पे थोड़ा रश भी है और लेकिन पानी का स्तर बढ़ा हुआ है, वो उस वजह से हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे। पानी में पीछे से भी पानी थोड़ा वो आ रहा है, मिट्टी वाला आ रहा है। तो बोटिंग वगैरह हो नहीं रही, तो जो हम बोटिंग में जाना चाहते थे वो नहीं जा पा रहे।
15: थोड़ी सी निराशा
14: तो रहती है। अभी इतनी दूर से आए हैं तो रहेगा, बार बार आना होता नहीं है। और भगवान बाबा जी की कृपा रही तो हम अगले सावन फिर आएंगे।
16: पानी का स्तर काफी बड़ा हुआ है जिसके कारण बोटिंग वगैरह बंद की हुई है और बहुत सारे घाट आपस में से जुड़े हुए नहीं है।
7: वाराणसी में गंगा का जलस्तर अभी खतरे के निशान से 4.5 मीटर नीचे है, पर प्रति घंटे 4 सेंटीमीटर का बढ़ाव दर्ज किया जा रहा है। माना जा रहा है कि गंगा का जलस्तर यूं ही बढ़ता रहा तो जल्दी ही नमो घाट पूरी तरह से पानी में समा जाएगा, इसलिए एहतियात के तौर पर जगह जगह गंगा घाटों पर NDRF और जल पुलिस की तैनाती कर दी गई है।
17: आप लोग किनारों पर ही स्नान करें, किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें।
7: ऐसा नहीं कि गंगा के घाट पर पूजा पाठ और दूसरे धार्मिक क्रियाकल्प बंद है, सब कुछ पहले जैसा ही है, पर गंगा आगे बढ़ती जा रही है और घाट पर आरती के लिए बनाए गए प्लेटफॉर्म पीछे जा रहे हैं। रस्सियों का जो घेरा है उसके आगे नहाने की इजाजत नहीं। परेशानी पुरोहित और यजमान दोनों को है, पर बारिश के दिनों में ये तस्वीर नई नहीं, छोटे नावों और मोटर बोट के चलने पर रोक है।
8: एहतियातन देख सकते हैं कि नावों के संचालन पर, मोटर बोटों के संचालन पर फिलहाल प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसके चलते घाट किनारे नावें बंधी हुई हैं, थमी हुई हैं और लगातार नाविक भी इस पर निगरानी रखे हुए हैं। तो वहीं हम इस समय वाराणसी के 80 घाट पर हैं, इसके बगल में गंगा महल घाट है, फिर रीवा और तुलसी घाट, लेकिन साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो घाटों का आपसी कनेक्शन है एक घाट से दूसरे घाट तक, 84 घाटों का आपसी जो संपर्क का रास्ता है वे टूट गया है और लगातार बढ़ाव जारी रहने से जो तीर्थयात्री आ रहे हैं, जो यहाँ घूमने लोग आ रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं, आस्थावान आ रहे हैं, उनको भी काफ़ी निराशा हाथ लग रही है क्योंकि नौका संचालन पर रोक लगी हुई है और माना जा रहा है कि अगर गंगा के जलस्तर में यूं ही बढ़ोतरी जारी रही तो दिक्कत और बढ़ेगी। फिलहाल तटवर्ती इलाकों के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, या यहाँ रोजी रोटी चलाने वाले हों या गंगा आरती करने वाले आस्थावान हों, लगातार अपने साजो सामान को ऊपर की ओर शिफ्ट कर रहे हैं और आज 5वीं बार दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती भी पीछे शिफ्ट होगी। माना जा रहा है कि ये आरती आज छत पर होगी, तो लगातार गंगा के जो बढ़ते जलस्तर से लोगों की दुश्वारियां बढ़ती चली जा रही हैं और माना जा रहा है कि अगर यूं ही गंगा का जलस्तर बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में मुश्किलें और भी बढ़ेंगी।
7: वाराणसी में गंगा घाट पर जो रौनक होती है वो बारिश के इन दिनों में थोड़ी कम है। गंगा में पानी जब तक बढ़ रहा है और घाट सुरक्षित नहीं, तब तक हालात ऐसे ही रहने वाले हैं। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
18: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
1: सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति, हरियाली और उत्सवों का पवित्र और प्रिय महीना माना जाता है, और इस महीने में विशेषकर कावड़ यात्रा की भव्य छटा देखने को मिलती है। इस बार भी बिहार के मुंगेर में कावड़ मार्ग पर कई भव्य रंग देखने को मिल रहे हैं।

0: सावन के महीने में कावड़ पथ की रौनक देखते ही बनती है। बिहार के मुंगेर में हर दिन असरगंज कच्ची कावड़िया पथ पर आस्था और उत्साह का संगम दिखता है। बम बम भोले और हर हर महादेव का जय घोष करते हुए बड़ी संख्या में शिव भक्त अनोखी छटा बिखेरते हुए बैद्यनाथ धाम की ओर बढ़ते दिखते हैं। ये दृश्य हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब इस तस्वीर को ही देखिए, इसमें भक्त अपने आराध्य को कंधे पर विराजमान कर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। भोलेनाथ अपने भक्तों के भाव देखते हैं, उनके प्रति अपने अगाध आस्था को प्रदर्शित करने के लिए भक्त बाबा को चश्मा मुकुट सबसे पूरी तरह सजाकर दिव्य रूप में अपने साथ ले जा रहे हैं। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से आया कांवड़ियों का ये दल सुल्तानगंज से जल भरने के बाद झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर जल अर्पित करने बढ़ता चला जा रहा है।
1: हम लोग अयोध्या से चलकर यहाँ सुल्तानगंज आए और बाबा भोलेनाथ के दरबार में जा रहे हैं। बाबा का ये जो रूप है बहुत ही निराला हम लोगों को लगा, इसीलिए बाबा को इस गेटअप में हम लोगों ने तैयार किया है। चश्मा लगा के हम लोग ले चल रहे हैं, खुद चश्मा लगाते हैं और बाबा को भी चश्मा लगा के लेके चल रहे हैं।
0: आस्था की इसी यात्रा में कोई कंधे पे कांवड़ उठा रहा है तो कोई अपने बच्चों को भंगी में लेकर बाबा के दरबार की ओर बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल निवासी शिव भक्त अपने 7 महीने के बेटे को भंगी में बैठाकर बाबा की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, तो प्रयागराज निवासी शिव भक्त अपनी 2.5 साल की बिटिया को गमछे से बनी भंगी में लेकर जा रहे हैं। सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर लगभग 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके भक्त देवघर पहुंचते हैं और भगवान भोले शंकर को जल अर्पित करते हैं। इस दौरान कांवड़ मार्ग में शिव भक्तों के लिए की गई व्यवस्थाएं उनकी राह आसान कर देती है।
2: बहुत अच्छा है, लाइट है और निःशुल्क जल सेवा भी है, शौचालय है, सुलभ शौचालय है, मेडिसिन वगैरह भी मिल रही है और क्या ही चाहिए, ये तो काफी है।
0: बैद्यनाथ धाम की महिमा अपरंपार मानी जाती है। यहाँ सावन के पूरे महीने कांवड़ियों की भीड़ रहती है, विशेषकर सोमवार को बाबा पर जल अर्पित करने के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ता है।
3: जो हमारे ज्योतिर्लिंग में द्वादश ज्योतिर्लिंग में एक हमारे ऐसे ये पांचवा है और यहाँ पे शिव और शक्ति, शक्ति के ऊपर साथ में विराजमान है शिव, एक ऐसा शिव है जहाँ पे सिंदूर भी चढ़ता है। चूंकि शक्ति होने के कारण ये परंपरा बनी हुई है और यहाँ पे एक चीज खास ये है, और जगह में सब आप त्रिशूल देखेंगे लेकिन यहाँ बाबा बैजनाथ के ऊपर पंसूर देखेंगे, इनका एक अलग ही महत्व रहा है और हम लोग अपने जीवन में उसको बहुत हमें देखने को मिला है कि इनकी कृपा सब पर बनी रहती है और आगे भी बनी रहे हर हर महादेव।
0: बैद्यनाथ धाम में सावन ही नहीं बल्कि भादों के महीने में भी कांवड़ियों और शिव भक्तों का तांता लगा रहता है। सावन जहां मुख्य कांवड़ मेला मास माना जाता है, वहीं भादो मास में भी श्रद्धालु और डाक कांवड़िये बाबा का जलाभिषेक करने के लिए पहुंचते हैं। मुंगेर से गोविंद कुमार और देवघर से शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: मंगल का कौन सा योग वैवाहिक जीवन में अलगाव ले आता है? मंगल का कौन सा योग साहस और आत्मविश्वास को कमजोर कर देता है? मंगल का कौन सा योग जीवन में प्रचंड दुर्घटना का कारण बनता है? कौन से हैं मंगल के अशुभ योग और क्या है उनका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
8: झूलनोत्सव के बीच राम मंदिर का भव्य श्रृंगार, सुनहरी रोशनी से नहाया मंदिर का शिखर, सावन के पवित्र महीने में देखा अनोखा नजारा। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की तैयारियां तेज, मुंबई के प्रसिद्ध काला चौकी महागणपति का हुआ आगमन, सिंह पर सवार नजर आए 22 फीट ऊंचे बप्पा। पवित्र सावन महीने में धूमधाम से जारी है कांवड़ यात्रा, जौनपुर में शिव भक्तों पर की गई फूलों की बारिश, प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से बरसाए फूल। पहाड़ से मैदान तक मौसम की मेहरबानी बरकरार, शिमला में 21 अगस्त तक बारिश का अलर्ट, चंडीगढ़ में जमकर बरसे पतरा। महिला हॉकी वर्ल्ड कप में भारत का दबदबा, साउथ अफ्रीका को 6-1 से हराकर पूल डी में हासिल किया टॉप स्थान, अब इंग्लैंड से होगा सामना।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
7: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी किसी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं, यहां हर किसी के हाथ में एक कैमरा है, हर घटना हर तस्वीर कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है, कोई पुरानी घटना बताकर परोस दी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। लेकिन फैक्ट चेक के जरिए हम ऐसी खबरों की पड़ताल करते हैं, आप तक सही और सच्ची खबर लेके आते हैं। जैसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात होगी उस वायरल वीडियो की जिसको शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि नेपाल में अवैध घुसपैठियों की बस्ती को आग के हवाले कर दिया गया। सच्चाई क्या आ गया जानिए। इसके अलावा हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी जिसको शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि हरियाणा के चरखी दादरी में 6 अगस्त को हुई गोलीबारी का असली वीडियो है। सच्चाई आगे बताएंगे, शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
7: सोशल मीडिया पर भीषण आग का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आग इतनी तेज है कि आसमान में धुएं की लपटें नजर आ रही है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि ये नेपाल के एक ऐसे गांव का वीडियो है जहां अवैध घुसपैठिए रहते हैं। दावा है कि इस पूरे गांव को आग के हवाले कर दिया गया है, जिसके बाद पूरा इलाका जलकर खाक हो गया। क्या है सच्चाई, देखिए हमारी रिपोर्ट।
9: हाल ही में नेपाल में धार्मिक प्रतीकों और लाउडस्पीकर विवाद को लेकर दो समुदायों के बीच हिंसक झड़पें हुई थी। हालात इतने बिगड़ गए थे कि इस पर काबू पाने के लिए कई जिलों में कर्फ्यू लगाया गया और सेना को भी तैनात किया गया। अब इसी से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर भीषण आग का ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। आग इतनी तेज है कि आसमान में धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। कुछ लोग इस वीडियो के जरिए ये दावा कर रहे हैं कि ये नेपाल के एक ऐसे गाँव का वीडियो है जहां अवैध घुसपैठिए रहते थे। दावा है कि इस पूरे गांव को आग के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद पूरा इलाका जलकर राख हो गया। वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, गजवाए नेपाल की मानसिकता पाले नेपाल में घुसे अवैध घुसपैठियों के पूरे गांव को जलाकर राख कर दिया, न सबूत बचे न गवाह। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
7: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आग इतनी तेज है कि आसमान में धुएं की लपटें नजर आ रही हैं। कुछ लोग इस वीडियो के जरिए दावा कर रहे हैं कि नेपाल के एक ऐसे गांव का वीडियो है जहां पर अवैध घुसपैठिए रहते हैं और दावा यह है कि इस पूरे गांव को आग के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद पूरा इलाका जलकर खाक हो गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ वीडियो को शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने इसकी पड़ताल शुरू की और दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और इसे सुना भी। इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड से आ रही आवाजों पर गया और जब हमने इसे गौर से सुना तो इशारा मिला कि ये नेपाली नेपाल में बोली जाने वाली भाषा नहीं है, ये कहीं और की भाषा हो सकती है। इसके अलावा वीडियो के फ्रेम दर फ्रेम देखने से ऐसा लग रहा है कि किसी पहाड़ के जंगल में ये आग लगी हुई है और फायर ब्रिगेड की एक टीम इसे बुझाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वीडियो में कहीं पर भी घर देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि अगर किसी इंसानी बस्ती को आग के हवाले किया जाता तो उसके निशान यहां पर जरूर नजर आते, लेकिन वीडियो में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। साथ ही सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिलती है जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, क्योंकि अगर वीडियो का संबंध नेपाल से होता तो कहीं ना कहीं इसके बारे में जानकारी जरूर होती। लिहाजा हमने वायरल हो रहे दावे को सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही था कि अगर दावा सही है तो फिर इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। हमारा दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए लोगों को गुमराह करने की कोशिश तो नहीं हो रही है। सच और झूठ क्या है इस रिपोर्ट में जानिए।

0: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। पड़ताल के लिए सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये तुर्की के मीडिया संस्थान के यूट्यूब चैनल पर मिला। यहाँ इसे 29 जुलाई को अपलोड किया गया था। कैप्शन के मुताबिक ये तुर्की के मुगला प्रदेश में लगी जंगल की आग का वीडियो है। सर्च के दौरान तुर्की की एक और न्यूज आउटलेट की 29 जुलाई की वीडियो रिपोर्ट में भी वायरल वीडियो वाला हिस्सा देखने को मिला। रिपोर्ट के मुताबिक मुगला के सेडी केमर जिले में एक खेती बाड़ी की जगह पर लगी आग तेज हवाओं के चलते जंगल तक फैल गई और देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया। एक रिपोर्ट से ये भी जानकारी सामने आई कि इस आग को बुझाने के अभियान में 5 एयरक्राफ्ट, 18 हेलीकॉप्टर और 93 दमकल की गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। इस अभियान में 800 से ज्यादा जवान शामिल थे। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। वायरल हो रहे वीडियो का नेपाल से कोई लेना देना नहीं है। ये वीडियो तुर्की के मुगला का है, जहां एक जंगल में भयानक आग लग गई थी। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: हरियाणा के चरखी दादरी में 6 अगस्त को दिन दहाड़े सिटी पुलिस थाने के सामने एक स्कॉर्पियो गाड़ी पर करीब 30 राउंड की फायरिंग हुई। इस गोलीबारी में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनमें से एक की मौत हो गई। इस घटना से जोड़ते हुए सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि हरियाणा के चरखी दादरी में 6 अगस्त को ही गोलीबारी का यह असली वीडियो है, लेकिन सच्चाई क्या है इस रिपोर्ट में जानिए।
2: हरियाणा के चरखी दादरी में 6 अगस्त को दिन दहाड़े सिटी पुलिस थाने के सामने एक सनसनीखेज तरीके से एक स्कॉर्पियो गाड़ी पर करीब 30 राउंड की फायरिंग हुई थी। इसी घटना के संदर्भ में अब सोशल मीडिया पर एक क्लिप काफी वायरल हो रही है, जिसमें काली स्कॉर्पियो गाड़ी पर अंधाधुंध गोलियां चल रही हैं। इसे शेयर करने वाले कई सोशल मीडिया यूजर्स दावा कर रहे हैं कि ये चरखी दादरी में हुई गोलीबारी का नजारा है। वायरल वीडियो के पहले हिस्से में गाड़ी पर गोलीबारी और गोली लगने के बाद गाड़ी की हालत दिखाई गई है। वहीं दूसरे हिस्से में खून से लथपथ एक शख्स को गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे हुए देखा जा सकता है। कई लोग गाड़ी को घेरे हुए हैं। वीडियो शेयर करते हुए कई सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया कि ये 6 अगस्त को चरखी दादरी में कोर्ट के पास हुई 30 राउंड की फायरिंग का असली दृश्य है और रोहित गोदारा गैंग से जुड़े नवीन बॉक्सर नाम के एक शख्स ने इसकी जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि हरियाणा के चरखी दादरी का वीडियो है और 6 अगस्त को हुई गोलीबारी का ये असली वीडियो है। वायरल वीडियो के पहले हिस्से में गाड़ी और गोलीबारी और गोली लगने के बाद गाड़ी की हालत दिखाई गई है। वहीं दूसरे हिस्से की बात करें तो खून से लथपथ एक शख्स को गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे हुए देखा जा सकता है। कई लोग गाड़ी को घेरे हुए हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की जांच शुरू की। तो सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को हमने गौर से देखा। इस दौरान हमें यह इशारा मिला कि ये अलग अलग क्लिप्स को एक साथ जोड़कर वीडियो बनाया गया हो सकता है। इसके अलावा वायरल हो रहे वीडियो के पहले हिस्से में जिस गाड़ी पर फायरिंग हो रही है उसे जब हमने फ्रेम दर फ्रेम गौर से देखा तो कुछ ऐसी गलतियां देखने को मिली जिससे हमें वायरल वीडियो के असली होने पर शक हुआ। उदाहरण के तौर पर वीडियो में नजर आ रहे काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी का नंबर प्लेट पर जो नंबर दिख रहा है वो अजीब तरीके से लिखा हुआ है। अक्सर AI वीडियो में ये गलतियां देखने को मिलती हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि जिस गाड़ी पर 6 अगस्त को हरियाणा के चरखी दादरी में फायरिंग हुई थी वो काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी ही थी। जब इस गाड़ी को थाने लाया गया था तब उसका वीडियो भी सामने आया था। आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी उसे देख सकते हैं। वायरल हो रहे वीडियो में नजर आ रही गाड़ी और ओरिजिनल वीडियो में दिख रही गाड़ी को अगर आप देखेंगे तो आपको फर्क साफ नजर आ जाएगा। वायरल वीडियो में फायरिंग के बाद गाड़ी की हालत बिल्कुल खराब हो गई थी, जबकि थाने में जो गाड़ी खड़ी है उसमें ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। लिहाजा हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल ये कि अगर दावा सही है, सच्चा है, तो फिर वायरल हो रहा वीडियो के बारे में कोई प्रमाणिक जानकारी हमें क्यों नहीं मिली। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर एडिटेड वीडियो के जरिए लोगों के बीच भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा, सच और झूठ क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए।
2: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। हमें असली वीडियो एक इंस्टाग्राम यूजर के हैंडल पर मिला। 12 मई को पोस्ट किए गए इस वीडियो से साफ हो जाता है कि 6 अगस्त को हुई गोलीबारी से इसका कोई संबंध नहीं है। वायरल वीडियो के कैप्शन में यूजर ने वीडियो एडिटिंग का क्रेडिट किसी दूसरे यूजर को दिया है। इस पोस्ट के रिप्लाई में कई यूजर्स ने इस वीडियो को AI जनरेटेड बताया, जिस पर कोई असहमति जताए बिना यूजर ने सिर्फ हंसी का इमोजी बनाया है। इसके बाद हमने गूगल AI से बनी तस्वीरों और वीडियो को डिटेक्ट करने वाले टूल सिंथाइडी से इस वीडियो को टेस्ट किया। इस टूल ने भी बताया कि ये वीडियो गूगल AI की मदद से बनाया गया है। साथ ही हमने इसे हाई मॉडरेशन टूल से भी टेस्ट किया। इस टूल ने भी इस वीडियो के AI से बने होने की 96.2% संभावना बताई। हालांकि वायरल वीडियो के दूसरे हिस्से में जहां खून से लथपथ एक शख्स को गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे हुए देखा जा सकता है, वो हिस्सा चरखी दादरी की असली घटना का है। इस गोलीबारी में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनमें से एक की मौत हो गई थी। इस वारदात के बाद SP लोकेश कुमार ने 6 पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड किया था। इस तरह हमारी पड़ताल से ये साफ हो गया कि दो हिस्से को जोड़कर ये वीडियो तैयार किया गया है। स्कॉर्पियो में गोलीबारी वाला वीडियो का पहला हिस्सा AI से बनाया गया है, चरखी दादरी में हुई गैंगवार से इसका कोई लेना देना नहीं है। जबकि दूसरे हिस्से में जहां खून से लथपथ एक शख्स को गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे हुए देखा जा सकता है, वो हिस्सा चरखी दादरी की असली घटना का है। रिद्धेश दत्ता के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे वायरल वर्ल्ड में क्या कुछ हो रहा है, लिए चलेंगे आपको वायरल दुनिया में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे,
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: और वक्त हो चला फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है।
7: सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है, जिसमें एक छोटी बहन अपने भाई की जिस तरह देखभाल करती नजर आ रही है, उसे देखकर लोग भावुक हो रहे हैं। वायरल वीडियो में भाई बहन के बीच का बेहद मासूम रिश्ता देखने को मिलता है। छोटा भाई अपनी ही दुनिया में मस्ती करता दिखाई देता है, जबकि उसकी बहन लगातार उसकी छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखती नजर आती है। कभी वो भाई की स्कूल ड्रेस ठीक करती है, तो कभी उसे संभालती हुई दिखाई देती है। वीडियो का सबसे प्यारा हिस्सा वो है जब बहन अपने छोटे भाई को गोद में लेकर घूमती नजर आती है। उसकी उम्र भले ही कम हो, लेकिन भाई के लिए उसके व्यवहार में जिम्मेदारी और अपनापन साफ दिखाई देता है। भाई की ड्रेस ठीक करने से लेकर उसे संभालने तक बहन के हर छोटे प्रयास में एक अलग ही प्यार नजर आता है। ऐसा लगता है जैसे वो अपने छोटे भाई की सिर्फ बहन नहीं, बल्कि उसकी छोटी से केयर टेकर भी हो। यही मासूम पल वीडियो को खास बना रहे हैं। इसमें ना कोई बड़ी बात है और ना ही कोई बनावटी भावनाएं, लेकिन भाई बहन के बीच दिख रहा अपनापन सीधे लोगों के दिल तक पहुंच रहा है। सोशल मीडिया पर ये दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है।

0: सच में बहुत अमीर हैं। अगर आप अपने बच्चे को उसके जन्मदिन पर वो चीज दे सकते हैं जिसकी उसे सबसे ज्यादा इच्छा थी। वीडियो की शुरुआत बेसबॉल प्रैक्टिस से होती है। बच्चा मैदान में बल्लेबाजी की तैयारी करता दिखाई देता है। उसके माता पिता उसे खास शॉट लगाने के लिए कहते हैं। बच्चा पूरी मेहनत के साथ बल्ला घुमाता है और स्लो मोशन में शॉट लगाने की कोशिश करता है। इसके बाद कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट आता है। जैसे ही बच्चा बल्ला पीछे करता है, उसके पिता किसी बहाने से उसके हाथ से बल्ला ले लेते हैं। बच्चे को उस वक्त शायद समझ ही नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसे जो मिलता है वो उसके लिए बेहद खास होता है। पिता पुराने बल्ले की जगह उसके हाथ में एक नया बल्ला थमा देते हैं। उस समय बच्चे के हाथ पीछे की ओर होते हैं। जैसे ही वो अपने हाथ आगे लाता है और नए बल्ले को देखता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दरअसल ये वही बल्ला था जिसे वो अपने जन्मदिन पर पाना चाहता था। बच्चे के चेहरे पर खुशी और आंखों में आए आंसू देखकर साफ समझ आता है कि उसके लिए ये सिर्फ एक नया बैट नहीं था, ये उसके माता पिता की तरफ से दिया गया ऐसा तोहफा था जिसमें उसकी मेहनत, प्यार और बच्चे की पसंद को समझने की भावना छिपी थी। सोशल मीडिया पर ये वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है। वीडियो में दादा पोती के रिश्ते की खूबसूरत झलक देखने को मिल रही है। दादाजी का स्नेह और पोती के प्रति अपनापन देखकर यूजर्स भावुक हो रहे हैं। लोग इस प्यारे पल को खूब पसंद और शेयर कर रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि दादाजी अपनी पोती के स्कूल जाने की तैयारी में उसका साथ देते दिखाई देते हैं। वो बड़े प्यार से उससे पूछते हैं कि क्या वो उसके स्कूल बैग में किताबें रखने में मदद करेंगे।
1: मैं हेल्प कर दूंगा, मैं डाल दूंगा बैग में, मैं डाल देता हूँ। अच्छा हो रहा है अभी।
0: दादाजी का ये छोटा सा सवाल सुनने में भले ही सामान्य लगे, लेकिन इसमें पोती के लिए उनका अपनापन और चिंता साफ दिखाई देती है। बच्चों के लिए स्कूल जाने की तैयारी रोजमर्रा की बात होती है, लेकिन दादाजी के लिए पोती के साथ बिताया यही छोटा सा पल बेहद खास नजर आता है। वीडियो में दादाजी जिस सहज अंदाज में उसकी मदद करने की बात करते हैं, वो लोगों को काफी भावुक कर रहा है।
1: मैं हेल्प कर दूंगा, मैं डाल दूंगा बैग में, मैं डाल देता हूं।
0: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को खूब देखा जा रहा है। वीडियो में बच्चे को आर्मी की यूनिफॉर्म पहनाई जा रही है। जैसे ही वो पूरी तरह सैनिक की वर्दी में तैयार होती है, उसके चेहरे की खुशी देखते ही बनती है। वर्दी पहनते ही बच्चे का अंदाज भी पूरी तरह बदल जाता है। वो खुद को आर्मी की ड्रेस में देखकर काफी उत्साहित नजर आती है। उसके चेहरे पर मासूमियत तो है ही, साथ ही ऐसा आत्मविश्वास भी दिखता है जिसे देखकर परिवार वाले भी खुश हो जाते हैं। वीडियो का सबसे दिलचस्प हिस्सा उस समय आता है जब बच्ची वर्दी पहनने के बाद बेहद मासूम अंदाज में कहती है, मुझे टेररिस्ट को मारना है। बच्चे की बात सुनकर घर में मौजूद लोग मुस्कुराने लगते हैं। परिवार वाले मजाकिया अंदाज में उससे पूछते हैं, आखिर उसके लिए टेररिस्ट कहां से लेकर आए।
2: अब आतंकवादी कहां से लाऊं तेरे लिए मैं? आतंकवादी कहां है यार? बेटा तुम छोड़ दियो, तुम आतंकवादी को कैसे मारोगी?
0: बच्चे के इस मासूम जवाब और उसके एक्सप्रेशन ने सोशल मीडिया यूजर्स का भी दिल जीत लिया। मामा के घर आकर डोरेमोन देखने वाला ये भांजा अब खुद डोरेमोन बन गया है। बच्चे ने अपनी पैंट के जेब को ही डोरेमोन की पॉकेट बना लिया और उसमें घर का सामान छुपा कर बैठ गया। इसके बाद एक एक करके जेब से सामान निकालने लगा, जैसे डोरेमोन अपने गैजेट निकाल रहा हो, कभी कोई चीज तो कभी कुछ और। बच्चे का ये अंदाज देखने में बेहद मजेदार है। घर के सामान को अपनी जेब में छुपा कर जिस तरह बच्चा उसे निकाल कर दे रहा है, उसकी क्यूटनेस ने लोगों का दिल जीत लिया। पढ़ाई का नाम सुनते ही ज्यादातर बच्चों के चेहरे उतर जाते हैं, और जब बात केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल की हो तो इसे याद करना किसी पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है। लेकिन बेंगलुरु के एक टीचर ने इस मुश्किल काम को बच्चों के लिए खेल बना दिया। वीडियो में साफ दिखता है कि कैसे आकाश ने बोरिंग केमिस्ट्री क्लास को एक एनर्जेटिक पार्टी में बदल दिया। ब्लैक बोर्ड पर पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स लिखे हैं और एक हाथ में स्केल पकड़े आकाश एक एक एलिमेंट की तरफ इशारा करते हुए मस्ती में गा रहे हैं। दिया, दिया, दिया।

0: इस दौरान बच्चों का जोश देखने लायक था। बच्चे सिर्फ बैठे नहीं रहे बल्कि अपने टीचर के साथ सुर से सुर मिलाकर नाचने और गाने लगे। बच्चों का ऐसा उत्साह देखकर खुद टीचर आकाश भी अपने आप को रोक नहीं पाए और उनके साथ झूमने लगे। कश्मीर से खूबसूरत मोमेंट सामने आया है। इस पल को लोग कश्मीरियत भी बोल रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बुजुर्ग महिला जिन्होंने पारंपरिक कश्मीरी हेड रैप पहना हुआ है धीरे धीरे चलकर सीआरपीएफ जवान के पास आती है। उनके हाथों में ताजे फल हैं जो वो मुस्कुराते हुए जवान को भेंट करती है। जवान भी इस निस्वार्थ प्यार को देखकर अभिभूत हो जाता है। वो खुशी खुशी उस तोहफे को स्वीकार करता है और कैमरे की तरफ उन फलों को दिखाते हुए बेहद भावुक शब्दों में महिला का शुक्रिया अदा करता है।
1: भैया हम कश्मीर में खड़ा है, माता जी देख लो हमें मुहाए के लेके आए हैं, देख लो दिए कितना अच्छा, थैंक यू शुक्रिया, देख लो भैया कितना सम्मान के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद।
0: इस वीडियो की सबसे खास बात यह है कि महिला और जवान के बीच कोई लंबी चौड़ी बातचीत नहीं होती है, लेकिन चंद सेकंड का ये वीडियो कश्मीरियत, इंसानियत और सुरक्षा बलों के प्रति स्थानीय लोगों के सम्मान की एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर पेश करता है। इंडोनेशियाई सेना के एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों को भावुक कर रहा है। वीडियो में सेना की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जवानों के लिए खास समारोह रखा गया था। वहाँ ज्यादातर युवा सैनिकों के साथ उनके माता पिता, पार्टनर या परिवार के लोग मौजूद थे। हर तरफ खुशी और गर्व का माहौल था, लेकिन इसी बीच एक जवान ऐसा भी था जो अकेला खड़ा नजर आया। जहाँ बाकी सैनिक अपने करीबियों के साथ इस खास पल को सेलिब्रेट कर रहे थे, वहीं उस जवान के पास कोई अपना दिखाई नहीं दे रहा था। वो चुपचाप बाकी लोगों से थोड़ा अलग खड़ा था। तभी वहाँ मौजूद एक सीनियर अधिकारी की नज़र उस जवान पर पड़ी। उन्होंने उसकी स्थिति को समझने में देर नहीं लगाई। अधिकारी सीधे उसके पास पहुँचे और उसे अपने पास बुलाकर गर्मजोशी से गले लगा लिया। ये कोई औपचारिक सैन्य सलाम या बधाई नहीं थी, बल्कि बिल्कुल एक पिता की तरह दिया गया अपनापन था। शुरुआत में जवान ने खुद को संभालने की कोशिश की, उसने अपनी भावनाओं को रोक कर रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन शायद उस पल का अकेलापन और अचानक मिला प्यार दोनों ही उसके लिए बहुत ज्यादा थे। कुछ ही सेकंड में उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, वो अधिकारी के कंधे से लगकर रो पड़ा। सोशल मीडिया पर इन दिनों अफ्रीकी देश तंजानिया के एक नौजवान फजल का वीडियो काफी छाया हुआ है। फजल ने एक पंजाबी गाना इतनी खूबसूरती से गाया कि सुनने वाले हैरान रह गए। फजल को पंजाबी भाषा बिल्कुल नहीं आती, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जिस साफ अंदाज और सही उच्चारण के साथ ये गाना गाया है, उसने इंटरनेट पर सभी का दिल जीत लिया है।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे,
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: नवसारी के समुद्र से इस वक्त एक बड़ी और राहत भरी खबर निकलकर सामने आई है। समुद्र की ऊंची लहरों के बीच डूबती बोट में फंसी 9 जिंदगियों को सुरक्षित बचा लिया गया है। देखिए, दरअसल तोलाई बंदर से वलसाड की तरफ करीब 2.5 नॉटिकल माइल्स दूरी पर कृष्णपुर गांव की जयमाला बोट समुद्र में डूब गई। महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड इस बोट पर उस वक्त कुल 9 मछुआरे सवार थे, और बोट के समुद्र में डूबने की खबर मिलते ही जिला प्रशासन ने बिना किसी देरी के रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। एनडीआरएफ की टीम ने बचाव अभियान में पूरी ताकत झोंक दी, उसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि देखिए, समुद्र की चुनौती बड़ी थी, ऐसे में कोस्ट गार्ड से मदद मांगी गई। इसके बाद समुद्र में फंसी इन 9 जिंदगियों को बचाने के लिए कोस्ट गार्ड ने मोर्चा पूरी तरीके से संभाला। कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर समुद्र के ऊपर पहुंचा और शुरू हुआ जिंदगी बचाने का वो ऑपरेशन जिसमें हर पल बहुत अहम था। समुद्र की लहरों और मुश्किल हालात के बीच कोस्ट गार्ड के जवानों ने शानदार तालमेल और साहस दिखाते हुए सभी 9 मछुआरों का सफल एयरलिफ्ट रेस्क्यू करके दिखाया है और एक एक करके सभी मछुआरों को सुरक्षित समुद्र से बाहर निकाल लिया। और सबसे बड़ी बात इसमें यह रही कि ये जो खबर है सभी 9 मछुआरे सुरक्षित रहे। हिमाचल प्रदेश के चंबा के भरमौर इलाके में भी 2 अलग अलग रेस्क्यू की घटनाओं को अंजाम दिया गया। एक घटना में 40 से 50 श्रद्धालुओं की उपंती दरिया के बीच जान बचाई गई, तो वहीं पर एक दूसरी घटना में एक युवक ने जान पर खेलकर दूल्हे की जान बचाई।
7: सैलाब का सामना कर रहे हिमाचल प्रदेश के चंबा के रेस्क्यू की ये 2 घटनाएं मिशन जिंदगी का जीता जागता सबूत है। पहली तस्वीर 40 से 50 श्रद्धालुओं की जिंदगी बचाने की है, तो दूसरी तस्वीर एक दूल्हे के रेस्क्यू की है। चंबा का भरमौर इलाका इन दिनों फ्लैश फ्लड का सामना कर रहा है। बलोट गांव के 84 चला में बादल फटने के बाद आए सैलाब की वजह से लोहे का एक पुल बह गया। बहाव इतना तेज था कि आने जाने के लिए बनी सड़क भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। सड़क और पुल के बह जाने से मां भगवती खुंडी वाली के दर्शन के लिए जा रहे करीब 40 से 50 श्रद्धालु बीच रास्ते में ही फंस गए। तस्वीरों में देख सकते हैं कि बहाव इतना तेज है कि इसके चपेट में आने से लोग खुद को बहने से बचा नहीं सकते थे। ऐसे मुश्किल वक्त में गांव वाले किसी देवदूत की तरह वहां पहुंचे। सभी श्रद्धालुओं को रास्ता दिखाते हुए गांव वाले आगे बढ़े और सैलाब के किनारे होते हुए एक ऐसी जगह पहुंचे जहां लोगों ने दरिया के ऊपर लकड़ी का एक अस्थायी पुल बनाकर सभी का सुरक्षित रेस्क्यू किया। लकड़ी के अस्थायी पुल पर चलते हुए सभी श्रद्धालु दरिया के दूसरी ओर पहुंचे, जिससे उनकी जान बच सकी। मंगलवार को ज्येष्ठ मंगलवार के अवसर पर माता के डल झील में पवित्र स्नान करने की भी परंपरा है, जिसके चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना रहती है। हालात को देखते हुए ऐसे में सावधानी की जरूरत है। बड़ग्राम में फ्लैश फ्लड के बीच एक और मिशन जिंदगी को अंजाम दिया गया। हुआ यूं कि वहां फ्लैश फ्लड आने से पनाली नाला अचानक विकराल रूप में बहने लगा, जिससे बारात फंस गई। संकट की इस घड़ी में एक स्थानीय लड़के ने साहस दिखाते हुए दूल्हे की जान बचाई। लड़के ने अपनी जान जोखिम में डालते हुए दूल्हे को अपनी पीठ पर उठाया और नाले को सुरक्षित पार करवाया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चंबा से विशाल आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: मंगल का कौन सा योग वैवाहिक जीवन में अलगाव ले आता है? मंगल का कौन सा योग साहस और आत्मविश्वास को कमजोर कर देता है? मंगल का कौन सा योग जीवन में प्रचंड दुर्घटना का कारण बनता है? कौन से हैं मंगल के अशुभ योग और क्या है उनका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
8: जुलूनोत्सव के बीच राम मंदिर का भव्य श्रृंगार, सुनहरी रोशनी से नहाया मंदिर का शिखर, सावन के पवित्र महीने में देखा अनोखा नजारा। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की तैयारियां तेज, मुंबई के प्रसिद्ध काला चौकी महागणपति का हुआ आगमन, सिंह पर सवार नजर आए 22 फीट ऊंचे बप्पा। पवित्र सावन महीने में धूमधाम से जारी है कांवड़ यात्रा, जौनपुर में शिव भक्तों पर की गई फूलों की बारिश, प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से बरसाए फूल। पहाड़ से मैदान तक। मौसम की मेहरबानी बरकरार, शिमला में 21 अगस्त तक बारिश का अलर्ट, चंडीगढ़ में जमकर बरसे पतरा। महिला हॉकी वर्ल्ड कप में भारत का दबदबा, साउथ अफ्रीका को 6-1 से हराकर पूल डी में हासिल किया टॉप स्थान, अब इंग्लैंड से होगा सामना।

0: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं जान दांव पर लगाकर जान की हिफाजत करने वाली रेस्क्यू टीम की। अगस्त आधा गुजर चुका है, पर पहाड़ से लेकर मैदान तक बादल जमकर बरस रहे हैं, और इसकी वजह से खासतौर पर अगर हम देखें तो उत्तराखंड और हिमाचल में जिंदगी का कड़ा इम्तिहान है। अचानक बारिश से, किसी भी वक्त सैलाब से सामना हो रहा है, और लेकिन दिन हो या रात, SDRF की जो टीमें हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैद हैं, जुटी हुई हैं, और नदी नालों के उफान में फंसे लोगों को लगातार बचाया जा रहा है। आज आपको ऋषिकेश, देहरादून और चंबा समेत कई इलाकों में रेस्क्यू टीम का हैरतअंगेज हौसला दिखाएंगे। इन दिनों पहाड़ी इलाकों में क्यों सावधान रहने की आवश्यकता है, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ बात होगी काशी की, जहां पर गंगा का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है, और इसी वजह से घाट की बजाय छत पर गंगा आरती हो रही है। गंगा के घाटों पर सुरक्षा के इंतजाम तमाम आपको दिखाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के साथ, जहां पर मॉनसून की भारी बारिश के बाद नदी नालों में उफान देखने को मिल रहा है। ऊपरी इलाकों में तेज बारिश की वजह से अचानक नदियों में सैलाब आ गया है, और इसी वजह से ऋषिकेश में लोगों की जान पर बनाई है। लेकिन 24/7 मुस्तैद SDRF टीम ने पानी के तेज बहाव में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को बचा लिया। इसी तरह देहरादून में आधा दर्जन छात्रों की जान बचाई गई, जो नदी के बीच में टापू पर फंस गए थे। रिपोर्ट देखिए।
1: बादल बंदिश नहीं जानते, कहीं गरजे तो कहीं बरसे, और ऐसे बरसे कि सैलाब आ गया। पहाड़ों पर बारिश की मनमर्जियां ऐसी ही हैं कि अफरा तफरी मची है। कहीं बादल फटने से पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं नदियों में उफान है, जो लोगों के लिए बड़ा खतरा है। पर शुक्र है कि इस चुनौती से निपटने के लिए रेस्क्यू टीम दिन रात जुटी हुई है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के ऋषिकेश की हैं, जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से बीन नदी में अचानक जलस्तर बढ़ गया। नदी की तेज धार की चपेट में ये कार आ गई। नदी का ऐसा रौद्र रूप और रात का वक्त, कार में फंसे दो नौजवानों को बचाना लगभग नामुमकिन लग रहा था, लेकिन SDRF के जवानों ने मोर्चा संभाला। अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर उन्होंने इस उफनती नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रस्सी के जरिए कुछ जवान नदी में उतरे और कार के करीब पहुंच गए। दूसरे सिरे पर मौजूद टीम के सदस्यों ने रस्सी को मजबूती से थामे रखा। नदी में पानी का बहाव इतना तेज था कि जरा सी चूक भारी पड़ सकती थी, लेकिन रेस्क्यू टीम ने एक एक करके पहले लड़कों को कार के अंदर से बाहर निकाला और फिर उन्हें थाम कर धीरे धीरे किनारे तक ले आए। जान बची तो लाखों पाए, पर ऐसे मुश्किल समय में अगर SDRF के जवान देवदूत बनकर नहीं आते तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। रेस्क्यू टीम की दिलेरी और उनका कौशल दिखाने वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है, और लोग इनके हौसले की तारीफ कर रहे हैं।
2: ये मामला में जो हमारी टीम है डालवाला में, हमें सूचना मिली लगभग 9:15 के लगभग कि एक मैक्स बीन नदी में पलट गई और जो नीचे चली गई, तो हमारी टीम तुरंत यहाँ पर पहुंची है। और यहाँ पे देखा तो एक व्यक्ति उसमें ऊपर बैठा हुआ दिखाई दिया, तो हमारी टीम रोप लगा के अपने उपकरणों के माध्यम से उस तक पहुंची है, नदी में, और उसको रेस्क्यू कर लिया गया और उसको हॉस्पिटल गया। तो उसके बाद पता चला कि एक व्यक्ति अंदर था जो बुरी तरह से फंसा था। उसके लिए टीम द्वारा हमारे बहुत भरसक प्रयास किया गया, और कई प्रयासों के बाद हम उस व्यक्ति का रेस्क्यू कर गए और उसको भी हमारे द्वारा टीम द्वारा हॉस्पिटलाइज किया गया। हमारे सामने हमें दिखा कि जो व्यक्ति अंदर है वो भी चिल्ला रहा था कि मुझे बचाओ, और हमारी टीम उसी हौसले के साथ आगे बढ़ी, और सभी हमारे जो जितने भी हमारे यहाँ पे टीम के मेंबर्स हैं, सभी के प्रयास से हमारे रोप के माध्यम से उस तक पहुंच बनाई और उस व्यक्ति को हमारे द्वारा टीम द्वारा रेस्क्यू किया गया।
1: अगस्त आधा गुजर चुका है लेकिन उत्तराखंड में बेहिसाब बारिश का सिलसिला जारी है और उसका असर ये कि ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। आसमान से ली गई गंगा की ये तस्वीरें भले ही भव्य नजर आ रही हों, पर जमीनी सच्चाई ये है कि इस वक्त घाटों तक पानी है और नदी का प्रवाह ऐसा है कि घाटों पर गिनती के लोग हैं। शाम के वक्त जहां गंगा आरती होती है वहां तक गंगा का पानी पहुंच चुका है। हालात देखते हुए एसडीआरएफ की टीमें पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं।
2: नदी का जो जलस्तर है यानी कि चंद्रभागा का भी जलस्तर थोड़ा बढ़ गया है, यहां तक कि खारा सोत का भी स्तर जलस्तर बढ़ चुका है। हमारी टीम अभी वहां पर गई थी तो कुछ लोग वहां पे नदी नालों में चले गए थे तो उनको हमने वहां पे हमारे जो लाउड के माध्यम से चेतावनी दी जा रही है कि आप नदी नालों में न जाएं और उस कारण गंगा का जलस्तर भी बढ़ रहा है और देर रात अभी भी बारिश चल रही है। हमारी टीमें एसडीआरएफ की टीमें पूरी तरह से अलर्ट है और किसी भी प्रकार की कोई हमें सूचना मिली तो हमारी टीम वहां पर रिस्पॉन्स करती है। ये जो अभी पानी बढ़ा है हमारी टीमें वहां पर गई हैं, सभी को जो स्थानीय लोग हैं जिनके कुछ लोग वहां पे आसपास जो घर है तो सभी को हमारे द्वारा बताया गया है कि आप पानी जो जलस्तर है उस पर नजर बनाए रखें और जैसे पानी बढ़ता है तो आप उससे दूर रहें, किसी भी प्रकार की कोई अपना जोखिम न लें।
1: वैसे ऋषिकेश ही नहीं उत्तराखंड के कई इलाकों में तेज बारिश के बाद चुनौतियां बढ़ गई हैं। देहरादून में स्वर्णा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और कई छात्रों की जान जोखिम में आ गई। ट्रैकिंग करने गए यूपीईएस यूनिवर्सिटी के 6 छात्रों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि नदी के पास एक मुसीबत उनका इंतजार कर रही है। जब गए थे सब कुछ ठीक ठाक था पर अचानक नदी में जैसे सैलाब आ गया। सभी छात्र नदी के बीच एक टापू में फंस गए। गनीमत रही कि छात्रों के वहां फंसे होने की खबर तुरंत एसडीआरएफ को मिल गई और टीम ने इस सैलाब का सामना करते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रात के वक्त यह ऑपरेशन आसान नहीं था। रेस्क्यू टीम ने सूझबूझ दिखाई, लोहे के पाइप को पुल की तरह इस्तेमाल किया। किनारे से टापू तक लगे पाइप के जरिए छात्रों को एक एक करके निकाला गया। अब टिहरी गढ़वाल की ये तस्वीरें भी देख लीजिए। कहने को तो ये बरसाती नाला है लेकिन मूसलाधार बारिश की वजह से इसमें उफान आ गया। कुछ लोग जो वहाँ मौजूद थे उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला और देखते ही देखते वो बेबस हो गए। लेकिन एसडीआरएफ की टीम अलर्ट पर थी। जवानों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया और दरिया के बीच जाकर रस्सियों की मदद से सभी को बाहर निकाल लिया। जो लोग इस सैलाब में फंस गए थे उनमें कुछ सैलानी भी थे जिन्हें पहाड़ों की ऐसी बारिश और सैलाब का जरा भी अंदाजा नहीं था लेकिन सुरक्षित निकलने के बाद उन्होंने राहत की सांस ली।
3: पिताजी का नाम क्या है?
4: धर्म सिंह।
3: धर्म सिंह। उम्र कितनी है आपकी?
4: उम्र 36।
3: 36 साल।
4: घूमने?
3: नहीं तो
4: ओपन बनाया तुम बस। ठीक हो आप दोस्त का है वो तीरंगे साइड तो मैं किनारे।
1: देहरादून में बेहिसाब बारिश से नदी नालों में तेज उफान है। टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास तमसा नदी भी रौद्र रूप में है और हालात ये हैं कि श्रद्धालुओं से नदी के पास न जाने की अपील की जा रही है। बारिश के चलते देहरादून के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। ऐसी तस्वीर उत्तराखंड के कई इलाकों में है और लोगों को नदी नालों से दूर रहने की अपील की जा रही है।
5: इस तरह से कई स्थानों पर बहुत ज्यादा बरसात हुई है और बरसात के कारण निश्चित रूप से कुछ दिक्कतें भी हुई हैं। कई जगह नदियों का पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है। ऋषिकेश के पास में जलस्तर काफ़ी हद तक बढ़ गया है। आज की बात करें तो आज देहरादून के लिए, टिहरी के लिए, पौड़ी और ऊधम सिंह नगर 4 जनपदों के लिए ऑरेंज अलर्ट है। सभी जनपदों को SEOC से निर्देश जारी किए गए हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी संबंधित से अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर ऐसे किसी स्थान पर रह रहे हैं जहाँ पानी के बढ़ने की संभावना है, जलस्तर बढ़ने की संभावना है, बाढ़ आने की संभावना है, ऐसे स्थानों पर जो लोग रह रहे हैं सावधानी के साथ रहें, अलर्ट पे रहें ताकि किसी प्रकार से पानी का स्तर बढ़ने पर उनको सकुशल वहाँ से निकासी संभव हो सके। इसके साथ साथ मैं सभी से यह भी अनुरोध करूँगा कि अपने मोबाइल में सचेत ऐप डाउनलोड कर लें ताकि मौसम के अपडेट लगातार उनको मिलते रहें और जो लोग ट्रेवल करना चाहते हैं अनावश्यक रूप से ट्रेवल करने से बचें।
1: ऐसी बारिश में चुनौतियां दूसरी भी हैं। पौड़ी देर प्रयाग मार्ग पर सौर के करीब पहाड़ी से भारी मलबा आने के कारण यातायात पूरी तरह से ठप नजर आ रहा है। सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई, यात्रियों को देर तक इंतजार करना पड़ा। हालांकि खबर मिलते ही प्रशासन तुरंत एक्टिव हो गया, मशीन से मलबा हटाने का काम शुरू हुआ और काफी मशक्कत के बाद रास्ता दुरुस्त किया गया। पौड़ी गढ़वाल में लगातार बारिश की वजह से भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं। महरगांव में भूस्खलन के बाद 4 लोग मलबे में दब गए। सूचना मिलते ही प्रशासन, SDRF और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और एक महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मौसम का रुख देखते हुए प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है और नदी नालों पर नजर बनाए हुए है। ऋषिकेश से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: आइए बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। उत्तराखंड की तरह ही हाल हिमाचल का देखने को मिल रहा है। कई जिलों में मूसलाधार बारिश की वजह से रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित है, पर मुश्किल बादल फटने के बाद तेज बारिश से है। चंबा में जब ऐसा हुआ तो नदी में सैलाब आ गया। पहाड़ों से आए मलबे की चपेट में आने से लोहे का एक पुल बह गया और लगभग 50 तीर्थयात्रियों की जान मुश्किल में फंस गई, लेकिन रेस्क्यू टीम ने ऑपरेशन चलाकर उनको बचा लिया। इसी तरीके से कुल्लू में भी नदी के उफान ने कुछ सैलानी फंस गए थे, जिन्हें SDRF ने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से सकुशल बाहर निकाला। रिपोर्ट देखिए।
6: एक तरफ सैलाब है, दूसरी ओर जिंदगी चुनौती बड़ी है। ऐसे हालात में कब, कहां और कैसे फंस जाएगा कहना मुश्किल है। बेहिसाब बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में नदी नाले उफान पर हैं और जिंदगी का कड़ा इम्तिहान है। ये तस्वीरें चंबा की हैं, जहां बादल फटने के बाद जैसे सैलाब आ गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि उसके साथ पहाड़ों से मलबा नीचे आने लगा और भारी मलबे की वजह से लोहे का पुल बह गया। पुल नदारद और रास्ता बंद। अब 40 से 50 श्रद्धालुओं के सामने संकट खड़ा था, जो माँ भगवती खुंडी वाली के दर्शन के लिए जा रहे थे। ये लोग ना तो आगे जा सकते थे और न पीछे। श्रद्धालुओं के फंसे होने की खबर जैसे ही रेस्क्यू टीम को मिली वो एक्टिव हो गई, लेकिन उनके साथ स्थानीय लोग भी जुट गए। फिर शुरू हुआ श्रद्धालुओं को इस दरिया से निकालने का ऑपरेशन। बेहद सावधानी से रेस्क्यू टीम के लोग रस्सी के जरिए उस पार पहुंचे और एक एक करके सभी श्रद्धालुओं को दरिया के किनारे पर लाया गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती थी, लेकिन धैर्य और हौसले के साथ इन सभी श्रद्धालुओं को सकुशल निकाल लिया गया। चंबा ही नहीं, कुल्लू में भी भारी बारिश के चलते हालात चुनौतीपूर्ण है। नदी में पानी कब अचानक बढ़ जाएगा इसका अंदाजा नहीं। देखिए कैसे कुल्लू की मणिकर्ण घाटी में पार्वती नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और नदी के बीच चट्टान पर बैठे दिल्ली के सैलानी पानी से घिर गए। बाहर निकलने का रास्ता बंद होने के बाद स्थानीय युवाओं और आपदा मित्रों ने रस्सी के सहारे रेस्क्यू शुरू किया। नदी की बेहद तेज धार में ये काम जोखिम भरा था। हालांकि किनारे खड़े लोगों ने मजबूती से रस्सी थाम रखी थी, फिर भी लहरों का सामना करते हुए इस पार आना आसान नहीं था। पर कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय युवक जान जोखिम में डालकर रस्सी के सहारे नदी के तेज बहाव के बीच पहुंचे और सभी सैलानियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लाहौल स्पीति के दूर दराज इलाकों में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। चोखंग इलाके में पहाड़ियों पर हुई तेज बारिश के बाद गौरी नाले में अचानक पानी का बहाव बढ़ गया और देखते ही देखते नाला उफान पर आ गया। नतीजा ये हुआ कि भारी मात्रा में मलबा और पत्थर सड़क तक पहुंच गए और लिंक रोड का करीब 400 मीटर हिस्सा मलबे से फट गया और आवाजाही रुक गई। हालांकि प्रशासन तेजी से मलबा हटाने में जुटा है। जिस तरह से पहाड़ों पर आफत का पानी बरस रहा है और भूस्खलन हो रहा है, उसने लोगों की जिंदगी को संकट में डाल रखा है, लेकिन सैलानियों के लिए भी सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि पहाड़ों में मौसम और नदियों का मिजाज कभी भी बदल सकता है। ऊपरी इलाकों में बारिश होने पर नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ सकता है और तब नदी या नाले के पास जाना खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए प्रशासन लगातार पर्यटकों से अपील कर रहा है कि जब तक मूसलाधार बारिश हो रही है, नदी नालों से सुरक्षित दूरी पर रहें और जोखिम न उठाएं। चंबा से विशाल आनंद और कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: तो देखिए, हिमाचल में अगले चार दिनों तक जबरदस्त बारिश का अनुमान जताया गया है। बिलासपुर, कांगड़ा और मंडी में ऑरेंज अलर्ट है, तो वहीं पर चंबा, कुल्लू, सोलन और शिमला में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। राज्य में 22 अगस्त तक बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान है। आज शिमला में जमकर बदरा बरसे, इसलिए मॉल रोड पर रंग बिरंगे छाते नजर आए। सैलानियों ने भी इस बारिश का जमकर लुत्फ उठाया। शिमला में लगातार हो रही बारिश की वजह से तापमान कम हो गया है और घिरे हुए बादलों की वजह से वहां की खूबसूरती में और चार चांद लग गए। चलिए पहाड़ों के बाद अब मैदान का हाल देख लेते हैं। वाराणसी में इन दिनों गंगा घाट पर भीड़भाड़ पहले जैसी नहीं है, सैलानियों की तादाद भी कम है। वजह है गंगा का बढ़ता हुआ जलस्तर। गंगा खतरे के निशान से अभी भी नीचे है, लेकिन तमाम घाटों पर पानी आ चुका है और इसी वजह से घाट पर सुरक्षा ज्यादा बढ़ा दी गई है। आरती की जगह अब बदल दी गई है। नमो घाट पर बैरिकेडिंग है और छोटी नावों पर रोक लगा दी गई है। देखिए वाराणसी से ये खास रिपोर्ट।
7: गंगा के दोनों किनारों को जोड़ता है यह पुल और यहाँ से देखिए तो बनारस में गंगा की विशाल धारा का अंदाजा होता है, पर सैलानी दूर से नहीं घाट पर जाकर गंगा के निर्मल पानी का अनुभव लेना चाहते हैं, नाव पर घूमना चाहते हैं, पर इन दिनों ये मुमकिन नहीं क्योंकि बारिश की वजह से गंगा का जल स्तर बढ़ गया है। यहाँ तक कि नमो घाट पर बने 75 फीट ऊंचे नमस्ते के स्कल्पचर तक पानी है और सुरक्षा के मद्देनजर घाट की बैरिकेडिंग कर दी गई है। सुरक्षा गार्ड्स लोगों को आगाह कर रहे हैं।
8: धीरे धीरे ही सही वाराणसी में गंगा ने अपना रौद्र रूप अख्तियार करना शुरू कर दिया है। नमो घाट जो लोगों के बीच में बहुत ही पसंद किया जाने वाला नया घाट है, वहां पर अभी हमारी मौजूदगी है और देख सकते हैं कि हमारे ठीक पीछे 75 फीट का नमस्ते का स्कल्पचर है, वो भी जलमग्न होना शुरू हो गया है। यहाँ तक बाढ़ का पानी पहुंचना शुरू हो गया है। केंद्रीय जल आयोग की डेली फ्लड बुलेटिन की मानते हैं तो गंगा का जल स्तर चेतावनी बिंदु से महज 3.5 मीटर तो खतरे के निशान से 4.5 मीटर ही शेष रह गया है। नमो घाट बनारस का चौपाटी कहा जाता है। यहाँ लगातार जो लोग आते हैं, आस्थावान पर्यटक सैलानी आते हैं, वे काफी संख्या में होते हैं, जिनको हटाने के लिए, जिनको आगाह करने के लिए लगातार गार्ड यहाँ अलर्ट हैं और लोगों को इस बाढ़ के पानी के नजदीक जाने से, घाट की सीढ़ियों के नजदीक जाने से मना कर रहे हैं। तो वहीं एहतियात के तौर पर बनारस में सभी तरह के नौका का संचालन अगले आदेश तक रोक दिया गया है। तो वहीं NDRF, जल पुलिस और गोताखोर की भी ड्यूटी लगाई गई है। तटवर्ती इलाकों के लोगों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। 5 बार गंगा आरती का स्थल भी बदल दिया गया है और अब गंगा आरती छत पर की जा रही है। माना जा रहा है कि गंगा अगर यूं ही बढ़ती रही, जलस्तर में बढ़ाव देखा गया, तो आने वाले दिनों में तटवर्ती इलाकों के लोगों की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं।
7: गंगा में पानी के बढ़ते प्रवाह को देखते हुए वाराणसी की चौपाटी कहे जाने वाले नमो घाट पर आने वाले लोगों की संख्या काफी कम हो गई है। स्थानीय दुकानदारों की रोजी रोटी पर तो असर है ही, पर्यटकों और श्रद्धालुओं में भी निराशा है।
9: इस समय बहुत नुकसान हो रहा है और धंधा बहुत खराब चल रहा है। बाढ़ की वजह से भीड़ नहीं आ रही है, यात्री लोग आ नहीं रहे हैं, बहुत दिक्कतें हम लोग को, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
10: आमदनी कितनी कम हो गई है?
9: बहुत ज्यादा कम हो गई,
10: खर्चा उतना ही। तो अभी कब तक इसी तरह लगा रहेगा?
9: 2 महीना लग जाएगा लगभग।
11: अभी कुछ भी नहीं देख पा रहे, बोट चल नहीं रही है, तो इससे जो हमारा यहाँ आने का इच्छा था वो सब खत्म सा हो गया,
10: अधूरा ही
11: रह गया। हाँ, अधूरा रह गया।
10: और घाटों का आपसी कनेक्शन भी कटा हुआ?
11: हाँ, कटा हुआ। हाँ, एक दूसरे घाट से जा नहीं सकते।
10: इससे थोड़ी निराशा है?
11: निराशा तो है ही, अभी इतनी दूर से आए हैं इसी काम के लिए, सिर्फ बाबा के दर्शन हो पाएंगे हमें।
12: चारों तरफ घूम भी नहीं पा रहे हैं बारिश की वजह से, पानी पानी है।
13: भदोही के रहने वाले हैं, यहाँ घूमने आए थे और यहाँ पे फिलहाल बोटिंग के लिए आए थे और बोटिंग बंद हो गई है, तो काफी डिसअपॉइंटेड हो गए हम लोग। अब ये सब भी नहीं चल रहा और बाकी अगर वैसे होता ये नाव में भी घूम लेते, वो भी बंद हो गया है पानी बढ़ने की वजह से।
10: अभी नमो घाट पे क्या कंडीशन है? पानी यहाँ भी भर गया है?
13: अब पानी है तो बस देख के घर जाना पड़ेगा वापस, ऐसे बिना घूमे टहले।
14: घाटों पे थोड़ा रश भी है और लेकिन पानी का स्तर बढ़ा हुआ है, वो उस वजह से हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे। पानी में पीछे से भी पानी थोड़ा वो आ रहा है, मिट्टी वाला आ रहा है। तो वोटिंग वगैरह हो नहीं रही, तो जो हम वोटिंग में जाना चाहते थे वो नहीं जा पा रहे।
15: थोड़ी सी निराशा
14: तो रहती है। अभी इतनी दूर से आए हैं तो रहेगा, बार बार आना होता नहीं है। और भगवान बाबा जी की कृपा रही तो हम अगले सावन फिर आएंगे।
16: पानी का स्तर काफी बड़ा हुआ है जिसके कारण बोटिंग वगैरह बंद की हुई है और बहुत सारे घाट आपस में से जुड़े हुए नहीं है।
7: वाराणसी में गंगा का जल स्तर अभी खतरे के निशान से 4.5 मीटर नीचे है, पर प्रति घंटे 4 सेंटीमीटर का बढ़ाव दर्ज किया जा रहा है। माना जा रहा है कि गंगा का जल स्तर यूं ही बढ़ता रहा तो जल्दी ही नमो घाट पूरी तरह से पानी में समा जाएगा, इसलिए एहतियात के तौर पर जगह जगह गंगा घाटों पर NDRF और जल पुलिस की तैनाती कर दी गई है।
17: आप लोग किनारों पर ही स्नान करें, किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें।
7: ऐसा नहीं कि गंगा के घाट पर पूजा पाठ और दूसरे धार्मिक क्रियाकल्प बंद है, सब कुछ पहले जैसा ही है, पर गंगा आगे बढ़ती जा रही है और घाट पर आरती के लिए बनाए गए प्लेटफॉर्म पीछे जा रहे हैं। रस्सियों का जो घेरा है उसके आगे नहाने की इजाजत नहीं। परेशानी पुरोहित और यजमान दोनों को है, पर बारिश के दिनों में ये तस्वीर नई नहीं, छोटे नावों और मोटर बोट के चलने पर रोक है।
8: एहतियातन देख सकते हैं कि नावों के संचालन पर, मोटर बोटों के संचालन पर फिलहाल प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसके चलते घाट किनारे नावें बंधी हुई हैं, थमी हुई हैं और लगातार नाविक भी इस पर निगरानी रखे हुए हैं। तो वहीं हम इस समय वाराणसी के 80 घाट पर हैं, इसके बगल में गंगा महल घाट है, फिर रीवा और तुलसी घाट, लेकिन साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो घाटों का आपसी कनेक्शन है, एक घाट से दूसरे घाट तक 84 घाटों का आपसी जो संपर्क का रास्ता है वे टूट गया है और लगातार बढ़ाव जारी रहने से जो तीर्थयात्री आ रहे हैं, जो यहाँ घूमने लोग आ रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं, आस्थावान आ रहे हैं, उनको भी काफ़ी निराशा हाथ लग रही है क्योंकि नौका संचालन पर रोक लगी हुई है। और माना जा रहा है कि अगर गंगा के जलस्तर में यूं ही बढ़ोतरी जारी रही तो दिक्कत और बढ़ेगी। फिलहाल तटवर्ती इलाकों के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, या यहाँ रोजी रोटी चलाने वाले हों या गंगा आरती करने वाले आस्थावान हों, लगातार अपने साजो सामान को ऊपर की ओर शिफ्ट कर रहे हैं। और आज 5वीं बार दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती भी पीछे शिफ्ट होगी। माना जा रहा है कि ये आरती आज छत पर होगी, तो लगातार गंगा के जो बढ़ते जलस्तर से लोगों की दुश्वारियां बढ़ती चली जा रही हैं और माना जा रहा है कि अगर यूं ही गंगा का जलस्तर बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में मुश्किलें और भी बढ़ेंगी।
7: वाराणसी में गंगा घाट पर जो रौनक होती है वो बारिश के इन दिनों में थोड़ी कम है। गंगा में पानी जब तक बढ़ रहा है और घाट सुरक्षित नहीं, तब तक हालात ऐसे ही रहने वाले हैं। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
18: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
19: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
18: सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति, हरियाली और उत्सवों का पवित्र और प्रिय महीना माना जाता है और इस महीने में विशेषकर कावड़ यात्रा की भव्य छटा देखने को मिलती है। इस बार भी बिहार के मुंगेर में कावड़ मार्ग पर कई भव्य रंग देखने को मिल रहे हैं।

0: सावन के महीने में कांवड़ पथ की रौनक देखते ही बनती है। बिहार के मुंगेर में हर दिन असरगंज कच्ची कांवड़िया पथ पर आस्था और उत्साह का संगम दिखता है। बम बम भोले और हर हर महादेव का जय घोष करते हुए बड़ी संख्या में शिव भक्त अनोखी छटा बिखेरते हुए बैद्यनाथ धाम की ओर बढ़ते दिखते हैं। ये दृश्य हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब इस तस्वीर को ही देखिए, इसमें भक्त अपने आराध्य को कंधे पर विराजमान कर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। भोलेनाथ अपने भक्तों के भाव देखते हैं, उनके प्रति अपने अगाध आस्था को प्रदर्शित करने के लिए भक्त बाबा को चश्मा मुकुट सबसे पूरी तरह सजाकर दिव्य रूप में अपने साथ ले जा रहे हैं। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से आया कांवड़ियों का ये दल सुल्तानगंज से जल भरने के बाद झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर जल अर्पित करने बढ़ता चला जा रहा है।
1: हम लोग अयोध्या से चलकर यहाँ सुल्तानगंज आए और बाबा भोलेनाथ के दरबार में जा रहे हैं। बाबा का ये जो रूप है बहुत ही निराला हम लोगों को लगा, इसीलिए बाबा को इस गेटअप में हम लोगों ने तैयार किया है। चश्मा लगा के हम लोग ले चल रहे हैं, खुद चश्मा लगाते हैं और बाबा को भी चश्मा लगा के लेके चल रहे हैं।
0: आस्था की इसी यात्रा में कोई कंधे पे कांवड़ उठा रहा है तो कोई अपने बच्चों को भंगी में लेकर बाबा के दरबार की ओर बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल निवासी शिव भक्त अपने 7 महीने के बेटे को भंगी में बैठाकर बाबा की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, तो प्रयागराज निवासी शिव भक्त अपनी 2.5 साल की बिटिया को गमछे से बनी भंगी में लेकर जा रहे हैं। सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर लगभग 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके भक्त देवघर पहुंचते हैं और भगवान भोले शंकर को जल अर्पित करते हैं। इस दौरान कांवड़ मार्ग में शिव भक्तों के लिए की गई व्यवस्थाएं उनकी राह आसान कर देती है।
2: बहुत अच्छा है, लाइट है और निःशुल्क जल सेवा भी है, शौचालय है, सुलभ शौचालय, मेडिसिन वगैरह भी मिल रही है और क्या ही चाहिए, ये तो काफी है।
0: बैद्यनाथ धाम की महिमा अपरंपार मानी जाती है। यहाँ सावन के पूरे महीने कांवड़ियों की भीड़ रहती है, विशेषकर सोमवार को बाबा पर जल अर्पित करने के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ता है।
3: जो हमारे ज्योतिर्लिंग में द्वादश ज्योतिर्लिंग में एक हमारे ऐसे ही पांचवा है और यहाँ पे शिव और शक्ति, शक्ति के ऊपर साथ में विराजमान है शिव। एक ऐसा शिव है जहाँ पे सिंदूर भी चढ़ता है, चूंकि शक्ति होने के कारण ये परंपरा बनी हुई है। और यहाँ पे एक चीज खास ये है, और जगह में सब आप त्रिशूल देखेंगे लेकिन यहाँ बाबा वैजनाथ के ऊपर पंसूर देखेंगे, इनका एक अलग ही महत्व रहा है और हम लोग अपने जीवन में इसको बहुत हमें देखने को मिला है कि इनकी कृपा सब पर बनी रहती है और आगे भी बनी रहे हर हर महादेव।
0: बैद्यनाथ धाम में सावन ही नहीं बल्कि भादो के महीने में भी कांवड़ियों और शिव भक्तों का तांता लगा रहता है। सावन जहां मुख्य कांवड़ मेला मास माना जाता है, वहीं भादो मास में भी श्रद्धालु और डाक कांवड़िए बाबा का जलाभिषेक करने के लिए पहुंचते हैं। मुंगेर से गोविंद कुमार और देवघर से शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
5: मंगल का कौन सा योग वैवाहिक जीवन में अलगाव ले आता है? मंगल का कौन सा योग साहस और आत्मविश्वास को कमजोर कर देता है? मंगल का कौन सा योग जीवन में प्रचंड दुर्घटना का कारण बनता है? कौन से हैं मंगल के अशुभ योग और क्या है उनका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: झूलनोत्सव के बीच राम मंदिर का भव्य श्रृंगार, सुनहरी रोशनी से नहाया मंदिर का शिखर, सावन के पवित्र महीने में देखा अनोखा नजारा। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की तैयारियां तेज, मुंबई के प्रसिद्ध काला चौकी महागणपति का हुआ आगमन, सिंह पर सवार नजर आए 22 फीट ऊंचे बप्पा। पवित्र सावन महीने में धूमधाम से जारी है कांवड़ यात्रा, जौनपुर में शिव भक्तों पर की गई फूलों की बारिश, प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से बरसाए फूल। पहाड़ से मैदान तक मौसम की मेहरबानी बरकरार, शिमला में 21 अगस्त तक बारिश का अलर्ट, चंडीगढ़ में जमकर बरसे पतरा। महिला हॉकी वर्ल्ड कप में भारत का दबदबा, साउथ अफ्रीका को 6-1 से हराकर पूल डी में हासिल किया टॉप स्थान, अब इंग्लैंड से होगा सामना।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चल।
7: नमस्कार, मैं हूं नवजोत संधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी किसी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं, यहां हर किसी के हाथ में एक कैमरा है, हर घटना हर तस्वीर कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है, कोई पुरानी घटना बताकर परोस दी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, लेकिन फैक्ट चेक के जरिए हम ऐसी खबरों की पड़ताल करते हैं, आप तक सही और सच्ची खबर लेके आते हैं। जैसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात होगी उस वायरल वीडियो की जिसको शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि नेपाल में अवैध घुसपैठियों की बस्ती को आग के हवाले कर दिया गया। सच्चाई क्या आ गया जानिए। इसके अलावा हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी जिसको शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि हरियाणा के चरखी दादरी में 6 अगस्त को हुई गोलीबारी का असली वीडियो है। सच्चाई आगे बताएंगे, शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और
7: सोशल मीडिया पर भीषण आग का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आग इतनी तेज है कि आसमान में धुएं की लपटें नजर आ रही है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि ये नेपाल के एक ऐसे गांव का वीडियो है जहां अवैध घुसपैठिए रहते हैं। दावा है कि इस पूरे गांव को आग के हवाले कर दिया गया है, जिसके बाद पूरा इलाका जलकर खाक हो गया। क्या है सच्चाई, देखिए हमारी रिपोर्ट।
9: हाल ही में नेपाल में धार्मिक प्रतीकों और लाउडस्पीकर विवाद को लेकर दो समुदायों के बीच हिंसक झड़पें हुई थीं। हालात इतने बिगड़ गए थे कि इस पर काबू पाने के लिए कई जिलों में कर्फ्यू लगाया गया और सेना को भी तैनात किया गया। अब इसी से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर भीषण आग का ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। आग इतनी तेज है कि आसमान में धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। कुछ लोग इस वीडियो के जरिए ये दावा कर रहे हैं कि ये नेपाल के एक ऐसे गाँव का वीडियो है जहां अवैध घुसपैठिए रहते थे। दावा है कि इस पूरे गांव को आग के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद पूरा इलाका जलकर राख हो गया। वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, गजवाए नेपाल की मानसिकता पाले नेपाल में घुसे अवैध घुसपैठियों के पूरे गांव को जलाकर राख कर दिया, न सबूत बचे न गवाह। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
7: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आग इतनी तेज है कि आसमान में धुएं की लपटें नजर आ रही हैं। कुछ लोग इस वीडियो के जरिए दावा कर रहे हैं कि नेपाल के एक ऐसे गांव का वीडियो है जहां पर अवैध घुसपैठिए रहते हैं और दावा यह है कि इस पूरे गांव को आग के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद पूरा इलाका जलकर खाक हो गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ वीडियो को शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने इसकी पड़ताल शुरू की और दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और इसे सुना भी। इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड से आ रही आवाजों पर गया और जब हमने इसे गौर से सुना तो इशारा मिला कि ये नेपाली नेपाल में बोली जाने वाली भाषा नहीं है। ये कहीं और की भाषा हो सकती है। इसके अलावा वीडियो के फ्रेम दर फ्रेम देखने से ऐसा लग रहा है कि किसी पहाड़ के जंगल में ये आग लगी हुई है और फायर ब्रिगेड की एक टीम इसे बुझाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वीडियो में कहीं पर भी घर देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि अगर किसी इंसानी बस्ती को आग के हवाले किया जाता तो उसके निशान यहां पर जरूर नजर आते, लेकिन वीडियो में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। साथ ही सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिलती है जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, क्योंकि अगर वीडियो का संबंध नेपाल से होता तो कहीं ना कहीं इसके बारे में जानकारी जरूर होती। लिहाजा हमने वायरल हो रहे दावे को सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही था कि अगर दावा सही है तो फिर इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। हमारा दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए लोगों को गुमराह करने की कोशिश तो नहीं हो रही है। सच और झूठ क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए।

0: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। पड़ताल के लिए सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये तुर्की के मीडिया संस्थान के यूट्यूब चैनल पर मिला। यहाँ इसे 29 जुलाई को अपलोड किया गया था। कैप्शन के मुताबिक ये तुर्की के मुगला प्रदेश में लगी जंगल की आग का वीडियो है। सर्च के दौरान तुर्की की एक और न्यूज आउटलेट की 29 जुलाई की वीडियो रिपोर्ट में भी वायरल वीडियो वाला हिस्सा देखने को मिला। रिपोर्ट के मुताबिक मुगला के सेडी केमर जिले में एक खेती बाड़ी की जगह पर लगी आग तेज हवाओं के चलते जंगल तक फैल गई और देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया। एक रिपोर्ट से ये भी जानकारी सामने आई कि इस आग को बुझाने के अभियान में 5 एयरक्राफ्ट, 18 हेलीकॉप्टर और 93 दमकल की गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। इस अभियान में 800 से ज्यादा जवान शामिल थे। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। वायरल हो रहे वीडियो का नेपाल से कोई लेना देना नहीं है। ये वीडियो तुर्की के मुगला का है, जहां एक जंगल में भयानक आग लग गई थी। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: हरियाणा के चरखी दादरी में 6 अगस्त को दिन दहाड़े सिटी पुलिस थाने के सामने एक स्कॉर्पियो गाड़ी पर करीब 30 राउंड की फायरिंग हुई। इस गोलीबारी में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनमें से एक की मौत हो गई। इस घटना से जोड़ते हुए सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि हरियाणा के चरखी दादरी में 6 अगस्त को ही गोलीबारी का ये असली वीडियो है, लेकिन सच्चाई क्या है इस रिपोर्ट में जानिए।
2: हरियाणा के चरखी दादरी में 6 अगस्त को दिन दहाड़े सिटी पुलिस थाने के सामने एक सनसनीखेज तरीके से एक स्कॉर्पियो गाड़ी पर करीब 30 राउंड की फायरिंग हुई थी। इसी घटना के संदर्भ में अब सोशल मीडिया पर एक क्लिप काफी वायरल हो रही है, जिसमें काली स्कॉर्पियो गाड़ी पर अंधाधुंध गोलियां चल रही हैं। इसे शेयर करने वाले कई सोशल मीडिया यूजर्स दावा कर रहे हैं कि ये चरखी दादरी में हुई गोलीबारी का नजारा है। वायरल वीडियो के पहले हिस्से में गाड़ी पर गोलीबारी और गोली लगने के बाद गाड़ी की हालत दिखाई गई है। वहीं दूसरे हिस्से में खून से लथपथ एक शख्स को गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे हुए देखा जा सकता है। कई लोग गाड़ी को घेरे हुए हैं। वीडियो शेयर करते हुए कई सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया कि ये 6 अगस्त को चरखी दादरी में कोर्ट के पास हुई 30 राउंड की फायरिंग का असली दृश्य है और रोहित गोदारा गैंग से जुड़े नवीन बॉक्सर नाम के एक शख्स ने इसकी जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि हरियाणा के चरखी दादरी का वीडियो है और 6 अगस्त को हुई गोलीबारी का ये असली वीडियो है। वायरल वीडियो के पहले हिस्से में गाड़ी और गोलीबारी और गोली लगने के बाद गाड़ी की हालत दिखाई गई है। वहीं दूसरे हिस्से की बात करें तो खून से लथपथ एक शख्स को गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे हुए देखा जा सकता है। कई लोग गाड़ी को घेरे हुए हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की जांच शुरू की। तो सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को हमने गौर से देखा। इस दौरान हमें ये इशारा मिला कि ये अलग अलग क्लिप्स को एक साथ जोड़कर वीडियो बनाया गया हो सकता है। इसके अलावा वायरल हो रहे वीडियो के पहले हिस्से में जिस गाड़ी पर फायरिंग हो रही है उसे जब हमने फ्रेम दर फ्रेम गौर से देखा तो कुछ ऐसी गलतियां देखने को मिली जिससे हमें वायरल वीडियो के असली होने पर शक हुआ। उदाहरण के तौर पर वीडियो में नजर आ रहे काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी का नंबर प्लेट पर जो नंबर दिख रहा है वो अजीब तरीके से लिखा हुआ है। अक्सर AI वीडियो में ये गलतियां देखने को मिलती हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि जिस गाड़ी पर 6 अगस्त को हरियाणा के चरखी दादरी में फायरिंग हुई थी वो काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी ही थी। जब इस गाड़ी को थाने लाया गया था तब उसका वीडियो भी सामने आया था। आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी उसे देख सकते हैं। वायरल हो रहे वीडियो में नजर आ रही गाड़ी और ओरिजिनल वीडियो में दिख रही गाड़ी को अगर आप देखेंगे तो आपको फर्क साफ नजर आ जाएगा। वायरल वीडियो में फायरिंग के बाद गाड़ी की हालत बिल्कुल खराब हो गई थी, जबकि थाने में जो गाड़ी खड़ी है उसमें ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। लिहाजा हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल ये कि अगर दावा सही है, सच्चा है, तो फिर वायरल हो रहा वीडियो के बारे में कोई प्रमाणिक जानकारी हमें क्यों नहीं मिली। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर एडिटेड वीडियो के जरिए लोगों के बीच भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा, सच और झूठ क्या है इस रिपोर्ट में जानिए।
2: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। हमें असली वीडियो एक इंस्टाग्राम यूजर के हैंडल पर मिला। 12 मई को पोस्ट किए गए इस वीडियो से साफ हो जाता है कि 6 अगस्त को हुई गोलीबारी से इसका कोई संबंध नहीं है। वायरल वीडियो के कैप्शन में यूजर ने वीडियो एडिटिंग का क्रेडिट किसी दूसरे यूजर को दिया है। इस पोस्ट के रिप्लाई में कई यूजर्स ने इस वीडियो को AI जनरेटेड बताया, जिस पर कोई असहमति जताए बिना यूजर ने सिर्फ हंसी का इमोजी बनाया है। इसके बाद हमने गूगल AI से बनी तस्वीरों और वीडियो को डिटेक्ट करने वाले टूल सिंथाइडी से इस वीडियो को टेस्ट किया। इस टूल ने भी बताया कि ये वीडियो गूगल AI की मदद से बनाया गया है। साथ ही हमने इसे हाई मॉडरेशन टूल से भी टेस्ट किया। इस टूल ने भी इस वीडियो के AI से बने होने की 96.2% संभावना बताई। हालांकि वायरल वीडियो के दूसरे हिस्से में जहां खून से लथपथ एक शख्स को गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे हुए देखा जा सकता है, वो हिस्सा चरखी दादरी की असली घटना का है। इस गोलीबारी में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनमें से एक की मौत हो गई थी। इस वारदात के बाद SP लोकेश कुमार ने 6 पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड किया था। इस तरह हमारी पड़ताल से ये साफ हो गया कि दो हिस्से को जोड़कर ये वीडियो तैयार किया गया है। स्कॉर्पियो में गोलीबारी वाला वीडियो का पहला हिस्सा AI से बनाया गया है, चरखी दादरी में हुई गैंगवार से इसका कोई लेना देना नहीं है, जबकि दूसरे हिस्से में जहां खून से लथपथ एक शख्स को गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे हुए देखा जा सकता है, वो हिस्सा चरखी दादरी की असली घटना का है। रिद्धेश दत्ता के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे वायरल वर्ल्ड में क्या कुछ हो रहा है, लिए चलेंगे आपको वायरल दुनिया।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
1: और वक्त हो चला है फैक्चर के आखिरी सफर का, आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है।
7: सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है, जिसमें एक छोटी बहन अपने भाई की जिस तरह देखभाल करती नजर आ रही है, उसे देखकर लोग भावुक हो रहे हैं। वायरल वीडियो में भाई बहन के बीच का बेहद मासूम रिश्ता देखने को मिलता है। छोटा भाई अपनी ही दुनिया में मस्ती करता दिखाई देता है, जबकि उसकी बहन लगातार उसके छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखती नजर आती है। कभी वो भाई की स्कूल ड्रेस ठीक करती है, तो कभी उसे संभालती हुई दिखाई देती है। वीडियो का सबसे प्यारा हिस्सा वो है जब बहन अपने छोटे भाई को गोद में लेकर घूमती नजर आती है। उसकी उम्र भले ही कम हो, लेकिन भाई के लिए उसके व्यवहार में जिम्मेदारी और अपनापन साफ दिखाई देता है। भाई की ड्रेस ठीक करने से लेकर उसे संभालने तक बहन के हर छोटे प्रयास में एक अलग ही प्यार नजर आता है। ऐसा लगता है जैसे वो अपने छोटे भाई की सिर्फ बहन नहीं, बल्कि उसकी छोटी से केयर टेकर भी हो। यही मासूम पल वीडियो को खास बना रहे हैं। इसमें ना कोई बड़ी बात है और ना ही कोई बनावटी भावनाएं, लेकिन भाई बहन के बीच दिख रहा अपनापन सीधे लोगों के दिल तक पहुंच रहा है। सोशल मीडिया पर ये दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। इंस्टा पर शेयर इस वीडियो के साथ एक लाइन लिखी गई है, जिसका मतलब है कि जिंदगी में आप सच में बहुत अमीर हैं। अगर आप अपने बच्चे को उसके जन्मदिन पर वो चीज दे सकते हैं जिसकी उसे सबसे ज्यादा इच्छा थी। वीडियो की शुरुआत बेसबॉल प्रैक्टिस से होती है। बच्चा मैदान में बल्लेबाजी की तैयारी करता दिखाई देता है। उसके माता पिता उससे खास शॉट लगाने के लिए कहते हैं। बच्चा पूरी मेहनत के साथ बल्ला घुमाता है और स्लो मोशन में शॉट लगाने की कोशिश करता है। इसके बाद कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट आता है। जैसे ही बच्चा बल्ला पीछे करता है, उसके पिता किसी बहाने से उसके हाथ से बल्ला ले लेते हैं। बच्चे को उस वक्त शायद समझ ही नहीं आता

0: बच्चे के हाथ पीछे की ओर होते हैं। जैसे ही वो अपने हाथ आगे लाता है और नए बल्ले को देखता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दरअसल ये वही बल्ला था जिसे वो अपने जन्मदिन पर पाना चाहता था। बच्चे के चेहरे पर खुशी और आंखों में आए आंसू देखकर साफ समझ आता है कि उसके लिए ये सिर्फ एक नया बैट नहीं था, ये उसके माता पिता की तरफ से दिया गया ऐसा तोहफा था जिसमें उसकी मेहनत, प्यार और बच्चे की पसंद को समझने की भावना छिपी थी। सोशल मीडिया पर ये वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है। वीडियो में दादा पोती के रिश्ते की खूबसूरत झलक देखने को मिल रही है। दादाजी का स्नेह और पोती के प्रति अपनापन देखकर यूजर्स भावुक हो रहे हैं। लोग इस प्यारे पल को खूब पसंद और शेयर कर रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि दादाजी अपनी पोती के स्कूल जाने की तैयारी में उसका साथ देते दिखाई देते हैं। वो बड़े प्यार से उससे पूछते हैं कि क्या वो उसके स्कूल बैग में किताबें रखने में मदद करेंगे।
1: मैं हेल्प कर दूंगा तो बता दूं बैग में, मैं डाल देता हूं। अच्छा, हो रहा है अभी।
0: दादाजी का ये छोटा सा सवाल सुनने में भले ही सामान्य लगे, लेकिन इसमें पोती के लिए उनका अपनापन और चिंता साफ दिखाई देती है। बच्चों के लिए स्कूल जाने की तैयारी रोजमर्रा की बात होती है, लेकिन दादाजी के लिए पोती के साथ बिताया यही छोटा सा पल बेहद खास नजर आता है। वीडियो में दादाजी जिस सहज अंदाज में उसकी मदद करने की बात करते हैं, वो लोगों को काफी भावुक कर रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को खूब देखा जा रहा है। वीडियो में बच्चे को आर्मी की यूनिफॉर्म पहनाई जा रही है। जैसे ही वो पूरी तरह सैनिक की वर्दी में तैयार होती है, उसके चेहरे की खुशी देखते ही बनती है। वर्दी पहनते ही बच्चे का अंदाज भी पूरी तरह बदल जाता है। वो खुद को आर्मी की ड्रेस में देखकर काफी उत्साहित नजर आती है। उसके चेहरे पर मासूमियत तो है ही, साथ ही ऐसा आत्मविश्वास भी दिखता है जिसे देखकर परिवार वाले भी खुश हो जाते हैं। वीडियो का सबसे दिलचस्प हिस्सा उस समय आता है जब बच्ची वर्दी पहनने के बाद बेहद मासूम अंदाज में कहती है, मुझे टेररिस्ट को मारना है। बच्चे की बात सुनकर घर में मौजूद लोग मुस्कुराने लगते हैं। परिवार वाले मजाकिया अंदाज में उससे पूछते हैं कि आखिर उसके लिए टेररिस्ट कहां से लेकर आए।
2: अब आतंकवादी कहां से लाऊं तेरे लिए मैं? आतंकवादी कहां है यार? बेटा हम छोड़ दिए तो आतंकवादी को कैसे मारोगी?
0: बच्चे के इस मासूम जवाब और उसके एक्सप्रेशन ने सोशल मीडिया यूजर्स का भी दिल जीत लिया। मामा के घर आकर डोरेमोन देखने वाला ये भांजा अब खुद डोरेमोन बन गया है। बच्चे ने अपनी पैंट के जेब को ही डोरेमोन की पॉकेट बना लिया और उसमें घर का सामान छुपा कर बैठ गया। इसके बाद एक एक करके जेब से सामान निकालने लगा, जैसे डोरेमोन अपने गैजेट निकाल रहा हो, कभी कोई चीज तो कभी कुछ और। बच्चे का ये अंदाज देखने में बेहद मजेदार है। घर के सामान को अपनी जेब में छुपा कर जिस तरह बच्चा उसे निकाल कर दे रहा है, उसकी क्यूटनेस ने लोगों का दिल जीत लिया। पढ़ाई का नाम सुनते ही ज्यादातर बच्चों के चेहरे उतर जाते हैं, और जब बात केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल की हो तो इसे याद करना किसी पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है। लेकिन बेंगलुरु के एक टीचर ने इस मुश्किल काम को बच्चों के लिए खेल बना दिया। वीडियो में साफ दिखता है कि कैसे आकाश ने बोरिंग केमिस्ट्री क्लास को एक एनर्जेटिक पार्टी में बदल दिया। ब्लैक बोर्ड पर पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स लिखे हैं और एक हाथ में स्केल पकड़े आकाश एक एक एलिमेंट की तरफ इशारा करते हुए मस्ती में गा रहे हैं। इस दौरान बच्चों का जोश देखने लायक था। बच्चे सिर्फ बैठे नहीं रहे बल्कि अपने टीचर के साथ सुर से सुर मिलाकर नाचने और गाने लगे। बच्चों का ऐसा उत्साह देखकर खुद टीचर आकाश भी अपने आप को रोक नहीं पाए और उनके साथ झूमने लगे। कश्मीर से खूबसूरत मोमेंट सामने

0: है। इस पल को लोग कश्मीरियत भी बोल रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बुजुर्ग महिला जिन्होंने पारंपरिक कश्मीरी हेड रैप पहना हुआ है धीरे धीरे चलकर सीआरपीएफ जवान के पास आती है। उनके हाथों में ताजे फल हैं जो वो मुस्कुराते हुए जवान को भेंट करती है। जवान भी इस निस्वार्थ प्यार को देख कर अभिभूत हो जाता है। वो खुशी खुशी उस तोहफे को स्वीकार करता है और कैमरे की तरफ उन फलों को दिखाते हुए बेहद भावुक शब्दों में महिला का शुक्रिया अदा करता है।
1: भैया हम कश्मीर में खड़ा है, माता जी देख लो हमें मुहा के लेके आए हैं, देख लो दिए कितना अच्छा, थैंक यू शुक्रिया, देख लो भैया कितना सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद।
0: इस वीडियो की सबसे खास बात यह है कि महिला और जवान के बीच कोई लंबी चौड़ी बातचीत नहीं होती है, लेकिन चंद सेकंड का ये वीडियो कश्मीरियत, इंसानियत और सुरक्षा बलों के प्रति स्थानीय लोगों के सम्मान की एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर पेश करता है। इंडोनेशियाई सेना के एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों को भावुक कर रहा है। वीडियो में सेना की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जवानों के लिए खास समारोह रखा गया था। वहाँ ज्यादातर युवा सैनिकों के साथ उनके माता पिता, पार्टनर या परिवार के लोग मौजूद थे। हर तरफ खुशी और गर्व का माहौल था, लेकिन इसी बीच एक जवान ऐसा भी था जो अकेला खड़ा नजर आया। जहाँ बाकी सैनिक अपने करीबियों के साथ इस खास पल को सेलिब्रेट कर रहे थे, वहीं उस जवान के पास कोई अपना दिखाई नहीं दे रहा था। वो चुपचाप बाकी लोगों से थोड़ा अलग खड़ा था। तभी वहाँ मौजूद एक सीनियर अधिकारी की नज़र उस जवान पर पड़ी। उन्होंने उसकी स्थिति को समझने में देर नहीं लगाई। अधिकारी सीधे उसके पास पहुँचे और उसे अपने पास बुलाकर गर्मजोशी से गले लगा लिया। ये कोई औपचारिक सैन्य सलाम या बधाई नहीं थी, बल्कि बिल्कुल एक पिता की तरह दिया गया अपनापन था। शुरुआत में जवान ने खुद को संभालने की कोशिश की, उसने अपनी भावनाओं को रोक कर रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन शायद उस पल का अकेलापन और अचानक मिला प्यार दोनों ही उसके लिए बहुत ज्यादा थे। कुछ ही सेकंड में उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, वो अधिकारी के कंधे से लगकर रो पड़ा। सोशल मीडिया पर इन दिनों अफ्रीकी देश तंजानिया के एक नौजवान फजल का वीडियो काफी छाया हुआ है। फजल ने एक पंजाबी गाना इतनी खूबसूरती से गाया कि सुनने वाले हैरान रह गए। फजल को पंजाबी भाषा बिल्कुल नहीं आती, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जिस साफ अंदाज और सही उच्चारण के साथ ये गाना गाया है, उसने इंटरनेट पर सभी का दिल जीत लिया है।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: नवसारी के समुद्र से इस वक्त एक बड़ी और राहत भरी खबर निकलकर सामने आई है। समुद्र की ऊंची लहरों के बीच डूबती बोट में फंसी 9 जिंदगियों को सुरक्षित बचा लिया गया है। देखिए, दरअसल तोलाई बंदर से वलसाड की तरफ करीब 28 नॉटिकल माइल्स दूरी पर कृष्णपुर गांव की जयमाला बोट समुद्र में डूब गई। महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड इस बोट पर उस वक्त कुल 9 मछुआरे सवार थे और बोट के समुद्र में डूबने की खबर मिलते ही जिला प्रशासन ने बिना किसी देरी के रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। एनडीआरएफ की टीम ने बचाव अभियान में पूरी ताकत झोंक दी। उसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए समुद्र की चुनौती बड़ी थी, ऐसे में कोस्ट गार्ड से मदद मांगी गई। इसके बाद समुद्र में फंसी इन 9 जिंदगियों को बचाने के लिए कोस्ट गार्ड ने मोर्चा पूरी तरीके से संभाला। कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर समुद्र के ऊपर पहुंचा और शुरू हुआ जिंदगी बचाने का वो ऑपरेशन जिसमें हर पल बहुत अहम था। समुद्र की लहरों और मुश्किल हालात के बीच कोस्ट गार्ड के जवानों ने शानदार तालमेल और साहस दिखाते हुए सभी 9 मछुआरों का सफल एयरलिफ्ट रेस्क्यू करके दिखाया है और एक एक करके सभी मछुआरों को सुरक्षित समुद्र से बाहर निकाल लिया। और सबसे बड़ी बात इसमें यह रही कि ये जो खबर है, सभी 9 मछुआरे सुरक्षित रहे। हिमाचल प्रदेश के चंबा के भरमौर इलाके में भी 2 अलग अलग रेस्क्यू की घटनाओं को अंजाम दिया गया। एक घटना में 40 से 50 श्रद्धालुओं की उपंती दरिया के बीच जान बचाई गई, तो वहीं पर एक दूसरी घटना में एक युवक ने जान पर खेलकर दूल्हे की जान बचाई।
2: सैलाब का सामना कर रहे हिमाचल प्रदेश के चंबा के रेस्क्यू की ये 2 घटनाएं मिशन जिंदगी का जीता जागता सबूत है। पहली तस्वीर 40 से 50 श्रद्धालुओं की जिंदगी बचाने की है, तो दूसरी तस्वीर एक दूल्हे के रेस्क्यू की है। चंबा का भरमौर इलाका इन दिनों फ्लैश फ्लड का सामना कर रहा है। बलोट गांव के 84 चला में बादल फटने के बाद आए सैलाब की वजह से लोहे का एक पुल बह गया। बहाव इतना तेज था कि आने जाने के लिए बनी सड़क भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। सड़क और पुल के बह जाने से मां भगवती खुंडी वाली के दर्शन के लिए जा रहे करीब 40 से 50 श्रद्धालु बीच रास्ते में ही फंस गए। तस्वीरों में देख सकते हैं कि बहाव इतना तेज है कि इसके चपेट में आने से लोग खुद को बहने से बचा नहीं सकते थे। ऐसे मुश्किल वक्त में गांव वाले किसी देवदूत की तरह वहां पहुंचे। सभी श्रद्धालुओं को रास्ता दिखाते हुए गांव वाले आगे बढ़े और सैलाब के किनारे होते हुए एक ऐसी जगह पहुंचे जहां लोगों ने दरिया के ऊपर लकड़ी का एक अस्थायी पुल बनाकर सभी का सुरक्षित रेस्क्यू किया। लकड़ी के अस्थायी पुल पर चलते हुए सभी श्रद्धालु दरिया के दूसरी ओर पहुंचे, जिससे उनकी जान बच सकी। मंगलवार को ज्येष्ठ मंगलवार के अवसर पर माता के डल झील में पवित्र स्नान करने की भी परंपरा है, जिसके चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना रहती है। हालात को देखते हुए ऐसे में सावधानी की जरूरत है। बड़ग्राम में फ्लैश फ्लड के बीच एक और मिशन जिंदगी को अंजाम दिया गया। हुआ यूं कि वहां फ्लैश फ्लड आने से पनाली नाला अचानक विकराल रूप में बहने लगा, जिससे बारात फंस गई। संकट की इस घड़ी में एक स्थानीय लड़के ने साहस दिखाते हुए दूल्हे की जान बचाई। लड़के ने अपनी जान जोखिम में डालते हुए दूल्हे को अपनी पीठ पर उठाया और नाले को सुरक्षित पार करवाया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चंबा से विशाल आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: मंगल का कौन सा योग वैवाहिक जीवन में अलगाव ले आता है? मंगल का कौन सा योग साहस और आत्मविश्वास को कमजोर कर देता है? मंगल का कौन सा योग जीवन में प्रचंड दुर्घटना का कारण बनता है? कौन से हैं मंगल के अशुभ योग और क्या है उनका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी
0: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: झूलनोत्सव के बीच राम मंदिर का भव्य श्रृंगार, सुनहरी रोशनी से नहाया मंदिर का शिखर, सावन के पवित्र महीने में देखा अनोखा नजारा। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की तैयारियां तेज, मुंबई के प्रसिद्ध काला चौकी महागणपति का हुआ आगमन, सिंह पर सवार नजर आए 22 फीट ऊंचे बप्पा। पवित्र सावन महीने में धूमधाम से जारी है कांवड़ यात्रा, जौनपुर में शिव भक्तों पर की गई फूलों की बारिश, प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से बरसाए फूल। पहाड़ से मैदान तक मौसम की मेहरबानी बरकरार, शिमला में 21 अगस्त तक बारिश का अलर्ट, चंडीगढ़ में जमकर बरसे पतरा। महिला हॉकी वर्ल्ड कप में भारत का दबदबा, साउथ अफ्रीका को 6-1 से हराकर पूल डी में हासिल किया टॉप स्थान, अब इंग्लैंड से होगा सामना।

0: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं जान दांव पर लगाकर जान की हिफाजत करने वाली रेस्क्यू टीम की। अगस्त आधा गुजर चुका है, पर पहाड़ से लेकर मैदान तक बादल जमकर बरस रहे हैं, और इसकी वजह से खासतौर पर अगर हम देखें तो उत्तराखंड और हिमाचल में जिंदगी का कड़ा इम्तिहान है। अचानक बारिश से, किसी भी वक्त सैलाब से सामना हो रहा है, और लेकिन दिन हो या रात, SDRF की जो टीमें हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैद हैं, जुटी हुई हैं, और नदी नालों के उफान में फंसे लोगों को लगातार बचाया जा रहा है। आज आपको ऋषिकेश, देहरादून और चंबा समेत कई इलाकों में रेस्क्यू टीम का हैरतअंगेज हौसला दिखाएंगे। इन दिनों पहाड़ी इलाकों में क्यों सावधान रहने की आवश्यकता है, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ बात होगी काशी की, जहां पर गंगा का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है, और इसी वजह से घाट की बजाय छत पर गंगा आरती हो रही है। गंगा के घाटों पर सुरक्षा के इंतजाम तमाम आपको दिखाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के साथ, जहां पर मॉनसून की भारी बारिश के बाद नदी नालों में उफान देखने को मिल रहा है। ऊपरी इलाकों में तेज बारिश की वजह से अचानक नदियों में सैलाब आ गया है, और इसी वजह से ऋषिकेश में लोगों की जान पर बनाई है। लेकिन 24/7 मुस्तैद SDRF टीम ने पानी के तेज बहाव में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को बचा लिया। इसी तरह देहरादून में आधा दर्जन छात्रों की जान बचाई गई, जो नदी के बीच में टापू पर फंस गए थे। रिपोर्ट देखिए।
1: बादल बंदिश नहीं जानते, कहीं गरजे तो कहीं बरसे, और ऐसे बरसे कि सैलाब आ गया। पहाड़ों पर बारिश की मनमर्जियां ऐसी ही हैं कि अफरा तफरी मची है। कहीं बादल फटने से पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं नदियों में उफान है जो लोगों के लिए बड़ा खतरा है। पर शुक्र है कि इस चुनौती से निपटने के लिए रेस्क्यू टीम दिन रात जुटी हुई है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के ऋषिकेश की हैं, जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से बीन नदी में अचानक जलस्तर बढ़ गया। नदी की तेज धार की चपेट में ये कार आ गई। नदी का ऐसा रौद्र रूप और रात का वक्त, कार में फंसे दो नौजवानों को बचाना लगभग नामुमकिन लग रहा था, लेकिन SDRF के जवानों ने मोर्चा संभाला। अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर उन्होंने इस उफनती नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रस्सी के जरिए कुछ जवान नदी में उतरे और कार के करीब पहुंच गए। दूसरे सिरे पर मौजूद टीम के सदस्यों ने रस्सी को मजबूती से थामे रखा। नदी में पानी का बहाव इतना तेज था कि जरा सी चूक भारी पड़ सकती थी, लेकिन रेस्क्यू टीम ने एक एक करके पहले लड़कों को कार के अंदर से बाहर निकाला और फिर उन्हें थाम कर धीरे धीरे किनारे तक ले आए। जान बची तो लाखों पाए, पर ऐसे मुश्किल समय में अगर SDRF के जवान देवदूत बनकर नहीं आते तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। रेस्क्यू टीम की दिलेरी और उनका कौशल दिखाने वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है, और लोग इनके हौसले की तारीफ कर रहे हैं।
2: ये मामला में जो हमारी टीम है डालवाला में, हमें सूचना मिली लगभग 9:15 के लगभग कि एक मैक्स बीन नदी में पलट गई और जो नीचे चली गई, तो हमारी टीम तुरंत यहाँ पर पहुंची है। और यहाँ पे देखा तो एक व्यक्ति उसमें ऊपर बैठा हुआ दिखाई दिया, तो हमारी टीम रोप लगा के अपने उपकरणों के माध्यम से उस तक पहुंची है, नदी में, और उसको रेस्क्यू कर लिया गया और उसको हॉस्पिटल गया। तो उसके बाद पता चला कि एक व्यक्ति अंदर था जो बुरी तरह से फंसा था। उसके लिए टीम द्वारा हमारे बहुत भरसक प्रयास किया गया, और कई प्रयासों के बाद हम उस व्यक्ति का रेस्क्यू कर गए और उसको भी हमें हमारे द्वारा टीम द्वारा हॉस्पिटलाइज किया गया। हमारे सामने हमें दिखा कि जो व्यक्ति अंदर है वो भी चिल्ला रहा था कि मुझे बचाओ, और हमारी टीम उसी हौसले के साथ आगे बढ़ी, और सभी हमारे जो जितने भी हमारे यहाँ पे टीम के मेंबर्स हैं, सभी के प्रयास से हमारे रोप के माध्यम से उस तक पहुंच बनाई और उस व्यक्ति को हमारे द्वारा टीम द्वारा रेस्क्यू किया गया।
1: अगस्त आधा गुजर चुका है लेकिन उत्तराखंड में बेहिसाब बारिश का सिलसिला जारी है और उसका असर ये कि ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। आसमान से ली गई गंगा की ये तस्वीरें भले ही भव्य नजर आ रही हों, पर जमीनी सच्चाई ये है कि इस वक्त घाटों तक पानी है और नदी का प्रवाह ऐसा है कि घाटों पर गिनती के लोग हैं। शाम के वक्त जहां गंगा आरती होती है वहां तक गंगा का पानी पहुंच चुका है। हालात देखते हुए एसडीआरएफ की टीमें पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं।
2: नदी का जो जलस्तर है यानी कि चंद्रभागा का भी जलस्तर थोड़ा बढ़ गया है, यहां तक कि खारासोत का भी स्तर जलस्तर बढ़ चुका है। हमारी टीम अभी वहां पर गई थी तो कुछ लोग वहां पे नदी नालों में चले गए थे तो उनको हमने वहां पे हमारे जो लाउड के माध्यम से चेतावनी दी जा रही है कि आप नदी नालों में न जाएं और उस कारण गंगा का जलस्तर भी बढ़ रहा है और देर रात अभी भी बारिश चल रही है। हमारी टीमें एसडीआरएफ की टीमें पूरी तरह से अलर्ट है और किसी भी प्रकार की कोई हमें सूचना मिली तो हमारी टीम वहां पर रिस्पॉन्स करती है। ये जो अभी पानी बढ़ा है हमारी टीमें वहां पर गई हैं, सभी को जो स्थानीय लोग हैं जिनके कुछ कुछ लोग वहां पे आसपास जो घर है तो सभी को हमारे द्वारा बताया गया है कि आप पानी जो जलस्तर है उस पर नजर बनाए रखें और जैसे पानी बढ़ता है तो आप उससे दूर रहें, किसी भी प्रकार की कोई अपना जोखिम न लें।
1: वैसे ऋषिकेश ही नहीं उत्तराखंड के कई इलाकों में तेज बारिश के बाद चुनौतियां बढ़ गई हैं। देहरादून में स्वर्णा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और कई छात्रों की जान जोखिम में आ गई। ट्रैकिंग करने गए यूपीईएस यूनिवर्सिटी के 6 छात्रों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि नदी के पास एक मुसीबत उनका इंतजार कर रही है। जब गए थे सब कुछ ठीक ठाक था पर अचानक नदी में जैसे सैलाब आ गया। सभी छात्र नदी के बीच एक टापू में फंस गए। गनीमत रही कि छात्रों के वहां फंसे होने की खबर तुरंत एसडीआरएफ को मिल गई और टीम ने इस सैलाब का सामना करते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रात के वक्त यह ऑपरेशन आसान नहीं था। रेस्क्यू टीम ने सूझबूझ दिखाई, लोहे के पाइप को पुल की तरह इस्तेमाल किया। किनारे से टापू तक लगे पाइप के जरिए छात्रों को एक एक करके निकाला गया। अब टिहरी गढ़वाल की ये तस्वीरें भी देख लीजिए। कहने को तो ये बरसाती नाला है लेकिन मूसलाधार बारिश की वजह से इसमें उफान आ गया। कुछ लोग जो वहां मौजूद थे उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला और देखते ही देखते वो बेबस हो गए। लेकिन एसडीआरएफ की टीम अलर्ट पर थी। जवानों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया और दरिया के बीच जाकर रस्सियों की मदद से सभी को बाहर निकाल लिया। जो लोग इस सैलाब में फंस गए थे उनमें कुछ सैलानी भी थे जिन्हें पहाड़ों की ऐसी बारिश और सैलाब का जरा भी अंदाजा नहीं था लेकिन सुरक्षित निकलने के बाद उन्होंने राहत की सांस ली।
3: पिताजी का नाम क्या है?
4: धर्म सिंह।
3: धर्म सिंह। उम्र कितनी है आपकी?
4: उम्र 36।
3: 36 साल। घूमने?
4: नहीं तो
3: ओपन बनाया।
4: तुम
3: ये वो आप दोस्त का है वो तीनों के साइड
4: तो मैं किनारे।
1: देहरादून में बेहिसाब बारिश से नदी नालों में तेज तूफान है। टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास तमसा नदी भी रौद्र रूप में है और हालात ये हैं कि श्रद्धालुओं से नदी के पास न जाने की अपील की जा रही है। बारिश के चलते देहरादून के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। ऐसी तस्वीर उत्तराखंड के कई इलाकों में है और लोगों को नदी नालों से दूर रहने की अपील की जा रही है।
5: इस तरह से कई स्थानों पर बहुत ज्यादा बरसात हुई है और बरसात के कारण निश्चित रूप से कुछ दिक्कतें भी हुई हैं। कई कई जगह नदियों का पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है। ऋषिकेश के पास में जलस्तर काफ़ी हद तक बढ़ गया है। आज की बात करें तो आज देहरादून के लिए, टिहरी के लिए, पौड़ी और ऊधम सिंह नगर 4 जनपदों के लिए ऑरेंज अलर्ट है। सभी जनपदों को एसईओसी से निर्देश जारी किए गए हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी संबंधित से अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर ऐसे किसी स्थान पर रह रहे हैं जहाँ पानी के बढ़ने की संभावना है, जलस्तर बढ़ने की संभावना है, बाढ़ आने की संभावना है, ऐसे स्थानों पर जो लोग रह रहे हैं सावधानी के साथ रहें, अलर्ट पे रहें ताकि किसी प्रकार से पानी का स्तर बढ़ने पर उनको सकुशल वहाँ से निकासी संभव हो सके। इसके साथ साथ मैं सभी से यह भी अनुरोध करूँगा कि अपने मोबाइल में सचेत ऐप डाउनलोड कर लें ताकि मौसम के अपडेट लगातार उनको मिलते रहें और जो लोग ट्रेवल करना चाहते हैं अनावश्यक रूप से ट्रेवल करने से बचें।
1: ऐसी बारिश में चुनौतियां दूसरी भी हैं। पौड़ी देर प्रयाग मार्ग पर सौर के करीब पहाड़ी से भारी मलबा आने के कारण यातायात पूरी तरह से ठप नजर आ रहा है। सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई, यात्रियों को देर तक इंतजार करना पड़ा। हालांकि खबर मिलते ही प्रशासन तुरंत एक्टिव हो गया, मशीन से मलबा हटाने का काम शुरू हुआ और काफी मशक्कत के बाद रास्ता दुरुस्त किया गया। पौड़ी गढ़वाल में लगातार बारिश की वजह से भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं। महरगांव में भूस्खलन के बाद 4 लोग मलबे में दब गए। सूचना मिलते ही प्रशासन, SDRF और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और एक महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मौसम का रुख देखते हुए प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है और नदी नालों पर नजर बनाए हुए है। ऋषिकेश से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: आइए बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। उत्तराखंड की तरह ही हाल हिमाचल का देखने को मिल रहा है। कई जिलों में मूसलाधार बारिश की वजह से रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित है, पर मुश्किल बादल फटने के बाद तेज बारिश से है। चंबा में जब ऐसा हुआ तो नदी में सैलाब आ गया। पहाड़ों से आए मलबे की चपेट में आने से लोहे का एक पुल बह गया और लगभग 50 तीर्थयात्रियों की जान मुश्किल में फंस गई, लेकिन रेस्क्यू टीम ने ऑपरेशन चलाकर उनको बचा लिया। इसी तरीके से कुल्लू में भी नदी के उफान ने कुछ सैलानी फंस गए थे, जिन्हें SDRF ने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से सकुशल बाहर निकाला। रिपोर्ट देखिए।
6: एक तरफ सैलाब है, दूसरी ओर जिंदगी चुनौती बड़ी है। ऐसे हालात में कब, कहां और कैसे फंस जाएगा कहना मुश्किल है। बेहिसाब बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश
0: तो देखिए, हिमाचल में अगले 4 दिनों तक जबरदस्त बारिश का अनुमान जताया गया है। बिलासपुर, कांगड़ा और मंडी में ऑरेंज अलर्ट है, तो वहीं पर चंबा, कुल्लू, सोलन और शिमला में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। राज्य में 22 अगस्त तक बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान है। आज शिमला में जमकर बदरा बरसे, इसलिए मॉल रोड पर रंग बिरंगे छाते नजर आए। सैलानियों ने भी इस बारिश का जमकर लुत्फ उठाया। शिमला में लगातार हो रही बारिश की वजह से तापमान कम हो गया है और घिरे हुए बादलों की वजह से वहां की खूबसूरती में और 4 चांद लग गए। चलिए पहाड़ों के बाद अब मैदान का हाल देख लेते हैं। वाराणसी में इन दिनों गंगा घाट पर भीड़भाड़ पहले जैसी नहीं है, सैलानियों की तादाद भी कम है। वजह है गंगा का बढ़ता हुआ जलस्तर। गंगा खतरे के निशान से अभी भी नीचे है, लेकिन तमाम घाटों पर पानी आ चुका है और इसी वजह से घाट पर सुरक्षा ज्यादा बढ़ा दी गई है। आरती की जगह अब बदल दी गई है। नमो घाट पर बैरिकेडिंग है और छोटी नावों पर रोक लगा दी गई है। देखिए वाराणसी से ये खास रिपोर्ट।
7: गंगा के दोनों किनारों को जोड़ता है यह पुल और यहाँ से देखिए तो बनारस में गंगा की विशाल धारा का अंदाजा होता है, पर सैलानी दूर से नहीं घाट पर जाकर गंगा के निर्मल पानी का अनुभव लेना चाहते हैं, नाव पर घूमना चाहते हैं, पर इन दिनों ये मुमकिन नहीं क्योंकि बारिश की वजह से गंगा का जल स्तर बढ़ गया है। यहाँ तक कि नमो घाट पर बने 75 फीट ऊंचे नमस्ते के स्कल्पचर तक पानी है और सुरक्षा के मद्देनजर घाट की बैरिकेडिंग कर दी गई है। सुरक्षा गार्ड्स लोगों को आगाह कर रहे हैं।
8: धीरे धीरे ही सही, वाराणसी में गंगा ने अपना रौद्र रूप अख्तियार करना शुरू कर दिया है। नमो घाट जो लोगों के बीच में बहुत ही पसंद किया जाने वाला नया घाट है, वहां पर अभी हमारी मौजूदगी है और देख सकते हैं कि हमारे ठीक पीछे 75 फीट का नमस्ते का स्क्रिप्चर है, वो भी जलमग्न होना शुरू हो गया है। यहाँ तक बाढ़ का पानी पहुंचना शुरू हो गया है। केंद्रीय जल आयोग की डेली फ्लड बुलेटिन की मानते हैं तो गंगा का जल स्तर चेतावनी बिंदु से महज 3.5 मीटर तो खतरे के निशान से 4.5 मीटर ही शेष रह गया है। नमो घाट बनारस का चौपाटी कहा जाता है। यहाँ लगातार जो लोग आते हैं, आस्थावान पर्यटक सैलानी आते हैं, वे काफी संख्या में होते हैं, जिनको हटाने के लिए, जिनको आगाह करने के लिए लगातार गार्ड यहाँ अलर्ट है और लोगों को इस बाढ़ के पानी के नजदीक जाने से, घाट की सीढ़ियों के नजदीक जाने से मना कर रहे हैं। तो वहीं एहतियात के तौर पर बनारस में सभी तरह के नौका का संचालन अगले आदेश तक रोक दिया गया है। तो वहीं NDRF, जल पुलिस और गोताखोर की भी ड्यूटी लगाई गई है। तटवर्ती इलाकों के लोगों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। 5 बार गंगा आरती का स्थल भी बदल दिया गया है और अब गंगा आरती छत पर की जा रही है। माना जा रहा है कि गंगा अगर यूं ही बढ़ती रही, जलस्तर में बढ़ाव देखा गया, तो आने वाले दिनों में तटवर्ती इलाकों के लोगों की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं।
7: गंगा में पानी के बढ़ते प्रवाह को देखते हुए वाराणसी की चौपाटी कहे जाने वाले नमो घाट पर आने वाले लोगों की संख्या काफी कम हो गई है। स्थानीय दुकानदारों की रोजी रोटी पर तो असर है ही, पर्यटकों और श्रद्धालुओं में भी निराशा है।
9: इस समय बहुत नुकसान हो रहा है और धंधा बहुत खराब चल रहा है। बाढ़ की वजह से भीड़ नहीं आ रही है, यात्री लोग आ नहीं रहे हैं, बहुत दिक्कतें हम लोग को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
10: आमदनी कितनी कम हो गई है?
9: बहुत ज्यादा कम हो गई,
10: खर्चा उतना ही। तो अभी कब तक इसी तरह लगा रहेगा?
9: 2 महीना लग जाएगा लगभग।
11: अभी कुछ भी नहीं देख पा रहे, बोट चल नहीं रही है, तो इससे जो हमारा यहाँ आने का इच्छा था वो सब खत्म सा हो गया,
10: अधूरा ही रह
11: गया। हाँ, अधूरा रह गया सर।
10: और घाटों का आपसी कनेक्शन भी कटा हुआ?
11: हाँ, कटा हुआ। हाँ, एक दूसरे घाट से जा नहीं सकते। हाँ,
10: इससे थोड़ी निराशा है?
11: निराशा तो है ही, अभी इतनी दूर से आए हैं इसी काम के लिए। हाँ। सिर्फ बाबा के दर्शन हो पाएंगे हमें।
12: चारों तरफ घूम भी नहीं पा रहे हैं बारिश की वजह से, पानी पानी है।
13: भदोही के रहने वाले हैं, यहाँ घूमने आए थे और यहाँ पे फिलहाल बोटिंग के लिए आए थे और बोटिंग बंद हो गई है, तो काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो गए हम लोग। अब ये सब भी नहीं चल रहा, और बाकी अगर वैसे होता ये नाव में भी घूम लेते, वो भी बंद हो गया है पानी बढ़ने की वजह से।
10: अभी नमो घाट पे क्या कंडीशन है? पानी यहाँ भी भर गया है?
13: अब पानी है तो बस देख के घर जाना पड़ेगा वापस, ऐसे ही बिना घूमे टहले।
14: घाटों पे थोड़ा रश भी है और लेकिन पानी का स्तर बढ़ रहा हुआ है, वो उस वजह से हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे। पानी में पीछे से भी पानी थोड़ा वो आ रहा है, मिट्टी वाला आ रहा है, तो बोटिंग वगैरह हो नहीं रही, तो जो हम बोटिंग में जाना चाहते थे वो नहीं जा पा रहे।
10: थोड़ी सी निराशा
14: तो रहती है। अभी इतनी दूर से आए हैं तो रहेगा, बार बार आना होता नहीं है। और भगवान बाबा जी की कृपा रही तो हम अगले सावन फिर आएंगे।
15: पानी का स्तर काफी बढ़ा हुआ है, जिसके कारण बोटिंग वगैरह बंद की हुई है और बहुत सारे घाट आपस में से जुड़े हुए नहीं है।
7: वाराणसी में गंगा का जल स्तर अभी खतरे के निशान से 4.5 मीटर नीचे है, पर प्रति घंटे 4 सेंटीमीटर का बढ़ाव दर्ज किया जा रहा है। माना जा रहा है कि गंगा का जल स्तर यूं ही बढ़ता रहा तो जल्दी ही नमो घाट पूरी तरह से पानी में समा जाएगा, इसलिए एहतियात के तौर पर जगह जगह गंगा घाटों पर NDRF और जल पुलिस की तैनाती कर दी गई है।
16: आप लोग किनारों पर ही स्नान करें, किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें।
7: ऐसा नहीं कि गंगा के घाट पर पूजा पाठ और दूसरे धार्मिक क्रियाकल्प बंद है, सब कुछ पहले जैसा ही है, पर गंगा आगे बढ़ती जा रही है और घाट पर आरती के लिए बनाए गए प्लेटफॉर्म पीछे जा रहे हैं। रस्सियों का जो घेरा है उसके आगे नहाने की इजाजत नहीं। परेशानी पुरोहित और यजमान दोनों को है, पर बारिश के दिनों में ये तस्वीर नई नहीं, छोटे नावों और मोटर बोट के चलने पर रोक है।
8: एहतियातन देख सकते हैं कि नाव के संचालन पर, मोटर बोटों के संचालन पर फिलहाल प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसके चलते घाट किनारे नावें बंधी हुई हैं, थमी हुई हैं और लगातार नाविक भी इस पर निगरानी रखे हुए हैं। तो वहीं हम इस समय वाराणसी के 80 घाट पर हैं, इसके बगल में गंगा महल घाट है, फिर रीवा और तुलसी घाट, लेकिन साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो घाटों का आपसी कनेक्शन है एक घाट से दूसरे घाट तक, 84 घाटों का आपसी जो संपर्क का रास्ता है वे टूट गया है, और लगातार बढ़ाव जारी रहने से जो तीर्थयात्री आ रहे हैं, जो यहाँ घूमने लोग आ रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं, आस्थावान आ रहे हैं, उनको भी काफ़ी निराशा हाथ लग रही है, क्योंकि नौका संचालन पर रोक लगी हुई है और माना जा रहा है कि अगर गंगा के जलस्तर में यूं ही बढ़ोतरी जारी रही तो दिक्कत और बढ़ेगी। फिलहाल तटवर्ती इलाकों के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, या यहाँ रोजी रोटी चलाने वाले हों या गंगा आरती करने वाले आस्थावान हों, लगातार अपने साजो सामान को ऊपर की ओर शिफ्ट कर रहे हैं, और आज 5वीं बार दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती भी पीछे शिफ्ट होगी। माना जा रहा है कि ये आरती आज छत पर होगी, तो लगातार गंगा के जो बढ़ते जलस्तर से लोगों की दुश्वारियां बढ़ती चली जा रही हैं, और माना जा रहा है कि अगर यूं ही गंगा का जलस्तर बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में मुश्किलें और भी बढ़ेंगी।
7: वाराणसी में गंगा घाट पर जो रौनक होती है वो बारिश के इन दिनों में थोड़ी कम है। गंगा में पानी जब तक बढ़ रहा है और घाट सुरक्षित नहीं, तब तक हालात ऐसे ही रहने वाले हैं। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: खास कार्यक्रम में इतना ही, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
17: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
18: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
17: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
19: का महीना भगवान शिव की भक्ति, हरियाली और उत्सवों का पवित्र और प्रिय महीना माना जाता है, और इस महीने में विशेषकर कावड़ यात्रा की भव्य छटा देखने को मिलती है। इस बार भी बिहार के मुंगेर में कावड़ मार्ग पर कई भव्य रंग देखने को मिल रहे हैं।

0: सावन के महीने में कावड़ पथ की रौनक देखते ही बनती है। बिहार के मुंगेर में हर दिन असरगंज कच्ची कावड़िया पथ पर आस्था और उत्साह का संगम दिखता है। बम बम भोले और हर हर महादेव का जय घोष करते हुए बड़ी संख्या में शिव भक्त अनोखी छटा बिखेरते हुए बैद्यनाथ धाम की ओर बढ़ते दिखते हैं। ये दृश्य हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब इस तस्वीर को ही देखिए, इसमें भक्त अपने आराध्य को कंधे पर विराजमान कर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। भोलेनाथ अपने भक्तों के भाव देखते हैं, उनके प्रति अपने अगाध आस्था को प्रदर्शित करने के लिए भक्त बाबा को चश्मा मुकुट सबसे पूरी तरह सजाकर दिव्य रूप में अपने साथ ले जा रहे हैं। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से आया कांवड़ियों का ये दल सुल्तानगंज से जल भरने के बाद झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर जल अर्पित करने बढ़ता चला जा रहा है।
1: हम लोग अयोध्या से चलकर यहाँ सुल्तानगंज आए और बाबा भोलेनाथ के दरबार में जा रहे हैं। बाबा का ये जो रूप है बहुत ही निराला हम लोगों को लगा, इसीलिए बाबा को इस गेटअप में हम लोगों ने तैयार किया है। चश्मा लगा के हम लोग ले चल रहे हैं, खुद चश्मा लगाते हैं और बाबा को भी चश्मा लगा के लेके चल रहे हैं।
0: आस्था की इसी यात्रा में कोई कंधे पे कांवड़ उठा रहा है तो कोई अपने बच्चों को बंगी में लेकर बाबा के दरबार की ओर बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल निवासी शिव भक्त अपने 7 महीने के बेटे को बांगी में बैठाकर बाबा की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, तो प्रयागराज निवासी शिव भक्त अपनी 2.5 साल की बिटिया को गमछे से बनी बांगी में लेकर जा रहे हैं। सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर लगभग 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके भक्त देवघर पहुंचते हैं और भगवान भोले शंकर को जल अर्पित करते हैं। इस दौरान कांवड़ मार्ग में शिव भक्तों के लिए की गई व्यवस्थाएं उनकी राह आसान कर देती है।
2: बहुत अच्छा है, लाइट है और निःशुल्क जल सेवा भी है, शौचालय है, सुलभ शौचालय, मेडिसिन वगैरह भी मिल रही है और क्या ही चाहिए, ये तो काफी है।
0: बैद्यनाथ धाम की महिमा अपरंपार मानी जाती है। यहाँ सावन के पूरे महीने कांवड़ियों की भीड़ रहती है, विशेषकर सोमवार को बाबा पर जल अर्पित करने के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ता है।
3: जो 12 ज्योतिर्लिंग में द्वादश ज्योतिर्लिंग में एक हमारे ऐसे ही पांचवा है और यहाँ पे शिव और शक्ति के ऊपर साथ में विराजमान है शिव। एक ऐसा शिव है जहाँ पे सिंदूर भी चढ़ता है, चूंकि शक्ति होने के कारण ये परंपरा बनी हुई है। और यहाँ पे एक चीज खास ये है, और जगह में सब आप त्रिशूल देखेंगे लेकिन यहाँ बाबा बैद्यनाथ के ऊपर पंचूर देखेंगे, इनका एक अलग ही महत्व रहा है और हम लोग अपने जीवन में उसको बहुत हमें देखने को मिला है कि इनकी कृपा सब पर बनी रहती है और आगे भी बनी रहे। हर महादेव।
0: बैद्यनाथ धाम में सावन ही नहीं बल्कि भादों के महीने में भी कांवड़ियों और शिव भक्तों का तांता लगा रहता है। सावन जहां मुख्य कांवड़ मेला मास माना जाता है, वहीं भादो मास में भी श्रद्धालु और डाक कांवड़िए बाबा का जलाभिषेक करने के लिए पहुंचते हैं। मुंगेर से गोविंद कुमार और देवघर से शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
5: मंगल का कौन सा योग वैवाहिक जीवन में अलगाव ले आता है? मंगल का कौन सा योग साहस और आत्मविश्वास को कमजोर कर देता है? मंगल का कौन सा योग जीवन में प्रचंड दुर्घटना का कारण बनता है? कौन से हैं मंगल के अशुभ योग और क्या है उनका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोर धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोर धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोर धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोर धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोर धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोर धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोर धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोर धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोर धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोर धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोर धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आज